0: लेकिन कोई भी इसे रोकने की कोशिश नहीं करता। वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में नई सरकार के गठन के बावजूद टीएमसी के लोगों पर हमला रुक नहीं रहा है, हर दिन उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।
1: बंगाल में भगवा लहराने के साथ ही शुभेंदु सरकार फुल एक्शन में है। राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार एक के बाद एक कड़े और कारगर फैसले ले रही है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक को दूसरे युवक की पिटाई करते हुए देखा जा रहा है। इस वीडियो के जरिए कुछ लोग राज्य सरकार के नियत पर सवाल खड़े करते हुए ये कह रहे हैं कि नई सरकार के गठन के बाद भी राज्य में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला रुक नहीं रहा है। एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि सड़कों पर टीएमसी पर खुलेआम हमले हो रहे हैं, आखिर बंगाल में हो क्या रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक युवक को दूसरे युवक की पिटाई करते हुए देखा जा सकता है। और इस वीडियो के जरिए लोग बंगाल की शुभेंदु सरकार की नियत पर सवाल खड़े करते हुए ये कह रहे हैं कि नई सरकार के गठन के बाद भी राज्य में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला रुक नहीं रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये मराठी में लगा। आप भी सुनिए इन आवाजों को। वायरल वीडियो बंगाल का होता है तो यहाँ पर बंगला वैसे सुनाई देती, लेकिन यहाँ पर बंगला मिश्रित हिंदी प्योर मराठी सुनाई दे रही है। ऐसे में हमें दावे पर शक हुआ। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने एक बार फिर से वायरल वीडियो के फ्रेम को गौर से देखा और इस दौरान हमें वीडियो में एक स्कूटी नजर आई और इस स्कूटी पर MH नंबर प्लेट है जो कि महाराष्ट्र का है। अगर वीडियो बंगाल का होता तो फिर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बंगाल नंबर प्लेट स्कूटी नजर आती, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए इंटरनेट और बंगाल के लोकल मीडिया आउटलेट्स को खंगाला, लेकिन वहां पर भी वायरल दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट हमें नहीं मिली। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि वायरल वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए बंगाल में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं हो रही है। देखिए सच और झूठ क्या है।
1: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें एक इंस्टाग्राम यूजर के अकाउंट पर मिला। इसे 15 अप्रैल 2026 को पोस्ट करते हुए लिखा गया था, मुंबई के अंधेरी वेस्ट के वर्सोवा इलाके में एक व्यक्ति पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। मोहम्मद जैद शेख पर ऑटो रिक्शा से आए 3-4 लोगों ने हमला किया। सूत्र के अनुसार यह हमला सुपारी देकर करवाया गया है। इस मामले में हुजैफा नाम के व्यक्ति पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ही हमलावर भेजे। ये घटना वर्सोवा के पास अंधेरी वेस्ट में हुई बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर और जांच की जा रही है। ऐसे मामले शहर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। सर्च के दौरान एक फेसबुक यूजर के अकाउंट पर वायरल वीडियो देखने को मिला। यह वीडियो 11 अप्रैल 2026 को साझा किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक अंधेरी वेस्ट में शख्स पर हमला, सुपारी देकर हमले का आरोप, अंधेरी वेस्ट के वर्सोवा इलाके में एक व्यक्ति पर हमला किए जाने की घटना सामने आई। इंस्टाग्राम यूजर ने भी 10 अप्रैल 2026 को इस वीडियो को शेयर करते हुए घटना को 8 अप्रैल की रात का बताया था। जानकारी के अनुसार इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 फरार है। महाराष्ट्र पुलिस की वेबसाइट पर इस मामले की FIR अपलोड है। वर्सोवा थाने में दर्ज केस के मुताबिक घटना 9 अप्रैल 2026 की रात की है। साफ है वायरल वीडियो मुंबई का है। अप्रैल 2026 की शुरुआत में अंधेरी वेस्ट के वर्सोवा इलाके में कुछ लोगों ने एक युवक पर हमला कर दिया था। इस मामले की वीडियो को बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा का मामला बताकर भ्रम फैलाया जा रहा है। सूरजुद्दीन मंडल के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो के जरिए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही मुसलमानों और ईसाइयों को बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर राज्य से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन जब वायरल वीडियो का सच और झूठ की पड़ताल की गई तो क्या कुछ सामने आया, देखिए हमारी रिपोर्ट।
2: बंगाल में बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ कहा है कि शासन, सुरक्षा और डबल इंजन सरकार का रोड मैप इस सरकार की प्राथमिकता होगी। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो बेहद तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में सुरक्षा बल और पुलिस को लोगों की नागरिकता की जांच करते हुए देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इसे शेयर कर दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद सुरक्षा बल और पुलिस के जवान मुस्लिमों और ईसाइयों के घर जाकर उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर वहां से हटा रहे हैं। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद सीआरपीएफ और पुलिस पश्चिम बंगाल में हर मुस्लिम और ईसाई के घर जाकर उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर वहां से हटा रही है। ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है जिसका सामना भारत के अल्पसंख्यकों को रोज करना पड़ता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल बंगाल चुनावों के दौरान सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में कई वीडियोस को चुनाव से जोड़कर पेश किया जा रहा है। अब वहां पर ऐतिहासिक जीत के साथ ममता बनर्जी का वर्चस्व खत्म कर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है, लेकिन वायरल हो रहे वीडियो का सिलसिला अभी भी जारी है। और इस बीच एक और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है जिससे दावा यह किया जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद वहां के मुसलमानों और ईसाइयों को टारगेट किया जा रहा है और उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर वहां से हटाया जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर हो रहा है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो को ध्यान से देखने पर हमें शक हुआ। हमारी नजर वीडियो में नजर आ रहे पुलिस अधिकारी के ड्रेस के कलर पर गई। ये खाकी रंग है, जबकि बंगाल पुलिस की वर्दी का रंग सफेद है, जो कि भारत के दूसरे राज्यों की खाकी वर्दी से अलग है। उसके बाद नागरिकता जांचने का एक पूरा प्रोसेस होता है, ऐसे में हमें वीडियो के दावे पर भी शक हुआ। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने पता लगाने की कोशिश की कि क्या नई सरकार के गठन के बाद पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ हो भी रहा है, क्योंकि अगर वाकई में ऐसा होता तो फिर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती, हर मीडिया आउटलेट पर सुर्खियां बनी होती, लेकिन कहीं कुछ हमें मिला नहीं। लिहाजा हमने इस सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो वायरल हो रहा वीडियो पश्चिम बंगाल के किस हिस्से का है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, देखिए सच और झूठ क्या है।
2: हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो और पोस्ट वायरल हुए हैं। फैक्ट चेक टीम ने लगातार इन वीडियोस और पोस्ट का फैक्ट चेक किया है। इस दौरान वायरल दावे गलत साबित हुए हैं और अब इसी कड़ी में ये वीडियो वायरल हो रहा है। दावे की सच्चाई का पता लगाने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें इंटरनेट पर खंगाला। इसके जरिए हम एक वेबसाइट पर पहुंचे, जहां 1 जनवरी 2026 को प्रकाशित खबर में वायरल हो रहे वीडियो के कुछ हिस्से देखने को मिले। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कौशाम्बी थाने के प्रभारी अजय शर्मा एक संदिग्ध शख्स की पीठ पर मोबाइल रखकर उसकी तथाकथित नागरिकता जांच करते दिख रहे हैं। आमतौर पर नागरिकता की जांच के लिए बायोमेट्रिक, पासपोर्ट या आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों की जरूरत होती है। वायरल वीडियो 23 दिसंबर 2025 का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो एक चैनल के एक्स हैंडल पर भी देखने को मिला। यहां इसे 1 जनवरी 2026 को अपलोड किया गया था। एक वेबसाइट पर 2 जनवरी 2026 को छपी रिपोर्ट के मुताबिक कौशाम्बी थाना प्रभारी का वीडियो वायरल होने के बाद इंदिरापुरम के सहायक पुलिस आयुक्त अभिषेक श्रीवास्तव ने उन्हें चेतावनी जारी की है। उन्होंने आगे से इस तरह की हरकत नहीं करने की बात भी कही। वीडियो कौशाम्बी में अस्थायी बस्ती और झुग्गी में रहने वाले निवासियों से पूछताछ और सत्यापन की प्रक्रिया का था। सर्च के दौरान एक और रिपोर्ट मिली। 2 जनवरी 2026 को छपी खबर में लिखा था कि वीडियो वायरल होने के बाद कौशाम्बी थाने के प्रभारी अजय शर्मा ने इसे एक मजाक बताया था। साफ है वायरल हो रहे वीडियो के जरिए

0: लिए गलत दावा किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुई नागरिकता जांच का वीडियो है। पाकिस्तानी यूजर ने प्रोपेगेंडा के लिए इसे बंगाल में मुसलमानों और ईसाइयों की नागरिकता की जांच का बताकर शेयर किया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and non-stop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
4: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
3: Big 12 Radio.
5: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
3: and
5: down.
3: Talk sports.
6: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
3: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।
7: मैं आपके बात क्या मानूं, बताइए आपकी बात में क्या
8: मानूं।
9: सोशल मीडिया पर बच्चों के मासूम वीडियो अक्सर लोगों का दिन बना देते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटी बच्ची क्लासरूम में अपनी टीचर के सामने ऐसे ऐसे बहाने बनाती नजर आ रही है कि लोग हंस हंस कर लोटपोट हो रहे हैं।
7: क्लास में अब्सेंट क्यों होती हो?
8: क्लास में स्पैम
7: नहीं, अब्सेंट क्यों होती हो?
8: अच्छा, बताती हूं।
7: हाँ बिल्कुल बताइए, रीजन बताइए मुझे।
9: वीडियो में बच्ची कभी रोती है, कभी अपनी बात समझने की कोशिश करती है, और फिर अचानक टीचर से कहती है, मैम हंस के दिखा दीजिए फिर मैं खुश हो जाऊंगी।
7: अच्छा मैं आपको हंस के दिखा दूं? स्टॉप रॉकिंग, मैं आपको हंस के क्यों दिखाऊं?
8: इसलिए फिर मेरा रोना बंद हो जाता है।
7: तो आप तो मेरे हंसने वाला वर्क कर ही नहीं रही हो, आप तो अपना टेस्ट कहाँ दे रही हो मुझे? आपको यही नहीं पता इन द स्काई में आपको क्या क्या दिखते हैं?
9: यही मासूमियत अब इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रही है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। लोग बच्ची की क्यूटनेस और उसके एक्सप्रेशंस देखकर मजेदार रिएक्शंस दे रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि ऐसी हरकत देखकर बच्चों पर गुस्सा करना भी मुश्किल हो जाता है।
7: डे किससे हॉट होता है?
8: गर्मी।
7: गर्मी किससे होती है?
8: हॉट।
7: हॉट किससे? हॉट कैसे आता है? अभी अभी स्काई में क्या ब्राइट हो रहा है?
8: अभी
7: स्काई में क्या ब्राइटनेस है? ये क्या है? मार दूंगी प्रिशा।
8: जाने दो, कल पूरा ये पूरा याद करके आऊंगी मैं।
7: क्या जाने दूं मैं आपको? है
8: मुझे जाने दीजिए प्लीज।
7: क्यों?
8: मुझे ऐसे आप डांटे कुछ करें, पता भी मैं बहुत मुझे डांटती हूँ आपसे भी।
9: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने दिल जीत लिया है। वीडियो में एक बच्चा नजर आ रहा है जिसने गांधी जी का लुक लिया हुआ है और एक जगह पर मूर्ति बनकर खड़ा है। तभी वहां पर एक बच्ची आती है, वो जो खुद खा रही थी उसी में से एक टुकड़ा उस बच्चे को भी खाने के लिए ऑफर करती है। दोनों बच्चों की ये मासूमियत और बच्ची का उस बच्चे का ऐसा ख्याल रखना दिल जीत लेता है, और इसी कारण वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। मगर ये जानकारी नहीं मिल पाई कि वीडियो कब और कहां का है।

जहां एक तरफ देश में बोर्ड परीक्षा के नतीजों के बाद बच्चों पर अच्छे मार्क्स लाने का भारी दबाव होता है, वहीं मुंबई के एक परिवार ने अपने बेटे मोहम्मद जैद के 55% मार्क्स आने पर जो किया उसने सबका दिल जीत लिया। जब जैद का रिजल्ट आया तो पता चला कि उसने 55% अंक हासिल किए थे। आमतौर पर ऐसे नतीजों के बाद घरों में या तो सन्नाटा पसर जाता है

या फिर पड़ोसी के बच्चों और दोस्तों से तुलना शुरू हो जाती है। लेकिन जैद के घर का सीन बिल्कुल अलग था। परिवार ने जैद की उपलब्धि को छोटा नहीं समझा और उसकी मार्कशीट के डिजाइन वाला एक खास केक मंगवा कर इसे सेलिब्रेट किया। इस स्पेशल केक पर जैद की पूरी डिटेल थी, नाम, रोल नंबर और हर सब्जेक्ट के मार्क्स। वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि जैद जैसे ही कमरे में आता है

पूरी डिटेल थी, नाम, रोल नंबर और हर सब्जेक्ट के मार्क्स। वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि जैद जैसे ही कमरे में आता है, परिवार के लोग तालियों से उसका वेलकम करते हैं। जैद के चेहरे की मुस्कान ये बताने के लिए काफी थी कि उसके माता पिता का ये सपोर्ट उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए कितना जरूरी था।

0: दिल्ली स्टेशन पर एक इंडोनेशियाई महिला पर्यटक अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी गेट पर खड़े होकर कैमरा संभालते समय उसका पसंदीदा दुपट्टा प्लेटफॉर्म और पटरी के बीच के गैप में जा गिरा। इसके बाद जो हुआ, उसने इंटरनेट की जनता का दिल जीत लिया। दरअसल इंडोनेशिया की एक कंटेंट क्रिएटर हाल ही में भारत घूमने आई थी। दिल्ली स्टेशन पर जब वह ट्रेन का इंतजार कर रही थी, तभी गेट पर खड़े होकर कैमरा संभालते समय उनका पसंदीदा दुपट्टा हाथ से फिसलकर सीधा प्लेटफॉर्म और पटरी के बीच के खतरनाक गैप में जा गिरा। विदेशी महिला परेशान थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि चलती ट्रेनों के बीच पटरी पर उतरना जान जोखिम में डालने जैसा था। तभी वहां से गुजर रहे एक अंकल ने विदेशी महिला की परेशानी देखी। उन्होंने पहले हाथ से दुपट्टा खींचने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो अपनी जान की परवाह किए बिना उस सकरे गैप में छलांग लगा दी। वहां खड़े लोग बस देखते रह गए। अंकल ने पटरी से दुपट्टा उठाया और उसे वापस महिला को थमा दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि बच्ची एक जगह पर बैठी हुई है और अपना स्किन केयर कर रही है। उसे किसी का क्रीम मिल गया है और उसने लगभग पूरे शरीर पर उस क्रीम को लगा दिया है। पूरा चेहरा क्रीम से भरा हुआ है, हाथों में क्रीम लगी हुई है और साथ ही पैरों पर भी क्रीम लगा लिया है। वो अभी भी चेहरे पर क्रीम लगाती नजर आ रही है। वहीं चारों तरफ छोटे छोटे कागज पड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब किसी ने अचानक यह देखा और वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
3: फिल्म फेस्टिवल की जहां की तस्वीरें लगातार सामने आ रही और सोशल मीडिया पर वायरल भी है, ऐसे में इस ग्लोबल मंच पर विदेशी सेलेब्स के साथ हिंदुस्तान का भी जलवा देखने को मिल रहा है। कान फिल्म फेस्टिवल में इन सितारों ने अपने सिनेमा संस्कृति और यूनिक स्टाइल से न केवल भारतीय पहचान को खास अंदाज में पेश किया, बल्कि अपने फैशन सेंस से सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं।
4: कैन के रेड कार्पेट पर इस बार सिर्फ ग्लैमर नहीं, भारतीय सिनेमा संस्कृति और स्टाइल का शानदार संगम भी देखने को मिला। जहां एक ओर सितारों ने अपने फैशन से दुनिया का ध्यान खींचा, तो वहीं कुछ चेहरों ने अपनी मौजूदगी से भारतीय पहचान को भी खास अंदाज में पेश किया। तारा के बाद अब कैन के मंच पर मलयालम सिनेमा की चर्चित एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन ने भी अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। फिल्म लोका से देश भर में पहचान बनाने वाली कल्याणी ने कैन 2026 में अपने पहले ही अपीयरेंस से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। फ्रांस के खूबसूरत शहर में सजे इस भव्य फिल्म महोत्सव में कल्याणी का अंदाज बेहद शालीन, क्लासी और इंटरनेशनल फैशन से भरपूर नजर आया। जैसे ही उनकी तस्वीरें सामने आई, सोशल मीडिया पर फैंस ने उनकी सादगी और एलिगेंस की खूब तारीफ शुरू कर दी। और अब आपको दिखाते हैं कैन फिल्म फेस्टिवल में सनातन की झलक, जब रेड कार्पेट पर हाथ में गीता

0: अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।
2: शनि देव की जयंती पर क्या होगा पूजा विधान? शनि देव की जयंती पर किन समस्याओं का होगा समाधान? और शनि देव की जयंती पर कैसे मिलेंगे वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More more country roads.
4: Thank God I get to wake
3: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: देव की जयंती पर क्या होगा पूजा विधान? शनि देव की जयंती पर किन समस्याओं का होगा समाधान? और शनि देव की जयंती पर कैसे मिलेंगे वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
6: आज देश भर में मनाई जा रही है शनिदेव की जयंती। 300 साल बाद बने दुर्लभ संयोग, मंदिरों में सुबह से लगी श्रद्धालुओं की भीड़। चार धाम यात्रा में चरम पर श्रद्धालुओं का उत्साह, तीर्थयात्रियों की संख्या अब 13.5 लाख के पार। केदारनाथ पहुंचे 5,76,000 से ज्यादा भक्त। बिहार में मोतिहारी के पास विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य तेज। यहां स्थापित विश्व के सबसे बड़े सहस्त्रलिंगम शिवलिंग पर इस साल सावन में श्रद्धालु कर सकेंगे जलाभिषेक। मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री सावलिया सेठ मंदिर में एक बार फिर भक्तों ने दिल खोल कर दिया दान। चतुर्दशी को खोली गई दान पेटिया, पहले चरण की गिनती में मिले 11 करोड़ से ज्यादा रकम। गुलाबी रंग में रंगी नजर आई नवी मुंबई, हजारों फ्लेमिंगो ने डाला डेरा, प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए उमड़ रही भारी भीड़। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी गुजरात टाइटंस। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा मुकाबला। प्लेऑफ में बने रहने के लिए कोलकाता के लिए जीत जरूरी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़।
6: बात धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।
7: एक कथा सुनो फिर हनुमान चालीसा पे चर्चा। एक गांव में एक आदमी रहता था, सीधा साधा था, बहुत सीधा था, लेकिन उसकी एक ही कमी थी, खूब खाता था। अच्छा, आदमी उतना ही खाता है जिसका जितना बड़ा खाता है। कुछ लोग कहते ना ये बहुत खाते हैं, भाई आदमी उतना ही खाता है जिसका जितना बड़ा खाता है, जैसे आपका बड़ा खाता है। तो वो तो खाते के हिसाब से ही खाते हैं। तो आदमी कितना खाता, जिसका जितना बड़ा खाता आदमी उतने। तो ये खूब खाते थे, कोई काम नहीं, एक ही काम था, खावे और सोवे और जगे और फिर खावे। घर वाले बहुत हैरान, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। अच्छा, घर वालों घर वाले रखते ही उसी को जो काम का हो, और जो काम का नहीं वो कोई सी काम का नहीं। तो घर वालों ने कहा कि तुम खाते ही रहते हो, कुछ करते ही नहीं हो, कुछ करो। बोले हमसे कुछ होता ही नहीं है। बोले होता नहीं है तो काहे को पड़े हो, बाबा बन जाओ। अच्छा, कई लोग तो इसी चक्कर में बाबा बन जाते। बोले क्यों? बोले मूड़ मुड़ाए 3 गुण, सिर मुड़ाए। इसको बुंदेलखंडी में मूड़ कहते हैं, हमारे बुंदेलखंड में मूड़ सिर को मूड़ कहते। तो बोले सिर मुड़ाए 3 गुण। बोले क्या? बोले सिर की मिट जाए खाज और खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। बोले ये फायदा है तो मुड़ मुड़ाए 3 गुण। घर वालों ने कहा कोई काम के तो है नहीं, घर में पड़े रहते हो, जाओ बाबा बन जाओ। अच्छा, कई लोग बाबा इसी चक्कर में बनते। घर में भाई खटपट, सो चल बाबा के मटपट, गुरुजी ने काट दी चोटी, ले मांखा बेटा रोटी। अब ये घर से निकला, जाए कहां? इसने सोचा जाए कहां, घर वालों ने ही छोड़ दिया, जिन पे भरोसा था उन्होंने ही छोड़ दिया, जाए कहां? सामने एक मंदिर था, मठ आश्रम, जैसे त्रिपाठी जी ने हमारा भिवंडी में बना रखा बागेश्वर सनातन मठ, ऐसे ही एक मठ था। मठ के बाहर पुजारी जी बैठे थे। अच्छा, महात्मा तो होते ही मोटे ताजे, और होए क्यों ना, उन्हें कोई टेंशन ही नहीं, अटेंशन में रहते हैं। टेंशन क्या, महात्मा तो अटेंशन में रहते, टेंशन में थोड़ी रहते, अटेंशन में रहते। खा खूब बड़े मोटे ताजे महात्मा मठ के बाहर मंदिर के बाहर बैठे थे, ये जा रहा था रस्ते में, इन्होंने देखा, इसने देखा, बहुत खाते हैं लगता है, आदमी को तो अपने हिसाब से ही दिखाई देता है, बोले ये भी मोटे ताजे हैं लगता है, ये भी खूब खाते। नजदीक आ गया गुरु जी के, जैसे ही नजदीक आया तो दो चार चेला महात्मा जी के निकल आए, वो भी मोटे ताजे, अरे बोले वाह इधर तो सब मोटे ताजे, ये भी मोटे ताजे लगता है, ये सब खूब खाते हैं हमारे जैसा, ये भी मोटा ताजा था। ये गया बोले गुरु जी हाँ आप हमें अपना चेला बना लो। बोले बन जा। बोले बहुत बढ़िया जय हमारा। बोले लेकिन चेला तो बनेंगे, पहले ये बताओ हमें काम क्या करना होगा। गुरु जी बोले कोई काम नहीं है, मंदिर है, सुबह शाम आरती में खड़े होके कीर्तन गाओ और पड़े रहो, कोई काम नहीं है मंदिर में, कोई इमरजेंसी आएगी तो बताएंगे। बोले महाराज चलो ये तो हो गई काम की बात, ये बताओ इसकी क्या व्यवस्था है। अरे बोले वाह मंदिर है, कोई कमी नहीं, भगवान की बहुत कृपा है, दोनों टाइम भंडारा चलता है, सुबह भी शाम को भी। बोला ओनली टू टाइम? बोले हाँ दो बार। बोले वो चार नहीं हो सकता? अरे बोले मंदिर है कोई दिक्कत नहीं, चार नहीं 8 बार खाओ। इसने कहा ये बहुत बढ़िया है, कुछ काम करना नहीं, 8 बार खूब खाना। इसने कहा यदि 9 बार खा ले तो? पंडित जी बोले खाता ही रहेगा कि कुछ और करेगा? बोले सच यही है कि हम खाते ही भाग हैं, इसीलिए तो घर से भगाए गए। बोले कोई बात नहीं खाते रहना, 9 बार खा लेना, तुम्हारी व्यवस्था बना देंगे। लेकिन इसे क्या पता अब रहने लगा, गुरु जी ने चेला बना दिया, नाम रख दिया रामदास। क्या नाम रखा? रामदास। माला पहना दी, तिलक लगा दी। अब ये बढ़िया सुबह शाम आरती में खड़ा हो गए, आरती के बीच ही में जयकारा लगा के बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आरती चल रही हो, बीच में जयकारा लगा के भंडारी के पास आ जाए, लो हम तो जय बोले ले आओ। तो पुजारी जी कहे भाई कम से कम 5 मिनट तो गम खा, 5 मिनट तो ठहर जा बीच ही में, और ये इतना खावे अब इसे फ्री में मिले साव आनंद, काम कुछ करना नहीं, इतना खावे को होश नहीं खड़े होने का, सांस तेज चल रही, पेट भरो है दाल से और रोटी से और भात से, आ सांस तेज चल रही हो, दीवाल में टिक्के कीर्तन करे हरे राम उतई ही सो जाए, और जैसे ही नींद को ले सो फिर जाए ले आ। मंदिर वाले बोले भला भगवान इसका भला करे, खाता ही खाता है, लेकिन इसे क्या पता मंदिर में भी मुसीबत आने वाली है। एक दिन सुबह से कुछ बना ही नहीं, भंडारी जी धूप में तेल लगाते हुए बैठे थे, सिर के बाल खुजला रहे थे, इसको लगा आज मंदिर में हड़ताल है, तो ये गुरुजी के पास गया। गुरुजी आज रोटी नहीं बन रही, भंडारी जी बैठे हैं, कितनी देर में बनेगा, हमें गरम ही दे दो। गुरुजी बोले चेला तुम्हें बताना भूल गए, दरअसल आज एकादशी है। बोले एकादशी है तो? बोले एकादशी है तो ना बनेगा ना मिलेगा। तो रामदास बोला हमें भी? बोले तुम्हें क्या, किसी को भी नहीं। अरे बोले गुरुजी आपके इतने चेला हैं उन्हें एकादशी करवा दो, एक तो छोड़ दो। बोले नहीं नहीं वो तो सबको नियम बराबर है, ना बनेगा ना मिलेगा। ये हाथ जोड़ के बोला गुरुजी यदि हमारी एकादशी करवा दी तो द्वादशी देखना मुश्किल हो जाएगा। हाँ बोले मतलब? बोले मतलब सीधा है गुरुजी, एक चेला आपका कम हो जाएगा, आश्रम में कलियम टपक जाएंगे। बोले ये तो बड़ी खाज है। बोले क्या किया जाए? बोले आप ही कोई उपाय बताओ गुरुजी। बोले और तो कोई उपाय नहीं, मंदिर में तो बन नहीं सकता, नियम है हमारे गुरुजी, 300-400 साल से नियम चल रहा है, एक उपाय है। क्या? बोले हम सामान दे सकते हैं, तुम बना लोगे? अरे बोले मरते क्या नहीं करते, सामान ही दो। तो भंडारी जी को कह दिया हाँ भाई जरा सामान दो। भंडारी जी ने आटा दे दिया, गुड़ दे दिया, चावल दे दिए, नमक दे दिया, मिर्चा दे दिया। गुरुजी से प्रणाम करके बोला गुरुजी हम जा रहे, आशीर्वाद दो कि हम फतेह करके आए। तो गुरुजी बोले क्या फतेह करके आए? बोले पूरा राशन ठिकाने लगा के आए, क्योंकि अभी तो बनाना पड़ेगा, तब तक दोपहर आ जाएगी भूख लग। तो गुरुजी बोले इधर आओ। जी जी गुरुजी सुनो, वैसे तो एकादशी को खाना नहीं चाहिए, पर तुम नहीं मान रहे हो तो खा रहे हो। सुनो भगवान को बुलाकर भोग लगाकर खाना, अब ये तो सीधा साधा आदमी, बड़ा सरल आदमी, कुछ जानता था ही नहीं, इसे पढ़ाई लिखाई थी नहीं, कोई जानता था नहीं, सीधा साधा आदमी, भोला भाला। इसने कहा जो आज्ञा गुरु जी। तो इसने कहा कि हाँ बहुत बढ़िया बात है, आज एकादशी है तो मंदिर में भगवान को कुछ मिलेगा ही नहीं, कम से कम हमारे यहां मिल तो जाएगा। ये नदी के किनारे आया, नदी के किनारे लकड़ी ली, आग जलाई, आग जला करके इसने रसोई तैयार की, टिक्कड़ बनाए, चोखा प्रसाद बनाया, चोखा प्रसाद बनाने के बाद गुड़ का शरबत बना करके बैठ गया। इसने सोचा गुरुजी ने कहा था भगवान को बुला लेना, मंदिर था राम जी का, सो हाथ जोड़ करके गाने लगा।

गाता रहा। अच्छा सीधा साधा आदमी पढ़ा लिखा तो था नहीं, इसे लगता था कि भगवान सच में आते और खाते हैं। सीधा आदमी ये सोचता था कि भगवान आते हैं और खाते हैं। अब ये चारों तरफ देखने लगा, कोई नहीं आता दिखाई पड़ा, केवल जंगली जानवर दिखाई पड़े। सो ये और टेंशन में मन ही मन कहने लगा, प्रभु एक तो एकादशी है, दूसरा पहली बार जिंदगी में हमने बनाया है, तीसरा दोपहर पहले ही हो गई, भूख बहुत लगी, और चौथा तुम आ नहीं रहे। अच्छा क्यों नहीं आ रहे? गुरुजी ने तो कहा था भगवान को बुला। एक कमी होगी। क्या कमी होगी? हमारे पास वो घंटिया आचमनी नहीं है। हो सकता भगवान माहौल देख के न आ रहे हो। सो हाथ जोड़ करके बुला, आचमनी।

नहीं आए, अब इसका दिमाग खराब, इतनी देर हो गई आए नहीं, और इसको रोटी बसाए। एक बार रोटी की तरफ देखे, फिर इधर उधर देखे, भगवान नहीं आए, तो सीधा साधा आदमी हाथ जोड़ करके बोला, सुनो भगवान, सीधी सीधी बात सुन लो, जहां भी हो जल्दी आ जाओ, और तुम मंदिर के चक्कर में ना रहना कि मंदिर में मालपुआ रबड़ी मालपुआ, आज वहां एकादशी है, ठन ठन गोपाला मिलेगा, वहां कुछ नहीं है, जो है यही है, यहाँ हम भी खा रहे तुम भी पाओ, एकादशी मना लो। भगवान इसी सरलता पर रीझ गए, लेकिन राम जी भी कम कौत की नहीं है, कलयुग की सत्य घटना है, राम जी अकेले नहीं आए। सीता समारोह पितवाम भागम, माता जानकी जी को लेकर प्रभु श्री राम प्रकट हो गए। आहा, जैसे ही इसने देखा दो जने आ गए, तो राम जी की तरफ देखकर बोला, जय हो भगवान, इतनी देर क्यों कर दी। भगवान बोले, बिजी थे, व्यस्त थे। बोले, अच्छा। बगल में जानकी माता को देख के बोला, ये कौन है। राम जी बोले, वाह, हमारी घरवाली है, घरवाली घरवाली। बोले, हमने बुलाया तो एक भगवान, तो जी तो दो भगवान हो गए। तो राम जी बोले, दिक्कत क्या है। बोले, पूरी दिक्कत है, व्यवस्था दो लोगन की है, अब तीन हो गए, मतलब आधी एकादशी हमारी करवा ही लोगे। एक तो आधी पहले ही हो गई, ऊपर से बंटवारा करके तुम्हारी घरवाली को भी तो कुछ रोटी लगेंगी, ये खाएंगी कि नहीं खाएंगी। भगवान बोले, वाह, हम खाएंगे तो ये भी खाएंगे। बोले, इसका मतलब है शुद्ध है कि दो टिक्कड़ खाएंगी कि तीन। राम जी बोले, ये कोई बात है, पेट भर के खाएंगे। बोले, वाह, एक तो लेट आए, ऊपर से पेट भर के खाओगे, वो दो भगवान आए, व्यवस्था एक भगवान, पर कोई बात नहीं, अब आगे सो आगे बैठो बैठो। एक बात बोले प्रभु, हाँ, आप लोगों की जोड़ी बड़ी सुंदर है, कहाँ रहते हो। भगवान बोले, मंदिर में रहते, बहुत अच्छा, लो खाओ, बढ़िया प्रसाद पवाया। इसने भी प्रसाद पाया, प्रभु भगवान के चरण स्पर्श किए, भगवान जाने लगे। इसने पूछा, सीधा आदमी, इसने कहा, एक बात बताओ भगवान। बोले, हाँ, ये एकादशी साल में कितनी बार आ जाती है। भगवान बोले, तो हर महीना आती है, महीने में एक नहीं दो। बोले, मतलब हर 15 दिन में अपनी मीटिंग फिक्स है। भगवान बोले, हाँ, तो बोले, सुनो, और तो सब ठीक है, अगली बार टाइम पे आ जाएंगे, इतनी देरी ना करिए, थोड़ा जल्दी। भगवान बोले, हम आ जाएंगे, आशीर्वाद। सीधा साधा आदमी तो ये धाम मंदिर आ गया, इसने गुरुजी को नहीं बताया, क्योंकि होता ही ऐसा होगा, उसको ऐसा लगा कि ऐसा ही होता है, भगवान ऐसे ही आते हैं। अब 15 दिन कब बीत गए पता नहीं लगा, फिर एकादशी आई, तो फिर भंडारी जी चूल्हे में नहीं आग लगा में। तो ये पहुंचा, बोले, आज क्या है। बोले, फिर एकादशी। बोले, फिर एकादशी इतनी जल्दी, अभी तो गई थी। अरे बोले, वो तो आ गई, कोई बात नहीं, अभी एकादशी आई। तो गुरुजी के पास गया, बोले, गुरुजी सुनो, इस बार हमारा राशन बढ़ाया जाए। तो गुरुजी बोले, क्यों। बोले, वाह, वहां दो दो भगवान आते, और पिछली बार हमारी आधी एकादशी हो गई थी, इसलिए राशन बढ़ाओ, थोड़ा आटा बढ़ाओ, आटा। गुरुजी को लगा ज्यादा खाता है तो कम रह गया होगा, तो गुरुजी ने 5 शेर की जगह 8 शेर आटा कर दिया, गुड़ दे दिया, चावल दे दी, दाल दे दी, और थोड़ा नमक दे दिया, मिर्चा दे, ले ले जाओ, अब ठीक है। अब ये गया, इसने बढ़िया रोटी टिक्कड़ फिर से बनाया, चोखा बनाया, गुड़ बनाया, मिर्चा की बढ़िया साग दाल बनाई, रख ली, साग बनाई, रख ली। इसने सोचा भगवान को बुला ले, नाम पहले ही जान गया था, पूछा प्रभु राम जी से पहली बार में, ये बगल में कौन है, घर वाली, क्या नाम है इनका, सीता जी, अच्छा, तो आज नाम लेके बुलाने लगा, अरे सीता राम।

दूर ही से हाथ जोड़ के बोले जय हो। एक को बुलाओ सो दो आते हैं, दो का इंतजाम करो सो तीन तीन आ गए। भगवान की तरफ देख के बोला अब ये कौन है? भगवान बोले हमारे भाई है। ये नीचे से ऊपर की तरफ देखे, ऊपर से नीचे की तरफ देखे। राम जी बोले हुआ क्या? बोले लग तो नहीं रहे तुम्हारे भैया है, तुम्हारा कलर अलग है इनका अलग है, दोनों अलग अलग रहे। अरे बोले नहीं नहीं हमारे भाई है, इनकी माता जी दरअसल दूसरी है, इसलिए गौर वर्ण के हैं, हम श्याम वर्ण। अच्छा तो ठीक है, लेकिन एक बात बता। हाँ। बोले हमने तुम्हारा ठेका लिया है भोजन का, खानदान का थोड़ी लिया है। तुम पूरा खानदान लेके आओ, तुम्हारा ठेका है अब पूरे खानदान का, तुम तीन जने आ गए। अब लेकिन कोई बात नहीं, हम आ गए, अब ठीक है लो बैठो, कोई बात लगता है थोड़ी एकादशी फिर करवा दोगे, बैठो बैठो बैठो। अब राम जी बैठ गए। क्या नाम है इनका? लक्ष्मण जी। अच्छा अच्छा बाबा लक्ष्मण जी। फिर एकादशी आई, गुरु जी बोले आज फिर एकादशी है। बोले है तो। गुरु जी बोले सिर क्यों लटका है? अरे बोले वहां पे भगवान ही भगवान आ जाते। गुरु जी बोले कहना क्या चाह रहे? बोले इस बार हमारा राशन डबल किया जाए। गुरु जी बोले डबल? बोले कितना? बोले 8 का 16। 8 शेर दिया था 16। गुरु जी मन में सोचने लगे 16 शेर खाता तो नहीं होगा, जरूरी बेचता है। गुरु जी बोले 16 नहीं 20 दे दो, हम भी देखते हैं कौन भगवान आते। मनी मन दे दो सामान, आटा लिया, दाल ली, गुड़ लिया, नमक लिया, मिर्चा लिया, नदी के किनारे आ गया। लेकिन आज चेला ने चतुराई कर दी, भगत ने चतुराई कर दी। इसने सोचा राशन पर्याप्त है, एक काम करो पहले भगवान को बुला लो, फिर जिस हिसाब की गिनती होगी उसी हिसाब का बना लेंगे।

0: का सोई हाथ जोड़ के बोला जय हो। एक को बुलाओ सो दो आते हैं, दो का इंतजाम करो सो तीन आते हैं, तीन की व्यवस्था करो सो पूरा खानदान मोहल्ला लेके प्रकट हो गए। लेकिन सुन लो, आज हमने भी भोग नहीं बनाया है। भगवान बोले मतलब? बोले ना हमने बनाया है ना तुम्हें डायरेक्ट मिलेगा। भगवान बोले कहना क्या चाह रहे? बोले जब हमें हर बार एकादशी हो ही जाती है, वो धरा सामान बनाओ खाओ। जब हमें मिलता ही नहीं है, अपना बनाओ और खाओ। भगवान बोले तुम क्या करोगे? बोले हम तुम्हारे बैठे रहेंगे, बच जाए सो हमें बता देना, नहीं तो हमारी भी एकादशी।
1: शनि देव की जयंती पर क्या होगा पूजा विधान? शनि देव की जयंती पर किन समस्याओं का होगा समाधान? और शनि देव की जयंती पर कैसे मिलेंगे वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station. Enjoy a carefully brewed mix of soft acoustic sounds with artists like James Bay, come on, let it go. Nora Jones, my heart is drained. Daniel Caesar, we both know how, and much more as you sink into a good book or get lost in your work. Just search Coffee House. Or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
4: बोला था 4 घंटे में इन वाटर फोर्स फिर हो।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
2: It's your boy,
1: just
2: Jay-Z.
1: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
3: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
5: होता है तो कुछ आज का आईना होती है, खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: प्रिंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
11: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
12: आज देश भर में मनाई जा रही है शनिदेव की जयंती, 300 साल बाद बने दुर्लभ संयोग, मंदिरों में सुबह से लगी श्रद्धालुओं की भीड़। चारधाम यात्रा में चरम पर श्रद्धालुओं का उत्साह, तीर्थयात्रियों की संख्या अब 13.5 लाख के पार, केदारनाथ पहुंचे 5,76,000 से ज्यादा भक्त। बिहार में मोतिहारी के पास विराट रमण मंदिर का निर्माण कार्य तेज, यहां स्थापित विश्व के सबसे बड़े सहस्त्र लिंगम शिवलिंग पर इस साल सावन में श्रद्धालु कर सकेंगे जलाभिषेक। मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री सावलिया सेठ मंदिर में एक बार फिर भक्तों ने दिल खोलकर किया दान। चतुर्दशी को खोली गई दान पेटियां, पहले चरण की गिनती में मिली 11 करोड़ से ज्यादा की रकम। गुलाबी रंग में रंगी नवी मुंबई, हजारों फ्लेमिंगो ने डाला डेरा, प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए उमड़ रही भारी भीड़। इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी गुजरात टाइटंस। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा मुकाबला। प्लेऑफ में बने रहने के लिए कोलकाता के लिए जीत जरूरी।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
12: आज देश भर में मनाई जा रही है शनिदेव की जयंती। 300 साल बाद बने दुर्लभ संयोग, मंदिरों में सुबह से लगी श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धालु शनिदेव को सरसों का तेल, काले कपड़े और फूल करते हैं अर्पित। भक्तों ने लगाए शनिदेव के जयकारे। शनिदेव जयंती पे काले तेल, उड़द की दाल, तेल, जूते, कपड़े और लोहे की वस्तुओं का दान करने का है विशेष महत्व। अकोला में शनि जयंती पर विशेष तैयारी, पूरी मंदिर परिसर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। शनि जन्मोत्सव पर की गई भगवान की विशेष पूजा अर्चना, मंदिरों में एक दिन पहले की गई विशेष आरती। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, 27 दिन में करीब 13.5 लाख श्रद्धालुओं ने की चारधाम यात्रा। केदारनाथ में 27,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन, अब तक 5,76,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में लगाई अपनी हाजिरी। बद्रीनाथ में भी 22,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किया पूजा पाठ, अब तक 3,65,000 से अधिक भक्तों ने बाबा बद्रीनाथ के किए दर्शन। यमुनोत्री धाम में अब तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, गंगोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं की संख्या 2 लाख पार। चार धाम यात्रा में लगातार बढ़ रही वाहनों की आवाजाही, श्रद्धालुओं की संख्या में हो रहा है लगातार इजाफा। मेवाड़ के श्री सावलिया सेठ मंदिर में आया रिकॉर्ड चढ़ावा, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी पर खोली गई दान पेटियां। पहले चरण की गणना में निकले 11 करोड़ 30 लाख रुपए, 18 मई को होगी अगली गिनती। मंदिर मंडल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुई गणना, भक्तिमय जयकारों से गूंज उठा पूरा मंदिर परिसर। सावलिया सेठ में श्रद्धालुओं की है अपार आस्था, भक्तों का मानना है सावलिया सेठ सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। श्री सावलिया सेठ मंदिर में हर महीने आता है करोड़ों का चढ़ावा, देश भर से दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। बिहार के मोतिहारी में बन रहा विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर, विश्व के सबसे बड़े सहस्त्रलिंगम शिवलिंग पर इस साल सावन में श्रद्धालु कर सकेंगे जलाभिषेक। मंदिर के निर्माण के बाद धार्मिक पर्यटन को मिलेगी नई पहचान, स्थानीय लोगों को रोजगार के मिलेंगे अवसर। मोतिहारी में बन रहे विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य तेज, महावीर मंदिर ट्रस्ट के प्रतिनिधि ने मंदिर परिसर का किया निरीक्षण। महावीर मंदिर ट्रस्ट के प्रतिनिधि ने कार्य को लेकर जताई नाराजगी, जल्द निर्माण करने के दिए निर्देश। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के दरबार में परिवार संग पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, विधि विधान से की पूजा अर्चना। वृंदावन पहुंचे प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर, संत प्रेमानंद महाराज का लिया आशीर्वाद। भोलेनाथ के भजन से गूंजा वृंदावन, प्रेमानंद महाराज के सामने कैलाश खेर ने गाए भजन।
2: जन्म जन्म बाली उम्र से भक्ति करती, बाली उम्र से भक्ति कर तुम्हें छोड़।
12: राधा केलीकुंज आश्रम में गायक कैलाश खेर ने मीराबाई के भजन भी गाए, संत प्रेमानंद महाराज ने की सराहना।
2: बस्ती में आप बसे वीराने में, अजी राम भजो जी, राम भजो जी, शिव का वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन किया करो जी। अगर बम बम बम बम बम बम बम बम बम लहरी, अगर बम बम बम बम बम बम बम बम बम लहरी, अगर बम बम बम बम।
12: कैलाश खेर ने गाए भजन, भक्तिमय हुआ माहौल। कैलाश खेर को प्रेमानंद महाराज ने बताया नाम जप की महिमा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी रहे इस दौरान मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे का आज दूसरा दिन, यूएई के बाद नीदरलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री। नीदरलैंड में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत, विपक्षी वार्ता में लेंगे हिस्सा। नीदरलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों से की मुलाकात, बच्चों से मिलाया हाथ। नीदरलैंड में दिखी भारत की संस्कृति, पीएम मोदी के स्वागत के लिए होटल में भारतीय कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। यूएई के साथ भारत का बड़ा ऊर्जा करार, तेल गैस समेत कई अहम समझौतों पर बनी सहमति, अबू धाबी से $5 अरब निवेश पर करार। गुलाबी रंग में रंगी नजर आई नवी मुंबई, हजारों फ्लेमिंगो ने डारा डेरा। नवी मुंबई के झील में दिखा फ्लेमिंगो का विशाल झुंड, पर्यावरण के लिए शुभ संकेत मानी जा रही फ्लेमिंगो की वापसी। फ्लेमिंगो सफारी बनी आकर्षण का केंद्र, पर्यटकों की उमड़ी भीड़। फ्लेमिंगो ने बढ़ाई नवी मुंबई की पहचान, पर्यटन को मिलेगा इससे बढ़ावा। कई देशों से लंबा सफर तय कर आते हैं ये प्रवासी पक्षी, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इसराइल जैसे देशों से लंबा सफर तय कर यहाँ पहुंचते हैं फ्लेमिंगो। भिवाड़ी में खुला राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में होगा 1,200 करोड़ रुपए का निवेश। अलवर स्टेशन का बदलेगा लुक, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टेशन परिसर के लिए कई विकास परियोजनाओं को किया शिलान्यास। मंत्री बनने के बाद आसनसोल पहुंची अग्निमित्रा पॉल, कार्यकर्ताओं ने भव्य किया स्वागत। कोची में केरल के मनोनीत सीएम वीडी सतीशन से मिले गायक एमजी श्रीकुमार, कई मुद्दों पर की चर्चा। होशियारपुर में बोरवेल में गिरे बच्चे का किया गया सफल रेस्क्यू, मंत्री और उपायुक्त ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पंजाब पुलिस को दी बधाई। सीबीआई का भय हेल्प बॉट लॉन्च, साइबर क्राइम डिजिटल अरेस्ट से लोगों को बचाना इसका लक्ष्य। सिस्टम के जरिए नागरिक खुद किसी भी नोटिस कर सकेंगे जांच, नकली दस्तावेजों को पकड़ना होगा इससे आसान। गुजरात में अहमदाबाद और दुलेरा के बीच बनेगा भारत का पहला स्वदेशी ब्रांड ग्रेड सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर, नमो भारत ट्रेन का भी होगा परिचालन। न्यू जनरेशन रेल नेटवर्क विकास की दिशा में बड़ा कदम, लगभग 134 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक पर 200 से 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें। प्याज किसानों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी बड़ी राहत, निफेड के जरिए 12.35 रुपए प्रति किलो की दर से होगी खरीदारी, किसानों के खेतों में सीधे ट्रांसफर होंगे पैसे। गुजरात के जूनागढ़ में लोक संगीत कार्यक्रम बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, प्रसिद्ध लोक कलाकारों पर हुई नोटों की बारिश। 500 रुपए के नोटों से पटा नजर आया मन, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। लोक संगीत कार्यक्रम में मिला धन लोक कल्याण के लिए होगा इस्तेमाल, बेटियों के लिए इस धनराशि से बनाया जाएगा हॉस्टल। पीएम मोदी की ईंधन बचत की अपील को लेकर गाजियाबाद डीएम रविंद्र मानदड की पहल, बाइक से पहुंचे कलेक्ट्रेट। मिर्जापुर में भी देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत अपील का असर, उद्यान अधिकारी साइकिल से पहुंचे ऑफिस।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: शनि देव की जयंती पर क्या होगा पूजा विधान, शनि देव की जयंती पर किन समस्याओं का होगा समाधान, और शनि देव की जयंती पर कैसे मिलेंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
13: It never happens at a good time. The pipe bursts at midnight. The heater quits on the coldest night. Suddenly, you're overwhelmed. That's when Home Serve is here. For $4.99 a month, you're never alone. Just call their 24/7 hotline and a local pro is on the way. Trusted by millions, Home Serve delivers peace of mind when you need it most. For plans starting at just $4.99 a month, go to homeserve.com. That's homeserve.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
14: Most tech programs teach theory. WGU teaches what gets you hired. Get industry certs with your degree, work on real-world projects, and develop skills employers actually want. Career ready by design. That's the WGU difference. Learn more at WGU.edu.
15: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
16: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे शनि जयंती की। शनि जयंती की महिमा क्या है, इसके उपाय क्या हैं और शनि देव की कैसे पूजा करें, ये आपको बताएंगे। देखिए, वैसे तो ज्योतिष में हम नौ ग्रहों की पूजा करते हैं, लेकिन जयंती जो अलग से मनाई जाती है, दो ही ग्रहों की जन्म जयंती सामान्यतः मनाई जाती है, सूर्य देव की और शनि देव की। तो शनि जयंती का महत्व क्या है? ग्रहों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली और लंबे समय तक अपना प्रभाव दिखाने वाले ग्रह शनिदेव माने जाते हैं। इसीलिए ग्रहों में शनिदेव की जयंती मनाई जाती है, क्योंकि इनके अंदर पूरी तरीके से दुनिया को, जीवन को बदलने की ताकत है। माना जाता है कि शनिदेव का प्राकट्य यानी जन्म हुआ था ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथि को, और इसी दिन शनिदेव की जन्म जयंती मनाई जाती है। शनि जयंती पर संध्या काल में जगह जगह पर देश दुनिया में शनिदेव की विशेष पूजा की जाती है और शनि कृपा प्राप्त करने के विशेष उपाय भी किए जाते हैं। इस बार 16 मई को शनिदेव की जयंती मनाई जा रही है। 16 मई को संध्या काल में शनिदेव की विशेष पूजा होगी, तमाम तरह के उपाय किए जाएंगे, दान किए जाएंगे, जिससे शनिदेव की कृपा हर व्यक्ति को प्राप्त हो पाएगी। तो शनि जयंती पर मुख्यतः शनिदेव की पूजा होती है, ताकि उनकी कृपा मिले, जीवन का संघर्ष कम हो, जीवन की बाधा दूर हो। तो शनि जयंती पर पूजा करने का सरल तरीका क्या होगा? शनि जयंती पर शनिदेव की पूजा संध्या काल में ही करिएगा, सूर्यास्त के बाद। संध्या काल में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, काले नीले कपड़े मत पहनिएगा, सफेद या पीले या लाल कपड़े पहनिएगा। इसके बाद सबसे पहले भगवान शिव की या श्री कृष्ण की उपासना करिएगा, फिर शनि देव के मंत्र का यथाशक्ति जप करिएगा। सबसे सरल मंत्र है ओम शं शनैश्वराय नमः, ओम शं शनैश्वराय नमः। इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करिएगा, 3 माला 5 माला या 11 माला। इसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक बड़ा सा दीपक जलाइएगा। शनिदेव से दीपक जला करके कृपा करने की प्रार्थना करें और सबसे अंत में निर्धनों को अन्न का, वस्त्र का और बर्तनों का दान करिएगा। लोहे या स्टील के बर्तनों का दान करना अच्छा होगा। तो शनि जयंती पर शनि देव के मंत्र का जप करना है, पीपल के नीचे दीपक जलाना है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार निर्धनों को दान करना है। देखिए, आप नौकरी छोटी करें या बड़ी करें, बिना शनि कृपा के नौकरी मिलना संभव ही नहीं है,
और अगर शनि की कृपा ना हो तो नौकरी में उन्नति भी संभव नहीं है। तो अगर नौकरी

कि आपकी नौकरी की समस्या हल हो जाए और उसके बाद निर्धनों को, गरीबों को खाने पीने की चीज, कोई भी खाने पीने की चीज, रोटी सब्जी, हलवा पूड़ी, बिस्किट नमकीन, कुछ भी दान करिएगा। अगर शनि जयंती पर ऐसा कर देते हैं तो आपकी नौकरी संबंधी समस्या हल हो जाएगी। देखिए, अगर शनि कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या देता है तो वो स्नायु तंत्र की, नर्वस सिस्टम की समस्या होती है, या लंबी चलने वाली बीमारी शनि की वजह से जीवन में आ जाती है। अगर स्वास्थ्य की कोई जटिल, कोई गहरी समस्या है, आप जूझ रहे हैं, तो शनि जयंती पर क्या उपाय करेंगे? शनि जयंती पर एक लोहे का छल्ला ले आइएगा, इसको एक कटोरी में सरसों का तेल डालें थोड़ा सा, उसी में छल्ले को डुबो लें, यानी सरसों के तेल से शुद्ध करें। इसके बाद कटोरी को जिसमें छल्ला है अपने सामने रख लें और शनिदेव के तांत्रिक मंत्र का कम से कम 3 माला या 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 3 माला या 11 माला जप करें। जप करने के बाद शनिदेव से प्रार्थना करें कि आपको रोगों बीमारियों से छुटकारा मिले, और इसके बाद लोहे का छल्ला राइट या लेफ्ट हैंड में, दाहिने या बाएं हाथ की मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में धारण कर लें, और इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को काले वस्त्र का दान कर दीजिएगा। काला कुर्ता, काला शर्ट, काले कपड़े, जैसा भी संभव हो वो किसी गरीब आदमी को दीजिएगा। अगर आप ऐसा शनि जयंती पर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी स्वास्थ्य की स्थिति में आने वाले समय में सुधार होना शुरू हो जाएगा। देखिए, शनि अगर आपकी कुंडली में निगेटिव है ना, पैसे रुपए को लेके बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, और शनि अगर बहुत ज्यादा खराब हो तो आदमी को दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे स्थिति में शनि जीवन में भयंकर संघर्ष बढ़ा देता है। तो अगर शनि की वजह से आर्थिक स्थिति खराब है, कोई धन संबंधी समस्या है, तो शनि जयंती पर क्या उपाय करेंगे? शनि जयंती पर एक काला कपड़ा ले लें, थोड़ा सा बड़ा कपड़ा ले लें, उसमें एक जटा वाला नारियल और कुछ पैसा, जितना भी रख सकें, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 11 रुपया, वो रखिए। इसको अपने सामने रख लीजिए, पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिएगा, और इस काले कपड़े में नारियल और पैसे को अपने सामने रख लीजिएगा। इसके बाद शनि मंत्र का जप करिएगा। अच्छा होगा कि कम से कम 11 माला जप करें, नहीं तो 5 माला मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। जप करने के बाद अपनी आर्थिक समस्या के दूर हो जाने की प्रार्थना करें कि मेरी धन संबंधी मुश्किलें दूर हो जाएं, मेरी आर्थिक कठिनाई समाप्त हो। इसके बाद कपड़े में ही नारियल और पैसा जो रखा है,
कपड़े के साथ सारा सामान

0: किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिएगा। कोई नहीं मिलता है तो पीपल के वृक्ष के नीचे रख करके चले आइएगा। अगर ये काम आप कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी धन संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। देखिए, अगर आपकी 7.5 है, जैसे इस समय कुंभ राशि पर, मीन राशि पर और मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, या आपकी ढैया है जैसे इस समय सिंह पर और धनु राशि पर शनि की ढैया चल रही है, तो मुश्किलें थोड़ी बढ़ जाती हैं। आमतौर पे जीवन में संघर्ष थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो अगर 7.5 या ढैया आपकी चल रही है तो क्या उपाय करेंगे? शनि जयंती पर, शनि जयंती की रात को उपाय करिएगा, एक घी का या तिल के तेल का दीपक पश्चिम दिशा की तरफ जलाइएगा और फिर खुद भी दीपक सामने रखकर पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिएगा। अपने सामने कोई फल या मिठाई या दोनों रख लीजिएगा। इसके बाद शनिदेव के तांत्रिक मंत्र का अधिक से अधिक जप करिए या कम से कम 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा और शनिदेव से प्रार्थना करिएगा कि आपके ऊपर कृपा करें, 7.5 या ढैया का प्रभाव कम हो जाए। अगले दिन सुबह के समय फल और मिठाई का दान कर दीजिएगा किसी निर्धन व्यक्ति को। ये छोटा सा उपाय अगर आप शनि जयंती की रात को कर लेते हैं तो 7.5 और ढैया के दुष्प्रभाव से आप बच जाएंगे। देखिए, शनि जयंती पर सार्वजनिक स्थान में, पार्क में, सड़क के किनारे, जहां भी आपको उचित जगह दिखाई दे वहां एक पीपल का पौधा जरूर लगाइएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में संतान संबंधी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखिए, अगर बेवजह आपको हमेशा चिंता रहती है, बेवजह की मानसिक चिंता आपको परेशान करती है, तो रोज सवेरे चांदी के गिलास से, चांदी की कटोरी या लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। डेली मॉर्निंग मंदिर जाके एक चांदी का चौकोर टुकड़ा चांदी की चेन में या पीले धागे में अपने गले में पहनिए और रात को सोते समय जितना ज्यादा से ज्यादा संभव हो नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर ऐसा आप नियमित रूप से करें तो आपका मन शांत होगा, मन में रहने वाली हर समय की चिंता दूर हो जाएगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: ना आदि ना अंत, ताकत है अनंत। देसी तकनीक से तैयार महाशक्ति वाला हथियार भारत ने बना लिया भविष्य का ब्रह्मास्त्र। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: आज देश भर में मनाई जा रही है शनिदेव की जयंती। 300 साल बाद बने दुर्लभ संयोग, मंदिरों में सुबह से लगी श्रद्धालुओं की भीड़। चारधाम यात्रा में चरम पर श्रद्धालुओं का उत्साह, तीर्थयात्रियों की संख्या अब 13.5 लाख के पार। केदारनाथ पहुंचे 5,76,000 से ज्यादा भक्त। बिहार में मोतिहारी के पास विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य तेज। यहां स्थापित विश्व के सबसे बड़े सहस्त्रलिंगम शिवलिंग पर इस साल सावन में श्रद्धालु कर सकेंगे जलाभिषेक। मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री सावलिया सेठ मंदिर में एक बार फिर भक्तों ने दिल खोल कर दिया दान। चतुर्दशी को खोली गई दान पेटियां, पहले चरण की गिनती में मिली 11 करोड़ से ज्यादा की रकम। गुलाबी रंग में रंगी नवी मुंबई, हजारों फ्लेमिंगो ने डाला डेरा, प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए उमड़ रही भारी भीड़। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी गुजरात टाइटंस। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा यह मुकाबला। प्लेऑफ में बने रहने के लिए कोलकाता के लिए जीत जरूरी।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।
5: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
6: नमस्कार।
5: तो देखिए शनि जयंती के बारे में आज के कार्यक्रम में बात होगी, क्योंकि शनि जयंती का पावन अवसर आ गया है। इसी दिन सूर्य और छाया पुत्र यानी शनिदेव महाराज का जन्म हुआ था। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर है तो उसे किस तरीके से बलवान किया जा सकता है, किस तरीके से इस दिन पूजा उपासना कर शनि की कृपा आप पा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
0: देखिए शनि जयंती पर सार्वजनिक स्थान में, पार्क में, सड़क के किनारे, जहां भी आपको उचित जगह दिखाई दे वहां एक पीपल का पौधा जरूर लगाइएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में संतान संबंधी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी।
5: तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 16 मई 2026 यानी कि शनिवार का पंचांग क्या है।
0: दिनांक 16 मई 2026 दिन शनिवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, शाम के 5:30 तक चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, रात के 10:46 तक राहु काल का समय, प्रातः 9 से 10:30 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
5: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं शनि जयंती के बारे में। यहाँ पर बात की जा रही है शनि भगवान की उत्पत्ति हुई थी, जन्म हुआ था ये कहा जाता है, क्या महिमा है, क्योंकि अगर शनि देव की बात करें तो कर्म के देवता इन्हें माना जाता है। अगर कुंडली में शनि कमजोर है किस तरीके से बलवान किया जा सकता है।
0: जी, देखिए, वैसे तो ज्योतिष में हम नौ ग्रहों की पूजा करते हैं, लेकिन जयंती जो अलग से मनाई जाती है, दो ही ग्रहों की जन्म जयंती सामान्यतः मनाई जाती है, सूर्य देव की और शनि देव की। तो शनि जयंती का महत्व क्या है? ग्रहों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली और लंबे समय तक अपना प्रभाव दिखाने वाले ग्रह शनिदेव माने जाते हैं, इसीलिए ग्रहों में शनि

0: बदलने की ताकत है। माना जाता है कि शनि देव का प्राकट्य यानी जन्म हुआ था ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथि को, और इसी दिन शनि देव की जन्म जयंती मनाई जाती है। शनि जयंती पर संध्या काल में जगह जगह पर देश दुनिया में शनि देव की विशेष पूजा की जाती है और शनि कृपा प्राप्त करने के विशेष उपाय भी किए जाते हैं। इस बार 16 मई को शनि देव की जयंती मनाई जा रही है। 16 मई को संध्या काल में शनि देव की विशेष पूजा होगी, तमाम तरह के उपाय किए जाएंगे, दान किए जाएंगे, जिससे शनि देव की कृपा हर व्यक्ति को प्राप्त हो पाएगी।
1: तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: मेष राशि, संतान का सहयोग और प्रेम आपको प्राप्त होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, परिवार में शांति बनाए रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग दिख रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो देखिए, शनि जयंती का मौका है, ऐसे में शनि जयंती पर किस तरह से शनि देव की उपासना कर आप उनकी कृपा पा सकते हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: तो शनि जयंती पर मुख्यतः शनि देव की पूजा होती है ताकि उनकी कृपा मिले, जीवन का संघर्ष कम हो, जीवन की बाधा दूर हो। तो शनि जयंती पर पूजा करने का सरल तरीका क्या होगा? शनि जयंती पर शनि देव की पूजा संध्या काल में ही करिएगा, सूर्यास्त के बाद। संध्या काल में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, काले नीले कपड़े मत पहनिएगा, सफेद या पीले या लाल कपड़े पहनिएगा। इसके बाद सबसे पहले भगवान शिव की या श्री कृष्ण की उपासना करिएगा, फिर शनि देव के मंत्र का यथाशक्ति जप करिएगा। सबसे सरल मंत्र है ओम शं शनैश्वराय नमः, ओम शं शनैश्वराय नमः। इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करिएगा, 3 माला 5 माला या 11 माला। इसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक बड़ा सा दीपक जलाइएगा। शनिदेव से दीपक जला करके कृपा करने की प्रार्थना करें और सबसे अंत में निर्धनों को अन्न का, वस्त्र का और बर्तनों का दान करिएगा। लोहे या स्टील के बर्तनों का दान करना अच्छा होगा। तो शनि जयंती पर शनिदेव के मंत्र का जप करना है, पीपल के नीचे दीपक जलाना है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार निर्धनों को दान करना है।
1: बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, ऑफिस की समस्या आपकी हल होगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, आज मन अच्छा बना रहेगा, परिवार के तनाव कम होते जाएंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: तो चलिए, अब समय हो गया है आपका सवाल लेने का, तो पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
0: जी, आज का पहला प्रश्न अनामिका शर्मा ने हमें लिखा है और अनामिका हमें मथुरा से मेल लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 8 अक्टूबर 2010, जन्म का समय रात में 9 बजे और जन्म का स्थान है मथुरा। ये कह रही हैं कि मेरे पुत्र का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और बार बार उसको चोट चपेट लगती रहती है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरे पुत्र का स्वास्थ्य बेहतर रहे और वो स्वस्थ रहे। देखिए, आपके पुत्र की कुंडली में जो मंगल और शनि की स्थिति है, उसके गड़बड़ होने की वजह से आपके पुत्र को बार बार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप मंगल के उपाय करें तो उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा और वो चोट चपेट दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। ऐसा करिए, आप अपने पुत्र के गले में एक छेद वाला तांबे का सिक्का लाल धागे में डालकर मंगलवार को सुबह पहना दीजिएगा और अपने पुत्र के लिए सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिएगा तो चीजें ठीक रहेंगी।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल भी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, आपके जीवन में कोई परेशानी है, दुख तकलीफ है, तो इसका समाधान आप पंडित जी से जानना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी को आप नोट कर सकते हैं और अपने सवाल इस पर लिख करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
0: जी अगला प्रश्न विशाखा ने हमें लिखा है। विशाखा मुंबई से मेल लिखती हैं। 28 जनवरी 1992 का जन्म है। जन्म का समय है शाम के 7 बजे और जन्म का स्थान है मुंबई। विशाखा कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, क्या मेरा विवाह आगे होने की संभावना है और क्या मैं विदेश जाकर के सेटल हो सकूंगी? विशाखा, आपकी कुंडली में विवाह होने की संभावना जरूर है और आपका विवाह साल 2027 के शुरुआती समय में होगा, ऐसी संभावना आपकी कुंडली में बनती है। देखिए, विदेश जाकर कुछ समय तक तो आप रह सकेंगी या आती जाती रहेंगी, लेकिन विदेश में सेटलमेंट की संभावना मुझे नहीं लगती है। आपको अंततः वापस लौटना पड़ेगा। आपका विवाह शीघ्र हो, आपका करियर बेहतर हो, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहनिए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। रोज सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो अगर आपको अपने करियर में या फिर नौकरी संबंधित किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो शनि जयंती के मौके पे क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: देखिए, आप नौकरी छोटी करें या बड़ी करें, बिना शनि कृपा के नौकरी मिलना संभव ही नहीं है और अगर शनि की कृपा ना हो तो नौकरी में उन्नति भी संभव नहीं है। तो अगर नौकरी संबंधी कोई भी दिक्कत है, नौकरी मिल नहीं रही है, चल नहीं रही है, नौकरी में उन्नति नहीं हो रही है, तो शनि जयंती पर क्या उपाय करेंगे? शनि जयंती पर संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे 3 सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। इसके बाद चाहे वहीं बैठ के मंत्र पढ़ें या दीपक जला के घर चले आएं और उसके बाद 11 माला शनि देव का मंत्र पढ़ेंगे। कम से कम 11 माला पढ़िएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। मंत्र जप करने के बाद शनिदेव से प्रार्थना करिएगा कि आपकी नौकरी की समस्या हल हो जाए और उसके बाद निर्धनों को, गरीबों को, खाने पीने की चीज, कोई भी खाने पीने की चीज, रोटी सब्जी हलवा पूड़ी बिस्किट नमकीन कुछ भी दान करिएगा। अगर शनि जयंती पर ऐसा कर देते हैं तो आपकी नौकरी संबंधी समस्या हल हो जाएगी।
1: तो अगर स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या आपको परेशान कर रही है तो शनि जयंती पर क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: देखिए, अगर शनि कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या देता है तो वो स्नायु तंत्र की नर्वस सिस्टम की समस्या होती है या लंबी चलने वाली बीमारी शनि की वजह से जीवन में आ जाती है। अगर स्वास्थ्य की कोई जटिल कोई गहरी समस्या है, आप जूझ रहे हैं, तो शनि जयंती पर क्या उपाय करेंगे? शनि जयंती पर एक लोहे का छल्ला ले आइएगा, इसको एक कटोरी में सरसों का तेल डालें थोड़ा सा, उसी में छल्ले को डुबो लें, यानी सरसों के तेल से शुद्ध करें। इसके बाद कटोरी को जिसमें छल्ला है अपने सामने रख लें और शनि देव के तांत्रिक मंत्र का कम से कम 3 माला या 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 3 माला या 11 माला जप करें। जप करने के बाद शनिदेव से प्रार्थना करें कि आपको रोगों बीमारियों से छुटकारा मिले। और इसके बाद लोहे का छल्ला राइट या लेफ्ट हैंड में दाहिने या बाएं हाथ की मिडिल फिंगर में मध्यमा अंगुली में धारण कर लें। और इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को काले वस्त्र का दान कर दीजिएगा, काला कुर्ता काला शर्ट काले कपड़े जैसा भी संभव हो वो किसी गरीब आदमी को दीजिएगा। अगर आप ऐसा शनि जयंती पर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी स्वास्थ्य की स्थिति में आने वाले समय में सुधार होना शुरू हो जाएगा।
1: तो बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या है।
0: तुला राशि, करियर में आपके सुधार होता दिख रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नया काम आपका शुरू हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, धन का लाभ होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो अगर कोई धन संबंधित समस्या है तो शनि जयंती के मौके पे क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, अब उसके बारे में जान लेते हैं।
0: देखिए, शनि अगर आपकी कुंडली में निगेटिव है ना, पैसे रुपए को लेके बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, और शनि अगर बहुत ज्यादा खराब हो तो आदमी को दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे स्थिति में शनि जीवन में भयंकर संघर्ष बढ़ा देता है। तो अगर शनि की वजह से आर्थिक स्थिति खराब है, कोई धन संबंधी समस्या है, तो शनि जयंती पर क्या उपाय करेंगे? शनि जयंती पर एक काला कपड़ा ले लें, थोड़ा सा बड़ा कपड़ा ले लें, उसमें एक जटा वाला नारियल और कुछ पैसा जितना भी रख सकें, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 11 रुपया, वो रखिए। इसको अपने सामने रख लीजिए, पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिएगा और इस काले कपड़े में नारियल और पैसे को अपने सामने रख लीजिएगा। इसके बाद शनि मंत्र का जप करिएगा। अच्छा होगा कि कम से कम 11 माला जप करें, नहीं तो 5 माला मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। जप करने के बाद अपनी आर्थिक समस्या के दूर हो जाने की प्रार्थना करें कि मेरी धन संबंधी मुश्किलें दूर हो जाएं, मेरी आर्थिक कठिनाई समाप्त हो। इसके बाद कपड़े में ही नारियल और पैसा जो रखा है, कपड़े के साथ सारा सामान किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिएगा। कोई नहीं मिलता है तो पीपल के वृक्ष के नीचे रख करके चले आइएगा। अगर ये काम आप कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी धन संबंधी समस्याओं में सुधार होगा।
1: तो देखिए, अगर शनि की 7.5 या फिर ढैया चल रही है और लगातार परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो देखिए शनि जयंती है, ऐसे में शनि जयंती के मौके पर क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: देखिए, अगर आपकी 7.5 है, जैसे इस समय कुंभ राशि पर, मीन राशि पर और मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, या आपकी ढैया है जैसे इस समय सिंह पर और धनु राशि पर शनि की ढैया चल रही है, तो मुश्किलें थोड़ी बढ़ जाती हैं। आमतौर पे जीवन में संघर्ष थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो अगर 7.5 या ढैया आपकी चल रही है तो क्या उपाय करेंगे शनि जयंती पर? शनि जयंती की रात को उपाय करिएगा, एक घी का या तिल के तेल का दीपक पश्चिम दिशा की तरफ जलाइएगा और फिर खुद भी दीपक सामने रखकर पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिएगा। अपने सामने कोई फल या मिठाई या दोनों रख लीजिएगा। इसके बाद शनि देव के तांत्रिक मंत्र का अधिक से अधिक जप करिए, या कम से कम 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। ओम ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा और शनिदेव से प्रार्थना करिएगा कि आपके ऊपर कृपा करें, 7.5 या 2.5 का प्रभाव कम हो जाए। अगले दिन सुबह के समय फल और मिठाई का दान कर दीजिएगा किसी निर्धन व्यक्ति को। ये छोटा सा उपाय अगर आप शनि जयंती की रात को कर लेते हैं तो 7.5 और 2.5 के दुष्प्रभाव से आप बच जाएंगे।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है।
0: मकर राशि, काम का बोझ आपका बढ़ा रहेगा, परिवार में शांति बनाए रखें, धन हानि से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर काले चने का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अभी किसी भी तरह के परिवर्तन से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का तीसरा सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
0: जी, अगला प्रश्न अभिषेक जी ने हमें लिखा है और अभिषेक जी हमें मेल लिखते हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 6 नवंबर 1991, रात में 11:25, जन्म स्थान है महाराजगंज उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं गोरखपुर से। ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से मेरे स्वास्थ्य में लगातार दिक्कतें चली आ रही हैं, लेकिन जांच में रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकल रहा है, तो मैं कब तक स्वस्थ हो पाऊंगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अभिषेक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके शरीर में कोई दिक्कत है ही नहीं। थोड़ी बहुत दिक्कत हड्डियों नसों की हो सकती है, लेकिन ज्यादातर आपकी दिक्कत साइकोलॉजिकल है, मानसिक है। किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करिए, उससे थोड़ा सुधार होगा। और दूसरे नंबर पे एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करें, आपके जीवन में सुधार होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो ये बिल्कुल संभव है। टीवी स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है, इसी ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का अंतिम यानी कि चौथा सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न प्रभात अग्रहरी ने हमें लिखा है और प्रभात हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 मार्च 1982, जन्म का समय सुबह के 9 बजे, जन्म का स्थान है लखनऊ। प्रभात कह रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मेरे ऊपर थोड़े बहुत कर्ज भी हो गए हैं, तो मेरी आर्थिक स्थिति कब तक बेहतर होगी? क्या मुझे लखनऊ छोड़ करके कहीं और बसने का प्रयास करना चाहिए? प्रभात, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका स्थान परिवर्तन अवश्य होगा। साल 2026 के अंत में या 27 के आरंभ में आप चेंज ऑफ प्लेस करेंगे और नई जगह पर जाना, नए जगह पर काम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आने वाला समय आपका कुल मिला जुला के बेहतर हो जाएगा। दो उपाय करिए, रोज शाम को एक बार इंद्र कृत लक्ष्मी स्तोत्र, इंद्र कृत लक्ष्मी स्तोत्र रोज शाम को पढ़िए। और एक जरकन नाम का रत्न आता है, सफेद जरकन, 6 से 8 रत्ती का, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, शुक्रवार की शाम को अगर आप धारण करें तो उससे आपके जीवन में सुधार होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जिनका जन्मदिन 16 मई को है आप सभी को बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल, आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 16 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होगा, धन का लाभ होगा और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य में आपके उतार चढ़ाव रह सकता है और अभी आपके विवाह के मामलों में विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: तो चलिए अब कार्यक्रम में समय हो गया है जानने का कि आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि अगर आपकी शनि की खराब दशा चले तो क्या उपाय करना चाहिए। अगर आपकी शनि की खराब महादशा या अंतर दशा चल रही है तो रोज सवेरे जल में काला तिल डाल करके सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा। नियमित रूप से रोज शाम को दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिएगा। तामसिक भोजन, मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो शनि की महादशा या अंतर दशा का अशुभ प्रभाव आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं 16 मई 2026 यानी कि दिन शनिवार का शुभ पहर आखिर कौन सा है।
0: दिनांक 16 मई 2026 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके कर्ज की और धन की समस्या में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 16 मई शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की गुड लक राशि आखिर कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशियों के लिए इस समय स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। आज की गुड लक राशि है तुला। इस समय स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी, लेकिन पेट का थोड़ा ध्यान रखिएगा, खान पान में सावधानी बनाए रखेंगे।
1: और देखिए अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी देखिए, अगर बेवजह आपको हमेशा चिंता रहती है, बेवजह की मानसिक चिंता आपको परेशान करती है, तो रोज सवेरे चांदी के गिलास से, चांदी की कटोरी या लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाइए डेली मॉर्निंग मंदिर जाके। एक चांदी का चौकोर टुकड़ा चांदी की चेन में या पीले धागे में अपने गले में पहनिए और रात को सोते समय जितना ज्यादा से ज्यादा संभव हो नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर ऐसा आप नियमित रूप से करें तो आपका मन शांत होगा, मन में रहने वाली हर समय की चिंता दूर हो जाएगी।
1: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो आज के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
2: गुरु जी बोले, चेला तुम्हें बताना भूल गए, दरअसल आज एकादशी है। बोले एकादशी है तो? बोले एकादशी है तो ना बनेगा ना मिलेगा। तो रामदास बोला, हमें भी? बोले तुम्हें क्या, किसी को भी नहीं। अरे बोले गुरुजी, आपके इतने चेला हैं, उन्हें एकादशी करवा दो, एक तो छोड़ दो। बोले नहीं नहीं, वो तो सबको नियम बराबर है, ना बनेगा ना मिलेगा। ये हाथ जोड़ के बोला, गुरुजी यदि हमारी एकादशी करवा दी तो द्वादशी देखना मुश्किल हो जाएगा।
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
16: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।

0: शनि जयंती की महिमा, क्या है शनि देव का पूजा विधान, शनि जयंती पर कैसे होगा समस्याओं का समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
3: उम्र सिर्फ 4 साल और ग्रहों का ऐसा ज्ञान कि लोग हैरान रह जाएं। देखिए, हम बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा के रहने वाले एक खास बच्चे जिनका नाम है रुद्र राणा। तो देखिए, जैसे 4 साल की छोटी सी उम्र में सोलर सिस्टम का पूरा ज्ञान हो गया है और उन्हें देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। आप भी देखिए।
4: चार साल का रुद्र, जिसकी नजरों में छुपा है एक बड़ा आसमान, इस छोटी सी उम्र में वो खेल खेल में बखूबी जानता है ग्रहों और उपग्रहों के नाम। तभी तो रुद्र की प्रतिभा, उसकी ग्रहों को लेकर नॉलेज पेरेंट के साथ ही लोगों को हैरान कर रही है। ग्रेटर नोएडा के नन्हे रुद्र राणा ने सोलर सिस्टम की जानकारी से एक रिकॉर्ड बनाया है। इतनी कम उम्र में रुद्र न केवल ग्रहों के नाम बल्कि उनकी विशेषताएं भी बेहद आसानी से बता रहे हैं।
5: नन्हे से रुद्र ने बड़ा कमाल कर दिया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 4 साल के रुद्र का नाम दर्ज हो गया है। रुद्र महज 1 मिनट 5 सेकंड में सभी 8 ग्रहों को पहचान लेते हैं।
4: रुद्र की माँ बताती हैं कि कुछ महीने पहले ही YouTube किड्स को देखते हुए रुद्र का ग्रहों के बारे में इंटरेस्ट जागा। वो उनसे बहुत सारे सवाल करता था।
6: एक चैनल है ब्लिपी, उससे इसने ग्रहों को देखा। प्लैनेट्स को देखने के बाद इसे बड़ा क्यूरियोसिटी हुआ कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। एक दिन मून रेड हुआ था तो इसने बोला, मम्मा सी मार्स। और तब मुझे लगा कि वाओ, इसकी क्यूरियोसिटी और लव देखा मैंने सोलर सिस्टम के लिए। तो उसके बाद मैंने इसे बताना शुरू किया कि जुपिटर क्या है, मरकरी क्या है।
4: जब बेटा पढ़ने की उम्र तक आया, ऐसे में बच्चे को शुरुआती पढ़ाई से रूबरू करवाने, उसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए ही रुद्र की माँ ने जॉब छोड़ी। लेकिन नौकरी का सेक्रीफाइस कुछ ऐसे रंग लाएगा ये ज्योति ने नहीं सोचा था। वहीं इतनी कम उम्र में अपने बेटे की याददाश्त, समझ और ऐसी असामान्य उपलब्धि देख पिता भी गर्व महसूस कर रहे हैं।
7: मेरे लिए तो पूरा सरप्राइज है, बिकॉज मुझे पता भी नहीं था कि ये सब उसने रजिस्टर कर लिया। सो द क्रेडिट गोज टू हर ओनली।
4: रुद्र के पेरेंट्स ने अपने बेटे की इस असामान्य उपलब्धि को लेकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, मगर वो इस बात का ख्याल जरूर रख रहे हैं कि उनके बेटे पर रिकॉर्ड या किसी और चीज का कोई दबाव ना हो।
5: कम उम्र में भले ही बड़ा रिकॉर्ड आया है, लेकिन रुद्र के ऊपर उनके पेरेंट्स कम से कम कोई बर्डन नहीं डाले कि अब मेरा बेटा ये भी करेगा वो भी करेगा। फिलहाल घर वाले उसी को सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं और यही सबसे खूबसूरत बात है कि छोटे से बच्चे ने भले अचीवमेंट हासिल किया है, लेकिन उसके ऊपर कोई नैतिक जिम्मेदारी आगे के लिए नहीं है। मतलब उसका बचपन आगे भी ऐसे ही मजे से कटता रहेगा। बाय बोल दो सबको। बाय। कैमरामैन शैलेन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।
3: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको इमोशनल भी कर जाएंगे।
8: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग यही कह रहे हैं कि ऐसा नजारा तो अब खत्म हो चुका है, ऐसा तो हमारे जमाने में हुआ करता था। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी साइकिल पर 2 बच्चों को बांधकर स्कूल लेकर आया है। आज के समय में कोई इस तरह से अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हुए नहीं दिखता और ये वो कारण है कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपने ये सुना ही होगा कि अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और इसके लिए कई तरीके भी बताए होंगे, मगर क्या आप ये जानते हैं कि

कोई खुद की इज्जत कैसे कर सकता है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, ये छोटी सी बच्ची आपको बता देगी। वायरल हो रहे वीडियो में बच्ची अपने ही पैर छूती दिख रही है। वो अपने ही पैर छूकर माथे से हाथ को लगाती दिखती है। अब बच्ची क्यों कर रही है ये तो वही जाने, मगर बच्ची इस प्यारी हरकत के कारण उसका ये वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि एक छोटी सी बच्ची पानी पूरी खा रही है, लेकिन इसमें खास बच्ची का कॉस्ट्यूम है। दरअसल बच्ची ने माता रानी का रूप धारण किया है, स्कूल में किसी प्रतियोगिता में भाग लिया होगा, जिसके बाद वो घर जाते हुए पानी पूरी खा रही होगी और किसी ने वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे। वायरल हो रहे इस वीडियो में दो महिलाएं बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए रील शूट कर रही थी। दोनों का आत्मविश्वास देखने लायक था। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, चलने का तरीका और कैमरे के सामने खुद को पेश करने का अंदाज बिल्कुल किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था। एक महिला आगे चल रही थी, जबकि दूसरी उसके पीछे उसी अंदाज में कदम मिलाकर नीचे उतर रही थी। लेकिन तभी अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे वीडियो का माहौल ही बदल दिया। सीढ़ियों से उतरते समय आगे चल रही महिला का अचानक बैलेंस बिगड़ गया। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, उसका पैर फिसल गया और वो लड़खड़ाकर नीचे गिरते गिरते बची। ये पूरा नजारा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया।

सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें पूरा परिवार 36,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन के अंदर बारात निकालता दिखाई दे रहा है। वीडियो में कोई सीट पर चुपचाप बैठा नहीं है, बल्कि म्यूजिक बज रहा है, लोग डांस कर रहे हैं और पूरा माहौल किसी उड़ते हुए वेडिंग फंक्शन जैसा नजर आ रहा है। जिसने भी ये नजारा देखा वो हैरान रह गया। कुछ लोग सीटों के बीच खड़े होकर डांस कर रहे हैं, तो कुछ मोबाइल कैमरे में इस खास पल को रिकॉर्ड करते दिखाई दे रहे हैं।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
2: Thank God I get to wake up.
1: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock. Coffee house. And more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है।

0: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: शनि जयंती की महिमा क्या है, शनि देव का पूजा विधान, शनि जयंती पर कैसे होगा समस्याओं का समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: ना आदि ना अंत, ताकत है अनंत, देसी तकनीक से तैयार महाशक्ति वाला हथियार, भारत ने बना लिया भविष्य का ब्रह्मास्त्र। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: आज देश भर में मनाई जा रही है शनिदेव की जयंती। 300 साल बाद बने दुर्लभ संयोग, मंदिरों में सुबह से लगी श्रद्धालुओं की भीड़। चारधाम यात्रा में चरम पर श्रद्धालुओं का उत्साह, तीर्थयात्रियों की संख्या अब 13.5 लाख के पार, केदारनाथ पहुंचे 5,76,000 से ज्यादा भक्त। गुलाबी रंग में रंगी नवी मुंबई, हजारों फ्लेमिंगो ने डारा डेला, प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए उमड़ रही भारी भीड़। तमिलनाडु में पोंगल उत्सव को लेकर आयोजनों का दौर जारी, रामनाथपुरम में बैलगाड़ी दौड़ के दौरान दिखा संतुलन, संस्कृति और गति का संगम, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया इसमें हिस्सा। यूरोविजन 2026 सॉन्ग कॉन्सर्ट का फाइनल आज, वियना में कई देशों के दिग्गज संगीतकारों के बीच मुकाबला, दुनिया भर के करोड़ों दर्शकों को शो का इंतजार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है।
5: आज देश भर में मनाई जा रही है शनिदेव की जयंती। 300 साल बाद बने दुर्लभ संयोग, मंदिरों में सुबह से लगे श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धालु शनिदेव को सरसों का तेल, काले कपड़े और फूल करते हैं अर्पित, भक्तों ने लगाए शनिदेव के जयकारे। शनिदेव जयंती पे काले तेल, उड़द की दाल, तेल, जूते, कपड़े और लोहे की वस्तुओं का दान करने का है विशेष महत्व। अकोला में शनि जयंती पर विशेष तैयारी, पूरी मंदिर परिसर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। शनि जन्मोत्सव पर की गई भगवान के विशेष पूजा अर्चना, मंदिरों में एक दिन पहले की गई विशेष आरती। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, 27 दिन में करीब 13.5 लाख श्रद्धालुओं ने किया चारधाम यात्रा। केदारनाथ में 27,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन, अब तक 5,76,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में लगाई अपनी हाजिरी। बद्रीनाथ में भी 22,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किया पूजा पाठ, अब तक 3,65,000 से अधिक भक्तों ने बाबा बद्रीनाथ के किए दर्शन। यमुनोत्री धाम में अब तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, गंगोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं की संख्या 2 लाख पार। चार धाम यात्रा में लगातार बढ़ रही वाहनों की आवाजाही, श्रद्धालुओं की संख्या में हो रहा है लगातार इजाफा। मेवाड़ के श्री सावलिया सेठ मंदिर में आया रिकॉर्ड चढ़ावा, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी पर खोली गई दान पेटियां। पहले चरण की गणना में निकले 11,30,00,000 रुपए, 18 मई को होगी अगली गिनती। मंदिर मंडल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुई गणना, भक्तिमय जयकारों से गूंज उठा पूरा मंदिर परिसर। सावलिया सेठ में श्रद्धालुओं की है अपार आस्था, भक्तों का मानना है सावलिया सेठ सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। श्री सावलिया सेठ मंदिर में हर महीने आता है करोड़ों का चढ़ावा, देश भर से दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। बिहार के मोतिहारी में बन रहा विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर, विश्व के सबसे बड़े सहस्त्रलिंगम शिवलिंग पर इस साल सावन में श्रद्धालु कर सकेंगे जलाभिषेक। मंदिर के निर्माण के बाद धार्मिक पर्यटन को मिलेगी नई पहचान, स्थानीय लोगों को रोजगार के मिलेंगे अवसर। मोतिहारी में बन रहे विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य तेज, महावीर मंदिर ट्रस्ट के प्रतिनिधि ने मंदिर परिसर का किया निरीक्षण। महावीर मंदिर ट्रस्ट के प्रतिनिधि ने कार्य को लेकर जताई नाराजगी, जल्द निर्माण करने के दिए निर्देश। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के दरबार में परिवार संग पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, विधि विधान से की पूजा अर्चना। वृंदावन पहुंचे प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर, संत प्रेमानंद महाराज का लिया आशीर्वाद। भोलेनाथ के भजन से गूंजा वृंदावन, प्रेमानंद महाराज के सामने कैलाश खेर ने गाए भजन।
6: काशी जन्म जन्म बाली उम्र से भक्ति करती, बाली उम्र से भक्ति कर तुम्हें छोड़।
5: राधा केली कुंज आश्रम में गायक कैलाश खेर ने मीराबाई के भजन भी गाए, संत प्रेमानंद महाराज ने की सराहना।
6: बस्ती में आप से वीराने में अजी राम भजो जी, राम भजो जी, शिव का वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन किया करो जी। अगर बम बम बम बम बम बम बम बम बम लहरी, अगर बम बम बम बम बम बम बम बम बम लहरी, अगर बम बम बम बम।
5: कैलाश खेर ने गाए भजन, भक्तिमय हुआ माहौल। कैलाश खेर को प्रेमानंद महाराज ने बताए नाम जप की महिमा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी रहे इस दौरान मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे का आज दूसरा दिन, यूएई के बाद नीदरलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री। नीदरलैंड में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत, विपक्षी वार्ता में लेंगे हिस्सा। नीदरलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों से की मुलाकात, बच्चों से मिलाया हाथ। नीदरलैंड में दिखी भारत की संस्कृति, पीएम मोदी के स्वागत के लिए होटल में भारतीय कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। यूएई के साथ भारत का बड़ा ऊर्जा करार, तेल गैस समेत कई अहम समझौतों पर बनी सहमति, अबू धाबी से $5 अरब निवेश पर करार। गुलाबी रंग में रंगी नजर आई नवी मुंबई, हजारों फ्लेमिंगो ने डारा डेरा। नवी मुंबई के झील में दिखा फ्लेमिंगो का विशाल झुंड, पर्यावरण के लिए शुभ संकेत मानी जा रही फ्लेमिंगो की वापसी। फ्लेमिंगो सफारी बनी आकर्षण का केंद्र, पर्यटकों की उमड़ी भीड़। फ्लेमिंगो ने बढ़ाई नवी मुंबई की पहचान, पर्यटन को मिलेगा इससे बढ़ावा। कई देशों से लंबा सफर तय कर आते हैं ये प्रवासी पक्षी, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इसराइल जैसे देशों से लंबा सफर तय कर यहाँ पहुंचते हैं फ्लेमिंगो। भिवाड़ी में खुला राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में होगा 1,200 करोड़ रुपए का निवेश। अलवर स्टेशन का बदलेगा लुक, केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टेशन परिसर के लिए कई विकास परियोजनाओं को किया शिलान्यास। मंत्री बनने के बाद आसनसोल पहुंची अग्निमित्रा पॉल, कार्यकर्ताओं ने भव्य किया स्वागत। कोची में केरल के मनोनीत सीएम वीडी सतीशन से मिले गायक एमजी श्रीकुमार, कई मुद्दों पर की चर्चा। होशियारपुर में बोरवेल में गिरे बच्चे का किया गया सफल रेस्क्यू, मंत्री और उपायुक्त ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पंजाब पुलिस को दी बधाई। सीबीआई का भय हेल्प बॉट लॉन्च, साइबर क्राइम डिजिटल अरेस्ट से लोगों को बचाना इसका लक्ष्य। सिस्टम के जरिए नागरिक खुद किसी भी नोटिस कर सकेंगे जांच, नकली दस्तावेजों को पकड़ना होगा इससे आसान। गुजरात में अहमदाबाद और धोलेरा के बीच बनेगा भारत का पहला स्वदेशी ब्रांड ग्रेड सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर, नमो भारत ट्रेन का भी होगा परिचालन। न्यू जनरेशन रेल नेटवर्क विकास की दिशा में बड़ा कदम, लगभग 134 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक पर 200 से 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेन। प्याज किसानों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी बड़ी राहत, निफेड के जरिए 12.35 रूपए प्रति किलो की दर से होगी खरीदारी, किसानों के खेतों में सीधे ट्रांसफर होंगे पैसे। गुजरात के जूनागढ़ में लोक संगीत कार्यक्रम बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, प्रसिद्ध लोक कलाकारों पर हुई नोटों की बारिश। 500 रूपए के नोटों से पटा नजर आया मन, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। लोक संगीत कार्यक्रम में मिला धन लोक कल्याण के लिए होगा इस्तेमाल, बेटियों के लिए इस धनराशि से बनाया जाएगा हॉस्टल। पीएम इंधन बचत की अपील को लेकर गाजियाबाद डीएम रविंद्र मानगढ़ की पहल, बाइक से पहुंचे कलेक्ट्रेट। मिर्जापुर में भी देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत अपील का असर, उद्यान अधिकारी साइकिल से पहुंचे ऑफिस। गुजरात के नर्मदा में बायोगैस प्लांट लगाने का काम तेज, अब तक 665 आदिवासी परिवारों की रसोई धुआं मुक्त हुई। ईंधन संकट के बीच गोबर से बन रही गैस, बच रहा सिलेंडर का खर्च। ईंधन संरक्षण के लिए उत्तराखंड हाई कोर्ट में नो व्हीकल डे, नैनीताल में मुख्य न्यायाधीश समेत सभी जज पैदल पहुंचे हाईकोर्ट। सूर्य तीर्थ क्षेत्र को मिली 22 करोड़ रुपए की सौगात, धार्मिक पर्यटन हब बनाने की दिशा में माना जा रहा है बड़ा कदम। कासगंज में सोरो घाटों का होगा सौंदर्यकरण, झील को भी इको टूरिज्म के रूप में किया जाएगा विकसित। उत्तराखंड का टिहरी बना एडवेंचर और धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र, देश विदेश से बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। टिहरी लेक को मिल रही एडवेंचर टूरिज्म स्थान के रूप में नई पहचान, जेट्स की बोटिंग पर्यटकों को कर रही है आकर्षित। मैदानों पर बढ़ती गर्मी के चलते सैलानी कर रहे टिहरी गढ़वाल का रुख, ठंडी वादियों का ले रहे आनंद। कूनो नेशनल पार्क में छोड़ी गई दो और मादा चीता, जंगल में घूम रही चीतों की संख्या बढ़कर हुई 16। बोत्सवाना से लाई गई दो मादा चीतों को क्वारंटीन पीरियड पूरा होने के बाद खुले जंगल में छोड़ा गया, एडवांस रेडियो टेली मेट्रो सिस्टम से दोनों चीतों पर रखी जाएगी नजर। भीषण गर्मी में देश भर के लिए राहत की खबर आई सामने, 26 मई को केरलम में दस्तक दे सकता मानसून। मौसम विभाग ने दी जानकारी, निर्धारित समय से 6 दिन पहले पहुंच सकता है मानसून। मानसून के पहले आने से किसानों को होगा लाभ, खरीफ फसलों की बुवाई के लिए अनुकूल बनेगा मौसम। केरलम में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने 2 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इस साल मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश की आशंका, आईएमडी का अनुमान, देश में हो सकती है लगभग 80 सेंटीमीटर बारिश। वेलकम टू द जंगल का टीजर आउट, 34 सितारों की टोली संग अक्षय ने लगाया कॉमेडी का तड़का, फिल्म 26 जून को होगी रिलीज। पीटर विल्सन की फिल्म ऑब्सेस का ट्रेलर जारी, वायलेंस और थ्रिलर से है भरपूर, 29 मई को थिएटर्स में देखी दस्तक। भारत में 4 जून को होगा धुरंधर 2 का ग्रैंड डिजिटल प्रीमियर, 5 जून को जियो हॉटस्टार पर देख सकेंगे भारतीय दर्शक। तेलुगु फिल्म महाकाली का हिस्सा बने एक्टर रोहित सराफ, अक्षय खन्ना संग साउथ में करेंगे अपना डेब्यू, हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग हुई शुरू। रामायण की रिलीज से पहले रणबीर ने अयोध्या में खरीदा 3 करोड़ रुपए की जमीन, अमिताभ के बाद सरयू में जमीन खरीदने वाले बने दूसरे एक्टर। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2026 में एक्टर अनुपम खेर को मिला सम्मान, फिल्म कैलोरी के चुने गए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। लोकेश कनगराज की बहुचर्चित तमिल फिल्म डीसी का ट्रेलर जारी, वामिका गब्बी और संजना कृष्णमूर्ति भी मुख्य भूमिकाओं में आएंगे नजर। अपकमिंग तमिल कॉमेडी ड्रामा फिल्म कौन सिटी का नया वीडियो जारी, फिल्म में अर्जुन दास, अन्नाबेन और योगी बाबू आएंगे नजर। पार्श्व गायिका नेहा भसीन का नया पंजाबी सॉन्ग विहार रिलीज, प्यार पानी और माँ की हाँ की मीठी चाहत को समर्पित ये प्यारा। साल की हुई एक्टर राजपाल यादव के बेटे हर्षदा यादव, राजपाल ने सोशल मीडिया पर यादगार तस्वीरें शेयर किया बेटी को पेश। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा, ईडन गार्डन्स में होगा ये रोमांचक मुकाबला। प्लेऑफ में बने रहने के लिए कोलकाता के लिए जीत होगी जरूरी, स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की वापसी से कोलकाता को राहत। लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया, आईकाना स्टेडियम में शानदार जीत, 188 रन का लक्ष्य लखनऊ ने 16.4 ओवर में 3 विकेट खोकर आसानी से हासिल किया। लगातार 3 जीत के बाद चेन्नई को मिली हार, पॉइंट्स टेबल में प्लेऑफ की दौड़ हुई और कड़ी। ऑस्ट्रिया के वेना में गीत संगीत के महाकुंभ, यूरोविजन ग्रैंड फिनाले से पहले सिंगर्स ने गीतों की शानदार प्रस्तुति दी। अल्बानिया के सिंगर एलिस ने नैन के साथ ग्रैंड फाइनल में बनाए अपनी जगह, ऑस्ट्रेलिया की डेल्टा गॉडरीम अपने एक्लिप्स सॉन्ग से छाई। बुल्गारिया के सिंगर दारा ने बैंगरंगा गीत की भव्य प्रस्तुति दी। सरप्राइज की एंटीगोनी का जला यूरोविजन फैंस को खूब वापस। डेनमार्क के सोरेन टॉर्पेगार्ड ने भावुक परफॉर्मेंस से जीत लिया सभी का दिल। रोमानिया के अलेक्जेंड्रा कैपिटानेस्क्यू ने चोक में से किया सभी को हैरान। चेक के सिंगर डैनियल ज़िस्का के गाने क्रॉस रोड्स ने बांधा समा। यूक्रेनी गायिका लेलेका का रिदम सॉन्ग भावुक प्रस्तुति बनकर उठा। वेना की बारिश में भी नहीं टूटा यूरोविजन फैंस का जोश। सड़कों पर रेनकोट पहन के दर्शकों ने जमकर किया डांस। ऑस्ट्रिया फ्रांस और यूक्रेन के झंडों से पूरा माहौल दिखा रंगीन। बारिश के बीच भी फैंस लगातार गाने गाते झूमते आए नजर। फैंस ने यूरोविजन को एक बड़ी ग्लोबल फैमिली बताया। खराब मौसम के बावजूद स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ जुटी। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने रॉयल ओपेरा हाउस गाला में बढ़ाई शान। गाला के दौरान मंच के नए शाही पर्दों का कहना बदल। शो में बैले और ओपेरा का शानदार मेल देखने को मिला। चार्ल्स रॉयल बैले और रॉयल ओपेरा दोनों के संरक्षक। चीन के वैज्ञानिकों ने की 6 हाई मिल्क डेयरी बकरियों की सफल क्लोनिंग। शांसकी प्रांत में पहली सफल बैच क्लोनिंग। क्लोन की गई बकरियों में 4 नर और 2 मादा शामिल। ये बकरियां सानन नस्ल की हाई मिल्क प्रोड्यूसर बकरियों से हुई तैयार। हर बकरी की सालाना दूध उत्पादन क्षमता करीब 2800 लीटर। बकरियों में दूध में फैट में प्रोटीन और फैट की स्तर भी काफी ऊंचा पाया गया है। चीन ने लीजियान 1Y13 रॉकेट से 5 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे। उत्तर पश्चिम चीन के डोंगफिंग स्पेस जोन से सफलतापूर्वक लॉन्च। सभी सैटेलाइट अपनी तय कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित। लीजियांग सीरीज अब तक 100 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज चुकी है। न्यूजीलैंड प्रो में पहले दिन गैब्रियल मेडिना का दमदार प्रदर्शन। मेडिना अब तीसरे राउंड में फिलिप टोलेटो से भिड़ेंगे। फिलिप टोलेडो ने दिन का सबसे बड़ा वेव स्कोर बनाया। फिलिप टोलेडो की एक लहर ने दर्शकों को किया रोमांचित। रियो वाइडा ने बड़ा उलट फेर करते हुए कोना ओलेरी को हराया। रैगलान के मानू बे में चल रही है यह प्रतियोगिता। इटली में जोनस विंगेगार्ड ने ब्लॉक हॉर्स फतह कर जीता। जीरो द इटालिया स्टेट 7 बहुत कठिन होती है ब्लॉक हॉर्स की चढ़ाई। बेहद रोमांचक मुकाबले में फेलिक्स गैल विजेता से 13 सेकंड रहे पीछे। जय हिंडले ने तीसरा स्थान किया हासिल।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।
5: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको इमोशनल भी कर जाएंगे।
7: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग यही कह रहे हैं कि ऐसा नजारा तो अब खत्म हो चुका है, ऐसा तो हमारे जमाने में हुआ करता था। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी साइकिल पर 2 बच्चों को बांधकर स्कूल लेकर आया है। आज के समय में कोई इस तरह से अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हुए नहीं दिखता और ये वो कारण है कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपने ये सुना ही होगा कि अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और इसके लिए कई तरीके भी बताए होंगे, मगर क्या आप ये जानते हैं कि कोई खुद की इज्जत कैसे कर सकता है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, ये छोटी सी बच्ची आपको बता देगी। वायरल हो रहे वीडियो में बच्ची अपने ही पैर छूती दिख रही है। वो अपने ही पैर छूकर माथे से हाथ को लगाती दिखती है। अब बच्ची क्यों कर रही है ये तो वही जाने, मगर बच्ची इस प्यारी हरकत के कारण उसका ये वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि एक छोटी सी बच्ची पानी पूरी खा रही है, लेकिन इसमें खास बच्ची का कॉस्ट्यूम है। दरअसल बच्ची ने माता रानी का रूप धारण किया है। स्कूल में किसी प्रतियोगिता में भाग लिया होगा, जिसके बाद वो घर जाते हुए पानी पूरी खा रही होगी और किसी ने वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे। वायरल हो रहे इस वीडियो में 2 महिलाएं बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए रील शूट कर रही थी। दोनों का आत्मविश्वास देखने लायक था। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, चलने का तरीका और कैमरे के सामने खुद को पेश करने का अंदाज बिल्कुल किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था। एक महिला आगे चल रही थी जबकि दूसरी उसके पीछे उसी अंदाज में कदम मिलाकर नीचे उतर रही थी, लेकिन तभी अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे वीडियो का माहौल ही बदल दिया। सीढ़ियों से उतरते समय आगे चल रही महिला का अचानक बैलेंस बिगड़ गया। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, उसका पैर फिसल गया और वो लड़खड़ाकर नीचे गिरते गिरते बची। ये पूरा नजारा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। Ladies and gentlemen.

सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें पूरा परिवार 36,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन के अंदर बारात निकालता दिखाई दे रहा है। वीडियो में कोई सीट पर चुपचाप बैठा नहीं है, बल्कि म्यूजिक बज रहा है, लोग डांस कर रहे हैं और पूरा माहौल किसी उड़ते हुए वेडिंग फंक्शन जैसा नजर आ रहा है। जिसने भी ये नजारा देखा वो हैरान रह गया। कुछ लोग सीटों के बीच खड़े होकर डांस कर रहे हैं, तो कुछ मोबाइल कैमरे में इस खास पल को रिकॉर्ड करते दिखाई दे रहे हैं।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: ना आदि ना अंत, ताकत है अनंत। देसी तकनीक से तैयार महाशक्ति वाला हथियार, भारत ने बना लिया भविष्य का ब्रह्मास्त्र। देखिए रणक्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।

0: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
1: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world?
2: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
1: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
10: गुरु जी बोले, चेला तुम्हें बताना भूल गए, दरअसल आज एकादशी है। बोले एकादशी है तो? बोले एकादशी है तो ना बनेगा ना मिलेगा। तो रामदास बोला, हमें भी? बोले तुम्हें क्या, किसी को भी नहीं। अरे बोले गुरु जी, आपके इतने चेला हैं, उन्हें एकादशी करवा दो, एक तो छोड़ दो। बोले नहीं नहीं, वो तो सबको नियम बराबर है, ना बनेगा ना मिलेगा। ये हाथ जोड़ के बोला, गुरुजी यदि हमारी एकादशी करवा दी तो द्वादशी देखना मुश्किल हो जाएगा।

0: शनि जयंती की महिमा क्या है, शनि देव का पूजा विधान, शनि जयंती पर कैसे होगा समस्याओं का समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
3: आज देश भर में मनाई जा रही है शनिदेव की जयंती, 300 साल बाद बने दुर्लभ संयोग, मंदिरों में सुबह से लगी श्रद्धालुओं की भीड़। चारधाम यात्रा में चरम पर श्रद्धालुओं का उत्साह, तीर्थयात्रियों की संख्या अब 13.5 लाख के पार, केदारनाथ पहुंचे 5,76,000 से ज्यादा भक्त। गुलाबी रंग में रंगी नवी मुंबई, हजारों फ्लेमिंगो ने डाला डेरा, प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए उमड़ रही भारी भीड़। तमिलनाडु में पोंगल उत्सव को लेकर आयोजनों का दौर जारी, रामनाथपुरम में बैलगाड़ी दौड़ के दौरान दिखा संतुलन, संस्कृति और गति का संगम, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया इसमें हिस्सा। यूरोविजन 2026 सॉन्ग कॉन्सर्ट का फाइनल आज, वियना में कई देशों के दिग्गज संगीतकारों के बीच मुकाबला, दुनिया भर के करोड़ों दर्शकों को शो का इंतजार।

नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं मौसम का अजब गजब मिजाज की। मई का महीना चल रहा है, शुरुआती दिनों में बारिश के बाद अचानक से गर्मी ने प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन इसके साथ ही मौसम तूफानी रूप भी दिखा रहा है और इसी वजह से बरेली में एक शख्स की जान खतरे में पड़ गई। टीन शेड के साथ 50 फीट की ऊंचाई तक उड़ गए बरेली के नन्हे की जान कैसे बची, आज आपको हम विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही मॉनसून पर भी बात होगी, जो कि 6 दिन पहले केरल में दस्तक दे रहा है। जाहिर है कि मॉनसून आएगा तो फिर बादलों के साथ राहत भी आएगी, लेकिन अभी फिलहाल उत्तर भारत को गर्मी का रौद्र रूप देखना पड़ रहा है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में गर्मी का हाल क्या है, आपको आगे बताएंगे और साथ ही दिखाएंगे कि गर्मी से बचने के लिए अमरावती में किस तरह से जैकेट के अंदर पंखे का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं उस चमत्कार से जिसे देखकर हर कोई हैरान है। बरेली में तेज आंधी के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ और एक शख्स टिन शेड के साथ करीब 50 फीट तक हवा में उड़ गया। हवा में उड़ते बरेली के नन्हे मियां का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस हादसे की तस्वीर देखने के बाद लोगों के जहन में यही सवाल था कि शख्स सही सलामत है या नहीं। हम आपको बता दें कि नन्हे जख्मी तो हुए हैं लेकिन ठीक है। किस तरह उनकी जान बची, चलिए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।

0: ये बात अक्सर कही सुनी जाती है कि रोशनी गर हो खुदा को मंजूर, तो आंधियों में चिराग जलते हैं। पर ये तस्वीर और ये मंजर देखकर आपको इस फलसफे पर यकीन हो जाएगा। तेज आंधी में उड़ती टीन शेड और उसके साथ हवा में कलाबाजी खाता एक बेबस आदमी, हवा में ऊंचाई करीब 50 फीट, ये ना तो कोई फिल्मी सीन है और न ही एआई से बना कोई वीडियो, बल्कि उस हादसे की सच्ची तस्वीर है जिसे देखकर लोग दंग रह गए। अच्छी खबर यह है कि तेज हवा में उड़ता हुआ ये आदमी सही सलामत है। बेशक हाथ पैर में चोटें आई हैं, लेकिन नन्हे मियां की जान बच गई। ऊपर वाले का करम है, इसीलिए आंधियां चिराग न बुझा सकी।
1: आंखें मिच गई, हमें पता नहीं है कैसे गए, हमें ना पता। हम तो जब ऊपर गए थे तो आंखें मिच गई थी, हमें ना पता कितने गिरे, कहाँ गिरे जाएंगे, बहुत दूर हमारे पास होश ही कहाँ था। आंखें मिच गई तो वहां पड़े हुए थे, वो वहां देख रहा था, भाग के आया था, उन्होंने उठाया था।
0: खौफजदा करने वाली यह तस्वीर बरेली की है। अचानक आए तूफान से बचने के लिए तीन लोग गांव के बारात घर में बने टीन शेड के नीचे खड़े हो गए, लेकिन हवा की रफ्तार करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे थी। नन्हे मियां ने पूरी मजबूती से टीन शेड को पकड़ रखा था, लेकिन हवा इस चादर को ही ले उड़ी। दो लोगों ने वक्त रहते टीन शेड को छोड़ दिया, पर नन्हे मियां कुछ सोच समझ पाते उससे पहले ही टीन शेड के साथ हवा में उड़ गए। इस इलाके में तेज आंधी और तूफान ने दो दिनों तक तबाही मचाई, कई पेड़ गिरे, कई हादसे हुए, लेकिन टीन शेड के उड़ने की ये घटना हैरान करने वाली है। जिसके साथ हवा में कलाबाजी खाते हुए नन्हे मियां करीब 80 फीट दूर जाकर मक्के के खेत में गिरे और बेहोश हो गए। जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया और आनन फानन में इलाज शुरू हुआ।
1: मजबूरी कर रहे थे, मजबूरी पे गए थे, टीन साइड में खड़े हुए थे तो टीन पकड़ ले, एक बंदा बांध रहा था, ज्यादा तेज हवा और बारिश आई तो रस्सी कतर गई और उसमें पकड़े ओढ़े चले गए थे। उसमें मक्के के खेत में गिरे थे, पहले टीन गिरी थी, बाकी बाद में हम गिरे थे। ऊपर आंखें मिच गई, हमें नहीं पता कहाँ पर गिरे, करीब 50 फीट की ऊंचाई से ही, हाँ 80 फीट दूरी पे गिरे हैं कम से कम। हमारी चोट तो आई है, हाथ टूट गया, शरीर में पूरा लुन जाए वो तो बेकार है। आज तक कोई लाभ नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक रुपया का लाभ नहीं मिला।
0: तेज तूफान इस तरह भी कहर बरपा सकता है, ये भला कौन सोच सकता है। जिन्होंने ये मंजर आंखों से देखा वो भी खौफजदा है।
2: बल्कि तीन लड़के थे, हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब वो नहीं रुक पाए, फिर वो जो है उनका हाथ ऐसे करके उन्होंने पकड़ रखा था, हमने तो ऐसे ही पकड़ डाल, हम ऊपर गए, हम तो 10 फीट से नीचे गिर गए, वो उसके साथ ही चले गए। उसके
3: उनके चोट आई है?
2: हाँ उनके चोट आई है हाथ में।
3: आपके भी आई चोट?
2: हमारे तो वैसे चोट नहीं आई है, लेकिन शरीर में दर्द है पूरे।
3: तूफान बहुत तेज था?
2: तूफान तो तेज था ही, बहुत था, हमने तो ऐसा तूफान देखा नहीं था।
0: बरेली की इस तस्वीर की हर जगह चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर जिसने भी ये वीडियो देखा मान बैठा कि नन्हे मियां बचे ही नहीं होंगे, लेकिन जिस अंदाज में तूफान ने नन्हे मियां को उड़ाया उतनी ही हिफाजत से मक्के के नरम पत्तों ने थाम लिया। खेत में भरे पानी, कीचड़ और फसल ने गिरने का झटका कम कर दिया। एक दो हड्डियां जरूर टूटी, पर अब अपनी दास्तां खुद सभी को बता रहे हैं। बरेली नहीं, तूफानी मौसम से देश के कई हिस्सों में अफरा तफरी मच गई। बड़े बड़े दरख्त जड़ों से उखड़ गए, जिंदगी भी दांव पर लगी, पर कुछ लोग बाल बाल बच गए।
4: गया थी काली काली घटा, एकदम आंधी आई थी, और भाई काम पे थे सुबह को, हमें काम करते ही सुबह निकल जाते हैं काम पे, उस बाद में वो बरात घर था उसमें टीन वोनी पड़ी थी, तो वहाँ पर कुछ लड़के बांध रहे थे कि बांध लो इसके लिए उड़ जाएगी ये, तो बांधने लगे, इन्हें वो एंगल पकड़ लिया, तो हवा का जैसे झोंका काली घटा चाहिए तो झोंका आया था वो उड़ा के ले गई।
5: कि पत्नी हैं और इनके 5 बच्चे हैं, एक लड़का है और छोटे छोटे बच्चे हैं। जब मजदूरी करते हैं तुम्हारी मजदूरी, तुमने कही कि हमारा काम जो कर दियो तो बो करे आए, दूसरे ने कही कि हमारा काम जो कर दियो तो बो करे आए, इन्हें 500 रुपया दिहाड़ी मिलती है 500।
0: मौसम के इस तरह तूफानी होने के एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। दरअसल केरल से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 3000 किलोमीटर का थंडरस्टॉर्म बेल्ट एक्टिव है, जिसकी वजह से दिन में धूप, शाम होते होते आंधी तूफान का दौर शुरू हो जाता है। तपिश की वजह से जमीन गर्म है और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मौजूद नमी मैदानों के बड़े हिस्से तक आंधी बारिश की वजह बन रही है। मौसम विभाग का ऐसा रुख डरा रहा है, साथ ही बता रहा है कि जब सामना तूफान से हो तो एहतियात बरतने की जरूरत है। अधिकारियों और कर्मचारियों की नजर भी मौसम पर है, लोगों को सावधान किया जा रहा है, साथ ही लोगों तक तुरंत मदद पहुंचाने की तैयारी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कभी तेज धूप, कहीं तेज रफ्तार हवा, तो कहीं आंधी तूफान और इसके साथ ही मॉनसून की आहट। मौसम विभाग के मुताबिक उम्मीद से 6 दिन पहले यानी कि 26 मई तक केरलम के तट पर मॉनसून दस्तक दे सकता है। हालांकि उत्तर और मध्य भारत को अभी फिलहाल गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच चुका है और 17 से 21 मई तक लू का भी असर रहने की भविष्यवाणी है। मई में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में।

0: मौसम की ये बेचैन करवट दरअसल आने वाले मॉनसून की दस्तक है, जो बहुत जल्द गर्म धरती को बारिश की ठंडक देने वाला है। अरब सागर से उठ रही राहत की पहली आहट मिल चुकी है, लेकिन देश इस वक्त दो मौसमों के बीच खड़ा है। एक तरफ आग उगलती गर्मी है तो दूसरी तरफ उम्मीद लेकर बढ़ रहा मॉनसून। मौसम विभाग यानी IMD ने संकेत दिए हैं कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून इस बार तय समय से पहले केरलम पहुंच सकता है। IMD के मुताबिक 26 मई को मॉनसून केरलम में दस्तक दे सकता है, जबकि सामान्य तौर पर इसकी एंट्री 1 जून को मानी जाती है, यानी इस बार बारिश करीब 6 दिन पहले आ सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने साफ किया है कि इसमें 4 दिन आगे या पीछे का अंतर संभव है।
1: देश भर में गर्मी अपने चरम पर है, तापमान लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में बढ़ते तापमान के साथ लोगों को उम्मीद है कि कब राहत की बारिश जो है वो दस्तक देगी। तो मौसम विभाग की तरफ से ये राहत की खबर सामने आई है कि जो मॉनसून है भारत के जो दक्षिणी हिस्से में मॉनसून जो दस्तक देता है उसकी तारीख जो है वो ऐलान कर दी गई है। हालांकि 1 जून के आसपास जो है मॉनसून दस्तक देता है, लेकिन इस बार 6 दिन पहले यानी 26 मई की जो तारीख है वो दी गई है कि मॉनसून जल्द ही भारत के दक्षिण हिस्से में जो है वो दस्तक दे देगा। और वहां की अगर हम बात करें तो लगातार वहां पे IMD द्वारा जो है अलर्ट जारी किए जा रहे थे, कभी ऑरेंज अलर्ट तो कभी येलो अलर्ट। वहां पे हॉट एंड ह्यूमिड की जो स्थिति थी वो लगातार बनी हुई थी, 45 डिग्री के आसपास जो है तापमान जा रहे थे और लोगों को चिलचिलाती गर्मी खूब परेशान कर रही थी। तो ऐसे में ये उनके लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि सबसे पहले जो बारिश जो दस्तक देगी मॉनसूनी बारिश वो केरल के हिस्से में देगी और उसके बाद लगातार अलग अलग आगे के हिस्सों में जो है मॉनसून बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो वहां पर भी मॉनसून जल्द दस्तक दे सकता है। जहां पे जून के अंत में बारिश देखी जाती है तो वहीं अंदाजा है लोगों को कि 26 से 27 जून के आसपास जो है उत्तर भारत के राज्यों में भी जो है मॉनसून की बारिश जो है वो देखी जा सकती है।
0: अंडमान सागर और दक्षिण बंगाल की खाड़ी में अगले 24 घंटों के भीतर मॉनसूनी गतिविधियां तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। समुद्री हवाओं की दिशा, बादलों की सक्रियता और नमी का स्तर ये बता रहा है कि बारिश का सिस्टम धीरे धीरे ताकत पकड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मॉनसून तय समय के अनुसार जल्दी पहुंचता है तो दक्षिण भारत में तापमान तेजी से नीचे आ सकता है। केरलम, तमिलनाडु, कर्नाटक और आसपास के हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। किसानों के लिए भी ये राहत की खबर मानी जा रही है, क्योंकि खरीफ फसलों की बुआई समय पर शुरू हो सकेगी और दूसरी फसलें बेहतर स्थिति में लगाई जा सकेंगी।
2: गर्मी अभी तो बहुत पड़ रही है, कूलर AC भी अभी काम नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरीके से और पसीना पसीना हो रहा है। देखिए छाता लेकर चलना पड़ रहा है अभी इतनी गर्मी के अंदर। और सुबह 8 बजे से ये ना ऐसा लगता है जैसे सीधा दोपहर ही हो रही है, सूरज उगते ही गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है और हर जगह चलना भी मुश्किल हो रहा है।
0: हालांकि मौसम वैज्ञानिक ये भी साफ कर रहे हैं कि केरलम में जल्दी पहुंचने वाला मॉनसून पूरे देश में तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा, इसकी गारंटी नहीं होती। आगे की चाल कई वैश्विक और क्षेत्रीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। फिलहाल देश का बड़ा हिस्सा अभी भी भीषण गर्मी की गिरफ्त में है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में लू का असर लगातार बढ़ रहा है। पश्चिमी राजस्थान में 15 से 21 मई तक तेज गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। 18 से 21 मई के बीच हालात और खतरनाक हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी तपिश लगातार बढ़ रही है। 16 से 21 मई तक लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। खास तौर पर 18 और 19 मई को हालात ज्यादा गंभीर रहने की आशंका जताई गई है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी 17 से 21 मई तक गर्म हवाओं का असर दिखाई देगा। मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी लोगों को तेज धूप और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ेगा। महाराष्ट्र के अकोला में गुरुवार को देश का सबसे ज्यादा तापमान 45.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजस्थान इस समय सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। जयपुर से लेकर बीकानेर और फतेहपुर तक सड़कों पर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे धरती तप रही हो।
3: सुबह और दोपहर गर्मी तो शाम होते होते ही आंधी और बारिश, कुछ ऐसा ही मौसम है इस वक्त राजस्थान का, जहां पर सुबह से लेकर दिन तक तेज गर्मी और धूप रहती है, लू चलती है, तो वहीं शाम होते होते आंधी चलने लगती है और हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की जाती है। दो दिन से ऐसा ही मौसम देखने को मिल रहा है, पर फिर भी टेम्परेचर्स में कोई गिरावट नहीं है। अभी भी टेम्परेचर्स 45 पार हाईएस्ट दर्ज किया गया है, जो कि फलौदी का है। एग्जैक्ट टेम्परेचर 45.2 डिग्री सेल्सियस फलौदी में दर्ज किया गया। और वहीं मिनिमम टेम्परेचर की मैं भी बात करूँ तो मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस सीकर में दर्ज किया गया है। हालांकि शाम को जो बारिश होती है उससे महसूस ये किया जाता है कि गर्मी में राहत आई है, पर फिर भी टेम्परेचर्स में बदलाव नहीं देखने को मिलता है। और हाईएस्ट बारिश कल यानी कि गुरुवार को जयपुर में दर्ज की गई है, वो बारिश 13 mm की रही है। इस समय भी मौसम विभाग का यही कहना है कि यही हाल शुक्रवार को यानी कि आज भी रहेगा। आज भी जिस तरह से दिन में तपती गर्मी है, वहीं शाम को आंधी और बारिश होने की संभावना है। पर फिर कल से लेके अगले एक हफ्ते तक यानी कि 16 तारीख से अगले एक हफ्ते तक तेज हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है।
0: राजधानी दिल्ली और NCR में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। दिन में तेज धूप लोगों को झुलसा रही है, जबकि शाम ढलते ही आंधी और हल्की बारिश राहत दे रही है। शुक्रवार देर शाम दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में तेज हवाओं के साथ गरज चमक और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मौसम का ये मिला जुला अंदाज चुनौतियों के साथ है। दिन में गर्मी सता रही है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि लू के दौरान धूप में निकलने से बचें, लगातार पानी पीते रहें और ORS, नींबू पानी या छाछ जैसे घरेलू पेय का इस्तेमाल भी करें। अगर आंधी तूफान के हालात हैं तो पेड़ों के नीचे न खड़े हों। दिल्ली से मनीषा लड्डा, जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: देश के दूसरे शहरों की तरह इन दिनों अमरावती में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। हर गुजरते दिन के साथ पारा नई ऊंचाई छू रहा है। हालात ये हैं कि लोगों को घरों से बाहर निकलना तो भर हो गया है, लेकिन इस भीषण गर्मी में भी ट्रैफिक कर्मी अपनी ड्यूटी पर डटे हैं। और ऐसे में इन ट्रैफिक कर्मियों को गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए एक विशेष जैकेट दी गई है, जो 45 से 46 डिग्री की गर्मी में भी इन्हें कूल रखती है। कैसे जैकेट काम करती है, आइए दिखाते हैं आपको।
5: महाराष्ट्र के अमरावती शहर में गर्मी चरम पर है। तापमान 46 डिग्री के आसपास बना हुआ है। ऐसे में लोगों को परेशानी तो हो ही रही है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ड्यूटी करने में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। गर्मी के इस मौसम में जहां आम लोग घर में रहकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं शहर की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था संभालने वाले पुलिस के जवान दिन भर चौराहों पर खड़े रहते हैं। लेकिन अब अमरावती पुलिस ने अपने जवानों के लिए एक अनोखी पहल की है और करीब 500 पुलिस कर्मियों को एयर कूल जैकेट दिए गए हैं। एयर कूल जैकेट मिलने से पुलिस कर्मियों को भीषण गर्मी के मौसम में भी ड्यूटी करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अमरावती के लोग जब ट्रैफिक पुलिस के जवानों को इस सफेद रंग के जैकेट में देखा तो उनकी उत्सुकता बढ़ गई, लेकिन जब उनको जैकेट के बारे में जानकारी मिली तो वो भी अधिकारियों के फैसले से सहमत दिखाई दिए।
6: 24 घंटे जो ये सेवा में तत्पर ही रहते हैं, इतने धूप में और इतने गर्मी के अंदर हम कुछ छाव का सहारा ले रहे सर, और 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। इसके अंदर उनको सहायता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो देश हित में देश सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर।
5: हमारी पुलिस सिर्फ जनता को लेकर ही संवेदनशील नहीं है, बल्कि अपने कर्मचारियों का भी भरपूर ध्यान रखती है, इसलिए जवानों के हक में फैसला लिया गया।
7: एयर कूल जैकेट की वजह से धूप में जो ड्यूटी कर रहे हैं वो हाथों कम्बलदार हैं, उनके लिए बहुत ही सुसह्य हो गया है और वो अच्छे तरह से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं।
5: अब आपको बताते हैं कि आखिर इस जैकेट में ऐसा क्या है जिससे जवानों को गर्मी में बीच सड़क राहत महसूस हो रही है। सफेद रंग के जैकेट पर रिफ्लेक्टर लगे हैं, पीछे दो छोटे पंखे लगे हैं, 10,000 mAh पावर बैंक से ये चलते हैं। जैकेट के अंदर हवा सर्कुलेट होती है जिससे शरीर ठंडा रहता है और लू से बचाव होता है। जहां तक कीमत की बात है तो ये करीब 7,000 प्रति जैकेट के हिसाब से खरीदा गया है।
7: ये जैकेट में पिछले साइड दोनों बाजू में फैन दिए गए हैं और वो बैटरी ऑपरेटेड है, तो बैटरी जो है रिचार्जेबल है और वो कनेक्ट करने के बाद में अंदर से दोनों फैन चालू होते हैं। उनका पूरा शरीर जो है वो टेम्परेचर जो है कम होता है, इसीलिए धूप में उनको काम

0: तुम्हें बताना भूल गए, दरअसल आज एकादशी है। बोले एकादशी है तो? बोले एकादशी है तो ना बनेगा ना मिलेगा। तो रामदास बोला हमें भी? बोले तुम्हें क्या, किसी को भी नहीं? अरे बोले गुरुजी आपके इतने चेला हैं, उन्हें एकादशी करवा दो, एक तो छोड़ दो। बोले नहीं नहीं वो तो सबको नियम बराबर है, ना बनेगा ना मिलेगा। ये हाथ जोड़ के बोला गुरुजी यदि हमारी एकादशी करवा दी तो द्वादशी देखना मुश्किल हो जाएगा।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में शामिल यानी कि आईफिल टावर अब सिर्फ देखने की चीज नहीं बल्कि इसे खरीदने का मौका भी मिल रहा है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए आईफिल टावर की ओरिजिनल सीढ़ियों का एक हिस्सा नीलामी में रखा जा रहा है। आखिर क्या है इसकी खासियत और क्यों करोड़ों में बिकती है ये सीढ़ियां, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।

0: पेरिस की पहचान एफिल टावर, दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में शामिल। हर साल लाखों सैलानी यहां पहुंचते हैं, लेकिन कोई लिफ्ट से ऊपर जाता है तो कोई सीढ़ियां चढ़कर इतिहास को करीब से महसूस करता है। अब इसी इतिहास का एक हिस्सा पेरिस में नीलामी के लिए रखा गया है। ये एफिल टावर की ओरिजिनल घुमावदार सीढ़ियों का हिस्सा है, जिसे 1889 में टावर बनने के वक्त लगाया गया था। आर्ट क्यूरियल पेरिस में रखी गई ये सीढ़ियां 14 स्टेप्स वाली हैं, करीब 9 फीट ऊंची और लगभग 1400 किलो वजनी है। 1983 में एफिल टावर कंपनी ने टावर को मॉडर्न बनाने और वजन कम करने के लिए पुरानी सीढ़ियों को हटाया था। करीब 160 मीटर लंबी सीढ़ियों को अलग अलग हिस्सों में काट कर नीलाम कर दिया गया।
1: On peut aujourd'hui acheter des morceaux de Tour Eiffel de façon tout officielle grâce à cette vente qui a lieu en 1983 où la société de la Tour Eiffel a décidé d'alléger, de moderniser ses escaliers.
0: नीलामी में रखे गए इस हिस्से की कीमत 1,20,000 से 1,50,000 यूरो यानी करीब 1.5 करोड़ रुपए तक आंकी गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी कीमत सिर्फ लोहे की नहीं है, बल्कि इतिहास, दुर्लभता और एफिल टावर से जुड़ी भावनाओं की है।
1: Puisque ce tronçon d'escalier a été conservé pendant plus de 40 ans à l'abri dans la même collection. Ensuite,
0: इससे पहले भी एफिल टावर की सीढ़ियों के हिस्से रिकॉर्ड कीमतों में बिक चुके हैं। 2008 में एक हिस्सा करीब 5.5 लाख यूरो यानी करीब 6,20,00,000 में बिका था। आज दुनिया के कई देशों में एफिल टावर की पुरानी सीढ़ियों के हिस्से सजाए गए हैं, लेकिन पेरिस में होने वाली ये नीलामी एक बार फिर इतिहास प्रेमियों का ध्यान खींच रही है। एफिल टावर जो 137 साल बाद भी दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचता है, अब उसकी पुरानी सीढ़ियां इतिहास और विरासत की सबसे खास निशानी बन चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: दिल्ली में पर्यावरण की रक्षा और ईंधन बचाने के लिए नए नए प्रयोग किए जाते रहे हैं। अब केंद्र शहरी आवास विकास मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से हाइड्रोजन बस सर्विस शुरू की गई है। 35 सीटों वाली दो अत्याधुनिक हाइड्रोजन बसें सेंट्रल विस्टा इलाके में दौड़ने भी लग गई है। इस परियोजना के तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने DMRC को 35 सीटों वाली दो अत्याधुनिक हाइड्रोजन बसें उपलब्ध कराई हैं। ये पेट्रोल बचाएंगे और पर्यावरण के लिए वरदान भी साबित होंगे।
3: दिल्ली की सड़कों पर अब हाइड्रोजन की जादुई शक्ति दिखेगी। इससे न सिर्फ पेट्रोल की बचत होगी, बल्कि राजधानी की हवा भी शुद्ध रहेगी। दिल्ली के VVIP सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली शटल बस सर्विस शुरू हो गई है। अभी फिलहाल दो हाइड्रोजन बसेस चलाई जा रही हैं।
4: Today is the day of the hydrogen buses. They enjoy the ride and let us come together to save fuel.
3: इस बस सेवा से केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी, ताकि सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों की दफ्तरों तक आवाजाही आसान हो सके। इससे निजी गाड़ियों पर निर्भरता भी कम होगी। ये बसें सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर

0: दोपहर 12:30 बजे तक और शाम को 3:30 बजे से 6:30 बजे तक चलेंगी। हर 30 मिनट में एक बस उपलब्ध होगी। सबसे बड़ी बात, इन बसेस में GPS ट्रैकिंग और CCTV सिस्टम भी लगाए गए हैं और किराया 10 और 15 रुपए रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
3: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त 8:00 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की 9:00 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त 8:00 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर। जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: प्रयागराज में वट सावित्री व्रत पर सुहागनों ने की बरकत की पूजा, लोगों ने संगम में लगाई पवित्र डुबकी, मंदिरों और पूजा स्थलों पर उमड़ी भीड़। आज देश भर में मनाई जा रही है शनिदेव की जयंती, 300 साल बाद बने दुर्लभ संयोग, मंदिरों में सुबह से लगी श्रद्धालुओं की भीड़। चारधाम यात्रा में चरम पर श्रद्धालुओं का उत्साह, तीर्थयात्रियों की संख्या अब 13.5 लाख के पार, केदारनाथ पहुंचे 5,76,000 से ज्यादा। गुलाबी रंग में रंगी नवी मुंबई, हजारों फ्लेमिंगो ने डाला डेरा, प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए उमड़ रही भारी भीड़। तमिलनाडु में पोंगल उत्सव को लेकर आयोजनों का दौर जारी, रामनाथपुरम में बैलगाड़ी दौड़ के दौरान दिखा संतुलन, संस्कृति और गति का संगम, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया इसमें हिस्सा। नासा और स्पेसएक्स को एक और सफलता, नए CRS-34 मिशन में मानव रहित कार्गो ड्रैगन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा, यान में लगभग 3000 किलो वजन के वैज्ञानिक उपकरण, भोजन के साथ जरूरी सामान शामिल। यूरोविजन 2026 सॉन्ग कॉन्सर्ट का फाइनल आज, वेना में कई देशों के दिग्गज संगीतकारों के बीच मुकाबला, दुनिया भर के करोड़ों दर्शकों को शो का इंतजार।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे शनि जयंती की। शनि जयंती की महिमा क्या है, इसके उपाय क्या हैं और शनिदेव की कैसे पूजा करें, ये आपको बताएंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक अचूक उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 16 मई 2026 दिन शनिवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, नक्षत्र है भरणी नक्षत्र शाम के 5:30 तक, चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:46 तक, राहु काल का समय प्रातः 9 से 10:30 तक, पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, वैसे तो ज्योतिष में हम 9 ग्रहों की पूजा करते हैं, लेकिन जयंती जो अलग से मनाई जाती है, 2 ही ग्रहों की जन्म जयंती सामान्यतः मनाई जाती है, सूर्य देव की और शनि देव की। तो शनि जयंती का महत्व क्या है? ग्रहों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली और लंबे समय तक अपना प्रभाव दिखाने वाले ग्रह शनिदेव माने जाते हैं, इसीलिए ग्रहों में शनिदेव की जयंती मनाई जाती है, क्योंकि इनके अंदर पूरी तरीके से दुनिया को, जीवन को बदलने की ताकत है। माना जाता है कि शनिदेव का प्राकट्य यानी जन्म हुआ था ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथि को, और इसी दिन शनिदेव की जन्म जयंती मनाई जाती है। शनि जयंती पर संध्या काल में जगह जगह पर देश दुनिया में शनिदेव की विशेष पूजा की जाती है और शनि कृपा प्राप्त करने के विशेष उपाय भी किए जाते हैं। इस बार 16 मई को शनिदेव की जयंती मनाई जा रही है। 16 मई को संध्या काल में शनिदेव की विशेष पूजा होगी, तमाम तरह के उपाय किए जाएंगे, दान किए जाएंगे, जिससे शनिदेव की कृपा हर व्यक्ति को प्राप्त हो पाएगी। मेष राशि, संतान का सहयोग और प्रेम आपको प्राप्त होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, परिवार में शांति बनाए रखें, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग दिख रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। ऑफिस की समस्या आपकी हल होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो शनि जयंती पर मुख्यतः शनि देव की पूजा होती है ताकि उनकी कृपा मिले, जीवन का संघर्ष कम हो, जीवन की बाधा दूर हो। तो शनि जयंती पर पूजा करने का सरल तरीका क्या होगा? शनि जयंती पर शनि देव की पूजा संध्या काल में ही करिएगा, सूर्यास्त के बाद। संध्या काल में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। काले नीले कपड़े मत पहनिएगा, सफेद या पीले या लाल कपड़े पहनिएगा। इसके बाद सबसे पहले भगवान शिव की या श्री कृष्ण की उपासना करिएगा। फिर शनि देव के मंत्र का यथाशक्ति जप करिएगा। सबसे सरल मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करिएगा, 3 माला 5 माला या 11 माला। इसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक बड़ा सा दीपक जलाइएगा। शनि देव से दीपक जला करके कृपा करने की प्रार्थना करें और सबसे अंत में निर्धनों को अन्न का, वस्त्र का और बर्तनों का दान करिएगा। लोहे या स्टील के बर्तनों का दान करना अच्छा होगा। तो शनि जयंती पर शनि देव के मंत्र का जप करना है, पीपल के नीचे दीपक जलाना है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार निर्धनों को दान करना है। सिंह राशि, आज मन अच्छा बना रहेगा, परिवार के तनाव कम होते जाएंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, करियर में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। नया काम आपका शुरू हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, धन का लाभ होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, आप नौकरी छोटी करें या बड़ी करें, बिना शनि कृपा के नौकरी मिलना संभव ही नहीं है। और अगर शनि की कृपा ना हो तो नौकरी में उन्नति भी संभव नहीं है। तो अगर नौकरी संबंधी कोई भी दिक्कत है, नौकरी मिल नहीं रही है, चल नहीं रही है, नौकरी में उन्नति नहीं हो रही है, तो शनि जयंती पर क्या उपाय करेंगे? शनि जयंती पर संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे 3 सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। इसके बाद चाहे वहीं बैठ के मंत्र पढ़ें या दीपक जला के घर चले आएं, और उसके बाद 11 माला शनि देव का मंत्र पढ़ेंगे। कम से कम 11 माला पढ़िएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। मंत्र जप करने के बाद शनिदेव से प्रार्थना करिएगा कि आपकी नौकरी की समस्या हल हो जाए, और उसके बाद निर्धनों को, गरीबों को खाने पीने की चीज, कोई भी खाने पीने की चीज, रोटी सब्जी, हलवा पूड़ी, बिस्किट नमकीन, कुछ भी दान करिएगा। अगर शनि जयंती पर ऐसा कर देते हैं तो आपकी नौकरी संबंधी समस्या हल हो जाएगी। देखिए, अगर शनि कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या देता है तो वो स्नायु तंत्र की, नर्वस सिस्टम की समस्या होती है, या लंबी चलने वाली बीमारी शनि की वजह से जीवन में आ जाती है। अगर स्वास्थ्य की कोई जटिल, कोई गहरी समस्या है, आप जूझ रहे हैं, तो शनि जयंती पर क्या उपाय करेंगे? शनि जयंती पर एक लोहे का छल्ला ले आइएगा। इसको एक कटोरी में सरसों का तेल डालें थोड़ा सा, उसी में छल्ले को डुबो लें, यानी सरसों के तेल से शुद्ध करें। इसके बाद कटोरी को जिसमें छल्ला है अपने सामने रख लें, और शनिदेव के तांत्रिक मंत्र का कम से कम 3 माला या 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 3 माला या 11 माला जप करें। जप करने के बाद शनिदेव से प्रार्थना करें कि आपको रोगों बीमारियों से छुटकारा मिले, और इसके बाद लोहे का छल्ला राइट या लेफ्ट हैंड में, दाहिने या बाएं हाथ की मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में धारण कर लें, और इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को काले वस्त्र का दान कर दीजिएगा। काला कुर्ता, काला शर्ट, काले कपड़े, जैसा भी संभव हो वो किसी गरीब आदमी को दीजिएगा। अगर आप ऐसा शनि जयंती पर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी स्वास्थ्य की स्थिति में आने वाले समय में सुधार होना शुरू हो जाएगा। धनु राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, काम का बोझ आपका बढ़ा रहेगा, परिवार में शांति बनाए रखें, धन हानि से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर काले चने का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अभी किसी भी तरह के परिवर्तन से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, शनि अगर आपकी कुंडली में निगेटिव है ना, पैसे रुपए को लेके बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और शनि अगर बहुत ज्यादा खराब हो तो आदमी को दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे स्थिति में शनि जीवन में भयंकर संघर्ष बढ़ा देता है। तो अगर शनि की वजह से आर्थिक स्थिति खराब है, कोई धन संबंधी समस्या है, तो शनि जयंती पर क्या उपाय करेंगे? शनि जयंती पर एक काला कपड़ा ले लें, थोड़ा सा बड़ा कपड़ा ले लें, उसमें एक जटा वाला नारियल और कुछ पैसा जितना भी रख सकें, 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 11 रुपया वो रखिए। इसको अपने सामने रख लीजिए, पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिएगा और इस काले कपड़े में नारियल और पैसे को अपने सामने रख लीजिएगा। इसके बाद शनि मंत्र का जप करिएगा। अच्छा होगा कि कम से कम 11 माला जप करें, नहीं तो 5 माला मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। जप करने के बाद अपनी आर्थिक समस्या के दूर हो जाने की प्रार्थना करें कि मेरी धन संबंधी मुश्किलें दूर हो जाएं, मेरी आर्थिक कठिनाई समाप्त हो। इसके बाद कपड़े में ही नारियल और पैसा जो रखा है, कपड़े के साथ सारा सामान किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिएगा। कोई नहीं मिलता है तो पीपल के वृक्ष के नीचे रख करके चले आइएगा। अगर ये काम आप कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी धन संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। देखिए, अगर आपकी 7.5 है, जैसे इस समय कुंभ राशि पर, मीन राशि पर और मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, या आपकी ढैया है, जैसे इस समय सिंह पर और धनु राशि पर शनि की ढैया चल रही है, तो मुश्किलें थोड़ी बढ़ जाती हैं। आमतौर पे जीवन में संघर्ष थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो अगर 7.5 या ढैया आपकी चल रही है तो क्या उपाय करेंगे शनि जयंती पर? शनि जयंती की रात को उपाय करिएगा, एक घी का या तिल के तेल का दीपक पश्चिम दिशा की तरफ जलाइएगा और फिर खुद भी दीपक सामने रखकर पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिएगा। अपने सामने कोई फल या मिठाई या दोनों रख लीजिएगा। इसके बाद शनि देव के तांत्रिक मंत्र का अधिक से अधिक जप करिए, या कम से कम 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा और शनिदेव से प्रार्थना करिएगा कि आपके ऊपर कृपा करें, 7.5 या 2.5 का प्रभाव कम हो जाए। अगले दिन सुबह के समय फल और मिठाई का दान कर दीजिएगा किसी निर्धन व्यक्ति को। ये छोटा सा उपाय अगर आप शनि जयंती की रात को कर लेते हैं तो 7.5 और 2.5 के दुष्प्रभाव से आप बच जाएंगे। देखिए, शनि जयंती पर सार्वजनिक स्थान में, पार्क में, सड़क के किनारे, जहां भी आपको उचित जगह दिखाई दे वहां एक पीपल का पौधा जरूर लगाइएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में संतान संबंधी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखिए, अगर बेवजह आपको हमेशा चिंता रहती है, बेवजह की मानसिक चिंता आपको परेशान करती है, तो रोज सवेरे चांदी के गिलास से, चांदी की कटोरी या लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। डेली मॉर्निंग मंदिर जाके एक चांदी का चौकोर टुकड़ा चांदी की चेन में या पीले धागे में अपने गले में पहनिए और रात को सोते समय जितना ज्यादा से ज्यादा संभव हो नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर ऐसा आप नियमित रूप से करें तो आपका मन शांत होगा, मन में रहने वाली हर समय की चिंता दूर हो जाएगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: ना आदि ना अंत, ताकत है अनंत। देसी तकनीक से तैयार महाशक्ति वाला हथियार भारत ने बना लिया भविष्य का ब्रह्मास्त्र। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
4: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, "Remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific." Two, when it's time, just say, "Play Hot Mics on TuneIn." And you're in. for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
5: खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: चमक के पीछे एक ऐसा सफर जहां ट्रोलिंग थी, प्रेशर था और साबित करने की जंग। मेंटल हेल्थ का वो सच स्टारडम भी नहीं छुपा पाया। आलिया के फिल्मी सफर की अनटोल्ड स्टोरी, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: सरसों के तेल का दान करने से जीवन में किस तरह की समस्या दूर होती है? काले कपड़े और काले जूते का दान आपके जीवन में किस चीज को बेहतर कर देता है? शनिदेव की कौन सी हैं चमत्कारी वस्तुएं और क्या हैं उनके प्रयोग के नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
13: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों में कहीं प्यार है तो कहीं है ड्रामा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
14: एक कथा सुनो फिर हनुमान चालीसा पे चर्चा। एक गांव में एक आदमी रहता था, सीधा साधा था, बहुत सीधा था, लेकिन उसकी एक ही कमी थी, खूब खाता था। अच्छा, आदमी उतना ही खाता है जिसका जितना बड़ा खाता है। कुछ लोग कहते हैं ना ये बहुत खाते हैं, वही आदमी उतना ही खाता है जिसका जितना बड़ा खाता है, जैसे आपका बड़ा खाता है। तो वो तो खाते के हिसाब से ही खाते हैं। तो आदमी कितना खाता, जिसका जितना बड़ा खाता आदमी उतने, तो ये खूब खाते थे, कोई काम नहीं, एक ही काम था, खावे और सोवे और जगे और फिर खावे। घर वाले बहुत हैरान, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। अच्छा, घर वाले रखते ही उसी को जो काम का हो, और जो काम का नहीं वो कोई सी काम का नहीं। तो घर वालों ने कहा कि तुम खाते ही रहते हो, कुछ करते ही नहीं हो, कुछ करो। बोले हमसे कुछ होता ही नहीं है। बोले होता नहीं है तो काहे को पड़े हो, बाबा बन जाओ। अच्छा, कई लोग तो इसी चक्कर में बाबा बन जाते। बोले क्यों? बोले मुड़ मुड़ाए 3 गुण, सिर मुड़ाए, इसको बुंदेलखंडी में मूड़ कहते हैं, हमारे बुंदेलखंड में मूड सिर को मूड कहते, तो बोले सिर मुड़ाए तीन गुण, बोले क्या, बोले सिर की मिट जाए खाज और खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। बोले ये फायदा है, तो मूड मुड़ाए तीन गुण। घर वालों ने कहा कोई काम के तो है नहीं, घर में पड़े रहते हो, जाओ बाबा बन जाओ। अच्छा कई लोग बाबा इसी चक्कर में बनते, घर में भाई खटपट सो चल बाबा के मटपट, गुरुजी ने काट दी चोटी ले मांखा बेटा रोटी। अब ये घर से निकला जाए कहां, इसने सोचा जाए कहां, घर वालों ने ही छोड़ दिया, जिन पे भरोसा था उन्होंने ही छोड़ दिया, जाए कहां। सामने एक मंदिर था मठ आश्रम, जैसे त्रिपाठी जी ने हमारा भिवंडी में बना रखा बागेश्वर सनातन मठ, ऐसे ही एक मठ था। मठ के बाहर पुजारी जी बैठे थे, अच्छा महात्मा तो होते ही मोटे ताजे, और होए क्यों ना, उन्हें कोई टेंशन ही नहीं, अटेंशन में रहते हैं, टेंशन क्या, महात्मा तो अटेंशन में रहते, टेंशन में थोड़ी रहते, अटेंशन में रहते। खाब खूब बड़े मोटे ताजे महात्मा मठ के बाहर मंदिर के बाहर बैठे थे, ये जा रहा था रस्ते में, इन्होंने देखा, इसने देखा बहुत खाते हैं लगता है, आदमी को तो अपने हिसाब से ही दिखाई देता है, बोले ये भी मोटे ताजे हैं लगता है, ये भी खूब खाते। नजदीक आ गया गुरु जी के, जैसे ही नजदीक आया तो दो चार चेला महात्मा जी के निकल आए, वो भी मोटे ताजे, अरे बोले वाह इधर तो सब मोटे ताजे, ये भी मोटे ताजे लगता है, ये सब खूब खाते हैं हमारे जैसा, ये भी मोटा ताजा था। ये गया बोले गुरु जी हाँ आप हमें अपना चेला बना लो। बोले बन जा। बोले बहुत बढ़िया जय हमारा। बोले लेकिन चेला तो बनेंगे, पहले ये बताओ हमें काम क्या करना होगा। गुरु जी बोले कोई काम नहीं है, मंदिर है, सुबह शाम आरती में खड़े हो, खड़े होके कीर्तन गाओ और पड़े रहो, कोई काम नहीं है मंदिर में, कोई इमरजेंसी आएगी तो बताएंगे। बोले महाराज चलो ये तो हो गई काम की बात, ये बताओ इसकी क्या व्यवस्था है। अरे बोले वाह मंदिर है, कोई कमी नहीं, भगवान की बहुत कृपा है, दोनों टाइम भंडारा चलता है, सुबह भी शाम को भी। बोला ओनली टू टाइम। बोले हाँ दो बार। बोले वो चार नहीं हो सकता। अरे बोले मंदिर है कोई दिक्कत नहीं, चार नहीं आठ बार खाओ। इसने कहा ये बहुत बढ़िया है, कुछ काम करना नहीं, आठ बार खूब खाना। इसने कहा यदि नौ बार खा ले तो। पंडित जी बोले खाता ही रहेगा कि कुछ और करेगा। बोले सच यही है कि हम खाते ही भाग हैं, इसीलिए तो घर से भगाए गए। बोले कोई बात नहीं खाते रहना, नौ बार खा लेना, तुम्हारी व्यवस्था बना देंगे। लेकिन इसे क्या पता अब रहने लगा, गुरु जी ने चेला बना दिया, नाम रख दिया रामदास। क्या नाम रखा? रामदास। माला पहना दी, तिलक लगा दी। अब ये बढ़िया सुबह शाम आरती में खड़ा हो गए, आरती के बीच ही में जयकारा लगा के बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आरती चल रही हो, बीच में जयकारा लगा के भंडारी के पास आ जाए, लो हम तो जय बोले ले आओ। तो पुजारी जी कहे भाई कम से कम पांच मिनट तो गम खा, पांच मिनट तो ठहर जा बीच ही में, और ये इतना खावे अब इसे फ्री में मिले साव आनंद, काम कुछ करना नहीं, इतना खावे को होश नहीं खड़े होने का, सांस तेज चल रही, पेट भरो है दाल से और रोटी से और भात से, आ सांस तेज चल रही हो, दीवाल में टिक्के कीर्तन करे हरे राम उतई ही सो जाए, और जैसे ही नींद को ले सो फिर जाए ले आ। मंदिर वाले बोले भला भगवान इसका भला करे, खाता ही खाता है, लेकिन इसे क्या पता मंदिर में भी मुसीबत आने वाली है। एक दिन सुबह से कुछ बना ही नहीं, भंडारी जी धूप में तेल लगाते हुए बैठे थे, सिर के बाल खुजला रहे थे, इसको लगा आज मंदिर में हड़ताल है, तो ये गुरुजी के पास गया। गुरुजी आज रोटी नहीं बन रही, भंडारी जी बैठे हैं, कितनी देर में बनेगा, हमें गरम ही दे दो। गुरुजी बोले चेला तुम्हें बताना भूल गए, दरअसल आज एकादशी है। बोले एकादशी है तो? बोले एकादशी है तो ना बनेगा ना मिलेगा। तो रामदास बोला हमें भी? बोले तुम्हें क्या, किसी को भी नहीं। अरे बोले गुरुजी आपके इतने चेला हैं उन्हें एकादशी करवा दो, एक तो छोड़ दो। बोले नहीं नहीं वो तो सबको नियम बराबर है, ना बनेगा ना मिलेगा। ये हाथ जोड़ के बोला गुरुजी यदि हमारी एकादशी करवा दी तो द्वादशी देखना मुश्किल हो जाएगा। हाँ बोले मतलब? बोले मतलब सीधा है गुरुजी, एक चेला आपका कम हो जाएगा, आश्रम में कलियम टपक जाएंगे। बोले ये तो बड़ी खाज है। बोले क्या किया जाए? बोले आप ही कोई उपाय बताओ गुरुजी। बोले और तो कोई उपाय नहीं, मंदिर में तो बन नहीं सकता, नियम है हमारे गुरुजी, 300-400 साल से नियम चल रहा है। एक उपाय है क्या? बोले हम सामान दे सकते हैं, तुम बना लोगे? अरे बोले मरते क्या नहीं करते, सामान ही दो। तो भंडारी जी को कह दिया, हाँ भाई जरा सामान दो। भंडारी जी ने आटा दे दिया, गुड़ दे दिया, चावल दे दिए, नमक दे दिया, मिर्चा दे दिया। गुरुजी से प्रणाम करके बोला, गुरुजी हम जा रहे, आशीर्वाद दो कि हम फतेह करके आए। तो गुरुजी बोले क्या फतेह करके आए? बोले पूरा राशन ठिकाने लगा के आए, क्योंकि अभी तो बनाना पड़ेगा, तब तक दोपहर हो जाएगी, भूख लगे। तो गुरु जी बोले इधर आओ। जी जी गुरु जी, सुनो वैसे तो एकादशी को खाना नहीं चाहिए, पर तुम नहीं मान रहे हो तो खा रहे हो। सुनो, भगवान को बुलाकर भोग लगाकर खाना, अब ये तो सीधा साधा आदमी, बड़ा सरल आदमी, कुछ जानता था ही नहीं, इसे पढ़ाई लिखाई थी नहीं, कोई जानता था नहीं, सीधा साधा आदमी, भोला भाला। इसने कहा जो आज्ञा गुरु जी। तो इसने कहा कि हाँ बहुत बढ़िया बात है, आज एकादशी है तो मंदिर में भगवान को कुछ मिलेगा ही नहीं, कम से कम हमारे यहां मिल तो जाएगा। ये नदी के किनारे आया, नदी के किनारे लकड़ी ली, आग जलाई, आग जला करके इसने रसोई तैयार की, टिक्कड़ बनाए, चोखा प्रसाद बनाया। चोखा प्रसाद बनाने के बाद गुड़ का शरबत बना करके बैठ गया। इसने सोचा गुरुजी ने कहा था भगवान को बुला लेना, मंदिर था राम जी का, सो हाथ जोड़ करके गाने लगा।

अच्छा सीधा साधा आदमी पढ़ा लिखा तो था नहीं, इसे लगता था कि भगवान सच में आते और खाते हैं। सीधा आदमी ये सोचता था कि भगवान आते हैं और खाते हैं। अब ये चारों तरफ देखने लगा, कोई नहीं आता दिखाई पड़ा, केवल जंगली जानवर दिखाई पड़े। सो ये और टेंशन में मन ही मन कहने लगा, प्रभु एक तो एकादशी है, दूसरा पहली बार जिंदगी में हमने बनाया है, तीसरा दोपहर पहले ही हो गई, भूख बहुत लगी, और चौथा तुम आ नहीं रहे। अच्छा क्यों नहीं आ रहे? गुरुजी ने तो कहा था भगवान को बुला। एक कमी होगी। क्या कमी होगी? हमारे पास वो घंटिया आचमनी नहीं है। हो सकता भगवान माहौल देख के न आ रहे हैं। सो हाथ जोड़ करके बुला, आचमनी।

ही आए, अब इसका दिमाग खराब, इतनी देर हो गई आए नहीं और इसको रोटी बसाए। एक बार रोटी की तरफ देखे, फिर इधर उधर देखे, भगवान नहीं आए। तो सीधा साधा आदमी हाथ जोड़ करके बोला, सुनो भगवान, सीधी सीधी बात सुन लो, जहां भी हो जल्दी आ जाओ, और तुम मंदिर के चक्कर में ना रहना कि मंदिर में मालपुआ रबड़ी मालपुआ, आज वहां एकादशी है, ठन ठन गोपाला मिलेगा, वहां कुछ नहीं है, जो है यही है, यहाँ हम भी खा रहे तुम भी पाओ, एकादशी मना लो। भगवान इसी सरलता पर रीझ गए, लेकिन राम जी भी कम कौत की नहीं है, कलयुग की सत्य घटना है। राम जी अकेले नहीं आए, सीता समारोह पितवाम भागम, माता जानकी जी को लेकर प्रभु श्री राम प्रकट हो गए। आहा, जैसे ही इसने देखा दो जने आ गए, तो राम जी की तरफ देखकर बोला, जय हो भगवान, इतनी देर क्यों कर दी। भगवान बोले, बिजी थे, व्यस्त थे। बोले, अच्छा। बगल में जानकी माता को देख के बोला, ये कौन है। राम जी बोले, वाह, हमारी घरवाली है, घरवाली घरवाली। बोले, हमने बुलाया तो एक भगवान, तो जी तो दो भगवान हो गए। तो राम जी बोले, दिक्कत क्या है। बोले, पूरी दिक्कत है, व्यवस्था दो लोगन की है, अब तीन हो गए, मतलब आधी एकादशी हमारी करवा ही लोगे। एक तो आधी पहले ही हो गई, ऊपर से बंटवारा करके तुम्हारी घरवाली को भी तो कुछ रोटी लगेंगी, ये खाएंगी कि नहीं खाएंगी। भगवान बोले, वाह, हम खाएंगे तो ये भी खाएंगे। बोले, इसका मतलब है शुद्ध है कि दो टिक्कर खाएंगी कि तीन। राम जी बोले, ये कोई बात है, पेट भर के खाएंगे। बोले, वाह, एक तो लेट आए, ऊपर से पेट भर के खाओगे, वो दो भगवान आए, व्यवस्था एक भगवान। पर कोई बात नहीं, अब आगे सो आगे बैठो बैठो। एक बात बोले प्रभु, हाँ, आप लोगों की जोड़ी बड़ी सुंदर है, कहाँ रहते हो। भगवान बोले, मंदिर में रहते, बहुत अच्छा, लो खाओ, बढ़िया प्रसाद पवाया। इसने भी प्रसाद पाया, प्रभु भगवान के चरण स्पर्श किया, भगवान जाने लगे। इसने पूछा, सीधा आदमी, इसने कहा, एक बात बताओ भगवान। बोले, हाँ, ये एकादशी साल में कितनी बार आ जाती है। भगवान बोले, तो हर महीना आती है, महीने में एक नहीं दो। बोले, मतलब हर 15 दिन में अपनी मीटिंग फिक्स है। भगवान बोले, हाँ। तो बोले, सुनो, और तो सब ठीक है, अगली बार टाइम पे आ जाएंगे, इतनी देरी ना करिए, थोड़ा जल्दी। भगवान बोले, हम आ जाएंगे, आशीर्वाद। सीधा साधा आदमी तो ये मंदिर आ गया, इसने गुरु जी को नहीं बताया, क्योंकि होता ही ऐसा होगा, उसको ऐसा लगा कि ऐसा ही होता है, भगवान ऐसे ही आते हैं। अब 15 दिन कब बीत गए पता नहीं लगा, फिर एकादशी आई, तो फिर भंडारी जी चूल्हे में नहीं आग लगा में। तो ये पहुंचा, बोले, आज क्या है। बोले, फिर एकादशी। बोले, फिर एकादशी, इतनी जल्दी, अभी तो गई थी। अरे बोले, वो तो आ गई, कोई बात नहीं, अभी एकादशी आई तो गुरु जी के पास गया। बोले, गुरु जी सुनो, इस बार हमारा राशन बढ़ाया जाए। तो गुरु जी बोले, क्यों। बोले, वाह, वहां दो दो भगवान आते, और पिछली बार हमारी आधी एकादशी हो गई थी, इसलिए राशन बढ़ाओ, थोड़ा आटा बढ़ाओ आटा। गुरु जी को लगा, ज्यादा खाता है तो कम रह गया होगा। तो गुरु जी ने 5 शेर की जगह 8 शेर आटा कर दिया, गुड़ दे दिया, चावल दे दी, दाल दे दी, और थोड़ा नमक दे दिया, मिर्चा दे, लो लो जाओ, अब ठीक है। अब ये गया, इसने बढ़िया रोटी टिक्कर फिर से बनाया, चोखा बनाया, गुड़ बनाया, मिर्चा की बढ़िया साग दाल बनाई रख ली, साग बनाई रख ली। इसने सोचा भगवान को बुला लें, नाम पहले ही जान गया था, पूछा प्रभु राम जी से पहली बार में, ये बगल में कौन है, घर वाली, क्या नाम है इनका, सीता जी, अच्छा। तो आज नाम लेके बुलाने लगा, अरे सीता राम।

दूर ही से हाथ जोड़ के बोले जय हो। एक को बुलाओ सो दो आते हैं, दो का इंतजाम करो सो तीन तीन आ गए। भगवान की तरफ देख के बोला अब ये कौन है? भगवान बोले हमारे भाई है। ये नीचे से ऊपर की तरफ देखे, ऊपर से नीचे की तरफ देखे। राम जी बोले हुआ क्या? बोले लग तो नहीं रहे तुम्हारे भैया है, तुम्हारा कलर अलग है इनका अलग है, दोनों अलग अलग रहे। अरे बोले नहीं नहीं हमारे भाई है, इनकी माता जी दरअसल दूसरी है, इसलिए गौर वर्ण के हैं, हम श्याम वर्ण। अच्छा तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ। हाँ बोले हमने तुम्हारा ठेका लिया है भोजन का, खानदान का थोड़ी लिया है। तुम पूरा खानदान लेके आओ, तुम्हारा ठेका है अब पूरे खानदान का, तुम तीन जने आ गए। अब लेकिन कोई बात नहीं, हम आ गए सो, अब ठीक है लो बैठो, कोई बात लगता है थोड़ी एकादशी फिर करवा दोगे, बैठो बैठो बैठो। अब राम जी बैठ गए। क्या नाम है इनका? लक्ष्मण जी। अच्छा अच्छा बाबा लक्ष्मण जी। फिर एकादशी आई, गुरु जी बोले आज फिर एकादशी है। बोले है तो। गुरु जी बोले सिर क्यों लटका है? अरे बोले वहां पे भगवान ही भगवान आ जाते। गुरु जी बोले कहना क्या चाह रहे? बोले इस बार हमारा राशन डबल किया जाए। गुरु जी बोले डबल? बोले कितना? बोले 8 का 16। 8 शेर दिया था 16। गुरु जी मन में सोचने लगे 16 शेर खाता तो नहीं होगा, जरूरी बेचता है। गुरु जी बोले 16 नहीं 20 दे दो, हम भी देखते हैं कौन भगवान आते। मनी मन दे दो सामान, आटा लिया, दाल ली, गुड़ लिया, नमक लिया, मिर्चा लिया, नदी के किनारे आ गया। लेकिन आज चेला ने चतुराई कर दी, भगत ने चतुराई कर दी। इसने सोचा राशन पर्याप्त है, एक काम करो पहले भगवान को बुला लो, फिर जिस हिसाब की गिनती होगी उसी हिसाब का बना लेंगे।

देखा, सोई हाथ जोड़ के बोला जय हो। एक को बुलाओ सो दो आते हैं, दो का इंतजाम करो सो तीन आते हैं, तीन की व्यवस्था करो सो पूरा खानदान मोहल्ला लेके प्रकट हो गए। लेकिन सुन लो, आज हमने भी भोग नहीं बनाया है। भगवान बोले मतलब? बोले ना हमने बनाया है ना तुम्हें डायरेक्ट मिलेगा। भगवान बोले कहना क्या चाह रहे? बोले जब हमें हर बार एकादशी हो ही जाती है, वो धरा सामान बनाओ खाओ। जब हमें मिलता ही नहीं है, अपना बनाओ और खाओ। भगवान बोले तुम क्या करोगे? बोले हम तुम्हारे बैठे रहेंगे, बच जाए सो हमें बता देना, नहीं तो हमारी भी एकादशी है। गुरु जी वैसे ही कह रहे थे एकादशी रहना चाहिए, सो हम भी एकादशी रह लेंगे। पूंछ से चौका करें हनुमान जी, अपनी पूंछ से हनुमान जी चौका चूल्हा करने लगे। लक्ष्मण जी लकड़ियां लाने लगे, श्री जानकी जी किशोरी जी भंडारा रसोई बनाने लगी, भरत जी अमनियां करने लगे, शत्रुघ्न जी जल की व्यवस्था करने लगे। और जैसे ही माता जानकी जी भोजन बनाने बैठी, अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा प्रकट हो गए और बोले मैया आज तो हम भी प्रसाद पाएंगे। अब ये बैठा पेड़ के नीचे आंख बंद करके, तो किसी ने कहा आंख क्यों बंद किए भगत जी? अरे बोले बनते भी तो नहीं देख सकते, भूख लगती है। लेकिन जैसे ही महात्माओं की आवाज सुनी माता हम भी भोजन पाएंगे, इसने एक आंख खोली और देखा बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा खड़े हो गए। तो किसी ने कहा क्या हुआ? अरे बोले बाद में कुछ बचता भी तो इन बाबाओं के मारे नहीं मिलना है। अब ये महात्मा आ गए, ये पा जाएंगे, अब नहीं मिलना। लेकिन उसी समय गुरु जी आ गए, इसके वो तो पीछे आज थे ही, वो आ गए। चेला रामदास जी, जी जी जी गुरु जी, जी गुरु जी। हाँ, ये बताओ क्या कर रहे हो? अरे गुरु जी ठीक आ गए, देखो तो कितने भगवान बैठे, कितने भगवान बैठे, भगवान ही भगवान बैठे। और ये देखो रसोई बन रही। गुरु जी बोले पागल हो क्या? बोले मतलब? बोले यहां तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, तुम दिख रहे,

0: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
1: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
0: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
2: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
3: Every day, too many lives in the construction industry are lost to suicide. But together, we can change that. Join the American Foundation for Suicide Prevention for the Ohio Construction Hike for Hope on May 17th at Sharon Woods in Columbus, a powerful event bringing people together to raise awareness, support one another, and save lives. Walk alongside coworkers, friends, and families, and help break the silence around mental health in construction. Register or donate today at supporting.afsp.org/ohconstruction. Together, we can build hope.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
6: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
7: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
6: Smartless.
8: Hey, guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
6: Marketplace.
9: Big three on the program today, or, you know, the big three of the...
6: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
10: खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.

0: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: Hop on board. We're going for a cruise with some easy listening. Feel the wind in your hair and bounce to the beat of the waves with Yacht Rock Classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins & Messina, and more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing or tell your device to play Sailing on TuneIn.
2: News today. Achhi khabar, sachi khabar.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों में कहीं प्यार है तो कहीं है ड्रामा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: ना आदि ना अंत, ताकत है अनंत। देसी तकनीक से तैयार महाशक्ति वाला हथियार, भारत ने बना लिया भविष्य का ब्रह्मास्त्र। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
6: वट सावित्री पर सुहागिनों ने रखा व्रत, महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर विधि विधान से की बरगद की पूजा, पति की लंबी उम्र की कामना की। आज देश भर में मनाई जा रही शनिदेव की जयंती, 300 साल बाद बने दुर्लभ संयोग, मंदिरों में सुबह से लगी श्रद्धालुओं की भीड़। 4 धाम यात्रा में चरम पर श्रद्धालुओं का उत्साह, तीर्थयात्रियों की संख्या अब 13.5 लाख के पार, केदारनाथ पहुंचे 5,76,000 से ज्यादा भक्त। तमिलनाडु में पोंगल उत्सव को लेकर आयोजनों का दौर जारी, रामनाथपुरम में बैलगाड़ी दौड़ के दौरान दिखा संतुलन, संस्कृति और गति का संगम, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। यूरोविजन 2026 सॉन्ग कॉन्टेस्ट का फाइनल आज वियना में, कई देशों के दिग्गज संगीतकारों के बीच मुकाबला, दुनिया भर के करोड़ों दर्शकों को शो का इंतजार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
1: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक। तो देखिए, सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैल दिए जाते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीरों को नई साजिशी रंग में रंग कर पेश कर दिया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रह जाती। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। तो देखिए, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश कर दी जाती है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मान लेते हैं और इसे शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो देखिए, फैक्ट चेक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलते ही बड़ी संख्या में मुसलमान बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो क्या वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई है, इसके बारे में आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है, जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि ये पश्चिम बंगाल का हालिया वीडियो है, जहां के स्थानीय मुस्लिम लोग बांग्लादेशियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आपको बताएंगे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल का बताकर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। इसे शेयर करने वाले ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में सत्ता बदलते ही बड़ी संख्या में मुसलमान बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करते हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
2: पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। टीएमसी ने पार्टी विरोधी बयानबाजी के आरोप में अपने 3 प्रवक्ताओं को सस्पेंड कर दिया था। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कुछ लोगों का कहना है कि बंगाल में अब बड़ी संख्या में एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोग टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वीडियो में इस्लामिक टोपी पहने कुछ लोग बीजेपी का पटका पहनकर किसी बिल्डिंग से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 30% है। लंबे समय से इन्हें टीएमसी का मजबूत वोट बैंक माना जाता रहा है। इसी वजह से वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, बंगाली आदमी बड़ा सयाना। बंगाली आदमी का कहना है कि जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, कल तक दीदी आज दादा, और इसी में है फायदा। सत्ता विरोधी बनकर विपक्ष का काम करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, ये उन पार्टी की जिम्मेदारी जिनकी सत्ता गई है वो जाने, क्योंकि उनका भी अब यही कहना है कि जाओ मरो। वहीं एक और यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, बीजेपी में घुसपैठ शुरू हो चुकी है, पहले बांग्लादेश से बंगाल में घुसपैठ, अब बीजेपी में, इसको रोकना होगा वरना बीजेपी और टीएमसी में कोई अंतर नहीं रहेगा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये पोस्ट इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के जरिए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बड़ी संख्या में मुसलमान टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वीडियो में इस्लामिक टोपी पहने कुछ लोग बीजेपी का पटका पहनकर किसी बिल्डिंग से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना काफी जरूरी हो गया था। ऐसे में फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच की। तो देखिए, फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा, उसे सुना, उसे परखा। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये बांग्ला जैसा नहीं लगा। आप भी सुनिए इसे। सुना आपने, ये असमिया जैसा लग रहा था। मतलब ये जो वायरल वीडियो है वो बंगाल का नहीं बल्कि कहीं और का हो सकता है। तो देखिए इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल दावे की जांच के लिए इंटरनेट और बंगाल के लोकल मीडिया आउटलेट्स के साथ साथ बंगाल बीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगाला, लेकिन यहां पर भी वायरल दावे की पुष्टि करती कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट या तस्वीरें हमको नहीं मिली, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। तो देखिए सबसे पहला सवाल यह है कि अगर ये दावा सही है तो वायरल वीडियो कब का है और कहां का है, और दूसरा सवाल ये कि कहीं इस वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें असम एंड नॉर्थ ईस्ट के एक रीजनल चैनल के एक वीडियो रिपोर्ट में मिला। यहाँ असमिया भाषा में लिखे कैप्शन के मुताबिक ये वीडियो असम के पाथार कांदी का है और चुनाव के वक्त का है। ये वीडियो रिपोर्ट 27 मार्च की है। इतनी बात तो यहीं साफ हो जाती है कि वीडियो पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद का नहीं है। इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें असम में कई न्यूज आउटलेट्स की रिपोर्ट्स में ये वीडियो मिला। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 मार्च को असम के पाथार कांदी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु पॉल की मौजूदगी में कई मियां मुस्लिम बीजेपी में शामिल हुए थे। कृष्णेंदु इस सीट से चुनाव जीतकर विधायक बन गए हैं। कृष्णेंदु पॉल ने 26 मार्च को अपने फेसबुक अकाउंट पर इस कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें भी शेयर की थी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता बदलने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं का नई सत्ताधारी पार्टी की तरफ झुकाव होना कोई नई बात नहीं है। राज्य में पहले भी कई बार ऐसा देखा गया है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने साफ कहा है कि हिंसा, घोटाले और अत्याचार से जुड़े लोगों के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। मार्च 2026 का ये वीडियो असम के पाथार कांदी का है, जहां चुनाव से पहले मुस्लिम समुदाय के लोग बीजेपी में शामिल हुए थे। रिद्धीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर बुर्का पहने एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बांग्लादेशी झंडे के प्रिंटआउट्स को फाड़कर उसे जलाती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आते ही वहां बदलाव नजर आने लगा है। अब स्थानीय मुसलमानों ने बांग्लादेश के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, बांग्लादेशियों के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट देखिए।
2: बांग्लादेशी झंडे के प्रिंटआउट्स को फाड़कर उन्हें जलाती एक बुर्का पहने हुए लड़की का वीडियो बंगाल के चुनावी नतीजों के संदर्भ में खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में लड़की के साथ कुछ और लोग भी नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये पश्चिम बंगाल का हालिया वीडियो है, जहां एक धर्म विशेष से संबंध रखने वाले लोग अब सार्वजनिक तौर पर बांग्लादेश के झंडे जलाकर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कई लोग लिख रहे हैं कि ऐसा राज्य में सत्ता परिवर्तन की वजह से हुआ है और बंगाल में रहने के लिए अब वहां के मुस्लिमों को बांग्लादेश को बुरा भला कहना पड़ेगा। एक यूजर ने एक्स पर शेयर करते हुए वीडियो के कैप्शन में लिखा, पश्चिम बंगाल के स्थानीय मुस्लिम समुदाय बांग्लादेशी मुस्लिमों के विरुद्ध सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इन पर भरोसा किया जा सकता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के स्थानीय मुस्लिम समुदाय बांग्लादेशी मुस्लिमों के विरुद्ध सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, बांग्लादेशी झंडों को फाड़ा जा रहा है, उसे जलाया जा रहा है और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार है। तो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बेहद जरूरी हो गया था। ऐसे में फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच की। तो देखिए दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे इस वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा, इसे परखा और इसे सुना। इस दौरान ऐसा लगा कि ये किसी प्रदर्शन से जुड़ा कोई वीडियो हो सकता है। इसके बाद हमारा ध्यान बैकग्राउंड में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यानपूर्वक सुना तो यहां नारे हिंदी में लगाए जा रहे हैं, यहां बांग्ला का एक भी शब्द सुनने को नहीं मिला है। ये थोड़ा सा हमें अटपटा जरूर लगा। अगर प्रदर्शन बंगाल में हो रहा होता तो इस दौरान बांग्ला सुनने को तो मिलती ही, और ऐसा क्यों नहीं हुआ ये तो समझ से परे है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। कौन से वो सवाल है आइए आपको मैं बताती हूँ। पहला सवाल ये कि अगर ये दावा सच है तो प्रदर्शन का ये वीडियो पश्चिम बंगाल के किस हिस्से का है। और देखिए दूसरा सवाल ये है कि कहीं किसी और जगह हुए कोई प्रदर्शन का पुराना वीडियो इसे नया एंगल देकर इसे अब वायरल तो नहीं किया जा रहा है।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच की। हमने सबसे पहले वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें पता लगा कि इसे कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दिसंबर 2025 में शेयर किया था। ऐसे ही एक पोस्ट के मुताबिक वीडियो में बुर्का पहने दिख रही लड़की का नाम शबनम शेख है। दरअसल शबनम शेख महाराष्ट्र की एक इन्फ्लुएंसर है। साल 2024 में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मुंबई से पैदल चलकर अयोध्या पहुंची थी। उस वक्त उन्होंने मीडिया को बताया था कि वो भगवान राम की भक्त हैं और खुद को सनातनी मुस्लिम कहती हैं। वीडियो के बारे में थोड़ा और खोजबीन करने पर ये हमें एक इंस्टाग्राम यूजर के 23 दिसंबर की पोस्ट में मिला जहां वायरल वीडियो में म्यूजिक चल रहा है। अकाउंट पर मौजूद वीडियो में लोगों की बातचीत सुनी जा सकती है। इसमें शबनम कहती हैं बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति पर ईश निंदा का झूठा आरोप लगाकर उसकी बेहद निर्मम तरीके से हत्या की गई है। वीडियो में ये भी नजर आ रहा है कि सभी लोग बांग्लादेश के झंडे और वहाँ की तत्कालीन अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के पोस्टर फाड़ते हैं और फिर उसमें आग लगा देते हैं। एक इंस्टाग्राम यूजर ने इस वीडियो में म्यूजिक लगाकर इसे 21 दिसंबर को भी शेयर किया था। दरअसल पिछले साल 18 दिसंबर को बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू युवक पर ईश निंदा का आरोप लगाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। वीडियो के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए फैक्ट चेक टीम ने मुंबई के नाला सोपारा इलाके में रहने वाली शबनम शेख से संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने हमें बताया कि ये वीडियो मुंबई के नाला सोपारा धनुबाग इलाके का है और प्रदर्शन में मौजूद लोग उनके दोस्त हैं। ये प्रदर्शन उन्होंने दीपूदास की हत्या पर विरोध जताने के लिए किया था। साफ है ये महाराष्ट्र के मुंबई का वीडियो है जहां शबनम शेख नाम की इन्फ्लुएंसर और उसके दोस्त बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या का विरोध कर रहे थे। इसका बंगाल से कोई लेना देना नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए फिलहाल फैक्ट चेक में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड में क्या कुछ हो रहा है। बने रहिए हमारे साथ, फौरन हाजिर होंगे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: Every day, too many lives in the construction industry are lost to suicide. But together, we can change that. Join the American Foundation for Suicide Prevention for the Ohio Construction Hike for Hope on May 17th at Sharon Woods in Columbus, a powerful event bringing people together to raise awareness, support one another, and save lives. Walk alongside coworkers, friends, and families, and help break the silence around mental health in construction. Register or donate today at supporting.afsp.org/ohconstruction. Together, we can build hope.
4: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
5: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
7: परख कर परोसना, हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: तो चलिए वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।
13: मेरा बच्चा मुझसे दूर है और मेरे दिमाग की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि बता नहीं सकती। ये टमाटर देख।
14: बेटे के हॉस्टल जाने के बाद एक माँ का दर्द सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर रहा है। इस क्लिप को इंस्टा पर प्रतिभा राय नाम की एक महिला ने शेयर किया। उनका बेटा हाल ही में पढ़ाई के लिए हॉस्टल चला गया। बेटे के घर से दूर जाने के बाद माँ की जिंदगी किस तरह बदल जाती है, ये वीडियो उसी भावना को बेहद सच्चाई के साथ दिखाता है। वीडियो के शुरुआत में प्रतिभा अपने फ्रिज को खोलती है। फ्रिज के अंदर टमाटरों से भरे कई पैकेट दिखाई देते हैं। वो कैमरे के सामने बेहद भावुक आवाज में कहती हैं कि कोई भी घर संभालने वाली महिला आखिर इतने सारे टमाटर क्यों खरीदे। फिर वो खुद बताती है कि बेटे के जाने के बाद उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, वो सामान जरूरत से ज्यादा खरीद लाई हैं और उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं।
13: ये टमाटर देख रहे हो, कितने सारे टमाटर इकट्ठे हो गए। क्या कभी कोई घर संभालने वाली औरत बेफालतू में इतने टमाटर इकट्ठे करती है? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा।
14: उनकी आवाज में दर्द साफ सुनाई देता है और ऐसा महसूस होता है कि बेटे की कमी उन्हें अंदर तक तोड़ रही है। जिन चीजों में पहले बिजी रहती थी, अब वही काम उन्हें बोझ जैसे लग रहा है। माँ की जिंदगी अक्सर बच्चों के आसपास ही घूमती है। जब बच्चे अचानक घर से दूर चले जाते हैं तो माँ के लिए उस खालीपन को स्वीकार करना आसान नहीं होता। यह एहसास इस वीडियो में देखने को मिलता है।
13: ये टमाटर देख रहे हो, कितने सारे टमाटर इकट्ठे हो गए। क्या कभी कोई घर संभालने वाली औरत बेफालतू में इतने टमाटर इकट्ठे करती है? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। आज फ्रिज खोल के देख, टमाटर में टमाटर इकट्ठे हो रहे घर में। पागल से ज्यादा ना हो जाओ, मैं अपने दिल की बात किससे बोलूं? ये हो गई मेरे दिमाग की हालत।
14: सोशल मीडिया पर इन दिनों दो छोटे बच्चों का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये नन्हे कलाकार अपने शानदार कलाकारी और एक्रोबैटिक स्किल्स से हर किसी को हैरान कर रहे हैं। इतनी कम उम्र में इन बच्चों का संतुलन और ताकत देख लोग दंग रह गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों बच्चे खुले मैदान में बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट्स के शानदार करतब दिखा रहे हैं। एक बच्चा दूसरे के कंधों पर खड़ा हो जाता है, फिर हाथों के बल संतुलन बनाकर अलग अलग पोज दिखाता है। दोनों मिलकर ह्यूमन पिरामिड फ्लिप्स और बैलेंस जैसे कठिन स्टंट बहुत ही आसानी से कर ले रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर कर्नाटक के एक बच्चे ओम एन की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल इस बच्चे ने अपने हुनर से बड़ों को हैरान कर दिया। ओम ने दीवार के सहारे सिर के बल खड़े होकर यानी शीर्षासन मुद्रा में बेहद कठिन माने जाने वाले शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ किया। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर नेटिजन्स दंग रह गए। सिर्फ 8 साल की उम्र में ओम ने पूरे स्त्रोत को मात्र 3 मिनट 47 सेकंड में पूरा कर लिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिर के बल खड़े होकर संस्कृत के मंत्रों का इतना तेज और शुद्ध उच्चारण करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए सांसों पर जबरदस्त काबू और शरीर का संतुलन चाहिए। कर्नाटक के सिरसी के रहने वाले ओम की इस उपलब्धि को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। बस गुनगुनाना सीखा है, लेकिन गा रहे हैं पूरी तरह डूबकर। देखिए जरा अंदाज इनका, लगता है मंदिर से सब उठा लाए हैं, शिवलिंग दिया सब, और अब यहाँ प्रार्थना हो रही है इनकी, पर उस तरह नहीं जैसे आप और हम करते हैं, बिल्कुल अपने अंदाज में, मानो ये भगवान नहीं इनका सबसे प्यारा खिलौना हो। जो भी हो, बच्चे का भजन गुनगुनाना लोगों को पसंद आ रहा है। जिस बहन ने बाप की तरह भाइयों को संभाला, आज उन भाइयों ने भी अपना फर्ज कुछ ऐसे निभाया कि पूरी दुनिया रो पड़ी। लुधियाना के अमर देवगन और देव देवगन ने अपनी बहन मनप्रीत कौर वृद्धि के लिए कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा हर जुबान पर है। दरअसल साल 2007 में पिता के गुजर जाने के बाद मनप्रीत ने चट्टान की तरह खड़े होकर अपने भाइयों और परिवार को संभाला था। भाइयों के दिल में बहन के इस निस्वार्थ प्रेम के लिए जो इज्जत थी, वो 50 लाख के इस आलिशान घर की शक्ल में बाहर आई। वायरल वीडियो के मुताबिक दोनों भाई पिछले 5 साल से चुपचाप इस सरप्राइज की तैयारी कर रहे थे, ताकि अपनी बहन को दुनिया की हर खुशी दे सके।
15: नाम
14: सरप्राइज का मंजर किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। एक धार्मिक कार्यक्रम के बहाने ढोल नगाड़ों के साथ पूरे परिवार को लुधियाना के कोट मंगल सिंह इलाके में ले जाया गया। वहाँ 175 गज में बने नए घर के सामने जैसे ही भाइयों ने नेम प्लेट से कागज हटाया और उस पर बहन मनप्रीत का नाम चमकता दिखा तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। अपनी आंखों के सामने अपना खुद का घर देखकर मनप्रीत अपने जज्बात काबू नहीं कर पाई और भाइयों के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो की शुरुआत में एक लड़का नजर आता है जिसका वजन 80 किलो है। वो कैमरे के सामने अपनी टी शर्ट उठाकर अपना थुलथुला पेट दिखाता है, जिसे देखकर कोई भी कह दे कि ये बंदा अनफिट है। इसके बाद वो एक पार्क में पहुंचता है जहां कुछ फिट लड़के चिनअप्स कर रहे होते हैं। वो उनके बीच जाकर मजे लेते हुए कहता है कि वो भी एक्सरसाइज करना चाहता है। लड़की की बात सुनकर वहां कसरत कर रहा एक युवक हंसने लगता है और स्टाइल मारते हुए लड़के के पेट को थपथपाता है, मानो कह रहा हो भाई तुझसे ना हो पाएगा। इसके बाद वो उसे चुनौती देते हुए कहता है चल अब ये करके दिखा। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। लड़का अपना भारी भरकम बैग उस अकड़ दिखाने वाले युवक को थमाता है। बैग इतना वजनदार होता है कि पकड़ते ही वो युवक सीधा जमीन से जा सटता है। वो हैरान रह जाता है कि आखिर ये लड़का इतना भारी बोझ कंधे पर लादे कैसे घूम रहा था। अगले ही पल जो हुआ, उसने वहाँ मौजूद सबकी बोलती बंद कर दी। थोड़ी देर पहले जिसे सब अनफिट समझ रहे थे, उसने कैलिस्थेनिक्स के ऐसे दाव पेश दिखाए कि अच्छे अच्छे जिम जाने वालों के पसीने छूट गए। उसकी ताकत देखकर वहाँ मौजूद भीड़ दंग रह गई। कुल मिलाकर जिसे थुलथुला समझा, असल में वो फिटनेस के मामले में सबका बाप निकला। आपने कार तो खूब देखी होंगी, आपने डबल डेकर बस भी शायद देखा होगा, और नहीं देखा है तो फिर आपने सुना तो होगा ही। लेकिन क्या आपने कभी सड़क पर डबल डेकर कार देखा है? जाहिर है कि नहीं देखा होगा, मगर आज देखने को मिल जाएगा। एक शख्स ने एक कार के छत पर दूसरी कार की बॉडी को अच्छे से फिट कर दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद वो अपनी इस डबल डेकर कार में बैठकर निकल भी जाता है। वो कार को चलाता है और ऊपर कुछ लोग बैठे नजर आते हैं। यूजर्स इस वीडियो को देखकर दंग हैं।

0: भारत के गांवों में छिपा टैलेंट कई बार ऐसी तस्वीर दिखा देता है जिसे देखकर बड़े बड़े लोग भी दंग रह जाते हैं। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ ग्रामीण बच्चों की अनोखी देसी कार ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भी हैरान कर दिया। ये कोई महंगी गाड़ी नहीं थी और न ही किसी कंपनी के शोरूम से निकली थी। बच्चों ने अपनी कल्पना और देसी जुगाड़ से ऐसी गाड़ी तैयार कर दी जिसे देखकर सचिन खुद रुक गए और उसका वीडियो बनाने लगे। अब यही वीडियो इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो पहियों के बीच लकड़ी जैसी संरचना लगाई गई थी और एक बच्चा उसके ऊपर बैठा था जबकि दूसरा उसे धक्का देकर आगे बढ़ रहा था। देखने में एक ऐसी छोटी कार जैसी लग रही थी और बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। भूरे रंग के हिमालयी भालू भारत में लुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल है। हमारे देश में ये रेयर प्रजाति लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में देखी जाती है। ये हिमालयी भालू ठंडे इलाके में रहते हैं जिनका रंग सामान्य भालुओं से सुनहरा या हल्का भूरा होता है जिसकी वजह इनका ठंडे माहौल में रहना होता है। इंसानों से दूर रहना पसंद करने वाले इन दुर्लभ भालुओं के एक सड़क पर घूमने की वीडियो वायरल है जिसमें वो सड़क पर उछलते कूदते हुए अपने अंदाज में ही चलते नजर आ रहे हैं। उन्हें दौड़ते हुए देख जहां एक ओर लोगों को मजा आ रहा है वहीं दूसरी ओर लोग लुप्त प्रजातियों को इस तरह सड़क पर देखकर सवाल भी कर रहे हैं। स्वभाव से शर्मीले माने जाने वाले हिमालयी भालू को वायरल वीडियो में सड़क पर दौड़ते हुए देखा जा सकता है। गाड़ी से जा रहा शख्स इन्हें अपने कैमरे में कैप्चर करता हुआ आगे निकल जाता है। इस बीच दोनों ही भालू अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ते हुए नजर आते हैं। सुंदर नजारा, बर्फ से आधे ढके पहाड़ों के बीच हिमालय भालुओं का दौड़ना इस नजारे को एक रेयर मोमेंट बना देता है। क्या आपने कभी किसी बंदर को इंसानों की तरह बाकायदा सैलून में जाकर बाल कटवाते देखा है? कर्नाटक के चामराजनगर से एक ऐसा ही बेहद क्यूट और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ एक बंदर मजे से सैलून की कुर्सी पर बैठा और नाई से अपने बालों की सेटिंग करवाई। इस अनोखे पल को देखकर न सिर्फ वहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए बल्कि अब ये वीडियो इंटरनेट पर भी धूम मचा रहा है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
2: चमक के पीछे एक ऐसा सफर जहां ट्रोलिंग थी, प्रेशर था और साबित करने की जंग। मेंटल हेल्थ का वो सच स्टारडम भी नहीं छुपा पाया। आलिया के फिल्मी सफर की अनटोल्ड स्टोरी बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। Join SRM-ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
4: वट सावित्री पर सुहागिनों ने रखा व्रत, महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर विधि विधान से की बरगद की पूजा, पति की लंबी उम्र की कामना की। आज देश भर में मनाई जा रही है शनिदेव की जयंती, 300 साल बाद बने दुर्लभ संयोग, मंदिरों में सुबह से लगी श्रद्धालुओं की भीड़। चारधाम यात्रा में चरम पर श्रद्धालुओं का उत्साह, तीर्थयात्रियों की संख्या अब 13.5 लाख के पार, केदारनाथ पहुंचे 5,76,000 से ज्यादा भक्त। तमिलनाडु में पोंगल उत्सव को लेकर आयोजनों का दौर जारी, रामनाथपुरम में बैलगाड़ी दौड़ के दौरान दिखा संतुलन, संस्कृति और गति का संगम, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। यूरोविजन 2026 सॉन्ग कॉन्टेस्ट का फाइनल आज, वियना में कई देशों के दिग्गज संगीतकारों के बीच मुकाबला, दुनिया भर के करोड़ों दर्शकों को शो का इंतजार।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। मशहूर शायर निदा फाजिल ने कभी लिखा था, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने को चार किताबें पढ़कर वो भी हम जैसे हो जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं, ये हमारे जैसे नहीं है, बल्कि ये इतने सुपर टैलेंटेड और कमाल के फनकार हैं कि ये हमारे जैसे नहीं, बल्कि आप और हम इनके जैसे होना चाहेंगे। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा साउंड करता है, क्यों? चलिए आपको दिखा देते हैं।

0: ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उम्र है 2, संस्कृत जोरदार। उम्र है 2, संस्कृत जोरदार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, स्पेस एक्सपर्ट हैं, उम्र है 4।
1: स्मॉल प्लैनेट इसो सैटर्न हैव ब्यूटीफुल रिंग्स इसो जुपिटर इज अ बिग प्लैनेट।
0: ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 2 साल के गूगल नॉलेज शानदार।
2: परशुराम कौन से अवतार हैं विष्णु भगवान के?
3: छठे अवतार।
0: ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 7 की उम्र में पार्क स्ट्रेट तैर कर

ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 14 की उम्र, 44 वाद्यों की फनकार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 9 की उम्र में स्विमर जोरदार।

चलिए शुरुआत करते हैं जयपुर की रहने वाली 2 साल की जीनियस के साथ। 2 साल के बच्चे ठीक से बोलना तक नहीं जानते हैं, लेकिन प्रशा उन बच्चों में से नहीं है। 2 साल की प्रशा को 30 से ज्यादा संस्कृत के श्लोक और मंत्र आते हैं, अंग्रेजी के अल्फाबेट्स 1 से लेकर 100 तक गिनती, सूर्य नमस्कार और भी ना जाने क्या क्या जानते हैं और क्या क्या करती है ये छोटी सी गुड़िया।

0: सुनाओ। जोर से बोले ऐसे करके कंधे पे ऐसे ऐसे ही रखे हो अच्छे से। ओम नमः शिवाय। आईज क्लोज करके
1: ओम नमः शिवाय।
2: ओम क्या कम यामे छो गदीम पट्टी वाला कोई बार में बनाया मैं की मूर्ति माता है।
3: जो ऋषियों ने समझी मुनियों ने जानी वेदों की वही भाषा पुराणों की वही बानी जयपुर में मौजूद इस घर के आंगन में गूंज उठी।
2: ओम बोल बुआ जय छोटू भैयाम पयो देवते देवा योया पचोलिया।
3: मानो माँ सरस्वती बाल रूप में उतर आई और खेल खेल में अपनी तोतली जुबान में हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता संस्कृति और संस्कारों की कहानियाँ सुना रही हूँ।
2: यारे भी सबूते तू छत्ती वो पैन छत्ती ता नमतते नमतते मनमो नमा।
3: 2 साल की उम्र जब बच्चे ठीक से बोलना भी नहीं सीखते तब तुतलाती जुबान में श्लोक और मंत्रों का ऐसा उच्चारण कि सुनने वाला सुनता रह जाए। जयपुर की रहने वाली 2 साल की प्रिशा आज 30 से ज्यादा मंत्रों और श्लोकों का स्पष्ट उच्चारण कर लेती है। जहाँ बड़े बड़े लोग भी संस्कृत श्लोकों और मंत्रों को सही तरह से उच्चारित नहीं कर पाते वहीं ये नन्ही बच्ची इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड तक पहुँच गई है। अपनी अद्भुत याददाश्त और प्रतिभा के दम पर जयपुर की प्रिशा आज सुपर टैलेंटेड किड कहलाने लगी है।
4: आज के टेक सैवी जमाने में जहाँ हर एक बच्चा फोन या स्क्रीन्स के पीछे भागता है या फिर उससे ज्यादा एडिक्टेड हो जाता है वहीं जयपुर की एक नन्ही सी बच्ची है जिसने महज 2 साल की उम्र में अपने नाम पे इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है और वो नाम सुपर टैलेंटेड किड के नाम से दर्ज हुआ है। ये नन्ही सी बच्ची है जयपुर की प्रिशा जो संस्कृत में 2 साल की उम्र में 30 से ज्यादा श्लोक बोल सकती है।
3: बेटियां यूं भी दुआओं की तरह मिलती हैं। अपनी खिलखिलाहट मासूमियत और खनकती हंसी से घर के कोनों को भिगोती हुई लेकिन गुड़िया रानी अगर प्रिशा जैसी प्रतिभा लेकर पैदा हो तो हैरानी की बात नहीं कि परिवार उसे ईश्वर का उपहार और आशीर्वाद मानता है। प्रिशा के माता पिता का भी कुछ ऐसा ही मानना है।
5: जब इसे ना हम रोज मॉर्निंग प्रेयर करवाते थे जब ये बोलना स्टार्ट नहीं करी थी तो सुनती थी पर एकदम से जब हमने देखा कि एक दिन ये खुद से बोल रही थी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये खुद से बोल सकती है। हमें लगा कि हाँ धीरे धीरे याद करेगी पर ये खुद से बोलने लग गई थी तब हमें रियलाइज हुआ कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है शायद इसमें।
3: सिर्फ 24 महीने की उम्र में प्रिशा को 30 से ज्यादा संस्कृत मंत्र और श्लोक याद है। वो न उनका स्पष्ट उच्चारण करती है बल्कि कई श्लोकों का अर्थ समझने की कोशिश भी करती है। सभी देवी देवताओं को पहचानते हुए उनके बारे में काफी कुछ जानती है। प्रिशा खुद 80 से ज्यादा बॉडी पार्ट्स पहचान सकती है। सारे अल्फाबेट्स और 100 तक गिनती भी प्रिशा को बखूबी याद है। साथ ही ये बच्ची सूर्य नमस्कार कर सकती है हाथों के बल चलने का अभ्यास करती है और अपने से 3 गुना ऊंची ग्रिल पर भी अपने आप चढ़ जाती है। आज यहाँ आम घरों में छोटे बच्चे मोबाइल के बिना खाना नहीं खाते वहाँ प्रिशा का मोबाइल से मानो कोई वास्ता ही नहीं है।
5: इसने कभी फोन नहीं देखा आज तक नहीं कभी नहीं है। मैं अगर सुनाती भी हूँ तो स्पॉटिफाई पे बंद करके तो इसे पता है फोन में सुनना है देखना नहीं है बताती है आइस खराब हो जाती है फोन देखने से और हमको भी नहीं देखने देती। हम भी चला रहे होते तो मम्मा फोन मत देखो आइस खराब हो जाएगी ऐसे बोलती है।
3: प्रिशा की माँ के मुताबिक उनके घर में सुबह की शुरुआत ही भजन और मंत्रों के साथ होती है। शायद यही माहौल धीरे धीरे उनकी बेटी के व्यक्तित्व का हिस्सा बनता जा रहा है और वो ये सब खुशी खुशी सीख रही है। प्रिशा की प्रतिभा और सीखने की ललक वाकई एक मिसाल है। इस नन्ही मुन्ही जीनियस से बच्चे तो क्या बड़े बड़े भी कई सबक सीख सकते हैं। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब रीवा के गूगल बॉय की करते हैं। रीवा का विराज महज 2 साल 11 महीने का है। छोटा सा विराज डिक्शनरी के 5 सबसे लंबे और मुश्किल अंग्रेजी शब्द 16 सेकंड्स में आसानी से सुना सकता है और फटाफट सुना सकता है। इतना ही नहीं, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल आसानी से सबकी पहचान भी कर लेता है। इस नन्हे उस्ताद से दुनिया के एक्सपर्ट्स ने 1150 सवाल पूछे, उसने हर एक सवाल का सही जवाब दिया। है ना कमाल।
6: विष्णु भगवान के कितने अवतार हैं?
7: 10।
6: और परशुराम कौन से अवतार हैं विष्णु भगवान के?
7: छठे अवतार।
6: छठे अवतार। और परशुराम के पास क्या होता है?
3: ये नन्हा चैंपियन अविराज है, जिसे लोग गूगल बॉय के नाम से जानते हैं। ये मध्य प्रदेश में रीवा की धरती पर जन्मा एक चमकता सितारा है, जिसने अपनी अद्भुत प्रतिभा से दुनिया को चौंका दिया है।
6: रावण कहाँ लेके गया था सीता माता को?
7: अशोक वाटिका।
6: अशोक वाटिका कहाँ है?
7: लंका में।
6: और लंका कौन जला दिया था? लंका किसने जलाई थी? हनुमान जी ने। हनुमान जी ने कैसे, जोर से बोलो, हनुमान जी कैसे लंका जलाए थे?
7: अपनी
6: टेल से।
3: इस नन्हे उस्ताद से दुनिया के एक्सपर्ट्स ने 1150 सवाल पूछे, उसने हर एक सवाल का सही जवाब दिया। ये डिक्शनरी के 5 सबसे लंबे खतरनाक अंग्रेजी शब्द 16 सेकंड में फटाफट सुना सकता है। इतना ही नहीं, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल आसानी से सबकी पहचान भी कर सकता है।
6: परशुराम के पास क्या होता है?
7: फरसा।
6: और परशुराम अपने फरसे से किसका टस्क तोड़ दिए थे?
7: गणेश जी का
6: टस्क तोड़ दिए थे। और विष्णु भगवान का पावरफुल वेपन क्या है?
7: सुदर्शन।
3: अविराज अभी 2 साल 11 महीने के हैं। इस उम्र में बच्चे अपना नाम तक ठीक से नहीं बता पाते, मगर मध्य प्रदेश के रीवा में रहने वाला ये नन्हा उस्ताद बाकी बच्चों से जुदा है। लोग इसे रीवा का गूगल बॉय कहते हैं, क्योंकि इसने अपनी मेमोरी और नॉलेज से सभी को हैरान किया हुआ है। इसका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है और शब्द सुनते ही दिमाग में फीड हो जाते हैं। इसी अद्भुत प्रतिभा की वजह से अविराज अभी तक कई रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा चुका है।
6: इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, जीनियस में है, कलाम बुक ऑफ रिकॉर्ड है, और इंटरनेशनल है, इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ रिकॉर्ड है, तो ऐसे करके कई 7-8 रिकॉर्ड्स मतलब है।
3: अविराज को जानवर ही नहीं, कई पक्षियों के नाम भी याद हैं। वो 42 देशों की राजधानी और 36 देशों के झंडे की पहचान कर सकता है। भारत के कई राज्यों की राजधानी उसे जुबानी याद है, जबकि ग्रहों और सोलर सिस्टम की तो उसे पूरी समझ है। वो द्वादश ज्योतिर्लिंग और देवी देवताओं के वाहन तक बता सकता है। शास्त्र और पुराण की उसे अच्छी खासी जानकारी है और भगवान विष्णु के सभी अवतार उसे जुबानी याद हैं।
6: हम तीनों लोग, उसके दादाजी, नाना जी और हम लोग अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, तो वहाँ की कैपिटल से स्टार्ट किया कि छत्तीसगढ़ की क्या है, मध्य प्रदेश की क्या है, हम हैदराबाद में हैं तो तेलंगाना की क्या है, तो वो कैपिटल्स बताए। पीएम कौन है हमारे, तो वो भी उसको या मतलब ठीक से बता पाया वो। फिर उसके बाद वो 3 स्टेट्स से हम 52 कंट्रीज़ की भी बता पाता है, 28 स्टेट्स की भी बता पाता है, यूनियन टेरिटरीज जो हमारी 8 है उनकी भी कैपिटल्स बता पाता है।
3: अब मध्य प्रदेश से उठी ये चमक विदेश तक रोशनी फैला रही है। ये कहानी सिर्फ अविराज की नहीं है, बल्कि नए भारत के आत्मविश्वास की कहानी है। रीवा से विजय कुमार विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अब बात ग्रेटर नोएडा के लिटिल जीनियस की, जिसके टैलेंट की चमक ने आज उसे स्टार बना दिया है। 4 साल का रुद्र राणा सोलर सिस्टम के हर ग्रह और उपग्रह की जानकारी रखता है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की बदौलत रुद्र का नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है।
2: Beautiful rings. This is a Pegasus, big planet. This is Mercury, so small planet.
3: 4 साल का रुद्र, जिसकी नजरों में छुपा है एक बड़ा आसमान। इस छोटी सी उम्र में वो खेल खेल में बखूबी जानता है ग्रहों और उपग्रहों के नाम। तभी तो रुद्र की प्रतिभा उसकी ग्रहों को लेकर नॉलेज पेरेंट के साथ ही लोगों को हैरान कर रही है। ग्रेटर नोएडा के नन्हे रुद्र राणा ने सोलर सिस्टम की जानकारी से एक रिकॉर्ड बनाया है। इतनी कम उम्र में रुद्र न केवल ग्रहों के नाम बल्कि उनकी विशेषताएं भी बेहद आसानी से बता रहे हैं। रुद्र अभी ABCD भी ठीक से लिख नहीं पाते, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रहों के रंग, उनके आकार की जानकारी को महज 1 मिनट 5 सेकंड में बता देते हैं, जो एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड है। रुद्र की माँ बताती हैं कि कुछ महीने पहले ही यूट्यूब किड्स को देखते हुए रुद्र का ग्रहों के बारे में इंटरेस्ट जागा। वो उनसे बहुत सारे सवाल करता था। ABCD से भले ही अभी रुद्र की दोस्ती नहीं हुई है, लेकिन ग्रहों के साथ मास्टर रुद्र का तालमेल बड़ा दिलचस्प है, जिसे बनाए रखने में रुद्र की माँ का बड़ा रोल रहा। जब बेटा पढ़ने की उम्र तक आया, ऐसे में बच्चे को शुरुआती पढ़ाई से रूबरू करवाने, उसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए ही रुद्र की माँ ने जॉब छोड़ी। लेकिन नौकरी का सेक्रीफाइस कुछ ऐसे रंग लाएगा, ये ज्योति ने नहीं सोचा था। वहीं इतनी कम उम्र में अपने बेटे की याददाश्त, समझ और ऐसी असामान्य उपलब्धि देख पिता भी गर्व महसूस कर रहे हैं। जाहिर है रुद्र की उम्र भले ही 4 साल की अभी प्यारी है, लेकिन उसकी काबिलियत लोगों के लिए सबसे न्यारी है। तभी तो रुद्र के पेरेंट ने अपने बेटे की इस असामान्य उपलब्धि को लेकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। मगर वो इस बात का ख्याल जरूर रख रहे हैं कि उनके बेटे पर रिकॉर्ड या किसी और चीज का कोई दबाव ना हो और वो भी सामान्य बच्चों की तरह अपने बचपन को खुलकर जिए।

0: ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। संगीत के साथ ये गहरा रिश्ता अब एक विश्व कीर्तिमान के साथ पूरी दुनिया में नियति का नाम रोशन कर रहा है। सिर्फ 14 साल की उम्र में नियति ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। महज एक मिनट में 74 वाद्य यंत्रों को पहचान कर नियति ने इतिहास रच दिया। लेकिन नियति का हुनर सिर्फ वाद्य यंत्रों को पहचानने तक सीमित नहीं है। इस छोटी सी उम्र में ही नियति 44 वाद्य यंत्र बजा लेती है। पियानो, ड्रम, तबला, बांसुरी, गिटार, हारमोनियम जैसे कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर नियति की कमाल की पकड़ है। नियति को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनकी मां ने हर कदम पर उनका सहयोग किया। संगीत के प्रति नियति के लगाव को उन्होंने बहुत कम उम्र में पहचान लिया था। नियति जब महज 6 महीने की थी तभी मां ने कीबोर्ड और जाइलोफोन से नियति को रूबरू कराया। 4 साल की उम्र में नियति ने काबिलियत हासिल कर ली। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से पहले भी नियति कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। चौबीस में नियति ने आंखों पर पट्टी बांधकर पियानो पर शिव तांडव स्त्रोत बजाया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बनाई। 2023 में नियति ने 65 सेकंड में 15 वाद्य यंत्रों पर राष्ट्रगान बजाया। इस उपलब्धि पर उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। संगीत के साथ नियति साउंड इंजीनियरिंग, म्यूजिक कंपोजिशन, एनिमेशन और रैप क्रिएशन में भी माहिर है। हिंदी और अंग्रेजी में कविता और गीत लिखने वाली नियति को अब तक 17 देशों में सम्मान मिल चुका है। संगीत में रुचि के साथ ही नियति पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रही है। बचपन में एक छोटे से खिलौने के साथ शुरू हुआ संगीत का ये सफर आज नियति को दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंचा चुका है और उनकी ये कामयाबी आज की नई पीढ़ी के लिए एक नई मिसाल बन गई है। मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में आज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई

0: सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: देश भर में मनाई जा रही है शनिदेव की जयंती। आज के दिन दर्शन पर मिलता है विशेष वरदान। वाराणसी के संकट हरण शनिदेव महाराज मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की कतार। वट सावित्री पर सुहागिनों ने रखा व्रत। महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर विधि विधान से की बरगद की पूजा। पति की लंबी उम्र की कामना की। चार धाम यात्रा में चरम पर श्रद्धालुओं का उत्साह। तीर्थयात्रियों की संख्या अब 13.5 लाख के पार। केदारनाथ पहुंचे 5,76,000 से ज्यादा भक्त। देश में पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर शानदार खबर आई सामने। अब भारत के पास हर वक्त होगा 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल। यूएई के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की ऐतिहासिक डील। यूरोविजन 2026 सॉन्ग कॉन्टेस्ट का फाइनल आज वियना में। कई देशों के दिग्गज संगीतकारों के बीच होगा मुकाबला। दुनिया भर के करोड़ों दर्शकों को शो का इंतजार।
2: NECC, संडे हो या मंडे, रोज खावंडे।
4: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे शनि देव के कृपा की। शनि देव की कृपा पाने के लिए और शनि से संबंधित पीड़ा को दूर करने के लिए आप किन वस्तुओं का प्रयोग कैसे करें कि आपको लाभ हो, इस विषय में बात करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि वर्तमान समय में शनि देव की स्थिति आपके जीवन में कैसी है और इस समय शनि से संबंधित कौन से उपाय करने से आपको लाभ होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ओम शं अभय हस्ताय नमः। ओम शं अभय हस्ताय नमः। अगर शनि की वजह से जीवन की मुश्किलें बहुत ज्यादा हों या जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा हो रहा हो तो इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करना चाहिए। इस मंत्र का जप करने से शनि देव जीवन में अभय प्रदान करते हैं। शनि की पीड़ा से, शनि के कष्ट से और शनि द्वारा दिए गए संघर्ष से छुटकारा मिलता है। हम आपको बता रहे हैं शनि देव की अलग अलग वस्तुओं के बारे में जिनका प्रयोग करके आप अपनी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। पहली जो वस्तु है वो है लोहे का छल्ला, आयरन की रिंग। क्या महत्व है इसका? देखिए, शनि की पीड़ा को समाप्त करने के लिए, शनि संबंधी मुश्किलों को दूर करने के लिए लोहे का छल्ला धारण किया जाता है। ये सामान्य लोहे का भी होता है, लेकिन अगर ये छल्ला घोड़े की नाल के लोहे से बना हो या नाव की कील से बना हो तो ज्यादा लाभकारी होता है। यानी आप घोड़े की नाल के लोहे से या नाव की कील के लोहे से छल्ला बनवा सकते हैं। इसको धारण करने के लिए जो अंगूठी बनाई जाती है उसे काट कर पीट कर बनाया जाता है, उसको आग में नहीं तपाया जाता। घोड़े की नाल का बना हुआ छल्ला हो, नाव की कील का बना हुआ छल्ला हो, काट कर पीट कर उसको बनाते हैं और उसको आग में नहीं तपाते हैं। शनिवार को इसको धारण किया जाता है। शनिवार की शाम को इसको एक कटोरी में सरसों का तेल ले करके उसमें थोड़ी देर रख दें और फिर जल से धो करके शनिदेव का नाम ले करके दाहिने हाथ की राइट हैंड की मध्यमा अंगुली में पहने या लेफ्ट हैंड की मध्यमा अंगुली में पहन सकते हैं। अगर शनि की वजह से आपको शारीरिक पीड़ा है, शरीर में कष्ट है, शरीर में तकलीफ है या आपकी कुंडली में दुर्घटनाओं के योग बने हुए हैं, तब इस लोहे के छल्ले को धारण करना बहुत शुभ होता है। लोहे का छल्ला हर उस व्यक्ति को धारण करना चाहिए जिसके जीवन में शनि की वजह से सेहत की दिक्कतें हैं या जिसके जीवन में लगातार संघर्ष है और जिसको जीवन में अपने संघर्ष के बावजूद सफलता नहीं मिल पा रही है। शनि से संबंधित दूसरी चीज है सरसों का तेल। शनि देव के लिए सरसों के तेल का दान करना और सरसों के तेल का प्रयोग करना काफी अनुकूल, काफी बेहतर परिणाम जीवन में देता है। शनि की वजह से अगर आपको जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है, आपके जीवन में सब कुछ रुक गया है, नौकरी में जहां थे वहीं हैं, कोई प्रमोशन नहीं, कोई इंक्रीमेंट नहीं, व्यापार कर रहे हैं, कोई उन्नति नहीं, कोई तरक्की नहीं, अगर सब कुछ रुक गया है, जीवन में कोई सफलता नहीं मिल पा रही है, तो सरसों के तेल का विशेष प्रयोग करना चाहिए। शनिवार को सुबह के समय एक लोहे की कटोरी में या एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें एक रुपए का सिक्का डालिए। इसके बाद उस तेल में अपनी परछाई, अपनी छाया देखिए और इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिए या पीपल के वृक्ष के नीचे रख आइए। इसको कहा जाता है छाया दान करना। साल में एक बार छाया दान हर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। अगर जीवन में उन्नति नहीं हो पा रही है, जीवन का डेवलपमेंट अगर रुका हुआ है और आपके तमाम प्रयासों के बावजूद आप अपने काम में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो छाया दान साल में एक बार करना चाहिए। अगर आप छाया दान साल में एक बार करें, शनि जयंती पर कर दें या किसी भी अमावस्या पर कर दें, तो शनि की वजह से जो जीवन में ब्लॉकेज है, जो जीवन में रुकावट है, वो रुकावट दूर हो जाएगी। जब शनि के लिए हम किसी वस्तु की बात करते हैं, दान की बात करते हैं, तो ज्यादातर हम बात करते हैं काली उड़द की दाल का दान करने के लिए या काले तिल का दान करने के लिए। क्या महत्व है इसका? शनि की वजह से अगर जीवन में आर्थिक समस्याएं हो रही हों या धन का अभाव हो रहा हो, धन की उन्नति नहीं हो पा रही हो, फाइनेंशियल मुश्किलें हो जीवन में, तो काली उड़द की दाल या काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। यानी अगर शनि की वजह से या अन्य किसी कारण से जीवन में धन का अभाव है, धन की कठिनाई है या धन के लिए संघर्ष है, तो काली उड़द की दाल का या काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। क्या करेंगे? शनिवार को शाम को 1.25 किलो काली उड़द की दाल या 1.25 किलो काला तिल किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिएगा। कम से कम 5 शनिवार को ये दान करिए। किसी भी शनिवार को शुरू करके 5 शनिवार को ये दान करिएगा। जैसे जैसे आप ये दान करते जाएंगे, आपकी आर्थिक समस्याएं, आपके पैसे रुपए की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो अगर धन संबंधी समस्या है, पैसे रुपए की तकलीफ है, पैसे रुपए की कठिनाई है, तो काली उड़द की दाल का दान करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। और अगर आपके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि आप 1.25 किलो उड़द की दाल का दान कर सकें, तो एक मुट्ठी या जरा सी काली उड़द की दाल का दान करिएगा या उड़द की दाल के कुछ दाने ले जाके पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, 5 शनिवार को ऐसा करते हैं, आपकी धन संबंधी मुश्किलें, आपके पैसे रुपए की कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। शनिदेव के लिए एक चीज का और दान किया जाता है या उसका संबंध शनिदेव से जोड़ा जाता है, वो है लोहे के बर्तन। जैसे लोहे का तवा, लोहे की कड़ाही, लोहे का चिमटा, इसका क्या प्रयोग है? देखिए, शनि देव के लिए बहुत सारी चीजों का दान किया जाता है। काला कपड़ा, काली उड़द की दाल, सरसों का तेल, काला जूता। उसमें एक और दान है, खाना बनाने के लोहे के बर्तन, इनका विशेष महत्व है। कुछ जगहों पर ऐसा कहा जाता है कि लोहे के बर्तन के अलावा आप स्टील के बर्तन का प्रयोग या दान कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में दुर्घटनाओं के योग हैं, दुर्घटनाओं के प्रबल योग अगर आपकी कुंडली में बने हुए हैं या आपके साथ बार बार दुर्घटना हो रही है, आप बाल बाल बच जा रहे हैं या बार बार चोट के शिकार हो रहे हैं, या हर 2 साल पे, हर 3 साल पे एक बार आपका ऑपरेशन होने लगता है, तो खाना बनाने के लोहे के बर्तनों का दान करना चाहिए। दुर्घटना की प्रबल संभावना है, शनि मंगल का संबंध बना हुआ है, शनि की दशा या मंगल की दशा चल रही है और दुर्घटनाओं के प्रचंड योग बने हुए हैं, तब भी आप चिंता मत करिए। शनिवार की शाम को किसी निर्धन व्यक्ति को लोहे का तवा, कराही या लोहे के बर्तन का दान करिएगा। ऐसा करने से दुर्घटना के योग टल जाएंगे। ऐसा भी देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चला आ रहा है और उसकी बीमारी समाप्त नहीं हो रही है, तो उसके हाथ से स्पर्श करा करके लोहे के बर्तन किसी निर्धन व्यक्ति को दान करने चाहिए और ये दान किसी भी शनिवार की शाम को आप कर सकते हैं। अब शनि की एक और चीज है जिसका शनि के साथ सीधा संबंध जोड़ा जाता है और वो चीज है घोड़े की नाल। घोड़े की नाल का शनि के लिए अत्यंत महत्व होता है और घोड़े की नाल का अगर आप सही प्रयोग जान जाएं तो शनि संबंधी किसी भी बाधा को आप दूर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, उसी घोड़े की नाल का प्रयोग करिए जो घोड़े के पैर में पहले से लगी रही हो और जो घोड़े के लगातार चलने से घिस गई हो। जब घोड़ा नाल पहन करके सड़क पर चलता है तो नाल जमीन से रगड़ खाती है और जब जमीन से रगड़ खाती है तो उसके अंदर एक चुंबकीय प्रभाव, एक मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है और सारा खेल इसी मैग्नेटिक इफेक्ट का है। घोड़े के पैर में लगी हुई नाल जितनी पुरानी होगी, जितनी ज्यादा घिसी हुई होगी, उतना ज्यादा अच्छा होगा। एकदम नई खरीदी गई नाल जो इस्तेमाल ना की गई हो कभी भी, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। नाल पुरानी हो, घिसी हुई हो, तो उससे फायदा ज्यादा और जल्दी होता है। कैसे प्रयोग करेंगे? घोड़े की एक घिसी हुई पुरानी नाल शुक्रवार को ले आइए, सरसों के तेल चारों तरफ इसके लगाइए, सरसों के तेल से धो लीजिए, फिर जल से धोकर रख दीजिए। शनिवार की शाम को घर के मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर, यू के आकार की तरह लगा दें, मुख्य द्वार के ऊपर बीचों बीच में। ऐसा करने से घर के सभी लोगों पर शनि की कृपा बनी रहेगी और घर में कलह कलेश नहीं होगा। जिन घरों में अशांति ज्यादा है, जिन घरों में बीमारियां ज्यादा हैं, पैसा आता तो है लेकिन घर में अशांति इतनी है कि सब कुछ होने के बावजूद सुख और चैन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में घोड़े की एक घिसी हुई नाल शुद्ध करके घर के मेन डोर पर लगानी चाहिए। अब शनि से कुछ और चीजों का भी संबंध है, जैसे काले कपड़े और काले जूते। ज्योतिष में काला रंग शनि का रंग माना गया है। कुछ जगहों पर ऐसा कहा जाता है कि शुभ शनि का रंग नीला है और अशुभ शनि का रंग काला है, जबकि वास्तव में काला रंग शनि देव का है और नीला रंग राहु का है। तो काले कपड़े और काले जूते का प्रयोग कैसे करें? अगर आपको स्वास्थ्य की गंभीर समस्या हो, स्वास्थ्य आपका बहुत ज्यादा गड़बड़ हो और आपकी बीमारी नहीं जा रही हो, बीमारी से आपको छुटकारा नहीं मिल रहा हो, तो पहनने की, धारण करने की काली चीजें दान करना चाहिए। आपकी बीमारी से छुटकारे के लिए, जल्दी मुक्ति के लिए, करियर में विशेष उन्नति करने के लिए शनिवार की शाम को किसी निर्धन व्यक्ति को काले कपड़े का और काले जूतों का दान करिएगा। और जब आप किसी गरीब आदमी को काले कपड़े का या काले जूते का दान करते हैं, तो उस निर्धन व्यक्ति से आशीर्वाद लीजिएगा। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें, कम से कम 3 शनिवार ऐसा करिए, कभी काला कपड़ा दे दिया, कभी काला जूता दे दिया, कभी काली बेल्ट दे दी, 3 शनिवार ऐसा कर लें, आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर होने लगेगा। और साल में एक बार शनि जयंती का मौका आता है, अपने बड़े से बड़े स्वास्थ्य की समस्या को ठीक करने के लिए काले जूते या काले कपड़े का दान एक बार साल में शनि जयंती पर जरूर करना चाहिए। जब हम शनि देव की पूजा करते हैं तो सामान्यतः ये बात कहते हैं, ये नियम बताते हैं कि पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। पीपल के वृक्ष का शनिदेव से क्या संबंध है? देखिए, पीपल के वृक्ष को शनिदेव का प्रतीक माना जाता है। पीपल का वृक्ष शनि देव का प्रतीक है और ऐसी मान्यता है कि पीपल के पौधे लगाने से और पीपल के वृक्ष की पूजा करने से शनि की पीड़ा कम हो जाती है। कभी भी पीपल के वृक्ष के पास गंदगी नहीं करनी चाहिए और भूल कर भी पीपल के पेड़ को मत काटिएगा। अगर आप पीपल का पेड़ काटेंगे तो संतान बाधा आपके जीवन में आ सकती है। अगर संतान होने में आपको बाधा आ रही है, अगर संतान होने में आपको दिक्कत आ रही है, तो पीपल का 1, 2, 3 जितना संभव हो पौधा लगाना चाहिए या लगवाना चाहिए। पीपल का पौधा अगर आप लगवाएं सार्वजनिक स्थान पर, अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी देखभाल करें, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जो लोग हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और वृक्ष की 7 बार या 19 बार परिक्रमा करते हैं या 11 बार परिक्रमा करते हैं, शनि की 7.5 और ढैया का ज्यादा प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है। इसका दूसरा मतलब यह है कि अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही है, अगर आपकी शनि की ढैया चल रही है, तो हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद वृक्ष की 7 बार, 11 बार या 19 बार अगर आप परिक्रमा करें तो आपके लिए शुभ होगा। देखिए, हर ग्रह का एक रत्न होता है और उस रत्न को धारण करने से ग्रह के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है या आपके जीवन में वो ग्रह एक्टिव हो जाता है। शनि देव का जो रत्न है उसका नाम है नीलम। क्या विशेषता है इसकी? देखिए, नीलम शनि का प्रधान रत्न है और देखा गया है कि जब आप नीलम का प्रयोग करते हैं तो इसका प्रभाव तत्काल होता है, इसका इम्पैक्ट तुरंत आता है। अगर ये नुकसान करे तो 24 घंटे में आपको भयंकर नुकसान कर सकता है। इसीलिए लोग नीलम धारण करने से डरते हैं। अगर शनि आपकी कुंडली में फेवरेबल हो, अनुकूल हो और जीवन में आप तेजी से उन्नति करना चाहते हैं तो नीलम धारण करना अच्छा होगा। लेकिन नियम ये कहता है कि नीलम धारण करने के पहले नीलम की जांच कर लेनी चाहिए, अपनी कुंडली अच्छी तरह से दिखा लेनी चाहिए। उसके बाद जब आप नीलम धारण करते हैं तब आपको फायदा ज्यादा होता है। बिना सोचे विचारे केवल शौक में आकर या केवल फैशन के लिए नीलम धारण मत करिएगा। नीलम शनिवार को रात में लोहे या चांदी की अंगूठी में मिडिल फिंगर में मध्यमा अंगुली में धारण करना चाहिए। नीलम जितना ज्यादा नीला होगा उतना ही ज्यादा उत्तम होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ ये बात याद रखिए कि कभी कभी कुछ नीलम में लाल रंग के बिंदु होते हैं, लाल रंग का पॉइंट होता है, जिस नीलम को खूनी नीलम कहा जाता है। तो जिस नीलम में लाल बिंदु हो, जो खूनी नीलम हो, उसको कदापि धारण मत करिएगा। फिर से बता दूं कि विशेष सलाह मिलने पर और बहुत सोच समझकर जीवन में नीलम धारण करना चाहिए। बिना सोचे समझे, बिना कुंडली की जांच कराए नीलम धारण करना किसी हाल में शुभ नहीं होता। तो हमने आपको बताया शनि देव की अलग अलग वस्तुओं के बारे में और उनका प्रयोग करके आप कैसे लाभ उठा सकते हैं इस बारे में। अब आपको बताते हैं कि जो 12 राशियां हैं, अलग अलग राशियों के लिए शनि देव की स्थिति इस समय कैसी है और इस समय अलग अलग राशि के लोगों को कौन सा उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के जो लोग हैं उनके वर्तमान हाल क्या हैं और उन्हें क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, मेष राशि पर शनि देव की 7.5 का पहला चरण चल रहा है, तो इस समय मेष वालों पर शनि के कारण दबाव यानी प्रेशर बना हुआ है, प्रेशर बहुत ज्यादा है। करियर के मामले और धन के मामले आपको परेशान कर सकते हैं। इस समय जैसा करियर चल रहा है चलने दीजिए, किसी तरह का बड़ा रिस्क या बड़ा जोखिम मत लीजिए। इस समय आपको एक उपाय निरंतर करना चाहिए ताकि शनि देव की कृपा आपको मिल सके, और वो उपाय है हर शनिवार शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। शनि की वजह से जीवन में जो पीड़ा है, जो मुश्किल है, वो दूर हो जाएगी। वृषभ राशि, शनि आपके लिए इस समय विशेष अनुकूल हैं। शनि देव की विशेष कृपा वृषभ राशि वालों पर इस समय बनी हुई है। आपके पैसे रुपए के हालात में, आपके करियर के हालात में लगातार सुधार होगा, आपको सफलता मिलेगी। थोड़ी मेहनत बढ़ाएंगे तो ज्यादा लाभ होने की संभावना बन जाएगी। क्या उपाय करेंगे? वृषभ राशि के लोग इस समय रोज शाम को शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें तो बहुत बेहतर होगा। मिथुन राशि, शनि की जो स्थिति है या शनि के जो हालात हैं आपके जीवन में वो मिक्स हैं। मिले जुले हैं, कुछ मामलों में अच्छे हैं, कुछ मामलों में गड़बड़ हैं। जैसे इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है और इसी समय आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, इस समय आपको संपत्ति का लाभ भी हो सकता है। तो शनि की जो स्थिति है वो आपके लिए मिश्रित है, कुछ मामलों में बेहतर और कुछ मामलों में निगेटिव है। मिथुन राशि के लोग क्या करेंगे, हर शनिवार को आने वाले समय में खाने पीने की वस्तुओं का दान करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और शनिदेव के लिए अगर आप दान करेंगे तो इस समय किसी तरह के प्रेशर से आपको परेशानी नहीं होगी। कर्क राशि, शनिदेव की जो स्थिति है आपके लिए उसको हम एवरेज कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि धीरे धीरे आपकी स्थितियों में सुधार होता दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे आपके मामले, आपकी स्थितियां बेहतर होंगी। रोजगार में थोड़ा प्रेशर तो रहेगा, लेकिन करियर में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है, और अगर कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो परिवर्तन आपके लिए फायदेमंद बना रहेगा। अगर आपकी राशि कर्क राशि है तो शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, हर शनिवार की शाम को आपको लाभ होगा। सिंह राशि, इस समय आपका कठिन समय चल रहा है, शनि की जो स्थिति है इस समय आपके जीवन में कठिनाई दिखा रही है। स्वास्थ्य का और करियर का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि सेहत और करियर के मामले में आपको मुश्किलें हो सकती हैं। तो आपको तो खैर दो सलाह दूंगा मैं, एक तो ये कि घोड़े की नाल का या नाव की कील का बना हुआ छल्ला, मिडिल फिंगर में लोहे का छल्ला पहन लीजिए, और नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करते रहिए ताकि शनि की स्थिति से आपको जीवन में ज्यादा कठिनाई ना हो। कन्या राशि, देखिए कन्या वालों के लिए मामला बहुत बुरा तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी मेहनत करने के बाद कन्या वालों को फल प्राप्त होगा। बिना मेहनत के जिंदगी इस समय नहीं चल पाएगी। संतान को लेकर, परिवार को लेकर आपका तनाव, आपकी चिंता बढ़ सकती है, ये संभावना बन रही है। रोज शाम को शनि मंत्र का जप करना शुरू करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जितना जप करेंगे उतना बेहतर होगा। अब बात करते हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए शनिदेव की स्थिति कैसी है। शनिदेव इस समय आपके लिए बहुत ही फेवरेबल हैं, विशेष अनुकूल बने हुए हैं। इस समय शनि की कृपा से जीवन की तमाम स्थितियों में सुधार होगा। आप ऐसा करिए, शनिवार को खाने पीने की वस्तु का दान करिएगा, आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, शनि की स्थिति मिश्रित है और ये स्थिति ऐसी है कि अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस समय बिना मेहनत के आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार को अगर आप दीपक जलाएं तो निश्चित रूप से आपका समय बेहतर होगा। धनु राशि, आपके लिए लगातार संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। करियर में व्यस्तता बढ़ेगी, नौकरी में व्यापार में कोई बड़ा बदलाव मत करिएगा, कोई रिस्क मत लीजिएगा। रोज शाम को शनि मंत्र का जप ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करते रहिएगा, बेहतर होगा। मकर राशि, शनि देव की कृपा है आपके ऊपर, चीजें लगातार बेहतर होती जा रही हैं और रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे, यानी शनि की कृपा से आपकी सफलता का समय चल रहा है। एक लोहे का छल्ला अगर आप धारण कर लें मिडिल फिंगर में तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कुंभ राशि, शनि की साढ़े साती उतर रही है, परेशान कर रही है आपको। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बेवजह की चिंता मत करें, बेवजह का तनाव ना पालें। इस कठिन समय से निकलने के लिए हर शनिवार को निर्धनों को खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपके लिए बेहतर होगा। मीन राशि, साढ़े साती का मध्य चरण चल रहा है, रिश्ते टूटने की भावनात्मक समस्या इमोशनल प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ध्यान रखें मन की चिंताएं और मानसिक दिक्कतें, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक निरंतर जलाते रहिए, शनि देव की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो गुड लक स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला समय शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
5: ना आदि ना अंत, ताकत है अनंत। देसी तकनीक से तैयार महाशक्ति वाला हथियार, भारत ने बना लिया भविष्य का ब्रह्मास्त्र। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
6: सास बहु और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, रिश्तों में कहीं प्यार है तो कहीं है ड्रामा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 तक सिर्फ सास बहु और बेटिया में।
7: What's Spectrum One? It's internet, Wi-Fi, and mobile working together as one. It's the fastest, most reliable internet to stream and game how you want. It's security you don't have to think about that keeps your family safe online. And it's mobile that runs on the nation's fastest, most reliable 5G network. So you can stay connected wherever life takes you. Spectrum One. It's internet, Wi-Fi, and mobile working together as one. Learn more at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
9: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
10: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
11: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
12: तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे Good News Today पर.
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
16: गुड न्यूज टुडे.
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.

0: चमक के पीछे एक ऐसा सफर जहां ट्रोलिंग थी, प्रेशर था और साबित करने की जंग। मेंटल हेल्थ का वो सच स्टारडम भी नहीं छुपा पाया। आलिया के फिल्मी सफर की अनटोल्ड स्टोरी बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
5: समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9:00।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको इमोशनल भी कर जाएंगे।
2: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग यही कह रहे हैं कि ऐसा नजारा तो अब खत्म हो चुका है, ऐसा तो हमारे जमाने में हुआ करता था। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी साइकिल पर दो बच्चों को बांधकर स्कूल लेकर आया है। आज के समय में कोई इस तरह से अपने बच्चों को स्कूल छोड़

लिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे। वायरल हो रहे इस वीडियो में दो महिलाएं बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए रील शूट कर रही थी। दोनों का आत्मविश्वास देखने लायक था। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, चलने का तरीका और कैमरे के सामने खुद को पेश करने का अंदाज बिल्कुल किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था। एक महिला आगे चल रही थी, जबकि दूसरी उसके पीछे उसी अंदाज में कदम मिलाकर नीचे उतर रही थी। लेकिन तभी अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे वीडियो का माहौल ही बदल दिया। सीढ़ियों से उतरते समय आगे चल रही महिला का अचानक बैलेंस बिगड़ गया। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, उसका पैर फिसल गया और वो लड़खड़ाकर नीचे गिरते गिरते बची। ये पूरा नजारा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया।

सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें पूरा परिवार 36,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन के अंदर बारात निकालता दिखाई दे रहा है। वीडियो में कोई सीट पर चुपचाप बैठा नहीं है, बल्कि म्यूजिक बज रहा है, लोग डांस कर रहे हैं और पूरा माहौल किसी उड़ते हुए वेडिंग फंक्शन जैसा नजर आ रहा है। जिसने भी ये नजारा देखा वो हैरान रह गया। कुछ लोग सीटों के बीच खड़े होकर डांस कर रहे हैं, तो कुछ मोबाइल कैमरे में इस खास पल को रिकॉर्ड करते दिखाई दे रहे हैं।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
2: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: News Today.
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर

0: कितना जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: सास बहू और बेटियां में आज देखिए, सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों में कहीं प्यार है तो कहीं है ड्रामा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: देश भर में मनाई जा रही है शनिदेव की जयंती। आज के दिन दर्शन पर मिलता है विशेष वरदान। वाराणसी के संकट हरण शनिदेव महाराज मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार। वट सावित्री पर सुहागिनों ने रखा व्रत। महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर विधि विधान से की बरगद की पूजा। पति की लंबी उम्र की कामना की। चारधाम यात्रा में चरम पर श्रद्धालुओं का उत्साह। तीर्थयात्रियों की संख्या अब 13.5 लाख के पार। केदारनाथ पहुंचे 5,76,000 से ज्यादा भक्त। पंजाब के होशियारपुर से आई गुड न्यूज। 30 फीट गहरे बोरवेल में गिरे बच्चे का किया गया सफल रेस्क्यू। डिप्टी कमिश्नर और SSP ने संभाली ऑपरेशन की कमान। देश में पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर शानदार खबर आई सामने। अब भारत के पास हर वक्त होगा 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल। UAE के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की ऐतिहासिक डील। यूरोविजन 2026 सॉन्ग कॉन्टेस्ट का फाइनल आज। वियना में कई देशों के दिग्गज संगीतकारों के बीच होगा मुकाबला। दुनिया भर के करोड़ों दर्शकों को शो का इंतजार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
4: आज देश भर में मनाई जा रही है शनिदेव की जयंती। 300 साल बाद बने दुर्लभ संयोग। मंदिरों में सुबह से पहुंच रहे श्रद्धालु। शनिदेव को सरसों का तेल, काले कपड़े और फूल किए जा रहे हैं अर्पित। शनिदेव के लगाए जयकारे। शनि जयंती पर काले तिल, उड़द की दाल, तेल, जूते, कपड़े और लोहे की वस्तुओं का दान का है विशेष महत्व। अकोला में शनि जयंती पर विशेष तैयारी। रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया मंदिर परिसर। शनि जन्मोत्सव पर की गई भगवान की विशेष पूजा अर्चना। मंदिर में एक दिन पहले की गई विशेष आरती। शनि जयंती पे दिल्ली के शनि धाम में दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालु। 23 साल बाद एक ही दिन पड़ी शनि अमावस्या और शनि जयंती। न्याय के देवता शनि देव के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालु। शनि धाम में पूरे विधि विधान से की जा रही है शनि देव की पूजा। शनि धाम में पूरे पारंपरिक विधि विधान से किया जा रहा है शनि देव का अभिषेक। आज के दिन शनि देव के दर्शन और पूजन का विशेष महत्व। वाराणसी में भी पूरी आस्था के साथ मनाई जा रही है शनि जयंती। सुबह से ही शनिदेव के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालु। वाराणसी के मदागिन चौराहे पर स्थित शनिदेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने जलाए सरसों के तेल के दीपक। काले तेल, काले उड़द, नीला पुष्प दीपक भी कर रहे दान। प्रयागराज में आस्था श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है वट सावित्री का त्योहार। सुबह से ही बरगद के पेड़ की परिक्रमा और पूजा करती नजर आई महिलाएं। सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री का व्रत रखकर और 16 श्रृंगार कर बरगद के पेड़ की पूजा की। पति की लंबी उम्र और घर में खुशहाली का मांगा आशीर्वाद। प्रेम और समर्पण का प्रतीक है ये त्योहार। सावित्री ने तपस्या से यमराज को किया था प्रसन्न। मान्यता है कि यमराज ने बरगद के पेड़ के नीचे लौटाए थे सत्यवान के प्राण। दिल्ली में भी पूरी आस्था के साथ मनाया जा रहा है वट सावित्री का त्योहार। व्रती महिलाओं ने बरगद के पेड़ पर पूरे विधि विधान से की पूजा। पूर्वी दिल्ली के मंदिर परिसर में व्रती महिलाओं ने बरगद के पेड़ के तने पर लपेटा कच्चा धागा। महिलाओं ने अपने सुहाग की लंबी उम्र का मांगा आशीर्वाद। में दर्शन के लिए लगातार उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। 27 दिन में लगभग 13.5 लाख श्रद्धालुओं ने की चार धाम यात्रा। केदारनाथ धाम में कल 27,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अब तक 5,76,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे बाबा केदार के धाम। बद्रीनाथ धाम में भी कल 22,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए थे दर्शन पूजन। इस साल अब तक 3,65,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे बद्री विशाल के दरबार। यमुनोत्री में धाम में अब तक 2,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। गंगोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं की संख्या 2,00,000 के पर। चारधाम यात्रा में लगातार बढ़ रही है वाहनों की आवाजाही, श्रद्धालुओं की संख्या में हो रही है बढ़ोतरी। मेवाड़ के श्री सावलिया सेठ मंदिर में आया रिकॉर्ड चढ़ावा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी पर खुल गई दान पेटियां। पहले चरण की गणना में निकले 11,30,00,000 रुपए, 18 मई को होगी अगली गिनती। मंदिर मंडल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुई इसकी गणना। भक्तिमय जयकारों से गूंज उठा मंदिर परिसर। सावलिया सेठ में श्रद्धालुओं की अपार आस्था, भक्तों का मानना है सावलिया सेठ सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। श्री सावलिया सेठ मंदिर में हर महीने आता है करोड़ों का चढ़ावा। देश भर से दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। बिहार के मोतिहारी में बन रहा विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर में नंदी की प्रतिमा होगी स्थापित। विश्व के सबसे बड़े सहस्त्रलिंगम शिवलिंग पर इस साल सावन में श्रद्धालु कर सकेंगे जलाभिषेक।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
5: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
6: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
14: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हल्के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हर्ड। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ, ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: Feeling a bit nostalgic for the 90s? Tune In has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे,
16: ना आदि ना अंत, ताकत है अनंत। देसी तकनीक से तैयार महाशक्ति वाला हथियार, भारत ने बना लिया भविष्य का ब्रह्मास्त्र। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
17: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
4: देश भर में मनाई जा रही है शनिदेव की जयंती। आज के दिन दर्शन पर मिलता है विशेष वरदान। वाराणसी के संकट हरण शनिदेव महाराज मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की कतार। वट सावित्री पर सुहागिनों ने रखा व्रत, महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर विधि विधान से की बरगद की पूजा, पति की लंबी उम्र की कामना की। पंजाब के होशियारपुर से आई गुड न्यूज, 30 फीट गहरे बोरवेल में गिरे बच्चे का किया गया सफल रेस्क्यू, डिप्टी कमिश्नर और SSP ने संभाली ऑपरेशन की कमान। देश में पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर शानदार खबर आई सामने, अब भारत के पास हर वक्त होगा 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल। UAE के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने की ऐतिहासिक डील। यूरोविजन 2026 सॉन्ग कॉन्टेस्ट का फाइनल आज वियना में, कई देशों के दिग्गज संगीतकारों के बीच होगा मुकाबला, दुनिया भर के करोड़ों दर्शकों को शो का इंतजार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: सैटरडे यानी फन म्यूजिक डांस और ढेर सारी मस्ती तो लेकर हाजिर हैं फिर एक बार हम आपके लिए सैटरडे स्पेशल एपिसोड। तो क्या है आपका वीकेंड प्लान? क्योंकि कोई तो कर रहा है अपने दोस्तों के साथ वीकेंड वाली पार्टी और कोई बता रहा है ये वीकेंड अपनी फैमिली के साथ। वेल, हमारा प्लान तो सिर्फ एक ही है कि लेकर आए आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार। तो लेकर हाजिर हैं फिर एक बार हम आपके लिए आपकी फेवरेट कहानियों का हर अपडेट। आज तो है हमारे पास एंटरटेनमेंट और मस्ती का फुल ऑन कॉम्बो। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का ये सफर हेडलाइंस के साथ।
1: एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज से सजे सास बहू और बेटिया के वीकेंड स्पेशल एपिसोड में आज देखिए पोदार हाउस में जमेगी कव्वाली की महफिल, अरमान अभीरा लगाएंगे रोमांस का तड़का, रक्षित और अपराजिता के बीच बढ़ेंगी नजदीकियां, होगा निहारिका का खुलासा, निहारिका करेगी बवाल।

को छिपाने के लिए रूही करेगी कोशिशें, अग्नि को होगा शक। और साथ ही मास्टर राजू संग करेंगे यादों भरा डे आउट, सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

पार्टी के सेलिब्रेशन के बीच जब रिश्तों में आ जाती हैं गलत फहमियां तो बदल जाता है पार्टी का फुल ऑन मोड। तो क्या कहला रहा है यहाँ पर ये रिश्ता, क्या यहाँ से आ रही है कोई गुड न्यूज या फिर से कहानी में आया है कोई नया ट्विस्ट। चलिए लेकर चलते हैं हम सबको अब हीरा और अरमान के पास और देखते हैं कैसे हैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट के शंख।

देखा दादिसा का जलवा। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज दादी सा का जन्मदिन अनोखे तरीके से मनाया जा रहा है। भाई कवाली की महफिल सजाई गई है जहां पर सभी ने मुगले आजम के जमाने की तरह अपना साज श्रृंगार किया है और सजाई है सुरों की महफिल। लेकिन इस सुरों की महफिल में सुर कम जुगलबंदी ज्यादा हो रही है और ये जुगलबंदी किसी और के बीच नहीं बल्कि अरमान और अभीरा के बीच हो रही है। जरा देखिए कैसे अरमान और अभीरा की टोली एक दूसरे के साथ सुरों की जंग लड़ रहे हैं, वो भी प्यार से।

अरमान अभीरा की इस जुगलबंदी ने दादी सा का दिल जीत लिया और फिर बारी आई अरमान अभीरा के खास परफॉर्मेंस की, वो भी दादी के डिमांड पर। तो देखिए कैसे अरमान और अभीरा ये भूल गए कि इस महफिल में और भी लोग मौजूद हैं और दोनों खो गए ख्वाबों की दुनिया में। और जब ख्वाब की दुनिया आई तो देखिए कैसे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे हैं, प्यार बरसा रहे हैं और साथ निभाने का वादा कर रहे हैं।

वह ख्वाबों को छोड़ हकीकत की दुनिया में आए तो अरमान को एक सरप्राइज मिल ही गया है, क्योंकि अभिरा ने भी एक कदम आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में दादीसा की खुशी दुगनी हो गई है। और अपने ही जन्मदिन पर देखिए कैसे दादीसा ने भी अपने डांस का जलवा दिखाया, और उनका ये डांस देखकर सभी लोग खुश हो रहे हैं।

भाई मानना पड़ेगा दादी सा का जन्मदिन वाकई स्पेशल रहा है, लेकिन ट्विस्ट ना आए भला कैसे हो सकता है। ये ट्विस्ट तब आया जब क्रिश गुस्से से घर के अंदर आया और दिशा की दादी को गुस्सा आया तो उसकी ओर आगे बढ़ी, लेकिन तभी क्रिश के गालों पर जोरदार तमाचा पड़ गया, वो भी अयान के हाथों।

0: तेरी इतनी हिम्मत। भैया मेरा हाथ छोड़िए।
1: पहले दिशा से माफी मांग।
0: भैया ये मेरे और आर्यन के बीच की बात है।
2: मैं भी यही चाहता हूँ कि आप दिशा से माफी मांगो।

0: फरमान, किसका हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, मेरे को हाथ छोड़ो।
1: बड़े भाई से ऐसी बदतमीजी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
2: बड़े भाई की इज्जत करो वाले ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत
0: आपके अपने बेटे को है।
2: मैंने तो सिर्फ बदतमीजी करी है। इन्होंने अरमान भैया से बदतमीजी, दगाबाजी, गद्दारी सब किया है।
3: अब कृष के कर्म ही ऐसे हैं कि माफ करने लायक नहीं है। अब तो अरमान भी अयान का साथ दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दादीसा इस बात पर नाराज है और अभीरा भी दादीसा का ही साथ दे रही है।
4: आर्यन ने अपनी मर्यादा लांघी है अरमान।
5: जो बेइज्जती इसने दिशा की, अगर इसने अभीरा की होती ना, तो मैं इसे चौक पे ले जाकर मारता।
6: अरमान, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियां ये बात रियलाइज करें कि वायलेंस आखिरी हथियार होता है। मजबूरी होती है और सिर्फ तभी जस्टिफाइड होता है जब सामने वाला भी वायलेंट हो रहा हो, वरना वायलेंस गलत है।
3: अब देखना होगा क्या इस साथ में फिर से कोई ट्विस्ट आएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
7: एक पार्टी में जब आती है जेलसी और उसके साथ साथ इमोशनल ड्रामा, तो आता है ना हम सबके लिए एक्साइटमेंट। और कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर इस जुनूनी की इस कहानी में। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको गुरु और रूहानी के पास और देखते हैं क्या कुछ एंटरटेनिंग हो रहा है इनकी कहानी में आज, क्योंकि कहानी का लेखक फिर से लेकर आया है इस कहानी में एक नई सिचुएशन, जो लेकर आ रही है इस कहानी में एक नया ड्रामा। Let's check it out.
3: मामी और पुष्पी की जानलेवा चाल। रूहानी को लगा बिजली का जोरदार झटका। गुरु बना रूहानी का सेवियर। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में ना चाहते हुए भी गुरु रूहानी के करीब चले ही जाते हैं। असल में आज रूहानी रसोई में काम करती है कि उसकी आंखों में मिर्ची चली जाती है, जिसके चलते वो हो जाती है परेशान। बस फिर क्या, रूहानी को परेशान देख गुरु का दिल पिघल जाता है और देखिए कैसे वो बेचैन होकर रूहानी को संभालने लगता है। भाई, गुरु को इस तरह अपनी परवाह करता देख रूहानी खुश तो होती है। ऐसे में गुरु हिचकिचा भी जाता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है।

0: वहीं दूसरी ओर इस रसोई में षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये षड्यंत्र कोई और नहीं बल्कि मामी और पुष्पी रच रही हैं। जरा देखिए कैसे छुपते छुपाते दोनों पहुंच गई हैं रसोई में और चल रही हैं जानलेवा चाल। पुष्पी ने अपने हाथों से मिक्सी के वायर को काट दिया। ये देख मामी भी खुश हो रही है और उन्हें लग रहा है कि अब उनके रास्ते से रूहानी का पत्ता साफ हो जाएगा।
1: अब इस तार से जो करंट निकलेगा ना, उसका झटका लगते ही वो लड़की उठेगी नहीं, उठ जाएगी। रोज की तरह हमारी संस्कारी बहुरिया रसोई के पट्टी पर आकर पानी डालेगी और खुद अपने ही हाथों से अपने चिता का इंतजाम करेगी।
2: अब से पहले मैं यही सोच रही थी कि कैसे निकाला जाए इस लड़की को घर से बाहर, रूहानी को। और अब क्योंकि एक से भले दो थे, मतलब मैं और मामा थे, उसके बाद फिर पुष्पी आ गई, तो अब एक से भले दो, दो से भले तीन हो गए। तब तीनों ने मिल करके ये जुगत भिड़ाई है, जिसमें से पुष्पी ने ये कहा था कि उसके पास एक आइडिया है। उसने मिक्सी की तार काट दी और उसके बाद वो जो करंट है, जो वो फ्लोर साफ करने के लिए पानी डालती है, स्लैब साफ करने के लिए, और वहाँ से वो जो करंट है वो जनरेट होता है, जिसमें हमें पूरी आशा है कि उसको करंट लग जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा, वहीं किचन में उसका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया
0: भाई। यहाँ तो मामी और पुष्पी दोनों खुश होकर यहाँ से निकल लेती हैं, ये सोचकर कि वो कामयाब हो जाएंगी। ऐसे में रूहानी रसोई में आती तो है, लेकिन उसकी नजर पड़ जाती है जमीन पर पड़े बिछुए पर। ऐसे में वो बिछुआ देखती है और ये सोचती है कि आखिर ये किसका होगा। तो वहीं दरवाजे पर मामी और पुष्पी रूहानी को देख रही है, लेकिन बिछुआ देखकर पुष्पी परेशान हो जाती है क्योंकि ये बिछिया पुष्पी का जो है। ऐसे में उन्हें डर लग रहा है कि कहीं उनकी चोरी पकड़ी ना जाए।
2: मेरे नहीं, पुष्पी के पैर की बिछिया मिली है किचन में, और मैं इसकी वजह से उसको घूर भी रही हूँ कि मतलब थोड़ा समझदारी के साथ, अक्कल के साथ थोड़ा काम कर लेती तो ये हुआ है। अब शायद अगर ऐसा होगा भी तो पुष्पी के ऊपर ही बात आएगी, क्योंकि बिछिया तो उसकी है, मैं तो बच जाऊंगी।
0: भाई मामी ने तो आगे का षड्यंत्र भी रच रखा है। इसी बीच रूहानी के हाथ से बिछिया गिर जाता है प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर पानी गिरा हुआ है और उसी पानी में 420 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। इस बात से अनजान रूहानी वो बिछिया उठाने के लिए हाथ नीचे तो रखती है, लेकिन तभी उसे लग जाता है करंट। ये देख मामी पुष्पी खुश है और वहाँ से रफा दफा हो जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है जब आता है गुरु।
3: कंपाउंड

0: प्लान जो हमारे किसी भी प्लान में करंट नहीं होता, तो इस बार हमने करंट को ही अपने प्लान में शामिल कर लिया है। सो बेसिकली हुआ ये है कि रूहानी किचन में काम करने के लिए आई है और पुष्पी और मामी दोनों ने मिलकर ये आइडिया लगाया है कि उसको अगर करंट लग जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि किसी को पता नहीं चलेगा उस टाइम पे। लेकिन हमेशा की तरह गुरु द सेवियर आ जाते हैं और बचा लेते हैं उसको।
1: फिलहाल तो गुरु ने रूहानी की रक्षा कर ली है, लेकिन जल्द ही गुरु को ये पता चल ही जाएगा कि किसी ने मिक्सी का वायर काटा है, और फिर गुरु उसे ढूंढने में लग जाएगा, जो कहानी में लाएगा नया ट्विस्ट। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: और स्वीट बॉन्डिंग मोमेंट्स कुछ ऐसा ही होना चाहिए यहाँ पर वीकेंड का प्लान, कुछ ऐसा ही कह रही है आज हमसे हमारी रूही। लेकिन रूही क्या हो रहा है आपकी कहानी में ये भी तो हमें बता दीजिए। तो चलिए लेकर चलते हैं आप सबको नाहर और रूही के पास उनके शो मन सुंदर के सेट पर, क्योंकि कहानी में फिर से आया है एक इंटरेस्टिंग ड्रामा जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। सो गेट सेट गो।
1: नाहर को छिपाने की रूही की कोशिश है, अग्नि को हुआ युवराज पर शक, क्या सामने आएगा नाहर के जिंदा होने का सच? दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में रूही ने अपने नाहर को गुंडों के चंगुल से छुड़ा तो लिया है, लेकिन उसे एक बस्ती में छिपा रखा है ताकि नाहर के जिंदा होने का सच इतनी जल्दी किसी के सामने ना आए। ऐसे में रूही नाहर की देखरेख कर रही है, उसके गंदे और फटे हुए कपड़ों को चेंज कर रही है। वहीं दूसरी ओर अग्नि को हो गया है शक, ऐसे में देखिए कैसे वो गुस्साई हुई नकली नाहर यानी कि युवराज के पास पहुंच गई है, जो फोन पर डील कर रहा है और बिजी है। लेकिन अग्नि है कि रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते युवराज फोन पर ही नाराजगी जता रहा है। ऐसे में क्लाइंट को लगता है कि नाहर उन पर चिल्ला रहा है, लेकिन माजरा कुछ और ही होता है।
3: हर की साइंस कि मेरा शख्स सही तो नहीं।
4: अग्नि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रूही आ गई है, अब उस जमीन का क्या?
5: सर, उससे बड़ी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आ गई, पहले मुझे उसे सॉल्व कर लेने दो, बाद में देखती हूं, तुमसे बाद में बात करती हूं, बाय।
6: अग्नि को ऐसा शक हो गया कि कहीं नाहर जिंदा तो नहीं है, इसलिए वो रूही का पीछा कर रही थी, और उसको अभी भी शक है कि कहीं शायद नाहर जिंदा तो नहीं, क्योंकि उसको ऐसे कुछ सबूत मिले हैं जिससे उसको ऐसा लग रहा है कि शायद नाहर जिंदा है। अभी तक तो युवराज मेरा साथ दे रहा है, लेकिन भरोसा नहीं है। अग्नि इतने जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करती है, वो अभी तो भरोसा कर रही है क्योंकि अभी तक युवराज ने उसका साथ दिया है, आई होप आगे भी देगा।
1: यहाँ अग्नि बिना बताए ही चली जाती है, और युवराज ये सोचकर हैरान है कि आखिर अग्नि कर क्या रही है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि माजरा क्या है। वहीं दूसरी ओर रूही को एहसास होता है कि दरवाजे के बाहर कोई है, बस फिर क्या, देखकर आकर फटाफट वो नाहर को साड़ी पहनाना शुरू कर देती है ताकि कोई नाहर को देख ना सके। और तो और देखिए कैसे साड़ी पहनाकर उसका चेहरा छिपाकर वो खुद अलमारी के अंदर छिप जाती है। असल में रूही ने अग्नि को देख लिया है और उसे उसकी प्लानिंग पता चल गई है, तभी तो रूही ने अपने ससुराल में वापसी की है और अग्नि की प्लानिंग पर ब्रेक लगाया है।
7: मैं यहाँ तमाशा करने नहीं, तमाशे को रोकने आई और अपने पूरे हक को वापस देने आई।
6: युवराज के साथ मेरी ये प्लानिंग थी कि हम दोनों प्रॉपर्टी मेरे, मैं अपने नाम सारी प्रॉपर्टी करवा लूंगी अपने और रूहान के नाम पे, और उसको जो जमीन चाहिए मैं उसको उसका हिस्सा दे दूंगी। और हमारे बीच में डील हुई थी, लेकिन बीच में रूही आ जाती है और रूही के वजह से वो डील नहीं हो पाती है। तो अभी भी हम उसी कोशिश में है, मैं उसी प्रयास में लगी हूँ कि कैसे जल्दी से ये प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूँ मैं, तो उसके बाद मैं और रूहान और नहार।
1: अब अग्नि की प्लानिंग तो अच्छी है, लेकिन रूही जल्द ही इस पर पानी फेरने वाली है। कब और कैसे ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: तो क्या होगा अगर रीत और राघव मिलकर करेंगे एक सैटरडे वाली पार्टी? हम सब अच्छे से जानते हैं कि क्या होगा। पहले तो पार्टी की शुरुआत होगी एक फन मोड पर, होगा एकदम खुशनुमा माहौल। फिर पार्टी में हो जाएगा कोई ना कोई नया खुलासा, या फिर आएगा कोई ना कोई नया ड्रामा जो बदल देगा पार्टी का मूड। चलिए लेकर चलते हैं आप सबको जाने अनजाने हम मेले के सेट पर, और देखते हैं क्या यहाँ पर हो रही है सैटरडे वाली पार्टी, या फिर से आया है कहानी में कोई नया ट्विस्ट।
1: प्रतीक संग हुआ हादसा, रीत को लगा झटका, दिव्या और घरवाले हुए परेशान, के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में आज रीत और राघव का पूरा परिवार मंदिर आया है पूजा करने के लिए। इसी बीच रीत राघव से बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन राघव का फोन नहीं लग रहा। अचानक उसकी नजर पड़ती है प्रतीक पर, जो गया है बाहर पानी लेने के लिए, लेकिन तभी तेज रफ्तार से आता हुआ ट्रक मार देता है प्रतीक को टक्कर, जिसके चलते प्रतीक हो जाता है घायल, जिसके चलते प्रतीक का हो जाता है एक्सीडेंट और वो हो जाता है गंभीर रूप से घायल। बस रीत तो हैरान है ही, साथ ही घर वालों को भी लगता है जोरदार झटका।

0: ติก
1: พระกุ
0: ก
2: ติก
0: สวัสดีค่ะคุณลุง
1: กติก
0: นี่คือคุณลุงจะอยากกินคุณลุง
1: กติก
0: กินเจ้า
3: เหรอแค่กูอยากไปเล่นกับพวกเราอ
0: ีกกูอยากไปเล่นกับพวกเราก
3: ินเจ้าเหรอ
1: น
0: ี่คือคนรู้จักกันหรือเปล่า
1: ที่
0: เจ้าว่าแค่กูอยากไปเล่นกับพวกเราที่กูอยากไปเล่นกับพวกเราที่เจ้าว่าคุณครูนี่การที่คุณรู้เจ้าว่าตรงนี้นี่ก็คุณ
4: भाई प्रतीक को यूं बेसुध देखकर प्रतीक के पापा एम्बुलेंस को कॉल लगाने लगते हैं। रीत उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा है और बुआ जी ये सब देखकर हैरान है और परेशान होने का ड्रामा कर रही है क्योंकि ये सब उन्हीं की चाल जो है। असल में इससे पहले शारदा का सच लाने के लिए रीत ने खेल खेला था, ड्राइवर को कुछ पैसे देकर नकली एक्सीडेंट करने के लिए कहा ताकि शारदा अपने बेटे के लिए परेशान हो और वो अपना खुलासा खुद कर दे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रीत को ड्राइवर से बात करता हुआ शारदा देख लेती है और देखे कैसे वो रीत के सामने इस तरह से ड्रामा करती है कि उन्होंने तो कुछ सुना ही नहीं। बस फिर क्या, मौके का फायदा उठाकर वो चली जाती है ड्राइवर के पास और दुगने रुपए देकर उसे न सिर्फ एक्सीडेंट करने के लिए कहती है साथ ही देती है चेतावनी भी।
5: कम पैसों में तो मैं ध्यान दे देता हूँ।

0: ने बोला था कि टक्कर ऐसी मारना कि ये मौत के करीब पहुंच जाए, लेकिन मरे ना
1: जी। अच्छे
0: ऑल द बेस्ट।
2: अब रीत ने शारदा का खुलासा करने के लिए खेल तो खेला था, लेकिन ये खेल उल्टा पड़ गया है। अब देखना होगा कि कैसे रीत अपने ऊपर लगे इस इल्जाम को हटाएगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: अब अनुपमा की कहानी में जब होगी पार्टी तो सैटरडे पार्टी का माहौल कैसे रहेगा? होगा ये इनिशियली काफी रॉकिंग, लेकिन फिर कहानी में आ जाएगा एक नया ड्रामा जो सैटरडे पार्टी का मूड कंप्लीटली बदल देगा। लेकिन बेचारी अनुपमा, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके शोल्डर पर और कितनी कमिटेड हैं वो अपने फैमिली की ओर। लेकर चलते हैं आप सबको अनुपमा के पास।
2: स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में आज अनुपमा अपने कैफे के सामने अनुज का नाम देखकर हो रही है खुश भी, और साथ ही बह रहे हैं उसके आंसू भी, क्योंकि उसे अपने अनुज की याद जो आ रही है। तभी तो देखिए कैसे सामने अनुज कैफे लिखा हुआ देख वो अपने बीते दिनों में खो जाती है और अनुज को याद करने लगती है, और यही यादें उसके इमोशनल होने की वजह बनती है।

0: दुगना काम करना पड़ेगा अब आपको कपड़िया जी। आपकी बेटी और दामाद ने आपके नाम का कैफे खोल दिया है, उन्हें भी आशीर्वाद दीजिएगा कि वो बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े।
1: भाई अनुपमा ने तो ऊपर वाले से दुआ भी मांग ली, लेकिन उसके आंसू और दर्द कहीं न कहीं दिग्विजय को दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में दिग्विजय अनुपमा का सहारा बन रहा है, उसे समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अनुपमा वो तो इस बात को लेकर दुखी है कि वो अपनी बेटी से इतना प्यार करती है लेकिन बेटी उससे करती है नफरत।

0: तुम्हारे पर उससे प्यार किए इस तरह, और बदले में उसने मुझे सिर्फ नफरत की है। मैं इतनी नफरत सर, उसने मुझे और अनुज को, मैं ऐसा क्या करूं कि उसे मेरी ममता पर विश्वास हो, उसे मैं और मेरी ममता दिखाई दे। सर मैं क्या करूं इसके लिए, कितना करूं सर? सॉरी सॉरी सॉरी, लगता कान्हा जी मेरी किस्मत में संतान का सुख लिख रहे भूल गए।
1: अब अनुपमा के बच्चे भले ही अनुपमा से प्यार ना करे, लेकिन अनुपमा तो माँ है और वो इतनी आसानी से हिम्मत हारेगी नहीं। वैसे जल्दी कहानी में ट्विस्ट आएगा जिसमें प्रेम खतरे में होगा। देखना होगा क्या अनुपमा प्रेम की जान बचाएगी और क्या राही और अनुपमा के बीच की जो दूरियां बढ़ गई हैं वो नजदीकियों में तब्दील हो जाएंगी।
0: प्रेम भी बिजली का काम कर रहा है, अगर कर रहा है तो फिर सब कुछ चेक कर लिया होगा पहले।
2: हमारी सैटरडे वाली पार्टी को एंटरटेनमेंट के रंगों से भरने आ गए हैं अब पति अनारी के छोटेलाल यानी मास्टर राजू। आज तो है इनका डे ऑफ और हमने उठा लिया है इस मौके का पूरा फायदा। हमारी टीम कर रही है इनके साथ एक होम वाला डे आउट। तो कैसा है इनका घर, किस तरह बिताते हैं ये अपनी छुट्टी का दिन, ये तो इंडल्ज करते हैं कुकिंग में भी। आइए जानते हैं इन्हें अप क्लोज एंड पर्सनल।

0: 70s का मशहूर स्टार मास्टर राजू श्रेष्ठा, लेकिन अब बन गए हैं पते अनारी में किशोरी के पापा। राजू श्रेष्ठा 70s की दुनिया के मशहूर बाल कलाकार थे, जिन्हें 78 में उनकी फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। इन्होंने अमिताभ बच्चन से लेकर जितेंद्र तक ढेर सारे कलाकारों के साथ काम किया। भारत के पहले डेली सोप चुनौती से लेकर पते अनारी तक इनका एक 200 से भी ज्यादा फिल्में और करीब 100 से भी ज्यादा सीरियल्स। आज भले ही वक्त गुजर गया हो, लेकिन मास्टर राजू की एनर्जी अभी भी वैसे ही है। 80s के गानों पर अभी भी वैसे ही थिरकते हैं भाई, बिल्कुल जैन जी के अंदाज में इनकी रील फिर से वायरल होती है। सुबह सुबह उठकर करते हैं जॉगिंग, खुद को रखते हैं फिट, रियल लाइफ में है एक आइडियल हस्बैंड और एक आइडियल पापा। तो मास्टर राजू की रियल लाइफ जिंदगी जानने के लिए आज हम मास्टर राजू के साथ पूरा दिन बिताने वाले हैं। देखेंगे कि वो कहाँ रहते हैं, सुबह सुबह क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या है उनके शौक, कौन कौन है उनकी फैमिली में, और हाँ उनके साथ खोलेंगे यादों का पिटारा, देखेंगे वो एल्बम्स और उनके यादों की तस्वीरें। इसके लिए हम लोग पहुंचे मुंबई के बांद्रा इलाके में, जहाँ रहते हैं मास्टर राजू अपने उसी घर में, जिसके साथ जुड़ी हैं ढेर सारी यादें। और देखिए सुबह सुबह मिले हमें वो अपने गार्डन में, तो चलिए चलते हैं मास्टर राजू के पास और उन्हें कहते हैं गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल बढ़िया।
1: तो सारा शहर, सारी इंडस्ट्री जिसे मास्टर राजू के नाम से जानती है, वही राजू जी आज हमारे साथ है और वो मास्टर से
2: मिस्टर बन गए।
1: तो आज जो है पूरा दिन हम उनके साथ बिताने वाले हैं। यहाँ पर जो है इतने आराम से, इतनी शांति से वो बैठे हमें मिले हैं। तो पहले तो ये, आप शांति कितनी एंजॉय करते हैं आप?
2: अरे बिल्कुल, यहाँ का जो मतलब मॉर्निंग मेरी तो और भी पहले शुरू हो गई। मेरी सुबह शुरू होती है जॉगिंग से, फिर थोड़ी फ्री हैंड एक्सरसाइज करता हूँ, थोड़ी योगा करता हूँ, फिर घर पे आके थोड़ी देर यहाँ बैठता हूँ। सास बहू और बेटियाँ के जो व्यूवर्स है उनको मेरी तरफ से नमस्कार, हेलो, आदाब। तो मैं एक शो कर रहा हूँ दंगल का, पति अनाड़ी, वो इस वक्त ऑन एयर करंट मेरा शो चल रहा है।
0: मुंबई में पले बड़े मास्टर राजू ने अपने करियर की शुरुआत 1972 में फिल्म परिचय के साथ की थी, जिसमें उनके साथ थे जितेंद्र और जया भादुरी।
3: क्या करना है?
0: लेकिन आज भी वो अपनी एनर्जी मेंटेन रखते हैं, इसलिए सुबह सुबह करते हैं जॉगिंग।
2: तो दिन की मेरी शुरुआत जॉगिंग से ही होती है। जॉगिंग कैसा है कि अगर थोड़ा, अगर मैं जल्दी उठ गया और अगर फ्री हूँ, तो फिर मैं जॉगर्स पार्क चला जाता हूँ, या फिर कार्टर रोड चला जाता हूँ, बैंड स्टैंड चला जाता हूँ। और अगर टाइम नहीं है या थोड़ा लेट उठा हूँ, तो फिर मैं यहीं पर मेरे इस रोड पर मैं जॉगिंग करता हूँ। यहाँ पर इस रोड पे थोड़ी सी आपको ट्रैफिक दिखती है, लेकिन जब अर्ली मॉर्निंग होती है तब ट्रैफिक कम होती है, और फिर पीछे वाली जो रोड है वो थोड़ी सी शांत होती है। तो फिर मैं 2-3 राउंड यहाँ पे, जैसे यहाँ महबूब स्टूडियो है मेरे घर के पास, तो फिर यहाँ से महबूब स्टूडियो से होता हुआ फिर 1-2-3 राउंड मैं लगा लेता हूँ। तो ये मेरा आज जो मैंने जॉगिंग की है, ये मेरा जॉगिंग ट्रैक ये वाला है।

जॉगिंग के बाद राजू पहुंचे अपने घर में और उन्हें है गार्डनिंग का शौक। भाई सुबह सुबह सबसे पहले वो अपने पौधों को पानी देते हैं क्योंकि वो है उनके बहुत प्यारे।

और उसके बाद वो करते हैं जो वो बचपन से करते आ रहे हैं, जी हाँ एक्टिंग, और अभी भी अपने फेवरेट अमिताभ बच्चन के गाने पर डांस करते हैं।

0: लड़कों के घर में घंटी होती है, मेरे घर में घंटा है, तो लोग घंटी बजाते हैं, मगर मेरे घर में आने से पहले आपको एक घंटा बजाना है, सुनिए इसकी आवाज, ये है, आइए अंदर से आपको दिखा दूं, खींचे अंदर से भी दिखाता हूं आपको। तो ये जो बेल है, मुझे बहुत पहले से है ना, मुझे कुछ अलग करना था कि लोगों के घर में टिंग टोंग बेल बजती है तो मेरे घर में कुछ अलग होना चाहिए। फिर मुझे किसी ने बताया कि दरवाजे पर ब्रास का होना बहुत अच्छा होता है, तो मैंने कहा चलो ब्रास की ये बेल लगाते हैं और ये कुछ थोड़ा अलग रहेगा और सभी लोग जो भी आते हैं उनको ये कुछ अलग लगता है कि हर जगह बेल दबानी होती है और आपके यहाँ पर ये रस्सी खिंचनी होती है। मुझे बहुत क्यूट लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और टंग टंग ये सुनने में भी बड़ा मज़ा आता है और अलग। आई थिंक आप लोगों ने बहुत कम लोगों के घर पे ऐसी वाली बेल देखी होगी।
1: और साथ साथ हमें दिखाई वो नायाब एल्बम्स और तस्वीरें जो उन्होंने पिछले 50 सालों में कमाई है, बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया है, अवार्ड्स पाए हैं। तो आइए चलते हैं मास्टर राजू के साथ यादों के झरोखे में।
0: मेरा नाम रखा था संजीव कुमार साहब ने, उस वक्त राजू इतना कॉमन भी नहीं था नाम, अभी आजकल तो हर दूसरा तीसरा व्यक्ति राजू हो जाता है, तो उनका रखा हुआ था। फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई, जब तक मैं बड़ा हुआ तो फिर ये नाम मैंने उनकी याद में फिर मैंने रिटेन करके रखा है, तो और लकी साबित हुआ है मास्टर राजू। फिर
2: ये आशा भोसले जी के साथ, ये मैं अमित जी, ये फिल्म करी विद्या सिन्हा जी,
3: जब आप छोटे थे मतलब मास्टर वाला जब करते थे,
2: ये वो है अपना नेशनल अवार्ड का, ये मिथुन दा।
3: तो सबसे फेवरेट माँ कौन सी रही?
2: यार सबकी फेवरेट माँ जो होती है निरुपा रॉय, ये शर्मिला जी, ये मैं देखी जो वन ऑफ माय इनिशियल फिल्म्स, ताका जी के साथ यश चोपड़ा, ये दीवानगी, ये खुशबू, प्रेस कटिंग है ये किताब का।
3: अच्छा ये
2: हाँ, सब लेजेंड्स के साथ काम करने मिला।
4: चला भाग चला भाग चला किधर चला किधर चला किधर चला किधर मकबाज मकबाज मकबाज मकबाज भाग चला भाग चला भाग चला भाग किधर चला किधर चला किधर चला किधर।
2: ये 1972 की फोटो है। मेरे ख्याल से आपके जो व्यूअर्स है उसमें से 90% तो ये पैदा भी नहीं हुए 1972 में। ये अभी आपके साथ ही मैं खोल रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है, तो ये परिचय

0: राजू जी साथ में हैं और कुछ यादें और पुरानी बातें अगर कहे तो यादों का पिटारा है यहाँ पर उनके पास। देखते हैं इनके पिटारे में क्या है और जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग किस्से भी साथ के।
1: बहुत टाइम से खुला नहीं है ये बैग और ये ऐसे ही रह गया था, आपने बोला तो इसको खोलते, अंदर से इसकी हालत कैसी है अभी ये मुझे भी नहीं पता है। लो
0: यादों का खजाना।
1: ये देखिए, सबसे पहले तो ऊपर ये मेरी बनाई हुई ड्राइंग है, पेंटिंग मैंने ही बनाई है। ये कौन से साल की है देखें, फरवरी 97 तो ये मेरी बनाई हुई है। फिर ये भी मेरी बनाई हुई है, ये कभी का है 98। ये मेरा बेटा भी बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है, ये 2000। फिर उसके बाद काम काम काम काम, फिर शादी हो गई तो फिर हॉबी हॉबी सब एक तरफ रह गया। ये मेरी एक फिल्म थी साथी, महेश भट्ट वर्षा उसगांवकर का मैं भाई बना था, ये उसका है। ये एक अवार्ड मुझे मिला था, ये राज कपूर साहब, ये मैं, ये मुझे चुनौती मेरी एक सीरियल थी जिसमें मैंने ड्रग एडिक्ट का रोल किया था, तो उसके लिए मुझे अवार्ड मिला था। ये सब खराब हो गया, इसको मुझे ठीक करवाना पड़ेगा ना। अभी मैंने अभी आपके सामने खोला तो सब देख रहा हूँ उसकी कंडीशन बहुत खराब हो गई है। हाँ, ऐसे मैंने एक अदालत एक सीरियल करता था मैं, वो धीरज कुमार की, तो उसमें एक एपिसोड था ये। ये भी पता नहीं कौन से, कैसा टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता कब का है। अरे इसका मजा अलग है, ये वाले फोटोज देखने का मजा अलग है, लेकिन फिर वही है इनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। और जैसे शादी के एल्बम या होता है ना, वो सारी चीजों का मजा ही अलग होता है। इसमें भी ये सारी प्रेस कटिंग्स, और ये देखिए ये रमेश तौरानी ये साथी फिल्म का है। ये है देखिए जो मेरा नेशनल अवार्ड है ना, ये नेशनल अवार्ड, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नीलम संजीव, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, 1977 में मुझे मिला था, पूरा सिल्वर है तो ये ऐसे रखा था तो अभी ब्लैक हो गया। और साथ में ये मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलती है, ये उसकी फोटो कॉपी है, हाँ चित्तचोर फिल्म के लिए। ये 5000 का एक नगद पुरस्कार और मेडल, बेस्ट चाइल्ड एक्टर। मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे अवार्ड मिला है, उस वक्त मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, सिर्फ न्यूज़पेपर था और अगले दिन न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती थी। तो मुझे तो राशि प्रोडक्शन से फ़ोन आया कि अरे मुबारक हो अवार्ड मिला है ये है। तो आज कैसे, आज तो आदमी बाल कटाता है तो पूरे पैपराजी को सबको बुला लेते हैं कि वो आई टुक अ हेयर कट ऑन माई सेट, तो वो पूरी न्यूज़ फैल जाती है, मैंने डाइटिंग शुरू की है, आज मैंने ये खाया, तो न्यूज़ बन जाती है। उस वक्त इतना चीज़ें वायरल नहीं होती थी इतनी, और पीआर पे इतना ध्यान भी नहीं देते थे एक्टर्स, अपने काम पे ज़्यादा फोकस रहता था। यानी उस वक्त लोगों को एक्टर बनना था, सेलिब्रिटी नहीं बनना था। अब क्योंकि मैं छोटा था तो मेरी मदर ने कहा कि ये तो छोटा है, इसको तो मैं अकेली भेजूंगी नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो एक ही देंगे। अब इतने में क्या हो गया कि मेरी शूटिंग आ गई बैक टू बैक, तो मेरे पास टाइम ही नहीं था अवार्ड लेने जाने का। तो किसी तरह हम लोग ने डेट वेट एडजस्ट की, तो मैं और मेरी माम सुबह की फ़्लाइट से गए अवार्ड लिया, और लेट नाइट फ्लाइट से हम, मैं और मेरी माँ वापस आ गए नेक्स्ट डे, फिर वापस शूटिंग पर, और होटल वोटल हम लोगों ने बुक किया। और ये थे मिथुन चक्रवर्ती को मिला था मृग्या फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर, तो मैं सूट वूट पहन के गया था, वो कुर्ता पैजामा और कोल्हापुरी चप्पल उन्होंने पहने। वो आज भी मुझे जब भी मिलते हैं तो मुझे चिढ़ाते रहते हैं, ये सूट पहन के आया था, मैं तो किसी दोस्त के घर पे रुक गया था, मेरे पास सिर्फ कुर्ता पैजामा था और ये स्टार था, इसको सब लोग पहचानते थे वहाँ पर, मुझे कोई नहीं पहचानता था। तो दादा अभी भी चिढ़ाते हैं मुझे, तो बहुत अच्छी याद है 1977, कितने साल हो गए। उसके बाद फिर 1978 में मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिला था किताब फिल्म के लिए, वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स किताब, जो गुलजार भाई ने डायरेक्ट की है, ये उसकी ट्रॉफी है ये फिल्म फेयर की।
2: नहीं, मुझे कुछ जादू नहीं आता।
3: तो फिर ये क्या पढ़ रहा था? चादर अंडा दे।
2: वो तो हमारी टीचर का नाम है।
4: मालिक, भक्त ध्रुव और भक्त प्रहलाद भी तो छोटे थे क्या? और फिर आप भी तो छोटे हैं। जब आप इतनी बड़ी जमींदारी संभाल सकते हैं तो मैं ये पूजा क्यों नहीं कर सकता? जमींदारी संभालने के लिए मेरे पास शक्ति है और भगवान की पूजा करने के लिए मेरे पास भक्ति है, और भक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं।
1: मुझे नास्तिक में मैंने जो अमित जी के बचपन का रोल किया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसके अंदर एक सीन है मेरा जो अमित जी का जो फेमस सीन है ना दीवार वाला, आज खुश तो बहुत होगी तुम, वो जो भगवान के इर्द गिर्द, वही सेम सीन नास्तिक में मेरा था। और जहाँ से मैं बोलता हूँ कि आज से मैं नास्तिक बन गया हूँ, मेरा विश्वास तुझसे उठ गया है, और वैसे ही भगवान के उधर में राउंड मार रहा हूँ, और वो एज इट इज़ वैसे ही फिल्म आ गया, तो वहाँ से फिर मैं अमिताभ बच्चन बन जाता हूँ। तो वो सीन मेरा बहुत अच्छा था उसके अंदर, वो मेरा एक फेवरेट रहा है चाइल्डहुड रोल में। और मेरी फेवरेट फिल्में अगर कहें तो वो सात दिन ऑफकोर्स, परिचय जो मेरी पहली फिल्म थी, फिर क्षमा एक फिल्म थी मेरी जो कादर खान साहब ने प्रोड्यूस की थी, दैट इज़ दी ओनली फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय कादर खान, तो उसमें मेरा बहुत अच्छा रोल था। इट वॉज अबाउट अ स्टेप मदर एंड स्टेप सन, तो शबाना आजमी एंड मी, वी वर प्लेइंग स्टेप मदर, बहुत अच्छी, और सिल्वर जुबली थी वो फिल्म, 25 वीक्स चली थी, तो वो मेरा एक अच्छा रोल रहा है। किताब जो गुलजार भाई ने डायरेक्ट की, वो मेरी एक अच्छी फिल्म थी।
2: सभी ने तो किया था सर।
5: तुमने भी?
2: यस सर।
1: फिर फरार, उसमें मेरा रोल बहुत अच्छा था अमित जी के साथ, मैं प्यासा तुम सावन मैं दिल तुम मेरे, उसका गाना भी बहुत मशहूर था। ये कुछ फिल्में रही हैं। फिर बड़े होने के बाद गोविंदा के साथ जो मैंने खुददार की, उसमें मेरा रोल बहुत अच्छा था। अनाड़ी की थी वेंकटेश के साथ। फिर ब्लैक फ्राइडे अनुराग कश्यप। तो उस वक्त मिचेल का कैमरा होता था जिसकी मोटर की आवाज नहीं होती थी, और वो उठाने के लिए 3-4 लोग रहते थे, वो बहुत बड़ा कैमरा होता था। सो आई हैव सीन दैट, देन आई हैव सीन एरी कैमरा जिसके अंदर आवाज आती थी, उसके बाद डिजिटल कैमरा आ गया जिसके अंदर कोई आवाज ही नहीं है, बूम माइक्स पहले होते थे, अभी कॉर्डलेस माइक्स आ गए हैं। सो पहले वो फिल्म पे शूट होता था, अभी डिजिटल पे हो गया है। सो यस, आई गेस आई हैव बीन लकी। गानों की रिकॉर्डिंग भी पहले बड़े बड़े स्पूल, वो बड़े बड़े वो चलते थे, हाँ, और पूरा गाना रिटेक करना पड़ता था। अभी तो कॉपी पेस्ट होता है ना, यहाँ से ये उठा लो, वहाँ से उठा लो, रिहर्सल कर लो, इतना पोर्शन फिर से ले लो, तो उस वक्त तो पूरा गाना रिटेक होता था। आई हैव सीन दैट ऑल्सो, तो आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी। यस,
6: 1978 में मास्टर राजू को उनकी फिल्म के लिए मिला था नेशनल अवार्ड। वैसे हाल ही में उनकी एक रील बहुत वायरल हो रही है जो उनकी 1983 की फिल्म लव इन गोवा की एक रील है। तो पहले देखिए कि 1983 में कौन सा ये सीन था।

0: माय बॉय,
1: देखा मैंने कितना अच्छा डांस करता है।
2: ये तो राजू की नकल कर रहा है।
3: व्हाट डू यू मीन?
0: ये राजू कौन है भाई स्वीटहार्ट?
2: एक नया डिस्को डांसर है दादी, वो बहुत ही अच्छा डांस करता है। कल हम नहीं गए थे,
3: लेकिन मेरा स्टाइल अलग है, ये देखो।
2: अच्छा बाबा, तुम राजू से बड़े डिस्को डांसर हो। सुनो, मेरे साथ पैंजिम चलोगे?
3: नहीं।
2: तो मेरे ख्याल में मुझे अकेली आइसक्रीम खानी पड़ेगी।
3: आइसक्रीम?
2: टूटी फ्रूटी।
4: और अब देखते हैं वो रील जो मास्टर राजू ने हमें रिक्रिएट करके दिखाई।

0: ये जो मेरी रील वायरल हुई है, इस फिल्म का नाम है लव इन गोवा। और एक तरीके से जो आज का जो क्राउड है, जो जेन जी है, उनके साथ मेरा जो इंट्रोडक्शन हुआ है वो इस वीडियो के साथ, इस रील के साथ हुआ है। और जो यंगस्टर्स हैं वो मुझे वेल्डन माय बॉय के नाम से जानते हैं। मुझे कई बार रास्तों पर भी लोग वेल्डन माय, नहीं तो वो है वेल्डन माय बॉय, वेल्डन माय बॉय। मैं बोला वेल्डन माय बॉय नहीं, इसके अलावा भी मैंने बहुत काम किया है, लेकिन वो लोग मुझे इससे पहचानते हैं। और इसकी शूटिंग हम लोगों ने गोवा में की थी, और इसमें एक सीक्वेंस था कि जिसमें मैं डांस कर रहा हूँ और मैं अपने पेरेंट्स को डांस करके दिखा रहा हूँ, और डांस मास्टर था नहीं। तो मुझे प्रोड्यूसर ने कहा कि ठीक है तुम अपनी तरफ से कोई स्टेप पे बना दो। तो उस वक्त रॉकी फिल्म लगी थी, तो रॉकी फिल्म का आ देखे ज़रा, तो उसमें कुछ स्टेप्स थे, तो वही स्टेप्स को घुमा फिरा के मैंने, और खुद का कुछ मैंने डाला और घुमा फिरा के मैंने बना दिया। उस वक्त तो लव इन गोवा इतनी चली नहीं, लोगों को उसका प्यार नहीं मिला, तो लेकिन मेरे लिए बड़ा फ़ायदा हो गया कि इतने सालों बाद ये एक छोटा सा वीडियो मुझे हेल्प कर जाता है।
1: मास राजू मुंबई में अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, और रियल लाइफ में वो अपनी पत्नी का हमेशा हाथ बटाते हैं। तो चलते हैं उनके रसोई में, क्योंकि आज वो अपनी पत्नी के साथ नाश्ता बनाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं मास्टर राजू की रसोई में और मिलते हैं उनकी फैमिली से।
0: ये मेरी वाइफ है और ये मैं हूँ, और मैं बहुत ही फट्टू किस्म का डरपोक हस्बैंड हूँ, जैसे कि पति अनाड़ी में मुझे दिखाया गया है कि है ना, मैं अपनी पत्नी से बहुत डरता हूँ और उसके सामने बहुत वो ओवर पावर करके रखती है अपने हस्बैंड को।
2: मैं बस एक ही चीज चाहूंगी कि इनको चाय बनाना कोई सिखा दे प्रॉपर,
0: तो वो
2: थोड़ा सिखा रही हूँ मैं बनाने
0: के। इतने साल हो गए देखो, है ना, इसके बाद में भी मेरी ट्रेनिंग चल रही है।

मार्सेला जी की रसोई में हो गया है नाश्ता तैयार, क्योंकि वो नाश्ता उन्होंने खुद बनाया है जो है बहुत खास ही, एक ऑमलेट। मास्टर राजू का नाश्ता रेडी है, अपने बेटे के साथ बैठकर वो करते हैं नाश्ता और यहीं पर खाने के साथ साथ उन्होंने बताया अपने जीवन के अनुभव और बॉलीवुड में बतौर चाइल्ड एक्टर काम करने का एक्सपीरियंस भी।

0: कि परिचय से ही मुझे लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया, लोगों का प्यार मुझे मिलना शुरू हो गया परिचय से ही. देन आई वेंट ऑन टू डू ऑलमोस्ट 250 फिल्म्स एंड सीरियल्स ही अगर देखा जाए तो आई मेरे ख्याल से 3,500 एपिसोड्स मैंने अभी तक कर लिए होंगे. तो आई हैव बीन लकी. हाइट अच्छी होनी ज़रूरी होती है. लोग उन्होंने अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी आ गए या अजय देवगन को आप देख ले, बहुत ही एवरेज लुकिंग हाइट फेस, लेकिन इतने बड़े स्टार हैं. जब सलमान खान आए थे तो लंबे लंबे हीरो थे, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, टॉल टॉल, लेकिन सलमान खान इतने बड़े स्टार बन गए. तो ये नसीबी है. और सलमान खान के बाद कितने लोग आए, अविनाश वधावन, अय्यूब खान और राहुल रॉय और ये और वो और वो, एक भीड़ लग गई मगर नहीं हो पाया. अब जो ये लक है, ये सिर्फ लक है. मुझे लगता है कि बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इज लक. योर फिल्म वर्किंग, किसी फिल्म के गाने चल गए, जब आशिकी, वही राहुल रॉय, वही राहुल रॉय इतने बड़े स्टार बन गए आशिकी के बाद, उसके बाद नहीं हुआ. तो ये लक था, आपका एक फेस था. अब आपका जो फेस था वो इतना छोटा ही था. कुछ कुछ लोगों का इनिंग बहुत लंबी होती है, अमित जी जैसी, तो आपका लक इतना लंबा फेवर पे. तो बेसिकली लक, डेस्टिनी. अगर टैलेंट की बात करें तो टैलेंट की तो कमी है ही नहीं आज की तारीख में, एक से बढ़ के एक टैलेंटेड लोग है इंडस्ट्री में.
1: करीब 200 से भी ज्यादा फिल्में मास्टर राजू ने काम किया है, जिसमें उन्होंने बचपन से लेकर अपने बड़े होने तक के अलग अलग किरदार निभाए हैं.
2: ओ मम्मी तुम जाओ ना बाहर, तुम्हारी लाडली बेटी आती होगी.
3: अरे बजाना,
2: तुम जब भी गाती हो मेरी वायलिन बेसुरी हो जाती है.
1: लेकिन इसके अलावा टेलीविजन में भी मास्टर राजू कई सालों से काम कर रहे हैं. 80s की दुनिया में भारत का पहला युवा शो चुनौती के भी राजू हिस्सा थे, और अब पतिया नाड़ी से लेकर पर्दे पर नारद मुनि जैसे किरदार निभा चुके हैं.
0: मैं फिल्में कर रहा था एंड देन टेलीविजन हैपेंड. तो मुझे समझ आ गया था कि ना ये टेलीविजन अब रहने वाला है यहाँ पर, एंड दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग हैपनिंग. तो मैंने जंप कर दिया था टेलीविजन. उस वक्त सिर्फ दूरदर्शन था, और दूरदर्शन पर सिर्फ दो ही टाइम स्लॉट थे, एक 9 से 9:30 और एक 10 से 10:30. दो ही सीरियल आते थे, और एक टाइम था जब वो दोनों स्लॉट पे मेरे सीरियल चल रहे थे. 9 से 9:30 चुनौती चलता था और 10 से 10:30 पूर्णिमा चलता था. तो मैंने बहुत जल्दी, जब सिर्फ दूरदर्शन था उस वक्त, मैं समझ गया था कि सीरियल्स एंड टेलीविजन एंड ये बड़ा होने वाला है. उस वक्त लोग मुझे बोलते भी थे, अरे क्या कर रहा है, टीवी क्यों कर रहा है, टीवी क्यों कर रहा है, कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा सिनेमा फिल्म. एंड आई वॉज टेलिंग एवरीबडी कि सी दिस इज गोइंग टू हैपन. तो उसके बाद मैंने टीवी भी किया, मैं फिल्में भी करता रहा. अब मुझे लग रहा है कि वर्टिकल इज द नेक्स्ट बिग थिंग हैपनिंग. तो अगेन आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एक्टर्स. मैंने अभी तक 12-13 वर्टिकल स्टोरीज कर ली है. आज भी मेरी रीडिंग है एक वर्टिकल को लेकर, तो 3 दिन बाद मेरी उसकी वर्टिकल की शूटिंग. तो आई नो नेक्स्ट बिग थिंग इज वर्टिकल. पतिया नाड़ी में मेरा रोल, मुझे बहुत वो रोल करने में भी मुझे बहुत मजा आ रहा है कि एक डिफरेंट रोल है मेरे लिए, कि एक बहुत ही सहमा हुआ डरपोक, और फिर वो कैसे अपनी बेटी के लिए रिबेल कर जाता है और लड़ जाता है सबके साथ. और तो वो बहुत बहुत सारे शेड्स हैं उसके अंदर, और मेरे लिए नया है क्योंकि मेरी रुचि हमेशा रही है नेगेटिव रोल्स की तरफ. और जब मैं बड़ा भी हुआ था तो मुझे नेगेटिव रोल्स करना था, मुझे विलन बनना था. इसलिए मुझे जो भी हीरो के रोल्स उस वक्त भी मिल रहे थे ना, तो मैं मना कर देता था कि नहीं मुझे हीरो नहीं बनना है, मुझे विलन बनना है. तो और फिर मैंने नेगेटिव रोल्स भी बहुत सारे किए. तारा मेरी एक सीरियल आती थी, उसमें मैं विलन था. ऑफकोर्स एक नारद मुनि का जो एक कैरेक्टर था, वो भी बड़ा ग्रे है, वो विलन नहीं है लेकिन थोड़ा सा वो चापलूस टाइप का एक कैरेक्टर. तो वो नारद मुनि, तो मैंने कितने एपिसोड, 10 साल मैंने सिर्फ नारद मुनि का रोल किया है. हर कोई माइथो ऐसा नहीं होता था जिसमें मैं नारद नहीं होता था, तो वो मैंने किया है. तो वो ग्रे और विलन, और वो मुझे, और फिर उसके बाद अभी मुझे मिलता है पतिया नाड़ी, जिसमें मैं बहुत ही डरा हुआ हूँ, बहुत ही सहमा हुआ हूँ. तो उसमें बहुत अच्छा है कि पहले मैं डरता हूँ और फिर उसके बाद मैं एक निकल के आता हूँ बेटी को बचाने के लिए. बहुत अच्छा रोल है, आई एम एन्जॉइंग. आई हैव वर्क विथ ऑलमोस्ट एवरीबडी. एक पता नहीं, शाहरुख के साथ काम करने का कभी हुआ ही नहीं. बिसाइड्स आई वर्क विद सैफ, अक्षय, सलमान, सभी के साथ काम किया मैंने. और एक और चीज़ बहुत मज़े की बात बताऊं कि बचपन में मैंने सबसे ज़्यादा काम जीतू जी के साथ किया. परिचय उनकी होम प्रोडक्शन थी, खुशबू और तुम्हारी कसम, जमानत, बहुत सारी फिल्में की मैंने उनके साथ. और बड़े होने के बाद बालाजी टेलीफिल्म जो उनकी बेटी ने बनाई, तो बालाजी टेलीफिल्म में आज तक एक दिन की भी शूटिंग नहीं की है। और कई बार ऐसा हो, कभी उनका कॉल आता है तो मेरे हाथ में कोई डेली सोप होता है, कभी डेट्स का इश्यू हो जाता है, कभी रोल अच्छा नहीं लगता, कभी कुछ होता है, तो पता नहीं क्या डेस्टिनी है कि अभी तक बालाजी में अपना खाता खुला ही नहीं।
1: अब जरा देखते हैं कि मास्टर राजू की दिनचर्या कैसी होती है। वो है मुंबई में पले बढ़े और बांद्रा में उनका एक घर उनके बहुत करीब है, तो उनके साथ लेते हैं उनकी लोकेलिटी और मोहल्ले का एक टूर, मिलते हैं उनके संगीत साथियों से। उनका एक रूटीन है घर का सामान लाने का, वो जाते हैं आसपास टूर लेते हैं। तो चलिए लेते हैं मास्टर राजू के साथ उनके मोहल्ले का एक टूर।

0: ये ग्रीनरी और जो भी पैच बचा है यहाँ पर, जो आपको पेड़ दिख रहा है यहाँ पर, अभी हम लोगों ने पेड़ कटवाया है, ट्रिम करवाया था, यहाँ पे हजारों पैरट्स थे और सुबह सुबह ची ची ची ची ची ची ची ची ची ची इतना चलता था कि पड़ोस वाले जो है वो इरिटेट हो गए थे, तो वो कटवाया था कि वो उड़ जाए। फिर यहाँ पर आपको बैट्स दिखते हैं शाम को, स्पैरोज जो है ब्राउन वाली, जो लोग बोलते हैं कि आजकल देखने नहीं मिलती, वो आम दिखती है, पिजन्स यहाँ पर दिखते हैं, और साल में 2-3 महीने के लिए मल्टी कलर्ड बर्ड्स आते हैं, वो बिल्कुल मेरी इधर ये जाली पर आकर बैठते हैं, वो शायद माइग्रेट होकर आते कहीं से। तो अब लेकिन अब पता नहीं कितने दिन और रहेगा, क्योंकि रीडेवलपमेंट हो रही है हर जगह, और ये हमारी जो ये सब पड़ोस की बिल्डिंग है ये सब अराउंड 30,000 स्क्वायर फीट का ये पूरा बाजू की सोसाइटीज़ वगैरह मिलकर अब रीडेवलपमेंट की बात करें, जबकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा शांति प्रिय कि यार नहीं अब, और मेरा ग्राउंड फ्लोर का घर है तो कौन आ रहा है क्या हो रहा है सब अड़ोस पड़ोस, और मैं थोड़ा सा बात करता रहता हूँ लोगों के साथ। अब जब टावर बन जाएगा तो पता नहीं कहीं 24th फ्लोर पे कहीं पर होगा और 30th फ्लोर पे जॉगिंग करने जाना होगा, वो बट ठीक है, वो नियम है कुदरत का, चेंजेस होनी है तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा।
1: सुबह सुबह अपने मोहल्ले में सबसे मिलजुल के राजू जी रिफ्रेश हो गए हैं और अब उन्हें जाना है शूटिंग के लिए, न वक्त है सास बहू और बेटिया के जाने का।
0: आई होप आप लोगों को जो मेरा ये घर का टूर है और जो मेरी आज की ये रूटीन है आप लोगों को देखकर मजा आया होगा, तो देखते रहिए सास बहू और बेटियां, और हम लोग दोस्ती बढ़ाते हैं, कीप इन टच, सी यू, बाय।
1: तो ये थे मशहूर बाल कलाकार और अभिनेता राजू, और इनके साथ आज पूरा दिन बिताकर हमें पता चला कि कैसा था 70 और 80 की फिल्मों की दुनिया का जगत, कैसे बदला है टेलीविजन, और कैसे एक अभिनेता ने बाल कलाकार से लेकर बदलते हुए किरदारों में खुद को ढाला है। तो सास बहू बेटिया की हमेशा कोशिश रहती है कि कलाकारों की रियल जिंदगी और किस्से कहानियां आपको बता सके, और यही आज हमारी कोशिश थी। मुंबई से अनुपमा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा, क्या होगा जब इस शो की कहानी में होगी पार्टी? वेल, होंगे यहाँ पर ढेर सारे इमोशंस और उसके साथ साथ हमारे लिए मोस्ट एंटरटेनिंग ड्रामा, क्योंकि आ गई है फिर से हमारी फेवरेट जोड़ी एक दूसरे के करीब। जी हाँ, शब्बीर आलूवालिया और श्रुति झा, और होने वाला है यहाँ पर कमाल। देखिए, ऑलरेडी कहानी में अपराजिता और रक्षित आ रहे हैं एक दूसरे के करीब, जो है हमारे लिए बहुत बड़ी एक्साइटिंग न्यूज। लेकर चलते हैं आपको इन दोनों के पास।

0: मीरा को हो रही है अपराजिता से जलन। प्लस के सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में शुरू हो गई है प्रतियोगिता, जहां पर अपराजिता ने भी अपनी कमर कस ली है और ऐसे में वहां पर पहुंच गए हैं रक्षित भी, जो सभी प्रतियोगियों को दे रहे हैं हौसला।
1: गाना बाना 2026 में आप सबका स्वागत। तो मैं आप लोगों को इस कंपटीशन के बारे में बताऊं। इस कंपटीशन में चार राउंड और हर राउंड एक सरप्राइज। चार राउंड के रिजल्ट के बेसिस पे जो भी विनर होगा उसकी बनाई हुई साड़ी नर्मदा जयंती पर शास्त्री जी के हाथों नर्मदा मैया पर चढ़ेगी। ये साड़ी जो है ये बाबा की विरासत को आगे बढ़ेगी, इसलिए पूरी शिद्दत पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ अपील करूं कि मैं आप सब पर नजर।
0: भाई अपराजिता की ओर देखते हुए रक्षित ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि जीतने वाले को क्या प्राइज मिलेगा। ऐसे में दुबे ने सभी प्रतियोगियों को पहले राउंड के बारे में बता दिया। बस फिर क्या, शुरू हो गया पहला राउंड, जहां पर सामने आ गए पुतले जिन्होंने पहनी हुई है साड़ियां और सभी प्रतियोगियों को आंख बंद कर पहचानना है कि उसका मटेरियल क्या है। एक एक कर सभी प्रतियोगी अपना टेस्ट दे रहे हैं। बारी आई अपराजिता की, तो देखिए कैसे अपराजिता के आते ही ईरा उसे घूर घूर के देख रही है और वो तो पूरी कोशिश कर रही है कि अपराजिता को हार मिले। ऐसे में दुबे रक्षित के कान में जाकर सच्चाई बताता है। यहाँ अपराजिता धीरे धीरे तीसरे पुतले की ओर बढ़ती है। तीसरा पुतला गिरने ही वाला होता है कि वहाँ पर आ जाता है रक्षित, जो अपराजिता को गिरने से बचाता है। ऐसे में अपराजिता पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन रक्षित उसका हाथ पकड़ अपने सीने में रख देता है और तो और जो उसने पहना है उसका मटेरियल पहचानने के लिए अपराजिता का टेस्ट लेता है। बस फिर क्या, इसी दौरान रक्षित की धड़कनें भी तेज होती हैं।

0: Keys tonight.
1: ये तुम क्या कर रहे हो? इसके पतले वाले फैब्रिक को नहीं पहचाना? This is not right.
0: फैब्रिक को पहचाना? हाँ. वो भी गलत है.
2: गलत? नोएडा मैडम, रूल्स के हिसाब से किसी भी कंटेस्टेंट को सिर्फ दो फैब्रिक पहचाने हैं. उस हिसाब से अपनाजिता मैडम गलत है.
1: ये गलत है. This is not fair.
0: This is fair. Absolutely fair. In fact, ये सही है. She has qualified.
3: हिम्मत मेरे ख्याल से अपराजिता को इस बात से मिल रही है कि अब उसने समझ लिया कि उसे अपराजिता बनना है. बेटी, बहन, बीवी, बाकी सारे जो रोल्स हैं वो बाद में वो देख लेगी. पहले वो अपराजिता बनेगी, तब वो हर चीज़ का सामना कर पाएगी. हाँ, अभी तो बहुत नर्वस क्योंकि अभी शुरू ही हुई है, हम कहानी बता ही रहे हैं. और किसी किसी सीन में बहुत ज़्यादा मुझे दुख होता है कि आई कैन नॉट इमेजिन दैट पीपल हैव टू लिव लाइक दिस. पर किसी किसी सीन में बहुत प्राइड भी फील होता है व्हेन अपराजिता ट्राइज टू फाइट द सिचुएशन. और क्योंकि अभी कुछ भी उसके हित में नहीं है, क्योंकि फैमिली भी समझती है कि ललित बहुत अच्छा इंसान है, तो उनको लगता है कि अपराजिता क्यों नहीं कोशिश कर रही टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क, शी इज़ नॉट इवन ट्राइंग. तो तब मुझे बुरा लगता है. लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है कि अपराजिता ने अब सोच लिया कि अब मैं किसी और से मदद नहीं मांगूंगी, मैं खुद करूंगी जो बन पड़ेगा. एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगी, पर मैं अपनी सिचुएशन से बाहर निकलूंगी और अपनी फैमिली को भी इस प्रॉब्लम से बाहर निकालूंगी.
4: अब ईरा कितनी भी कोशिश कर ले, जीत तो हमेशा सच की होती है. और इसी बीच दुबे ने सभी के सामने उन प्रतियोगियों के नाम का ऐलान कर दिया जिन्होंने जीत हासिल की है. उसमें अपराजिता का भी नाम शामिल है. ऐसे में अपराजिता बहुत खुश है और उसे देखकर रक्षित भी खुश हो रहा है. लेकिन ईरा, उसको हो रही है जलन. इतना ही नहीं, उसे तो यही लग रहा है कि रक्षित जानबूझकर अपनी मनमानी कर रहा है. ऐसे में रक्षित उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए पहुँच जाता है अपराजिता से मिलने, और तो और देता है आदेश कि वो से बाहर आकर मिले. ऐसे में रक्षित की ये बातें सुनकर अपराजिता हैरान है. लेकिन क्या करे, काम तो इन्हीं के साथ करना है. ऐसे में अपराजिता को जाना पड़ता है. वहीं दूसरी ओर ललित ने बुला लिया है अपराजिता को उसे सबक सिखाने के लिए. ऐसे में अपराजिता आ तो जाती है और ललित उसे ताने भी कसता है. इतना ही नहीं, वो तो अपराजिता का हाथ थाम कर ले जाता है उसे ये दिखाने कि कैसे उसने उसके पापा को सजा दी है उसके बदले. वहीं दूसरी ओर अपने पापा को इस तरह काम करता देख अपराजिता दुखी हो रही है. लेकिन उसका दुख तब बढ़ता है जब दुकानदार उसके पापा को उसके ही सामने चिल्लाने लगता है.
5: ये कोई चैरिटी है? तो दुनिया भर के भूखे रंगों को काम दूं? तो चलो यहाँ से निकले आ सकते.
6: मेरी बात, ये एक मौका दी,
5: मैं कर लूंगा. हाँ, करूंगा. क्या कर लोगे यार? नुकसान ही करोगे?
6: नहीं,
5: ना भिक्षा में इंसान आज तक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा. तुम निकलो तो यहाँ से.
1: तुम नहीं, आप जितनी साड़ियाँ पूरी जिंदगी में नहीं देखी होंगी ना आपने, उतने इस हाथों ने खुद बनाई. बुनकर और मेरे पापा से कोई इस तरीके से बात नहीं कर सकता. इससे जब भी बात करे अदब से बात करे.
3: ये तो अब क्या है, क्योंकि अपराजिता आवाज़ उठा रही है तो अब ललित को पता है कि उसकी जो कमज़ोरी है उसका परिवार है, और वो अपने परिवार को दुख नहीं पहुंचाना चाहती या कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहती. इसलिए पूरी तरीके से वो ललित की सच्चाई नहीं बता पा रही है अपने फैमिली को कि कहीं उसके फादर के हेल्थ पे कोई बुरा असर ना पड़े अगर उनको सच पता चल जाए. तो उस ललित ने इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए अपराजिता को, ही इज़ मेड अपराजिताज फादर राम गोपाल टू कम एंड वर्क इन दिस शॉप फॉल पीको का काम करते हुए, जबकि उनकी आंखें कमज़ोर हैं, उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है ये काम करने में. और अपराजिता को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि वो अपने वक्त पे अपराजिता के फादर ही नहीं, उसके टीचर भी हैं और इतने बड़े कलाकार हैं, बुनकर हैं, महेश्वरी साड़ियाँ बनाते थे, और आज वो ये काम कर रहे हैं जहाँ पे कोई उनसे बदतमीजी कर रहा है. ये अपराजिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता.
7: शी वॉज हर्ट डेफिनेटली, बट मुझे ना बोल के वो डायरेक्टली कन्फ्रंट ना करके जो सही थी, जो चीज़ सही थी वो अपराजिता ने की बेसिकली, जाके जिस बंदे को कन्फ्रंट करना था उसे जाके किया, या मतलब मुझे डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं किया। तो देन ही डिसाइडेड कि चलो ठीक है यार, मतलब इसको तो पर्सनली तो बहुत सता लिया, अब इसके पेरेंट्स के थ्रू इसको हर्ट करते हैं। सो दैट्स व्हेन ही डिसाइडेड कि चलो ठीक है, कुछ मैनिपुलेशन करके इसके फादर के थ्रू इसको हर्ट करते हैं। तो यस, आई मीन ही इज अ मैनिपुलेटिव गाय।
4: अब ललित चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अपराजिता ने ठान ली है कि वो हर कदम पर मुश्किलों का सामना करेगी, वो भी डट कर। देखना होगा कि अब अपराजिता की राहों में और कितनी मुश्किलें आएंगी।
8: थैंक यू, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले राउंड में।
4: मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
9: कुछ तो बात है इसमें।
10: एक वीकेंड पर तो हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए सेल्फ लव, पॉजिटिविटी एंड पैशन। वाओ, कुछ ऐसा ही कह रही हैं आज हमसे हमारी राध्या। राध्या, लेकिन आपको फुर्सत कहाँ है ये सैटरडे वैटरडे सेलिब्रेट करने की, क्योंकि आपकी कहानी में तो एक ड्रामा खत्म होता है तो दूसरा रहता है तैयार, एक सिचुएशन जाती है तो दूसरी रहती है रेडी, एक ट्विस्ट खत्म होता है तो तीसरा दे रहा होता है आपके दरवाजे पर दस्तक। जी हाँ, दूसरा मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि यहाँ तो है ट्विस्ट की बौछार। लेकर चलते हैं आप सबको मन अति सुंदर के सेट पर।
4: निहारिका का खुलासा। शादी के मंडप पर हुआ तमाशा। निहारिका को लगी हथकड़ी। मिली राध्या को जीत। दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में निहारिका को लगा था कि आज वो प्रथम उसके घर वालों और पुलिस को चकमा दे देगी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि राध्या उसे घर के हर कोने में ढूंढ रही है। ऐसे में निहारिका राध्या के साथ लुका छिपी का खेल भी खेल रही है। निहारिका कोशिश तो करती है राध्या से बचने की, लेकिन किस्मत का खेल तो देखिए कि राध्या की उस पर नजर भी पड़ जाती है। और निहारिका इस बात से अनजान रसोई में जाकर आटे को खाली कर आटे के डिब्बे में अपने आप को बंद कर लेती है ताकि वो राध्या को नजर ना आए।

लेकिन राध्या वो भी पहुंच गई है रसोई में। लेकिन हैरान है ये देखकर कि रसोई में निहारिका है ही नहीं। तभी उसकी नजर पड़ती है बाहर पड़े आटे पर और वो ये देखकर हैरान है कि आखिर इतना सारा आटा बाहर कर क्या रहा है। ऐसे में वो आटे का डिब्बा भी खोलकर देखती है लेकिन उसे उसमें निहारिका नजर नहीं आती। ऐसा वो ड्रामा कर रही है

वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रथम को गिरफ्तार कर ले जा रही है और प्रथम चीख चीख कर कह रहा है कि निहारिका इसी घर में मौजूद है। इसी बीच होती है ढुनकते हुए ड्रम की एंट्री, जो लेकर आई है राध्या, और देखिए कैसे उस ड्रम के बाहर आटे से लथपथ बाहर निकलती है निहारिका, और होता है पुलिस के सामने ये खुलासा कि निहारिका जिंदा है।

0: हमारा खेल खत्म। बॉल, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया।
1: निहारिका पकड़ी गई तो ये तो काफी राध्या ही पकड़ लेती है मुझे। मैं एक आटे के ड्रम में छुप जाती हूँ और सब लोग ढूंढ रहे हैं, पुलिस मुझे ढूंढ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको दिख जाती हूँ मैं राध्या को, मेरी कि ये इसके अंदर छुपी हुई है। और वो फिर पूरा ड्रम ऐसे नीचे रोल करके सबके सामने लाती हूँ और मैं उसके ड्रम से बाहर से निकलती हूँ, पूरे इसके आटे वाटे के साथ, आटे और पूरी आटे वाली बाहर निकलती हूँ। और फिर पानी डालती है राध्या मेरे ऊपर और रिवील होती हूँ कि ये निहारिका है और ये जिंदा है।
2: बहुत सारे लुक्स की जर्नी थी निहारिका के, बहुत सारे जालों की जर्नी थी। फाइनली निहारिका का सच सबके सामने, मतलब कॉन्क्रीट पे लिख के आ गया है, पुलिस को भी पता चल गया है। तो आई होप अब निहारिका कोई पंगे ना करे एंड अब थोड़ा बहुत हमारे बीच में भी माहौल अच्छा हो गया है कि मतलब कि हम भी अब चिड़े चिड़े नहीं रह रहे एक दूसरे से, अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो अब देखो क्या होता है।
3: आई थिंक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है निहारिका का सच सबके सामने लाने के लिए। पहली बार लाया, किसी ने बिलीव नहीं किया, दूसरी बार लाया, सबने बिलीव इतना ज़्यादा कर लिया कि निहारिका ही ऑफेंड हो गई, मारने वारने लग गई सबको।
2: पहली बार लाया तो निहारिका को हो गया मेंटल प्रॉब्लम,
3: मेंटल प्रॉब्लम हो गया। अब फाइनली ये वाला सबसे बड़ा था क्योंकि हर बार प्रथम एटलीस्ट सेफ रहते हैं, इस बार जेल पहुंचा
2: दिया, क्विंटल आटा यूज किया तो ये सबसे बड़ा। दिखाइए जरा आटा क्या पूरा पड़ा हुआ सेट पे।
4: निहारिका का सच सामने क्या आया कि निहारिका ने पुलिस के सामने ही प्रथम पर ही धोखे का इल्जाम लगा दिया। इतना ही नहीं, वो तो पुलिस के सामने प्रथम के गिरेबान पर हाथ भी डालती है।
0: आपको बातों में घुमा रहा है। हाँ, सच तो ये है कि इन दोनों ने ना ही मुझे मेंटली और इमोशनली टॉर्चर किया बल्कि मुझे मारने की भी कोशिश की है। उस दिन मुझे धक्का देके ये मुझे खाई से गिराना चाहता था, मारना चाहता था। ये अपना शुक्र है कि मैं बच गई, लेकिन इस पूरे परिवार को सबक सिखाने के लिए मैंने मुझे खाना था।
1: दिल बहुत टूटा है और ये सीन मुझे करने में बहुत मज़ा आया। इवन मैं अभी भी इमोशनल हूँ और पता नहीं मैं कैसे उस इमोशन में चली गई और मतलब स्टिल आई एम फीलिंग सो हाई एंड आई कांट एक्सप्लेन, बट अभी भी मतलब वो कहते हैं ना कि वो फीलिंग अभी गले में अटकी हुई है। तो आज का जो मेरा परफॉर्मेंस था स्पेशली मुझे भी बहुत अच्छा लगा, खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, बट मैं बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी इस सीन में और स्टिल मुझे यही सारी चीज़ें घूम रही है और मैं पता नहीं कहाँ से, मतलब मैं परफॉर्म जब करती हूँ ऐसे सीन्स तो मैं प्रोफेशनली करती हूँ, लाइक मेरी इमोशन सब कुछ, मतलब मुझे पता है कि मैं कर रही हूँ या अपना 100% देती हूँ, इमोशन यही सारे दिखते हैं, बट आज मैं अंदर से कुछ ज़्यादा ही फील कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा सीन रहा, वन फ्लो में रहा, बहुत मज़ा आया और काफ़ी कुछ अलग करने को मिला। आटे में मैं गिर गई, फिर आटे में मेरे ऊपर पानी गिरा, तो सारी चीज़ अलग और डिफरेंट सारी चीज़ें करने को मिल रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
3: ये वाला सबसे एक्साइटिंग रहा होगा हमारा क्योंकि मैंने बहुत सारे लुक्स लिए हैं तो मैंने मज़े बहुत किए हैं, पर फाइनली अभी सच सबके सामने आ गया है, पुलिस को पता चल गया है, फैमिली को तो पता ही था कि निहारिका कितनी चंट है, पर पर अभी सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो रहा है। प्रथम राध्या भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने लग गए हैं। अभी खुद की फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं है, बट आई थिंक अब उनकी दोस्ती गहरी होती हुई नजर आ रही है।
4: भाई निहारिका ने तो इस तरह बात घुमा दी कि पुलिस को कहीं न कहीं प्रथम पर ही शक होने लगा। लेकिन तभी राध्या के मोबाइल पर आ जाता है वो हादसे वाला वीडियो और देखिए कैसे राध्या पुलिस को वो वीडियो दिखाती है और ये बताती है कि जो वीडियो पुलिस को मिला है वो निहारिका की माँ ने एडिट करवाया था। बस फिर क्या, सच सामने आते ही निहारिका गुस्से से पागल हो जाती है और देखिए कैसे शादी के मंडप को बिखेरने लगती है और घर में तमाशा करती है।
1: तो नहीं करेगा कोई, क्योंकि इतने कांड कर चुकी हूँ मैं, इतना परेशान कर चुकी हूँ इन लोगों को। और ऐसे ही नहीं किया, मेरा भी कहीं ना कहीं दिल दुखा है तभी मैं इतना परेशान कर रही हूँ। सब लोगों का अलग अलग होता है कि कोई रिवेंज लेते हैं नहीं लेते हैं। निहारिका लेती है तो मैं लेती हूँ रिवेंज, तो ये मेरा तरीका है रिवेंज लेने का। तो बस यही है, कोई माफ नहीं कर पाएगा ऑफकोर्स।
4: कोई माफ करे ना करे, लेकिन प्रथम ने तय कर लिया है कि वो निहारिका को सबक सिखाएगा ही, क्योंकि जाने अनजाने निहारिका ने राध्या को कई सारी चोटें जो पहुंचाई हैं। ऐसे में प्रथम गुस्से में आकर निहारिका को सच बताता है और शुक्र मनाता है कि उसकी शादी निहारिका से नहीं हुई। और तो और वो ये भी बताता है कि उसका दिल अब राध्या के लिए धड़कने लगा है। ये सुनकर निहारिका कहीं न कहीं इमोशनल है। और तो और जो उसने कांड किए हैं उसे उसकी सजा मिलेगी ही। ऐसे में पुलिस हथकड़ी लगाकर उसे लेकर तो जा रही है।
0: मैं नहीं जाऊंगी कहीं, नहीं, छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया है, पकड़ लेना कोई को पकड़ो।
5: मिस निहारिका, आपके झूठ के सारे सबूत मेरे पास हैं।
4: और घर वाले इस बात का शुक्र मना रहे हैं कि अब इनके घर में कोई ट्विस्ट नहीं आएगा और सभी राध्या पर प्यार जता रहे हैं। लेकिन ये प्यार कब तक रहेगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
6: चारों ओर है पार्टी मूड एंड सेलिब्रेशन और ये है बहुत ही रॉकिंग। लेकिन आ गया कहानी में एक नया ट्विस्ट और हो गया शॉकिंग। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है हमारी एंटरटेनमेंट की दुनिया में, जहां से हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की अलग अलग खबरें जो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
4: सास बहू और बेटियां लेकर हाजिर हैं आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। रॉकिंग खबर जुड़ी हुई है जी टीवी के सीरियल तुम से तुम तक से। देख लीजिए प्रोमो जहां पर अनु और आर्यवर्धन की जल्द ही सगाई होने वाली है। लेकिन इस सगाई में आएगा ट्विस्ट, क्योंकि होगी आर्यवर्धन की पहली बीवी की एंट्री, जिसका किरदार निभा रही है अनिता हसनंदानी। अब ये अन्नू का सपना है या फिर अन्नू के पिछले जन्म की यादें, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।
7: आर्या, ये राजनंदिनी की रिंग तुम अन्नू को पहना के उसके साथ नए जीवन की शुरुआत करोगे।
8: एक साल का सफर और आज उनके रिश्ते का पहला पड़ाव। मोहब्बत अपनी मंजिल तक पहुंच रही है, लेकिन
4: सीरियल वसुधा के सेट पर दिखा है सितारों का रॉकिंग अंदाज। वही सीरियल दूसरे हफ्ते भी टीआरपी पर नंबर वन पर है। ऐसे में सेट पर हो रहा है सेलिब्रेशन, पूरी टीम मिलकर केक काट रही है जिसके वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं।

इसी के साथ स्टारप्लस के सीरियल मिस्टर मिसेस परशुराम के सेट पर भी सेलिब्रेशन हो रहा है, क्योंकि सीरियल ने पूरे कर लिए हैं 100 एपिसोड। ऐसे में खुशी मनाना तो बनता है।

0: ब्रदर्स के सीरियल मंगल लक्ष्मी में मंगल की परीक्षा शुरू होने वाली है क्योंकि उसकी दोनों बेटियां आरव की चुंगल में फंस गई हैं। अब देखना होगा कि कैसे मंगल अपनी बेटियों को बचाएगी।
1: नहीं होगा मेरी बच्चों। निशाना, शुभी।
2: तुम्हारी आवाज सुन के मम्मी जी को बहुत मजा आएगा।
3: देश के मिशन का खतरा क्या मंगल के बच्चों के लिए बनेगा मुसीबत?
1: तुझ जैसे राक्षस का बात करने आई हूँ मैं।

यामी गौतम की आने वाली फिल्म नई नवेली में जैकलिन फर्नांडिस एक स्पेशल अपीयरेंस में नजर आएंगी। वैसे बता दें कि नई नवेली फिल्म एक सुपरनैचुरल हॉरर कॉमेडी फिल्म है। अब जैकलिन का किरदार क्या होगा, इस बात का जल्द ही खुलासा होगा। खबरें आ रही हैं कि कलर्स के आने वाले सीरियल मुक्काबाज में जैन इमाम मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। इससे पहले हर्षद चोपड़ा आने वाले थे, लेकिन हर्षद चोपड़ा ने ऑप्ट आउट कर लिया है। ऐसे में जैन इमाम उस किरदार को रिप्लेस कर रहे हैं और उनकी जोड़ी जमेगी जानवी सोनी से। जल्द ही शुरू होने वाला है खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 का शूट। ऐसे में खतरों के खिलाड़ी 15 में नजर आने वाले सभी प्रतियोगी रुबीना दिलेख, गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, जैस्मिन भसीन, करण वाही, ऋत्विक धनजानी, आविका गौर, शगुन शर्मा, विशाल आदित्य सिंह, अविनाश मिश्रा, औरी, हर्ष गुजराल और रूहानिका धवन एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए हैं, क्योंकि सभी निकल रहे हैं केप टाउन के लिए और जल्द ही केप टाउन में पहुंचकर इनको मिलेंगे खतरों के टास्क।

0: देख लीजिए अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म द जंगल का ये टीजर, जहां पर कॉमेडी के साथ साथ खतरा भी मौजूद है।
1: रुक क्यों गया, आगे सिग्नल आया क्या?
2: मेरे को नहीं करना ये फिल्म।
3: भैया करोड़ों रुपए मिल रहे हैं।
2: हमेशा पैसे बीच में आ जाते हैं।

दर्शकों के प्यारे अरमान यानी कि रोहित पुरोहित ने अपने बच्चे और बीवी संग शेयर की हैं तस्वीरें, और उन तस्वीरों को दर्शकों से मिल रहा है ढेर सारा प्यार भी।

भी ज्योति अपने प्रेगनेंसी हुड को एंजॉय कर रही हैं और उसकी तस्वीरें उन्होंने शेयर की हैं अपने फैंस के लिए। उन तस्वीरों में सुरभि ज्योति के चेहरे पर प्रेगनेंसी का ग्लो साफ साफ दिखाई दे रहा है।

0: तो देखा आपने, सैटरडे सिर्फ एक वीकेंड नहीं है, ये तो फन और सेलिब्रेशन का दूसरा नाम है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये सैटरडे वाली पार्टी? अब तो वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, तो मुलाकात होगी आपसे कल सेम टाइम सेम जगह ओनली ऑन सास बहू और बेटियां, जहां फिर एक बार लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, एंजॉय योर वीकेंड, बाय बाय, नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
2: Some people think that Talk Sport's just a clever name, that we just talk sport. But that's absolute balderdash. We breathe it, dream it, think it, play it, and eat it for breakfast, wrapped up in an English muffin. So, if you want to get seriously sauteed by soccer, poached by the Premier League, and marinated by monster news and reaction, listen to Talk Sport. It's not just a clever name, dude. Listen live from London on TuneIn and munch it down for free. Mmm, delicious. A bit salty. Warning, Talk Sport definitely contains nuts. Yuck, yuck, yuck.
3: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect.

0: व्रत महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर की विधि विधान से बरगद की पूजा, पति की लंबी उम्र की कामना। यूरोविजन 2026 सॉन्ग कॉन्टेस्ट का फाइनल आज वियना में, कई देशों के दिग्गज कल संगीतकारों के बीच मुकाबला, दुनिया भर के करोड़ दर्शकों को शो का इंतजार। कान 2026 में उर्वशी रौतेला का ग्लैमरस लुक, थाई चीनी पॉप गायक माइक एंजेलो भी साथ में नजर आए। उर्वशी ने इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
0: देश भर में भक्ति और आस्था के साथ मनाई जा रही शनि जयंती, शनि देव के दर्शन के लिए अकोला में 200 साल से ज्यादा पुराने मंदिर में उमड़ रहे श्रद्धालु। आज शनि जयंती के मौके पर मना विशेष संयोग, शनिवार शनि जयंती और ज्येष्ठ अमावस्या का दुर्लभ योग, शनि मंदिर में 56 भोग, विशेष पूजा, जन्मोत्सव की तैयारी। भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रिय तेल, तिल और फूलमाला अर्पित कर रहे श्रद्धालु, कष्टों से मुक्ति और सुख समृद्धि की कामना कर रहे श्रद्धालु। शनि जयंती पर काले तिल, उड़द की दाल, तेल, जूते, कपड़े और लोहे की वस्तुओं का दान करने का विशेष महत्व। शनि जयंती पर शनि मंदिर की विशेष सजावट, लगाई गई आकर्षक लाइट, शाम को 11 किलो के कलाकंद का केक काटने की तैयारी, भंडारे का भी होगा आयोजन। शनि जयंती पर दिल्ली के शनि धाम में दर्शन को पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, 23 साल बाद एक ही दिन पड़ी शनि अमावस्या और शनि जयंती। न्याय के देवता शनि देव के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, शनि धाम में पूरे विधि विधान से की जा रही शनि देव की पूजा। शनि धाम में पूरे पारंपरिक विधि विधान से किया जा रहा है शनि देव का अभिषेक, आज के दिन शनि देव के दर्शन और पूजन का विशेष महत्व। वाराणसी में भी पूरी आस्था के साथ मनाई जा रही शनि जयंती, सुबह से ही शनि देव के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। वाराणसी के मैदागिन चौराहे पर स्थित शनिदेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने जलाए सरसों के तेल के दीपक, काली तिल, काले उड़द, नीला पुष्प दीपक भी कर रहे दान। प्रयागराज में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा वट सावित्री का त्यौहार, सुबह से बरगद के पेड़ की परिक्रमा और पूजा करती दिखी महिलाएं। सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री का व्रत रखकर और 16 श्रृंगार कर बरगद के पेड़ की पूजा की, पति की लंबी उम्र और घर में खुशहाली का मांगा वरदान। प्रेम और समर्पण का प्रतीक है त्यौहार, सावित्री ने तपस्या से यमराज को किया था प्रसन्न, मान्यता है कि यमराज ने बरगद के पेड़ के नीचे लौटाए थे सत्यवान के प्राण। दिल्ली में भी पूरी आस्था के साथ मनाया जा रहा वट सावित्री का त्यौहार, व्रती महिलाओं ने बरगद के पेड़ के नीचे पूरी विधि विधान से की पूजा। पूर्वी दिल्ली के मंदिर परिसर में व्रती महिलाओं ने बरगद के पेड़ के तने पर लपेटा कच्चा धागा, महिलाओं ने अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना की। चार धाम में दर्शन के लिए लगातार उमड़ रहे श्रद्धालु, 27 दिन में लगभग 13.5 लाख भक्तों ने की चार धाम यात्रा। केदारनाथ धाम में कल 27,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन, अब तक 5,76,000 से अधिक भक्त पहुंचे बाबा केदार के धाम। बद्रीनाथ धाम में भी कल 22,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन, इस साल अब तक 3,65,000 से अधिक भक्त पहुंचे बद्री विशाल के दरबार। यमुनोत्री में धाम में अब तक 2,00,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन, गंगोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं की संख्या 2,00,000 के पार। चार धाम यात्रा में लगातार बढ़ रही वाहनों की आवाजाही, श्रद्धालुओं की संख्या में हो रही बढ़ोतरी। मेवाड़ के श्री सांवरिया सेठ मंदिर में आया रिकॉर्ड चढ़ावा, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी पर खुली गई दान पेटियां। पहले चरण की गणना में निकले 11,30,00,000 रुपए, 18 मई को हुई थी होगी अगली गिनती। मंदिर मंडल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुई गणना, भक्तिमय जयकारों से गूंज उठा परिसर। सांवरिया सेठ में श्रद्धालुओं की अपार आस्था, भक्तों का मानना है कि सांवरिया सेठ सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। सावलिया सेठ मंदिर में हर महीने आता है करोड़ों का चढ़ावा, देश भर से दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। बिहार के मोतिहारी में बन रहा विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर में नंदी की स्थापना होगी विश्व के सबसे बड़े सहस्त्रलिंगम शिवलिंग, इस पर इस साल सावन में श्रद्धालु कर सकेंगे जलाभिषेक।

0: मंदिर के निर्माण के बाद धार्मिक पर्यटन को मिलेगी नई रफ्तार, स्थानीय लोगों को रोजगार के मिलेंगे अवसर। विराट रामायण मंदिर में 18 शिखर और 22 मंदिर का होगा निर्माण, महावीर मंदिर ट्रस्ट के प्रतिनिधि ने मंदिर परिसर का किया निरीक्षण। महावीर मंदिर ट्रस्ट के प्रतिनिधि ने कार्य को लेकर जताई नाराजगी, जल्द निर्माण करने के दिए निर्देश। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के दरबार में परिवार संग पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, विधि विधान से की पूजा। वृंदावन पहुंचे प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर, संत प्रेमानंद महाराज का लिया आशीर्वाद। भोलेनाथ के भजन से गूंजा वृंदावन, प्रेमानंद महाराज के सामने कैलाश खेर ने गाए भजन।
1: कै बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा, तीनों लोक बसाए बस्ती में, तीनों लोक बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में, अजी राम भजो जी, राम भजो जी, शिव का वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन किया करो जी, अगड़ बम बम बम बम बम बम बम बम बम लहरी, अगड़ बम बम बम बम बम बम बम बम बम लहरी, अगड़ बम बम बम बम बम।
0: राधा के लिए कुंज आश्रम में गायक कैलाश खेर ने मीरा बाई के भजन भी गाए, प्रेमानंद महाराज ने की सराहना। कैलाश खेर को प्रेमानंद महाराज ने बताई नाम जप की महिमा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी कर रहे मौजूद। पंजाब के होशियारपुर से आई गुड न्यूज, 30 फीट गहरे बोरवेल में गिरे बच्चे का किया गया सफल रेस्क्यू। होशियारपुर के चक समाना गांव में 9 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बोरवेल से सुरक्षित निकाला गया बच्चा, 4 साल का मासूम। बच्चे के रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ पंजाब पुलिस और प्रशासन के लोग भी रहे शामिल, इस दौरान राज्य के जेल मंत्री और सांसद भी रहे मौके पर मौजूद। डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ने संभाली रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान, प्रशासन और एजेंसियों के तुरंत की गई कोशिशों की इससे बची मासूम की जान। बच्चे के रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ के 40 से ज्यादा अधिकारी हुए शामिल, शाम 4 बजे घर के पास खेलने के दौरान बोरवेल में गिर गया था 4 साल का गुरुकरण। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक लेक्चर का किया आयोजन, कार्यक्रम में लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दी गई जानकारी। कार्यक्रम में सेना ने बताया कि क्यों और कैसे अंजाम दिया गया पूरा ऑपरेशन, स्टूडेंट्स ने सेशन को बताया इन्फॉर्मेटिव, बोले दिन में सेना के लिए बड़ी इज्जत। जम्मू कश्मीर में सरकार के प्रयासों का असर, ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को उपलब्ध कराया जा रहा रोजगार। स्वयं सहायता समूहों के जरिए आचार, ड्राई फ्रूट, मसाले और किराने के सामान तैयार कर रही ग्रामीण इलाके की महिलाएं। महिलाओं को डिजिटल साक्षरता का भी दिया जा रहा है प्रशिक्षण, रोजगार के साथ साथ वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने की भी बन रही है ग्रामीण महिलाएं। त्रिपुरा का एक पुलिस स्टेशन बना, कानून व्यवस्था शांतिपूर्ण, सह अस्तित्व और सांप्रदायिक सौहार्द का राष्ट्रीय उदाहरण। उत्तरी त्रिपुरा जिले में वांगबुन थाने के तहत आने वाले जम्पुई हिल्स इलाके में इस साल अब तक नहीं दर्ज हुई कोई शिकायत एफआईआर। समाज में शांति बनाए रखने की दिशा में आसान उपलब्धि, स्थानीय उप समुदायों में भाईचारा बढ़ाने की पुलिस के प्रयासों को दिया जा रहा उपलब्धि का श्रेय। यूपी में आंधी तूफान पीड़ित लोगों के लिए राहत वाली न्यूज, मुख्यमंत्री के निर्देश पर पीड़ित परिवारों को 24 घंटे के अंदर दी गई आर्थिक सहायता। यूपी में आंधी तूफान से पीड़ित 111 परिवारों को दी गई आर्थिक मदद, प्रभारी मंत्रियों और जिलाधिकारियों ने पीड़ितों से मिलकर दिए 4-4 लाख रुपए।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen. Looking for more sports analysis between games? TuneIn has got what you need with all the sports podcasts right here. Whether you're looking for hot takes, post-game analysis, or good old-fashioned fun, we've got all your sports podcasts all in one place. The Bill Simmons Podcast.
5: It's college football time. College basketball feels
4: Pardon
5: like
4: in my take.
6: The Rams catching the Commanders.
4: And Hank much more. Jump into the conversation and don't miss a single play. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
2: Good news today is really good. It's good in this. वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरि का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरि है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरि आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हड़के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ। ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
5: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त, रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की, रात 9 बजे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
9: नीदरलैंड्स के दौरे पर पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात, सांस्कृतिक कार्यक्रम से हुआ स्वागत, विदेशी धरती पर झलका भारत का गर्व।

दुर्लभ योग में मनाई जा रही शनि जयंती। अकोला के प्राचीन मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। नवग्रह शनि मंदिर में भक्तों ने लगाया 56 भोग। वट सावित्री पर स्वागतों ने रखा व्रत। महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर विधि विधान से की बरगद की पूजा। पति की लंबी उम्र की कामना। यूरोविजन 2026 सॉन्ग कॉन्टेस्ट का फाइनल आज। वियना में कई देशों के दिग्गज संगीतकारों के बीच मुकाबला। दुनिया भर के करोड़ों दर्शकों को शो का इंतजार। कान 2026 में उर्वशी रौतेला का ग्लैमरस लुक। थाई चुनी पॉप गायक माइक एंजेलो भी साथ में नजर आए। उर्वशी ने इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें।

नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। शनि जिनका नाम सुनते ही व्यक्ति को डर लगने लगता है, उसके मन में शंकाओं का जन्म होने लगता है। लेकिन शनि हमेशा अनिष्ट नहीं करते, वो तो कर्म फलदाता है। देवताओं से उन्हें न्यायाधीश की उपाधि मिली हुई है। आज हम आपको शनि की शुभता कैसे पाए इसके उपाय बताने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि शनि का पीपल से क्या संबंध है, पीपल की पूजा करने से किस तरह से शनि से जुड़ी बाधाओं का निवारण किया जा सकता है, साथ ही शनि को अनुकूल बनाने के उपाय भी जानेंगे।

0: सनातन धर्म में कंकड़ कंकड़ शंकर माना गया है। जड़ चेतन में ईश्वरीय भाव की कामना की जाती है। तभी तो यहाँ तुलसी का भी पूजन होता है, तो साथ ही पूजा होती है बरगद और पीपल की, जिन्हें देवतुल्य माना जाता है। आज हम जानेंगे कि पीपल की पूजा करने से कैसे शनि की कृपा पाई जा सकती है, साथ ही जानेंगे कि पेड़ पौधों का ग्रहों से क्या संबंध है। ज्योतिषी मानते हैं कि पीपल और शमि दो ऐसे वृक्ष हैं जिनकी कृपा मिलने पर शनिदेव की नाराजगी का सामना कभी नहीं करना पड़ता। साथ ही ज्योतिष में माना जाता है कि अगर आप गृह कलेश और आर्थिक बाधा से परेशान हैं, तो पीपल की उपासना करने से आपकी इन समस्याओं का समाधान हो जाता है।
1: शनि व्यक्ति के कर्म और उसके फल का स्वामी है। जीवन में हर कर्म के शुभ या अशुभ फल शनि ही प्रदान करता है। आमतौर पर शनि ही दंड देता है और व्यक्ति के दुख का कारण बनता है। अतः आम लोगों में इसको लेकर भय व्याप्त है। शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए जप, तप और दान करना हमेशा शुभ होता है। इसमें भी शनि पीड़ा को कम करने के लिए और गलतियों के प्रायश्चित करने के लिए दान करना सर्वोत्तम होता है।
2: पीपल की पूजा करने से शनि देव की बहुत सी समस्याओं में लाभ मिलता है। अर्थात यदि व्यक्ति गृह कला से परेशान है, उस पर शनि की कुदृष्टि है, आर्थिक दृष्टि से बहुत परेशान है, उसको संतान की उत्पत्ति नहीं रहे हो रही है, उनका व्यापार नहीं चल रहा है, तो प्रत्येक शनिवार को ओम सम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल के वृक्ष के पास सरसों का तेल की दीपक, उसमें काला तिल डाल करके जो है चलाना चाहिए, और पीपल के जो वृक्ष है उसकी सप्त परिक्रमा अर्थात सात परिक्रमा करनी चाहिए।
0: चलिए जानते हैं पीपल और शमी की उपासना करने से शनि देव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। हर वृक्ष और हर पौधा अपने अंदर एक विशेष गुण रखता है। उसकी आकृति, रंग, सुगंध, फल और फूल अलग अलग प्रभावों के कारण अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं। अगर ग्रहों से संबंधित पौधे लगाकर उनका ध्यान रखा जाए तथा पूजा उपासना की जाए तो विशेष लाभ हो सकता है। शनि से संबंध रखने वाले पौधे का नाम शमी है। शनि की कृपा पाने के लिए, उसकी पीड़ा से मुक्ति के लिए शमी के पौधे का विशेष प्रयोग होता है। शनि संबंधी पीड़ा के निवारण के लिए पीपल के वृक्ष की भी पूजा अचूक मानी गई है। तो देखा आपने शनि का पीपल और शमी से कितना खास संबंध है। ज्योतिष में शनि को न्याय का देवता माना जाता है, जो कर्म फलदाता है। कहते हैं कि शनि की उपासना करने वालों को साढ़े साती या ढैया कभी परेशान नहीं करती है। साथ ही शनि के बीज मंत्रों का उपाय करने से शनि की शुभता आपको मिलने लग जाती है।
2: संभव हो सके तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर शनि देव का ध्यान करिए, शनि देव के बीज मंत्र का जाप करिए, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः इस मंत्र का ध्यान लगाते हुए जाप करें, तो निश्चित ही शनि की जो कुदृष्टि है उसमें आपको लाभ मिलेगा, और शनि द्वारा जो आपको दंड रूप में भी अगर दिया जा रहा कष्ट होगा तो उसमें भी राहत मिलेगी।
0: पीपल के वृक्ष में स्वयं योग योगेश्वर श्री कृष्ण का वास माना गया है। श्री कृष्ण की साधना करने वालों पर भी शनि की सदैव कृपा बनी रहती है। चलिए जानते हैं कि शनि देव से पीपल का क्या संबंध है। इस संदर्भ में एक पौराणिक कथा मिलती है, जिसके अनुसार महर्षि दधीची के एक पुत्र थे जिनका नाम था पिपलाद। कथा है कि एक बार नारद जी ने पिपलाद को बताया कि शनि देव की महादशा के कारण आपके माता पिता की मृत्यु हुई थी। इससे क्रोधित होकर पिपलाद ने शनि देव को दंडित करने की ठान ली। पिपलाद ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और अपनी दृष्टि से किसी को भी भस्म करने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया और उनका नाम पिपलाद रखा, क्योंकि तपस्या करते समय वो सिर्फ पीपल के पत्ते खाते थे, इसलिए उन्हें ये नाम मिला। कहते हैं कि वरदान प्राप्त करने के बाद पिपलाद ने शनिदेव का आह्वान किया और अपनी दृष्टि से उन्हें भस्म करना शुरू कर दिया। इससे डरकर शनिदेव अपनी जान बचाने के लिए भगवान शिव के पास भागे। तब भगवान शिव ने पिपलाद के क्रोध को शांत किया और शनिदेव से वचन दिलाया कि जो भी कोई पीपल की उपासना करेगा वो हमेशा शनि दोष से मुक्त रहेगा। तब से माना जाता है कि पीपल की वृक्ष की पूजा करने से शनि की पीड़ा शांत होती है। सामान्यतः शनि की पीड़ा शांति के लिए पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा अगर शनि के कारण संतान या समृद्धि में बाधा आ रही हो तो ढेर सारे पीपल के पौधे लगाने चाहिए। माना जाता है कि हनुमान जी और महादेव की उपासना करने से शनि की हर बाधा का निदान स्वतः हो जाता है। इसके लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय बताए गए हैं।
2: शनि देव की पूजा के लिए पीपल की पूजा करना जो है अति लाभकारी है। वैसे हनुमान जी के मंदिर में भी शनि देव की पूजा की जाती है, वो भी बहुत लाभकारी है। लेकिन फिलहाल संतान प्राप्ति के लिए अगर कहा जाए तो पीपल के वृक्ष की यदि कंटिन्यू जो है सवा महीने तक अगर आदमी प्रति शनिवार को, और उसकी विशेष मनोकामना है तो प्रतिदिन सायंकाल में जो है एक सरसों के तेल का दीपक अगर जलाए और शनि भगवान का जाके वहाँ पर ध्यान करें और उनके बीज मंत्र इत्यादियों का पाठ करें तो निश्चित ही उसे जो है संतान की प्राप्ति होती है और शनि पीड़ा से उसे मुक्ति मिलती है।
0: कलयुग के चिरंजीवी देव माने गए हैं बजरंगबली। माना जाता है कि आप भले ही बजरंगबली की पूजा ना करें लेकिन अगर आप श्री राम के नाम का जाप करते हैं तो बजरंगबली की कृपा से आपका सामना संकटों से होता ही नहीं है। चलिए आपको बताते हैं कि पीपल और हनुमान जी से जुड़ा वो अचूक उपाय क्या है जिसे करने पर आप पर भी बरसने लगेगी वीर बजरंगी की कृपा।
2: इसके अलावा शनि की महादशा में ही जो है शनि पीपल के वृक्ष पर अगर आप ओम नमः शिवाय, उनका जो पत्ता रहता है पीपल का उस पर ओम नमः शिवाय या शनि देव का मंत्र या केवल श्री राम या का मंत्र लिख करके और उसकी माला बना के हनुमान जी को यदि आप शनिवार को चढ़ाते हैं पीपल के पत्ते की तो भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और ये एक महा उपाय है, पीपल के पत्तों की माला उस पर राम नाम लिख करके हनुमान जी को चढ़ाने से आपको शनि के कष्टों से तत्काल जो है लाभ प्राप्त होता है।
0: पीपल के पत्तों का विशेष प्रयोग कैसे करें? पीपल के 9 या 11 पत्ते ले लें, हर पत्ते पर चंदन से राम लिखें, इसको पीले धागे में बांधकर इनकी माला बना लें, किसी भी मंगलवार को इसको हनुमान जी को पहना दें, आपका बड़े से बड़ा संकट टल जाएगा। तो देखा आपने शनि की कृपा पाने के लिए कितने कारगर मानी गई है पीपल की उपासना। आगे हम आपको बताएंगे शनि कृपा दिलाने वाले एक और पौधे शमी के बारे में। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
3: ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शमी के पौधे की उपासना करने से भी शनि की कृपा हासिल की जा सकती है। कहते हैं कि धन की समस्या से मुक्ति पानी हो या फिर पाना हो नवग्रहों की कृपा को, शमी के पौधे से जुड़े ये प्रयोग ज्योतिष में किए जाते रहे हैं। तो चलिए आपको भी बताते हैं शमी के पूजन से कैसे शनि की 7.5 और ढैया से बचा जा सकता है।

0: कि शनि में जीवनदायिनी शक्ति होती है, और जो शनि जो ग्रह होता है वो ज्योतिष में हमारे शरीर में लौह तत्व का कारक होता है, यानी जिसको भी आयरन डिफिशियंसी हो जाती है या आयरन की कमी हो जाती है वो अगर शमी का पूजा करे तो जो आयरन लौह तत्व की भरपाई है वो शीघ्र पूरी हो जाती है, क्योंकि शनि का संबंध जो है वो शमी से सीधा होता है।
1: आमतौर पर शनि पीड़ा से मुक्ति के लिए लोग शनिवार को शनि देव को तेल अर्पित करते हैं, लेकिन जानकारों के अनुसार सबसे ज्यादा चमत्कारी है एक महा उपाय, एक पौधा जो है शनि का प्रिय शमी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों शनि को बहुत प्रिय है शमी? शमी का पौधा किसी भी स्थिति में जीवित रह सकता है, अत्यंत शुष्क स्थितियां भी इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसके अन्य छोटे छोटे कांटे भी पाए जाते हैं ताकि ये सुरक्षित रहे। इसके कठोर गुणों और शांत स्वभाव के कारण इसका संबंध शनि देव से जोड़ा जाता है। शनिवार शाम को शमी के पौधे के नीचे दीपक जलाएं, इससे शनि संबंधी पीड़ा से निजात मिलेगी। शनि अगर मारक हो तो शमी की लकड़ियों पर तिल के दानों से हवन करना चाहिए। शनि के प्रकोप को कम करने के लिए यूं तो कई उपाय बताए गए हैं, लेकिन माना जाता है कि शनि कृपा पाने के लिए शमी की पूजा करने से आपके जीवन से कई तरह की परेशानियां दूर हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शमी के पौधे में शनि का वास होता है। शुभता से भरा है शमी का पौधा। माना जाता है कि शमी के पौधे में पाप खत्म करने की शक्ति होती है। शमी के कांटों के प्रयोग से तमाम नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती है। कहीं भी जाने से पहले शमी वृक्ष के दर्शन करने से यात्रा सफल और शुभ होती है।
0: देखिए, जिस तरह से हमारे नवग्रह पूरे चराचर जगत को प्रभावित करते हैं, उसी तरह पेड़ पौधों का भी ग्रहों से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जैसे शनि सौर मंडल का ग्रह होता है, शनि का संबंध पीपल और शमी से बड़ा ही विशिष्ट माना गया है।
1: इस पौधे से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं, चलिए जानते हैं। धर्म ग्रंथों के मुताबिक लंका विजय से पहले श्री राम ने भी शमी वृक्ष की पूजा की थी। पांडवों ने भी अज्ञातवास के समय अपने अस्त्र शस्त्र इसी पौधे में छिपाए थे। युद्ध पर जाने से पहले पांडवों ने शमी वृक्ष की पूजा की थी और विजय का आशीर्वाद लिया था। कथा के अनुसार कवि कालिदास ने शमी वृक्ष के नीचे तप करके ही ज्ञान प्राप्त किया था।
0: शमी के लिए घर में जैसे ही हम घुसते हैं, प्रवेश द्वार पे दाहिनी तरफ शमी का पेड़ होना चाहिए और प्रतिदिन उसे जल से हमें अभिसिंचित करना चाहिए और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए हम घर से बाहर निकले तो इससे हमें जीवनदायिनी शक्ति मिलती है। और शमी का पेड़ या पौधा जब हम घर में लगाते हैं तो उधर से पूर्व की तरफ से जितनी भी हवाएं आती हैं वो घर के प्रवेश द्वार को हवा के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा में बदल देती हैं, जिससे घर में रहने वाले लोग स्वस्थ होते हैं, प्रसन्न होते हैं।
1: ज्योतिष के जानकारों की माने तो शमी के वृक्ष पर कई देवताओं का वास होता है। किसी भी शुभ अनुष्ठान में शमी वृक्ष का पूजन और प्रयोग किया जाता है। शनि देव के इस प्रिय वृक्ष का महत्व सदियों से चलता आ रहा है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो शमी का पौधा जितना घना होता जाएगा घर में उतनी ही समृद्धि आती जाएगी। शनि की दशा भया या साढ़े साती जैसी तमाम पीड़ाओं से राहत दिलाता है शमी। अगर कुंडली में शनि की खराब दशा के कारण दुर्घटना या सेहत की समस्या सता रही है तो शमी की लकड़ी को काले धागे में लपेट कर धारण करें। शनि की शांति के लिए शमी की लकड़ी पर काले तिल से हवन करें। चलिए आपको शमी से जुड़ा एक खास ज्योतिषी प्रयोग बताते हैं। माना जाता है कि इसे करने से आपकी धन संबंधी सभी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा है वो महा उपाय। शमी के पत्तों का विशेष प्रयोग कैसे करें? प्रातः काल एक लोटा जल ले लें, इसमें शमी के कुछ पत्ते डाल दें। अब इस जल को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। ये प्रयोग लगातार लंबे समय तक करते रहें। इससे आपकी धन संबंधी समस्या दूर होगी। तो दैवी गुणों से युक्त है ये पौधा, विजय बनाता है ये पौधा। आप शनि का पौधा शनिवार को गमले में या कच्ची जमीन में लगा सकते हैं। इसे घर के मुख्य द्वार के पास लगा सकते हैं। घर के अंदर शमी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। इसे विजयादशमी के दिन लगाना सबसे उत्तम होता है। शनि कृपा चाहते हैं तो आप भी शमी के पौधे की पूजा जरूर करें और महालाभ पाएं।
2: दान की महिमा अक्षय मानी गई है। माना जाता है कि शनि के निमित्त किया गया एक दान आपकी कुंडली के शनि को बलवान बना सकता है, साथ ही हो सकती है आपके पुण्य कर्मों में बढ़ोतरी। तो चलिए जानते हैं कि शनि की शुभता पाने के लिए किन वस्तुओं का दान करें और ये दान किसे करें।

0: शनि देव ही करते हैं इंसान के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब और देते हैं कर्मों का सबसे उत्तम फल। और शनि कभी किसी को बेवजह परेशान नहीं करते और ना ही शनि की टेढ़ी नजर किसी पर यूं पड़ती है। शनि की एक खास बात यही है कि वो दान पुण्य करने से बहुत खुश होते हैं और दान दाताओं को वो कभी परेशान नहीं करते। तो समझिए शनि की वस्तुओं का दान किसे करना चाहिए। समाज के निर्बल वर्ग और गरीब तबके को दान करना सर्वोत्तम होगा। इसके अलावा जो आपसे कमजोर हो उसे भी दान कर सकते हैं। प्रकाश का दान अंधकार को ही करना चाहिए। छाया का दान किसी स्त्री को करना ज्यादा बेहतर होगा।
1: गरीबों को दान करना चाहिए और यथासंभव जो है प्रयास करें कि झूठ, कपट, छल, निंदा, चोरी, हत्या, पाप ये सब न करें, क्योंकि शनि भगवान को न्याय का देवता कहा जाता है और न्याय के देवता को ये सारी बातें प्रिय होती हैं। तो ऐसा करने से शनि देव की कृपा आपके ऊपर बरसती है और शनि देव आपको जो है सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करते हैं।
0: शनि का नाम सुनते ही कष्ट, परेशानियां और रोगों का ही ख्याल आता है, लेकिन बहुत ही आसान उपायों के जरिए आप शनि को अपने अनुकूल कर सकते हैं। ध्यान रहे, शनि से जुड़े दान हर कोई नहीं कर सकता। जिनकी कुंडलियों में शनि लाभकारी हो, जिनका जीवन शनि पर निर्भर करता हो, जो लोग लोहे, कोयले, पेट्रोल अथवा काली चीजों के कार्य से संबंध रखते हो, वृष, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न वालों को शनि का दान नहीं करना चाहिए। किसी दबाव में या बिना मन के भी शनि का दान नहीं करना चाहिए। शनि को सीमा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि जहां सूर्य का प्रभाव खत्म होता है वहीं से शनि का प्रभाव शुरू होता है, लेकिन शनि के क्रोध से कोई नहीं बचा है। सूर्य पुत्र शनि का प्रकोप राजा को रंक बना सकता है और कृपा बना सकती है रंक को राजा। शनि का जिस पर हाथ हो उसका जीवन सवर जाता है, बिगड़े काम बन जाते हैं और खुशियाँ चल कर आती हैं। तो अगर आप शनि की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, शनि के अशुभ प्रभावों को दूर करना चाहते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्या से मुक्ति के लिए छाया दान करना चाहिए। धन और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए शनिवार को काले वस्त्रों का दान करना चाहिए। दुर्घटनाओं से रक्षा के लिए शनिवार को काले चने या काली उड़द की दाल का दान करना चाहिए। अपयश से बचाव के लिए और शनि की कृपा के लिए प्रकाश का दान करें। रोजगार की समस्याओं से छुटकारे के लिए लोहे की वस्तुओं का दान करें। ग्रहों के न्यायाधीश शनि न्याय करते हैं। अगर आप अपने व्यवहार को उत्तम रखकर ये उपाय करेंगे तो शनि देव की कृपा से आप बेहतर जीवन का आनंद उठा सकेंगे। वो कहते हैं ना, अगर आप किसी की मदद करेंगे तो प्रभु आपकी झोली भरेंगे।
2: प्रार्थना और स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।
3: क्या है अधिक मास की महिमा, क्या हैं अधिक मास के नियम और पूजा विधान, अधिक मास में कैसे होगा समस्याओं का समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
5: Thank God I get to wake.
4: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn, a carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus, featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar, plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
7: रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: और चलिए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे वीडियो जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर देंगे।
2: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग यही कह रहे हैं कि ऐसा नजारा तो अब खत्म हो चुका है, ऐसा तो हमारे जमाने में हुआ करता था। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी साइकिल पर दो बच्चों को बांधकर स्कूल लेकर आया है। आज के समय में कोई इस तरह से अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हुए नहीं दिखता और ये वो कारण है कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपने ये सुना ही होगा कि अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और इसके लिए कई तरीके भी बताए होंगे, मगर क्या आप ये जानते हैं कि कोई खुद की इज्जत कैसे कर सकता है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, ये छोटी सी बच्ची आपको बता देगी। वायरल हो रहे वीडियो में बच्ची अपने ही पैर छूती दिख रही है। वो अपने ही पैर छूकर माथे से हाथ को लगाती दिखती है। अब बच्ची क्यों कर रही है ये तो वही जाने, मगर बच्ची इस प्यारी हरकत के कारण उसका ये वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि एक छोटी सी बच्ची पानी पूरी खा रही है, लेकिन इसमें खास बच्ची का कॉस्ट्यूम है। दरअसल बच्ची ने माता रानी का रूप धारण किया है, स्कूल में किसी प्रतियोगिता में भाग लिया होगा, जिसके बाद वो घर जाते हुए पानी पूरी खा रही होगी और किसी ने वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे। वायरल हो रहे इस वीडियो में दो महिलाएं बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए रील शूट कर रही थी। दोनों का आत्मविश्वास देखने लायक था। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, चलने का तरीका और कैमरे के सामने खुद को पेश करने का अंदाज बिल्कुल किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था। एक महिला आगे चल रही थी जबकि दूसरी उसके पीछे उसी अंदाज में कदम मिलाकर नीचे उतर रही थी, लेकिन तभी अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे वीडियो का माहौल ही बदल दिया। सीढ़ियों से उतरते समय आगे चल रही महिला का अचानक बैलेंस बिगड़ गया। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, उसका पैर फिसल गया और वो लड़खड़ाकर नीचे गिरते गिरते बची। ये पूरा नजारा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया।

सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें पूरा परिवार 36,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन के अंदर बारात निकालता दिखाई दे रहा है। वीडियो में कोई सीट पर चुपचाप बैठा नहीं है, बल्कि म्यूजिक बज रहा है, लोग डांस कर रहे हैं और पूरा माहौल किसी उड़ते हुए वेडिंग फंक्शन जैसा नजर आ रहा है। जिसने भी ये नजारा देखा वो हैरान रह गया। कुछ लोग सीटों के बीच खड़े होकर डांस कर रहे हैं, तो कुछ मोबाइल कैमरे में इस खास पल को रिकॉर्ड करते दिखाई दे रहे हैं।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: चमक के पीछे एक ऐसा सफर जहां ट्रोलिंग थी, प्रेशर था और साबित करने की जंग। मेंटल हेल्थ का वो सच स्टारडम भी नहीं छुपा पाया। आलिया के फिल्मी सफर की अनटोल्ड स्टोरी बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: The Tailgate Top 20.
4: Hey, it's Blake from the Garth Channel, and I'm your host of the Tailgate Top 20. Join me every weekend as we pick a year, go back in time, and count down the biggest tailgating songs around. And since this is Tailgate Radio, you know anything goes. The Tailgate Top 20. This weekend with me, Blake, from the Garth Channel, only on Tailgate Radio.
3: The Tailgate Top 20.
5: Search for Tailgate Radio on TuneIn to listen.
4: Try to keep up.
6: वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको

जयंती अकोला के प्राचीन मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, नवग्रह शनि मंदिर में भक्तों ने लगाया छप्पन भोग। देश भर में सुहागिनों ने की वट पूजा, अखंड सौभाग्य के लिए रखा व्रत, पति की लंबी उम्र की कामना की। यूरोविजन 2026 सॉन्ग कॉन्टेस्ट का फाइनल आज, वियना में जुटे कई देशों के दिग्गज संगीतकार, दुनिया भर के करोड़ों दर्शकों को शो का इंतजार। कान फिल्म फेस्टिवल में उर्वशी रतेला का ग्लैमरस लुक, थाई चीनी पॉप गायक माइक एंजेलो भी साथ में नजर आए। उर्वशी ने इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज शनिवार है और शनि जयंती भी है। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आज सबसे विशिष्ट तिथि है क्योंकि ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में शनि देव को कर्मों का फल देने वाला दंडाधिकारी माना गया है। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते और बुरे कर्मों की कड़ी सजा देते हैं जिससे लोगों को जीवन में संघर्ष, देरी और चुनौतियां झेलनी पड़ती है। ऐसे शनि देव को प्रसन्न करना सभी लोग चाहते हैं ताकि उनकी टेढ़ी नजर से बची रहें और जीवन में संपन्नता आए। तो आज शनि जन्मोत्सव के अवसर पर देश में हर शनि मंदिर और शनि धाम पर पूजा अर्चना के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इसकी वजह यह भी है कि आज बरसों बाद कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं और महासंयोग बन रहे हैं। आज ज्येष्ठ अमावस्या है तो प्रयागराज से लेकर हरिद्वार तक लोग पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं और स्नान दान करके पुण्य अर्जित कर रहे हैं ताकि शनि देव की कृपा उन पर बनी रहे। वहीं दिल्ली से लेकर वाराणसी और अकोला तक शहर शहर श्रद्धालु शनि जन्मोत्सव मना रहे हैं। देखिए तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों से, जहां दिल्ली से लेकर वाराणसी और अकोला तक शनि जयंती की धूम देखने को मिल रही है। भगवान शनि देव की आज आराधना की जा रही है, उपासना की जा रही है और उनसे आशीर्वाद मांगा जा रहा है। देश के अलग अलग शहरों से तस्वीरें सामने आ रही हैं
1: कि पूर्ति की मांग कर रहे हैं और कहा जाता है कि आज के
0: आज शनिदेव का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, उनके प्राकट्य का उत्सव मनाया जा रहा है। तो यह भी जानना जरूरी है कि शनिदेव का जन्म कैसे हुआ, उनकी महिमा क्या है। देखिए, समझिए इस खास रिपोर्ट में।

0: देश के कोने कोने में शनि धाम पर भक्तों का तांता लगा है। शनि देव की उपासना और आराधना के लिए श्रद्धालुओं का रेला उमड़ रहा है। कुछ लोग दीपक जला रहे हैं तो कुछ तेल अर्पित कर रहे हैं, तेल से शनि देव का अभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। आज शनि देव का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, इसलिए शनि मंदिरों में विशेष सजावट की गई है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, लोग शनिदेव की पूजा आराधना कर रहे हैं। माना जाता है कि आज ही के दिन यानी ज्येष्ठ मास की अमावस्या को ही शनिदेव प्रकट हुए थे, इसलिए हर साल इसी दिन का उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन मन से शनिदेव की पूजा करने और व्रत रखने से शनि दोष समाप्त होता है, साथ ही साढ़ेसाती और ढैया से भी राहत मिलती है। चाहे सेहत से जुड़ी समस्या हो या करियर में बाधा आ रही हो या कोई और परेशानी हो, तो शनि जयंती के दिन शनिदेव की पूजा से उत्तम फल मिलता है। इसलिए शनि जयंती का पर्व धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद अहम है, क्योंकि यही शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे खास दिन माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव को कर्म और न्याय का देवता माना जाता है, उन्हें दंडाधिकारी माना गया है। कहा जाता है कि शनि सभी के कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं, वही बुरे कर्मों के लिए दंड का विधान तय करते हैं। कहते हैं कि जिस पर शनि की तिरछी नजर पड़ जाए वह उनके प्रकोप से बच नहीं सकता। मान्यता है कि शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं। भक्ति भाव से उनकी पूजा करने से भक्तों को उनकी विशेष कृपा मिलती है।
1: शनि न्याय प्रिय ग्रह है, वह न्याय का राजा है। जो व्यक्ति इस लोक में धर्माचरण नहीं करता, पापाचरण करता है,

0: लोभ में, लालच में, ईर्ष्या में दूसरे का नुकसान करने के लिए हमेशा लगा रहता है, ऐसे समस्त प्राणी भगवान शनि के कुदृष्टि के पात्र हो जाते हैं।
1: शनि देव के प्राकट्य की भी कथा अद्भुत है, यानी देव का प्राकट्य उनके विशेष स्वरूप, शक्तियों और ब्रह्मांड में उनके कर्तव्यों से जुड़ा है। सनातन धर्म में उनके प्राकट्य का बड़ा ही गहरा आध्यात्मिक और व्यवहारिक महत्व है। तो अब आपको बताते हैं कि शनिदेव के जन्म की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। छाया ने कड़ी धूप में कठोर तप किया था, इसलिए शनिदेव का वर्ण श्याम यानी काला है। मान्यता है कि जब शनिदेव का जन्म हुआ तो सूर्य देव ने उनके काले रंग को देखकर छाया पर संदेह किया और उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। अपनी माता के अपमान से क्रोधित शनिदेव ने सूर्य देव को देखा तो सूर्य देव का तेज नष्ट हो गया। बाद में शिवाजी के कहने पर सूर्य देव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें वापस अपना स्वरूप मिल गया। लेकिन इस घटना से सूर्य और शनि के बीच दूरियां आ गई।
0: लांजलम समाभासम रवि पुत्रम इमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चर। भगवान शनि के बारे में कहा जाता है कि जो उनका स्वरूप है नीलांजलम, नीले स्वरूप के हैं, समाभासम रवि पुत्रम और रवि के पुत्र हैं, और छाया मार्तंड उनकी माँ का नाम छाया है, छाया संभूतम तम नमामि शनिश्चर, ऐसे सुंदर स्वरूप के भगवान शनि को हम प्रणाम करते हैं।
1: शनिदेव से जुड़ी कई और पौराणिक कथाएं हैं जिनसे उनकी अपरंपार महिमा के बारे में पता चलता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने शनिदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें नवग्रहों में न्यायाधीश का पद दिया। शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार भगवान शिव को भी उनकी दृष्टि के प्रकोप से बचने के लिए कैलाश पर्वत छोड़कर पृथ्वी पर हाथी का रूप लेकर छिपना पड़ा था। ये भी कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य को शनिदेव की साढ़साती के कारण राजपाट परिवार सब खोना पड़ा और उन्हें बहुत कष्ट झेलने पड़े। जब राजा ने शनिदेव की भक्ति की तो प्रसन्न होकर उन्होंने राजा को सुख समृद्धि प्रदान की। कहा जाता है कि शनिदेव को प्रसन्न करना आसान नहीं होता, शनिदेव की कृपा पाने का मार्ग आसान नहीं है। हालांकि ये भी माना जाता है कि शनिदेव जितने कठोर और अनुशासन प्रिय हैं, वे उतने ही कृपालु और उदार भी हैं। वे प्रसन्न होते हैं तो साढ़ेसाती का असर थम जाता है और ढैया में भी जीवन की नया पार हो जाती है। माना जाता है कि शनि जयंती पर भक्ति भाव से पूजा अर्चना से शनिदेव आसानी से प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि शनिदेव अच्छे कर्म करने और जरूरतमंदों की मदद करने से प्रसन्न होते हैं। ये भी माना जाता है कि हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव की विशेष कृपा रहती है, इसलिए कहते हैं कि शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा लाभकारी होती है। मान्यता है कि शनि जयंती के दिन भगवान शनि की पूजा न केवल शनि के दोषों से राहत मिलती है और महादशा के अशुभ प्रभाव में भी कमी आती है, साथ ही पराक्रम, वैभव, सफलता, सुख शांति और धन धान्य की वृद्धि होती है। शनिदेव दंड देते हैं तो क्षमा करने की क्षमता भी उनमें ही है। शनिदेव की यही वह महिमा है जिसके कारण करोड़ों लोग उनके प्रति आस्था रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। रिपोर्ट कॉन्स्टेबल।
2: तो आज शनि जयंती पर महासंयोग है और भगवान शनिदेव की महिमा पर चर्चा करने के लिए आज हम जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं और तमाम मेहमान भी चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। आचार्य राजमिश्रा जी भी जुड़ रहे हैं चर्चा में हमारे साथ में और पंडित अरविंद शुक्ला जी भी चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल के अलावा धनंजय साबले भी जुड़ रहे हैं शनि मंदिरों से, जो बताएंगे हमें कि आज कैसी रौनक शनि धाम में देखने को मिल रही है। पहले रौनक रुक कर लेते हैं। रोशन, किस तरह की तैयारियां देखने को मिली सुबह से ही शनि धाम में और अब तक कैसे श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा है, जरा तस्वीरें दिखाइए। रोशन, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जुड़ने की कोशिश करेंगे रोशन से। धनंजय, जरा अकोला के शनि धामों में किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है, भक्तों में कैसा उत्साह है, कैसी आस्था है भगवान शनिदेव के प्रति?
3: जी बिल्कुल, अकोला में जो है कड़ी धूप है जिसके बाद सुबह काफी अच्छी भीड़ थी, उसके विजुअल्स भी हमने सवेरे भेजे हैं, लेकिन अब दोपहर के समय में थोड़ी यहाँ पर भीड़ जरूर कम है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हम देखते हैं कि अकोला के गंगानगर में लगभग 20 साल से अधिक से है यहाँ पर जो है शनि देव और नवग्रह का मंदिर यहाँ पर बनाया गया है, जो विशेष रूप से अकोला जिले और आसपास के जिलों में एकमात्र है। और शनि भगवान को जिस तरीके से आज उनकी जयंती है, उनका प्रगट्य उत्सव है, उसके चलते देखिए कि मंदिर को किस तरह से यहाँ पर सजाया गया है। आज यहाँ पर भक्त की संख्या अभी के फिलहाल में कम इसलिए है कि धूप ज्यादा है। थोड़ी देर में ये जो भक्त है वो आएंगे और शाम को यहाँ पर लगभग 11 किलो का जो कलाकंद का केक है वो यहाँ पर कटेगा। उससे पहले आप देख सकते हो कि गुब्बारों से ये पूरी तरीके से यहाँ पर ये मंदिर को सजाया गया है, पूरे नहु ग्रह यहाँ पर दिखाए गए हैं। और सबसे अहम बात है कि आज का जो योग है वो शनि जयंती है, शनिवार है, शनि अमावस्या है। मानो ये जो बरसों बाद आया जो योग है वो भक्तों के लिए काफी मायने इसीलिए रखता है कि किसी का अगर दोष है या उनके पीछे शनि लगा, शनि या साढ़े साती लगी है, उनके लिए आज की ये पूजा और उनकी साधना ये बहुत जरूरी है। कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर सुबह से ही भक्तों ने जिस तरीके से यहाँ पर अपने शनि भगवान को तेल चढ़ाया है वो तेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और सबसे अहम बात यही है कि इसके पंडित जी शर्मा जी हमारे साथ है, मुझे बोलिए कि आज किस तरह की तैयारियां की गई है, कितना उत्साह है भक्तों में सुबह से ही?
4: बहुत जोरदार उत्साह है भक्तों के, सभी भक्तों में बहुत जोरदार उत्साह किया गया है। और शनि जयंती इस बार अधिक मास पुरुषोत्तम मास में आई है, इसके लिए सभी भक्तों से आह्वान किया जा रहा है कि आप सभी भक्त दर्शन का लाभ लेवे और महाप्रसाद का लाभ लेवे।
3: तो जिस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो भक्तों ने जो है अपनी आस और यहाँ पर भक्तों के लिए बहुत बड़ी जो आस रहती है जो शनि भगवान की है वो निकाली गई है। और सबसे अहम बात यही है,
2: बिल्कुल धनंजय, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर लगातार आस्था का सैलाब तो हमने देखा ही, और लगातार भक्त यहाँ पर तेल अर्पित कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। अब चलते हैं वाराणसी, वहां की तस्वीर कैसी जरा जान लेते हैं, सहयोगी रोशन से बात करते हैं। रोशन, भगवान शनिदेव और शनि जयंती की आज महासंयोग बन रहा है, बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए धामों में पहुंच रहे हैं, वाराणसी में कैसी रौनक देखने को मिल रही है? रोशन,
5: देखिए धर्म और आध्यात्मिक नगरी काशी आज शनि जयंती को भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रही है। आज तड़के सुबह से ही तमाम जो शनि मंदिर है वहां पर श्रद्धालुओं की जो संख्या है वे काफी ज्यादा देखने को मिल रही थी। और अब जैसे जैसे शाम का ये वक्त आगे जा रहा है वैसे वैसे जो श्रद्धालु हैं, आस्थावान हैं, न केवल एक बार फिर से आना शुरू हो गए हैं बल्कि यहाँ जो सजावट है, जो श्रृंगार है, वे भी शनि मंदिर में देखा जा सकता है। लगातार यहाँ पे जो मंदिर के पुजारी हैं, आस्थावान हैं, वे भगवान शनि देव की सजावट भी कर रहे हैं, तमाम तरह के फूल माला और दीपक और साथ ही साथ तमाम जो सजावटी सामान है उसका प्रयोग करते हुए आज शनि जयंती का उत्साह शाम को ही, हालांकि ये पर्व जो है वो शाम का ही पर्व है लेकिन आज सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वे मंदिरों में, शनि मंदिरों में दिखाई पड़ रहे हैं। और ये जगह अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि संकट ठंड शनिदेव मंदिर ये है और यहाँ से सीधे विश्वनाथ धाम का जो रास्ता है वे जाता है। हमारे साथ तमाम श्रद्धालु भी मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
6: अजीत कुमार वर्मा। सुजीत जी, आज शनिदेव जयंती किस तरह मनाते हैं? आज शनिवार भी है। सबसे पहले तो सभी भक्तों को शनिदेव जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ पर शाम को दिया जलता है तेल वाला और केक कटेगा और शरबत भी बटेगा, महाकाल की बाटी साल भी मनाते हैं धूमधाम से। शाम को बहुत सारा भीड़ होता है, यहाँ बाहरी भक्ति बहुत ज्यादा आती है इसलिए कि विश्वनाथ मार्ग होने की वजह से जो है यहाँ पर काफी सारा भीड़ लगा रहता है।
5: विश्वनाथ मंदिर का मार्ग होने की वजह से काफी संख्या में भीड़ रहती है। क्या नाम है आपका?
7: जी, मेरा नाम सन्नी वर्मा है।
5: आज किस तरह से शनि जयंती?
7: शनि जयंती हम लोग केक काट के, हम लोग क्षेत्रवासी लोग सब मिलकर केक काट के बाबा का भोग प्रसाद जो वितरण करके हम लोग गरीबों को शनिदेव जयंती मनाया जाता है।
5: जी, आज देखा जा सकता है कि न केवल क्षेत्र के लोग
2: बिल्कुल
5: पर्व को लेकर तैयारी किए रहते हैं और आज चूंकि शनिवार भी है और आज के दिन शनि जयंती पड़ने की वजह से कहा जाता है कि साढ़े साती और ढैया का जो एक दोष होता है भक्तों पे, श्रद्धालुओं पे, उसमें भी काफी हद तक
2: बिल्कुल लोगों को लाभ मिलता है आराधना करने से, उपासना करने से। रोशन, बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए, एक बार फिर आपके पास आएंगे। तो देखा अरविंद शुक्ला जी, आपने कैसे लोग यहाँ पर आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। अच्छा, आज एक शनिवार भी है और शनि जयंती भी है तो महासंयोग है, कैसे दोष मुक्ति को लेकर लोग प्रयास करें, कैसे हम उपाय करें कि भगवान शनि हमको देखकर प्रसन्न हो और साल भर उनकी कृपा हम पर बनी रहे?
8: जी अरविंद जी, देखिए कहते हैं कि नीलांजन समाभाषा रविपुत्र यमाग्रजम क्षाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनि एक नवग्रहों में ऐसे ग्रह हैं जिनको खास करके न्यायाधीश कहा गया है। कर्म व्यक्ति का जैसा होता है उसी के आधार पे शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। तो आपको यदि साल भर क्या अपने जीवन में शनि को सदैव प्रसन्न करके रखना है तो कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले अपने माता पिता और बुजुर्गों का जो है हृदय से सम्मान करें और उनकी हृदय से आप सेवा करें सर्वप्रथम। दूसरा, आप जो है शनि से यदि पीड़ित है, कहने का तात्पर्य कि आपकी मेष राशि है, आपकी कुंभ राशि है, आपकी मीन राशि है, इन तीनों राशियों पे साढ़े साती है, आपकी सिंह राशि है, आपकी धनु राशि है, इन राशियों पे शनि का जो है ढैया है, तो जैसे शनिश्चरी अमावस्या है अभी भी समय है, आप चाहें तो शाम को शनि भगवान का बढ़िया से तैलाभिषेक करें और बहुत बढ़िया से उनके निमित्त आप जो जाप कर सकते हो, जैसे मैं मंत्र बता दूं, शनि का जो सर्वोत्तम मंत्र है वो वैदिक मंत्र है, क्या है,

0: तूना, ये शनि का वैदिक मंत्र है, बहुत अत्यधिक कारगर मंत्र है और आपकी हर समस्या को जड़ से ठीक करेगा। यदि यह कठिन लगता है तो पुराणोक्त मंत्र मैंने अभी बोला कि नीलांजन क्षमा भाषा रविपुत्र यमाग्रजम क्षाया मार्तंड शंभूतम तम नमामि शनैश्चरम, यह भी कठिन लग रहा है तो शनि का बहुत ही सिंपल और पुराणोक्त मंत्र है जिसको कहते हैं ओम शम शनैश्चराय नमः। इन तीन मंत्रों में जिस मंत्र का भी आप जाप करेंगे आपको विशेष लाभ मिलेगा। शमी की वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करें और शायद इन वृक्षों के नीचे बैठ करके शायद आपके यहाँ कहीं कोई व्यवस्था हो जाप करें तो और अत्यधिक फल की प्राप्ति होगी। उसके साथ साथ आप एक चीज का और विशेष ध्यान रखेंगे कि शनि की उपासना से पूर्व यदि शिव या हनुमान जी की उपासना करते हैं तो आपको बहुत ही अत्यधिक जो है लाभ मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव की उपासना से शनि की संपूर्ण शांति होती है और भगवान शिव के ही 11वें रुद्र अवतार भगवान हनुमान लला हैं। यदि आप उनकी उपासना करते हैं तो भी संपूर्ण शनि के जो है अरिष्टता की जो भी आपके जीवन में है, आपके कुंडली में है, आपकी दैनिक दिनचर्या में है, निश्चित रूप से आपके ऊपर शनि महाराज की कृपा होगी।
1: जी बिल्कुल, वाकई में आपने बहुत अच्छे से इसका वर्णन किया। आचार्य राजमिश्रा जी आपके पास आ जाते हैं, कैसे देखते हैं आज इस महासंयोग को आप और क्या उपाय भक्तों को आप बता रहे हैं कि धैया हो, साढ़े साथी हो, इन तमाम दोषों से मुक्ति मिल जाए और जीवन भर भगवान शनिदेव की कृपा बनी रहे।
2: देखिए एक ही है, आज का दिन बहुत सुंदर है, संयोग बहुत सुंदर है क्योंकि शनि देवता इस टाइम बृहस्पति के घर में गोचर कर रहे हैं और जब भी आप अपने गुरु के घर में होते हैं, अपने माता पिता के सामने होते हैं, गुरु के सामने होते हैं तो बिल्कुल आप वही करना चाहते हैं जो सबसे बेहतर होता है। तो ये क्योंकि आज का दिन अगर देखा जाए तो अपने आप में बहुत सुंदर है, बृहस्पति के घर में शनि का गोचर और दोनों आचार्यों का अपने घर में एक साथ होकर के गोचर करना। मिथुन राशि में इस टाइम दैत्याचार्य शुक्र, दैत्यों के आचार्य शुक्र और देवताओं के आचार्य बृहस्पति दोनों एक साथ गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा चतुर्थ भाव यानी काल पुरुष के हृदय के स्वामी और काल पुरुष के पहली राशि के स्वामी मंगल और चंद्र एक साथ गोचर कर रहे हैं। आज बुध आदित्य योग आज विद्वान है, सूर्य और बुध एक साथ गोचर कर रहे हैं तो ऐसा जो संयोग है वो जनरली बहुत कम देखने को मिलता है। कई वर्षों में ऐसा संयोग प्राप्त होता है जब इस प्रकार के ग्रहों का संयोग बने। लेकिन एक बात कहा जाता है कि भाई जब अगर साढ़े साथी चल रही है या ढैया चल रही है, शनिदेव अगर कुपित है तो किनकी आराधना किया जाए कि शनिदेव के ढैया का, शनिदेव के साढ़े साथी का, शनिदेव के दशा का, शनिदेव के अंतरदशा का हम पर बुरा प्रभाव ना पड़े। शनिदेव ने खुद वादा किया है कि अगर कोई हनुमान जी की भक्ति करेगा तो मैं उसको प्रभावित नहीं करूंगा, मेरा दुष्प्रभाव उसके जीवन पर कभी नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूं हम लोग आज जयंती पर बैठे हैं, सौभाग्यशाली हैं, अच्छी न्यूज देखने को मिलती है, शांतिपूर्ण न्यूज देखने को मिलती है। तो जो दर्शक मुझे बैठ करके अपने घर पर इस टाइम देख रहे हैं मैं कहूंगा मेरे साथ हाथ जोड़ लीजिए, बैठ जाइए, मैं अभी आपके शनि साढ़ी साते, शनि ढैया, शनि दशा सभी का उपाय यहीं पर करवाता हूं आज शनिदेव के जन्म दिवस पर। बस हाथ जोड़ करके हनुमान जी का मेरे साथ एक बार श्रद्धा से स्मरण कर लीजिए और मैं कहता हूं हमारे आदरणीय एंकर महोदय ने कहा है कि क्या विशेष किया जाए तो मैं एक हाथ जुड़वा करके प्रार्थना करा करके शनि के जितने दुष्प्रभाव हैं उसको कम कराने का प्रयास करूंगा। और मैं सत्य कहता हूं यदि श्रद्धा से प्रार्थना कर लिया तो दुष्प्रभाव तो कम होगा ही, साथ में शनिदेव की कृपा भी आपको जरूर प्राप्त होगी। तो हाथ जोड़कर अपने नेत्रों को बंद कीजिए और नेत्र बंद करके लगना चाहिए कि हनुमान जी बिल्कुल आपके सामने हैं। हनुमान जी में अपना मन लगाते हुए श्रद्धा से हाथ जोड़कर मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, फिर चर्चा को प्रारंभ करेंगे। ओम प्रणव जान सुहृदयागारे बसहि राम सरचापधर मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले हनुमान जी महाराज की जय। तो सिर्फ हनुमान जी की आराधना कर लेने से मुझे हमेशा एक बात लगता है कि शनि देव की आराधना तो करनी ही चाहिए, उनका जन्म दिवस है, हम सबको श्रद्धा से सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसा कि शनि देव की आरती में बड़ा स्पष्ट आता है कि लोहा तेल तिल उड़द महिष अति प्यारी, यह शनिदेव की आरती के अंतर्गत कहा जाता है। तो श्रद्धा पूर्वक शनिदेव के पास जाइए, उनको लोहे की कोई भी वस्तु अर्पण कीजिए, उनके आसन हेतु तेल अर्पण कीजिए, तिल अर्पण कीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, शनिदेव की आराधना के बाद हनुमान जी का दर्शन करना नहीं भूलिए प्लीज। हनुमान जी का दर्शन कीजिए और उनको जाकर के प्रणाम कीजिए। मैं कह सकता हूं कि शनिदेव का कोई भी दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। कहा भी जाता है और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करे। जी
1: जी बिल्कुल, वाकई में राजी आपने साफ तौर पर यह बता दिया कि कैसे हमें महिमा का आपने बखान किया, इसके साथ साथ ये भी बताया कि कैसे हमें उपाय करना है भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। अरविंद जी आपके पास आ जाता हूँ, तुलादान का अभी आप जिक्र कर रहे थे, भगवान शनिदेव का तुलादान की महिमा क्या है, कैसे उसका पूरा उपाय होगा और क्या लाभ भक्तों को मिल सकता है ऐसा करने से?
0: जी जी, बड़ा प्यारा तरीका बताया मिश्रा जी ने, बड़ा अच्छा लगा, बड़े ही जो है सरल ढंग और तरीके से बताया। देखिए तुलादान को कहते हैं कि तुला माने होता है बिल्कुल जिसको आपके शरीर के वजन के बराबर अन्न दान करें उसको तुलादान। कहने का तात्पर्य कि एक तराजू में आप बैठ जाएं और एक तराजू में उस वजन के बराबर कोई आप अन्न का दान करें, जैसे गेहूं का, उड़द का, आदि किसी भी चीज का। तो तुलादान का तरीका क्या होता है, जिसे आज शनैश्चरी अमावस्या है, यदि चाहें तो आज भी तुलादान कर सकते हैं संध्याकालीन टाइम पे। और उस तुलादान के समय पे किन किन चीजों का ध्यान रखना है, एक तो जो कपड़े आप पहने हो, यदि तराजू में अपना तुलादान कर रहे हैं तो वो कपड़े के सहित दान होगा, और शरीर में यदि किसी प्रकार का आपने कोई यानी स्वर्ण आभूषण भी धारण कर रखा है तो उसके सहित भी दान होगा, इसलिए वो पहले उतार दें और वही वस्त्र धारण करें, वही चीज आपके शरीर में हो जिसको आप जो है दान दे सके। ये हुआ तुलादान। तुलादान में फिर क्या क्या चीजें होती हैं, देखिए तुलादान में काले तिल, कोयला, ये आप लोग चाहें तो नोट कर लें, काले तिल, कोयला, कील, काजल, काला कपड़ा, सरसों का तेल, उड़द, काली राई, और ये जो है सारी चीजें अलग अलग स्थान में मतलब कर लें। कहने का तात्पर्य कि सवा सवा केजी कर लें, और उस जो कपड़े में जो मैंने कहा कि सवा दो मीटर का जो कपड़ा है उस कपड़े में अलग अलग बांध लें और सब में एक एक कील डाल लें, और इसको शरीर से आप 7 बार उतारें, और उतार करके ये कार्य आपको घर के मतलब बरामदे में करना है। और जो मैंने तेल बताया, तेल किसी पात्र में रख लें, उस तेल में सबसे पहले अपने फेस को देखें, इस तरह से पूरे शरीर की परछाई को देखते हुए, और फिर लास्ट में आप पैरों के नाखून आदि उसमें देखें। इससे मतलब ये हुआ कि आपने तैलाभिषेक कर लिया, जैसे भगवान शिव का अभिषेक करते हो उसी प्रकार तेल से आपका अभिषेक हो गया, जो आपने परछाई देखी, तो तैलाभिषेक कर लिया, फिर इसको आप जो है दान करें। और जो तुलादान करें तो तुलादान आप संकल्पित करें, किसी ब्राह्मण को पकड़ें और वह ब्राह्मण आपका बाकायदे संकल्प लेगा और संकल्प में बोलेगा दशांतर दशायाम गोचरेचा ग्रहानुकूलता पूर्वकम, उसमें फिर जो भी आपकी शनि की स्थिति है कि शनि ढैया में है, साढ़े साथी में है आदि जो है बोल करके, और विधान से यदि आपने तुलादान किया है तो चाहे साढ़े साथी हो ढैया हो, निश्चित रूप से आपको जो है 7.5 साल तक 2.5 साल तक किसी भी प्रकार का दोष ऐसा नहीं लगेगा। अब बात यह आती है कि वो तुलादान का अन्न दे कहां, यदि कोई ब्राह्मण लेता है तो अच्छी बात है, प्रायः शनि का दान कोई ब्राह्मण नहीं लेते हैं, तो आप उसको डाकौत को ना दे करके आप गौशाला में दें, वो आपको महापुण्यदायी होगा और महालाभ आपको प्राप्त होगा।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा उपाय आपने बताया तुलादान के जरिए कैसे हो कल्याण। फिलहाल बहुत शुक्रिया अरविंद शुक्ला जी, अच्छा राज मिश्रा जी, रोशन आपका बहुत शुक्रिया, धनंजय आपका भी बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने और बातचीत करने के लिए। तो भगवान शनिदेव आपकी हर मंगल कामना करे स्वीकार, इसी कामना के साथ आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: चमक के पीछे एक ऐसा सफर जहां ट्रोलिंग थी, प्रेशर था और साबित करने की जंग। मेंटल हेल्थ का वो सच स्टारडम भी नहीं छुपा पाया। आलिया के फिल्मी सफर की अनटोल्ड स्टोरी बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रिंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: नीदरलैंड्स में भारतीय मूल के लोगों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, कलाकारों ने परफॉर्म किया सांस्कृतिक नृत्य, पीएम बोले भारतीय संस्कृति पर गर्व है। दुर्लभ योग में मनाई जा रही शनि जयंती, अकोला के प्राचीन मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, नवग्रह शनि मंदिर में भक्तों ने लगाया 56 भोग। देश भर में सुहागिनों ने की वट पूजा, अखंड सौभाग्य के लिए रखा व्रत, पति की लंबी उम्र की कामना की। यूरोविजन 2026 सॉन्ग कॉन्टेस्ट का फाइनल आज, वियना में जुटे कई देशों के दिग्गज संगीतकार, दुनिया भर के करोड़ों दर्शकों को शो का इंतजार। कान फिल्म फेस्टिवल में उर्वशी रौतेला का ग्लैमरस लुक, थाई चीनी पॉप गायक माइक एंजेलो भी साथ में नजर आए, उर्वशी ने इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। अगर आप अगले कुछ दिनों में शादी, मुंडन या गृह प्रवेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि गृह नक्षत्रों की चाल कुछ ऐसी हो रही है कि हर मांगलिक कार्य पर ब्रेक लग जाएगा, शहनाइयां खामोश हो जाएंगी और शुभ कार्यों पर सन्नाटा पसर जाएगा। इन सब की वजह अधिक मास है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह एक ऐसा रहस्य है जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट।

0: देव उठनी एकादशी हो, अक्षय तृतीया हो या खरमास खत्म हो रहा हो, ये वो समय होते हैं जब शहनाइयाँ गूंजती है, घरों में मांगलिक गीत बजते हैं, हर तरफ बैंड बाजा बारात की रौनक होती है। लेकिन अब एक ऐसे दौर की आहट है जब शहनाइयाँ थम जाएंगी, शादी ब्याह रुक जाएंगे, मुंडन, गृह प्रवेश, नामकरण, यहाँ तक कि नए काम की शुरुआत भी टाल दी जाएगी। आखिर क्यों? सवाल है कि क्या कोई अशुभ काल आने वाला है? तो इसका जवाब है अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं।
1: अधिक मास जो है वो भी ज्येष्ठ के महीने में पड़ रहा है, जिसकी वजह से ज्येष्ठ का महीना 30 की बजाय 60 दिन का हो जाएगा। अब अधिक मास क्या होता है? अधिक मास होता है कि एक हमारा होता है सौर्य वर्ष जो 365 दिन का होता है, और एक हमारा चंद्र वर्ष होता है जो 354 या 355 दिन का होता है। हर साल सौर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच में 11 दिन का फर्क होता है, और जो डिफरेंस 3 साल में बढ़कर 33 दिन का हो जाता है, इसलिए हर 3 साल में एक मास अधिक मास होता है।
0: ये वो रहस्यमय समय है जब ग्रहों की चाल बदल जाती है, शुभ मुहूर्त गायब हो जाते हैं और सनातन परंपरा के अनुसार मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है। आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सचमुच अधिक मास अशुभ होता है? पुरुषोत्तम मास वो समय है जब हिंदू पंचांग में एक अतिरिक्त महीना जुड़ जाता है, इसीलिए इसे अधिक मास भी कहा जाता है। ये कोई साधारण महीना नहीं है, इस महीने को लेकर लोगों के मन में डर भी है, जिज्ञासा भी और कई तरह की धारणाएं भी। जैसे ही अधिक मास लगता है, शादी विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, जनेऊ संस्कार, नई दुकान या कारोबार, यहाँ तक कि लोग नई गाड़ी खरीदने तक से बचते हैं। आखिर क्यों थम जाते हैं सारे शुभ काम? इसका जवाब ज्योतिष और खगोलीय गणना में छिपा है।
2: अधिक मास को सांसारिक विस्तार नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना का समय माना गया है। ज्योतिषीय दृष्टि से इस महीने में सूर्य संक्रांति नहीं होती, इसलिए इसे स्थायी और भौतिक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना गया। इसी कारण विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ, नया व्यापार या बड़े निवेश जैसे मांगलिक कार्य टाल दिए जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये महीना अशुभ है। वास्तव में ये महीना इतना पवित्र माना गया है कि इसे केवल भक्ति और आत्मशुद्धि के लिए ही समर्पित है। शास्त्रों में इसे निष्काम कर्म का समय कहा गया है, यानी ऐसा समय जब व्यक्ति केवल ईश्वर और आत्मिक उन्नति पर ही ध्यान दे।
0: सच तो यह है कि अधिक मास डर का नहीं, समझ का विषय है। ये वो समय है जब सनातन परंपरा इंसान को भौतिकता से हटाकर अध्यात्म की ओर ले जाती है। अधिक मास में शादी ब्याह जैसे सांसारिक कार्य रोक दिए जाते हैं और लोगों को सलाह दी जाती है कि वो इस समय को भक्ति, साधना, दान और आत्मशुद्धि में लगाएं।
2: इसी संतुलन के लिए हर 2 से 3 साल में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहते हैं। पुराणों में इसे भगवान विष्णु का प्रिय पुरुषोत्तम मास कहा गया है, इसलिए ये महीना पूजा पाठ, जप, दान और साधना के लिए बेहद शुभ माना जाता है। हालांकि इस दौरान शादी, गृह प्रवेश और मांगलिक कार्य सामान्यतः नहीं किए जाते, लेकिन विष्णु पूजा, विष्णु सहस्रनाम, सत्यनारायण भगवान की कथा और एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है।
0: ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक अधिक मास खत्म होते ही फिर से विवाह और मांगलिक कार्यों के शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएंगे, यानी एक महीने तक रुकी रहेंगी शहनाइयाँ, लेकिन उसके बाद फिर गूंजेगा मंगल गीतों का स्वर। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज चुनौती।
3: मई के महीने में एक ऐसा आध्यात्मिक काल शुरू हो रहा है जिसे सनातन धर्म में साधना, तपस्या और आत्मशुद्धि का सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। एक ऐसा महीना जब शुभ कार्य थम जाते हैं लेकिन भक्ति और पुण्य का फल कई गुना बढ़ जाता है। खास बात यह है कि महीना भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना है।
4: सनातन परंपरा में समय केवल तारीखों का हिसाब नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का विज्ञान माना गया है, और इसी विज्ञान का सबसे अद्भुत उदाहरण है अधिक मास। 2026 में अधिक मास 17 मई से लेकर 15 जून तक रहेगा। करीब 30 दिनों तक चलने वाला ये विशेष काल अधिक ज्येष्ठ मास कहलाता है। इस दौरान शुभ कार्यों की मनाही रहती है, लेकिन इस महीने का दूसरा पहलू भी है। सनातन धर्म में अधिक मास को तप, साधना और भक्ति का सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। भगवान विष्णु की कृपा पाने का ये विशेष अवसर होता है। अधिकमास का आधार प्राचीन खगोल विज्ञान में छिपा है। हिंदू पंचांग सूर्य और चंद्रमा दोनों की गति पर आधारित होता है। जहां सौर वर्ष करीब 365 दिनों का होता है, वहीं चंद्र वर्ष करीब 354 दिनों का होता है। इस तरह हर साल करीब 11 दिनों का अंतर बन जाता है। 3 साल में ये अंतर करीब 33 दिनों का हो जाता है। तब पंचांग और ऋतु चक्र को संतुलित करने के लिए एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिकमास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है।
2: हिंदू पंचांग चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं, जबकि ऋतुएं और सौर वर्ष सूर्य की गति से तय होते हैं। चंद्र वर्ष लगभग 354 दिनों तक होता है और सौर वर्ष करीब 365 दिनों का, यानी हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर पैदा हो जाता है। जब यही अंतर लगभग 29 से 30 दिनों तक पहुंच जाता है, तब पंचांग को संतुलित करने के लिए एक अतिरिक्त महीना जोड़ना जरूरी हो जाता है, जिससे अधिक मास कहते हैं। अगर ऐसा ना किया जाए तो धीरे धीरे दिवाली, होली और रक्षाबंधन जैसे त्योहार अपने सही मौसम से हटने लगेंगे। इसलिए ये केवल धार्मिक व्यवस्था ही नहीं बल्कि अत्यंत सूक्ष्म खगोलिक संतुलन भी है।
4: हजारों साल पहले सनातन धर्म ने खगोल विज्ञान और समय गणना का ऐसा अद्भुत संतुलन बनाया है, जिसे आज भी वैज्ञानिक दृष्टि से सटीक माना जाता है। हिंदू धर्म में इस महीने का खास स्थान है। सवाल है कि जब ये इतना पवित्र महीना है तो इसे अधिकमास क्यों कहा जाता है? इसके पीछे पौराणिक कथा है। कथा के मुताबिक जब ये अतिरिक्त महीना बना, तब किसी भी देवता ने इसे अपना नहीं माना। इस महीने को अपवित्र मानकर हर देवता ने ठुकरा दिया। सभी महीनों के अपने अधिपति थे, लेकिन इस महीने का कोई स्वामी नहीं था। तभी दुखी होकर ये महीना भगवान विष्णु के पास पहुंचा। भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम पुरुषोत्तम दिया और कहा कि अब से तुम सबसे श्रेष्ठ महीना कहलाओगे और जो भी इस दौरान भक्ति करेगा उसे विशेष पुण्य मिलेगा। तभी से अधिकमास पुरुषोत्तम मास कहलाने लगा।
2: इस कथा का आध्यात्मिक संदेश भी बहुत गहरा है। जिसे संसार तुच्छ समझे, भगवान उसे भी सर्वोच्च बना सकते हैं। इसलिए ये महीना विनम्रता, समर्पण, भक्ति का प्रतीक माना जाता है।
4: 17 मई से 15 जून तक रहने वाला अधिकमास पूरे एक महीने तक मांगलिक कार्यों पर विराम लगा देगा, यानी इस अवधि में शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिकमास को सांसारिक कार्यों के बजाय आध्यात्मिक उन्नति के लिए रखा गया है। इसलिए इस दौरान विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण जैसे कार्यों को टालना शुभ माना जाता है। पितृ कर्म और बड़े शुभ आयोजन भी इस माह में नहीं किए जाते। माना जाता है कि इस समय किए गए सांसारिक कार्य शुभ फल नहीं देते हैं, इसलिए इस दौरान शुभ कामों को करने की मनाही होती है। शास्त्रों के मुताबिक अधिकमास के दौरान पूजा पाठ, जप तप, दान और धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर शादी विवाह, नए व्यापार की शुरुआत या कोई बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए। पुरुषोत्तम मास आत्म मंथन और ईश्वर से जुड़ने का महीना होता है। स्कंद पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु ने कहा है कि इस महीने में जो भी धार्मिक कार्य, दान, पूजा या व्रत करता है उसे 100 गुना अधिक फल मिलता है। इस वजह से ये महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ बन गया।
5: ये केवल भागवती का आचरण करने के लिए एक महीना रखा गया है। इसमें प्रायः जो धार्मिक जन होते हैं, तीर्थयात्रा करते हैं, ब्रज 84 कोश की परिक्रमा करते हैं, मंत्र जाप का अनुष्ठान लेते हैं या व्रत पूर्वक रहते हैं कि एक महीने में एक बार ही अन्न पाएंगे और रात दिन भजन करेंगे, या हम फल से रहेंगे, दूध फल से रहेंगे, साधना करेंगे, परिक्रमा कर, ये भगवत प्रीत्यर्थ समय बिताने के लिए 3 साल में सबके लिए रखा गया। क्योंकि जो साधन में लगे उनके लिए तो रोज पुरुषोत्तम ही है, क्योंकि प्रतिपल भगवान में लगे हुए हैं। लेकिन जो गृहस्थी में, संसार में, बोले अब तो चलो ना, पुरुषोत्तम मास है, ये एक महीना भगवान के लिए है। तुम परिक्रमा करो, कोई अनुष्ठान करो, किसी ग्रंथ का अनुष्ठान, मंत्र का अनुष्ठान, साधु सेवा, तीर्थावगाहन, नाम जप, भगवत विग्रहों के दर्शन, ये इसलिए बनाया गया पुरुषोत्तम मास।
4: पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की आराधना, श्रीमद् भागवत कथा, रामायण पाठ, गीता पाठ और भजन कीर्तन का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में तुलसी पूजा और दीप दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अधिक मास में किया गया दान सामान्य दिनों की तुलना में 100 गुना अधिक फल देता है। इस पूरे महीने में सादा जीवन और सात्विक आहार अपनाना शुभ माना गया है। भगवान की कृपा पाने के लिए श्रद्धालु इस महीने में एक समय भोजन करते हैं और भूमि पर शयन कर श्री हरि का स्मरण करते हैं।
5: पुरुषोत्तम मास केवल भगवद आराधना के लिए ही ये रखा गया है कि आप प्रतिदिन अपने गृह कार्यों में जो छोटी मोटी पूजा आराधना करते हैं, लेकिन ये एक महीना ये भगवान का नाम पुरुषोत्तम, ये भगवान का मास है। इसमें आप साधु सेवा, ठाकुर सेवा, नाम जप, परिक्रमा, जो भी भागवती का आचरण करेंगे उसका विशेष लाभ प्राप्त होगा।
4: अधिक मास पुण्य कमाने का महीना है। मान्यता है कि इस दौरान तुलसी की पूजा करने, तुलसी के पास ही अधिक मास कथा का श्रवण करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: जब ग्रहों की चाल बदल जाती है, जब शुभ मुहूर्त गायब हो जाते हैं, जब विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे संस्कारों पर विराम लग जाता है, ऐसे समय में भक्ति का मंत्र, साधना का संकल्प और भगवान विष्णु की आराधना जीवन बदलने वाली मानी जाती है। अधिक मास में दान पुण्य और ध्यान करने से वो फल मिलता है जो साल भर की पूजा से भी नहीं मिलता।

0: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां इंसान लगातार बाहरी सफलता के पीछे दौड़ रहा है, वहीं पुरुषोत्तम मास लोगों को आपाधापी के बीच खुद से जोड़ने का अवसर देता है। ये महीना सिखाता है कि जीवन केवल उत्सव और उपलब्धियों का नाम नहीं, बल्कि आत्मा की शांति भी उतनी ही जरूरी है। इसलिए लोगों को पुरुषोत्तम मास के बारे में जानना और इसके रहस्य को समझना जरूरी है। ज्योतिष की नज़र से भी अधिक मास को जानना जरूरी है। सामान्य रूप से हर महीने सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, लेकिन जब किसी महीने में ये परिवर्तन नहीं होता तो महीना अधिक मास कहलाता है। क्योंकि इसमें सूर्य की ऊर्जा का नया संचार नहीं होता, इसलिए इसे शून्य मास भी कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जिस चंद्रमास में सूर्य का राशि परिवर्तन यानी संक्रांति नहीं होती, उसे अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। यानी जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश नहीं करते, तब उस अवधि को अधिक मास कहा जाता है। यह हर 3 साल में एक बार आता है। धार्मिक दृष्टि से ये महीना भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।
1: ज्योतिष में अधिक मास को आत्मिक संतुलन का महीना माना गया है। यह तब बनता है जब किसी चंद्र मास में सूर्य की कोई भी संक्रांति नहीं होती, यानी सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश नहीं करते। यही खगोलीय स्थिति इसे विशेष बनाती है। इस महीने को बाहरी उपलब्धियों के बजाय भीतर की यात्रा का समय माना गया है। विवाह, गृह प्रवेश या नए व्यापार जैसे कार्य रोक दिए जाते हैं ताकि व्यक्ति का ध्यान भक्ति, तप, मंत्र, ध्यान और आत्मचिंतन की ओर जाए। कई विद्वान इसे कॉस्मिक पॉज यानी ब्रह्मांड का आध्यात्मिक विराम भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दौरान किया गया जप, तप और दान कई गुना फल देता है, क्योंकि यह समय आत्मा की शुद्धि और कर्मों के परिष्कार का माना गया है।
0: ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य की संक्रांति नहीं होने से इस समय सकारात्मक ऊर्जा का अभाव होता है। ऐसे में बिना सूर्य की ऊर्जा के किए गए मांगलिक कार्य निष्फल हो जाते हैं। इसलिए शादी, जनेऊ, मुंडन और नए घर की नींव रखना इस दौरान वर्जित होता है। माना जाता है कि इस समय किया गया शुभ कार्य जीवन में पूर्ण सफलता नहीं देता और परेशानी की वजह बन जाता है। इस साल अधिक मास के दौरान कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। भले ही अधिक मास के दौरान मंगल कार्यों की मनाही हो, लेकिन ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार ग्रहों की स्थिति भक्ति, ध्यान और साधना के लिए बेहद अनुकूल है। इस बार का अधिक मास इसलिए भी खास है क्योंकि ये ज्येष्ठ महीने में लग रहा है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक इस दौरान गजकेसरी और पुष्कर जैसे दुर्लभ योग बन रहे हैं। यानी अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है या मानसिक शांति की तलाश है तो 17 मई से 15 जून तक का समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। इस साल अधिक मास की सबसे बड़ी विशेषता है कि 30 दिनों के इस अंतराल में 2 बार गुरु पुष्य योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। एक महीने में एक ही पुष्य नक्षत्र आता है, लेकिन इस बार 2 बार गुरु पुष्य योग का महामुहूर्त बन रहा है। 2026 का अधिक मास ज्येष्ठ महीने में लग रहा है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक ज्येष्ठ मास में अधिक मास का आना एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। ऐसा संयोग अब साल 2037 में ही देखने को मिलेगा। महीने की अलग अलग तिथियों पर ग्रहों की स्थिति से गजकेसरी योग और पुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। गजकेसरी योग मान सम्मान और मानसिक शांति के लिए उत्तम है। पुष्कर योग धन वृद्धि और लक्ष्मी कृपा पाने के लिए विशेष माना जाता है। पंचांग गणना के मुताबिक अधिक मास में कई अन्य दैनिक शुभ योग भी बनेंगे जो साधना के लिए श्रेष्ठ है। इस महीने में हर्षण और सिद्धि योग भी बन रहे हैं जो कार्यों में सफलता दिलाते हैं। अमृत सिद्धि योग का भी संयोग है जो अधिक मास में की गई पूजा के फल को अक्षय बना देता है।
2: पर मैं इसका अधिष्ठाता देवता, इसमें किए गए सभी काम अक्षय पुण्य प्रद होंगे। सकाम करो चाहे निष्काम, सब अक्षय होंगे। पर ये लौकिक कर्मों के लिए वर्जित होगा, केवल मेरी उपासना के लिए होगा। इसलिए शादी ब्याह वगैरह पुरुषोत्तम में नहीं होते। होते हैं? नहीं होते हैं। क्यों? इसमें भी लोगों को यही सब कर दिया जाए तो फैक्ट्रियां खोलने लग जाएंगी, इसी में उद्घाटन होने लग जाएंगे, वास्तु भजन कब करेंगे? इसलिए एक महीना पूरी तरह भगवान की आराधना के लिए समर्पित है।
0: पुरुषोत्तम मास में विष्णु पूजा का विशेष योग रहेगा। इस दौरान 27 मई को पद्मिनी एकादशी और 11 जून को परमा एकादशी है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक इन एकादशियों का व्रत 1000 यज्ञों के बराबर पुण्य देता है। चूँकि ये ज्येष्ठ का महीना है, इसलिए अधिक मास के दौरान हनुमान जी की आराधना का विशेष फल मिलेगा। इसके साथ ही मंगल ग्रह से जुड़े दोषों की शांति के लिए अधिक मास में ग्रहों का संयोग बहुत प्रभावशाली रहने वाला है।
1: आज की तेज भक्ति जिंदगी में पुरुषोत्तम मास एक आध्यात्मिक विराम की तरह है। ये समय व्यक्ति को अपने कर्म, विचार और जीवन की दिशा पर चिंतन करने का एक अवसर देता है। इसी कारण संत इसे आत्म का पुनर्जागरण का महीना भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता ये है कि जिस प्रकार भगवान विष्णु ने उपेक्षित अधिक मास को पुरुषोत्तम मास बना दिया, उसी प्रकार सच्ची भक्ति और विनम्रता इंसान के जीवन में सब कुछ बदल सकती है।
0: ज्योतिषीय मान्यता के मुताबिक ज्येष्ठ मास अग्नि तत्व, तपस्या और सूर्य ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है। ऐसे में लगातार दो ज्येष्ठ मास पढ़ना साधना और आत्म शक्ति के लिए प्रभावशाली माना जा रहा है। यही वजह है कि ज्योतिष के जानकार अधिक मास को ऊर्जा परिवर्तन का काल बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: हमारे इस खास पेशकश में अभी लेते ही, बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।
4: ना आदि ना अंत, ताकत है अनंत। देसी तकनीक से तैयार महाशक्ति वाला हथियार, भारत ने बना लिया भविष्य का ब्रह्मास्त्र। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: और अब बात भीषण गर्मी में राहत वाली जैकेट की करेंगे। महाराष्ट्र के अमरावती में पुलिस विभाग ने अपने ट्रैफिक कर्मियों के लिए खास जैकेट का इंतजाम किया है। कोई विभाग जब अपने कर्मियों के हित में कोई पहल करता है तो जाहिर है उससे काम भी बेहतर होता है, जो देश के प्रगति में योगदान देता है। अमरावती पुलिस की खास पहल के बारे में जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
7: धूप हो या बारिश या फिर कोई भी मौसम, शहर की ट्रैफिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने में ट्रैफिक पुलिसकर्मी जुटे रहते हैं। महाराष्ट्र के कई इलाकों में इस वक्त गर्मी अपने पूरे तेवर दिखा रही है। विदर्भ इलाके के अमरावती और अकोला जैसे शहर आग की तरह तप रहे हैं। इन शहरों में तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। ऐसे में आम लोग तो घर में रहकर खुद को गर्मी से महफूज रख सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस को कड़ी धूप में भी चौराहों पर ड्यूटी के लिए तैनात रहना पड़ता है। इस भीषण गर्मी में उन्हें राहत दिलाने के लिए एक अच्छी पहल की गई है। ड्यूटी तो इन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को हर हाल में करनी है, लेकिन अब ये एयर कूल जैकेट इन्हें गर्मी से काफी राहत दिलाएगी।
8: ये जैकेट में पिछले साइड दोनों बाजू में फैन दिए गए हैं और वो बैटरी ऑपरेटेड है, तो बैटरी जो है रिचार्जेबल है और वो कनेक्ट करने के बाद में अंदर से दोनों फैन चालू होते हैं और उनका पूरा शरीर जो है वो टेम्परेचर जो है कम होता है, इसीलिए धूप में उनको काम करने के लिए आसान। अमरावती में जो धूप है वो ज़्यादा है और इस धूप में काम करना पुलिस अमलदार के लिए, वाहतुक अमलदार के लिए यानी आसान नहीं है, और ऐसे वातावरण में उनको एयर कूल जैकेट सरकार की तरफ से दिया गया है, DPDC की तरफ से दिया गया है, तो उनमें बहुत अच्छा एक काम करने का अच्छा वातावरण।
7: तेज धूप में ड्यूटी करने की वजह से कई ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को लू लगने के मामले सामने आ रहे थे, तो कई बीमार पड़ने से छुट्टी लेने को मजबूर हो रहे थे। इससे यातायात व्यवस्था का संचालन भी प्रभावित हो रहा था। इन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की परेशानी को महसूस करते हुए अमरावती पुलिस आयुक्त कार्यालय की ओर से 500 पुलिस कर्मियों को ये एयर कूल जैकेट दिए गए हैं, जो जिला नियोजन समिति के फंड से खरीदे गए हैं। हर जैकेट की कीमत करीब 7,000 रुपए बताई गई है।
9: एयर कूल जैकेट से क्या फायदा हो रहा है? हमारे साथ पुलिस कर्मचारी है, इसका फायदा किस तरह से हो रहा है, क्या क्या है इसमें जरा बताएं मुझे। क्योंकि देखिए, इसमें जो है ये दो फैंस लगे हुए हैं, ये जो दो फैंस है ये अंदर हवा, बाहर की हवा जो है वो अंदर खींचते हैं, और अंदर जो है जो पसीना आता है वो जो है इस हवा के कारण कम होता है। और साथ ही ये फैन किस पर चलते हैं तो मुझे बताइए जरा। यहाँ
10: पावर बैंक दिए इसको।
9: हाँ,
10: ये पावर बैंक दिए, पावर बैंक के साथ में अटैच किए उसको।
9: हाँ।
10: उसके इससे दोनों भी फैन चलते, उसके साथ में उसके बटन भी दिए उसकी स्पीड कम ज्यादा करने के लिए।
9: हाँ। और ये बैटरी चार्ज कर,
10: हाँ ये बैटरी चार्ज करना पड़ता है उसको,
9: तो इससे अच्छा कूल होता है। देखिए अमूमन जो है जैकेट, यहाँ पर आप देखिए मैं ऐसा दबा रहा हूँ, यानी इसमें पूरी तरीके से अंदरूनी हवा भरी है, और इसको पैकअप करने के लिए यहाँ पर इस तरीके का ये दिया गया है। मानो ये जो है ये पूरी तरीके से अंदर जो है इनके हवा है, जो पसीना इनको आ रहा है वो पसीना इस हवा के चलते नहीं आए।
7: अब इस एयर कूल जैकेट को पहनकर तेज गर्मी में भी ड्यूटी करने से ट्रैफिक पुलिसकर्मी बहुत राहत महसूस कर रहे हैं।
9: का ये जैकेट है, जैकेट से कितनी राहत है, और पहले कैसा था?
10: पहले वो बहुत गर्म होता था, अभी दोनों साइड से फैन वगैरह है तो उससे बहुत अच्छा लग रहा है।
9: राहत नजर आ रही है इस एयर कूल जैकेट से?
11: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राहत नजर आ रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं धूप बहुत ज्यादा है, तो उसके वजह से जो पसीना बहुत आता था, तो ये जैकेट पहनने से अभी काफी राहत।
7: अमरावती पुलिस भी इन यातायात कर्मियों को ये जैकेट पहने देखकर बहुत राहत महसूस कर रही है, क्योंकि इससे शहर की ट्रैफिक को व्यवस्थित रूप से चलाने में काफी मदद मिल रही है।
12: माननीय पुलिस आयुक्त साहब ने ट्रैफिक पुलिस को जो एयर कूल जैकेट दिए, उसकी वजह से अभी हमारे कर्मचारी पूरे पॉइंट पर खड़े रह के ट्रैफिक का नियमन कर रहे हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक जामिंग काफ़ी इसमें कम हो गई है, और कर्मचारी भी बहुत राहत कर रहे हैं, ठंडा महसूस कर रहे हैं, उसकी वजह से धूप में ड्यूटी करने के लिए आगे पीछे नहीं कर रहे।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
13: Thank God I get to wake up.
5: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
14: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
15: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
5: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
18: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: नीदरलैंड्स में भारतीय मूल के लोगों से मिले पीएम मोदी, कलाकारों ने परफॉर्म किया सांस्कृतिक नृत्य। पीएम बोले, भारतीय संस्कृति पर गर्व है,

0: दुर्लभ योग में मनाई जा रही शनि जयंती। अकोला के प्राचीन मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। नवग्रह शनि मंदिर में भक्तों ने लगाया छप्पन भोग। देश भर में सुहागिनों ने की वट पूजा। अखंड सौभाग्य के लिए रखा व्रत। पति की लंबी उम्र की कामना की। यूरोविजन 2026 सॉन्ग कॉन्टेस्ट का फाइनल आज। वियना में जुटे कई देशों के दिग्गज संगीतकार। दुनिया भर के करोड़ों दर्शकों को शो का इंतजार। कान फिल्म फेस्टिवल में उर्वशी रौतेला का ग्लैमरस लुक। थाई च्यूनी पॉप गायक माइक एंजेलो भी साथ में आए नजर। उर्वशी ने इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है।

0: रक्षा क्षेत्र में भारत हर दिन एक नया अध्याय लिख रहा है। स्वदेशी तकनीक के जरिए ऐसे ऐसे कीर्तिमान रचे जा रहे हैं जो दुनिया को बहुत चक्का कर रहे हैं। मिसाइल से लेकर युद्धपोत तक और फाइटर जेट से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक सब कुछ देश में ही तैयार हो रहा है और वो भी वर्ल्ड क्लास। जो तकनीक और ताकत दुनिया के चंद देशों की जागीर मानी जाती थी, उस टेक्नोलॉजी पर अब भारत का दबदबा है। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए, ये कोई साधारण तस्वीर नहीं है बल्कि डिफेंस सेक्टर में भारत के बढ़ते रुतबे को दुनिया के सामने रख रही है। यह तस्वीर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम का नया अध्याय है जो भविष्य के सुपर हिंदुस्तान का रास्ता तैयार कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। दरअसल डीआरडीओ और डीआरडीएल ने मिलकर इस मिसाइल के एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का 20 मिनट तक सफल परीक्षण किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एक्टिव कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए जरूरी एक्सट्रीम टेम्परेचर को सहने की इंजन क्षमता साबित हुई है। हैदराबाद स्थित डीआरडीएल यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में स्क्रैमजेट कंबस्टर का परीक्षण किया गया, जो कि 20 मिनट से ज्यादा समय तक चला। इस टेस्ट की सबसे बड़ी बात यह रही कि इसमें एक्टिव कूलिंग, थर्मल बैरियर कोटिंग और इंडिजिनस फ्यूल जैसी जटिल तकनीकें भारत ने खुद विकसित की हैं। इस टेस्ट के जरिए अत्यधिक तापमान और दबाव की स्थिति में सुपरसोनिक इंजन से निकलने वाली गर्मी को कंट्रोल करने की क्षमता को जांचा गया।
1: ये पिछले बार के वर्जन से इम्प्रूव वर्जन है। पिछले बार इन्होंने 700 सेकंड पे किया था, इस बार 1200 सेकंड पे, तो टाइमिंग बढ़ी है। तो कहने का मतलब ये कि जो इंडिजिनसली डेवलप आपका फ्यूल है, लिक्विड हाइड्रोकार्बन फ्यूल, और उसका जो एडवांस थर्मल बैरियर कोटिंग है वो आले दर्जे का, वो ज्यादा देर तक विस्टैंड कर सकता है। कहने का मतलब ये कि जब आप इस तरीके की मिसाइल डेवलप करते हैं स्क्रैमजेट इंजन द्वारा, तो आपको एक फ्यूल और आपको उसका कंबशन सिस्टम पे ज्यादा ध्यान होता है, जो कि इस बार 1200 सेकेंड तक वो उसको इसकी स्टेबिलिटी चेक की गई है।

0: साथ सफलतापूर्वक चलना ये साबित करता है कि भारत ने एक्टिव कूलिंग तकनीक में महारत हासिल कर ली है। अब स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन से मिसाइल को मैक 5 से ज्यादा की रफ्तार मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि आवाज की स्पीड से 5 गुना तेज यानी कि करीब 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्रचंड रफ्तार से दुश्मन पर प्रहार।
1: देखिए, हिंदुस्तान ने जब हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप किया विद स्क्रैमजेट इंजन के साथ, तो ये दिखाता है कि अगर ये मिसाइल 5 मैक से ज्यादा स्पीड हासिल करती है, इसका मतलब हुआ कि 6175 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में इतना डिस्टेंस जाएगा, तो पाकिस्तान का कोई भी टारगेट विद इन 20-30 मिनट के अंदर एंगेज कर लिया जाएगा। और इसी तरह चाइना का भी काफी बड़ा इलाका इसके कवरेज एरिया में आता है, तो एक स्ट्रेटेजिक एज हिंदुस्तान को देता है और साथ में इंडिजिनसली डेवलप है, तो हमें किसी बाहर के कंट्री पे भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है।
0: स्क्रैमजेट की सफलता से भारत, अमेरिका, रूस और चीन के साथ उन चुनिंदा देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया है जो स्क्रैमजेट तकनीक में मैक 5 से ज्यादा स्पीड वाली मिसाइलें विकसित कर रहे हैं।

0: सबसे पहले इंडिजिनस स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी, उसमें जो हमने उसका फ्यूल इस्तेमाल किया, जो हाइड्रो कार्बन फ्यूल है, वो इंडिजिनसली डेवलप किया गया। ये फ्यूल का ही एक है कि उसका जो बर्निंग है, जो उसकी जो कंबशन सिस्टम है, वो कैसे डेवलप किया जाए, कैसे आप इतनी हीट या एनर्जी डेवलप करें जिससे कि मिसाइल को वो 5 मैक की स्पीड से प्रोपेल कर सके। और साथ में उसमें इस तरीके की कोटिंग की जाती है, सेरेमिक कोटिंग की जाती है, कि जिससे वो उस हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सके। तो कहने का मतलब ये कि जब ये विकसित हुआ है, तो ये काफी लगन, काफी एफर्ट, काफी ट्रायल के बाद इसको विकसित किया गया है। और जब ये स्वदेशी हो जाता है, तो इसमें हमें किसी और फॉरेन कंट्री पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं होती।
1: डीआरडीओ का नया टेस्ट भारत की सैन्य ताकत और एशिया का शक्ति संतुलन बदल सकता है। इसका सबसे बड़ा असर हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दिखाई देगा। चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। ऐसे में लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल भारत के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकती है। हाल ही में डीआरडीओ ने 1500 किलोमीटर रेंज वाली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल समुद्र में दुश्मन के बड़े युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना सकती है। इसका मतलब साफ है कि अगर हिंद महासागर में किसी भी दुश्मन नौसेना ने दबाव बनाने की कोशिश भी की, तो भारत अब हजारों किलोमीटर दूर से तेज और सटीक हमला करने की क्षमता की तरफ बढ़ रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि वो बेहद तेज रफ्तार के साथ उड़ान के दौरान दिशा बदल सकती हैं। इससे दुश्मन के रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए उन्हें ट्रैक करना आसान नहीं होता। मैक 5 से ज्यादा रफ्तार वाली मिसाइल तैयार होने से चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की स्ट्राइक क्षमता और रणनीतिक ताकत कई गुना बढ़ सकती है। साल 2025 में डीआरडीओ ने छोटी अवधि के स्क्रैमजेट टेस्ट किए थे, लेकिन अब दूसरी बार जब फुल स्केल कंबस्टर का टेस्ट किया गया तो 20 मिनट से ज्यादा चला। इससे पहले डीआरडीओ ने 9 जनवरी 2026 को भी हैदराबाद में फुल स्केल एक्टिवली कूल स्क्रैमजेट कंबस्टर का 12 मिनट से ज्यादा का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक किया था, जो ये बताता है कि भारत अब अपने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ब्रह्मोस 2 मिसाइल के डिजाइन के लिए दूसरे देशों की तरफ नहीं देखेगा, बल्कि अब देश में ही उसे तैयार किया जाएगा। मौजूदा समय में दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती मिसाइल को रोकने में सक्षम नहीं है। रडार को जब तक खतरे का पता चलेगा, तब तक मिसाइल अपना काम कर चुकी होगी। भारत के लिए खतरा जितना चीन से है, उतना ही पाकिस्तान से भी है। लेकिन अगर चीन की बात की जाए, तो चीन हथियारों की दौड़ में बहुत तेजी से आगे भाग रहा है। चीन अपने पास AI तकनीक से लैस तमाम हथियारों को विकसित कर रहा है, साथ ही साथ हाइपरसोनिक तकनीक में भी वो आगे बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत भी इस तकनीक में महारत हासिल करे और अपने बेड़े में हाइपरसोनिक हथियारों को भी शामिल करे। हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा स्पीड से चलती है। इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है, जिससे उसको ताकत मिलती है। अब स्क्रैमजेट इंजन क्या है और कैसे काम करता है, इसे भी जान लीजिए। स्क्रैमजेट एक खास तरह का एयर ब्रीदिंग इंजन है। इसे शुरू करने के लिए रॉकेट बूस्टर की जरूरत होती है। स्क्रैमजेट में ईंधन के दहन के लिए वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिए इसी स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। स्क्रैमजेट से फायदा ये होगा कि इसका इस्तेमाल कम लागत में उपग्रहों के प्रक्षेपण में भी किया जा सकेगा। वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने से स्क्रैमजेट इंजन हल्का, ज्यादा तेज और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम माना जाता है।
0: जब ये इंजन एयर में जाता है, तो इतनी हाई स्पीड से होता है, तो जो एटमॉस्फेयर में एयर होता है उसको इस स्पीड पे कंप्रेस करता है, और उसका लगातार ये सप्लाई जारी रहती है, जिससे वो फ्यूल से रिएक्ट करके हीट जनरेट करता है। तो और ये लगातार होना चाहिए। अगर इसमें कोई बाधा है या अनइवन बर्निंग है, अनइवन हीट जनरेशन है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। तो एक स्पीड पे कंप्रेस एयर को फ्यूल के साथ मिक्स करके एनर्जी डेवलप करना और लगातार ये जारी रखना।
1: भविष्य में ये तकनीक ब्रह्मोस 2 में इस्तेमाल होगी, जो भारत रूस का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ब्रह्मोस 2 मैक 7 से 8 स्पीड वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी जिसकी रेंज 600 किलोमीटर होने का अनुमान है। डीआरडीओ का लक्ष्य है कि साल 2028 तक ऐसी मिसाइल को पूरी तरह से विकसित कर लिया जाए। मिसाइलों को ठोस या तरल ईंधन से चलने वाले रॉकेट या जेट इंजन द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। कुछ मिसाइलों में जैसे कि ब्रह्मोस में रामजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है जो सुपरसोनिक रफ्तार हासिल करने के लिए हवा को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। वहीं हाइपरसोनिक मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। भारत का लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल प्रोग्राम अब अपने एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है और जल्दी ही शुरुआती परीक्षण होने की उम्मीद है। हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत ने कहा था, भारत हाइपरसोनिक ग्लाइड और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है जिसमें ग्लाइड संस्करण मौजूदा समय में विकास के मामले में आगे है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन होता है और उड़ान के दौरान इसे ऊर्जा मिलती है। हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल शुरुआती रफ्तार हासिल करने के लिए बूस्टर का इस्तेमाल करती है और फिर बिना किसी ऊर्जा के ग्लाइड करती है। मिसाइल में दो स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। पहले चरण के खत्म होते ही वो अलग हो जाती है जबकि दूसरा चरण मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंचाता है। इसके बाद मिसाइल बिना इंजन के ग्लाइड फेज में एंट्री करती है और टारगेट तक पहुंचने से पहले कई रणनीतिक मूवमेंट करती है।
0: देखिए मिसाइल में जो दो टू स्टेज रॉकेट होते हैं प्रोपल्शन होता है उसमें एक इनिशियल फेज का होता है और एक सब्सिक्वेंट फेज का होता है। इनिशियल फेज का काम होता है वो हीट वो एनर्जी वो थ्रस्ट डेवलप करना जिससे कि मिसाइल को लॉन्च किया जा सके लिफ्ट दिया जा सके एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में। और जब ये काम हो जाता है तब वो मोटर काम करना बंद कर देता है तब सेकेंड स्टेज का मोटर काम करता है जो अगेन उस वेलोसिटी को मेंटेन करता है एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक ऑर्बिट में मिसाइल को डालता है और लगातार उस पे सस्टेन प्रेशर क्रिएट करता है जिससे कि उसकी वेलोसिटी बन सके।
1: आज दुनिया के कई देश अपनी मिसाइल क्षमता को धार देने में जुटे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है मिसाइल ही एक ऐसा हथियार है जो हर तरह के युद्ध क्षेत्र में कामयाब है। चाहे लड़ाई जमीन पर हो आसमान पर या फिर अंतरिक्ष में मिसाइल हर मोर्चे पर कारगर है। एक मिसाइल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो दुश्मन के टारगेट पर आए बिना अपने टारगेट को ध्वस्त कर दे। हालांकि इसमें अत्याधुनिक रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम रोड़ा जरूर अटकाते हैं और इसीलिए यहीं से हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर सोच शुरू हुई जिसको लेकर काम चल रहा है। आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है और ये दुनिया के लिए चिंता का विषय क्यों बन गया ये समझने की जरूरत है। हाइपरसोनिक हथियार आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज रफ्तार से चलते हैं और अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि हाइपरसोनिक वेपन की रफ्तार ही उसकी ताकत है लेकिन ऐसा नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल भी आवाज की रफ्तार से तेज चलती है। ऐसे में हाइपरसोनिक वेपन की असली ताकत क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। हाइपरसोनिक मिसाइल को एक व्हीकल तेजी से अंतरिक्ष की तरफ ले जाता है जिसके बाद वो ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ती है। ये इतनी तेजी से अपना रास्ता बदलती है कि किसी भी देश का एंटी मिसाइल सिस्टम इसे ट्रैक नहीं कर पाता और ये अपने टारगेट को आसानी से ध्वस्त कर सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल को जब एक जगह से लॉन्च किया जाता है तो पता चल जाता है कि उसका टारगेट कहाँ है और वो किसे निशाने पर लेगी। ऐसे में इन मिसाइलों को ट्रैक करना आसान होता है। इसके साथ ही लॉन्चिंग के साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलों की दिशा में बदलाव नहीं किया जा सकता। वहीं लॉन्चिंग के साथ हाइपरसोनिक मिसाइलों की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है।
0: ये हाइपरसोनिक मिसाइल या जो वेपन है उनका जो ग्रेडिंग है वो एनी एरियल ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा है जैसा कि मैंने बताया 6175 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तो अगर इसकी स्पीड ज्यादा होती है वो हाइपरसोनिक कैटेगरी में आता है। जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा है उसको रडार कैसे डिटेक्ट करेगा। चाहे रडार किसी भी प्रिंसिपल पे काम कर रहा हो चाहे डॉपलर पे काम कर रहा हो या अन्य प्रिंसिपल पे काम कर रहा हो बाय द टाइम पल्स उसको जाके हिट करके वापस आती तब तक वो मिसाइल आगे निकल चुका होता है। एक स्पीड दूसरा लो हाइट या हाई हाइट इसमें कोई रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। इस वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल ने लड़ाई लड़ने की विधा में टोटल तब्दीली कर दी।
1: हाइपरसोनिक हथियार सबसोनिक मिसाइलों से कहीं तेज रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इनकी रफ्तार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से बेहद कम होती है। हाइपरसोनिक हथियार सिस्टम दो तरह के होते हैं, पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और दूसरा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जिस तरह एक सर्फर समंदर की लहरों पर ग्लाइड करता है, ठीक उसी तरह से हाइपरसोनिक हथियार हवा में ग्लाइड करते हैं, जिससे इसे रोकना आसान नहीं होता। हाइपरसोनिक हथियार की एक और खासियत होती है कि ये कम ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकते हैं। मौजूदा समय में तमाम देशों का फोकस ग्लाइड व्हीकल्स पर है। दरअसल ग्लाइड व्हीकल एक नई तकनीक है। ग्लाइड व्हीकल के साथ एक मिसाइल लगाई जाती है जो कि एक टारगेट पर जाकर ग्लाइड व्हीकल से अलग हो जाती है, जिसके बाद वो टारगेट की तरफ सीधा ग्लाइड करते हुए फोकस करती है और उसे ध्वस्त करके ही दब लेती है। हाइपरसोनिक हथियार बनाने की दिशा में भारत अपना कदम आगे बढ़ा चुका है। HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के परीक्षण की शुरुआत हो चुकी है। 27 जनवरी 2023 को DRDO ने HSTDV परीक्षण किया था, जो सफल रहा।

0: साल 2020 में भारत ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड का टेस्ट किया था, जिसमें महज 20 सेकंड में 7500 किलोमीटर के टारगेट को पूरा किया गया था। हालांकि भारत इस तकनीक में पिछले कई सालों से लगातार लगा हुआ है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल को लॉन्च कर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि ऐसी कोई रफ्तार नहीं जहां उसकी पहुंच नहीं। हाइपरसोनिक व्हीकल का ट्रायल एक ऐसी कामयाबी है जो हिंदुस्तान की ताकत में कई गुना इजाफा करेगी। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल 6000 से 12000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये 20 सेकंड में मैक 6 की रफ्तार और 32.5 किलोमीटर ऊंचाई तय करने में सक्षम है। HSTDV के परीक्षण के बाद भारत के रक्षा क्षेत्र को और अधिक मजबूती मिलेगी, क्योंकि इसके साथ ही भारत अब उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सक्षम है। दुनिया बदल रही है, युद्ध बदल रहे हैं, युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं, रण क्षेत्र की रणनीतियां बदल रही हैं, और इसी के तहत अब आने वाले समय में युद्ध AI और हाइपरसोनिक तकनीक के साथ लड़े जाएंगे। भारत ने भी खुद को इसी क्षेत्र में तैयार किया है और ऐसा ही एक परीक्षण हाल फिलहाल में भारत ने किया, जिसके बाद पूरी दुनिया का ध्यान भारत ने अपनी ओर खींचा।
1: बीते कुछ वर्षों से दुनिया का माहौल जिस तरीके से बदला है, उसे देखते हुए भारतीय सेना कंप्लीट चेंज के मोड में है। बदलते सुरक्षा हालात को देखते हुए सेना खुद को नए समय के मुताबिक तैयार कर रही है, जिसमें छोटे से छोटे हथियार तक को धार दी जा रही है। इसी कड़ी में भारत ने स्वदेशी ग्लाइड वेपन तारा का पहला सफल परीक्षण किया। तारा का पूरा नाम है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। ये भारत का पहला स्वदेशी मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है। आसान भाषा में समझा जाए तो तारा एक ऐसा सिस्टम है जो किसी साधारण बम को स्मार्ट ग्लाइड बम में तब्दील कर देता है।
0: आमतौर पर जो अनगाइडेड बम होते हैं उसे एक अंदाजे से टारगेट के ऊपर गिराया जाता है, और इसके लिए विमान को टारगेट के करीब जाना पड़ता है और फिर उसके बाद ये टारगेट की ओर गिराया जाता है। वहीं अगर हम गाइडेड बम की बात करें तो इससे दूर रहकर भी दुश्मन के ठिकाने को निशाने पर लिया जा सकता है।
1: तारा ग्लाइड वेपन किट से न सिर्फ हथियार की रेंज में बढ़ोतरी होती है बल्कि सटीकता भी सुनिश्चित होती है। फाइटर जेट से छोड़े जाने के बाद ये सिस्टम एरोडायनामिक लिफ्ट और गाइडेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके एक आम फ्री फॉल बम के मुकाबले कहीं ज्यादा दूरी तय करता है, साथ ही हमले की सटीकता को भी बेहतर बनाता है।
2: तारा है, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, जितने हमारे डंप बॉम्ब है या जो ग्रेविटी बॉम्ब है उसमें इसको फिट कर दिया जाता है। इसमें विंग्स होते हैं, इसमें सेंसर होते हैं। कहने का मतलब यह है कि डंप बॉम्ब को कैसे स्मार्ट वेपन में कन्वर्ट किया जा सकता है। स्मार्ट का मतलब जो सेंसर के डायरेक्शन ले सके, जिसकी फ्लाइट मैनिपुलेट किया जा सके, जो प्रिसीजन स्ट्राइक कर सके और जिसको फ्लाइट के दौरान मैनिपुलेट करके सही टारगेट पे या टारगेट स्विचिंग किया जा सके। तो ये सारी सुविधाएं जो है तारा के थ्रू अचीव की जा सकती है।
1: स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा का ये परीक्षण बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि तारा भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करेगा जो अपने पुराने बमों को सटीक और दूर मार करने वाले हथियार में बदल सकते हैं।
0: तारा असल में एक मॉड्यूलर ग्लाइड किट है। आसान भाषा में अगर इसको समझना तो ये कहेंगे कि हवाई जहाज से गिराए जाने वाले अनगाइडेड बमों के साथ लगाई जाने वाली किट, जिसका सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि ये सही और सटीक निशाना लगा पाएगी।
1: ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा में विंग्स, कंट्रोल सरफेस और एक बेहतरीन गाइडेंस पैकेज लगाया जाता है। इससे पुराने बम हवा में लंबी दूरी तक ग्लाइड करके जा सकते हैं और बेहद सटीक निशाना लगा सकते हैं। तारा में हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इनर्शियल नेविगेशन और सैटेलाइट गाइडेंस दोनों शामिल हैं। इससे सटीकता बहुत ज्यादा रहती है। विदेशी सिस्टम की तुलना में तारा ग्लाइड वेपन सिस्टम बेहद सस्ता भी है। इससे वायुसेना के पास पड़े लाखों पुराने बमों को आधुनिक हथियारों में बदला जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि किन किन देशों के पास ये तकनीक है। अमेरिका के पास JDM और JSAW है। ये साधारण अनगाइडेड बमों को प्रिशियस गाइडेड बम में तब्दील करते हैं। रूस के पास यूएमपी के ग्लाइड बम किट है जो उसने यूक्रेन युद्ध में अपने साधारण बमों को ग्लाइड करने के लिए इस्तेमाल किया था। इसराइल के पास स्पाइस 250 और स्पाइस 2000 जैसे बम प्रणालियां हैं। इनमें एआई पर आधारित इलेक्ट्रो ऑप्टिकल होमिंग सीकर लगा है। भारत ने इसराइल से ये किट खरीदी है। फ्रांस के पास एएसएम हैमर रॉकेट बूस्टर है। वहीं तुर्की के पास एचजीके किट है जो तारा की तरह ही काम करती है। इंडियन एयरफोर्स के लिए तारा जैसे सिस्टम भविष्य में कुछ ऐसे स्ट्राइक मिशनों के लिए एक सस्ता विकल्प साबित हो सकते हैं जिनके लिए महंगी क्रूज मिसाइलों या उन्नत स्टैंड ऑफ हथियारों की जरूरत नहीं होती। स्टैंड ऑफ वो हथियार होते हैं जिन्हें काफी दूर से दुश्मन की नजर से दूर रहकर दागा जाता है। इन्हें बियॉन्ड विजुअल रेंज हथियार भी कहा जाता है। तारा से फायदा ये होगा कि फाइटर जेट से दागे जाने वाले किसी भी बम को बीवीआर वेपन में तब्दील कर देगा। तारा को हम एक तरह से आत्मनिर्भर भारत की पहचान भी कह सकते हैं क्योंकि पूरी तरह से भारत में ही विकसित सिस्टम है। पहले इस तरह के सिस्टम्स के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन अब भारत ने खुद का अपना सिस्टम तैयार किया है जो कि हमारी वायुसेना को और ज्यादा ताकत देगा और सही निशाना लगाने की क्षमता देगा।

0: भारतीय सेना हाल के मिडल ईस्ट वॉर और ऑपरेशन सिंदूर से बहुत कुछ सीख लेते हुए अपनी तैयारियों को धार देने में जुटी है। दोनों घटनाओं ने दिखाया है कि लड़ाई के समय हथियारों की उपलब्धता और उनकी ताकत कितनी जरूरी हो जाती है, और यही वजह है कि रक्षा मंत्रालय ने अब भारतीय वायुसेना को और मजबूत बनाने का फैसला किया है। खबर है कि रक्षा मंत्रालय स्वदेशी 100 किलो के हवाई बम खरीदने की तैयारी में है। एयरफोर्स ने 1000 किलो के हवाई बम के डिजाइन, विकास और खरीद के लिए जानकारी मांगी है। ये प्रक्रिया रक्षा खरीद प्रक्रिया DAP 2020 के तहत होगी। इसमें टेल यूनिट और दूसरी जरूरी उपकरण भी शामिल होंगे। ये प्रोजेक्ट मेक टू यानी इंडस्ट्री फंडेड के तहत शुरू होगा और बाद में ये प्रोजेक्ट बाय इंडियन कैटेगरी में चलेगा, यानी कि सब कुछ भारत में ही बनेगा। अभी तक भारतीय वायुसेना ऐसे MK-84 क्लास के बम विदेशी कंपनियों से खरीदती थी। अब स्वदेशी बम आने से वायुसेना को ज्यादा विश्वास होगा और लॉजिस्टिक भी आसान होगा।
1: जिस प्रकार से आज हम आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, खासतौर से डिफेंस सेक्टर में, इसके तहत देश में भारी बम बनाने के लिए भी आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया, जहां पर कि प्राइवेट सेक्टर को मेक टू के तहत लिया गया। वो 50% तक वो विदेशी भी टेक्निकल ले सकते हैं, पार्टनरशिप ले सकते हैं और उनका रिसर्च करके 600 तक की डिमांड इस समय भारत में, क्योंकि जैसी सुरक्षा की हालत है ऐसे में बड़ा जरूरी है कि हमारे पास भारी बम भी है, जिससे दुश्मन का ब्रिज, उनका हेडक्वार्टर स्टोरेज जहां इनका मिसाइल का भंडारण है, वहां पर उनके जो एयरपोर्ट के रनवेज हैं उनको बर्बाद करने में ये भारी बम काफी कारगर साबित होते हैं।
0: योजना के मुताबिक कुल 600 एरियल बमों की खरीद की जानी है। ये बम हाई कैलिबर म्यूनिशन होंगे जो दुश्मन के ठिकानों पर भीषण विस्फोट कर उसे नेस्तनाबूद करने में सक्षम होंगे, यानी दुश्मन के बंकर, इमारत, रनवे, गोदाम जैसे मजबूत ठिकानों को तबाह करने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी।
1: जिस प्रकार की भारत का सुरक्षा की हालात हैं, ऐसे में बहुत जरूरी है कि हमारी सेनाएं मजबूत रहें, आधुनिक रहें, और इस कदम में एक और प्रयत्न किया गया जहां पर कि भारी बम बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट लिया गया, जैसे कि जिससे कि 1000 kg तक का बम जहाज के द्वारा गिराया जा सके, एयरफोर्स के द्वारा गिराया जा सके। ये अमेरिका के MK-84 के जैसे रहेगा, जिसका काम ब्रिजेस को तोड़ना, रनवे को तोड़ना, बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करना, जहां पर भी हेडक्वार्टर्स उनको बर्बाद करना और काफ़ी गहराई तक इसको प्रहार करने में सक्षम रहेगा। साथ साथ में इसके फ्रेगमेंट के जो टुकड़ों के असर होंगे वो भी काफ़ी दूर तक जाएंगे।
0: अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर भारत के पास एक से बढ़कर एक मिसाइलें हैं जो अलग अलग तरह के खतरों से निपटने में सक्षम है, तो फिर बम की क्या जरूरत है। तो आपको ये बताते हैं कि बम और मिसाइल में अंतर क्या होता है और इसका कहां इस्तेमाल किया जाता है। मिसाइल और बम दोनों का मुख्य उद्देश्य विनाश करना है, लेकिन इनकी कार्यक्षमता और लक्ष्य अलग अलग होते हैं। इनके काम करने का तरीका काफी अलग है। मिसाइल में गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल होता है, इसे फायर करने के बाद भी कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं ज्यादातर बम अनगाइडेड होते हैं, इन्हें एक बार गिरा दिया जाए तो ये गुरुत्वाकर्षण के भरोसे ही नीचे गिरते हैं। हालांकि आजकल स्मार्ट बम भी आते हैं, पर वो मिसाइल जितने फुर्तीले नहीं होते। मिसाइल में अपना खुद का इंजन या रॉकेट मोटर होता है जो इसे लंबी दूरी तक और बहुत तेज रफ्तार से ले जाता है, जबकि बम में कोई इंजन नहीं होता। इसे किसी हवाई जहाज से नीचे गिराया जाता है। मिसाइल को सैकड़ों या हजारों किलोमीटर दूर से दागा जा सकता है। वहीं बम को गिराने के लिए हवाई जहाज को लक्ष्य के ठीक ऊपर या उसके बहुत करीब जाना होता है।
1: बम जो है वो जहाज के द्वारा गिराए जाते हैं और ये गाइडेड नहीं होते हैं, या कुछ गाइडेड बॉम्ब भी होते हैं। दूसरा ये कि मिसाइल हमेशा गाइडेड होती है। बॉम्ब के अंदर कोई इंजन नहीं होता है, जबकि मिसाइल के अंदर अपना प्रोपल्शन होता है, चाहे वो सॉलिड फ्यूल हो या लिक्विड फ्यूल हो, लेकिन वो पीछे से उसका जलता है प्रोपल्शन जनरेटर, जिसके द्वारा उसको ताकत मिलती है। जो बॉम्ब है वो जहाज की स्पीड पे और कितनी ऊंचाई से गिर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ गिरेगा, और इसमें ज़्यादा एक्सप्लोसिव आ जाता है क्योंकि इसको किसी प्रोपल्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि मिसाइल जो है वो कितनी भी दूर जा सकता है, हजारों मील तक जा सकता है। ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बने हुए हैं जो हजारों मील तक जाके अटैक करने में सक्षम होती हैं, और जिसका पेलोड बम के मुकाबले में हल्का होता है क्योंकि उनको अपना ईंधन भी ले जाना होता है।
0: बम और मिसाइल की प्रणाली में काफी अंतर है, जिससे इसके इस्तेमाल का दायरा भी अलग अलग हो जाता है। मिसाइलों का इस्तेमाल उन लक्ष्यों के लिए किया जाता है जो बहुत दूर हो या फिर जिन्हें चलते हुए निशाना बनाना हो। बम का इस्तेमाल तब होता है जब टारगेट स्थिर हो या बहुत बड़े इलाके में तबाही मचानी हो। दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर्स या ड्रोन को हवा में ही मार गिराने के लिए मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। वही बम से दुश्मन के हेडक्वार्टर, इमारत, पुल और बुनियादी ढांचे को तबाह किया जा सकता है। जमीन से जमीन पर हमला करने या समंदर में दुश्मन के युद्धपोतों को डुबोने के लिए मिसाइल फायर किया जाता है। वही जमीन की गहराई में छिपे दुश्मन के बंकरों या ठिकानों को भेद कर तबाह करने के लिए बम का इस्तेमाल होता है। बम और मिसाइल का दुश्मन के खिलाफ अलग अलग जरूरतों के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों की अपनी अहमियतें हैं, लिहाजा भारत अपने तर्कश में बम को भी समान जगह देता है। मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना MK-84 श्रेणी के भारी बमों का इस्तेमाल कर रही है। भारत अब इनका स्वदेशी संस्करण विकसित करने की प्रक्रिया में है। भारतीय सेना और वायुसेना के पास अलग अलग कैटेगरीज के बम हैं, जिनमें साधारण ग्रेविटी बमों से लेकर आधुनिक गाइडेड या स्मार्ट बम तक शामिल हैं। आधुनिक गाइडेड बम की बात की जाए तो भारत के पास स्पाइस 2000, राफेल में इस्तेमाल होने वाला हैमर, पहला स्वदेशी लेजर गाइडेड बम सुदर्शन और स्वदेशी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव और गौतम शामिल हैं। वहीं भारी और जनरल पर्पस बम की बात की जाए तो MK-84 क्लास के 1000 किलोग्राम, 250 किलो का MK-82, 500 किलो का MK-83 है, जिसका इस्तेमाल सामान्य बमबारी में होता है। सेना के पास खास मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाले बम भी शामिल हैं। बंकर बस्टर स्पाइस 2000, दुश्मन के रनवे को तबाह करने के लिए 100 यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, HSD यानी हाई स्पीड डिलीवरी बम भी हैं, जिन्हें तेज रफ्तार वाले लड़ाकू विमानों के जरिए गिराया जा सकता है। थल सेना सीधे हवाई बम नहीं गिराती, लेकिन उसके पास बम की कैटेगरी में आने वाले दूसरे हथियार शामिल हैं, हैंड ग्रेनेड, मोर्टार और आर्टिलरी शेल्स, साथ ही माइंस जो कि जमीन के अंदर बिछाए जाते हैं। ये दुश्मन के वाहन या सैनिकों को रोकने में इस्तेमाल होते हैं। आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए भारत अपने यहाँ ही नए नए हथियारों को विकसित कर रहा है, जो ताकत और तकनीक के मामले में बेजोड़ होंगे। DRDO ने हाल ही में हमारी तीनों सेनाओं के लिए 28 ऐसे सिस्टम्स को देने की पेशकश की है, जिन्हें इमरजेंसी खरीद के तहत लाया जाएगा, और इसमें कई लेजर गाइडेड बम भी होंगे और साथ ही साथ स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन भी शामिल होंगे।

0: भारतीय वायुसेना अपनी हवाई हमले की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपने लड़ाकू विमानों को स्वदेशी रूप से विकसित यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन से लैस करने की तैयारी में है। इस बम के 10 परीक्षण हो चुके हैं। इस परीक्षण में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। रक्षा सूत्रों के मुताबिक 100 एक प्रकार का ग्लाइड बम है जो सैटेलाइट से कंट्रोल होता है और इसे 100 किलोमीटर की सीमा तक सटीक मारक क्षमता के साथ जमीनी लक्ष्यों को भेदने में सक्षम बनाया गया है। इसका मतलब है कि यह लंबी दूरी से भी सटीक स्थान पर हमला कर सकता है। युद्ध जैसे हालात में 100 दुश्मन के रनवे उसके बंकर को आसानी से ध्वस्त कर सकता है।
1: SAWS, that is the smart anti-airfield weapon systems, जो है ये एक वो वाले bombs हैं जिनका के अगर हम इंडिया के context में भी लें तो ये air launch भी हो सकते हैं, ground launch भी हो सकते हैं और तकरीबन 120 किलो के होंगे और glide के तौर पर काम करते हैं। 100 किलोमीटर की इसकी range है जो इंडियन bombs है और अगर इसका accuracy की बात करें तो इसमें long range accuracy है because of the precision गाइडेंस सिस्टम जो अपने आप में आता है और ये गाइडेंस सिस्टम जो है वो सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम हो सकता है, वो आईआर इमेजिंग वाला होगा और एक्टिव रडार सीकर की तरह काम करता है। सो ओवरऑल देखें तो यस, ये बॉम्ब सिस्टम एक एयरफील्ड को कुछ घंटों से लेके कुछ दिन तक जरूर एक बड़ी नुकसान पहुंचा सकता है।
0: एयरफील्ड वेपन को हैदराबाद स्थित डीआरडीओ के अनुसंधान केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। ये एक मॉडर्न हाई प्रिसीजन वाला बम है जिसका वजन करीब 120 किलोग्राम है। इस हथियार को विश्व स्तरीय माना जाता है और ये भारत के अपने देश में एडवांस रक्षा प्रणाली बनाने के प्रयास का हिस्सा है। 100 परियोजना को 2013 में मंजूरी मिली, 2016 में इसका सफल परीक्षण किया गया और फिर इसके बाद डीआरडीओ ने आपात खरीद के तहत इसको मंजूरी दे दी, जिसके बाद ये कहा गया कि जल्दी ही सशस्त्र बलों को मुहैया कराए जाएंगे ताकि जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके। मौजूदा दौर में बमों की ताकत को धार दी जा रही है। आज ऐसे ऐसे बम तैयार हो रहे हैं जो बिना सरहद लांघे दुश्मन की धरती को ध्वस्त कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना के पास बॉम्बर यानी बम वर्षक विमान तो नहीं है, बावजूद इसके भारत दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसाने की ताकत रखता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक में आतंकी अड्डों पर बम बरसाकर भारत पहले ही अपनी युद्ध क्षमता का परिचय दे चुका है। अब तो भारत ने वो ताकत हासिल कर ली है कि बिना दुश्मन के इलाके में गए या सरहद लांघे उनके ठिकानों पर बम बरसाए जा सकते हैं।
2: हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट सुखोई 30 MKI से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण हुआ और इसने ये दिखा दिया कि किस तरीके से भारत इस तकनीक में महारत हासिल कर चुका है। वो किसी दूसरे मुल्क पर इसके लिए निर्भर नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी दर्शाता है।
0: भारतीय वायुसेना अपने मल्टी रोल फाइटर जेट को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए तरह तरह के हथियारों से इसे लैस कर रही है जिसमें मिसाइल से लेकर बम शामिल है। अब इसमें नया नाम जुड़ गया है गौरव का, जिसका ट्रायल जारी है। गौरव 1000 किलोग्राम कैटेगरी का एक ग्लाइड बम है जो करीब 100 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकता है।
3: गौरव बम जो एक स्लाइड ग्लाइड बम है, जब उसको सुखोई के साथ इस्तेमाल किया जाता है कोई ऐसा टारगेट नहीं है जिसको वो भेद ना सके। एक सुखोई की स्पीड, दूसरा ग्लाइड बॉम्ब, ये कॉम्बिनेशन देखिए बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन बनता है और मेरा मानना अगर इसको युद्ध भूमि में इस्तेमाल किया जाता है तो इसके डिस्प्रोपोर्शनेट रिजल्ट निकलते हैं। फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। ये करता क्या है, सुखोई इतनी स्पीड से जाता है जिससे कि एयर डिफेंस उसको पकड़ ना सके और एक स्टैंड ऑफ डिस्टेंस है जिसमें उसको शंका है कि एयर डिफेंस के रडार उसको पकड़ लेंगे, वहां पे वो अपने आप को हॉल्ट करता, वहां से ये जो ग्लाइड मिसाइल है इसको लॉन्च किया जाता है और अल्टीमेटली वो टारगेट को एरोडायनेमिक्स का इस्तेमाल करते हुए पहुंचता है और उसके सेंसर बिल्कुल पिन पॉइंट स्ट्राइक करते हैं।
0: ग्लाइड बम का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसे दुश्मन के इलाके के बाहर से आसानी से दागा जा सकता है। इससे फाइटर जेट को दुश्मन से खतरा कम होता है क्योंकि फाइटर जेट दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज से दूर होता है। लड़ाकू विमान से दागे जाने वाले बम कई तरह के होते हैं। इसमें सामान्य बम जिसे फाइटर के विंग या फिर बेली में लगाकर ड्रॉप किया जाता है। इस तरह के बम की टेल पर फिन बने होते हैं जो एयरक्राफ्ट से रिलीज करने के बाद बम को स्थिरता देते हैं। हालांकि इसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं होती, तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर तक हो सकती है। यहां टारगेट पर हमला करने के लिए लड़ाकू विमान को टारगेट के काफी नजदीक जाना होता है जिससे खतरा बढ़ जाता है। ग्लाइड बम की रेंज सामान्य बम की रेंज से 10 गुना से भी ज्यादा हो सकती है। जितनी ऊंचाई से इसे रिलीज किया जाएगा उतनी ही दूर तक वो निशाना साध सकेगा।
3: ग्लाइड बम का जो कॉन्सेप्ट है वो एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके एरियल मीन्स द्वारा उसको रिलीज किया जाता है, जैसे कि सुखोई से इसको लॉन्च किया जाता है, और इसकी जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा होती है, और ये इसका जो रेंज है वो 25 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर आफ्टर लॉन्च ये रीच करता है, और इसका पेलोड करीब 1000 kg का होता है।
0: सेना को एक ऐसे स्मार्ट बम की जरूरत थी जो खुद नेविगेट और ग्लाइड करते हुए दुश्मन को बर्बाद कर सके। इस काम में भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने मदद की। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने दो तरह के बम का डिजाइन किया। पहला विंग के जरिए ग्लाइड करने वाला गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम और दूसरा बिना विंग वाला गौतम, दोनों ही प्रिसिशन गाइडेड हथियार हैं। गौरव 1000 किलोग्राम का ग्लाइड बम है, वहीं गौतम 550 किलोग्राम का बम है। इनका इस्तेमाल आमतौर पर एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस में रेंज से बाहर मौजूद टारगेट को ध्वस्त करने के लिए किया जाता है। गौरव और गौतम दोनों ही बमों में CL-20 यानी फ्रेगमेंटेशन और क्लस्टर म्यूनिशन लगते हैं। ये टारगेट से कॉन्टेक्ट करते ही प्रॉक्सिमिटी फ्यूज कर देता है और विस्फोटक ब्लास्ट कर देता है। गौरव की रेंज 100 किलोमीटर ग्लाइड करने की है, जबकि गौतम की रेंज 30 किलोमीटर ग्लाइड करने की है।
3: सबसे पहले उसमें होता है कि इसका गुड थर्मल स्टेबिलिटी है, बड़ा स्टेबल हो जाता है, और साथ में लो मैकेनिकल सेंसिटिविटी, जो सेंसिटिविटी मैकेनिकल सेंसिटिव वो लो होती है, यानी कि यह रगडाइज्ड है। अब जब हम प्री फ्रेगमेंटेड एमिनेशन की बात करते हैं तो देखिए, जब बॉम्ब या रॉकेट या मिसाइल जब फटती है तो उसके कई तरीके के स्प्लिंटर्स निकलते हैं, कुछ बड़े निकलते हैं कुछ छोटे निकलते हैं। तो कुछ बड़े स्प्लिंटर निकलेंगे तो उसका इफेक्ट नहीं होगा, छोटे होंगे तो उसका इफेक्ट टारगेट पे नहीं होगा। क्लस्टर बॉम्ब में होता है क्या कि तमाम तरीके के बॉम्बलेट होते हैं। इन छोटे छोटे बॉम्बलेट में माइंस हो सकता है, TNT हो सकता है, स्मोक के एलिमेंट हो सकते हैं, इल्यूमिनेटी एलिमेंट हो सकते हैं, फॉस्फोरस हो सकता है, जो उस इलाके को जला देता है। तो उसको एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके फटना होता है जिससे कि वो पूरे इलाके में स्कैटर्ड हो जाता है और दुश्मन को ये पता नहीं लगता कि कहां पे किस तरीके का एमिनेशन है।
0: बम भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने का काम करेंगे। ये बम दुश्मन के उन ठिकानों को टारगेट पर लाएंगे जो एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस की रेंज से बाहर है। दोनों ही बमों में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है जो GPS और नाविक सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम की मदद से टारगेट तक पहुंचता है। बम दुश्मन को नुकसान पहुंचाने का सबसे कारगर हथियार है। अब जब सेना देश में विकसित तारा ग्लाइड वेपन सिस्टम का इस्तेमाल शुरू करेगी तो भारत के बमों की ताकत में और ज्यादा इजाफा होगा। लड़ाकू विमान दुश्मन के डिफेंस रेंज में आए बिना ही वहां अटैक कर पाएंगे, इससे विमान पर अटैक का खतरा भी नहीं रहेगा। रंग क्षेत्र में मेरी यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: Some people say that TalkSport is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. TalkSport's the brassiest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe, live from London on TuneIn.
6: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: चमक के पीछे एक ऐसा सफर जहां ट्रोलिंग थी, प्रेशर था और साबित करने की जंग। मेंटल हेल्थ का वो सच स्टारडम भी नहीं छुपा पाया। आलिया के फिल्मी सफर की अनटोल्ड स्टोरी बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: सिर्फ 4 साल की उम्र, ग्रहों का ऐसा ज्ञान कि लोग चकित रह जाएं। हम बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा के रहने वाले खास बच्चे रुद्र राणा की, जिसे 4 साल की छोटी उम्र में सोलर सिस्टम का पूरा ज्ञान है। आप भी देखिए।
6: चार साल का रुद्र, जिसकी नजरों में छुपा है एक बड़ा आसमान। इस छोटी सी उम्र में वो खेल खेल में बखूबी जानता है ग्रहों और उपग्रहों के नाम। तभी तो रुद्र की प्रतिभा, उसकी ग्रहों को लेकर नॉलेज पेरेंट के साथ ही लोगों को हैरान कर रही है। ग्रेटर नोएडा के नन्हे रुद्र राणा ने सोलर सिस्टम की जानकारी से एक रिकॉर्ड बनाया है। इतनी कम उम्र में रुद्र न केवल ग्रहों के नाम बल्कि उनकी विशेषताएं भी बेहद आसानी से बता रहे हैं।
7: नन्हे से रुद्र ने बड़ा कमाल कर दिया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 4 साल के रुद्र का नाम दर्ज हो गया है। रुद्र महज 1:05 में सभी 8 ग्रहों को पहचान लेते हैं।
6: रुद्र की माँ बताती हैं कि कुछ महीने पहले ही YouTube किड्स को देखते हुए रुद्र का ग्रहों के बारे में इंटरेस्ट जागा। वो उनसे बहुत सारे सवाल करता था।
8: एक चैनल है ब्लिपी, उससे इसने ग्रहों को देखा। प्लैनेट्स को देखने के बाद इसे बड़ा क्यूरियोसिटी हुआ कि व्हाट इज दिस। एक दिन मून रेड हुआ था तो इसने बोला मम्मा सी मार्स, और तब मुझे लगा कि वाओ, इसकी क्यूरियोसिटी और लव देखा मैंने सोलर सिस्टम के लिए। तो उसके बाद मैंने इसे बताना शुरू किया कि जुपिटर क्या है, मरकरी क्या है।
6: जब बेटा पढ़ने की उम्र तक आया, ऐसे में बच्चे को शुरुआती पढ़ाई से रूबरू करवाने, उसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए ही रुद्र की मां ने जॉब छोड़ी। लेकिन नौकरी का सेक्रिफाइस कुछ ऐसे रंग लाएगा ये ज्योति ने नहीं सोचा था। वहीं इतनी कम उम्र में अपने बेटे की याददाश्त, समझ और ऐसी असामान्य उपलब्धि देख पिता भी गर्व महसूस कर रहे हैं।
9: मेरे लिए तो पूरा सरप्राइज है, बिकॉज मुझे पता भी नहीं था कि ये सब उसने रजिस्टर कर लिया। सो द क्रेडिट गोज टू हर ओनली।
6: रुद्र के पेरेंट ने अपने बेटे की इस असामान्य उपलब्धि को लेकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, मगर वो इस बात का ख्याल जरूर रख रहे हैं कि उनके बेटे पर रिकॉर्ड या किसी और चीज का कोई दबाव ना हो।
7: कम उम्र में भले ही बड़ा रिकॉर्ड आया है, लेकिन रुद्र के ऊपर उनके पेरेंट्स कम से कम कोई बर्डन नहीं डाले कि अब मेरा बेटा ये भी करेगा वो भी करेगा। फिलहाल घर वाले उसी को सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं, और यही सबसे खूबसूरत बात है कि छोटे से बच्चे ने भले अचीवमेंट हासिल किया है, लेकिन उसके ऊपर कोई नैतिक जिम्मेदारी आगे के लिए नहीं है। मतलब उसका बचपन आगे भी ऐसे ही मजे से कटता रहेगा। बाय बोल दो सबको।
10: बाय।
7: कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
0: चमक के पीछे एक ऐसा सफर जहां ट्रोलिंग थी, प्रेशर था और साबित करने की जंग। मेंटल हेल्थ का वो सच स्टारडम भी नहीं छुपा पाया। आलिया के फिल्मी सफर की अनटोल्ड स्टोरी बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
11: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, "Remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific." Two, when it's time, just say, "Play Hot Mics on TuneIn." And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
12: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search classic rock hits or ask your smart device to play classic rock hits on TuneIn.
13: भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है।
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
17: अधिक मास की महिमा क्या है, अधिक मास के नियम और पूजा विधान, अधिक मास में कैसे होगा समस्याओं का समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
18: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession.
5: CBSE का बड़ा फैसला, कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए 1 जुलाई से लागू होगा 3 भाषा नियम, 2 भाषाएं भारतीय मूल की होनी अनिवार्य। नीदरलैंड्स के किंग और क्वीन से पीएम मोदी की मुलाकात, भारतीय मूल के लोगों से भी मिले पीएम, डच कलाकारों ने गाया राग दुर्गा। बांदीपोरा में 37 साल बाद लौटे कश्मीरी पंडित, सुंबली मावस उत्सव में शामिल, नंद किशोर मंदिर का अलौकिक श्रृंगार। दुर्लभ योग में मनाई जा रही शनि जयंती, अकोला के प्राचीन मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, नवग्रह शनि मंदिर में भक्तों ने लगाया छप्पन भोग। देश भर में सुहागिनों ने की वट पूजा, अखंड सौभाग्य के लिए रखा व्रत, पति की लंबी उम्र की कामना की।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों

परसेप्शन बना, आलिया की हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। आलिया की प्रतिभा की गहराई को वही समझ सकता है जो कि शिद्दत से उनकी जिंदगी में उतरने की कोशिश करेगा। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगी कि आलिया को एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से कभी कभी वो जोन आउट हो जाती है और ट्रोलर्स उसी मोमेंट को पकड़ लेते हैं।

परसेप्शन और रियलिटी के बीच धूप छांव वाला रिश्ता काफी पुराना है। परसेप्शन कई बार रियलिटी के बहुत करीब होता है और कई बार रियलिटी परसेप्शन से कोसों दूर होती है। कान फिल्म फेस्टिवल में अपने फैबुलस और किलर लुक से धूम मचा रही आलिया भट्ट परसेप्शन और रियलिटी के बीच की अजीबो गरीब रिश्ते की अनूठी दास्तान है। बीते 12 मई को कान ओपनिंग सेरेमनी के रेड कार्पेट में कस्टम तमारा राल्फ गाउन में दुनिया भर के सेलेब्स के आकर्षण का केंद्र बनी आलिया इस प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल में लोरियल पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर के तौर पर पहुंची हैं। आलिया कान के हर इवेंट में अलग अलग अट्रैक्टिव आउटफिट में नजर आ रही हैं और अपने ओवरऑल सेंसिबल और एलिगेंट लुक से सेलेब्स की भी सेलिब्रिटी बनी हुई हैं। 14 मई को आलिया भट्ट ने लॉरियल पेरिस गाला डिनर के दौरान फ्लोरल ब्रोकेड आउटफिट में आकर सबका दिल जीत लिया। डिनर में डस्टी रोज और एंटीक टोन वाले फ्लोरल ब्रोकेट कॉर्सेट और मैचिंग फिटेड स्कर्ट में आलिया गजब की अट्रैक्टिव लग रही थी। कान फिल्म फेस्टिवल 2026 में चर्चा का केंद्र बनी ये वही आलिया हैं सोशल मीडिया पर जिनकी इमेज कभी अनइन्फॉर्म्ड और इग्नोरेंट यूथ की बन गई थी।

0: एक समय सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आलिया भट्ट के मीम्स से भरे रहते थे। आलम ये था कि किसी ने तथ्यात्मक रूप से कोई गलत बयानी की तो सोशल मीडिया पर तुरंत उसकी तुलना आलिया भट्ट से कर दी जाती थी। बहरहाल ये आलिया के बारे में सोशल मीडिया यूजर्स या नेटिजन्स का अपना परसेप्शन था। आलिया की रियलिटी नेटिजन्स के परसेप्शन से कोसों दूर है। आपको बता दें कि आलिया को लेकर इस तरह का सोशल मीडिया परसेप्शन इसलिए बन गया था क्योंकि एक बार उन्होंने देश के राष्ट्रपति का नाम गलत बता दिया था। दरअसल बतौर लीड एक्ट्रेस 2012 में आई अपनी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के प्रमोशन के लिए आलिया करण जौहर के शो कॉफी विद करण में अपने को स्टार्स वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ पहुंची थीं। करण ने लाइटर मोड में आलिया से भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया और आलिया ने उत्साह में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का नाम बता दिया था, जबकि उस समय देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे।
1: Who is the president of India?
0: आलिया की जिंदगी की गहराई में उतरे बगैर, पूरी सच्चाई जाने बगैर नेटिजन्स ने ये मान लिया कि आलिया का आईक्यू लेवल बेहद लो है और सामान्य ज्ञान तो शून्य है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है कि आलिया भट्ट अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी ADHD नामक एक रेयर डिजीज से पीड़ित हैं, जिसका पेशेंट कभी कभी जोन आउट हो जाता है। जोन आउट का मतलब ये है कि पेशेंट फिजिकली कहीं और होता है लेकिन उसका दिमाग अचानक किसी दूसरे जोनर में चला जाता है।
2: मैं बचपन से जोन आउट करते आई हूँ, हमेशा क्लासरूम में भी जोन आउट होती थी, कॉन्वर्जेशंस में जोन आउट होती हूँ। तब रिसेंटली मैंने एक पर्सनालिटी जो भी क्या होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और मुझे पता चला कि मैं ADHD के स्पेक्ट्रम में काफ़ी हाई हूँ। मुझे ADHD है, तो अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर।

0: आपको बता दें कि ADHD डिजीज का IQ लेवल से कोई रिलेशन नहीं है। काफी हाई IQ वाले लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है। होता यही है कि कभी कभी इसका पेशेंट जोन आउट हो जाता है और उस दौरान कोई ऐसा बयान दे सकता है या ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकता है जिससे उसके IQ लेवल पर सवाल उठने लगे। आपको बता दें कि आलिया का न सिर्फ IQ लेवल बल्कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी नेक्स्ट लेवल का है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि साल 2012 से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी आलिया कैमरा ऑन होने के बाद कभी जोन आउट नहीं होती। अलबत्ता कैमरे के सामने आते ही आलिया इतनी फोकस्ड हो जाती हैं कि उन्हें अपने किरदार और संवाद के सिवा कुछ भी ध्यान नहीं रहता।
1: I'm so present जब मैं कैमरा के सामने होती हूँ, चाहे मैं वो किरदार में प्रेजेंट हूँ, मतलब द पार्ट दैट आई एम प्लेइंग, आई एम प्रेजेंट एज द कैरेक्टर, बट आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। और फिर अभी ऑफ कोर्स आफ्टर राहा, जब भी मैं उसके साथ रहती हूँ, आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। तो ये 2 आई थिंक मोमेंट्स हैं मेरी लाइफ में जहाँ पे मैं सबसे ज्यादा पीसफुल फील करती हूँ।
0: साफ है कि आलिया भट्ट अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को भली भांति पहचानती हैं। यही वजह है कि कॉफी विद करण में गलत जवाब देने के बाद जबरदस्त तरीके से ट्रोल होने पर भी आलिया पूरी तरह काम एंड कूल रहीं। काफी वक्त बाद आलिया से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने पूरे ह्यूमर के साथ जवाब देकर ट्रोलर्स को भी ट्रोल कर दिया।
2: बोर हो गई उस जोक से, मेरे को एक्चुअली नया जोक चाहिए। आई वांट टू मेक अ मिस्टेक अगेन। हाँ, कोई मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं क्या गलती करूँ कि फिर से लोग उसको 1-2 साल और खींचेंगे।
0: आपको बता दें कि आलिया बॉर्न एक्ट्रेस हैं। संयोग से इनका जन्म एक ऐसे घराने में हुआ जहाँ माहौल पूरी तरह फिल्मी था। मार्च 1993 को हुए आलिया के जन्म से काफी पहले से पिता महेश भट्ट अर्थ, सारांश, नाम, आशिकी, सड़क और दिल है कि मानता नहीं जैसी कल्ट और आइकॉनिक फिल्मों का निर्देशन कर इंडस्ट्री में अलग पहचान स्थापित कर चुके थे। आलिया की मां सोनी राजदान भी 36 चौरंगी लेन, मंडी, सारांश और त्रिकाल जैसी 8 फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी से क्रिटिक्स की शाबाशी हासिल कर चुकी थीं। आलिया ने भी जब से होश संभाला एक्टिंग को छोड़कर किसी दूसरे काम का तसव्वुर इनके मन में एक बार भी नहीं हुआ।
2: मैं हमेशा कहती कि मैं एक्शन पे ही पैदा हुई थी अपनी माँ की कोख से। आई डोंट थिंक देयर वाज दैट 1 सेकंड आल्सो कि मैं दुनिया में आई, मुझे उस सेकंड पे ही पता था कि मुझे एक एक्ट्रेस बनना है और मुझे एक्टर बनना है और मुझे एक्टिंग करनी है। आई थिंक उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था।
0: जिन लोगों ने आलिया को अनइन्फॉर्म्ड यूथ का एम्बेसडर बना दिया था उन्हें ये जानना चाहिए कि आलिया भट्ट जब सिर्फ 4 साल की थी तभी उन्होंने श्यामक डावर डांस एकेडमी की समर क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। बात सिर्फ इतनी नहीं है, डांस एकेडमी में 4 साल की आलिया इंडस्ट्री की प्रेस्टिजियस फैमिली का तगमा लेकर नहीं बल्कि लर्निंग हंगर के साथ जाती थी। यही वजह है कि बाकी बच्चों के मुकाबले वो ज्यादा अच्छे से चीजों को ग्रैस्प करती थी। खुद श्यामक डावर ने आलिया की तारीफ करते हुए एक बार कहा था कि आलिया सब कुछ बहुत जल्दी सीख लेती हैं।
2: श्यामक डावर जी के जो समर कैंप, समर डांस क्लासेस थे यार, वो एक्चुअली मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का बहुत ही अहम हिस्सा था। एंड आई रिमेम्बर दोज मोमेंट्स वेरी क्लियरली, क्योंकि जेन्युइनली इम्पैक्ट मेरी लाइफ में काफी था। क्योंकि कॉन्फिडेंस, लोगों के सामने डांस करना, फ्री बनना, ऐसे फील करना कि आप सबसे छोटे हो पर फिर भी बड़े हो और डांस करना है।
0: 4 की उम्र में श्यामक डावर की डांस क्लास ज्वाइन करने वाली आलिया 7 साल की होते होते नृत्य कला में इतनी पारंगत हो गई कि स्कूल के एक डांस कंपटीशन में श्यामक डावर ने उन्हें हायर क्लास की छात्राओं के बीच भेज दिया। क्योंकि डावर को ये भरोसा हो गया था कि हायर क्लास की छात्राओं के बीच भी आलिया बेहतर परफॉर्म करेंगी। हालांकि तब मासूम आलिया के साथ एक मजेदार वाकया भी पेश आया था।
2: क्लास में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था मेरा, तो शावक सर ने मुझे एक सीनियर बैच में डाल दिया। तो मैं 7 साल की थी और मैं क्लास के अंदर आई और इंस्ट्रक्टर कंफ्यूज हो गए कि आप ये क्लास में हो, क्योंकि इट वाज देयर लिटरली एडल्ट्स इन दैट क्लास। और मैंने बोला हाँ शामक सर, लाइक आई एम सपोज टू कम इन दिस क्लास। तो पहले उनका क्वेश्चन था हाउ ओल्ड आर यू, तो मैंने बोला 7, बट देन इमीडिएटली मैंने बोला बट इट्स माय बर्थडे टुमारो, आई एम गोइंग टू बी 8 टुमारो।
0: दिलचस्प बात तो यह है कि अगले दिन आलिया का जन्मदिन नहीं था, लेकिन उन्होंने झूठ इसलिए बोल दिया क्योंकि उन्हें डर हो गया था कि कम उम्र को देखते हुए उन्हें कहीं नीचे की क्लास में न भेज दिया जाए। इस लेवल का आत्मविश्वास था आलिया के भीतर बचपन से ही। कमाल ये है कि यही आत्मविश्वास तब भी बना रहा जब आलिया ने रुपहले पर्दे पर चुनौतीपूर्ण किरदार निभाना शुरू किया। इंडस्ट्री के स्टार फैमिली से आने वाले नेपो किड्स आमतौर पर फिल्में साइन करने से पहले अपने घर के अनुभवी सदस्यों से सलाह मशविरा करते हैं, लेकिन आलिया का हिसाब अलग है। वो फिल्में साइन करने से पहले अपने पिता महेश भट्ट या माँ सोनी राजदान, यहाँ तक कि पति रणबीर कपूर से भी क्लियरेंस लेना जरूरी नहीं समझती, बल्कि इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स के आधार पर खुद ही फैसले लेती हैं।
2: एक्चुअली अपना माइंड मेकअप करने के बाद डिस्कस करती हूँ मैं, बिकॉज आई एम नॉट समबडी हु नीड्स टू बी कन्विंस्ड फॉर अ फिल्म, एक तो बात ये है, और दूसरी बात ये है कि मेरा इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स ही सबसे प्योर रिस्पॉन्स होता है। तो अगर कोई, मैं इंस्टिंक्टिवली अगर एक्साइट हो जाऊंगी और किसी ने अगर बोल दिया कि मतलब ऐसे मत करो, आई एम जस्ट गिविंग इफ केस सिनेरियो, मेरे साथ हुआ नहीं है, पर अगर बोल दिया तो फिर मेरे दिमाग में डाउट पैदा हो जाएगा। तो मेरी जर्नी मेरी है और मेरी डिसीजन भी मेरी होनी चाहिए, इसलिए दैट्स द रीजन, नॉट फॉर एनी अदर रीजन।
0: आप समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया की नजर में अनइन्फॉर्म्ड सेलेब्स रही आलिया की प्रतिभा उन्हें लेकर बने परसेप्शन से बिल्कुल अलग है। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से किक हुए एकाध अपवादों को छोड़ दें तो आलिया के लेवल का आईक्यू और टैलेंट हिंदी सिनेमा के 100 साल के इतिहास में इक्का दुक्का अभिनेत्रियों में ही नजर आएगा।
3: आलिया बॉलीवुड की एक दमदार फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। आलिया के पिता महेश भट्ट बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा निर्देशकों में शुमार हैं, जबकि मां सोनी राजदान 8 फिल्मों की आइकन रही हैं। लेकिन आलिया ने अपने फिल्मी सफर में आगे बढ़ने के लिए कभी भी पारिवारिक पृष्ठभूमि का सहारा नहीं लिया। शुरू से ही उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट पर भरोसा किया और इसका असर ये है कि आलिया आज बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेट अभिनेत्रियों की फहरिस्त में काफी ऊंचा मकाम हासिल कर चुकी है।
0: इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नेपो किड्स के सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक मिलने की रवायत नई नहीं है। हालांकि ज्यादातर नेपो किड्स अपने पारिवारिक वटवृक्ष के घने साय में अंकुरित होकर फलते फूलते हैं और उसी साय में फना भी हो जाते हैं, पर कुछ नेपो किड्स ऐसे भी हैं जो मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर अपनी पारिवारिक लिगेसी से निकलकर अलग साम्राज्य स्थापित करते हैं। आलिया भट्ट दूसरी कैटेगरी की नेपो किड हैं। बतौर लीड हीरोइन अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने अगर प्रतिभा नहीं तो जुनून, लगन और मेहनत की तो मुनादी कर ही दी थी। तनुजा चंद्रा के निर्देशन में बनी और 1999 में रिलीज हुई आइकॉनिक मूवी संघर्ष में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू करने वाली आलिया भट्ट को हीरोइन के तौर पर डेब्यू करने का मौका बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के जरिए दिया था। आलिया की उम्र तब महज 18 साल थी, लेकिन उनका फिगर फिल्म के किरदार के लिहाज से फिट नहीं था। ऑडिशन के दौरान करण जौहर ने आलिया के लिए कड़ी शर्त रख दी कि उन्हें अपना वेट लॉस करना होगा। आलिया टीनेज में ही अपने करियर को लेकर कितनी संजीदा थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 3 महीने के भीतर उन्होंने अपना वेट 68 किलो से कम करके 51-52 किलो कर लिया। क्योंकि बचपन से बस एक ही तो सपना था आलिया का, सितारा बनकर सिल्वर स्क्रीन पर चमकने का। इसीलिए शूटिंग के दौरान सेट पर पहली बार जब कैमरा ऑन हुआ तो उनका उत्साह चरम पर पहुंच गया।
2: वो कहते हैं ना, एक्सट्रीम जॉय फीलिंग आता है कि कैमरा के सामने हो, शूटिंग हो रही है, कुछ अच्छा हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, बट यू फील के अंदर से कुछ। इवन दो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाज अ ब्लर, जो पहला गाना जो मेरी लाइफ की पहली दिन थी शूटिंग की, वो राधा के लिए थी। तो एक शॉट था, मेरे को नीचे आना था, टर्न करके ऐसा कुछ करना था, फिर दुपट्टा उठा के कैमरा में देखना था और ब्लोअर फैन आ रहा था, उसी में ही मेरे को ऐसे बहुत मजा आ गया।
0: पहली बार कैमरे के सामने आने के बाद आलिया बेशक उत्साहित थी, लेकिन फिल्म साइन करने के बाद वो फेल्योर के फियर साइकोसिस का शिकार हो गई थी। आलिया को ये डर सताने लगा कि अगर वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाई या फिल्म पिट गई तो आगे करेंगी क्या। पिता महेश भट्ट को जब बेटी के फियर साइकोसिस के बारे में पता चला तो उन्होंने अलहदा तरीके से आलिया को उससे बाहर निकालने की कोशिश की। महेश भट्ट ने बेटी को विशेष फिल्म्स के अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि मन में जो भी डर है, आशंका है, उसका इजहार सबके सामने करो।
2: फॉर सम रीजन माय फादर इज आउटस्टैंडिंग इन अ क्राइसिस सिचुएशन। जब भी आप क्राइसिस में हो, आप उनको फोन करो, ही हैज द मोस्ट काम टोन एंड ही विल डील विद द सिचुएशन द बेस्ट वे। इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन उन्होंने डिसाइड किया, ऑफिस आ जाओ, सबके सामने बोलो तुम कैसे फील कर रही हो, जो एक्चुअली एक बहुत अजीब सीक्वेंस सिचुएशन है, क्योंकि आप पहले तो इतना वल्नरेबल फील करो, सबके सामने उठ के बोलना है कि मैं ऐसे फील कर रही हूँ।
0: महेश भट्ट ने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने का कोई मनोवैज्ञानिक अनुभव था, ये तो नहीं बता, लेकिन उनका ये अनोखा फॉर्मूला आलिया के लिए क्लिक जरूर कर गया। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डर का डंका बज जाने के बाद आलिया के अंदर की घुटन कम हो गई। वैसे 19 अक्टूबर 2012 को रिलीज हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर बॉक्स ऑफिस पर तो कामयाब रही, लेकिन आलिया की इमेज बॉर्बी डॉल से कुछ ज्यादा नहीं बन पाई। उधर क्रिटिक्स ने भी आलिया के डेब्यू को महेश भट्ट के प्रभाव से जोड़ दिया। लेकिन फिल्म हिट होने के बाद बड़े पर्दे पर बड़ा मकाम हासिल करने के आलिया के संकल्प के साथ उनका आत्मविश्वास भी जुड़ गया। अगली ही फिल्म हाईवे में अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर आलिया ने क्रिटिक्स को पहले से तय परसेप्शन को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। 21 फरवरी 2014 को रिलीज हुई हाईवे में वीरा त्रिपाठी के डी ग्लैमरस किरदार में बेहतरीन अभिनय का तड़का मारकर आलिया ने उन्हें बॉर्बी डॉल कहने वालों का मुंह बंद कर दिया। दरअसल अभिनय को लेकर आलिया का फलसफा शुरू से ही कन्वेंशनल नहीं बल्कि इंस्टिंक्टिव रहा है।
4: कैमरे के सामने का जो एक फीलिंग होता है ना, उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता है। एट द एंड ऑफ द डे मैं जितना भी चाहे डायलॉग सीख लूँ या कुछ रट्टा मार लूँ, फिजिकल ट्रेनिंग कर लूँ, अपने आप को कमरे में बंद करके मेथड एक्टिंग भी कर लूँ, अगर कैमरे के सामने मुझे फीलिंग नहीं आ रही है तो कैमरा पकड़ लेगा और मेरी परफॉर्मेंस जो है उसमें दिख जाएगी। तो तैयारी जारी रहती है फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं कैमरे के सामने सिर्फ फील करने की कोशिश करती हूँ।
0: हाईवे के बाद आलिया ने इंडस्ट्री में मुनादी कर दी कि मीना कुमारी और मधुबाला की खींची हुई अदाकारी की लीक इस युग में भी मिटी नहीं है। 2016 में आई उड़ता पंजाब के बाद तो क्रिटिक्स ने भी स्वीकार कर लिया कि आलिया की अदाकारी किसी एक जोनर तक महदूद नहीं है। उड़ता पंजाब के एक मैले कुचैले भोजपुरी लड़की के किरदार में आलिया ऐसे गुम हो गई कि पहचानना मुश्किल हो गया कि ये वही राधा हैं जिसने डिस्को दीवाने पर ठुमके लगाए थे। उड़ता पंजाब के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। 2018 में आई राजी में एक कश्मीरी जासूस के किरदार में आलिया ने अपने अभिनय से इतनी जान फूंक दी कि 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाली कुछ एक महिला प्रधान फिल्मों में शुमार हो गई। वहीं 2019 में आई गली बॉय में सफीना के किरदार को आलिया ने अपनी एक्टिंग से जीवंत कर दिया। गली बॉय में नारी को प्रकृति से सहज प्राप्त कोमलता और जरूरत पड़ने पर प्रकट होने वाली आक्रामकता के मिश्रण को आलिया ने इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद तो आलिया बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइनों की फेहरिस्त में शुमार हो गईं। 25 फरवरी 2022 को रिलीज हुई गंगूबाई काठियावाड़ी आलिया के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। संजय लीला भंसाले की इस फिल्म में आलिया ने एक वेश्यालय की मालकिन और माफिया क्वीन के चुनौतीपूर्ण किरदार को सहजता के आईने में उतार कर सबको हतप्रभ कर दिया। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया को सबसे प्रेस्टीजियस माने जाने वाले नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया।
5: गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं अभिनेत्री आलिया भट्ट।
0: 2022 आलिया के लिए बहुत इवेंटफुल साल साबित हुआ। साल 2022 में कोरोना की मार से पस्त हो चुकी फिल्म इंडस्ट्री दोबारा उठ खड़े होने की जद्दोजहद कर रही थी और इसी साल आलिया की गंगूबाई काठियावाड़ी के अलावा आरआरआर और ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 जैसी फिल्में रिलीज हुईं। 2022 में ही उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर किस्मत आजमाई और डार्लिंग्स प्रोड्यूस की, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और सफल भी रही। 2023 में आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और 2024 में आई जिगरा ने भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया। इसी साल 10 जुलाई को आलिया की अल्फा रिलीज होने वाली है। साल 2027 में आलिया संजय लीला भंसाली के एक और शाहकार लव एंड वार में भी नजर आने वाली हैं। साफ है कि आलिया बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट अभिनेत्रियों की सूची में शुमार हो चुकी हैं। आज आलिया अपनी एक फिल्म के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस लेती हैं।
3: तो वंदे मातरम में आज आपने आलिया भट्ट के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
6: क्या है अधिक मास की महिमा, क्या है अधिक मास के नियम और पूजा विधान, अधिक मास में कैसे होगा समस्याओं का समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock. Coffee house. And more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना
13: उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
1: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
2: Jack, come home. It's supper time.
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
3: Could you play that one song with the words?
1: Jack FM, playing what we want.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को.
5: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा. Join SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in.
6: गुजरात के वड़ताल धाम में लगाया गया 500 किलो आम का भोग, केसर आम की खुशबू से महका स्वामीनारायण मंदिर का गर्भगृह, गर्मी को देखते हुए लगाया महाभोग. देवभूमि में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं का भजन कीर्तन, अब तक करीब 2.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन. बांदीपोरा में 37 साल बाद लौटे कश्मीरी पंडित, सुंबली मावा उत्सव में शामिल, नंद किशोर मंदिर का अलौकिक श्रृंगार. दुर्लभ योग में मनाई जा रही शनि जयंती, अकोला के प्राचीन मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, नवग्रह शनि मंदिर भक्तों ने लगाया 56 भोग. नीदरलैंड्स के किंग और क्वीन से मिले पीएम मोदी, भारतीय मूल के लोगों से भी मिले पीएम, डच कलाकारों ने गाया राग दुर्गा.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर.
6: देश भर में भक्ति और आस्था के साथ मनाई जा रही शनि जयंती, शनिदेव के दर्शन के लिए अकोला में 200 साल से ज्यादा पुराने मंदिर में उमड़ रहे श्रद्धालु. आज शनि जयंती के मौके पर बना विशेष संयोग, शनिवार शनि जयंती और ज्येष्ठ अमावस्या का दुर्लभ योग, शनि मंदिर में 56 भोग, विशेष पूजा, जन्मोत्सव की तैयारी. भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रिय तेल और फूल माला अर्पित कर रहे श्रद्धालु, कष्टों से मुक्ति और सुख समृद्धि की कामना. शनि जयंती पर काले तेल, उड़द की दाल, तेल, जूते, कपड़े और लोहे की वस्तुओं का दान का विशेष महत्व है. शनि जयंती पर शनि मंदिर के विशेष सजावट, लगाई गई आकर्षक लाइट, शाम को 11 किलो के कलाकंद का केक काटने की तैयारी, भंडारे का भी होगा आयोजन. शनि जयंती पर दिल्ली के शनिधाम में दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालु, 23 साल बाद एक ही दिन पड़ी शनि अमावस्या और शनि जयंती. न्याय के देवता शनि देव के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालु, शनिधाम में पूरी विधि विधान से की जा रही शनिदेव की पूजा. शनिधाम में पूरे पारंपरिक विधि से किया जा रहा शनिदेव का अभिषेक, आज के दिन शनिदेव के दर्शन और पूजन का विशेष महत्व. वाराणसी में भी पूरी आस्था के साथ मनाई जा रही शनि जयंती, सुबह से ही शनिदेव के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालु. वाराणसी के मैदागिन चौराहे पर स्थित शनिदेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने जलाए सरसों के तेल के दीपक, काली तिल, काले उड़द, नीला पुष्प दीपक भी कर रहे दान. प्रयागराज में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा वट सावित्री का त्यौहार, सुबह से ही बरगद के पेड़ की परिक्रमा और पूजा करती दिखी महिलाएं. सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री का व्रत रखकर और 16 श्रृंगार कर बरगद के पेड़ की पूजा की, पति की लंबी उम्र और घर में खुशहाली का मांगा आशीर्वाद. प्रेम और समर्पण का प्रतीक है यह त्यौहार, सावित्री ने तपस्या से यमराज को किया था प्रसन्न, मान्यता है कि यमराज ने बरगद के पेड़ के नीचे लौटाए थे सत्यवान के प्राण. दिल्ली में भी पूरी आस्था के साथ मनाया जा रहा वट सावित्री का त्यौहार। व्रती महिलाओं ने बरगद के पेड़ के नीचे पूरी विधि विधान से की पूजा अर्चना। पूर्वी दिल्ली के मंदिर परिसर में व्रती महिलाओं ने बरगद के पेड़ के तने पर लपेटा कच्चा धागा। महिलाओं ने अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना की। चारधाम में दर्शन के लिए लगातार उमड़ रहे श्रद्धालु। 27 दिन में लगभग 13.5 लाख भक्तों ने की चारधाम यात्रा। केदारनाथ धाम में कल 27,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। अब तक 5,76,000 से अधिक भक्त पहुंच चुके हैं बाबा केदार के धाम। बद्रीनाथ धाम में भी कल 22,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन पूजन। इस साल अब तक 3,65,000 से अधिक भक्त पहुंचे बद्री विशाल के दरबार। यमुनोत्री में अब तक 2,00,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। गंगोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं की संख्या 2,00,000 के पार। चारधाम यात्रा में लगातार बढ़ रही वाहनों की आवाजाही। श्रद्धालुओं की संख्या में हो रही बढ़ोतरी। मेवाड़ के श्री सांवलिया सेठ मंदिर में आया रिकॉर्ड चढ़ावा। ज्येष्ठ मास कृष्ण चतुर्दशी पर खोली गई दान पेटियां। पहले चरण की गणना में निकले 11,30,00,000 रुपए। 18 मई को होगी अगली गिनती। मंदिर मंडल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुई गणना। भक्तिमय जयकारों से गूंज उठा परिसर। सांवलिया सेठ में श्रद्धालुओं की अपार आस्था। भक्तों का मानना है कि सांवलिया सेठ सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। श्री सांवलिया सेठ मंदिर में हर महीने आता है करोड़ों का चढ़ावा। देश भर से दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। बिहार के मोतिहारी में बन रहा विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर में नंदी प्रतिमा होगी स्थापित। विश्व के सबसे बड़े चतुर्लिंगम शिवलिंग पर इस साल सावन में श्रद्धालु कर सकेंगे जलाभिषेक। मंदिर के निर्माण के बाद धार्मिक पर्यटन को मिलेगी नई पहचान। स्थानीय लोगों को रोजगार के मिलेंगे अवसर। विराट रामायण मंदिर में 18 शिखर और 22 मंदिरों का होगा निर्माण। महावीर मंदिर ट्रस्ट के प्रतिनिधि ने मंदिर परिसर का किया निरीक्षण। महावीर मंदिर ट्रस्ट के प्रतिनिधि ने कार्यों को लेकर जताई नाराजगी। जल्द निर्माण करने के दिए निर्देश। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के दरबार में परिवार संग पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। विधि विधान से की पूजा। नीदरलैंड्स पहुंचे पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर किया पीएम का स्वागत। पीएम मोदी के स्वागत में भारतीय कलाकारों ने सांस्कृतिक नृत्य किया प्रस्तुत। भारतीय संस्कृति की झलक देख भाव विभोर हुए पीएम। नीदरलैंड्स में पीएम मोदी के स्वागत के लिए डच कलाकारों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत पेश किया। कलाकारों ने राग दुर्गा पर आधारित साधु रामानुपम वाइनरी को दी प्रस्तुति। स्वागत समारोह के दौरान गायन के साथ तानपुरा मांसुरी वायलिन और तबला जैसे वाद्यंत्र बजाए गए। डच कलाकारों की प्रस्तुति ने मोहा सबका मन। पीएम मोदी ने नीदरलैंड्स के किंग विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से की मुलाकात। नीदरलैंड का राज परिवार यूरोप के सबसे पुराने शाही परिवारों में से एक माना जाता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को नागपुर रेलवे स्टेशन से नागपुर मडगांव एक्सप्रेस की नियमित सेवा का किया उद्घाटन। ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। सीबीएसई का बड़ा फैसला। कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए 1 जुलाई से लागू होगा 3 भाषा नियम। 2 भाषाएं भारतीय मूल की होनी अनिवार्य। पंजाब के 72 शिक्षकों का समूह ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड के लिए रवाना। सीएम भगवंत मान ने किया रवाना। पुणे में राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान में पीजी डिप्लोमा के 20वें बैच के दीक्षांत समारोह का आयोजन। पीएम के प्रमुख सचिव और रिजर्व बैंक के गवर्नर हुए शामिल। हिमाचल के धर्मशाला पहुंची रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम। पंजाब किंग्स से होगा बेंगलुरु का अगला मुकाबला। पंजाब के होशियारपुर से आई गुड न्यूज। 30 फीट गहरे बोरवेल गिरे बच्चों का किया गया सफल रेस्क्यू। होशियारपुर के ट्रक समाना गांव में 9 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाला गया 4 साल का मासूम। बच्चों के रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ पंजाब पुलिस और प्रशासन के लोग रहे शामिल। इस दौरान राज्य के जेल मंत्री और सांसद भी मौके पर रहे मौजूद। डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ने संभाली रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान। प्रशासन और एजेंसियों के तुरंत की गई कोशिशों के बाद बची मासूम की जान। बच्चे के रेस्क्यू में एनडीआरएफ के 40 से अधिक जवान हुए अधिकारी हुए शामिल। शाम 4 बजे घर के पास खेलने के दौरान बोरवेल में गिर गया था 4 साल का गुरकरण। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना ने लोगों को जागरूक करने के लिए लेक्चर का किया आयोजन। कार्यक्रम में लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दी गई जानकारी। कार्यक्रम में सेना ने बताया कि क्यों और कैसे अंजाम दिया गया पूरा ऑपरेशन। स्टूडेंट्स ने सेशन को बताया इन्फॉर्मेटिव, बोले दिल में सेना के लिए बड़ी इज्जत। जम्मू कश्मीर में सरकार के प्रयासों का असर, ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को उपलब्ध कराया जा रहा रोजगार। स्वयं सहायता समूहों के जरिए अचार, ड्राई फ्रूट, मसाले और किराना के सामान तैयार कर रही ग्रामीण महिलाएं। महिलाओं को डिजिटल साक्षरता का भी दिया जा रहा प्रशिक्षण, रोजगार के साथ साथ वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बन रही ग्रामीण महिलाएं। त्रिपुरा का एक पुलिस स्टेशन बना, कानून व्यवस्था शांतिपूर्ण, सह अस्तित्व का और सांप्रदायिक सौहार्द का राष्ट्रीय उदाहरण। उत्तरी त्रिपुरा जिले में वांगमुन थाने के तहत आने वाले जम्पुई हिल्स इलाके में इस साल अब तक नहीं दर्ज हुई कोई शिकायत या FIR। समाज में शांति बनाए रखने की दिशा में असाधारण उपलब्धि, स्थानीय समुदायों में भाईचारा बढ़ाने की सुविधा, पुलिस के प्रयासों के दिया जा रहा उपलब्धि का श्रेय। यूपी में आंधी तूफान पीड़ित लोगों के लिए राहत वाली न्यूज, मुख्यमंत्री के निर्देश पर पीड़ित परिवारों को 24 घंटे के भीतर दी गई आर्थिक सहायता। यूपी में आंधी तूफान से पीड़ित 111 परिवारों को दी गई आर्थिक मदद, प्रभारी मंत्रियों और जिलाधिकारियों ने पीड़ितों से मिलकर दिए 4-4 लाख रुपए। देश में पेट्रोल डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का फैसला, सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विंडफॉल टैक्स लगाया। पेट्रोल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाने से देश में पेट्रोल कीमतों पर नहीं पड़ेगा कोई असर, आम जनता पर नहीं पड़ेगा कोई अतिरिक्त भार। दुनिया में तेल की ऊंची कीमतों के बीच सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों को दी राहत, डीजल और विमान के ईंधन पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में कटौती। विदेश यात्रा पर टैक्स लगाने की अटकलों पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया, पीएम ने ऐसी रिपोर्ट्स को बताया पूरी तरह गलत। गंगा एक्सप्रेस वे पर शुक्रवार से टोल कलेक्शन शुरू, उद्घाटन के बाद यूपी सरकार ने 15 दिन तक गंगा एक्सप्रेस वे पर टोल न वसूलने का किया था ऐलान। गुलाबी रंग बिरंगी नवी मुंबई, हजारों फ्लेमिंगो का डेरा। नवी मुंबई के झील में दिखा फ्लेमिंगो का विशाल झुंड, पर्यावरण के लिए शुभ संकेत माने जा रही फ्लेमिंगो की वापसी।

0: फ्लेमिंगो सफारी बनी आकर्षण का केंद्र, पर्यटकों की उमड़ी भीड़। फ्लेमिंगो ने बढ़ाई नवी मुंबई की पहचान, पर्यटन को मिला बढ़ावा। कई देशों से लंबा सफर तय करके आते हैं प्रवासी पक्षी, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इसराइल जैसे देशों से लंबा सफर तय कर पहुंचते हैं यहां तक। आयुष्मान खुराना स्टारर पति पत्नी और वो 2 के बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत, पहले दिन सिर्फ 4 करोड़ की कमाई। फिल्म भूत बंगला की 29वें दिन महज 75 लाख की कमाई, फिल्म की वर्ल्ड वाइड कमाई हुई तकरीबन 215 करोड़ रुपए। सूर्या और त्रिशा कृष्णन स्टारर साउथ फिल्म करप्पू भी बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। करप्पू ने रिलीज के पहले दिन भारत में 14 करोड़ 40 लाख रुपए का कलेक्शन के साथ ओपनिंग की। संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल रिलीज के पहले दिन नहीं बटोर पाई सिनेमाघरों में दर्शक, पहले दिन महज 48 लाख रुपए कमाए। मीनाक्षी शेषाद्री ने 33 साल पुराने गाने लश्कारा की यादें की ताजा, सोशल मीडिया पर अपने करियर के सबसे पॉपुलर गाने लश्कारा का वीडियो किया शेयर। ऑस्ट्रिया के वियना में गीत संगीत के महाकुंभ यूरोविजन ग्रैंड फिनाले से पहले सिंगर्स में गीतों की शानदार प्रस्तुति दी। अल्बानिया के सिंगर एलिस ने नान के साथ ग्रैंड फाइनल में बनाई जगह, ऑस्ट्रेलिया के डेल्टा गुडरैम अपने इक्लिप्स सॉन्ग से छाई। बुल्गारिया की सिंगर डारा ने मंगा रंगा गीत की भव्य प्रस्तुति दी। साइप्रस की एंटीगोनी का ज्वाला यूरोविजन फैंस को खूब पसंद आया। डेनमार्क की सोरेन टॉर्पेगार्ड ने भावुक होकर जीता दिल। रोमानिया की अलेक्जेंड्रा कैप्टन सिकू ने चोकेमी से सबको चकाया। ट्रैक के सिंगर डैनियल जिज़का के गाने क्रॉस रोड्स ने बांधा समा। यूक्रेनी गायिका लेलिका का रिडनेम सॉन्ग भावुक प्रस्तुति बनकर उभरा। वियना की बारिश में भी नहीं टूटा यूरोविजन फैंस का जोश, सड़कों पर रेनकोट पहनकर दर्शकों ने जमकर डांस किया। ऑस्ट्रिया, फ्रांस और यूक्रेन के झंडों से पूरा माहौल दिखा रंगीन, बारिश के बीच भी फैंस लगातार गाते और झूमते नजर आए। फैंस ने यूरोविजन को एक बड़ी ग्लोबल फैमिली बताया। खराब मौसम के बावजूद स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ जुटी। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने रॉयल ओपेरा हाउस गाला में बढ़ाई शान, गाला के दौरान मंच से नए शाही पर्दे का किया अनावरण। शो में बेले और ओपेरा का शानदार मेल देखने को मिला, चार्ल्स रॉयल बेले और रॉयल ओपेरा दोनों के संरक्षक। चीन के वैज्ञानिकों ने की 6 हाई मिल्क डेयरी बकरियों की सफल क्लोनिंग, शानक्सी प्रांत में पहली सफल बैच क्लोनिंग। क्लोन की गई बकरियों में 4 नर और 2 मादा शामिल, ये बकरियां सम नस्ल की हाई मिल्क प्रोड्यूसर बकरियों से हुई तैयार। हर बकरी की सालाना दूध उत्पादन क्षमता करीब 2800 लीटर, बकरियों में दूध में फैट और प्रोटीन का स्तर भी काफी ऊंचा पाया गया। चीन ने लिजियान 1Y113 रॉकेट से 5 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे, उत्तर पश्चिम चीन के डोंगफेंग स्पेस जोन में सफलपूर्वक लॉन्च। सभी सैटेलाइट अपनी कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित, लिजियान सीरीज अब तक 100 सैटेलाइट अंतरिक्ष भेज चुकी है। ब्रुनेई के क्राउन प्रिंस हाजी अल मोहतादी बिल्लाह ने देखी चीन के शेंझेन में रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, ह्यूमनॉइड रोबोट्स के शिक्षा और फैक्ट्री में इस्तेमाल से हुए काफी प्रभावित। चीन दौरे के दौरान ब्रुनेई शाही परिवार ने विमेन एंड चिल्ड्रन सेंटर का किया दौरा, बच्चों ने वर्चुअल रियलिटी के जरिए माउंट एवरेस्ट देखा और रोबोट डांस का आनंद लिया। ब्रुनेई के क्राउन प्रिंस के बच्चों ने चीनी बच्चों के साथ इंटरैक्टिव गेम्स खेले। शाही परिवार ने चीन के एक रोबोटिक डॉग्स भी खरीदा जिसे ब्रुनेई ले जाएंगे। चीन और ब्रुनेई के रिश्तों के 35 साल पूरे होने पर दोनों देशों के सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। ऊर्जा, शिक्षा, कृषि और खेल क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने की बात कही गई। क्राउन प्रिंस बिल्ला ने चीन की आर्थिक और तकनीकी प्रगति की जमकर तारीफ की। शाही परिवार ने रोबोट्स के साथ बिताए शानदार पल। चीन में बारहसिंगों के संरक्षण को लेकर शानदार पहल। 7 स्वस्थ बारहसिंगों के बच्चों का हुआ जन्म। आयुषा और उनके पति वो किमिंग इलाके के सबसे युवा रेंडियर पालक बने। दोनों जंगल में रहकर परंपरा और संस्कृति को बढ़ा रहे आगे। रेंडियर्स के लिए खास पोषण अभियान शुरू किया। मादा रेंडियर और नवजात बच्चों को सोयाबीन केक समेत जरूरी आहार दिया गया। ग्रेटर किंगन माउंटेन्स के जंगलों में इस साल 300 से ज्यादा नए रेंडियर जन्म लेने की उम्मीद। इसके बाद इलाके में कुल रेंडियर की संख्या 1800 के पार पहुंच सकती है। आयुषा सोशल मीडिया के जरिए अपनी जनजातीय संस्कृति को दुनिया तक पहुंचा रही है। रेंडियर पालन के वीडियो पर्यटकों को भी खूब आकर्षित कर रहे हैं। न्यूजीलैंड प्रो में पहले दिन ग्रेबियल ग्रेडिना का दमदार प्रदर्शन। मेडिना अब तीसरे राउंड में फिलिप टोलेडो से भिड़ेंगे। फिलिप टोलेडो ने दिन का सबसे बड़ा वेव स्कोर बनाया। फिलिप टोलेडो की एक तहरीर ने दर्शकों को किया रोमांचित। रियो वाइडा ने बड़ा ओलंपिक करते हुए कॉनर ओलेरी को हराया। रेगलॉन के मनु बे में चल रही है प्रतियोगिता। इटली में जोनास विंगेगार्ड ने ब्लॉक हाउस फतह कर जीता गिरो डी इटालिया स्टेज 7। बहुत कठिन होती है ब्लॉक हाउस की चढ़ाई। बेहद रोमांचक मुकाबले में फेलिक्स गेल विजेता 13 सेकंड रहे पीछे। जय हिंडले ने तीसरा स्थान हासिल किया।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads. Thank God I get to wake and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: The Tailgate Top 20. Hey, it's Blake from the Garth Channel, and I'm your host of the Tailgate Top 20. Join me every weekend as we pick a year, go back in time, and count down the biggest tailgating songs around. And since this is Tailgate Radio, you know anything goes. The Tailgate Top 20. This weekend with me, Blake, from the Garth Channel, only on Tailgate Radio.
4: The Tailgate Top 20.
5: Search for Tailgate Radio on TuneIn to listen.
3: Try to keep up.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: चलिए आपको दिखाते कुछ ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ दुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर देंगे।
4: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग यही कह रहे हैं कि ऐसा नजारा तो अब खत्म हो चुका है, ऐसा तो हमारे जमाने में हुआ करता था। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी साइकिल पर दो बच्चों को बांधकर स्कूल लेकर आया है। आज के समय में कोई इस तरह से अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हुए नहीं दिखता, और ये वो कारण है कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपने ये सुना ही होगा कि अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, और इसके लिए कई तरीके भी बताए होंगे, मगर क्या आप ये जानते हैं कि कोई खुद की इज्जत कैसे कर सकता है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, ये छोटी सी बच्ची आपको बता देगी। वायरल हो रहे वीडियो में बच्ची अपने ही पैर छूती दिख रही है, वो अपने ही पैर छूकर माथे से हाथ को लगाती दिखती है। अब बच्ची क्यों कर रही है ये तो वही जाने, मगर बच्ची इस प्यारी हरकत के कारण उसका ये वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि एक छोटी सी बच्ची पानी पूरी खा रही है, लेकिन इसमें खास बच्ची का कॉस्ट्यूम है। दरअसल बच्ची ने माता रानी का रूप धारण किया है, स्कूल में किसी प्रतियोगिता में भाग लिया होगा, जिसके बाद वो घर जाते हुए पानी पूरी खा रही होगी और किसी ने वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे। वायरल हो रहे इस वीडियो में दो महिलाएं बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए रील शूट कर रही थी। दोनों का आत्मविश्वास देखने लायक था। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, चलने का तरीका और कैमरे के सामने खुद को पेश करने का अंदाज बिल्कुल किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था। एक महिला आगे चल रही थी, जबकि दूसरी उसके पीछे उसी अंदाज में कदम मिलाकर नीचे उतर रही थी। लेकिन तभी अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे वीडियो का माहौल ही बदल दिया। सीढ़ियों से उतरते समय आगे चल रही महिला का अचानक बैलेंस बिगड़ गया। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, उसका पैर फिसल गया और वो लड़खड़ाकर नीचे गिरते गिरते बची। ये पूरा नजारा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया।

सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें पूरा परिवार 36,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन के अंदर बारात निकालता दिखाई दे रहा है। वीडियो में कोई सीट पर चुपचाप बैठा नहीं है, बल्कि म्यूजिक बज रहा है, लोग डांस कर रहे हैं और पूरा माहौल किसी उड़ते हुए वेडिंग फंक्शन जैसा नजर आ रहा है। जिसने भी ये नजारा देखा वो हैरान रह गया। कुछ लोग सीटों के बीच खड़े होकर डांस कर रहे हैं, तो कुछ मोबाइल कैमरे में इस खास पल को रिकॉर्ड करते दिखाई दे रहे हैं।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों
1: क्या है अधिक मास की महिमा, क्या है अधिक मास के नियम और पूजा विधान, अधिक मास में कैसे होगा समस्याओं का समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
2: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
3: It's your boy,
2: just
3: Jay-Z.
2: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
4: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession.
8: गुजरात के वड़ताल धाम में लगाया गया 500 किलो आम का भोग, केसर आम की खुशबू से महका स्वामीनारायण मंदिर का गर्भगृह, गर्मी को देखते हुए लगाया गया महाभोग। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं का भजन कीर्तन, अब तक करीब 2.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। बांदीपोरा में 37 साल बाद लौटे कश्मीरी पंडित, सुंबली मावस उत्सव में शामिल नंद किशोर मंदिर का अलौकिक श्रृंगार। दुर्लभ योग में मनाई जा रही शनि जयंती, अकोला के प्राचीन मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, नवग्रह शनि मंदिर में भक्तों ने लगाया 56 भोग। भीषण गर्मी में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जंगल सफारी में बेजुबानों के लिए खास इंतजाम, खास डाइट प्लान का हो रहा पालन, एसी पंखा और कूलर की व्यवस्था।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोर धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज शनिवार है और शनि जयंती भी है। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आज सबसे विशिष्ट तिथि है क्योंकि ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में शनि देव को कर्मों का फल देने वाला दंडाधिकारी माना गया है। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते और बुरे कर्मों की कड़ी सजा देते हैं, जिससे लोगों को जीवन में संघर्ष, देरी और चुनौतियां झेलनी पड़ती है। ऐसे शनि देव को प्रसन्न करना सभी लोग चाहते हैं ताकि उनकी टेढ़ी नजर से बचे रहें और जीवन में संपन्नता आए। तो आज शनि जन्मोत्सव के अवसर पर देश में हर शनि मंदिर और शनि धाम पर पूजा अर्चना के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जिसकी वजह है यह भी है कि आज बरसों बाद कई दुर्लभ योग बन रहे हैं और महासंयोग बन रहे हैं। आज ज्येष्ठ अमावस्या है तो प्रयागराज से लेकर हरिद्वार तक लोग पवित्र नदियों में डुबकी भी लगा रहे हैं और स्नान दान कर रहे हैं ताकि शनिदेव की कृपा उन पर बनी रहे। वहीं दिल्ली से लेकर वाराणसी तक, अकोला तक, शहर शहर श्रद्धालु शनि जन्मोत्सव मना रहे हैं। देखिए तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों से सामने आ रही हैं। आज दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। आज ज्येष्ठ माह की अमावस्या है और शनिदेव की आराधना का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख दिन है। शनि जयंती का महासंयोग आज बन रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली, वाराणसी और अकोला की तस्वीरें। ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। एक दिल्ली की तस्वीर है जहां भगवान शनिदेव का यहां पर तेलार्पण उन्हें किया जा रहा है, तेलाभिषेक वहाँ उनका हो रहा है और वाराणसी में भी धूमधाम के साथ में लोग भगवान शनिदेव का जन्मोत्सव मना रहे हैं और वहाँ उनका श्रृंगार किया गया और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर धूप दीप ध्यान और दान पुण्य इत्यादि कर रहे हैं। इसके अलावा अकोला में भी बड़ी संख्या में शनि प्रकट उत्सव का यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। बताया जा रहा है कि शाम को आज केक भी कटेगा कलाकंद का और भारी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर आरती करने के लिए, आराधना करने के लिए जुटेंगे। और चलते हैं महाराष्ट्र के अकोला, जहां सहयोगी धनंजय हमारे साथ बन चुके हैं। धनंजय, आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु शनिधाम पहुंच रहे हैं, कैसी रौनक देखने को मिल रही है? भगवान शनिदेव का प्रकट उत्सव आज मनाया जा रहा है, केक भी कटेगा ऐसी भी जानकारी है?
1: बिल्कुल शुभम जी, मैं सबसे पहले आपको जो शनिदेव और नवग्रह के मंदिर यानी नवग्रहों के पूरे इसका दर्शन में आपको और आपके अपने जेएनटी के प्रेक्षकों को करवा दूं। यहाँ आप देख सकते हो कि शनि भगवान को सुबह से ही जो है उनके प्रागट्य दिन

0: ही तैयारियां शुरू हुई थी, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर पुजारी जो है वो पूजा कर रहे हैं। साथ ही जो भगवान जी को जो है 56 भोग का आज सुबह ही जो है प्रसाद चढ़ाया गया था। और सबसे अहम बात यही है कि आज जो है शनि जयंती है, शनि महाराज की जयंती है, उनका जन्मदिन, उनका प्रागट्य उत्सव मनाया जा रहा है। उससे उसके लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर 11 किलो का कलाकंद का जो केक है वो यहाँ पर पूरी तरीके से ड्राई फ्रूट से सजाया गया है। और कुछ ही देर में जो है इस कलाकंद के केक को काटा जाएगा और प्रसाद के रूप में सभी को यहाँ पर दिया जाएगा। तो भक्तों की जो भीड़ है वो धीरे धीरे यहाँ से अभी जुटना शुरू हुई है। शुभम जी, आप देख सकते हो कि भक्त जो है आज के इस अनोखे और सबसे अहम दिन, मानो आज जो है अमावस्या भी है, शनि अमावस्या भी है, शनिवार भी है, और शनि भगवान का जो है आज प्रागट्य उत्सव भी यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो आप भक्त को देखिए, भक्त के चेहरे देखिए, क्योंकि भक्तों को आज इतना पता है कि ये भगवान जो है ये सभी के दुख हारने वाले भगवान है। और इसी भगवान को जो है उन जिनके पीछे साढ़े साथी होगी, जिनको शनि दोष होगा, वो आज तेल का जो अभिषेक है, तेला का जो अभिषेक है वो यहाँ पर सुबह से ही किया जा रहा है। अभी भी कुछ भक्त जो है यहाँ पर तैला अभिषेक यहाँ पर करने वाले हैं। शुभम जी, सबसे अहम बात है कि कल यहाँ पर जो है नौ ग्रहों की पूजा भी यहाँ पर की गई है। और हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी है, क्या बताएंगे किस तरीके की आज खुशी है जो आज कुछ देर में ये केक कटेगा कंकन का।
1: बहुत खुशी हम लोगों को भगवान शनि भगवान का जन्म उत्सव मनाने के लिए सभी खुशी है। और सभी भक्त जनों से निवेदन है कि सभी भक्त शनि भगवान के दर्शन लेने का लाभ ले लें।
0: आज का ये दुर्लभ योग किस तरह का है?
1: बहुत बढ़िया है और सनातन धर्म के लिए सबसे बढ़िया है।
0: आज मुझे बोलिए कि जिस तरीके से ये आज ये सजाया गया है नवग्रह को, तो क्या कहेंगे भक्तों को?
2: ये जो आज अधिक मास का इतना पुण्य का जो पायवा है, ऐसा योग कभी आता नहीं है। आज बहुत दुर्लभ योग है और सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी भाग्य की बात है कि आज शनिवार और अमावस्या और अधिक मास के दिन श्री शनिदेव का जन्मदिन आया है। हम सभी भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि सभी शनिदेव के दर्शन लेके अपने अपने सर्वग्रह शांति करें। ये चलते हैं, ऐसा बहुत दुर्लभ योग आज कभी आता नहीं है।
0: तो जिस तरीके से शुभम जी देखिए कि यहाँ पर जो है सभी भक्त जो है अपने दुख हरने के लिए ये दुर्लभ योग के चलते जो है इस शनि मंदिर और नवग्रह के मंदिर में आ चुके हैं। शुभम जी,
3: धनंजय, जो मंदिर में आप मौजूद हैं, क्या मान्यता है इस मंदिर की? कितना साल पुराना मंदिर है, कब इसकी स्थापना हुई और कब से भगवान के प्रति, शनिदेव के प्रति लोगों की आस्था इस मंदिर में बनी रही है, क्या जानकारी दे रहे हैं पुजारी जी?
0: पुजारी जी से ही पूछेंगे कि ये कितने साल पुराना मंदिर है और क्या आस्था है, क्योंकि नवग्रह का मंदिर शायद ही इस आसपास के अकोला या आसपास के जिलों में होगा।
1: ये मंदिर करीबन 20
4: और यहाँ पे हर रविवार सुंदरकांड का पाठ होते रहता है, उसके बाद साल में रामदेव बाबा के जुम्मे होते रहते हैं। यहाँ सभी स्थापित है, यहाँ रामदेव बाबा की मूर्तियां स्थापित है, यहाँ राम जी का दरबार स्थापित है और सभी सुंदरकांड के जो सदस्य है वो हर रविवार यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ करते हैं।
0: क्या मान्यता है इस मंदिर की, खासियत क्या है?
4: जिस भक्त को शनि की साढ़े साती, शनि का अड़ैया, जिसको शनि की महादशा, गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा, जिस भक्त को चलती है वो नवग्रह के दर्शन करने के बाद उसके जीवन में कई तरह के बदलाव आते हैं। तो
0: जी, यहाँ पर पुजारी जी ने स्पष्ट किया है शुभम जी जो है ज्यादा पुराना मंदिर नहीं है, लेकिन नह ग्रह का जो मंदिर है, शनि मंदिर के साथ नौ ग्रहों का जो मंदिर है वो सबसे पहला मंदिर है जो अकोला का है। आसपास के जिलों में भी ये मंदिर नहीं है, तो इसके दर्शन के लिए शुभम जी आसपास के जिलों से भी लोग बड़े भाव और श्रद्धा के साथ यहाँ पर आते हैं। शुभम जी,
3: धनंजय, चूंकि बड़ी संख्या में लोग आज दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, तेलाभिषेक कर रहे हैं, तिल का दान कर रहे हैं, उड़द की दाल का दान कर रहे हैं और लोहे का भी दान ऐसा माना जाता है कि शुभ होता है, क्या लगता है हर बार की शनि जयंती के मुकाबले इस बार का शनि जन्मोत्सव कितना अलग देख पा रहे हैं आप? चूंकि हर साल श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन आज का महासंयोग, आज का योग क्या कहता है?
0: जी शुभम जी, बिल्कुल ही आज का जो महासंयोग, सहयोग नहीं है, महासंयोग जो है वो कई सालों बाद आया है। जहाँ शनिवार है, शनि अमावस्या है और शनि जयंती है, इसी अवसर को लेकर जो है सालों बाद आने के बाद जो है जो भक्तों के पीछे दहिया लगा है, जिन्हें साढ़े सी लगी, वो तो आज इस अवसर पर जो है शनि भगवान के जो है तिल अर्पण उन्हें किया जाता है।

0: तिलाभिषेक यहाँ पर किया जाता है और साथ ही इस नव ग्रह के मंदिर में सभी ग्रह शनि के साथ बाकी भी ग्रह उनके पीछे अगर है तो उनकी भी शांति इस सुबह अवसर पर यहाँ पर की जाती है। कुछ भक्त हमारे साथ है जो सुबह से ही यहाँ पर आए हैं, कुछ तो यहाँ इस तरीके से आए। मुझे बोलिए कि आज का
1: कितना भाव है इस मंदिर में?
2: ये मंदिर इतना पावन और पवित्र मंदिर है, यहाँ हमेशा पूजा पाठ चलती रहती है, भजन कीर्तन होते रहते हैं। यहाँ पे जो भी भक्त आता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। और यहाँ के जो पुजारी जो है, यहाँ के पुजारी हमेशा सभी आने वाले भक्तों का पूरे भावपूर्ण तरीके से,
3: बिल्कुल बिल्कुल धनंजय। और यहाँ पर बहुत पवित्र स्थान है और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज शनि जन्मोत्सव है और उसकी धूम साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया धनंजय तस्वीरें दिखाने और बातचीत करने के लिए। तो आज शनिदेव का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, उनके प्राकट्य का उत्सव मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर भगवान शनि की आराधना कर रहे हैं। हमारी इस खास पेशकश में भी इतना ही, बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
3: चाय की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: 가자.
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त धर्म दुबे। यहां बात हो रही है हाल ही में रिलीज हुए एक ऐसे सॉन्ग की जिसने तहलका मचा दिया है। नमनतुला नाम का एक ऐसा गाना रिलीज हुआ है जिसके स्टारकास्ट के साथ इस समय हम बैठे हुए हैं। मिस्टर डायरेक्टर शक्ति भैया हमारे साथ हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अमृता फर्नांडिस मैम भी हमारे साथ हैं। खास बात यह है कि इस गाने को इन्होंने गाया है और इन्होंने एक्टिंग भी की है, और जिन्होंने संगीत दिया है मिस्टर अनु मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत। चूँकि सर लेडीज़ फर्स्ट, तो मैम आपसे मैं शुरुआत करूँगा। ढोल ताशे नगाड़ा लगातार, इतनी धूम, इतना बढ़िया मज़ा आया कि जो व्यूज है वो 1 करोड़ भी पार हो गए। आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि कैसे इस गाने का ऑफर आपके पास आया, कैसे आपने तैयारी की, और अब कैसा लग रहा है क्योंकि लगातार लोग पसंद कर रहे हैं।
2: सबसे पहले सभी को धन्यवाद, श्रोताओं को जिन्होंने इस गाने को इतना पसंद किया। सोशल मीडिया और यूट्यूब पे भी काफी उसे सराहा जा रहा है। एंड जैसे हमारे साथ अनु जी बैठे, उन्होंने एक ऐसा सुंदर गाना बनाया जो देश प्रेम से तो ओतप्रोत था ही, पर इसके साथ उन्होंने उसकी बीट्स रिदम ऐसी दी है कि एकदम एनर्जेटिक हो जाता है इंसान। तो आई रियली थैंक हिम फॉर दैट एंड द ब्यूटीफुल डायरेक्शन जो शक्ति जी ने किया, बहुत ही खूबसूरत डायरेक्शन। ये गाना ऐसे मेरे पास आया कि संदीप घुगे जी है जो बीजेपी से कनेक्टेड है, उन्होंने मेरे पास एक कंसेप्ट लाया था, और उसी वक्त मैं अनु जी से भी उस दिन मिली तो उन्होंने कंसेप्ट दोनों से शेयर किया था एक प्रोग्राम में, और वहीं अनु जी को भी वो कंसेप्ट इतना अच्छा लगा कि उन्होंने हमिंग चालू कर दिया उसी प्रोग्राम में बैठे बैठे। वी वेंट इनसाइड आफ्टर द प्रोग्राम जस्ट टू सिट एंड चैट, और मुझे उनका वो हमिंग ही इतना अच्छा लगा जो उन्होंने एक टैगलाइन हम की थी, इतना कैची लगा। तो मैंने कहा मैं ये कर रही हूँ, अगर ये आप मुझे बना के देते हैं गाना तो। एंड ही वॉज राइट ऑन इट, और 2 दिन में उनका गाना तैयार हो गया।
1: बिल्कुल पता चला, वैसे ही जो किला कोट है वहां पर गाना शूट हो गया। सर मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन मैं शक्ति भैया आपसे ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। जब गाना हम देखते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में देखा रितेश देशमुख भी वहां लिखा हुआ है, अब कब आएंगे वो, कब आएंगे, कब आएंगे, और लास्ट में जब उनकी एंट्री होती है और फिर आप दोनों जाकर के शिवाजी के चरण में जो आप टीका लगाते हैं, उनका तिलक करते हैं, तो उसके बाद जो ऊर्जा आती है, रोंगटे खड़े हो जाते। कैसे ये आइडिया आ गया? क्या आप उनकी फिल्म को प्रमोट कर रहे थे, या रितेश देशमुख कहीं ना कहीं एक महाराज का चेहरा हो गए हैं, या फिर अमृता मैम के साथ कैसे आपने सोचा कि उनकी जोड़ी लाई जाए?
3: अधिक इसका श्रेय मैं अमृता जी या नरू जी को ही दूंगा, क्योंकि आइडिया अमृता जी का था कि क्यों ना रितेश जी को इस कार्य में प्रेजेंट किया जाए, क्योंकि उस दौरान उनकी फिल्म भी आ रही थी और लोग उनको उस चेहरे में देख रहे थे, छत्रपति के चेहरे में। तो मैम ने बोला कि अगर उनको लाएंगे तो लोग उसे एसोसिएट कर पाएंगे। एंड जहाँ तक गाने की बात है, जब हमने गाना सुना, गाने का जो एंड है वो इतना हाई क्रिसेंडो पे जाता है, इतने जैसे आपने कहा रोंगटे खड़े करने वाला है, तो हमने सोचा कि ऑलरेडी हम ना डांस तलवारबाजी सब दिखा चुके हैं, एंड में ऐसे एंड में और क्या ऐसा दिखा सकते हैं कि हम उसके व्यूअर्स के इफेक्ट को और ऊपर लेके जाए। तो ऐसा था कि एक सरप्राइज एलिमेंट रखेंगे गाने में, और रितेश जी ने उसको बहुत खूब निभाया।
1: क्या बात है सर। अनु सर मैं आपसे क्या बताऊं, मैं अगर ये कहूं कि उदित नारायण साहब, कुमार शानू या जो भी आज सुपरस्टार सिंगर बने हैं, बहुत बड़ा योगदान आपका रहा है। ऐसे में एक मराठी गाना आपके पास आता है, वो भी उस दिन रिलीज हो रहा है जब 1 मई का दिन है, पूरे महाराष्ट्र देश दुनिया की नजर है, कितना प्रेशर था, कैसे आपने गाना बनाया, कैसे धुन बनाई?
4: नहीं, मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा सौभाग्य है, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी को बहुत नमन करता हूँ, बहुत मानता हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई में मेरी पैदाइश हुई है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में मेरे पिताजी के थ्रू मैं बहुत सुनता था उनकी कहानियाँ। आप तो जानते ही हैं, मोर देन 350-370 फोर्ट्स उनके पास थे, जिसमें से अभी जैसे सिंधु दुर्ग हो, बल्कि अमृता जी विल लव दिस लाइन के तोरना जो फोर्ट है ना, वो 16 साल की उम्र में उन्होंने कैप्चर कर लिया था। मुझे जब संदीप जी ने कॉन्सेप्ट बताया और जब अमृता जी का नाम आया तो आई वॉज थ्रिल्ड, बिकॉज मैं आपको बताना चाहता हूँ अमृता जी इज डेडिकेशन टूवर्ड्स माई ट्यून। ये नहीं कि आप अब ये सवाल जो होता है कि भाई अमृता जी के साथ आप बैठे हैं तो आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अगर गौर से आप गाना सुनेंगे तो आपको नजर आएगा कितनी, उन्होंने कहा कि दो दिन में आपने ट्यून बना ली और गाना बन गया, लेकिन इसके पीछे इतनी मेहनत की है इन्होंने मुखड़े पे अंतरे पे मेरे साथ कि अन्नू जी ने जो ट्यून बनाई है उसके पीछे मैं कैसे पढ़ूं। और अगर आज लोग गाना सुन रहे हैं तो मुझे लोग फोन करके पूछते हैं कि अरे एक बात पूछो, मैं हाँ बोलो गाना बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू, पर अमृता जी ने कमाल गाया एंड दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट टू मी। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब इनकी आवाज की तारीफ की जाती है और जेन्युइन तारीफ हो रही है। ये होता है ना कि भाई नहीं यार ऐसी तारीफ करो तो नहीं, लोग जगहें बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस गाने के अंदर अपने अगर मुखड़ा अगर आपने सुना है तो ये गाना बहुत लोकप्रिय हो रहा है, उसमें अंतर चल रहा है, इसमें किसी को पता ही नहीं कि इसकी लिंक लाइन आना बड़ा मुश्किल था।

0: नमन तुला, ये मुखड़े पर आना, एक क्रॉस को बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और इन्होंने इतनी मेहनत की रिकॉर्डिंग में, विजय हमारे साथ वायरफ में हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, मैं जब इनकी आवाज सुनता जा रहा था मैं बोल रहा हूँ बाप रे कमाल की मेहनत करके आई है ये, देखा प्रोफेशनल सिंगर, बल्कि मैं आज दावे से कह सकता हूँ हमारे हिंदुस्तानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बीच में जो बड़े बड़े गायिका हैं उनमें से मैं अमृता जी का नाम लेना चाहता हूँ। लोग बोलेंगे अनु जी आप इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप गौर से गाने सुने, गौर से सुने, इनकी वॉइस का अपना जादू है जिसने गाने को हिट कर दिया है।
1: सर सही कह रहे हैं, लेकिन सर एक तमन्ना भीतर मेरे दिल में जाग उठी है और मेरे साथ लाखों करोड़ों लोग जो देख रहे होंगे उनके भी, इतना बढ़िया आपने म्यूजिक अपने तरीके से किया, मैम अगर थोड़ा सा गुनगुना दे।
0: बस बिल्कुल, मैं यही एक्चुअली मैं उनको कहने वाला था, अमृता जी प्लीज मुखड़ा गा,
1: मजा आ जाए मैम प्लीज थोड़ा सा हो जाए,
0: जो भी स्केल आपको अभी ठीक लग रहा
1: है।
2: नमन तुला सह्याद्री चा राजा, हाँ मुजरा सह्याद्री चा राजा।
1: क्या बात मैम, देखिए अनु मलिक साहब के बारे में एक बातें जो हम लोग जानते हैं क्योंकि जब से पैदा हुए इनके गाने सुनते जा रहे, बड़ा मजा आता है, आज भी हम सुनते हैं, ये बहुत परेशान करते हैं अपने सिंगर को, आप थोड़ा सा बताएं कि आपको इन्होंने परेशान किया या फिर इनको मतलब ऐसे ही तुरंत बहुत ही सरलता से सारा गाना बन गया। मैम थोड़ा बताएं परेशान किया कुछ?
3: गाना बहुत सरलता से बन गया, नो डाउट, मैंने बताया ना इन्होंने जस्ट हमिंग की और गाना बन गया, बट इन द स्टूडियो जहां मेरी एक्सप्रेशन नहीं आ रही थी एंड ऑल, ये मुझे पकड़ रहे थे, ये बता रहे कि इजिली हो गया, बट ही कॉट मी एट द राइट प्लेसेस कि आप ये वापस करो, ये मुर्की थोड़ी क्लियर करो, सो ही डिड गाइड मी दैट टाइम, जिसकी वजह से वो अच्छा हो गया गाना।
1: अच्छा देखिए अभी ऐसा है, आप तो ठीक हैं, महाराष्ट्र से हैं, आप जानते हैं उनकी संस्कृति, लेकिन दीपिका पादुकोण को हमने देखा है, प्रियंका चोपड़ा को देखा है मराठी लिबास में जब वो आते हैं, आपको कितना ज्यादा एंजॉय आपने इसको किया या आप भी किसी को फॉलो आपने किया कि भाई मुझे इस तरह से दिखना है मुझे?
3: देखिए हमने कुछ इमेजेस तो ज़रूर देखे जिनके महाराष्ट्रीय नववारी अटायर्स अप्रिशिएट किए गए थे, बट उसमें बहुत अच्छा योगदान दिया नचिकेत बर्वे जी ने, ही इज़ रिनाउंड फैशन डिज़ाइनर, तो उन्होंने चाहे ज्वेलरी हो चाहे सारी ड्रेप या उसका कलर या उसका टेक्सचर, उसमें काफ़ी मदद की और उससे काफ़ी उठावदार ऐसा पूरा इंसाम्बल हो गया था।
1: अच्छा मजा बहुत आ रहा है बात करने में, दिल तो कर रहा है और करूं लेकिन बड़ा ही सीमित समय मिला है। मैम देखिए अभी क्या है कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा है कि ये सवाल जरूर पूछिएगा, मैम मुख्यमंत्री साहब ने देखा आपका गाना, देवेंद्र साहब ने देखा,
3: देवेंद्र जी ने देखा, दिविजा ने देखा, दोनों को बहुत अच्छा लगा और उनको पूरे टीम का एफर्ट जो था, देवेंद्र जी ने स्पेशली कन्वे करने बोला कि एवरीवन हैज डन अ फैबुलस जॉब एंड स्पेशल थैंक्स टू अनु जी एंड शक्ति जी फॉर अ ब्यूटिफुल सॉन्ग पुट टुगेदर।
1: मैम एक आखिरी सवाल वो मेरी तरफ से होगा क्योंकि वाकई में क्या है कि हम पत्रकार लोग हैं, जब देखते हैं लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं तो उनके पीछे भी बहुत सारे लोग लग जाते हैं, आप सामाजिक काम भी करती हैं, आप बहुत सारे ऐसे काम करती हैं, बहुत सारे हीरो हीरोइन के साथ आप मंच भी शेयर करते हैं अच्छे अच्छे काम करते हुए, आपको ट्रोल बड़ा किया जाता है, ऐसे चीजों को आप एंजॉय करते हो या किस तरीके से कि चल भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, मतलब कैसे कहाँ से आती इतनी शक्ति, शक्ति की बगल में तो बैठे ही है लेकिन फिर भी कैसे आप देखते हैं मैम ऐसे ट्रोलर्स को, कैसे देखते हो आप?
3: मैं इसी तरीके से देखती हूँ कि ट्रोलिंग ऐसा होता है कि जैसा बैकग्राउंड म्यूजिक, आप अगर कुछ बोल रहे हो तो बैकग्राउंड म्यूजिक आपको डिस्टर्ब कर सकता है, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, या आप कंप्लीटली यू कैन बी इन योर ओन जोन और आप आगे निकल जा सकते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन यू, कोई पत्थर फेंके तो आपको गिरना है वो पत्थर की चोट से, या आपको उठ के पत्थर उठा के उससे अपने कैसल्स बनाना है, यू हैव टू डिसाइड।
1: क्या बात है भैया, इसको बोलते हैं नारी शक्ति। अच्छा बड़ा मजा आ रहा था जब आपका गाना लगातार बढ़ते जा रहा है, ढोल ताशे बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं और फिर अचानक मैंने डिस्क्रिप्शन में देखा है कि रितेश देशमुख का नाम लिखा हुआ है, अब मैं इंतजार किया हूँ कब आ रहे, और जैसे ही वो आए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, उसके बाद मैम और वो दोनों खुद जाकर के शिवाजी महाराज के तिलक चढ़ाते हैं। सर कैसे ये दिमाग आ गया और कैसे आपने ये सोच ली कि भाई रितेश जी को भी लाना है, क्या रितेश जी की फिल्म को प्रमोट करना था या रितेश जी कहीं ना कहीं एक महाराष्ट्र का चेहरा बन चुके हैं या अमृता मैम के एक अच्छे मित्र भी हैं, क्यों?
4: इसका श्रेय मैं अनु जी और अमृता मैम को ही दूंगा क्योंकि आइडिया अमृता मैम का था कि क्यों ना गाने में रितेश जी को ले आए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसी दौरान एक फिल्म भी कर रहे थे शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर, तो एक चेहरा चेहरे के तौर पर लोग उनको देख रहे थे, तो हमने सोचा कि अगर उनको गाने में ले आए तो ऑडियंस को और मजा आएगा। एंड अनु जी ने जिस तरह गाना बनाया है, गाना एंड में जाके इतना बड़ा हो जाता है, उसका क्रिसेंडो इतना बड़ा है कि हमने सोचा कि गाने में ऑलरेडी हम डांस दिखा चुके हैं, तलवारबाजी दिखा चुके हैं, हम ऐसा क्या सरप्राइज एलिमेंट ला सकते हैं गाने में जिसको देखकर ऑडियंस को मजा आ जाए। तो तब जाके ऐसे एक आइडिया आया कि क्यों ना रितेश जी को हम रिक्वेस्ट करें कि गाने में फीचर करें।
0: बड़ा आपने नोटिस किया, पिक्चर बहुत अच्छा किया गाना, बहुत अच्छा, और अमृता जी हैज परफॉर्म्ड वेरी वेरी वेल।
1: बहुत अच्छा, इसके पहले भी एक राजस्थानी सॉन्ग था मैम का, मैंने इंटरव्यू किया है उसमें राजस्थानी पोशाक में, ये
0: कमाल
1: बढ़िया।
0: इनकी डेडिकेशन एज एन आर्टिस्ट इस, मैं सच्ची बताना चाहता हूँ शक्ति जी, आपने नोटिस किया होगा 102,000% फोकस इनका एज एन आर्टिस्ट, अपने कला के पीछे पड़ जाती पीछे और काम में लगी रहती।
4: एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो शूटिंग कंडीशन थी बहुत डिफिकल्ट थी, मुश्किल थी, गर्मी का सीजन था और मैम फुल कॉस्ट्यूम में नवारी में डांस कर रहे हैं 200 डांसर्स के साथ, तो बाकी पूरी क्रू कभी ना कभी थकती थी या ब्रेक चाहती थी। मैम सिर्फ एक ही जन है जो पूरी क्रू को बोलते कि चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, दैट इज मैम।
0: अच्छा एक बात अमृता जी आपको बताना चाहता हूँ, बिकॉज इन्होंने जो बात छेड़ी थी कि आई वर्क विद सर्टेन सिंगर्स और सिंगर्स का कभी कभी मैं उनसे बहुत मेहनत करवाता ना, तो आपने एक चीज नोटिस की नहीं की है, मैं बताना चाहता हूँ अमृता जी, एक जमाने में हम लोग जब रिहर्सल करते थे ना दीदी के साथ, लता जी आशा जी के साथ, फिर वहां से करते करते और भी जो हमारे अभी के सिंगर्स हैं, तो उन लोग रिहर्सल बहुत करते थे हमारे साथ और मेहनत करते, जब सेट पर आते थे ना तो प्रिपेयर होते थे। मैंने बहुत सालों बाद ये चीज अमृता जी में देखी।
1: क्या बात है, वाह,
0: आप मेरा मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। हमने रिहर्सल की, जहां जहां इन्होंने बुलाया मैं पहुंच गया बाजा लेके, अब रिहर्सल कर रहे हैं, बट ये नहीं कि टाइम वेस्ट हो रहा है। मुखड़ा क्या है, अंतरा क्या है, मुखड़ा क्या है, वर्ड्स क्या है, कितना लंबा गाना है, कैसे क्या क्या रेंज क्या है, स्केल क्या। उसके बाद जब सेट पर आई तो मैंने बोला भाई अभी बाजा खोल के बैठेंगे, और वो आई प्रिपेयर्ड, माइक पर गई, ट्रैक ऑन किया और आपको जितना गवाना गवा लीजिए, लेकिन शी न्यू एवरी वर्ड बाय हार्ट। ये बहुत बड़ी बात होती है, इसका मतलब है आप अपने काम में फोकस्ड हैं, एंड दैट इज व्हाट आई लव द मोस्ट अबाउट एनी आर्टिस्ट।
1: देखिए बातों का सिलसिला ऐसे लगातार बढ़ते जाएगा मैम, एक्चुअली सच में मेरा ये सवाल था, अब जब उठी गया एक आखिरी सवाल प्लीज मुझे इसका जवाब दीजिए, कैसे मतलब कैसे कहां से इतना समय मिल पाता है आपको, और कैसे आपका फिल्मों से गानों से इतना रुझान उसकी तरफ आपका हो गया, कैसे आप इतना गा लेती हैं, अच्छा एक्टिंग भी करती हैं और जैसा कि सर बता रहे इतनी मेहनत भी कर लेती हैं, कैसे मैम इतने।
3: म्यूजिक में तो मैं बचपन से थी, मेरे पेरेंट्स, मेरी दादी, एवरीवन सब क्लासिकल सिंगर्स है, तो थोड़ा उनसे सीखा, आगे गुरुओं से सीखा, उसके बाद रियल लाइफ गुरुज भी मिले ऐसे, तो ईजी हो जाता है। और दैट इमोशन ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक फॉर मी इज मेडिटेशन, सो That is something जो मुझे जिंदा रखता है, मेरी सांसें चालू रखता है, तो that's the love I have for music, the passion, जिसकी वजह से मैं music करते रहती हूँ जैसे समय मिले, दिन रात सुबह शाम जब भी समय मिले आए, keep on practicing।
1: बढ़िया मैम, हम तो बहुत मजा कर रहे हैं आपको देखकर, आपके गानों को देखकर, हम तो चाहते हैं राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, बहुत सारे पंजाब बचे। शक्ति सर मैम को आप एक अलग अलग विभिन्न रूपों में जरूर ले आइए, बहुत धन्यवाद आपके व्यूज लगातार इसी तरह से।
0: सर जय जय जय हिंद, जय महाराष्ट्र और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।
1: आप बने रहे हमारे साथ, नमस्कार।

0: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
3: इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good News Today, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: गुजरात के वड़ताल धाम में लगाया गया 500 किलो आम का भोग, केसर आम की खुशबू से महका स्वामीनारायण मंदिर का गर्भगृह, गर्मी को देखते हुए लगाया गया महाभोग। देवभूमि में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा, यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं का भजन कीर्तन, अब तक करीब 2.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। दुर्लभ योग में मनाई जा रही शनि जयंती, अकोला के प्राचीन मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, नवग्रह शनि मंदिर में भक्तों ने लगाया 56 भोग।
1: प्रेजेंटेड बाय केसरी, एक अविस्मरणीय अनुभव।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुंडी स्टूडियो में, आपके साथ हूं शुभम सिंह। आज बात करते हैं केदारनाथ धाम की। उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसे हैं भगवान केदारनाथ, जहां आस्था युगों पुरानी है और भगवान शिव का मंदिर सदियों पुराना। केदारनाथ की महिमा ऐसी है कि इनके दर्शन के बिना तो भगवान बद्रीनाथ के दर्शनों का भी कोई लाभ नहीं होता। कहते हैं कि भगवान केदारनाथ के दर्शन से समस्त पापों का शमन हो जाता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। हिमालय की गोद में बसा यह धाम बेहद पावन है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ भगवान शिव कुंवर के रूप में पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि शिखर सोहे बर्फ का और कंठ सोहे विष की धार, जो शरण में आए केदार की उसका बेड़ा पार।

0: 11,000 फीट की ऊंचाई, हाड़ कपा देने वाली ठंड और दुर्गम पहाड़ियों का रास्ता, लेकिन जब महादेव का बुलावा आता है तो ना मौसम बाधा बनता है और ना ही थकान। अगर कुछ मायने रखता है तो सिर्फ अपने आराध्य के प्रति आस्था। केदारनाथ बादलों की गोद में बसा भगवान शिव का वो धाम जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, जहां आस्था के आगे हर चुनौती बौनी साबित होती है,
1: जहां बाबा केदारनाथ का ये धाम है और एक तरफ बर्फ की चोटियां तो दूसरी तरफ यहाँ मंदाकिनी जो प्रकृति का विशेष श्रृंगार किए हुए है। ये जगह आपको बता दे कि सिर्फ तीर्थ नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का ये केंद्र है। यहाँ का हर पत्थर, हर हवा का झोंका ओम नमः शिवाय का जाप करता महसूस होता है।
0: जहाँ सुबह की पहली किरण जब मंदिर के स्वर्ण कलश को चूमती है तो ऐसा लगता है कि मानो महादेव स्वयं अपने भक्तों का स्वागत कर रहे हों। जहां महादेव के भक्त तमाम कष्टों को भुलाकर उन्हें दरकिनार करते हुए हिमालय की गोद में बसे इस पवित्र धाम में नतमस्तक होते हैं।

0: केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। कपाट खुलते ही यहाँ भक्तों का जो हुजूम उमड़ रहा है वो इस धाम की महिमा बताने के लिए काफी है। मीलों लंबी कतारें, जुबा पर शिव का नाम और आंखों में श्रद्धा के आंसू। ये नजारा है बाबा केदार के दरबार का, जहां आज आस्था का समंदर उमड़ रहा है। चढ़ाई थका देने वाली है, लेकिन इसके बावजूद भक्तों के चेहरों पर थकान नहीं बल्कि एक चमक है, एक उत्साह है, एक उमंग है और बाबा केदार के दरबार में हाजिरी की लालसा है।
1: अनुभव हर बार ही बहुत अच्छा होता है। पिछली बार एक डेढ़ साल पहले आई थी मैं यहाँ, पर उस बार हम लाइन में ही लगे रह गए थे और मेरा बहुत मन था कि मैं यहाँ पे आकर यहाँ की एनर्जी फील करूँ, मेडिटेट करूँ। वो तो यहाँ आकर वैसे भी बहुत अच्छा लगता है।
0: कतार में अपनी बारी का इंतजार करते श्रद्धालु, कोई पैदल कठिन चढ़ाई करके पहुंचा है, तो कोई घोड़ा खच्चर से, तो कोई हेलीकॉप्टर के सहारे बाबा के धाम अर्जी लगाने पहुंचा है। लेकिन केदार घाटी का कुदरती नजारा इतना मनोरम है कि यहां पहुंचकर भक्तों की थकान पल भर में दूर हो जाती है। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ और बीचों बीच बाबा केदार का धाम। मंदिर के ठीक सामने नंदी जी विराजमान हैं और मंदिर के ठीक पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि है। ये वो भूमि है जहाँ कड़कड़ में भगवान शंकर का वास है। ये वो धाम है जहाँ आकर भक्तों को असीम शांति और परम आनंद का सुख मिलता है। बाबा केदार की एक झलक पाकर ऐसा अद्भुत और दिव्य एहसास मिलता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। चार धाम यात्रा के दौरान यहाँ हर ओर आस्था भक्ति का अनुपम दृश्य देखने को मिलता है। इस साल 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे, तब से लेकर अब तक लाखों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन का पुण्य लाभ ले चुके हैं और सिलसिला लगातार जारी है। केदार धाम में अब तो यात्रियों का हुजूम उमड़ रहा है। रिकॉर्ड संख्या में भक्त बाबा केदार के धाम में पहुंच रहे हैं और हर दिन के साथ श्रद्धालुओं की लाइन लंबी होती जा रही है, लेकिन भक्तों के जोश में कोई कमी नहीं दिख रही।
2: धरती में जैसे पांव रखते हैं ना, तो जो एक एहसास होता है वो एक अलग ही है, और बाबा के जो दर्शन, उनकी जो धजा के दर्शन हो जाते हैं ना, तो यानी आप समझो कि आप पूरा आपका जीवन का कल्याण हो गया सर।
3: I feel very best here and this is heaven on earth. I feel so good. Thank you, Mahadev.
0: केदार धाम का पूरा परिसर ही श्रद्धालुओं से भरा है। चारों तरफ हर हर महादेव का जय घोष है। यही केदारनाथ की असली शक्ति है। यहाँ ना कोई छोटा है, ना बड़ा, ना अमीर है, ना गरीब। यहाँ तो सब शिव के गण बनकर आए हैं। कठिन चढ़ाई है, कड़ाके की ठंड है, लेकिन भक्तों का जोश ऐसा है कि जैसे हिमालय की बर्फीली हवाएं भी इनके उत्साह के आगे नतमस्तक हो गई हों। केदारनाथ की ये तस्वीरें गवाह हैं कि भारत की संस्कृति और श्रद्धा कितनी अटूट है। ये हुजूम सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि उस विश्वास की जीत है जो सदियों से इस धाम को जीवन बनाए हुए है। श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: उत्तराखंड के चार धामों में से प्रमुख है केदारनाथ धाम। लाखों श्रद्धालु यहां हर साल पुण्य कमाने, अपने पापों को माफ करवाने और मोक्ष पाने के लिए आते हैं। आम इंसानों की तो बात ही छोड़िए, आदि शंकराचार्य ने भी मोक्ष के लिए केदारनाथ धाम को ही चुना था। गौरीकुंड से 14 किलोमीटर पैदल चलकर केदारनाथ धाम तक पहुंचकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना किसी तपस्या से कम नहीं, लेकिन माना यह जाता है कि यह दर्शन इतना अलौकिक है कि इसके बाद भक्त एक ऐसी अनुभूति से भर उठते हैं, यात्रा के कष्ट की जगह उनको आनंद का एहसास होता है।

करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र केदारनाथ धाम। उत्तराखंड के चार धामों में से एक केदारनाथ धाम। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम।

0: उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसा भगवान केदारनाथ का वो धाम, जहां आस्था युगों पुरानी है और भगवान शिव का मंदिर सदियों पुराना। मान्यता है कि भगवान केदारनाथ के दर्शन से समस्त पापों का शमन हो जाता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है।
1: जीवन में एक बार भी जीवात्मा भगवान के श्री चरणों में आकर के भगवान का आराधन करता है, वो हर कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान शिव उसको जीवन का सारा ऐश्वर्य दे करके, शिव सायुज दे करके शिव लोक की प्राप्ति करवाते हैं, अपना पार्षद बना करके, शिव गढ़ बना करके अपने शिवलोक में उसे उपस्थित कर देते हैं। यह केदारनाथ जी की दिव्य इस ज्योतिर्लिंग की महिमा है। इस दिव्य स्थान पे आकर के भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करें और अपने जीवन को जीवन का कल्याण करें।
0: यह है महिमा केदारेश्वर केदारनाथ की, यह है महिमा भोले भंडारी की, यह है महिमा शिव शंकर की। पहाड़ों की तमाम कठिन यात्रा को तय करके दुनिया भर से हर साल लाखों की तादाद में आस्थावान पहुंचते हैं। गढ़वाल में हिमालय की चोटियों पर मौजूद भोले बाबा शिव के केदारनाथ मंदिर में गौरीकुंड से 14 किलोमीटर पैदल चलकर केदारनाथ धाम तक पहुंचकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना किसी तपस्या से कम नहीं, लेकिन माना यह जाता है कि यह दर्शन इतना अलौकिक है कि इसके बाद भक्त एक ऐसी अनुभूति से भर उठते हैं, यात्रा के कष्ट की जगह उनको दिव्य आनंद का एहसास होता है।
2: धाम केवल मंदिर ही नहीं बल्कि भगवान शिव के पांच दिव्य स्वरूप और गहरे आध्यात्मिक रहस्यों का प्रतीक माने जाते हैं। बात करें केदारनाथ मंदिर की तो केदारनाथ में भगवान शिव की कुबड़ यानी पीठ की पूजा होती है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और मान्यता यह है कि दर्शन करने से व्यक्ति को भारी कर्मों का बोझ हल्का हो जाता है और केदारनाथ शिव के वैराग्य तप और रौद्र रूप के प्रतीक माने जाते हैं।
0: हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान केदारनाथ के दर्शन को आते हैं, गाते बजाते भगवान भोलेनाथ के रंग में पूरी तरह रंगे हुए।

0: समुद्र तल से 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मोक्ष का वो धाम जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी समाधि ली थी। यहाँ आने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ के महत्व का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर किए जाने वाले जलाभिषेक का महत्व यमुनोत्री में किए जाने वाले जलाभिषेक से ज्यादा है। और कहा यह भी जाता है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बिना बद्रीनाथ की यात्रा अधूरी है। केदारनाथ का महत्व पंच केदार यात्रा में भी विशेष है और उसका पहला कारण वायु पुराण में वर्णित है। मान्यता के मुताबिक मानव कल्याण के लिए जब विष्णु जी ने पृथ्वी पर कदम रखा तो उनके चरण सबसे पहले बद्रीनाथ में पड़े, लेकिन वहाँ शंकर जी का वास था। तब भगवान विष्णु के आग्रह पर महादेव ने केदारनाथ को अपना निवास स्थान बना लिया। हिमालय की गोद में बसे केदार पर्वत पर स्थित केदारनाथ धाम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ साक्षात महादेव वास करते हैं। इसी वजह से यह धाम करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। मान्यता है कि बाबा केदार यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। इस पावन धाम से एक पौराणिक कथा भी जुड़ी है। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव अपने पापों से मुक्ति के लिए भगवान शिव को ढूंढ रहे थे, तब शिव जी ने महिष यानी भैंसे का रूप धारण किया था। जब भीम ने उन्हें पहचान लिया तो भगवान शिव भूमि में अंतर्ध्यान होने लगे। तभी भीम ने उनकी पीठ का भाग पकड़ लिया। वही त्रिकोणीय पीठ आज भी केदारनाथ में स्वयंभू शिवलिंग के रूप में पूजी जाती है।
1: यहाँ 6 महीने साक्षात देवता लोग यहाँ आकर पूजा करते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में वैष्णव धामों में ये भगवान की अनुग्रह से 6 महीने जो जब कपाट बंद हो जाता है ना, उस समय अंदर दीप प्रज्वलन करके भगवान को डोली नीचे लेके ऊखी मठ में लेके चले जाते हैं। बाद में क्या भगवान को पूजा अर्चना नहीं होता है क्या? नहीं होता है। कौन करता है? कि ये हिमालय है और गिरिजा माँ पार्वती हिमालय राजा का पुत्रिका है ना, ये उसका सारी क्षेत्र है, ये घर है। और उसी समय सारी देवता लोग आकर भगवान को दर्शन करना, पूजा पाठ करना इत्यादि अभी भी संपन्न होता है। इसलिए द्वादश ज्योतिर्लिंगों में हमारा जो केदारनाथ का अत्यंत पवित्र माना जाना जाता है।
0: केदारनाथ मंदिर के पास हवन कुंड है जहाँ पर पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण और पिंड दान किया जाता है। मंदिर के पास ही 2 पहाड़ हैं जो नर और नारायण की कठोर तपस्या की याद ताजा करते हैं। केदारनाथ मंदिर का मुख्य द्वार स्वर्ग द्वार भी कहलाता है। माना तो यह भी जाता है कि केदारनाथ के दर्शन से ब्रह्म हत्या जैसा घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यही तो महिमा है केदारनाथ की, जिसकी वजह से ऊंचे नीचे दुर्गम रास्तों के बावजूद भोले के भक्त उनके दर्शनों के लिए पहुंच ही जाते हैं। श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा का दर्शन कर पाना आसान नहीं है। वैसे तो हरिद्वार से केदारनाथ की दूरी 250 किलोमीटर से भी कम है, लेकिन रास्ता इतना मुश्किल है कि देखकर कलेजा कांप जाए। फिर भी दिलों में आस्था की हिलोट लिए बेखौफ होकर लाखों श्रद्धालु पहुंच ही जाते हैं बाबा के दरबार में। श्रद्धा की विरासत को समेटे भगवान केदारनाथ का मंदिर सदियों से आस्था का गवाह है।

0: आसमान चूमती हिमालय की चोटियों के बीच मौजूद केदारनाथ मंदिर अपनी अलौकिक बुलंदी के साथ देवियों ऊंचाइयां चूम रहा है। केदारनाथ मंदिर की यही अनुपम ऊंचाई उसे आस्था की पवित्र ऊंचाइयां देता है। भगवान केदारनाथ मुंह मांगी मुरादे पूरी करते हैं, मोक्ष का वरदान देते हैं। लेकिन उन तक पहुंचना आसान नहीं है, बड़ी कठिन है डगर केदारनाथ की। तीर्थ यात्रियों के लिए केदारनाथ धाम की यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति है। ये यात्रा ऋषिकेश हरिद्वार से शुरू होकर हिमालय की ऊंचाइयों तक जाती है। ऋषिकेश से केदारनाथ की दूरी करीब 240 किलोमीटर है। सोनप्रयाग से होते हुए तीर्थयात्री गौरीकुंड पहुंचते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की दूरी करीब 17 किलोमीटर है। ये पूरी तरह पैदल रास्ता है जिसे पूरा करने में 5 से 10 घंटे लगते हैं। जो लोग पैदल नहीं चल सकते उनके लिए पालकी, कंडी या खच्चर की सुविधा उपलब्ध होती है। फाटा, सिरसी और गुप्त काशी से हेलीकॉप्टर के जरिए भी तीर्थ यात्री सीधे केदारनाथ पहुंचते हैं।
1: विशेष रूप से 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं। वो 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वें ज्योतिर्लिंग हिमवत केदार के केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग है। ये तो के माने स्वर्ग है, दार माने दरवाजा है, केदार में स्वर्ग की दरवाजा है।
0: बाबा केदार का ये धाम प्रकृति का एक चमत्कार है। माना जाता है कि ये मंदिर हजारों साल पुराना है जिसे बिना किसी आधुनिक तकनीक के विशाल पत्थरों से बनाया गया है। पत्थर तराश कर बनाया गया ये मंदिर प्राचीन वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। भूरे रंग के विशाल पत्थरों से बना ये मंदिर आज भी वैसा ही खड़ा है जैसा सदियों पहले था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर नंदी महाराज पहरा देते हैं और गर्भगृह में वो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है जो भक्तों के सारे संताप हर लेता है। केदारनाथ के पुजारी मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं, परंपरागत रूप से वही यहाँ पूजा करते हैं। बाबा केदारनाथ की सेवा का विधान प्रकृति और ऋतु चक्र के साथ गहराई से जुड़ा है। हिमालय की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ये सेवा दो चरणों में बटी है जिसे ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन प्रवास कहा जाता है। जब हिमालय में बर्फ पिघलने लगती है और वसंत का आगमन होता है तब बाबा केदार अपने मुख्य धाम में विराजमान होते हैं। शुभ मुहूर्त पर बाबा की पंचमुखी डोली उखीमठ से केदारनाथ पहुँचती है। पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। दिवाली के बाद केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से धाम तक पहुंचना असंभव हो जाता है। ऐसे में सेवा का स्थान बदल जाता है। कपाट बंद होने के दिन शिवलिंग को भस्म और फूलों से ढक दिया जाता है। इसके बाद बाबा की पंचमुखी प्रतिमा को डोली में विराजित कर नीचे लाया जाता है। कहा जाता है कि जब कपाट बंद होते हैं और लोग वहां से नीचे आ जाते हैं तब अगले 6 महीने तक देवता और ऋषिगण केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा करते हैं। मुख्य मंदिर के पास ही पहाड़ी पर भगवान भैरव का मंदिर है। माना जाता है कि सर्दियों में जब कपाट बंद होते हैं तो भैरवनाथ धाम की रक्षा करते हैं। शीतकाल के 6 महीने बाबा केदार की पूजा रुद्रप्रयाग जिले में उखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में की जाती है। मान्यता है कि शीतकाल में साक्षात शिव यहाँ निवास करते हैं। कपाट खुलने और बंद होने का समय किसी उत्सव से कम नहीं होता। श्रद्धा की विरासत को दामन में समेटे भगवान केदारनाथ का मंदिर सदियों से आस्था का गवाह है। कत्यूरी शैली में बने इस मंदिर का वास्तु अनोखा है। दुनिया के दस्तूर बदले, वक्त का चलन बदला, लेकिन हर बदले वक्त के साथ भक्तों का विश्वास और भी बढ़ता गया। इन सैकड़ों सालों में न जाने इस मंदिर ने मौसम के कितने अंधड़ों को झेला, कुदरत के न जाने कितने ही बनते बिगड़ते मिजाज को देखा, लेकिन मंदिर का बाल भी बाका नहीं हुआ। कदम पर भक्ति है और हर सांस में शिव है। श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता। नमस्कार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
2: Jack, you're killing me.
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
3: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search classic rock hits or ask your smart device to play classic rock hits on TuneIn.
0: और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, oh, yeah, you make my dreams so Steely Dan, go back, Jack, do it again. Loggins & Messina, even though we ain't got money, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। प्रेजेंटेड
2: बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: गुजरात के वड़ताल धाम में लगाया गया 500 किलो आम का भोग, केसर आम की खुशबू से महका स्वामीनारायण मंदिर का गर्भगृह, गर्मी को देखते हुए लगाया गया महाभोग। देवभूमि में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं का भजन कीर्तन, अब तक करीब 2.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। बांदीपोरा में 37 साल बाद लौटे कश्मीरी पंडित, सुंबली मावस उत्सव में शामिल, नंद किशोर मंदिर का अलौकिक श्रृंगार। दुर्लभ योग में मनाई जा रही शनि जयंती, अकोला के प्राचीन मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, नवग्रह शनि मंदिर में भक्तों ने लगाया 56 भोग। भीषण गर्मी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जंगल सफारी मेजबानों के लिए खास इंतजाम, खास डाइट प्लान का हो रहा पालन, एसी पंखा और कूलर की भी व्यवस्था।

0: दिन फिल्म को हिट बनाने का सुपर हिट फॉर्मूला तैयार कर लिया है। क्या है वो फॉर्मूला और कैसे ये फिल्म बनने जा रही है, युवा दिलों की धड़कन देखिए इस रिपोर्ट में।
1: बॉलीवुड की चुलबुली अनन्या पांडे और सिनेमा का फ्रेश फेस लक्ष्य, दोनों की ये फ्रेश जोड़ी बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। प्यार, रोमांस और सस्पेंस से भरपूर कहानी, दो युवा सितारों की अनोखी लव स्टोरी और धर्मा प्रोडक्शंस का ड्रीम प्रोजेक्ट। हम बात कर रहे हैं साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक, चांद मेरा दिल की, जो 22 मई यानी अगले शुक्रवार को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया में फिल्म की चर्चा जोर शोर से हो रही है। हालांकि चर्चा फिल्म की कहानी की नहीं बल्कि धर्मा प्रोडक्शंस की एक अनोखी और धमाकेदार रिलीज स्ट्रेटेजी की है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मा प्रोडक्शंस इस फिल्म के जरिए बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। खास बात यह है कि इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद धर्मा प्रोडक्शंस ही कर रहा है। ऐसे में उन्होंने थिएटर मालिकों को बेहद खास निर्देश जारी किए हैं, जिसमें पहले दिन बेहद किफायती दामों पर टिकट्स बेचने के लिए कहा गया है, जिसके मुताबिक शुक्रवार 22 मई को शाम 5 बजे से पहले के सभी शो के टिकट महज 149 रुपए में अवेलेबल होंगे। वहीं शाम 5 बजे के बाद टिकट 199 रुपए में बेचे जाएंगे। इससे हर वर्ग का दर्शक पहले ही दिन फिल्म का लुत्फ उठाने पहुंच सकेगा। हालांकि ये ऑफर केवल रिलीज के दिन ही वैलिड होगा। शनिवार और रविवार को सिनेमा घरों को वीकेंड के नॉर्मल रेट पर टिकट बेचने होंगे। साथ ही रिलीज के दिन वाला ऑफर केवल सामान्य सीटों के लिए ही अवेलेबल होगा। इसमें रिक्लाइनर, लग्जरी स्क्रीन या प्रीमियर क्लास पर लागू नहीं होगा। टिकटों की कीमतें बजट फ्रेंडली रखकर मेकर्स का टारगेट है ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस हासिल करना। अक्सर देखा जाता है कि बड़ी फिल्मों के रिलीज के वक्त टिकटों के दाम आसमान छूने लगते हैं, जिससे कई बार आम दर्शक पहले वीकेंड पर थिएटर जाने से कतराते हैं। लेकिन चांद मेरा दिल के मेकर्स ने इस ट्रेंड को बदलने की कोशिश की है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि धर्मा प्रोडक्शंस की किफायती टिकट वाली स्ट्रेटेजी फिल्म के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इससे न सिर्फ सिंगल स्क्रीन बल्कि मल्टीप्लेक्सों में भी दर्शकों की भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। चांद मेरा दिल यंगस्टर्स और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है। माना जा रहा है कि वो इस ऑफर से काफी अट्रैक्ट होंगे। इस ऑफर की वजह से सिनेमा घरों को उम्मीद है कि 25 साल से कम उम्र के दर्शक बड़ी संख्या में चांद मेरा दिल देखने आएंगे। ऐसा पिछले साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म सैयारा के दौरान देखने को मिला था। तो अगर आप भी अनन्या पांडे के फैन हैं और इस अनोखी लव स्टोरी का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो जेब खाली होने की टेंशन छोड़ दीजिए, थिएटर जाइए और इस किफायती ऑफर का फायदा उठाइए। देखना दिलचस्प होगा कि धर्मा प्रोडक्शंस की ये बजट फ्रेंडली स्ट्रेटेजी बॉक्स ऑफिस पर कितने रिकॉर्ड तोड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और अब जब बात फिल्मों की हो रही है तो रोहित शेट्टी की गोलमाल 5 का भी जिक्र कर लेते हैं, जिसकी शूटिंग जारी है। रोहित की इस फिल्म में अजय देवगन समेत पुरानी स्टार कास्ट है, लेकिन इस बार फिल्म में लगने वाला है कॉमेडी का मास्टर स्ट्रोक वाला तड़का, क्योंकि गोलमाल 5 में इस बार अक्षय कुमार भी दिखेंगे, जहां अक्षय की एंट्री से फिल्म का सुपरहिट होना तय माना जा रहा है। वहीं इस फिल्म में अक्षय की फीस भी चर्चाओं का विषय बनी हुई है।

रोहित शेट्टी की गोलमाल फ्रेंचाइजी का नाम ही कॉमेडी की गारंटी है। दर्शकों को सालों से लोटपोट करने वाली गोलमाल की टीम एक बार फिर धमाल मचाने के लिए तैयार है। गोलमाल 5 को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बस बना हुआ है, लेकिन इस बार का धमाका डबल होने वाला है, क्योंकि फिल्म में एंट्री हो चुकी है कॉमेडी के किंग अक्षय कुमार की। जब रोहित शेट्टी की कॉमेडी और अक्षय कुमार की टाइमिंग एक साथ मिलेगी तो स्क्रीन पर आग लगना तो तय है। ऐसे में फैंस फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अक्षय के इस फिल्म से जुड़ने से ये और ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है। इन सब के बीच अब गोलमाल 5 से अक्षय कुमार की फीस की भी खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि अक्षय ने इस फिल्म में अजय देवगन से ज्यादा फीस वसूली है, यानी इस धमाके के लिए मेकर्स की जेब अच्छी खासी ढीली हुई है। खबरों की माने तो अक्षय कुमार ने इस फिल्म के लिए इतनी भारी भरकम फीस ली है कि ट्रेड पंडितों के भी कान खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार ने गोलमाल 5 की 18 से 22 दिनों की शूटिंग की है, जिसके लिए उन्होंने अजय देवगन से कहीं ज्यादा फीस वसूली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार को अपने रोल के लिए 35 से 40 करोड़ मिले हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि पूरी फिल्म में दिखने वाले अजय

0: फीस सिर्फ 20 दिनों की शूटिंग करने वाले अक्षय कुमार को क्यों मिल रही है? तो जनाब इसे कहते हैं स्टार पावर और स्पेशल रोल का जलवा। दरअसल माना जा रहा है कि फिल्म में अक्षय कुमार का रोल भले ही छोटा हो, लेकिन वो पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। यानी जितने समय भी अक्षय स्क्रीन पर रहेंगे, दर्शकों को हंसते हंसते पेट फुलाने पर मजबूर कर देंगे। वैसे भी रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, दोनों जब भी मिलते हैं कॉमेडी का तड़का तो लगता ही है, साथ में बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश की भी गारंटी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की, जहां इस वक्त आस्था और विश्वास की ऐसी तस्वीरें सामने आई रही हैं जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। इस साल चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि चारों धामों के कपाट खुलने के एक महीने के भीतर ही, यानी महज 25 दिनों में दर्शन करने वाले भक्तों का आंकड़ा 12,60,000 तक पहुंच चुका है। देश और दुनिया के कोने कोने से आ रहे श्रद्धालुओं के इस जबरदस्त उत्साह को देखकर साफ लग रहा है कि साल 2026 की यात्रा इतिहास में एक नया कीर्तिमान रचने जा रही है। आपके सामने दो तस्वीरें, एक तरफ बद्रीनाथ धाम में भक्तों का उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर यमुनोत्री धाम के रास्ते में भक्तों का जोश और उल्लास देखने के लायक है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा इन दिनों अपने पूरे शवा पर चल रही है। बताते चले कि भगवान बद्री विशाल के दर पर अब तक 4.25 लाख से अधिक श्रद्धालु माथा टेक चुके हैं। लगातार यहां श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। आज वहीं वीकेंड के अवसर पर बद्रीनाथ धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सिर्फ बद्रीनाथ धाम ही नहीं बल्कि केदारनाथ धाम समेत पूरे चारधाम यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। एक तरफ भक्तों की आस्था हिलोरे मार रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार और प्रशासन यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने में जुटे हुए हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग, मेडिकल टीम, पुलिस और राहत दल लगातार तैनात है। भक्ति और आस्था से सराबोर उत्तराखंड इन दिनों आध्यात्मिक ऊर्जा से गूंज रहा है।

0: आस्था का सैलाब, पहाड़ों पर उमड़ता विश्वास और हर दिन बनता नया इतिहास। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा इस बार रिकॉर्ड रफ्तार से आगे बढ़ रही है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भक्तों का उत्साह चरम पर है। पहाड़ों की कठिन राह भी श्रद्धा के आगे छोटी पड़ रही है। सरकार सुरक्षा, सुविधा और व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत बना रही है ताकि हर यात्री का सफर सुरक्षित और आसान बने। चारधाम यात्रा अब नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। चारों धामों में सुबह से लेकर देर शाम तक दर्शन के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले लोग बाबा केदार, बद्री विशाल, माँ गंगा और माँ यमुना के दर्शन कर खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। यात्रा शुरू होने के बाद से लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक चार धाम में दर्शन करने वालों का आंकड़ा 12,60,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं बद्रीनाथ धाम में आने वाले भक्तों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। सबसे ज्यादा उत्साह केदारनाथ यात्रा को लेकर देखा जा रहा है। ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और कठिन रास्ते भी लोगों के कदम नहीं रोक पा रहे। हर उम्र के लोग बाबा केदार के दर्शन के लिए पैदल मार्ग पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार भी पूरी तैयारी के साथ यात्रा संचालन में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि मौसम खराब होने की स्थिति में हर यात्री की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम तेजी से बदलता है, इसी वजह से प्रशासन ने विशेष निगरानी तंत्र तैयार किया है। रियल टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। भीड़ नियंत्रण और स्लॉट मैनेजमेंट को भी प्रभावी बनाया गया है ताकि किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। रास्तों में मेडिकल टीम, पुलिस बल, आपदा राहत दल और हेल्प सेंटर लगातार तैनात हैं। घोड़ों, पालकियों और हेलीकॉप्टर सेवाओं की व्यवस्था भी सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। यात्रा मार्ग पर सफाई और स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी विशेष फोकस किया गया है। पहाड़ों में गूंजते जयकारे श्रद्धा से भरे चेहरे बता रहे हैं कि इस बार की यात्रा खास है।
1: जयकारा वीर बजरंगी।

0: भक्ति और विश्वास का यही संगम उत्तराखंड को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चारधाम यात्रा पूरे उत्साह और उल्लास के साथ जारी है। दुर्गम चढ़ाई है, मौसम की दुश्वारी भी है, लेकिन इसके बावजूद पवित्र यात्रा के लिए जा रहे भक्तों का उत्साह चरम पर है। यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग पर यात्रियों का जोश देखने लायक है। हमारे संवाददाता ने यात्रियों से बातचीत की है, आइए देखते हैं रिपोर्ट।
2: चारधाम यात्रा अपने पूरे सवाब पर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यमुनोत्री धाम को जाने वाले पैदल मार्ग पर और ये स्थान है राम मंदिर। राम मंदिर में जो यात्रियों का एक ठहराव होता है, क्योंकि पैदल यात्रा है इस वजह से यहाँ पर ठहराव होना स्वाभाविक है। थकान उतारते हुए यहाँ पर तीर्थयात्री रुकते हैं और इसके बाद फिर दोबारा से खड़ी चढ़ाई प्रारंभ हो जाती है। कैमरामैन को चाहूंगा एक बार दिखाएं किस तरह से तीर्थ यात्री आनंद ले रहे हैं और गाना बजा करके भजन करके वो बिल्कुल माँ यमुना की आराधना कर रहे हैं। यहाँ की कुल मिलाकर के जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। यहाँ पर अगर आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है जो यमुनोत्री धाम के जो यात्रियों की संख्या के आंकड़े की अगर बात की जाए तो टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा जो आंकड़े बताए गए हैं 15 तारीख मई तक 2,32,000 से भी अधिक तीर्थयात्री यात्रा कर चुके हैं और अभी भी अनवरत रूप से यात्रा जारी है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तीर्थयात्री उत्साह मना रहे हैं।

0: हम राजस्थान जोधपुर जिला झालावन गांव से आए।
1: कितना आनंद आ रहा है,
0: बहुत आनंद आता, बहुत आनंद आता है, बस जीवन सफल हो गया।
1: अच्छा एक चीज बताइए कि ऋषिकेश या हरिद्वार से आप यहाँ तक पहुँचे, कुछ असुविधाएं तो आपको नहीं हुई?
0: नहीं, ऐसी विशेष सुविधा नहीं थी, नॉर्मल एक दो हुई थी तो हमने शिकायत भी की थी और हमारी शिकायत सॉल्व हो गई।
1: तो कुल मिलाकर के इस बार की जो चार धाम की यात्रा है वो बिल्कुल सही और निर्बाध रूप से चल रही है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुव्यवस्थित है। पूरी प्रशासन, पूरा कर्मचारियां, निगम को, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की, और सभी भक्तों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने उनका सहयोग भी किया है, और हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते
1: हैं। अच्छा ये गाना बजाते हुए आप जो है चार धाम की यात्रा करेंगे?
0: हम राजस्थान से निकले हैं, जोधपुर जिले झालावन से, और चार धाम की यात्रा में हम गाजे साथ में संगीत में, सभी हमारे 9-10 की टीम है और सब गाजे बाजे के साथ भगवान का भजन करते हैं, बड़े भाव से आनंद से झूमते हुए आ रहे हैं।
1: ओके, एक दो और तीर्थयात्री इनसे भी जाना चाहेंगे। क्या नाम है आपका?
2: भुवक्ति।
1: कहाँ से आए?
2: इंदौर से।
1: कोई परेशानी तो नहीं हुई?
2: नहीं, कोई भी परेशानी।
1: कितना होता
3: है? थोड़ा सा परेशानी यही है कि जो घोड़े कच्चर है उनके लिए एक अलग सा रास्ता बनाए यहाँ पे सरकार, उसी में डिफिकल्टीज होती है थोड़ी सी, बाकी कोई समस्या नहीं है, बहुत
1: अभी अभी आप यमुनोत्री जा रहे हैं पैदल?
3: यमुनोत्री जा रहे हैं, हम ट्रेकिंग कर रहे हैं अभी, ऊपर की तरफ जा रहे हैं।
1: थकान कितनी हो रही है पैदल?
3: थकान तो नहीं हो रही है क्योंकि भक्ति है, बाबा का आशीर्वाद है, भक्ति है और बाबा का नाम लेते लेते हम चढ़ रहे हैं बिल्कुल।
1: तो ये आप समझ सकते हैं, यात्रियों ने अपनी भावना व्यक्त की कि थकान जरूर है लेकिन भगवान की भक्ति में थकान पूरी तरह से फीकी नजर आ रही है। ओंकार बहुगुणा यमुनोत्री धाम।
4: गुजरात के वड़ताल से इस वक्त आस्था की एक ऐसी अनूठी और दिव्य तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आपकी आंखें ठहर जाएंगी। चिलचिलाती धूप और तपती गर्मी के बीच वड़ताल स्वामीनारायण मंदिर का गर्भगृह आज रसीले आमों की खुशबू से महक उठा। मौका था शनिवारी अमावस्या के पावन और शुभ संयोग का। इस मौके पर भगवान को 500 किलो शुद्ध और चुरिंदा केसर आम का नैवेद्य अर्पित किया गया। भगवान के सामने सिर्फ आमों का ढेर ही नहीं बल्कि आम रस को भी बेहद खूबसूरती के साथ परोसा गया। सनातन परंपरा में ऋतु के अनुसार भगवान को ताजे फलों का भोग लगाने की सदियों पुरानी परंपरा है और इसी परंपरा को निभाते हुए पिछले दिनों एकादशी में 2,500 किलो तरबूज का भोग भी लगाया गया था। जैसे ही मंदिर के कपाट खुले भगवान का यह अलौकिक स्वरूप देखकर भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। पीत रंग के रसीले आमों के बीच बिराजे भगवान के दर्शन के लिए हजारों हरिभक्तों का तांता लग गया। वैसे तो शनि जयंती हर साल मनाई जाती है लेकिन इस बार यह अवसर खास और महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार शनि जयंती पर ग्रह नक्षत्रों की चाल कई दुर्लभ और अनोखे संयोग बना रही हैं। ज्योतिषियों की माने तो ये संयोग ऐसे हैं जो इंसान के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें खुशहाल बना सकते हैं।

0: आज के दिन शनिदेव की पूजा से आपके हर कष्ट दूर हो जाएंगे। आज ऐसा दिन है जब शनिदेव की उपासना से जीवन में बरस सकता है धन और हर प्रकार के रोग शोक से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि ना केवल बरसों बाद बल्कि कई सदियों में एक बार अब ऐसा अवसर आया है जब न्याय के देवता कर्मों का फल देने वाले शनि देव की विशेष कृपा भक्तों को हासिल होने जा रही है। वैसे तो पारंपरिक रूप से हर साल शनि जयंती पर शनि देवता की पूजा अर्चना होती ही है, लेकिन इस बार ये पर्व और भी खास हो गया है। इसका कारण यह है कि इस वर्ष का ये अनोखे संयोग इससे जुड़ गए हैं। लिहाज से इस बार शनि जयंती न केवल शनि देव की आराधना का दिन है, बल्कि ये जीवन में सुख समृद्धि और अमन चैन के लिए भी बेहद लाभकारी है, क्योंकि इस बार शनि जयंती पर ग्रह नक्षत्रों की चाल से दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं इस वर्ष शनि देव की जयंती पर कौन सा सबसे बड़ा योग बन रहा है जो आपको मालामाल बनाने वाला है और सबके जीवन में खुशहाली लाने वाला है। ज्योतिषों के अनुसार इस बार शनि जयंती पर 500 वर्षों बाद दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग बन रहा है। माना जा रहा है कि आज वे गोल्डन योग बन रहा है, जिसके कारण लोगों को लाभ ही लाभ होगा। दरअसल इस बार शनि जयंती पर शनि अपनी ही राशि कुंभ में विराजमान है, इसके कारण शश राजयोग बन रहा है। ये संयोग 500 साल बाद अत्यंत प्रबल स्थिति में है। मान्यता है कि इसके कारण भक्तों और श्रद्धालुओं को धन का लाभ हो सकता है, उनके जीवन में आर्थिक समृद्धि आ सकती है, साथ ही इसके कारण करियर में तरक्की भी हो सकती है और मानसिक शांति भी वापस आ सकती है। इतना ही नहीं, ये भी माना जा रहा है कि इस बार शनि जयंती पर बन रहे कुछ और दुर्लभ संयोगों के कारण लोगों की किस्मत के ताले खुलने वाले हैं और सौभाग्य का पिटारा भी खुलने वाला है। इसकी वजह है ग्रहों की अनोखी चाल, जिसका कमाल आज शनि जयंती के पावन अवसर पर दिखने जा रहा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस बार शनि जयंती पर करीब 300 वर्षों के बाद कुछ और खास संयोग बन रहे हैं। असल में इस बार शनि जन्मोत्सव के अवसर पर सूर्य बुध की युति हो रही है, इसके कारण आज बुधात्य योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा आज गजकेसरी योग, केदार योग और सौभाग्य योग भी बन रहे हैं। खास बात यह है कि ये सभी योग एक साथ बन रहे हैं, इसके कारण इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। इस बार शनि जयंती का पावन उत्सव एक और मायने में बेहद खास हो गया है। इस अवसर पर शनि देवता की कृपा पाने का बड़ा ही दिव्य संयोग बना है, क्योंकि इस बार शनि जयंती पर 13 साल बाद एक और दुर्लभ संयोग बन रहा है। शनि जयंती का पर्व इस बार शनिवार के दिन ही पड़ा है। शनिवार को शनि जयंती मनाई जा रही है, तो आज शनेश्वरी अमावस्या का भी विशेष योग है, क्योंकि ज्येष्ठ मास की अमावस्या को ही शनिदेव का जन्म हुआ था। इस दिन शनिदेव की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। आज शनिवार का दिन होने के कारण शनि जयंती का महत्व अनंत गुना बढ़ गया है। इसका कारण ये है कि शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है।
1: इस साल शनि जयंती पे एक बहुत महा दुर्लभ योग लग रहे हैं, क्योंकि इस बार की जो शनि जयंती है वह शनिवार के दिन ही लग रही है। शनिवार के दिन शनि जयंती होने के कारण महान योग, क्योंकि यह बहुत दिनों के बाद प्राप्त हुआ। भगवान शनि जिस दिन पैदा हुए, आज बहुत दिनों के बाद पुनः भगवान शनि की जयंती उसी दिन शनिवार को ही पड़ रही है। इसलिए इस दिन जो लोग भी शनि ग्रह से पीड़ित हैं, यदि भगवान शनि की उपासना करें तो उनको जल्दी ही उस कुदृष्टि से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा।
0: तो कुल मिलाकर इस बार भी शनि जयंती का पावन अवसर इसलिए और भी विशिष्ट हो गया है, क्योंकि इस पर्व पर ग्रहों की चाल से कई अत्यंत लाभदायक योग एक साथ बन रहे हैं। ऐसे में इस बार शनि जयंती पर भक्ति भाव से शनि देव की पूजा और उनकी उपासना अत्यंत कल्याणकारी हो सकती है। विधि विधान से पूजा करने पर शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है और जीवन के कष्ट दूर हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा अवसर सदियों में एक बार आता है जब शनि देव के जन्मोत्सव के अवसर पर तमाम ग्रहों की चाल अनुकूल हो और वातावरण में शुभता का संचार हो। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अगली अच्छी खबर महाराष्ट्र के अमरावती से है। देश के दूसरे शहरों की तरह इन दिनों अमरावती में भी भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन इस भीषण गर्मी में भी ट्रैफिक कर्मी अपनी ड्यूटी पर डटे हुए हैं। ऐसे में ट्रैफिक कर्मियों को गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए एक विशेष जैकेट दी गई है, जो 45 और 46 डिग्री की गर्मी भी इन्हें कूल रखती है। आखिर ये जैकेट काम कैसे करती है, देखिए इस रिपोर्ट में।
3: महाराष्ट्र में इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है। खासकर विदर्भ के इलाकों में पारा हर दिन नई ऊंचाई को छू रहा है। हालत यह है कि दिन चढ़ते ही सूरज की तपिश लोगों को झुलसा रही है। इसके चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। ये तस्वीरें विदर्भ के ही अमरावती जिले की हैं, जहां जरूरी काम से घरों से बाहर निकले लोग 45 डिग्री वाली गर्मी से खुद को बचाने के लिए तरह तरह के जतन करते दिख रहे हैं। किसी ने गमछे से चेहरे और सिर को ढक रखा है और किसी ने स्कार्फ से खुद को ढक रखा है। इसी तरह शहर के ट्रैफिक का जिम्मा संभाल रहे इन जवानों ने भी हीट स्ट्रोक से खुद को बचाने के लिए एक रक्षा कवच पहन रखा है। इस कवच का नाम एयर कूलिंग जैकेट है। बताया गया है कि अमरावती पुलिस आयुक्त कार्यालय ने दिन ब दिन बढ़ती गर्मी को देखते हुए ये फैसला किया, जिसके तहत करीब 500 पुलिस कर्मियों को ये खास जैकेट दिए गए हैं। ये सभी जैकेट अमरावती के जिला नियोजन समिति के फंड से खरीदे गए, जिनकी कीमत 7,000 रूपए प्रति जैकेट बताई जा रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस एयर कूलिंग जैकेट में ऐसा क्या है जिससे 45 डिग्री की गर्मी में इन जवानों को राहत महसूस हो रही है। सफेद रंग की इस जैकेट पर रिफ्लेक्टर लगे हैं, पीछे दो छोटे पंखे लगे हैं जो जैकेट के अंदर हवा सर्कुलेट करते रहते हैं। इन पंखों को 10,000 mAh के पावर बैंक से चलाया जाता है, जिससे शरीर ठंडा रहता है और लू से बचाव होता है। लेकिन इसके लिए ड्यूटी पर आने से पहले मोबाइल की तरह इसे चार्ज करना होता है और एक बार चार्ज होने पर ये कई घंटों तक बिना रुके ठंडक पहुँचाती है। इस जैकेट से खुद का बचाव कर रहे ट्रैफिक पुलिस कर्मी इस पहल से तो खुश हैं ही, शहर में भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के पास जाकर इस जैकेट को करीब से समझने और देखने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि 45 से 46 डिग्री की भीषण गर्मी में ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों के लिए ये पहल बेहद सराहनीय है।
4: एयर कूल जैकेट से क्या फायदा हो रहा है? हमारे साथ पुलिस कर्मचारी है, इसका फायदा किस तरह से हो रहा है, क्या क्या है इसमें जरा बताएं मुझे। क्योंकि देखिए इसमें जो है ये दो फैंस लगे हुए हैं, ये जो दो फैंस है ये अंदर हवा बाहर की हवा जो है वो अंदर खींचते हैं और अंदर जो है जो पसीना आता है वो जो है इस हवा के कारण कम होता है। और साथ ही ये फैन किस पर चलते हैं तो मुझे बताइए जरा। यहाँ
5: पावर बैंक दिए इसको।
4: हाँ
5: हाँ, ये पावर बैंक दिए, पावर बैंक के साथ में अटैच किए उसको। हाँ। और इसके इससे दोनों भी फैन चलते हैं, उसके साथ में उसके बटन भी दिए उसकी स्पीड कम ज्यादा करने के लिए।
4: हाँ हाँ। और ये बैटरी चार्ज कर,
5: हाँ ये बैटरी चार्ज करना पड़ता है उसको,
4: तो इससे अच्छा कूल होता है। देखिए अमूमन जो है जैकेट, यहाँ पर आप देखिए मैं ऐसा दबा रहा हूँ, यानी इसमें पूरी तरीके से अंदरूनी हवा भरी है और इसको पैकअप करने के लिए यहाँ पर इस तरीके का ये दिया गया है। मानो ये जो है ये पूरी तरीके से अंदर जो है इनके हवा है, जो पसीना इनको आ रहा है वो पसीना इस हवा के चलते नहीं आएगा और इसीलिए ये जैकेट जो है वो एयर कूल यहाँ पर नजर आ रहा है। किस तरह का ये जैकेट है, जैकेट से कितनी राहत है और पहले कैसा था?
5: पहले वो बहुत गर्म होता था, अभी दोनों साइड से फैन वगैरह है तो उससे बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत बेटर, अच्छा फील हो रहा
4: है। राहत नजर आ रही है इस एयर कूल जैकेट से?
6: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राहत नजर आ रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं धूप बहुत ज़्यादा है तो उसके वजह से जो पसीना बहुत आता था, तो ये जैकेट पहनने से अभी काफ़ी राहत है।
3: बीते कुछ सालों में मई और जून के महीने में जिस तरह से गर्मी बढ़ी है उसने जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। ऐसे में अमरावती में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए ये पहल न सिर्फ सराहनीय है बल्कि ये देश के दूसरे राज्यों में भी एक अच्छी पहल साबित हो सकती है। अमरावती से धनंजय साबले, गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
8: Step into the heart of the American zeitgeist with me, Billy Bush. My new show, Hot Mics, is now streaming on TuneIn. It's the radio talk show that's going to redefine what it means to be in the know. From sports and politics to entertainment, tech, pop culture, and everything in between. You'll hear from A-list stars, athletes, politicians, and more. No filter, no fluff, just the real talk. Because when the mic is hot, the conversations are even hotter. Live Mondays and Wednesdays at 5 p.m. Eastern, 2 Pacific. Search Hot Mics or tell your device to play Hot Mics on TuneIn to start listening now.
9: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
11: वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे अधिक मास की। क्या होता है अधिक मास, इसके नियम क्या हैं, इसकी सावधानियां क्या हैं, ये आपको बताने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक अचूक उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 17 मई 2026 दिन रविवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ मास की प्रतिपदा तिथि रात के 9:40 तक। नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र दोपहर 2:32 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं अधिक मास की। हिंदू पंचांग जो है ना, वो बड़े सिस्टम से सेट किए गए हैं, उसके पीछे का पूरा विज्ञान है, पूरा साइंस है। ऐसा नहीं कि राजा के नाम पे महीने का नाम रख दिया और जिस महीने को जहां ले गए वहीं सेट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा सोच समझ के नक्षत्रों, ग्रहों, इन सब को देख करके तब पंचांग बनाया गया। अब पंचांग में सामान्यता तो देखिए 12 महीने होते हैं, लेकिन हर तीसरे साल में एक महीना बढ़ जाता है, वो है अधिक मास। होता क्या है ये? देखिए, हिंदू पंचांगों में 12 मास होते हैं, चैत्र से आरंभ होता है और फाल्गुन में इसका समापन होता है। ये जो महीने हैं, ये सूर्य की संक्रांति पर और चंद्रमा पर आधारित होते हैं। सूर्य अलग अलग राशियों में प्रवेश करता है तो उसे सूर्य की संक्रांति कहते हैं और चंद्रमा सूर्य के अंतर पर तिथियां बदलती हैं। हर साल सौर मास में, यानी सूर्य का जो महीना है और जो चंद्रमा 30 दिन पूरे करता है, चंद्र मास है, इसमें लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है। बहुत सारे तरीके के महीने होते हैं हिंदू पंचांग में, सौर मास, चंद्रमास, बृहस्पति का मास। बृहस्पति का जो वर्ष होता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी के आधार पे कुंभ लगता है। तो देखिए, सूर्य और चंद्रमास में लगभग 11 दिनों का अंतर होता है। 3 में ये अंतर लगभग 1 का हो जाता है, इसीलिए हर तीसरे साल 1 पंचांग में बढ़ जाता है, 1 अधिक हो जाता है, इसीलिए इसको अधिक मास कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में, लोकाचार में, लोग इसे मलमास कहते हैं, जो उचित शब्द नहीं है। उचित शब्द अधिक मास है। तो ये अधिक मास है बेसिकली। इस बार ज्येष्ठ के महीने में अधिक मास का कॉम्बिनेशन संयोग बन रहा है और अधिक मास 17 मई से आरंभ हो रहा है और 15 जून तक रहेगा। तो अधिक मास कैसा समय है, जितने दिन अधिक मास चलेगा उतने दिन क्या करना होगा, इसकी विशिष्टताएं क्या हैं, इस पर हम आगे आपके साथ चर्चा करेंगे। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन क्रोध पर प्रभु नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन संबंधी समस्याएं हल हो जाएंगी। छोटी लाभदायक यात्रा के योग बन रहे हैं। पारिवारिक स्थिति में आपके सुधार होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। संतान की चिंता हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, किसी बड़ी समस्या को इस समय आप हल कर लेंगे। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, अधिक मास को अच्छा समझें बुरा समझें, इसके बारे में शास्त्र क्या कहता है, इसका क्या महात्म्य बताता है, वो भी जान लेते हैं। देखिए, अधिक मास को पहले बड़ा अशुभ माना जाता था। लोग कहते थे बड़ा अशुभ समय है, बहुत ही बुरा समय है। तो ऐसी कथा आती है कि अधिक मास जो था वो भगवान विष्णु के पास गया। उसने कहा कि प्रभु, मुझको तो बड़ा अशुभ मानते हैं, मुझ में कोई काम नहीं करते, मुझे अपवित्र समझते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा, चिंता मत करो, अब मेरा ही नाम तुम्हारा नाम हो जाएगा, मेरे नाम से अधिक मास जाना जाएगा। यानी बाद में श्री हरि भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम दे दिया। अब जब स्वयं भगवान ने ही अपना नाम दे दिया तो भैया पवित्र बहुत हो गया। इस मास का नाम पड़ गया पुरुषोत्तम मास, सबसे ज्यादा उत्तम महीना। स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप हो गया पुरुषोत्तम मास। इस महीने में भगवान विष्णु के सारे गुण पाए जाते हैं। क्या गुण है? अपने भक्तों की रक्षा करना, अपने शरण में आए हुए लोगों के पापों का हरण करना, पापों की क्षमा देना और भक्तों का उद्धार करना। ये सारे गुण पुरुषोत्तम मास में यानी अधिक मास में पाए जाते हैं। इसीलिए अधिक मास में अगर कोई व्यक्ति धर्म कार्य करता है, धर्म का पालन करता है, साधना पूजा दान करता है, तो इसके उत्तम परिणाम जीवन में प्राप्त होते हैं। देखिए, वास्तव में जो अधिक मास है वो धार्मिक कार्यों के लिए, पूजा उपासना के लिए बहुत ही पवित्र है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो अधिक मास में नहीं किए जा सकते। कौन से काम हैं? ये महीना जो है ये आध्यात्मिक महीना है, स्पिरिचुअल महीना है। इस महीने भौतिक जीवन के जो जीवन के सामान्य कार्य हैं, भौतिक जीवन से जुड़े हुए हैं, वो काम करने की मनाही है। विवाह करना, कर्ण वेध, गृह प्रवेश, चूड़ाकरण, ये सब करना, ये सब मांगलिक कार्य करना मना है। घर का निर्माण करना भी मना है। घर के निर्माण की शुरुआत भी नहीं करेंगे और गृह प्रवेश करना भी मना है। ये संभावना इस समय नहीं बनती। जो काम पहले से चले आ रहे हैं, अब आपका घर बन रहा है तो बनता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या जो पहले से निश्चित काम है, आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होना है तो वो होगा ही, बच्चे के जन्म के साथ जो शुभ काम है वो करना जरूरी है वो होंगे ही, उस पर अधिक मास का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन नए कार्य की शुरुआत इस समय नहीं की जा सकती, नए शुभ और मंगल कार्य इस समय नहीं किए जाएंगे। सिंह राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी महिला के सहयोग से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन प्राप्ति के मजबूत योग बन रहे हैं, व्यस्तता काफी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखिए, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ऑफिस में विवादों से बचाव करिएगा और वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, धन की समस्याएं हल होंगी, स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होगा, करियर में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि अधिक मास में कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कुछ काम वास्तव में अधिक मास में करना बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही मंगलकारी होता है। नियमित रूप से अधिक मास में श्री हरि यानी भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण, अपने गुरु या जिनको भी अपना इष्ट देव मानते हैं उनकी आराधना करिएगा। जहां तक संभव हो अधिक मास में अपना आहार, अपने विचार और अपना व्यवहार सात्विक रखिएगा। मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। पूरे महीने में जब मौका मिले श्रीमद् भागवत का पाठ करिए जितना कर सकें, या रोज कम से कम गीता के कुछ श्लोक पढ़िए, या एक एक अध्याय थोड़ा थोड़ा पूरे महीने में पढ़िए भगवत गीता का। अधिक मास में निर्धनों की सहायता करिए और जब भी कर सकें यथाशक्ति अन्न का, वस्त्र का और जल का दान करिएगा। अधिक मास पूर्वजों और पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, तो इस महीने में पूर्वजों और पितरों के लिए दान करना, उनके लिए प्रार्थना करना भी लाभकारी होता है। लौकिक कामनाओं के लिए अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति की प्रार्थना करना चाहते हैं, धन की प्राप्ति की कामना है आपके लिए, और अगर आप ऐसा अधिक मास में करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपकी कामनाएं अवश्य सफल होती हैं। धनु राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, किसी को ना बताएं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, घर में मांगलिक कार्य होने के योग बन रहे हैं, विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है, परिवार की समस्या से परेशानी होगी, करियर में कुछ बदलाव होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, परिवार का सहयोग बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, अधिक मास का समय भगवान विष्णु का समय है, ज्यादातर लोग श्री हरि या भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। दो मंत्र हैं जिनका जप आप अधिक मास में कर सकते हैं। एक मंत्र सामान्य मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप अधिक से अधिक जप कर सकते हैं। एक बड़ा अचूक भगवान का नाम मंत्र है जिसका जप करने से पाप कटते हैं, प्रारब्ध नष्ट होते हैं, पापों का प्रायश्चित होता है। वो भगवान का नाम मंत्र है हरि। तो आप दिन भर रात भर खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हरि हरि हरि हरि हरि नाम का जप निरंतर करते रहें। कल्याण तो होगा ही, पापों का क्षय होगा, पापों का प्रायश्चित होगा और पापों से मुक्ति मिलेगी। देखिए, इस बार जो अधिक मास है वो ज्येष्ठ के महीने में पड़ रहा है, इसीलिए इस बार अधिक मास में, पूरे अधिक मास में जल और फल इसका दान करना शुभ रहेगा। ज्येष्ठ में वैसे भी जल का दान करना शुभ होता है और अधिक मास के साथ अगर आप जल और फल का दान करेंगे तो इसकी शुभता, इसका पुण्य आपको ज्यादा मिलेगा। आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर वैवाहिक जीवन में आपके समस्या हो तो अधिक मास में क्या करेंगे, रोज सुबह और शाम श्री कृष्ण की उपासना करें, उनकी उपासना में उन्हें तुलसी दल अवश्य अर्पित करें और सुबह शाम दोनों समय मधुराष्टक का पाठ करके प्रार्थना करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have. TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
2: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।

0: चमक के पीछे एक ऐसा सफर जहां ट्रोलिंग थी, प्रेशर था और साबित करने की जंग। मेंटल हेल्थ का वो सच स्टारडम भी नहीं छुपा पाया। आलिया के फिल्मी सफर की अनटोल्ड स्टोरी बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: गुजरात के वड़ताल धाम में लगाया गया 500 किलो आम का भोग, केसर आम की खुशबू से महका स्वामीनारायण मंदिर का गर्भगृह, गर्मी को देखते हुए लगाया गया महाभोग। देवभूमि में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं का भजन कीर्तन, अब तक करीब 2.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। बांदीपोरा में 37 साल बाद लौटे कश्मीरी पंडित, सुंबली मावस उत्सव में शामिल, नंद किशोर मंदिर का अलौकिक श्रृंगार। दुर्लभ योग में मनाई जा रही शनि जयंती, अकोला के प्राचीन मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, नवग्रह शनि मंदिर में भक्तों ने लगाया 56 भोग। भीषण गर्मी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जंगल सफारी मेजबानों के लिए खास इंतजाम, खास डाइट प्लान का हो रहा प्लान पालन, एसी पंखा और कूलर की भी व्यवस्था।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: रक्षा क्षेत्र में भारत हर दिन एक नया अध्याय लिख रहा है। स्वदेशी तकनीक के जरिए ऐसे ऐसे कीर्तिमान रचे जा रहे हैं जो दुनिया को बहुत चक्का कर रहे हैं। मिसाइल से लेकर युद्धपोत तक और फाइटर जेट से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक सब कुछ देश में ही तैयार हो रहा है और वो भी वर्ल्ड क्लास। जो तकनीक और ताकत दुनिया के चंद देशों की जागीर मानी जाती थी, उस टेक्नोलॉजी पर अब भारत का दबदबा है। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए, ये कोई साधारण तस्वीर नहीं है बल्कि डिफेंस सेक्टर में भारत के बढ़ते रुतबे को दुनिया के सामने रख रही है। यह तस्वीर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम का नया अध्याय है जो भविष्य के सुपर हिंदुस्तान का रास्ता तैयार कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। दरअसल डीआरडीओ और डीआरडीएल ने मिलकर इस मिसाइल के एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का 20 मिनट तक सफल परीक्षण किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एक्टिव कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए जरूरी एक्सट्रीम टेम्परेचर को सहने की इंजन क्षमता साबित हुई है। हैदराबाद स्थित डीआरडीएल यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में स्क्रैमजेट कंबस्टर का परीक्षण किया गया, जो कि 20 मिनट से ज्यादा समय तक चला। इस टेस्ट की सबसे बड़ी बात यह रही कि इसमें एक्टिव कूलिंग, थर्मल बैरियर कोटिंग और इंडिजिनस फ्यूल जैसी जटिल तकनीकें भारत ने खुद विकसित की हैं। इस टेस्ट के जरिए अत्यधिक तापमान और दबाव की स्थिति में सुपरसोनिक इंजन से निकलने वाली गर्मी को कंट्रोल करने की क्षमता को जांचा गया।
1: ये पिछले बार के वर्जन से इम्प्रूव्ड वर्जन है। पिछले बार इन्होंने 700 सेकंड पे किया था, इस बार 1200 सेकंड पे, तो टाइमिंग बढ़ी है। तो कहने का मतलब ये कि जो इंडिजिनसली डेवलप आपका फ्यूल है, लिक्विड हाइड्रोकार्बन फ्यूल, और उसका जो एडवांस थर्मल बैरियर कोटिंग है वो आले दर्जे का, वो ज्यादा देर तक विस्टैंड कर सकता है। कहने का मतलब ये कि जब आप इस तरीके की मिसाइल डेवलप करते हैं स्क्रैमजेट इंजन द्वारा, तो आपको एक फ्यूल और आपको उसका कंबशन सिस्टम पे ज्यादा ध्यान होता है, जो कि इस बार 1200 सेकेंड तक वो उसको इसकी स्टेबिलिटी चेक की गई है।

0: हाइपरसोनिक स्पीड पर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, जिससे इंजन पिघल सकता है। 20 मिनट से ज्यादा समय तक इंजन का सफलतापूर्वक चलना ये साबित करता है कि भारत ने एक्टिव कूलिंग तकनीक में महारत हासिल कर ली है। अब स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन से मिसाइल को मैक 5 से ज्यादा की रफ्तार मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि आवाज की स्पीड से 5 गुना तेज यानी कि करीब 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्रचंड रफ्तार से दुश्मन पर प्रहार।
1: देखिए, हिंदुस्तान ने जब हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप किया विद स्क्रैमजेट इंजन के साथ, तो ये दिखाता है कि अगर ये मिसाइल 5 मैक से ज्यादा स्पीड हासिल करती है, इसका मतलब हुआ कि 6175 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में इतना डिस्टेंस जाएगा, तो पाकिस्तान का कोई भी टारगेट विद इन 20-30 मिनट के अंदर एंगेज कर लिया जाएगा। और इसी तरह चाइना का भी काफी बड़ा इलाका इसके कवरेज एरिया में आता है, तो एक स्ट्रेटजिक एज हिंदुस्तान को देता है और साथ में इंडिजिनसली डेवलप है, तो हमें किसी बाहर के कंट्री पे भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है।
0: स्क्रैमजेट की सफलता से भारत अमेरिका, रूस और चीन के साथ उन चुनिंदा देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया है जो स्क्रैमजेट तकनीक में मैक 5 से ज्यादा स्पीड वाली मिसाइलें विकसित कर रहे हैं।

0: बड़ा हथियार साबित हो सकती है। हाल ही में डीआरडीओ ने 1500 किलोमीटर रेंज वाली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल समुद्र में दुश्मन के बड़े युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना सकती है। इसका मतलब साफ है कि अगर हिंद महासागर में किसी भी दुश्मन नौसेना ने दबाव बनाने की कोशिश भी की तो भारत अब हजारों किलोमीटर दूर से तेज और सटीक हमला करने की क्षमता की तरफ बढ़ रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि वो बेहद तेज रफ्तार के साथ उड़ान के दौरान दिशा बदल सकती हैं। इससे दुश्मन के रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए उन्हें ट्रैक करना आसान नहीं होता। मैक 5 से ज्यादा रफ्तार वाली मिसाइल तैयार होने से चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की स्ट्राइक क्षमता और रणनीतिक ताकत कई गुना बढ़ सकती है। साल 2025 में डीआरडीओ ने छोटी अवधि के स्क्रैमजेट टेस्ट किए थे, लेकिन अब दूसरी बार जब फुल स्केल कंबस्टर का टेस्ट किया गया तो 20 मिनट से ज्यादा चला। इससे पहले डीआरडीओ ने 9 जनवरी 2026 को भी हैदराबाद में फुल स्केल एक्टिवली कूल स्क्रैमजेट कंबस्टर का 12 मिनट से ज्यादा का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक किया था, जो ये बताता है कि भारत अब अपने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ब्रह्मोस 2 मिसाइल के डिजाइन के लिए दूसरे देशों की तरफ नहीं देखेगा, बल्कि अब देश में ही उसे तैयार किया जाएगा। मौजूदा समय में दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती मिसाइल को रोकने में सक्षम नहीं है। रडार को जब तक खतरे का पता चलेगा तब तक मिसाइल अपना काम कर चुकी होगी।
1: भारत के लिए खतरा जितना चीन से है उतना ही पाकिस्तान से भी है, लेकिन अगर चीन की बात की जाए तो चीन हथियारों की दौड़ में बहुत तेजी से आगे भाग रहा है। चीन अपने पास AI तकनीक से लैस तमाम हथियारों को विकसित कर रहा है, साथ ही साथ हाइपरसोनिक तकनीक में भी वो आगे बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत भी इस तकनीक में महारत हासिल करे और अपने बेड़े में हाइपरसोनिक हथियारों को भी शामिल करे।
0: हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा स्पीड से चलती है। इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है जिससे उसको ताकत मिलती है। अब स्क्रैमजेट इंजन क्या है और कैसे काम करता है इसे भी जान लीजिए। स्क्रैमजेट एक खास तरह का एयर ब्रीदिंग इंजन है। इसे शुरू करने के लिए रॉकेट बूस्टर की जरूरत होती है। स्क्रैमजेट में ईंधन के दहन के लिए वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिए इसी स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। स्क्रैमजेट से फायदा ये होगा कि इसका इस्तेमाल कम लागत में उपग्रहों के प्रक्षेपण में भी किया जा सकेगा। वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने से स्क्रैमजेट इंजन हल्का, ज्यादा तेज और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम माना जाता है।
2: जब ये इंजन एयर में जाता है तो इतनी हाई स्पीड से होता है तो जो एटमॉस्फेयर में एयर होता है उसको इस स्पीड पे कंप्रेस करता है और उसका लगातार ये सप्लाई जारी रहती है जिससे वो फ्यूल से रिएक्ट करके हीट जनरेट करता है। तो और ये लगातार होना चाहिए। अगर इसमें कोई बाधा है या अनइवन बर्निंग है, अनइवन हीट जनरेशन है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। तो एक स्पीड पे कंप्रेस एयर को फ्यूल के साथ मिक्स करके एनर्जी डेवलप करना और लगातार ये जारी रखना।
0: भविष्य में ये तकनीक ब्रह्मोस 2 में इस्तेमाल होगी जो भारत रूस का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ब्रह्मोस 2 मैक 7 से 8 स्पीड वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी जिसकी रेंज 600 किलोमीटर होने का अनुमान है। डीआरडीओ का लक्ष्य है कि साल 2028 तक ऐसी मिसाइल को पूरी तरह से विकसित कर लिया जाए। मिसाइलों को ठोस या तरल ईंधन से चलने वाले रॉकेट या जेट इंजन द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। कुछ मिसाइलों में जैसे कि ब्रह्मोस में रामजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है जो सुपरसोनिक रफ्तार हासिल करने के लिए हवा को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। वहीं हाइपरसोनिक मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। भारत का लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल प्रोग्राम अब अपने एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है और जल्दी ही शुरुआती परीक्षण होने की उम्मीद है। हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत ने कहा था, भारत हाइपरसोनिक ग्लाइड और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है जिसमें ग्लाइड संस्करण मौजूदा समय में विकास के मामले में आगे है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन होता है और उड़ान के दौरान इसे ऊर्जा मिलती है। हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल शुरुआती रफ्तार हासिल करने के लिए बूस्टर का इस्तेमाल करती है और फिर बिना किसी ऊर्जा के ग्लाइड करती है। मिसाइल में 2 स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन

0: पेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। पहले चरण के खत्म होते ही वो अलग हो जाती है, जबकि दूसरा चरण मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंचाता है। इसके बाद मिसाइल बिना इंजन के ग्लाइड फेज में एंट्री करती है और टारगेट तक पहुंचने से पहले कई रणनीतिक मूवमेंट करती है।
1: देखिए, मिसाइल में जो दो टू स्टेज रॉकेट होते हैं, प्रोपल्शन होता है, उसमें एक इनिशियल फेज का होता है और एक सब्सिक्वेंट फेज का होता है। इनिशियल फेज का काम होता है वो हीट, वो एनर्जी, वो थ्रस्ट डेवलप करना, जिससे कि मिसाइल को लॉन्च किया जा सके, लिफ्ट दिया जा सके एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में। और जब ये काम हो जाता है तब वो मोटर काम करना बंद कर देता है, तब सेकेंड स्टेज का मोटर काम करता है जो अगेन उस वेलोसिटी को मेंटेन करता है, एक पर्टिकुलर एटमोस्फेरिक ऑर्बिट में मिसाइल को डालता है और लगातार उस पे सस्टेन प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे कि उसकी वेलोसिटी बन सके।
0: आज दुनिया के कई देश अपनी मिसाइल क्षमता को धार देने में जुटे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है, मिसाइल ही एक ऐसा हथियार है जो हर तरह के युद्ध क्षेत्र में कामयाब है। चाहे लड़ाई जमीन पर हो, आसमान पर या फिर अंतरिक्ष में, मिसाइल हर मोर्चे पर कारगर है।
2: एक मिसाइल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो दुश्मन के टारगेट पर आए बिना अपने टारगेट को ध्वस्त कर दे। हालांकि इसमें अत्याधुनिक रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम रोड़ा जरूर अटकाते हैं, और इसीलिए यहीं से हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर सोच शुरू हुई, जिसको लेकर काम चल रहा है।
0: आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है और ये दुनिया के लिए चिंता का विषय क्यों बन गया, ये समझने की जरूरत है। हाइपरसोनिक हथियार आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज रफ्तार से चलते हैं और अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि हाइपरसोनिक वेपन की रफ्तार ही उसकी ताकत है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल भी आवाज की रफ्तार से तेज चलती है। ऐसे में हाइपरसोनिक वेपन की असली ताकत क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है।
2: हाइपरसोनिक मिसाइल को एक व्हीकल तेजी से अंतरिक्ष की तरफ ले जाता है, जिसके बाद वो ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ती है। ये इतनी तेजी से अपना रास्ता बदलती है कि किसी भी देश का एंटी मिसाइल सिस्टम इसे ट्रैक नहीं कर पाता और ये अपने टारगेट को आसानी से ध्वस्त कर सकती है।
0: बैलिस्टिक मिसाइल को जब एक जगह से लॉन्च किया जाता है तो पता चल जाता है कि उसका टारगेट कहाँ है और वो किसे निशाने पर लेगी। ऐसे में इन मिसाइलों को ट्रैक करना आसान होता है। इसके साथ ही लॉन्चिंग के साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलों की दिशा में बदलाव नहीं किया जा सकता। वहीं लॉन्चिंग के साथ हाइपरसोनिक मिसाइलों की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है।
1: ये हाइपरसोनिक मिसाइल या जो वेपन है, उनका जो ग्रेडिंग है वो एनी एरियल ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा है, जैसा कि मैंने बताया 6175 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो अगर इसकी स्पीड ज्यादा होती है वो हाइपरसोनिक कैटेगरी में आता है। जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा है उसको रडार कैसे डिटेक्ट करेगा, चाहे रडार किसी भी प्रिंसिपल पे काम कर रहा हो, चाहे डॉपलर पे काम कर रहा हो या अन्य प्रिंसिपल पे काम कर रहा हो, बाय द टाइम पल्स उसको जाके हिट करके वापस आती तब तक वो मिसाइल आगे निकल चुका होता है। एक स्पीड, दूसरा लो हाइट या हाई हाइट, इसमें कोई रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। इस वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल ने लड़ाई लड़ने की विधा में टोटल तब्दीली कर दी।
0: हाइपरसोनिक हथियार सबसोनिक मिसाइलों से कहीं तेज रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इनकी रफ्तार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से बेहद कम होती है। हाइपरसोनिक हथियार सिस्टम 2 तरह के होते हैं, पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और दूसरा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जिस तरह एक सर्फर समंदर की लहरों पर ग्लाइड करता है, ठीक उसी तरह से हाइपरसोनिक हथियार हवा में ग्लाइड करते हैं, जिससे इसे रोकना आसान नहीं होता। हाइपरसोनिक हथियार की एक और खासियत होती है कि ये कम ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकते हैं।
2: मौजूदा समय में तमाम देशों का फोकस ग्लाइड व्हीकल्स पर है। दरअसल ग्लाइड व्हीकल एक नई तकनीक है। ग्लाइड व्हीकल के साथ एक मिसाइल लगाई जाती है जो कि एक टारगेट पर जाकर ग्लाइड व्हीकल से अलग हो जाती है, जिसके बाद वो टारगेट की तरफ सीधा ग्लाइड करते हुए फोकस करती है और उसे ध्वस्त करके ही दब लेती है।
0: हाइपरसोनिक हथियार बनाने की दिशा में भारत अपना कदम आगे बढ़ा चुका है। HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के परीक्षण की शुरुआत हो चुकी है। 27 जनवरी 2023 को डीआरडीओ ने HSTDV परीक्षण किया था जो सफल रहा।

0: साल 2020 में भारत ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड का टेस्ट किया था, जिसमें महज 20 सेकंड में 7500 किलोमीटर के टारगेट को पूरा किया गया था। हालांकि भारत इस तकनीक में पिछले कई सालों से लगातार लगा हुआ है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल को लॉन्च कर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि ऐसी कोई रफ्तार नहीं जहां उसकी पहुंच नहीं। हाइपरसोनिक व्हीकल का ट्रायल एक ऐसी कामयाबी है जो हिंदुस्तान की ताकत में कई गुना इजाफा करेगी। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल 6000 से 12000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये 20 सेकंड में मैक 6 की रफ्तार और 32.5 किलोमीटर ऊंचाई तय करने में सक्षम है। HSTDV के परीक्षण के बाद भारत के रक्षा क्षेत्र को और अधिक मजबूती मिलेगी, क्योंकि इसके साथ ही भारत अब उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सक्षम है। दुनिया बदल रही है, युद्ध बदल रहे हैं, युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं, रण क्षेत्र की रणनीतियां बदल रही हैं, और इसी के तहत अब आने वाले समय में युद्ध AI और हाइपरसोनिक तकनीक के साथ लड़े जाएंगे। भारत ने भी खुद को इसी क्षेत्र में तैयार किया है और ऐसा ही एक परीक्षण हाल फिलहाल में भारत ने किया, जिसके बाद पूरी दुनिया का ध्यान भारत ने अपनी ओर खींचा।
1: बीते कुछ वर्षों से दुनिया का माहौल जिस तरीके से बदला है उसे देखते हुए भारतीय सेना कंप्लीट चेंज के मोड में है। बदलते सुरक्षा हालात को देखते हुए सेना खुद को नए समय के मुताबिक तैयार कर रही है, जिसमें छोटे से छोटे हथियार तक को धार दी जा रही है। इसी कड़ी में भारत ने स्वदेशी ग्लाइड वेपन तारा का पहला सफल परीक्षण किया। तारा का पूरा नाम है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। ये भारत का पहला स्वदेशी मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है। आसान भाषा में समझा जाए तो तारा एक ऐसा सिस्टम है जो किसी साधारण बम को स्मार्ट ग्लाइड बम में तब्दील कर देता है।
0: आमतौर पर जो अनगाइडेड बम होते हैं उसे एक अंदाजे से टारगेट के ऊपर गिराया जाता है, और इसके लिए विमान को टारगेट के करीब जाना पड़ता है और फिर उसके बाद ये टारगेट की ओर गिराया जाता है। वहीं अगर हम गाइडेड बम की बात करें तो इससे दूर रहकर भी दुश्मन के ठिकाने को निशाने पर लिया जा सकता है।
1: तारा ग्लाइड वेपन किट से न सिर्फ हथियार की रेंज में बढ़ोतरी होती है बल्कि सटीकता भी सुनिश्चित होती है। फाइटर जेट से छोड़े जाने के बाद ये सिस्टम एरोडायनामिक लिफ्ट और गाइडेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके एक आम फ्री फॉल बम के मुकाबले कहीं ज्यादा दूरी तय करता है, साथ ही हमले की सटीकता को भी बेहतर बनाता है।
2: तारा है, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, जितने हमारे डंप बॉम्ब है या जो ग्रेविटी बॉम्ब है उसमें इसको फिट कर दिया जाता है। इसमें विंग्स होते हैं, इसमें सेंसर होते हैं। कहने का मतलब यह है कि डंप बॉम्ब को कैसे स्मार्ट वेपन में कन्वर्ट किया जा सकता है। स्मार्ट का मतलब जो सेंसर के डायरेक्शन ले सके, जिसकी फ्लाइट मैनिपुलेट किया जा सके, जो प्रिसीजन स्ट्राइक कर सके और जिसको फ्लाइट के दौरान मैनिपुलेट करके सही टारगेट पे या टारगेट स्विचिंग किया जा सके। तो ये सारी सुविधाएं जो है तारा के थ्रू अचीव की जा सकती है।
1: स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा का ये परीक्षण बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि तारा भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करेगा जो अपने पुराने बमों को सटीक और दूर मार करने वाले हथियार में बदल सकते हैं।
0: तारा असल में एक मॉड्यूलर ग्लाइड किट है। आसान भाषा में अगर इसको समझना तो उसे कहेंगे कि हवाई जहाज से गिराए जाने वाले अनगाइडेड बमों के साथ लगाई जाने वाली किट, जिसका सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि ये सही और सटीक निशाना लगा पाएगी।
1: ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा में विंग्स, कंट्रोल सरफेस और एक बेहतरीन गाइडेंस पैकेज लगाया जाता है। इससे पुराने बम हवा में लंबी दूरी तक ग्लाइड करके जा सकते हैं और बेहद सटीक निशाना लगा सकते हैं। तारा में हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इनर्शियल नेविगेशन और सैटेलाइट गाइडेंस दोनों शामिल हैं। इससे सटीकता बहुत ज्यादा रहती है। विदेशी सिस्टम की तुलना में तारा ग्लाइड वेपन सिस्टम बेहद सस्ता भी है। इससे वायुसेना के पास पड़े लाखों पुराने बमों को आधुनिक हथियारों में बदला जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि किन किन देशों के पास ये तकनीक है। अमेरिका के पास JDM और JSOW है। ये साधारण अनगाइडेड बमों को प्रिशियस गाइडेड बम में तब्दील करते हैं। रूस के पास यूएमपी की ग्लाइड बम किट है, जो उसने यूक्रेन युद्ध में अपने साधारण बमों को ग्लाइड करने के लिए इस्तेमाल किया था। इसराइल के पास स्पाइस 250 और स्पाइस 2000 जैसे बम प्रणालियां हैं। इनमें एआई पर आधारित इलेक्ट्रो ऑप्टिकल होमिंग सीकर लगा है। भारत ने इसराइल से ये किट खरीदी है। फ्रांस के पास एएसएम हैमर रॉकेट बूस्टर है। वहीं तुर्की के पास एचजीके किट है, जो तारा की तरह ही काम करती है। इंडियन एयरफोर्स के लिए तारा जैसे सिस्टम भविष्य में कुछ ऐसे स्ट्राइक मिशनों के लिए एक सस्ता विकल्प साबित हो सकते हैं, जिनके लिए महंगी क्रूज मिसाइलों या उन्नत स्टैंड ऑफ हथियारों की जरूरत नहीं होती। स्टैंड ऑफ वो हथियार होते हैं जिन्हें काफी दूर से दुश्मन की नजर से दूर रहकर दागा जाता है। इन्हें बियॉन्ड विजुअल रेंज हथियार भी कहा जाता है। तारा से फायदा ये होगा कि फाइटर जेट से दागे जाने वाले किसी भी बम को बीवीआर वेपन में तब्दील कर देगा। तारा को हम एक तरह से आत्मनिर्भर भारत की पहचान भी कह सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से भारत में ही विकसित सिस्टम है। पहले इस तरह के सिस्टम्स के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन अब भारत ने खुद का अपना सिस्टम तैयार किया है, जो कि हमारी वायुसेना को और ज्यादा ताकत देगा और सही निशाना लगाने की क्षमता देगा।

0: क्षेत्र में। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: क्या है अधिक मास की महिमा, अधिक मास का क्या है पूजा विधान, अधिक मास की क्या होगी जीवनचर्या और अधिक मास में कैसे मिलेंगे वरदान, जानिए अधिक मास का चमत्कारी रहस्य सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
4: Thank God I get to wake up.
3: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations, like Que Buena.
6: La Que Buena.
5: ESPN Radio.
7: We know LeBron has to be the best player on the planet to
5: get The Daily.
8: From the New York Times, I'm Katrin Van Holt, and this is The Daily.
5: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
9: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
10: सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
10: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: भारतीय सेना हाल के मिडिल ईस्ट वॉर और ऑपरेशन सिंदूर से बहुत कुछ सीख लेते हुए अपनी तैयारियों को धार देने में जुटी है। दोनों घटनाओं ने दिखाया है कि लड़ाई के समय हथियारों की उपलब्धता और उनकी ताकत कितनी जरूरी हो जाती है, और यही वजह है कि रक्षा मंत्रालय ने अब भारतीय वायुसेना को और मजबूत बनाने का फैसला किया है। खबर है कि रक्षा मंत्रालय स्वदेशी 100 किलो के हवाई बम खरीदने की तैयारी में है। एयरफोर्स ने 1000 किलो के हवाई बम के डिजाइन, विकास और खरीद के लिए जानकारी मांगी है। ये प्रक्रिया रक्षा खरीद प्रक्रिया DAP 2020 के तहत होगी। इसमें टेल यूनिट और दूसरे जरूरी उपकरण भी शामिल होंगे। ये प्रोजेक्ट मेक टू यानी इंडस्ट्री फंडेड के तहत शुरू होगा और बाद में ये प्रोजेक्ट बाय इंडियन कैटेगरी में चलेगा, यानी कि सब कुछ भारत में ही बनेगा। अभी तक भारतीय वायुसेना ऐसे MK-84 क्लास के बम विदेशी कंपनियों से खरीदती थी। अब स्वदेशी बम आने से वायुसेना को ज्यादा विश्वास होगा और लॉजिस्टिक भी आसान होगा।
1: जिस प्रकार से आज हम आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, खासतौर से डिफेंस सेक्टर में, इसके तहत देश में भारी बम बनाने के लिए भी आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया, जहां पर कि प्राइवेट सेक्टर को मेक टू के तहत लिया गया। वो 50% तक वो विदेशी भी टेक्निकल ले सकते हैं, पार्टनरशिप ले सकते हैं और उनका रिसर्च करके 600 तक की डिमांड इस समय भारत में, क्योंकि जैसी सुरक्षा की हालत है ऐसे में बड़ा जरूरी है कि हमारे पास भारी बम भी है, जिससे दुश्मन का ब्रिज, उनका हेडक्वार्टर स्टोरेज जहां इनका मिसाइल का भंडारण है, वहां पर उनके जो एयरपोर्ट के रनवेज हैं उनको बर्बाद करने में ये भारी बम काफी कारगर साबित होते हैं।
0: योजना के मुताबिक कुल 600 एरियल बमों की खरीद की जानी है। ये बम हाई कैलिबर म्यूनिशन होंगे जो दुश्मन के ठिकानों पर भीषण विस्फोट कर उसे नेस्तानाबूद करने में सक्षम होंगे, यानी दुश्मन के बंकर, इमारत, रनवे, गोदाम जैसे मजबूत ठिकानों को तबाह करने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी।
1: जिस प्रकार की भारत का सुरक्षा की हालात हैं, ऐसे में बहुत जरूरी है कि हमारी सेनाएं मजबूत रहें, आधुनिक रहें, और इस कदम में एक और प्रयत्न किया गया जहां पर कि भारी बम बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट लिया गया, जैसे कि जिससे कि 1000 kg तक का बम जहाज के द्वारा गिराया जा सके, एयरफोर्स के द्वारा गिराया जा सके। ये अमेरिका के MK-84 के जैसे रहेगा, जिसका काम ब्रिजेस को तोड़ना, रनवे को तोड़ना, बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करना, जहां पर भी हेडक्वार्टर्स उनको बर्बाद करना, और काफ़ी गहराई तक इसको प्रहार करने में सक्षम रहेगा। साथ साथ में इसके फ्रेगमेंट के जो टुकड़ों के असर होंगे वो भी काफी दूर तक जाएंगे।
0: अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर भारत के पास एक से बढ़कर एक मिसाइलें हैं जो अलग अलग तरह के खतरों से निपटने में सक्षम है, तो फिर बम की क्या जरूरत है। तो आपको ये बताते हैं कि बम और मिसाइल में अंतर क्या होता है और इसका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। मिसाइल और बम दोनों का मुख्य उद्देश्य विनाश करना है, लेकिन इनकी कार्यक्षमता और लक्ष्य अलग अलग होते हैं। इनके काम करने का तरीका काफी अलग है। मिसाइल में गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल होता है, इसे फायर करने के बाद भी कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं ज्यादातर बम अनगाइडेड होते हैं, इन्हें एक बार गिरा दिया जाए तो ये गुरुत्वाकर्षण के भरोसे ही नीचे गिरते हैं। हालांकि आजकल स्मार्ट बम भी आते हैं, पर वो मिसाइल जितने फुर्तीले नहीं होते। मिसाइल में अपना खुद का इंजन या रॉकेट मोटर होता है जो इसे लंबी दूरी तक और बहुत तेज रफ्तार से ले जाता है, जबकि बम में कोई इंजन नहीं होता। इसे किसी हवाई जहाज से नीचे गिराया जाता है। मिसाइल को सैकड़ों या हजारों किलोमीटर दूर से दागा जा सकता है। वहीं बम को गिराने के लिए हवाई जहाज को लक्ष्य के ठीक ऊपर या उसके बहुत करीब जाना होता है।
1: बम जो है वो जहाज के द्वारा गिराए जाते हैं और ये गाइडेड नहीं होते हैं, या कुछ गाइडेड बॉम्ब्स भी होते हैं। दूसरा ये कि मिसाइल हमेशा गाइडेड होती है। बॉम्ब के अंदर कोई इंजन नहीं होता है, जबकि मिसाइल के अंदर अपना प्रोपल्शन होता है, चाहे वो सॉलिड फ्यूल हो या लिक्विड फ्यूल हो, लेकिन वो पीछे से उसका जलता है, प्रोपल्शन जलता है जिसके द्वारा उसको ताकत मिलती है। जो बॉम्ब है वो जहाज की स्पीड पे और कितनी ऊंचाई से गिर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ गिरेगा, और इसमें ज़्यादा एक्सप्लोसिव आ जाता है क्योंकि इसको किसी प्रोपल्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि मिसाइल जो है वो कितनी भी दूर जा सकता है, हजारों मील तक जा सकता है। ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बने हुए हैं जो हजारों मील तक जाके अटैक करने में सक्षम होती हैं, और जिसका पेलोड बम के मुकाबले में हल्का होता है क्योंकि उनको अपना ईंधन भी ले जाना होता है।
0: बम और मिसाइल की प्रणाली में काफी अंतर है जिससे इसके इस्तेमाल का दायरा भी अलग अलग हो जाता है। मिसाइलों का इस्तेमाल उन लक्ष्यों के लिए किया जाता है जो बहुत दूर हो या फिर जिन्हें चलते हुए निशाना बनाना हो। बम का इस्तेमाल तब होता है जब टारगेट स्थिर हो या बहुत बड़े इलाके में तबाही मचानी हो। दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर्स या ड्रोन को हवा में ही मार गिराने के लिए मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। वही बम से दुश्मन के हेडक्वार्टर, इमारत, पुल और बुनियादी ढांचे को तबाह किया जा सकता है। जमीन से जमीन पर हमला करने या समंदर में दुश्मन के युद्धपोतों को डुबोने के लिए मिसाइल फायर किया जाता है। वही जमीन की गहराई में छिपे दुश्मन के बंकरों या ठिकानों को भेदकर तबाह करने के लिए बम का इस्तेमाल होता है। बम और मिसाइल का दुश्मन के खिलाफ अलग अलग जरूरतों के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों की अपनी अहमियतें हैं, लिहाजा भारत अपने तर्कश में बम को भी समान जगह देता है। मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना MK-84 श्रेणी के भारी बमों का इस्तेमाल कर रही है। भारत अब इनका स्वदेशी संस्करण विकसित करने की प्रक्रिया में है। भारतीय सेना और वायुसेना के पास अलग अलग कैटेगरीज के बम हैं, जिनमें साधारण ग्रेविटी बमों से लेकर आधुनिक गाइडेड या स्मार्ट बम तक शामिल हैं। आधुनिक गाइडेड बम की बात की जाए तो भारत के पास स्पाइस 2000, राफेल में इस्तेमाल होने वाला हैमर, पहला स्वदेशी लेजर गाइडेड बम सुदर्शन और स्वदेशी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव और गौतम शामिल हैं। वहीं भारी और जनरल पर्पस बम की बात की जाए तो MK-84 क्लास के 1000 किलोग्राम, 250 किलो का MK-82, 500 किलो का MK-83 है जिसका इस्तेमाल सामान्य बमबारी में होता है। सेना के पास खास मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाले बम भी शामिल हैं। बंकर बस्टर स्पाइस 2000, दुश्मन के रनवे को तबाह करने के लिए 100 यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, HSD यानी हाई स्पीड डिलीवरी बम भी हैं जिन्हें तेज रफ्तार वाले लड़ाकू विमानों के जरिए गिराया जा सकता है। थल सेना सीधे हवाई बम नहीं गिराती, लेकिन उसके पास बम की कैटेगरी में आने वाले दूसरे हथियार शामिल हैं, हैंड ग्रेनेड, मोर्टार और आर्टिलरी शेल्स, साथ ही माइंस जो कि जमीन के अंदर बिछाए जाते हैं। ये दुश्मन के वाहन या सैनिकों को रोकने में इस्तेमाल होते हैं। आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए भारत अपने यहाँ ही नए नए हथियारों को विकसित कर रहा है जो ताकत और तकनीक के मामले में बेजोड़ होंगे। DRDO ने हाल ही में हमारी तीनों सेनाओं के लिए 28 ऐसे सिस्टम्स को देने की पेशकश की है जिन्हें इमरजेंसी खरीद के तहत लाया जाएगा, और इसमें कई लेजर गाइडेड बम भी होंगे और साथ ही साथ स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन भी शामिल होंगे।

0: भारतीय वायुसेना अपनी हवाई हमले की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपने लड़ाकू विमानों को स्वदेशी रूप से विकसित यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन से लैस करने की तैयारी में है। इस बम के 10 परीक्षण हो चुके हैं। इस परीक्षण में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। रक्षा सूत्रों के मुताबिक 100 एक प्रकार का ग्लाइड बम है जो सैटेलाइट से कंट्रोल होता है और इसे 100 किलोमीटर की सीमा तक सटीक मारक क्षमता के साथ जमीनी लक्ष्यों को भेदने में सक्षम बनाया गया है। इसका मतलब है कि यह लंबी दूरी से भी सटीक स्थान पर हमला कर सकता है। युद्ध जैसे हालात में 100 दुश्मन के रनवे उसके बंकर को आसानी से ध्वस्त कर सकता है।
1: SAWS, that is the smart anti-airfield weapon systems, जो है ये एक वो वाले bombs हैं जिनका के अगर हम इंडिया के context में भी लें तो ये air launch भी हो सकते हैं, ground launch भी हो सकते हैं और तकरीबन 120 किलो के होंगे और glide के तौर पर काम करते हैं। 100 किलोमीटर की इसकी range है जो इंडियन bombs है और अगर इसका accuracy की बात करें तो इसमें long range accuracy है because of the precision गाइडेंस सिस्टम जो अपने आप में आता है और ये गाइडेंस सिस्टम जो है वो सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम हो सकता है, वो आईआर इमेजिंग वाला होगा और एक्टिव रडार सीकर की तरह काम करता है। सो ओवरऑल देखें तो यस, ये बॉम्ब सिस्टम एक एयरफील्ड को कुछ घंटों से लेके कुछ दिन तक जरूर एक बड़ी नुकसान पहुंचा सकता है।
0: एयरफील्ड वेपन को हैदराबाद स्थित डीआरडीओ के अनुसंधान केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। ये एक मॉडर्न हाई प्रिसीजन वाला बम है जिसका वजन करीब 120 किलोग्राम है। इस हथियार को विश्व स्तरीय माना जाता है और ये भारत के अपने देश में एडवांस रक्षा प्रणाली बनाने के प्रयास का हिस्सा है। 100 परियोजना को 2013 में मंजूरी मिली, 2016 में इसका सफल परीक्षण किया गया और फिर इसके बाद डीआरडीओ ने आपात खरीद के तहत इसको मंजूरी दे दी, जिसके बाद ये कहा गया कि जल्दी ही सशस्त्र बलों को मुहैया कराए जाएंगे ताकि जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके। मौजूदा दौर में बमों की ताकत को धार दी जा रही है। आज ऐसे ऐसे बम तैयार हो रहे हैं जो बिना सरहद लांघे दुश्मन की धरती को ध्वस्त कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना के पास बॉम्बर यानी बम वर्षक विमान तो नहीं है, बावजूद इसके भारत दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसाने की ताकत रखता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक में आतंकी अड्डों पर बम बरसाकर भारत पहले ही अपनी युद्ध क्षमता का परिचय दे चुका है। अब तो भारत ने वो ताकत हासिल कर ली है कि बिना दुश्मन के इलाके में गए या सरहद लांघे उनके ठिकानों पर बम बरसाए जा सकते हैं।
2: हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट सुखोई 30M के आई से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण हुआ और इसने ये दिखा दिया कि किस तरीके से भारत इस तकनीक में भी महारत हासिल कर चुका है। वो किसी दूसरे मुल्क पर इसके लिए निर्भर नहीं है, यह आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी दर्शाता है।
0: भारतीय वायुसेना अपने मल्टी रोल फाइटर जेट को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए तरह तरह के हथियारों से इसे लैस कर रही है जिसमें मिसाइल से लेकर बम शामिल है। अब इसमें नया नाम जुड़ गया है गौरव का, जिसका ट्रायल जारी है। गौरव 1000 किलोग्राम कैटेगरी का एक ग्लाइड बम है जो करीब 100 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकता है।
3: गौरव बम जो एक स्लाइड ग्लाइड बम है, जब उसको सुखोई के साथ इस्तेमाल किया जाता है कोई ऐसा टारगेट नहीं है जिसको वो भेद ना सके। एक सुखोई की स्पीड, दूसरा ग्लाइड बॉम्ब, ये कॉम्बिनेशन देखिए बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन बनता है और मेरा मानना अगर इसको युद्ध भूमि में इस्तेमाल किया जाता है तो इसके डिस्प्रोपोर्शनेट रिजल्ट निकलते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। ये करता क्या है, सुखोई इतनी स्पीड से जाता है जिससे कि एयर डिफेंस उसको पकड़ ना सके और एक स्टैंड ऑफ डिस्टेंस है जिसमें उसको शंका है कि एयर डिफेंस के रडार उसको पकड़ लेंगे, वहां पे वो अपने आप को होल्ड करता, वहां से ये जो ग्लाइड मिसाइल है इसको लॉन्च किया जाता है और अल्टीमेटली वो टारगेट को एरोडायनेमिक्स का इस्तेमाल करते हुए पहुंचता है और उसके सेंसर बिल्कुल पिन पॉइंट स्ट्राइक करते हैं।
0: ग्लाइड बम का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसे दुश्मन के इलाके के बाहर से आसानी से दागा जा सकता है। इससे फाइटर जेट को दुश्मन से खतरा कम होता है क्योंकि फाइटर जेट दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज से दूर होता है। लड़ाकू विमान से दागे जाने वाले बम कई तरह के होते हैं। इसमें सामान्य बम जिसे फाइटर के विंग या फिर बेली में लगाकर ड्रॉप किया जाता है। इस तरह के बम की टेल पर फिन बने होते हैं जो एयरक्राफ्ट से रिलीज करने के बाद बम को स्थिरता देते हैं। हालांकि इसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं होती, तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर तक हो सकती है। यहां टारगेट पर हमला करने के लिए लड़ाकू विमान को टारगेट के काफी नजदीक जाना होता है जिससे खतरा बढ़ जाता है। ग्लाइड बम की रेंज सामान्य बम की रेंज से 10 गुना से भी ज्यादा हो सकती है। जितनी ऊंचाई से इसे रिलीज किया जाएगा उतनी ही दूर तक वो निशाना साध सकेगा।
3: ग्लाइड बॉम्ब का जो कॉन्सेप्ट है वो एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके एरियल मीन्स द्वारा उसको रिलीज किया जाता है, जैसे कि सुखोई से इसको लॉन्च किया जाता है, और इसकी जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा होती है, और ये इसका जो रेंज है वो 25 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर आफ्टर लॉन्च ये रीच करता है, और इसका पेलोड करीब 1000 kg का होता है।
0: सेना को एक ऐसे स्मार्ट बम की जरूरत थी जो खुद नेविगेट और ग्लाइड करते हुए दुश्मन को बर्बाद कर सके। इस काम में भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने मदद की। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने दो तरह के बम का डिजाइन किया। पहला विंग के जरिए ग्लाइड करने वाला गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम और दूसरा बिना विंग वाला गौतम, दोनों ही प्रिसिशन गाइडेड हथियार हैं। गौरव 1000 किलोग्राम का ग्लाइड बम है, वहीं गौतम 550 किलोग्राम का बम है। इनका इस्तेमाल आमतौर पर एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस में रेंज से बाहर मौजूद टारगेट को ध्वस्त करने के लिए किया जाता है। गौरव और गौतम दोनों ही बमों में CL-20 यानी फ्रेगमेंटेशन और क्लस्टर म्यूनिशन लगते हैं। ये टारगेट से कॉन्टेक्ट करते ही प्रॉक्सिमिटी फ्यूज कर देता है और विस्फोटक ब्लास्ट कर देता है। गौरव की रेंज 100 किलोमीटर ग्लाइड करने की है, जबकि गौतम की रेंज 30 किलोमीटर ग्लाइड करने की है।
3: सबसे पहले उसमें होता है कि इसका गुड थर्मल स्टेबिलिटी है, बड़ा स्टेबल हो जाता है, और साथ में लो मैकेनिकल सेंसिटिविटी, जो सेंसिटिविटी मैकेनिकल सेंसिटिविटी वो लो होती है, यानी कि ये रगडाइज्ड है। अब जब हम प्री फ्रेगमेंटेड एमिनेशन की बात करते हैं तो देखिए, जब बॉम्ब या रॉकेट या मिसाइल जब फटती है तो उसके कई तरीके के स्प्लिंटर्स निकलते हैं, कुछ बड़े निकलते हैं कुछ छोटे निकलते हैं। तो कुछ बड़े स्प्लिंटर निकलेंगे तो उसका इफेक्ट नहीं होगा, छोटे होंगे तो उसका इफेक्ट टारगेट पे नहीं होगा। क्लस्टर बॉम्ब में होता है क्या कि तमाम तरीके के बॉम्बलेट होते हैं, इन छोटे छोटे बॉम्बलेट में माइंस हो सकता है, TNT हो सकता है, स्मोक के एलिमेंट हो सकते हैं, इल्यूमिनेटी एलिमेंट हो सकते हैं, फॉस्फोरस हो सकता है, जो उस इलाके को जला देता है। तो उसको एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके फटना होता है जिससे कि वो पूरे इलाके में स्कैटर्ड हो जाता है और दुश्मन को ये पता नहीं लगता कि कहां पे किस तरीके का एमिनेशन है।
0: बम भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने का काम करेंगे। ये बम दुश्मन के उन ठिकानों को टारगेट पर लाएंगे जो एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस की रेंज से बाहर है। दोनों ही बमों में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है जो GPS और नाविक सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम की मदद से टारगेट तक पहुंचता है। बम दुश्मन को नुकसान पहुंचाने का सबसे कारगर हथियार है। अब जब सेना देश में विकसित तारा ग्लाइड वेपन सिस्टम का इस्तेमाल शुरू करेगी तो भारत के बमों की ताकत में और ज्यादा इजाफा होगा। लड़ाकू विमान दुश्मन की एयर डिफेंस रेंज में आए बिना ही वहां अटैक कर पाएंगे, इससे विमान पर अटैक का खतरा भी नहीं रहेगा। रंग क्षेत्र में मेरी यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: Hi, I'm Kingston Bagpuse. Some people say Talk Sports is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. Talk Sports, the brashest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London, England, Europe on TuneIn.
7: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: और अब जब बात फिल्मों की हो रही है तो रोहित शेट्टी की गोलमाल 5 का भी जिक्र कर लेते हैं, जिसकी शूटिंग जारी है। रोहित की इस फिल्म में अजय देवगन समेत पुरानी स्टार कास्ट है, लेकिन इस बार फिल्म में लगने वाला है कॉमेडी का मास्टर स्ट्रोक वाला तड़का, क्योंकि गोलमाल 5 में इस बार अक्षय कुमार भी दिखेंगे। जहां अक्षय की एंट्री से फिल्म का सुपरहिट होना तय माना जा रहा है, वहीं इस फिल्म में अक्षय की फीस भी चर्चाओं का विषय बनी हुई है।

0: रोहित शेट्टी की गोलमाल फ्रेंचाइजी का नाम ही कॉमेडी की गारंटी है। दर्शकों को सालों से लोटपोट करने वाली गोलमाल की टीम एक बार फिर धमाल मचाने के लिए तैयार है। गोलमाल 5 को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बस बना हुआ है, लेकिन इस बार का धमाका डबल होने वाला है, क्योंकि फिल्म में एंट्री हो चुकी है कॉमेडी के किंग अक्षय कुमार की। जब रोहित शेट्टी की कॉमेडी और अक्षय कुमार की टाइमिंग एक साथ मिलेगी तो स्क्रीन पर आग लगना तो तय है। ऐसे में फैंस फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अक्षय के इस फिल्म से जुड़ने से ये और ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है। इन सब के बीच अब गोलमाल 5 से अक्षय कुमार की फीस की भी खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि अक्षय ने इस फिल्म में अजय देवगन से ज्यादा फीस वसूली है, यानी इस धमाके के लिए मेकर्स की जेब अच्छी खासी ढीली हुई है। खबरों की माने तो अक्षय कुमार ने इस फिल्म के लिए इतनी भारी भरकम फीस ली है कि ट्रेड पंडितों के भी कान खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार ने गोलमाल 5 की 18 से 22 दिनों की शूटिंग की है, जिसके लिए उन्होंने अजय देवगन से कहीं ज्यादा फीस वसूली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार को अपने रोल के लिए 35 से 40 करोड़ मिले हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि पूरी फिल्म में दिखने वाले अजय देवगन से ज्यादा फीस सिर्फ 20 दिनों की शूटिंग करने वाले अक्षय कुमार को क्यों मिल रही है। तो जनाब, इसे कहते हैं स्टार पावर और स्पेशल रोल का जलवा। दरअसल माना जा रहा है कि फिल्म में अक्षय कुमार का रोल भले ही छोटा हो, लेकिन वो पूरी कहानी का टर्निंग प्वाइंट है। यानी जितने समय भी अक्षय स्क्रीन पर रहेंगे, दर्शकों को हंसते हंसते पेट फुलाने पर मजबूर कर देंगे। वैसे भी रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, दोनों जब भी मिलते हैं कॉमेडी का तड़का तो लगता ही है, साथ में बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश की भी गारंटी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
2: क्या है अधिक मास की महिमा, अधिक मास का क्या है पूजा विधान, अधिक मास की क्या होगी जीवन चर्या और अधिक मास में कैसे मिलेंगे वरदान। जानिए अधिक मास का चमत्कारी रहस्य सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Some people say that TalkSport is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. TalkSport's the brashiest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London on TuneIn.
5: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
6: खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
12: शनि अमावस्या के पावन दिन अयोध्या में उमड़ा आस्था का मेला, मां सरयू की हुई विशेष आरती, वैदिक मंत्रोच्चार से गूंजा नया घाट। महाराष्ट्र के अकोला में धूमधाम से मनाई गई शनि जयंती, प्राचीन मंदिर में काटा गया 11 किलो का कलाकंद केक, भजन कीर्तन और सुंदरकांड का पाठ। गुजरात के वड़ताल धाम में लगाया गया 500 किलो आम का भोग, केसर आम की खुशबू से महका स्वामीनारायण मंदिर का गर्भगृह, गर्मी को देखते हुए लगाया गया भोग। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं का भजन कीर्तन, अब तक करीब 2.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। भीषण गर्मी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जंगल सफारी में बेजुबानों के लिए खास इंतजाम, खास डाइट प्लान का हो रहा पालन, एसी पंखा और कूलर की व्यवस्था।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबर

है अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत के जीवन का विलक्षण वृत्तांत लेकर हम हाजिर हुए हैं वो कान फिल्म फेस्टिवल में अपने एलिगेंट लुक से आम लोगों के साथ ही सेलेब्स का भी दिल जीत रही है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइंस में से शुमार आलिया भट्ट हैं। जी हाँ, आपको बता दें, आलिया इन दिनों कान फिल्म फेस्टिवल में अपने दिलकश लुक और अदाओं का जलवा बिखेर रही हैं। ये वही आलिया है जो कि सोशल मीडिया पर कभी जिनके मीम्स की भरमार रहा करती थी। एक समय आलिया की ट्रोलिंग नेटिजंस का स्ट्रगल बन गया था। हालांकि सोशल मीडिया पर आलिया का जो परसेप्शन बना, आलिया की हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। आलिया की प्रतिभा की गहराई को वही समझ सकता है जो कि शिद्दत से उनके जिंदगी में उतरने की कोशिश करेगा। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगी कि आलिया को एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से कभी कभी वो जोन आउट हो जाती है और ट्रोलर्स उसी मोमेंट को पकड़ लेते हैं।

परसेप्शन और रियलिटी के बीच धूप छांव वाला रिश्ता काफी पुराना है। परसेप्शन कई बार रियलिटी के बहुत करीब होता है और कई बार रियलिटी परसेप्शन से कोसों दूर होती है। कान फिल्म फेस्टिवल में अपने फैबुलस और किलर लुक से धूम मचा रही आलिया भट्ट परसेप्शन और रियलिटी के बीच की अजीबो गरीब रिश्ते की अनूठी दास्तान है। बीते 12 मई को कान ओपनिंग सेरेमनी के रेड कार्पेट में कस्टम तमारा राल्फ गाउन में दुनिया भर के सेलेब्स के आकर्षण का केंद्र बनी आलिया इस प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल में लोरियल पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर के तौर पर पहुंची हैं। आलिया कान के हर इवेंट में अलग अलग अट्रैक्टिव आउटफिट में नजर आ रही हैं और अपने ओवरऑल सेंसिबल और एलिगेंट लुक से सेलेब्स की भी सेलिब्रिटी बनी हुई हैं। 14 मई को आलिया भट्ट ने लॉरियल पेरिस गाला डिनर के दौरान फ्लोरल ब्रोकेड आउटफिट में आकर सबका दिल जीत लिया। डिनर में डस्टी रोज और एंटीक टोन वाले फ्लोरल ब्रोकेट कॉर्सेट और मैचिंग फिटेड स्कर्ट में आलिया गजब की अट्रैक्टिव लग रही थी। कान फिल्म फेस्टिवल 2026 में चर्चा का केंद्र बनी ये वही आलिया हैं सोशल मीडिया पर जिनकी इमेज कभी अनइन्फॉर्म्ड और इग्नोरेंट यूथ की बन गई थी।

एक समय सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आलिया भट्ट के मीम्स से भरे रहते थे। आलम ये था कि किसी ने तथ्यात्मक रूप से कोई गलत बयानी की तो सोशल मीडिया पर तुरंत उसकी तुलना आलिया भट्ट से कर दी जाती थी। बहरहाल ये आलिया के बारे में सोशल मीडिया यूजर्स या नेटिजन्स का अपना परसेप्शन था। आलिया की रियलिटी नेटिजन्स के परसेप्शन से कोसों दूर है। आपको बता दें कि आलिया को लेकर इस तरह का सोशल मीडिया परसेप्शन इसलिए बन गया था क्योंकि एक बार उन्होंने देश के राष्ट्रपति का नाम गलत बता दिया था। दरअसल बतौर लीड एक्ट्रेस 2012 में आई अपनी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के प्रमोशन के लिए आलिया करण जौहर के शो कॉफी विद करण में अपने को स्टार्स वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ पहुंची थीं। करण ने लाइटर मोड में आलिया से भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया और आलिया ने उत्साह में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का नाम बता दिया था, जबकि उस समय देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे।

0: आपको बता दें कि ADHD डिजीज का IQ लेवल से कोई रिलेशन नहीं है। काफी हाई IQ वाले लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है। होता यही है कि कभी कभी इसका पेशेंट जोन आउट हो जाता है और उस दौरान कोई ऐसा बयान दे सकता है या ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकता है जिससे उसके IQ लेवल पर सवाल उठने लगे। आपको बता दें कि आलिया का न सिर्फ IQ लेवल बल्कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी नेक्स्ट लेवल का है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि साल 2012 से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी आलिया कैमरा ऑन होने के बाद कभी जोन आउट नहीं होती। अलबत्ता कैमरे के सामने आते ही आलिया इतनी फोकस्ड हो जाती हैं कि उन्हें अपने किरदार और संवाद के सिवा कुछ भी ध्यान नहीं रहता।
1: आई एम सो प्रेजेंट जब मैं कैमरा के सामने होती हूँ, चाहे मैं वो किरदार में प्रेजेंट हूँ, मतलब द पार्ट दैट आई एम प्लेइंग, आई एम प्रेजेंट एज द कैरेक्टर, बट आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। और फिर अभी ऑफकोर्स आफ्टर राहा, जब भी मैं उसके साथ रहती हूँ, आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। तो ये 2 आई थिंक मोमेंट्स है मेरी लाइफ में जहाँ पे मैं सबसे ज्यादा पीसफुल फील करती हूँ।
0: साफ है कि आलिया भट्ट अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को भली भांति पहचानती हैं। यही वजह है कि कॉफी विद करण में गलत जवाब देने के बाद जबरदस्त तरीके से ट्रोल होने पर भी आलिया पूरी तरह काम एंड कूल रहीं। काफी वक्त बाद आलिया से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने पूरे ह्यूमर के साथ जवाब देकर ट्रोलर्स को भी ट्रोल कर दिया।
2: मैं अब ऑनेस्टली बोर हो गई हूँ उस जोक से, मेरे को एक्चुअली नया जोक चाहिए। आई वांट टू मेक अ मिस्टेक अगेन, हाँ कोई, मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं क्या गलती करूँ कि फिर से लोग उसको 1-2 साल और खींचेंगे।
0: आपको बता दें कि आलिया बॉर्न एक्ट्रेस हैं। संयोग से इनका जन्म एक ऐसे घराने में हुआ जहां माहौल पूरी तरह फिल्मी था। मार्च 1993 को हुए आलिया के जन्म से काफी पहले से पिता महेश भट्ट अर्थ, सारांश, नाम, आशिकी, सड़क और दिल है कि मानता नहीं जैसी कल्ट और आइकॉनिक फिल्मों का निर्देशन कर इंडस्ट्री में अलग पहचान स्थापित कर चुके थे। आलिया की मां सोनी राजदान भी 36 चौरंगी लेन, मंडी, सारांश और त्रिकाल जैसी 8 फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी से क्रिटिक्स की शाबाशी हासिल कर चुकी थीं। आलिया ने भी जब से होश संभाला एक्टिंग को छोड़कर किसी दूसरे काम का तसव्वुर इनके मन में एक बार भी नहीं हुआ।
2: मैं हमेशा कहती कि मैं एक्शन पे ही पैदा हुई थी अपनी माँ की कोख से। आई डोंट थिंक देयर वाज दैट 1 सेकंड आल्सो कि मैं दुनिया में आई, मुझे उस सेकंड पे ही पता था कि मुझे एक एक्ट्रेस बनना है और मुझे एक्टर बनना है और मुझे एक्टिंग करनी है। आई थिंक उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था।
0: जिन लोगों ने आलिया को अनइन्फॉर्म्ड यूथ का एम्बेसडर बना दिया था उन्हें ये जानना चाहिए कि आलिया भट्ट जब सिर्फ 4 साल की थी तभी उन्होंने श्यामक डावर डांस एकेडमी की समर क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। बात सिर्फ इतनी नहीं है, डांस एकेडमी में 4 साल की आलिया इंडस्ट्री की प्रेस्टिजियस फैमिली का तगमा लेकर नहीं बल्कि लर्निंग हंगर के साथ जाती थीं। यही वजह है कि बाकी बच्चों के मुकाबले वो ज्यादा अच्छे से चीजों को ग्रैस्प करती थीं। खुद श्यामक डावर ने आलिया की तारीफ करते हुए एक बार कहा था कि आलिया सब कुछ बहुत जल्दी सीख लेती हैं।
2: श्यामक डावर जी के जो समर कैंप, समर डांस क्लासेस थे, यार वो एक्चुअली मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का बहुत ही अहम हिस्सा था। एंड आई रिमेम्बर दोज मोमेंट्स वेरी क्लियरली, क्योंकि जेन्युइनली इम्पैक्ट मेरी लाइफ में काफ़ी था। क्योंकि कॉन्फिडेंस, लोगों के सामने डांस करना, फ्री बनना, ऐसे फील करना कि आप सबसे छोटे हो पर फिर भी बड़े हो और डांस करना है।
0: 4 की उम्र में श्यामक डावर की डांस क्लास ज्वाइन करने वाली आलिया 7 साल की होते होते नृत्य कला में इतनी पारंगत हो गई कि स्कूल के एक डांस कॉम्पिटिशन

0: में श्यामक डावर ने उन्हें हायर क्लास की छात्राओं के बीच भेज दिया, क्योंकि डावर को यह भरोसा हो गया था कि हायर क्लास की छात्राओं के बीच भी आलिया बेहतर परफॉर्म करेंगी। हालांकि तब मासूम आलिया के साथ एक मजेदार वाकया भी पेश आया था।
1: क्लास में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था मेरा, तो श्यामक सर ने मुझे एक सीनियर बैच में डाल दिया। तो मैं 7 साल की थी और मैं क्लास के अंदर आई और इंस्ट्रक्टर कंफ्यूज हो गए कि आप ये क्लास में हो, क्योंकि इट वाज देयर लिटरली एडल्ट्स इन दैट क्लास। और मैंने बोला हाँ श्यामक सर, लाइक आई एम सपोज टू कम इन दिस क्लास। तो पहले उनका क्वेश्चन था हाउ ओल्ड आर यू, तो मैंने बोला 7, पर देन इमीडिएटली मैंने बोला बट इट्स माय बर्थडे टुमारो, आई एम गोइंग टू बी 8 टुमारो।
0: दिलचस्प बात तो यह है कि अगले दिन आलिया का जन्मदिन नहीं था, लेकिन उन्होंने झूठ इसलिए बोल दिया क्योंकि उन्हें डर हो गया था कि कम उम्र को देखते हुए उन्हें कहीं नीचे की क्लास में न भेज दिया जाए। इस लेवल का आत्मविश्वास था आलिया के भीतर बचपन से ही। कमाल ये है कि यही आत्मविश्वास तब भी बना रहा जब आलिया ने रुपहले पर्दे पर चुनौतीपूर्ण किरदार निभाना शुरू किया। इंडस्ट्री के स्टार फैमिली से आने वाले नेपो किड्स आमतौर पर फिल्में साइन करने से पहले अपने घर के अनुभवी सदस्यों से सलाह मशविरा करते हैं, लेकिन आलिया का हिसाब अलग है। वो फिल्में साइन करने से पहले अपने पिता महेश भट्ट या माँ सोनी राजदान, यहाँ तक कि पति रणबीर कपूर से भी क्लियरेंस लेना जरूरी नहीं समझती, बल्कि इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स के आधार पर खुद ही फैसले लेती है।
1: एक्चुअली अपना माइंड मेकअप करने के बाद डिस्कस करती हूँ मैं, बिकॉज आई एम नॉट समबडी हु नीड्स टू बी कन्विंस्ड फॉर अ फिल्म, एक तो बात यह है, और दूसरी बात यह है कि मेरा इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स ही सबसे प्योर रिस्पॉन्स होता है। तो अगर कोई, मैं इंस्टिंक्टिवली अगर एक्साइट हो जाऊंगी और किसी ने अगर बोल दिया कि मतलब ऐसे मत करो, आई एम जस्ट गिविंग इफ केस सिनेरियो, मेरे साथ हुआ नहीं है, पर अगर बोल दिया तो फिर मेरे दिमाग में डाउट पैदा हो जाएगा। तो मेरी जर्नी मेरी है और मेरी डिसीजन भी मेरी होनी चाहिए, इसलिए दैट्स द रीजन, नॉट फॉर एनी अदर रीजन।
0: आप समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया की नजर में अनइन्फॉर्म्ड सेलेब्स रही आलिया की प्रतिभा उन्हें लेकर बने परसेप्शन से बिल्कुल अलग है। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से किक हुए एकाध अपवादों को छोड़ दें तो आलिया के लेवल का आईक्यू और टैलेंट हिंदी सिनेमा के 100 साल के इतिहास में इक्का दुक्का अभिनेत्रियों में ही नजर आएगा।
2: आलिया बॉलीवुड की एक दमदार फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। आलिया के पिता महेश भट्ट बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा निर्देशकों में शुमार हैं, जबकि माँ सोनी राजदान 8 फिल्मों की आइकन रही हैं। लेकिन आलिया ने अपने फिल्मी सफर में आगे बढ़ने के लिए कभी भी पारिवारिक पृष्ठभूमि का सहारा नहीं लिया। शुरू से ही उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट पर भरोसा किया और इसका असर ये है कि आलिया आज बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेट अभिनेत्रियों की फहरिस्त में काफी ऊंचा मकाम हासिल कर चुकी है।
0: इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नेपो किड्स के सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक मिलने की रवायत नई नहीं है। हालांकि ज्यादातर नेपो किड्स अपने पारिवारिक वटवृक्ष के घने साए में अंकुरित होकर फलते फूलते हैं और उसी साए में फना भी हो जाते हैं, पर कुछ नेपो किड्स ऐसे भी हैं जो मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर अपनी पारिवारिक लिगेसी से निकलकर अलग साम्राज्य स्थापित करते हैं। आलिया भट्ट दूसरी कैटेगरी की नेपो किड हैं। बतौर लीड हीरोइन अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने अगर प्रतिभा नहीं तो जुनून, लगन और मेहनत की तो मुनादी कर ही दी थी। तनुजा चंद्रा के निर्देशन में बनी और 1999 में रिलीज हुई आइकॉनिक मूवी संघर्ष में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू करने वाली आलिया भट्ट को हीरोइन के तौर पर डेब्यू करने का मौका बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के जरिए दिया था। आलिया की उम्र तब महज 18 साल थी, लेकिन उनका फिगर फिल्म के किरदार के लिहाज से फिट नहीं था। ऑडिशन के दौरान करण जौहर ने आलिया के लिए कड़ी शर्त रख दी कि उन्हें अपना वेट लॉस करना होगा। आलिया टीनेज में ही अपने करियर को लेकर कितनी संजीदा थीं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 3 महीने के भीतर उन्होंने अपना वेट 68 किलो से कम करके 51-52 किलो कर लिया। क्योंकि बचपन से बस एक ही तो सपना था आलिया का, सितारा बनकर सिल्वर स्क्रीन पर चमकने का। इसीलिए शूटिंग के दौरान सेट पर पहली बार जब कैमरा ऑन हुआ तो उनका उत्साह चरम पर पहुंच गया।
1: वो कहते हैं ना, एक्सट्रीम जॉय फीलिंग आता है कि कैमरा के सामने हो, शूटिंग हो रही है, कुछ अच्छा हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, बट यू फील के अंदर से कुछ। इवन दो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वॉज अ ब्लर, जो पहला गाना जो मेरी लाइफ की पहली दिन थी शूटिंग की, वो राधा के लिए थी। तो एक शॉट था, मेरे को नीचे आना था, टर्न करके ऐसा कुछ करना था, फिर दुपट्टा उठा के कैमरा में देखना था और ब्लोअर फैन आ रहा था, उसी में ही मेरे को ऐसे बहुत मजा आ गया।
0: पहली बार कैमरे के सामने आने के बाद आलिया बेशक उत्साहित थी, लेकिन फिल्म साइन करने के बाद वो फेल्योर के फियर साइकोसिस का शिकार हो गई थी। आलिया को ये डर सताने लगा कि अगर वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाई या फिल्म पिट गई तो आगे करेंगी क्या। पिता महेश भट्ट को जब बेटी के फियर साइकोसिस के बारे में पता चला तो उन्होंने अलहदा तरीके से आलिया को उससे बाहर निकालने की कोशिश की। महेश भट्ट ने बेटी को विशेष फिल्म्स के अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि मन में जो भी डर है, आशंका है, उसका इजहार सबके सामने करो।
1: फॉर सम रीजन माई फादर इज आउटस्टैंडिंग इन अ क्राइसिस सिचुएशन। जब भी आप क्राइसिस में आप उनको फोन करो, ही हैज द मोस्ट काम टोन एंड ही विल डील विद द सिचुएशन इन द बेस्ट वे। इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन उन्होंने डिसाइड किया, ऑफिस आ जाओ, सबके सामने बोलो तुम कैसे फील कर रही हो। जो एक्चुअली एक बहुत अजीब सीक्वेंस सिचुएशन है, क्योंकि आप पहले तो इतना वल्नरेबल फील करो, सबके सामने उठ के बोलना है कि मैं ऐसे फील कर रही हूँ।
0: महेश भट्ट ने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने का कोई मनोवैज्ञानिक अनुभव था, ये तो नहीं बता, लेकिन उनका ये अनोखा फॉर्मूला आलिया के लिए क्लिक जरूर कर गया। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डर का डंका बज जाने के बाद आलिया के अंदर की घुटन कम हो गई। वैसे 19 अक्टूबर 2012 को रिलीज हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर बॉक्स ऑफिस पर तो कामयाब रही, लेकिन आलिया की इमेज बॉर्बी डॉल से कुछ ज्यादा नहीं बन पाई। उधर क्रिटिक्स ने भी आलिया के डेब्यू को महेश भट्ट के प्रभाव से जोड़ दिया। लेकिन फिल्म हिट होने के बाद बड़े पर्दे पर बड़ा मकाम हासिल करने के आलिया के संकल्प के साथ उनका आत्मविश्वास भी जुड़ गया। अगली ही फिल्म हाईवे में अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर आलिया ने क्रिटिक्स को पहले से तय परसेप्शन को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। 21 फरवरी 2014 को रिलीज हुई हाईवे में वीरा त्रिपाठी के डी ग्लैमरस किरदार में बेहतरीन अभिनय का तड़का मारकर आलिया ने उन्हें बॉर्बी डॉल कहने वालों का मुंह बंद कर दिया। दरअसल अभिनय को लेकर आलिया का फलसफा शुरू से ही कन्वेंशनल नहीं बल्कि इंस्टिंक्टिव रहा है।
3: कैमरे के सामने का जो एक फीलिंग होता है ना, उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता है। एट द एंड ऑफ द डे मैं जितना भी चाहे डायलॉग सीख लूँ या कुछ रट्टा मार लूँ, फिजिकल ट्रेनिंग कर लूँ, अपने आप को कमरे में बंद करके मेथड एक्टिंग भी कर लूँ, अगर कैमरे के सामने मुझे फीलिंग नहीं आ रही है तो कैमरा पकड़ लेगा और मेरी परफॉर्मेंस जो है उसमें दिख जाएगी। तो तैयारी जारी रहती है फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं कैमरे के सामने सिर्फ फील करने की कोशिश करती हूँ।
0: हाईवे के बाद आलिया ने इंडस्ट्री में मुनादी कर दी कि मीना कुमारी और मधुबाला की खींची हुई अदाकारी की लीक इस युग में भी मिटी नहीं है। 2016 में आई उड़ता पंजाब के बाद तो क्रिटिक्स ने भी स्वीकार कर लिया कि आलिया की अदाकारी किसी एक जोनर तक महदूद नहीं है। उड़ता पंजाब के एक मैले कुचैले भोजपुरी लड़की के किरदार में आलिया ऐसे गुम हो गई कि पहचानना मुश्किल हो गया कि ये वही राधा हैं जिसने डिस्को दीवाने पर ठुमके लगाए थे। उड़ता पंजाब के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। 2018 में आई राजी में एक कश्मीरी जासूस के किरदार में आलिया ने अपने अभिनय से इतनी जान फूंक दी कि 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाली कुछ एक महिला प्रधान फिल्मों में शुमार हो गई। वहीं 2019 में आई गली बॉय में सफीना के किरदार को आलिया ने अपनी एक्टिंग से जीवंत कर दिया। गली बॉय में नारी को प्रकृति से सहज प्राप्त कोमलता और जरूरत पड़ने पर प्रकट होने वाली आक्रामकता के मिश्रण को आलिया ने इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद तो आलिया बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइनों की फेहरिस्त में शुमार हो गईं। 25 फरवरी 2022 को रिलीज हुई गंगूबाई काठियावाड़ी आलिया के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। संजय लीला भंसाले की इस फिल्म में आलिया ने एक वेश्यालय की मालकिन और माफिया क्वीन के चुनौतीपूर्ण किरदार को सहजता के आईने में उतार कर सबको हतप्रभ कर दिया। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया को सबसे प्रेस्टीजियस माने जाने वाले नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया।
4: गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं अभिनेत्री आलिया भट्ट।
0: 2022 आलिया के लिए बहुत इवेंटफुल साल साबित हुआ। साल 2022 में कोरोना की मार से पस्त हो चुकी फिल्म इंडस्ट्री दोबारा उठ खड़े होने की जद्दोजहद कर रही थी और इसी साल आलिया की गंगूबाई काठियावाड़ी के अलावा RRR और ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 जैसी फिल्में रिलीज हुई। 2022 में ही उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर किस्मत आजमाई और डार्लिंग्स प्रोड्यूस की, जो OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और सफल भी रही। 2023 में आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और 2024 में आई जिगरा ने भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया। इसी साल 10 जुलाई को आलिया की अल्फा रिलीज होने वाली है। साल 2027 में आलिया संजय लीला भंसाली के एक और शाहकार लव एंड वार में भी नजर आने वाली हैं। साफ है कि आलिया बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट अभिनेत्रियों की सूची में शुमार हो चुकी हैं। आज आलिया अपनी एक फिल्म के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस लेती हैं।
2: तो वंदे मेहदम में आज आपने आलिया भट्ट के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: क्या है अधिक मास की महिमा, अधिक मास का क्या है पूजा विधान, अधिक मास की क्या होगी जीवनचर्या और अधिक मास में कैसे मिलेंगे वरदान। जानिए अधिक मास का चमत्कारी रहस्य सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
2: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
3: After multiple assassination attempts, they can't even get...
4: They're reliable.
5: Always when I need them.
2: To live sports action.
6: One-hand jam by LeBron on the break.
7: That's another three, Steph Curry.
2: And your favorite music.
8: Well, the dawn begins to crack.
2: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app. Or ask your device to play TuneIn.
9: You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn. Available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
10: So they were disallowed from speaking their language.
9: In-depth conversations with A-list celebrities.
11: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
9: True crime podcasts you just can't stop listening to.
12: Others escape justice to live and die in infamy. These
9: plus the news and sports content you crave in podcast form.
13: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
9: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here.
14: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
16: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
17: शनि अमावस्या के पावन दिन अयोध्या में उमड़ा आस्था का मेला, मां सरयू की हुई विशेष आरती, वैदिक मंत्रोच्चार से गूंजा नया घाट। महाराष्ट्र के अकोला में धूमधाम से मनाई गई शनि जयंती, प्राचीन मंदिर में काटा गया 11 किलो का कलाकंद केक, भजन कीर्तन और सुंदरकांड का पाठ। गुजरात के वड़ताल धाम में लगाया गया 500 किलो आम का भोग, केसर आम की खुशबू से महका स्वामीनारायण मंदिर का गर्भगृह, गर्मी को देखते हुए लगाया गया महाभोग। देवभूमि में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं का भजन कीर्तन, अब तक करीब 2.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। भजन, भीषण गर्मी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जंगल सफारी में बेजुबानों के लिए खास इंतजाम, खास डाइट प्लान का हो रहा पालन, एसी पंखा और कूलर की व्यवस्था।
14: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
17: अकोला में शनि जयंती का भव्य उत्सव, 11 किलो कलाकंद केक काटकर भक्तों ने मनाया पर्व। गीतानगर स्थित शनि महाराज व नवग्रह मंदिर में दुर्लभ योग पर उमड़ा जनसैलाब, भजन कीर्तन और सुंदरकांड की धुन पर गूंजा माहौल। मंदिर परिसर को आकर्षक लाइटिंग से और फूलों से सजाया गया, भक्तिमय हो गया पूरा वातावरण। श्रद्धालुओं ने शनिदेव से सुख समृद्धि और कष्टों से मुक्ति की कामना की, शनि जयंती पर ऐसा दुर्लभ योग वर्षों बाद आया। आस्था उल्लास और भक्ति के संगम ने अकोला में शनि जयंती को एक यादगार उत्सव बना दिया, जहां हर ओर सिर्फ जय शनिदेव के जयकारे गूंजे। शनि जयंती पर दिल्ली के शनि धाम में दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालु, 23 साल बाद एक ही दिन पड़ी शनि अमावस्या और शनि जयंती। न्याय की देवता शनि देव के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालु, शनि धाम में पूरी विधि विधान से की जा रही शनिदेव की पूजा। शनि धाम में पूरे पारिवारिक विधि विधान से किया जा रहा है शनिदेव का अभिषेक, आज के दिन शनिदेव के दर्शन और पूजन का विशेष महत्व। वाराणसी में भी पूरी आस्था के साथ मनाई जा रही शनि जयंती, सुबह से ही शनिदेव के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालु। वाराणसी के मैदागंज चौराहे पर स्थित शनिदेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने जलाए सरसों के तेल के दीपक, काली तिल, काले उड़द, नीला पुष्प, दीपक भी कर रहे दान। प्रयागराज में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा वट सावित्री का त्यौहार, सुबह से ही बरगद के पेड़ की परिक्रमा और पूजा करती दिखी महिलाएं। सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री का व्रत रखकर और 16 श्रृंगार कर बरगद के पेड़ की पूजा की, पति की लंबी उम्र की कामना की। प्रेम और समर्पण का प्रतीक है यह त्यौहार, सावित्री ने तपस्या से यमराज को किया था प्रसन्न, मान्यता है कि यमराज ने बरगद के पेड़ के नीचे लौटाए थे सत्यवान के प्राण। दिल्ली में भी पूरी आस्था के साथ मनाया जा रहा वट सावित्री का व्रत का त्यौहार, व्रती महिलाओं ने बरगद के पेड़ के नीचे विधि विधान से की पूजा। पूर्वी दिल्ली के मंदिर परिसर में व्रती महिलाओं ने बरगद के पेड़ के तने पर लपेटा कच्चा धागा, महिलाओं ने अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना की। बांदीपोरा में 37 साल बाद कश्मीरी पंडितों की वापसी से माहौल हुआ भावुक, सुंबली मावस उत्सव में श्रद्धालुओं ने नंदकिशोर मंदिर का में पूजा अर्चना कर भाईचारे का दिया संदेश। नंदकिशोर मंदिर का अलौकिक श्रृंगार श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना, दशकों बाद लौटे कश्मीरी पंडितों ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ उत्सव मनाया। बांदीपोरा के सुंबली गांव के मावस उत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ हुआ संपन्न, 37 साल बाद अपने गांव लौटे पंडित परिवारों की आंखें मंदिर दर्शन के दौरान नम दिखी। सुंबली मावस उत्सव में स्थानीय लोगों और कश्मीरी पंडितों ने मिलकर संस्कृति की एकता की मिसाल पेश की, नंदकिशोर मंदिर में फूलों और रोशनी से भव्य रूप दिया। बांदीपोरा में आयोजित धार्मिक उत्सव ने पूरी पुरानी यादों को फिर से ताजा कर दिया, नंदकिशोर मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ ने घाटी में लौटते उम्मीदों की तस्वीर पेश की। गुजरात के वड़ताल स्वामीनारायण मंदिर में 500 किलो केसर आम का भव्य अन्नकूट सजाया गया, शनिवार अमावस्या पर भगवान को आम, आमरस और कटे फलों का विशेष भोग अर्पित किया गया। गुजरात के वड़ताल धाम में आमों की खुशबू से पूरा मंदिर परिसर महक उठा, भगवान स्वामीनारायण के सामने सजे मैंगो अन्नकूट को देखने हजारों संख्या में उमड़े भक्त। मंदिर में आमों का यह अनोखा महाभोग श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना, मंदिर में पहुंचे हजारों भक्तों ने इस दिव्य मैंगो अन्नकूट के दर्शन कर भाव विभोर हो गए। इससे पहले एकादशी पर 2500 किलो तरबूज का भोग लगाया गया था, अब मौसम के अनुसार वड़ताल मंदिर में मैंगो अन्नकूट ने मंत्रों को भक्तों को कर दिया मंत्रमुग्ध। यह आयोजन प्रकृति के उपहारों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है, मंदिर के स्वयंसेवक ने इस अद्भुत अन्नकूट की खास तैयारियों की थी। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर, अब तक गंगोत्री यमुनोत्री धाम में करीब 4 लाख से अधिक भक्त कर चुके हैं दर्शन। यमुनोत्री धाम में 15 मई तक 232,000 से अधिक पहुंच चुके हैं भक्त, रोजाना करीब 10,000 यात्री धाम पहुंचकर कर रहे दर्शन। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए यात्रा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान से आए यात्रियों का उत्साह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तीर्थयात्री भजन गाकर नृत्य कर आस्था के पथ पर अपना दिखा रहे हैं उत्साह, माहौल में घुली दिव्यता। ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होने के साथ चारधाम यात्रा में और भीड़ बढ़ने की संभावना, यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर तैयारी कर रहा प्रशासन। भोपाल में दुर्लभ सिक्कों और करेंसी के नोट की प्रदर्शनी, इस मुद्रा उत्सव में बेची और खरीदी जा रही है प्राचीन काल के नोट और सिक्के समेत विदेशी मुद्राएं। एग्जीबिशन में देश भर से आए हुए हैं लोग, नोट और सिक्कों की जमकर कर रहे खरीदारी। मुगलों के जमाने से लेकर वर्तमान काल के नोट और सिक्कों की प्रदर्शनी, लोगों में इस अनोखी प्रदर्शनी को लेकर खासा उत्साह। भोपाल में तीसरी बार लगी ऐसी प्रदर्शनी, प्राचीन काल के नोट और सिक्कों को दिखाकर अद्भुत कलेक्शन। पुराने इतिहास में सिक्कों और नोटों के प्रचलन का देखा लोगों में कौतूहल, मुद्रा उत्सव को मिल रहा है जबरदस्त रिस्पॉन्स। नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास बने सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क में जानवरों की हो रही खास देखभाल, गर्मी से बचाव के लिए किए जा रहे खास इंतजाम। करीब 100 प्रजातियों के 1500 जानवरों और पक्षियों का तैयार किया जा रहा अलग अलग डाइट प्लान, एग्जॉटिक प्रजातियों को दी जा रही है ठंडे फ्रूट जूस, आइस क्यूब और आइस कैंडी। भीषण गर्मी से बचाने के लिए जंगल सफारी में एसी, एयर कूलर और पंखों की व्यवस्था, पार्क प्रशासन लगातार जानवरों की सेहत पर आराम पर रख रहा निगरानी। पार्क में अलग अलग जगह लगाए जा रहे स्प्रिंकलर, जानवरों और पक्षियों पर लगातार पानी का स्प्रे कर पहुंचाई जा रही राहत। गर्मियों में जानवरों को एक्टिव और खुश रखने के लिए करवाई जा रही है उनकी पसंदीदा एक्टिविटीज, आधुनिक सुविधाओं के जरिए वन्यजीवों की हो रही खास देखभाल। सयाजी बाग चिड़ियाघर में भीषण गर्मी को देखते हुए जानवरों के लिए खास इंतजाम किए गए, पिंजरों में कूलर, स्प्रिंकलर और ठंडे पानी की व्यवस्था। जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए डाइट में किया गया बदलाव, फल जूस और पानी की मात्रा बढ़ाकर दी जा रही विशेष देखभाल। सयाजी बाग चिड़ियाघर प्रशासन ने शेर और बाघ जैसे जानवरों के बाड़ों में शावर सिस्टम शुरू किया, तेज गर्मी के बीच जानवरों को ठंडा माहौल देने की कोशिश जारी। पक्षियों के लिए विशेष शेड और मिस्ट फैन लगाए गए, चिड़ियाघर प्रबंधन लगातार तापमान पर रख रहा नजर। बढ़ते गर्मी से सयाजी बाग चिड़ियाघर में जानवरों की सेहत पर खास ध्यान दिया जा रहा है, डॉक्टरों की टीम नियमित जांच कर रही है, 24 घंटे रख रहे नजर। नीदरलैंड्स पहुंचे पीएम मोदी का जोरदार स्वागत, भारतीय समुदाय के लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर पीएम का स्वागत किया। पीएम मोदी के स्वागत में भारतीय कलाकारों ने सांस्कृतिक नृत्य किया प्रस्तुत, भारतीय संस्कृति की झलक देख भावभोर हुए पीएम। नीदरलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए दश कलाकारों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत पेश किया, कलाकारों ने राग दुर्गा पर आधारित साधु रामानुपम बानी की दी प्रस्तुति। स्वागत समारोह के दौरान गायन के साथ तानपुरा, बांसुरी, वायलिन और तबला जैसे वाद्यंत्र बजाए गए, डच कलाकारों की प्रस्तुति ने मोहमन। पीएम मोदी ने नीदरलैंड के किंग विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से की मुलाकात, नीदरलैंड का राज परिवार यूरोप के सबसे पुराने शाही परिवारों में से एक माना जाता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को नागपुर रेलवे स्टेशन से नागपुर मडगांव एक्सप्रेस की नियमित सेवा का किया उद्घाटन, ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। सीबीएसई का बड़ा फैसला, कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए 1 जुलाई से लागू होगा 3 भाषा नियम, 2 भाषाएं भारतीय मूल की होनी अनिवार्य। पंजाब के 72 शिक्षकों का समूह ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड के लिए रवाना, सीएम भगवंत मान ने किया रवाना। पुणे में राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान में पीजी डिप्लोमा के 20वें बैच के दीक्षांत समारोह का आयोजन, पीएम के प्रमुख सचिव और रिजर्व बैंक के गवर्नर हुए शामिल। हिमाचल के धर्मशाला पहुंची रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम, पंजाब किंग्स से होगा बेंगलुरु का अगला मुकाबला। पंजाब के होशियारपुर से आई गुड न्यूज, 30 फीट गहरे बोरवेल में गिरे बच्चे का किया गया सफल रेस्क्यू। होशियारपुर के एक चक समाना गांव में 9 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाला गया 4 साल का मासूम। बच्चे के रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ पंजाब पुलिस और प्रशासन के लोग रहे शामिल, इस दौरान राज्य के जेल मंत्री और सांसद भी मौके पर रहे मौजूद। डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ने संभाली रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान, प्रशासन और एजेंसियों के तुरंत की गई कोशिशों से बची मासूम की जान। बच्चे के रेस्क्यू में एनडीआरएफ के 40 से अधिक अधिकारी हुए शामिल, शाम 4 बजे घर के पास खेलने के दौरान बोरवेल गिरा था 4 साल का गुरकरण। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना ने लोगों को जागरूक करने के लिए लेक्चर का किया आयोजन, कार्यक्रम में लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दी गई जानकारी। कार्यक्रम में सेना ने बताया कि क्यों और कैसे दिया अंजाम गया पूरा ऑपरेशन, स्टूडेंट्स ने सेशन को बताया इन्फॉर्मेटिव, बोले दिल में सेना के लिए बड़ी इज्जत। जम्मू कश्मीर में सरकार के प्रयासों का असर, ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को उपलब्ध कराया जा रहा रोजगार। स्वयं सहायता समूहों के जरिए आचार, ड्राई फ्रूट, मसाले और किराने के सामान तैयार कर रही ग्रामीण इलाके की महिलाएं। महिलाओं को डिजिटल साक्षरता का भी दिया जा रहा प्रशिक्षण, रोजगार के साथ साथ वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बन रही ग्रामीण महिलाएं। त्रिपुरा का एक पुलिस स्टेशन बना कानून व्यवस्था, शांतिपूर्ण, सहअस्तित्व और सांप्रदायिक सौहार्द का राष्ट्रीय उदाहरण। उत्तरी त्रिपुरा जिले में वांगमुन थाने के तहत आने वाले जम्पोई हिल्स इलाके में इस साल अब तक नहीं दर्ज हुई कोई शिकायत या FIR। समाज में शांति बनाए रखने की दिशा में असाधारण उपलब्धि, स्थानीय समुदाय में भाईचारा बढ़ाने की पुलिस के साथ प्रयासों को दिया जा रहा है उपलब्धि का श्रेय। यूपी में आंधी तूफान पीड़ित लोगों के लिए राहत वाली न्यूज, मुख्यमंत्री के निर्देश पर पीड़ित परिवारों को 24 घंटे के अंदर दी गई आर्थिक सहायता। यूपी में आंधी तूफान से पीड़ित 111 परिवारों को दी गई आर्थिक मदद। प्रभारी मंत्रियों और जिलाधिकारियों ने पीड़ितों से मिलकर दिए 4-4 लाख रुपए। देश में पेट्रोल डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का फैसला। सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विंडफॉल टैक्स लगाया। पेट्रोल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाने से देश में पेट्रोल की कीमतों पर नहीं पड़ेगा कोई असर, आम जनता पर नहीं पड़ेगा कोई अतिरिक्त भार। दुनिया में तेल की ऊंची कीमतों के बीच सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों को दी राहत। डीजल और विमान के ईंधन पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में करेगी कटौती। विदेश यात्रा पर टैक्स लगाने की अटकलों पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री ने ऐसी रिपोर्ट्स को बताया पूरी तरह गलत। गंगा एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार से टोल कलेक्शन शुरू। उद्घाटन के बाद यूपी सरकार ने 15 दिन तक गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल न वसूलने का किया था ऐलान। गोलमाल 5 में अक्षय कुमार की एंट्री, फ्रेंचाइजी को ले जाएगी नेक्स्ट लेवल। रोहित शेट्टी की इस मूवी में विलन का करेंगे रोल। गोलमाल 5 में जोड़कर मेकर्स ने इस फिल्म की बढ़ाई। अक्षय कुमार इस मूवी में एक कॉमिक विलन का करेंगे रोल। साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस नयनतारा पोलका डॉट ड्रेस में लगी रही बेहद खूबसूरत। आंखों में काजल, बालों में फूल लगाए नयनतारा ने दिए पोज। साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस में शुमार है नयनतारा, फिल्मों से लेकर रियल लाइफ में भी काफी खूबसूरत और ग्लैमरस है। अक्षय कुमार के बाद वेलकम टू द जंगल किससे सामने आया। सुनील शेट्टी का फर्स्ट लुक, स्टाइलिश अंदाज में दिखे एक्टर। आयुष्मान खुराना स्टारर पति पत्नी और वो दो की बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत। पहले दिन सिर्फ 4 करोड़ की कमाई। फिल्म भूत बंगला की 29वें दिन महज 75 लाख की कमाई। फिल्म की वर्ल्ड वाइड कमाई करीब 215 करोड़ रुपए। सूर्या और त्रिशा कृष्णन स्टारर साउथ फिल्म करप्पू भी बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। करप्पू ने रिलीज के पहले दिन भारत में 14 करोड़ 40 लाख रुपए का किया कलेक्शन। संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल रिलीज के पहले दिन नहीं बटोर पाई सिनेमाघरों में दर्शक। पहले दिन महज 48 लाख रुपए कमाए। मीनाक्षी सेशाद्री ने 33 साल पुराने गाने लश्कारा की यादें ताजा की। सोशल मीडिया पर अपने करियर के सबसे पॉपुलर गाने लश्कारा का वीडियो शेयर किया। ब्रुनाई के क्राउन प्रिंस हाजी अल मुहतादी बिल्ला ने देखी चीन के शेंझेन में रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी। ह्यूमनाइड रोबोट्स की शिक्षा और फैक्ट्री में इस्तेमाल से हुए काफी प्रभावित। चीन दौरे के दौरान ब्रुनाई शाही परिवार ने विमेन एंड चिल्ड्रेन सेंटर का किया दौरा। बच्चों ने वर्चुअल रियलिटी के जरिए माउंट एवरेस्ट देखा और रोबोट डांस का लिया आनंद। ब्रुनाई के क्राउन प्रिंस के बच्चों ने चीनी बच्चों के साथ इंटरैक्टिव गेम्स खेले। शाही परिवार ने चीन से एक रोबोटिक डॉग भी खरीदा जिसे वे ब्रुनाई ले जाएंगे। चीन और ब्रुनाई के रिश्तों में 35 साल पूरे होने पर दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। ऊर्जा, शिक्षा, कृषि और खेल क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने की बात कही गई। क्राउन प्रिंस बिल्ला ने चीन की आर्थिक और तकनीकी प्रगति की जमकर तारीफ की। शाही परिवार ने रोबोट्स के साथ बिताए शानदार पल। चीन में 12 सिंगों के संरक्षण को लेकर शानदार पहल। 7 स्वस्थ 12 सिंगों के बच्चों का हुआ जन्म। आयुषा और उनके पति वु किमिंग इलाके के सबसे युवा रेंडियर पालक बने। दोनों जंगल में रहकर परंपरा और संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। रेंडियर्स के लिए खास पोषण अभियान शुरू किया गया। मादा रेंडियर और नवजात बच्चों को सोयाबीन केक समेत जरूरी आहार दिया गया। ग्रेटर किंगेन माउंटेन्स के जंगलों में इस साल 300 से अधिक नए रेंडियर जन्म लेने की उम्मीद। इसके बाद इलाके में कुल रेंडियर की संख्या 1800 के पार पहुंच सकती है। आयुषा सोशल मीडिया के जरिए अपनी जनजातीय संस्कृति को दुनिया तक पहुंचा रही है। रेंडियर पालन के वीडियो पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने की 6 हाई मिल्क डेयरी बकरियों की सफल क्लोनिंग। सानक्षी प्रांत में पहली सफल बैच क्लोनिंग। क्लोन की गई बकरियों में 4 नर और 2 मादा शामिल। ये बकरियां सानन नस्ल की हाई मिल्क प्रोड्यूसर बकरियों से हुई तैयार। हर बकरी की सालाना दूध उत्पादन क्षमता करीब 2800 लीटर। बकरियों में दूध में फैट और प्रोटीन का स्तर भी काफी ऊंचा पाया गया। चीन ने लिजियान 1Y13 रॉकेट से 5 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे। उत्तर पश्चिम चीन के टोंगफेंग स्पेस जोन से सफलतापूर्वक लॉन्च। सभी सैटेलाइट अपनी तय कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित। लिजियान सीरीज अब तक 100 सैटेलाइट अंतरिक्ष भेज चुकी है।
14: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. Yeah, I try to... But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
5: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
14: मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर.
18: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
19: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम
17: चारधाम यात्रा पूरे उत्साह और उल्लास के साथ जारी है. दुर्गम चढ़ाई है, मौसम की दुश्वारी भी है, लेकिन इसके बावजूद पवित्र यात्रा के लिए जा रहे भक्तों का उत्साह चरम पर है. यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग पर यात्रियों का जोश देखने लायक है. हमारे संवाददाता ने यात्रियों से बातचीत की है, आइए देखते हैं रिपोर्ट.
20: चारधाम यात्रा अपने पूरे सवाब पर है. इस वक्त मैं मौजूद हूँ यमुनोत्री धाम को जाने वाले पैदल मार्ग पर और ये स्थान है राम मंदिर. राम मंदिर में जो यात्रियों का एक ठहराव होता है, क्योंकि पैदल यात्रा है इस वजह से यहाँ पर ठहराव होना स्वाभाविक है. थकान उतारते हुए यहाँ पर तीर्थयात्री रुकते हैं और इसके बाद फिर दोबारा से खड़ी चढ़ाई प्रारंभ हो जाती है. कैमरामैन को चाहूंगा एक बार दिखाएं किस तरह से तीर्थयात्री आनंद ले रहे हैं और गाना बजा करके भजन करके वो बिल्कुल माँ यमुना की आराधना कर रहे हैं. यहाँ की कुल मिलाकर के जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है. यहाँ पर अगर आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है जो यमुनोत्री धाम के जो यात्रियों की संख्या के आंकड़े की अगर बात की जाए तो टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा जो आंकड़े बताए गए हैं 15 तारीख मई तक 2,32,000 से भी अधिक तीर्थयात्री यात्रा कर चुके हैं और अभी भी अनवरत रूप से यात्रा जारी है. आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तीर्थयात्री उत्साह मना रहे हैं.

0: जोधपुर जिला झालावन गांव से आए हैं।
1: कितना आनंद आ रहा है,
0: बहुत आनंद आता, बहुत आनंद आता है, बस जीवन सफल हो गया।
1: अच्छा एक चीज बताइए कि ऋषिकेश या हरिद्वार से आप यहाँ तक पहुँचे, कुछ असुविधाएं तो आपको नहीं हुई?
0: नहीं, ऐसी विशेष सुविधा नहीं थी, नॉर्मल एक दो हुई थी, तो हमने शिकायत भी की थी और हमारी शिकायत सॉल्व हो गई।
1: तो कुल मिलाकर के इस बार की जो चार धाम की यात्रा है वो बिल्कुल सही और निर्बाध रूप से चल रही है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुव्यवस्थित है, पूरी प्रशासन, पूरा कर्मचारियां, निगम को, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की, और सभी भक्तों को धन्यवाद जिन्होंने उनका सहयोग भी किया है, और हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते
1: हैं। अच्छा ये गाना बजाते हुए आप जो है चार धाम की यात्रा करेंगे?
0: हम राजस्थान से निकले हैं, जोधपुर जिले झालावन से, और चार धाम की यात्रा में हम गाजे साथ में, संगीत में सभी हमारे 9-10 की टीम है, और सब गाजे बाजे के साथ भगवान का भजन करते हैं, बड़े भाव से आनंद से झूमते हुए आ रहे हैं।
1: ओके, एक दो और तीर्थयात्री इनसे भी जाना चाहेंगे। क्या नाम है आपका?
2: भक्ति।
1: कहाँ से आए?
2: इंदौर से।
1: कोई परेशानी तो नहीं हुई?
2: नहीं, कोई भी परेशानी।
1: कितना होता
3: है? थोड़ा सा परेशानी यही है कि जो घोड़े कच्चर है उनके लिए एक अलग सा रास्ता बनाए यहाँ पे सरकार, उसी में डिफिकल्टीज होती है थोड़ी सी, बाकी कोई समस्या नहीं है।
1: बहुत अभी अभी आप यमुनोत्री जा रहे हैं पैदल?
3: यमुनोत्री जा रहे हैं, हम ट्रेकिंग कर रहे हैं, अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं।
1: थकान कितनी हो रही है पैदल?
3: थकान तो नहीं हो रही है, क्योंकि भक्ति है, बाबा का आशीर्वाद है, भक्ति है, और बाबा का नाम लेते लेते हम चढ़ रहे हैं बिल्कुल।
1: तो ये आप समझ सकते हैं, यात्रियों ने अपनी भावना व्यक्त की कि थकान जरूर है, लेकिन भगवान की भक्ति में थकान पूरी तरह से फीकी नजर आ रही है। ओंकार बहुगुणा यमुनोत्री धाम।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
7: शनि अमावस्या के पावन दिन अयोध्या में उमड़ा आस्था का मेला, मां सरयू की हुई विशेष आरती, वैदिक मंत्रोच्चार से गूंजा नया घाट। महाराष्ट्र के अकोला में धूमधाम से मनाई गई शनि जयंती, प्राचीन मंदिर में काटा गया 11 किलो का कलाकंद केक, भजन कीर्तन और सुंदरकांड का पाठ। गुजरात के वड़ताल धाम में लगाया गया 500 किलो आम का भोग, केसर आम की खुशबू से महका स्वामीनारायण मंदिर का गर्भगृह, गर्मी को देखते हुए लगाया गया भोग। देवभूमि में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं का भजन कीर्तन, अब तक करीब 2.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। भीषण गर्मी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जंगल सफारी में बेजुबानों के लिए खास इंतजाम, खास डाइट प्लान का हो रहा पालन, एसी पंखा और कूलर की व्यवस्था।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: तो देखिए, हिंदू धर्म में अधिक मास की बहुत ही ज्यादा महत्ता है। हर 3 साल में महीना आता है, भगवान विष्णु का महीना इसे कहा जाता है। तो ऐसे में अधिक मास जो आने वाला है, उसमें क्या कुछ नियम है, क्या कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए, इसके बारे में आज के कार्यक्रम में पंडित जी से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले उनसे जान लेते हैं कि आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: देखिए, इस बार जो अधिक मास है वो ज्येष्ठ के महीने में पड़ रहा है, इसीलिए इस बार अधिक मास में, पूरे अधिक मास में जल और फल इसका दान करना शुभ रहेगा। ज्येष्ठ में वैसे भी जल का दान करना शुभ होता है, और अधिक मास के साथ अगर आप जल और फल का दान करेंगे तो इसकी शुभता, इसका पुण्य आपको ज्यादा मिलेगा।
0: तो चलिए, बातचीत का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं 17 मई 2026 यानी कि दिन रविवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 17 मई 2026 दिन रविवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ मास की प्रतिपदा तिथि रात के 9:40 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र दोपहर 2:32 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आखिरकार ये अधिक मास क्या होता है और इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों कहा जाता है।
1: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं अधिक मास की। हिंदू पंचांग जो है ना, वो बड़े सिस्टम से सेट किए गए हैं, उसके पीछे का पूरा विज्ञान है, पूरा साइंस है। ऐसा नहीं कि राजा के नाम पे महीने का नाम रख दिया और जिस महीने को जहां ले गए वहीं सेट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा सोच समझ के नक्षत्रों, ग्रहों, इन सब को देख करके तब पंचांग बनाया गया। अब पंचांग में सामान्यता तो देखिए 12 महीने होते हैं, लेकिन हर तीसरे साल में एक महीना बढ़ जाता है, वो है अधिक मास। होता क्या है ये, देखिए हिंदू पंचांगों में 12 मास होते हैं, चैत्र से आरंभ होता है और फाल्गुन में इसका समापन होता है। ये जो महीने हैं, ये सूर्य की संक्रांति पर और चंद्रमा पर आधारित होते हैं। सूर्य अलग अलग राशियों में प्रवेश करता है तो उसे सूर्य की संक्रांति कहते हैं, और चंद्रमा सूर्य के अंतर पर तिथियां बदलती हैं। हर साल सौर मास में, यानी सूर्य का जो महीना है और जो चंद्रमा 30 पूरे करता है, चंद्र मास है, इसमें लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है। बहुत सारे तरीके के महीने होते हैं हिंदू पंचांग में, सौर मास, चंद्र मास, बृहस्पति का मास। बृहस्पति का जो वर्ष होता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी के आधार पे कुंभ लगता है। तो देखिए, सूर्य और चंद्र मास में लगभग 11 दिनों का अंतर होता है। 3 साल में ये अंतर लगभग 1 का हो जाता है, इसीलिए हर तीसरे साल 1 पंचांग में बढ़ जाता है, 1 अधिक हो जाता है, इसीलिए इसको अधिक मास कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में, लोकाचार में, लोग इसे मलमास कहते हैं, जो उचित शब्द नहीं है। उचित शब्द अधिक मास है। तो ये अधिक मास है बेसिकली। इस बार ज्येष्ठ के महीने में अधिक मास का कॉम्बिनेशन संयोग बन रहा है और अधिक मास 17 मई से आरंभ हो रहा है और 15 जून तक रहेगा। तो अधिक मास कैसा समय है, जितने दिन अधिक मास चलेगा उतने दिन क्या करना होगा, इसकी विशिष्टताएं क्या हैं, इस पर हम आगे आपके साथ चर्चा करेंगे।
0: तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: मेष राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन क्रोध पर प्रभु नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन संबंधी समस्याएं हल हो जाएंगी, छोटी लाभदायक यात्रा के योग बन रहे हैं, पारिवारिक स्थिति में आपके सुधार होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, संतान की चिंता हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि अधिक मास का आखिरकार इतना महत्व क्यों है।
1: देखिए, अधिक मास को अच्छा समझें बुरा समझें, इसके बारे में शास्त्र क्या कहता है, इसका क्या महात्म्य बताता है, वो भी जान लेते हैं। देखिए, अधिक मास को पहले बड़ा अशुभ माना जाता था, लोग कहते थे बड़ा अशुभ समय है, बहुत ही बुरा समय है। वैसी कथा आती है कि अधिक मास जो था वो भगवान विष्णु के पास गया, उसने कहा कि प्रभु मुझको तो बड़ा अशुभ मानते हैं, मुझ में कोई काम नहीं करते, मुझे अपवित्र समझते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा चिंता मत करो, अब मेरा ही नाम तुम्हारा नाम हो जाएगा, मेरे नाम से अधिक मास जाना जाएगा। यानी बाद में श्री हरि भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम दे दिया। अब जब स्वयं भगवान ने ही अपना नाम दे दिया तो भैया पवित्र बहुत हो गया, इस मास का नाम पड़ गया पुरुषोत्तम मास, सबसे ज्यादा उत्तम महीना, स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप हो गया पुरुषोत्तम मास। इस महीने में भगवान विष्णु के सारे गुण पाए जाते हैं। क्या गुण है? अपने भक्तों की रक्षा करना, अपने शरण में आए हुए लोगों के पापों का हरण करना, पापों की क्षमा देना और भक्तों का उद्धार करना, ये सारे गुण पुरुषोत्तम मास में यानी अधिक मास में पाए जाते हैं। इसीलिए अधिक मास में अगर कोई व्यक्ति धर्म कार्य करता है, धर्म का पालन करता है, साधना पूजा दान करता है, तो इसके उत्तम परिणाम जीवन में प्राप्त होते हैं।
0: तो देखिए, अधिक मास आने वाला है, ऐसे में वो कौन कौन से कार्य हैं जो इस महीने में नहीं करने चाहिए, कौन सी सावधानियां हैं जिन पर खास ध्यान रखना चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं।
1: देखिए, वास्तव में जो अधिक मास है वो धार्मिक कार्यों के लिए,

0: है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो अधिक मास में नहीं किए जा सकते, कौन से काम हैं? ये महीना जो है ये आध्यात्मिक महीना है, स्पिरिचुअल महीना है। इस महीने भौतिक जीवन के, जो जीवन के सामान्य कार्य हैं, भौतिक जीवन से जुड़े हुए हैं, वो काम करने की मनाही है। विवाह करना, कर्ण वेध, गृह प्रवेश, चूड़ाकरण, ये सब करना, ये सब मांगलिक कार्य करना मना है। घर का निर्माण करना भी मना है। घर के निर्माण की शुरुआत भी नहीं करेंगे और गृह प्रवेश करना भी मना है। ये संभावना इस समय नहीं बनती। जो काम पहले से चले आ रहे हैं, अब आपका घर बन रहा है तो बनता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या जो पहले से निश्चित काम है, आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होना है तो वो होगा ही, बच्चे के जन्म के साथ जो शुभ काम है वो करना जरूरी है, वो होंगे ही, उस पर अधिक मास का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन नए कार्य की शुरुआत इस समय नहीं की जा सकती, नए शुभ और मंगल कार्य इस समय नहीं किए जाएंगे।
1: तो बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: कर्क राशि, किसी बड़ी समस्या को इस समय आप हल कर लेंगे। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी महिला के सहयोग से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन प्राप्ति के मजबूत योग बन रहे हैं, व्यस्तता काफी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए फिलहाल कार्यक्रम में समय हो गया है आपका सवाल लेने का, तो बिना देर किए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किस प्योर का ले रहे हैं।
0: जी, आज का पहला प्रश्न प्रिया ने हमें लिखा है और प्रिया हमें मेल लिखती हैं बिहार से। इनकी जन्म की तारीख है 26 सितंबर 1992। जन्म का समय रात में 10 बजे। जन्म का स्थान है बक्सर, बिहार। प्रिया कह रही हैं कि मैं अभी टेम्पररी

0: एडहॉक पे टीचिंग की नौकरी कर रही हूं, उसका एक मुकदमा भी कोर्ट में चल रहा है, तो क्या मेरी नौकरी परमानेंट हो पाएगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? प्रिया, शिक्षा क्षेत्र में आपको परमानेंट नौकरी अवश्य मिलेगी, आप कोर्ट में लगे रहिए। संभावना ज्यादातर देखिए ये दिखाई देती है कि इस साल के अंत तक जाते जाते आपकी नौकरी परमानेंट हो जाएगी, न्यायालय से आपको राहत मिलेगी, ये संभावना बन रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक माणिक्य बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें, रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो ये बिल्कुल संभव है। टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं, आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी अगला प्रश्न शैलजा जी ने हमें लिखा है और शैलजा जी हमें मेल लिखती हैं अमेरिका से। इनकी जन्म की तारीख है 7 नवंबर 1982, जन्म का समय सुबह के 6:10, जन्म का स्थान है अहमदाबाद गुजरात। शैलजा कह रही हैं कि कुछ समय के लिए मैं नौकरी करने के लिए विदेश में आई हुई हूं और मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मैं विदेश में सेटल हो सकती हूँ या मुझे भारत में ही अच्छा करियर और अच्छा जीवन मिलेगा। शैलजा, आपकी कुंडली के हिसाब से फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस बहुत कमजोर हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2026 में तो संभवतः आप विदेश रहेंगी ही, अगले साल आपको वापस आना पड़ सकता है और आपका सेटलमेंट इंडिया में ही होगा, अच्छा रहेगा, उसमें कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। आपने ये भी लिखा है कि बेवजह की छोटी छोटी स्वास्थ्य की समस्याएं आपको लगी रहती हैं, उसके लिए आपको 2 उपाय बताते हैं, आपके करियर के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें, रोज सुबह 1 बार राम रक्षा स्तोत्र का या तो पाठ करें या सुन लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो अधिक मास के बारे में हम बात कर रहे हैं, अधिक मास में कौन कौन से कार्य करना लाभदायक होता है, आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: देखिए, ऐसा नहीं है कि अधिक मास में कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कुछ काम वास्तव में अधिक मास में करना बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही मंगलकारी होता है। नियमित रूप से अधिक मास में श्री हरि यानी भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण, अपने गुरु या जिनको भी अपना इष्ट देव मानते हैं, उनकी आराधना करिएगा। जहां तक संभव हो अधिक मास में अपना आहार, अपने विचार और अपना व्यवहार सात्विक रखिएगा, मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। पूरे महीने में जब मौका मिले श्रीमद् भागवत का पाठ करिए जितना कर सकें, या रोज कम से कम गीता के कुछ श्लोक पढ़िए या एक एक अध्याय थोड़ा थोड़ा पूरे महीने में पढ़िए भगवत गीता का। अधिक मास में निर्धनों की सहायता करिए और जब भी कर सकें यथाशक्ति अन्न का, वस्त्र का और जल का दान करिएगा। अधिक मास पूर्वजों और पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस महीने में पूर्वजों और पितरों के लिए दान करना, उनके लिए प्रार्थना करना भी लाभकारी होता है। लौकिक कामनाओं के लिए अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति की प्रार्थना करना चाहते हैं, धन की प्राप्ति की कामना है आपके लिए, और अगर आप ऐसा अधिक मास में करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपकी कामनाएं अवश्य सफल होती हैं।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखिए, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ऑफिस में विवादों से बचाव करिएगा और वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन की समस्याएं हल होंगी, स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होगा, करियर में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, किसी को ना बताएं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा।
1: तो अधिक मास में ग्रहों को किस तरीके से अनुकूल बनाया जा सकता है और ईश्वर की कृपा किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है, आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: देखिए, अधिक मास तो भगवान का ही महीना है, भगवान के नाम का महीना है। अगर आप प्रार्थना करें, साधना करें, जप तप करें तो आप ग्रहों को अनुकूल बना सकते हैं। क्या उपाय करें? पूरे महीने सुबह और शाम भगवान कृष्ण की या भगवान विष्णु की उपासना जरूर करिएगा। थोड़ा सा समय सुबह निकालें और थोड़ा सा समय शाम को निकाल करके भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की उपासना करें। शाम के समय उनकी जब आप पूजा करेंगे तो उनके सामने घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएंगे और नियमित रूप से भगवान की कथा सुनिए। आजकल बहुत सारे तरीके हैं, मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर भगवान की कथा आती रहती है, वहाँ सुन सकते हैं, या श्रीमद् भागवत में भगवान की कथाएं हैं, हरिवंश पुराण में भगवान की लीलाएं हैं, उसको सुनिए और पढ़िए। और चूंकि ज्येष्ठ के महीने की बात है, ज्येष्ठ के महीने का अधिक मास है, इसलिए निर्धनों को जल रेगुलरली दीजिए, शीतल जल शरबत ये निर्धनों को पिलाइए, और ऋतु फल तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, इसका दान करिए। और नियम ये कहता है कि अधिक मास के अंत में निर्धनों में 30 की संख्या में मिठाई का दान करना चाहिए। अगर आप ऐसा अधिक मास में करते हैं तो निसंदेह आपको कृपा मिलेगी, ग्रहों की बाधा दूर होगी। देखिए, अधिक मास का मतलब ये नहीं है कि आप चुपचाप बैठे रहें, जैसे जीवन चल रहा है चलने दें। 3 साल में एक बार इतना पवित्र अवसर आया है तो आप मांस मदिरा का त्याग कर दें, प्याज लहसुन भी छोड़ दें तो और भी अच्छा होगा। पवित्रता से आहार ग्रहण करें और पवित्रता से भगवान के नाम का मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। सामान्य समय में नाम जपने का या सामान्य समय में साधना करने का जितना फल मिलता है उससे ज्यादा शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे।
1: फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है।
0: मकर राशि, घर में मांगलिक कार्य होने के योग बन रहे हैं, विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है, परिवार की समस्या से परेशानी होगी, करियर में कुछ बदलाव होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

0: में सुधार होगा, परिवार का सहयोग बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का अगला यानी कि तीसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी अगला प्रश्न ब्रजभूषण जी ने हमें लिखा है और ब्रजभूषण जी हमें मेल लिखते हैं वाराणसी से। इनकी जन्म की तारीख है 3 फरवरी 1978। जन्म का समय शाम के 7:15। जन्म स्थान है वाराणसी। ब्रजभूषण जी लिख रहे हैं कि पहले मैं एक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा था गुड़गांव में, और 1 साल पहले मेरी नौकरी छूट गई तो मैं वापस वाराणसी चला आया। क्या मुझे कोई व्यापार करना चाहिए या दोबारा मुझे नौकरी के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए? ब्रजभूषण जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए बेहतर होगा कि आप दोबारा नौकरी का ही प्रयत्न करें, और अगर अभी प्रयत्न करेंगे तो संभवतः जुलाई अगस्त के समय में आपको नौकरी मिलेगी और आपको वाराणसी से बाहर निकलना पड़ेगा। लखनऊ, दिल्ली, गुड़गांव, इस तरफ कोशिश करिए, नौकरी पा जाएंगे। जब नौकरी पा जाते हैं तो नौकरी के साथ पैरेलल अगर कोई व्यापार करें, खाने पीने की चीज़ों का, कपड़ों का, दवाइयों का, तो पैरेलल ऐसा व्यापार करने पे आपको लाभ होगा। अब आपको नौकरी जल्दी मिले, बेहतर मिल जाए, इसके लिए एक रत्न आता है, उसे कहते हैं लाजवर्त, लैपिस कहते हैं अंग्रेजी में। एक लाजवर्त बनवा लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का लाजवर्त, चांदी में, दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में। शनिवार की शाम को लाजवर्त धारण करिए और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आज के अंतिम सवाल के बारे में भी जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का अंतिम यानी कि चौथा सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न किशोर जी ने हमें लिखा है और किशोर जी हमें पुणे महाराष्ट्र से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 अगस्त 1991। जन्म का समय 7:00। जन्म का स्थान है पुणे महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि मैं पार्टनरशिप में व्यापार कर रहा हूं लेकिन पार्टनर के साथ बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या मुझे पार्टनरशिप से अलग हो जाना चाहिए, और अगर मैं अलग हो करके आगे काम करूं तो क्या मुझे उसमें सफलता मिलेगी? किशोर जी, आपके लिए पार्टनरशिप से अलग हो जाना ही बेहतर है। पार्टनरशिप में रह करके आप ज्यादा सफलता देखिए पाएंगे नहीं, और आज नहीं तो कल आपको नुकसान होगा ही। इसीलिए बुद्धिमानी कहती है कि पार्टनरशिप से अलग हो जाइए और अपना अकेले इंडिपेंडेंट काम करिए। तरक्की करने में थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन साल भर के अंदर जिंदगी रास्ते पे आ जाएगी, और भविष्य में जब आगे बढ़ें तो कृपा करके दोबारा पार्टनरशिप में मत जाइएगा। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक अगर आप इसका पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: पंडित जी, अधिक माह के बारे में हम बात कर रहे हैं, कहते हैं कि हर 3 साल में ये महीना आता है, भगवान विष्णु को समर्पित है, ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अधिक माह में क्या कोई ऐसा मंत्र है जिसका उच्चारण करके प्रभु की प्राप्ति हमें हो सकती है, उनकी कृपा हमें मिल सकती है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं।
0: जी देखिए, अधिक मास का समय भगवान विष्णु का समय है। ज्यादातर लोग श्री हरि या भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। 2 मंत्र हैं जिनका जप आप अधिक मास में कर सकते हैं। एक मंत्र सामान्य मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप अधिक से अधिक जप कर सकते हैं। एक बड़ा अचूक भगवान का नाम मंत्र है जिसका जप करने से पाप कटते हैं, प्रारब्ध नष्ट होते हैं, पापों का प्रायश्चित होता है, वो भगवान का नाम मंत्र है हरि। तो आप दिन भर रात भर खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हरि हरि हरि हरि हरि नाम का जप निरंतर करते रहें। कल्याण तो होगा ही, पापों का क्षय होगा, पापों का प्रायश्चित होगा और पापों से मुक्ति मिलेगी।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जिनका जन्मदिन 17 मई को है, आप सभी को हैप्पी बर्थडे। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल, आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 17 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में किसी भी तरह का जोखिम ना लें। अक्टूबर से जीवन की स्थितियों में सुधार होगा। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनि देव के मंत्रों का अगर जप करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जान लेते हैं कि आखिरकार आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या अधिक मास का समय अशुभ समय होता है, और इसीलिए क्या इस समय शुभ काम नहीं करते हैं। देखिए, अधिक मास परम पवित्र मास है। भगवान ने इस महीने को स्वयं अपना नाम दे दिया है। इस महीने आप धर्म के कार्य करें, ईश्वर के मार्ग पर चलें, इसलिए जो भौतिक जीवन के कार्य हैं वो नहीं किए जाते। इस समय दान और उपासना करने के अत्यधिक शुभ फल जीवन में प्राप्त होते हैं।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 17 मई 2026 दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके काम में जो बाधा चली आ रही है वो बाधा समाप्त हो जाएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 17 मई 2026 रविवार शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
1: तो चलिए कार्यक्रम के अंत में अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वर्तमान समय स्वास्थ्य के मामले में कैसा चल रहा है। आज की गुडलक राशि है वृश्चिक। इस समय अपने पेट का और चोट चपेट का ध्यान रखिएगा। वाहन चलाने में इस समय आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए।
1: चलिए अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां हम पंडित जी से जानेंगे कि आज का महा उपाय क्या है।
0: आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर वैवाहिक जीवन में आपके समस्या हो तो अधिक मास में क्या करेंगे, रोज सुबह और शाम श्री कृष्ण की उपासना करें। उनकी उपासना में उन्हें तुलसी दल अवश्य अर्पित करें और सुबह शाम दोनों समय मधुराष्टक का पाठ करके प्रार्थना करें, निश्चित रूप से लाभ होगा।
1: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो गुड लक टुडे में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: रक्षा क्षेत्र में भारत हर दिन एक नया अध्याय लिख रहा है। स्वदेशी तकनीक के जरिए ऐसे ऐसे कीर्तिमान रचे जा रहे हैं जो दुनिया को बहुत चक्का कर रहे हैं। मिसाइल से लेकर युद्धपोत तक और फाइटर जेट से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक सब कुछ देश में ही तैयार हो रहा है और वो भी वर्ल्ड क्लास। जो तकनीक और ताकत दुनिया के चंद देशों की जागीर मानी जाती थी, उस टेक्नोलॉजी पर अब भारत का दबदबा है। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए, ये कोई साधारण तस्वीर नहीं है बल्कि डिफेंस सेक्टर में भारत के बढ़ते रुतबे को दुनिया के सामने रख रही है। यह तस्वीर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम का नया अध्याय है जो भविष्य के सुपर हिंदुस्तान का रास्ता तैयार कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। दरअसल डीआरडीओ और डीआरडीएल ने मिलकर इस मिसाइल के एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का 20 मिनट तक सफल परीक्षण किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एक्टिव कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए जरूरी एक्सट्रीम टेम्परेचर को सहने की इंजन क्षमता साबित हुई है। हैदराबाद स्थित डीआरडीएल यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में स्क्रैमजेट कंबस्टर का परीक्षण किया गया, जो कि 20 मिनट से ज्यादा समय तक चला। इस टेस्ट की सबसे बड़ी बात यह रही कि इसमें एक्टिव कूलिंग, थर्मल बैरियर कोटिंग और इंडिजिनस फ्यूल जैसी जटिल तकनीकें भारत ने खुद विकसित की हैं। इस टेस्ट के जरिए अत्यधिक तापमान और दबाव की स्थिति में सुपरसोनिक इंजन से निकलने वाली गर्मी को कंट्रोल करने की क्षमता को जांचा गया।
1: ये पिछले बार के वर्जन से इम्प्रूव्ड वर्जन है। पिछले बार इन्होंने 700 सेकंड पे किया था, इस बार 1200 सेकंड पे, तो टाइमिंग बढ़ी है। तो कहने का मतलब ये कि जो इंडिजिनसली डेवलप आपका फ्यूल है, लिक्विड हाइड्रोकार्बन फ्यूल, और उसका जो एडवांस थर्मल बैरियर कोटिंग है वो आले दर्जे का, वो ज्यादा देर तक विस्टैंड कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये कि जब आप इस तरीके की मिसाइल डेवलप करते हैं स्क्रैमजेट इंजन द्वारा, तो आपको एक फ्यूल और आपको उसका कंबशन सिस्टम पे ज्यादा ध्यान होता है, जो कि इस बार 1200 सेकेंड तक वो उसको इसकी स्टेबिलिटी चेक की गई है।

0: हाइपरसोनिक स्पीड पर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, जिससे इंजन पिघल सकता है। 20 मिनट से ज्यादा समय तक इंजन का सफलतापूर्वक चलना ये साबित करता है कि भारत ने एक्टिव कूलिंग तकनीक में महारत हासिल कर ली है। अब स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन से मिसाइल को मैक 5 से ज्यादा की रफ्तार मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि आवाज की स्पीड से 5 गुना तेज यानी कि करीब 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्रचंड रफ्तार से दुश्मन पर प्रहार।
1: देखिए, हिंदुस्तान ने जब हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप किया विद स्क्रैमजेट इंजन के साथ, तो ये दिखाता है कि अगर ये मिसाइल 5 मैक से ज्यादा स्पीड हासिल करती है, इसका मतलब हुआ कि 6175 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में इतना डिस्टेंस जाएगा, तो पाकिस्तान का कोई भी टारगेट विद इन 20-30 मिनट के अंदर एंगेज कर लिया जाएगा। और इसी तरह चाइना का भी काफी बड़ा इलाका इसके कवरेज एरिया में आता है, तो एक स्ट्रेटेजिक एज हिंदुस्तान को देता है और साथ में इंडिजिनसली डेवलप है, तो हमें किसी बाहर के कंट्री पे भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है।
0: स्क्रैमजेट की सफलता से भारत, अमेरिका, रूस और चीन के साथ उन चुनिंदा देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया है जो स्क्रैमजेट तकनीक में मैक 5 से ज्यादा स्पीड वाली मिसाइलें विकसित कर रहे हैं।

0: सबसे पहले इंडिजिनस स्क्रैम या टेक्नोलॉजी, उसमें जो हमने उसका फ्यूल इस्तेमाल किया, जो हाइड्रो कार्बन फ्यूल है, वो इंडिजिनसली डेवलप किया गया। ये फ्यूल का ही एक है कि उसका जो बर्निंग है, जो उसकी जो कंबशन सिस्टम है, वो कैसे डेवलप किया जाए, कैसे आप इतनी हीट या एनर्जी डेवलप करें जिससे कि मिसाइल को वो 5 मैक की स्पीड से प्रोपेल कर सके। और साथ में उसमें इस तरीके की कोटिंग की जाती है, सेरेमिक कोटिंग की जाती है कि जिससे वो उस हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सके। तो कहने का मतलब ये कि जब ये विकसित हुआ है तो ये काफी लगन, काफी एफर्ट, काफी ट्रायल के बाद इसको विकसित किया गया है। और जब यह स्वदेशी हो जाता है तो इसमें हमें किसी और फॉरेन कंट्री पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं होती।
1: डीआरडीओ का नया टेस्ट भारत की सैन्य ताकत और एशिया का शक्ति संतुलन बदल सकता है। इसका सबसे बड़ा असर हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दिखाई देगा। चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, ऐसे में लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल भारत के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकती है। हाल ही में डीआरडीओ ने 1500 किलोमीटर रेंज वाली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल समुद्र में दुश्मन के बड़े युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना सकती है। इसका मतलब साफ है कि अगर हिंद महासागर में किसी भी दुश्मन नौसेना ने

0: भारत की स्ट्राइक क्षमता और रणनीतिक ताकत कई गुना बढ़ सकती है। साल 2025 में डीआरडीओ ने छोटी अवधि के स्क्रैमजेट टेस्ट किए थे, लेकिन अब दूसरी बार जब फुल स्केल कम्बस्टर का टेस्ट किया गया तो 20 मिनट से ज्यादा चला। इससे पहले डीआरडीओ ने 9 जनवरी 2026 को भी हैदराबाद में फुल स्केल एक्टिवली कूल स्क्रैमजेट कम्बस्टर का 12 मिनट से ज्यादा का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक किया था, जो ये बताता है कि भारत अब अपने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ब्रह्मोस 2 मिसाइल के डिजाइन के लिए दूसरे देशों की तरफ नहीं देखेगा, बल्कि अब देश में ही उसे तैयार किया जाएगा। मौजूदा समय में दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती मिसाइल को रोकने में सक्षम नहीं है। रडार को जब तक खतरे का पता चलेगा तब तक मिसाइल अपना काम कर चुकी होगी।
1: भारत के लिए खतरा जितना चीन से है उतना ही पाकिस्तान से भी है, लेकिन अगर चीन की बात की जाए तो चीन हथियारों की दौड़ में बहुत तेजी से आगे भाग रहा है। चीन अपने पास एआई तकनीक से लैस तमाम हथियारों को विकसित कर रहा है, साथ ही साथ हाइपरसोनिक तकनीक में भी वो आगे बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत भी इस तकनीक में महारत हासिल करे और अपने बेड़े में हाइपरसोनिक हथियारों को भी शामिल करे।
0: हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा स्पीड से चलती है। इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है जिससे उसको ताकत मिलती है। अब स्क्रैमजेट इंजन क्या है और कैसे काम करता है इसे भी जान लीजिए। स्क्रैमजेट एक खास तरह का एयर ब्रीदिंग इंजन है। इसे शुरू करने के लिए रॉकेट बूस्टर की जरूरत होती है। स्क्रैमजेट में ईंधन के दहन के लिए वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिए इसी स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। स्क्रैमजेट से फायदा ये होगा कि इसका इस्तेमाल कम लागत में उपग्रहों के प्रक्षेपण में भी किया जा सकेगा। वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने से स्क्रैमजेट इंजन हल्का, ज्यादा तेज और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम माना जाता है।
2: जब ये इंजन एयर में जाता है तो इतनी हाई स्पीड से होता है तो जो एटमॉस्फेयर में एयर होता है उसको इस स्पीड पे कंप्रेस करता है और उसका लगातार ये सप्लाई जारी रहती है जिससे वो फ्यूल से रिएक्ट करके हीट जनरेट करता है। तो और ये लगातार होना चाहिए। अगर इसमें कोई बाधा है या अनइवन बर्निंग है, अनइवन हीट जनरेशन है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। तो एक स्पीड पे कंप्रेस एयर को फ्यूल के साथ मिक्स करके एनर्जी डेवलप करना और लगातार ये जारी रखना।
0: भविष्य में ये तकनीक ब्रह्मोस 2 में इस्तेमाल होगी, जो भारत रूस का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ब्रह्मोस 2 मैक 7 से 8 स्पीड वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर होने का अनुमान है। डीआरडीओ का लक्ष्य है कि साल 2028 तक ऐसी मिसाइल को पूरी तरह से विकसित कर लिया जाए। मिसाइलों को ठोस या तरल ईंधन से चलने वाले रॉकेट या जेट इंजन द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। कुछ मिसाइलों में जैसे कि ब्रह्मोस में रामजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो सुपरसोनिक रफ्तार हासिल करने के लिए हवा को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। वहीं हाइपरसोनिक मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। भारत का लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल प्रोग्राम अब अपने एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है और जल्दी ही शुरुआती परीक्षण होने की उम्मीद है। हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत ने कहा था, भारत हाइपरसोनिक ग्लाइड और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसमें ग्लाइड संस्करण मौजूदा समय में विकास के मामले में आगे है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन होता है और उड़ान के दौरान इसे ऊर्जा मिलती है। हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल शुरुआती रफ्तार हासिल करने के लिए बूस्टर का इस्तेमाल करती है और फिर बिना किसी ऊर्जा के ग्लाइड करती है। मिसाइल में 2 स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। पहले चरण के खत्म होते ही वो अलग हो जाती है, जबकि दूसरा चरण मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंचाता है। इसके बाद मिसाइल बिना इंजन के ग्लाइड फेज में एंट्री करती है और टारगेट तक पहुंचने से पहले कई रणनीतिक मूवमेंट करती है।
2: देखिए, मिसाइल में जो 2 स्टेज रॉकेट होते हैं, प्रोपल्शन होता है, उसमें एक इनिशियल फेज का होता है और एक सब्सिक्वेंट फेज का होता है। इनिशियल फेज का काम होता है वो हीट, वो एनर्जी, वो थ्रस्ट डेवलप करना, जिससे कि मिसाइल को लॉन्च किया जा सके, लिफ्ट दिया जा सके एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में। और जब ये काम हो जाता है तब वो मोटर काम करना बंद कर देता है, तब सेकेंड स्टेज का मोटर काम करता है जो अगेन उस

0: वेलोसिटी को मेंटेन करता है, एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक ऑर्बिट में मिसाइल को डालता है और लगातार उस पे सस्टेन प्रेशर क्रिएट करता है जिससे कि उसकी वेलोसिटी बन सके।
1: आज दुनिया के कई देश अपनी मिसाइल क्षमता को धार देने में जुटे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है, मिसाइल ही एक ऐसा हथियार है जो हर तरह के युद्ध क्षेत्र में कामयाब है। चाहे लड़ाई जमीन पर हो, आसमान पर या फिर अंतरिक्ष में, मिसाइल हर मोर्चे पर कारगर है। एक मिसाइल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो दुश्मन के टारगेट पर आए बिना अपने टारगेट को ध्वस्त कर दे। हालांकि इसमें अत्याधुनिक रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम रोड़ा जरूर अटकाते हैं और इसीलिए यहीं से हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर सोच शुरू हुई, जिसको लेकर काम चल रहा है। आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है और ये दुनिया के लिए चिंता का विषय क्यों बन गया, ये समझने की जरूरत है। हाइपरसोनिक हथियार आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज रफ्तार से चलते हैं और अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि हाइपरसोनिक वेपन की रफ्तार ही उसकी ताकत है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल भी आवाज की रफ्तार से तेज चलती है। ऐसे में हाइपरसोनिक वेपन की असली ताकत क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। हाइपरसोनिक मिसाइल को एक व्हीकल तेजी से अंतरिक्ष की तरफ ले जाता है, जिसके बाद वो ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ती है। ये इतनी तेजी से अपना रास्ता बदलती है कि किसी भी देश का एंटी मिसाइल सिस्टम इसे ट्रैक नहीं कर पाता और ये अपने टारगेट को आसानी से ध्वस्त कर सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल को जब एक जगह से लॉन्च किया जाता है तो पता चल जाता है कि उसका टारगेट कहाँ है और वो किसे निशाने पर लेगी। ऐसे में इन मिसाइलों को ट्रैक करना आसान होता है। इसके साथ ही लॉन्चिंग के साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलों की दिशा में बदलाव नहीं किया जा सकता। वहीं लॉन्चिंग के साथ हाइपरसोनिक मिसाइलों की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है।
0: ये हाइपरसोनिक मिसाइल या जो वेपन है उनका जो ग्रेडिंग है वो एनी एरियल ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा है, जैसा कि मैंने बताया 6175 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो अगर इसकी स्पीड ज्यादा होती है वो हाइपरसोनिक कैटेगरी में आता है। जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा है उसको रडार कैसे डिटेक्ट करेगा, चाहे रडार किसी भी प्रिंसिपल पे काम कर रहा हो, चाहे डॉपलर पे काम कर रहा हो या अन्य प्रिंसिपल पे काम कर रहा हो, बाय द टाइम पल्स उसको जाके हिट करके वापस आती तब तक वो मिसाइल आगे निकल चुका होता है। एक स्पीड, दूसरा लो हाइट या हाई हाइट, इसमें कोई रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। इस वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल ने लड़ाई लड़ने की विधा में टोटल तब्दीली कर दी।
1: हाइपरसोनिक हथियार सबसोनिक मिसाइलों से कहीं तेज रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इनकी रफ्तार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से बेहद कम होती है। हाइपरसोनिक हथियार सिस्टम 2 तरह के होते हैं, पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और दूसरा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जिस तरह एक सर्फर समंदर की लहरों पर ग्लाइड करता है, ठीक उसी तरह से हाइपरसोनिक हथियार हवा में ग्लाइड करते हैं, जिससे इसे रोकना आसान नहीं होता। हाइपरसोनिक हथियार की एक और खासियत होती है कि ये कम ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकते हैं।
2: मौजूदा समय में तमाम देशों का फोकस ग्लाइड व्हीकल्स पर है। दरअसल ग्लाइड व्हीकल एक नई तकनीक है। ग्लाइड व्हीकल के साथ एक मिसाइल लगाई जाती है जो कि एक टारगेट पर जाकर ग्लाइड व्हीकल से अलग हो जाती है, जिसके बाद वो टारगेट की तरफ सीधा ग्लाइड करते हुए फोकस करती है और उसे ध्वस्त करके ही दब लेती है।
1: हाइपरसोनिक हथियार बनाने की दिशा में भारत अपना कदम आगे बढ़ा चुका है। HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के परीक्षण की शुरुआत हो चुकी है। 27 जनवरी 2023 को DRDO ने HSTDV परीक्षण किया था जो सफल रहा।

0: साल 2020 में भारत ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड का टेस्ट किया था, जिसमें महज 20 सेकंड में 7500 किलोमीटर के टारगेट को पूरा किया गया था। हालांकि भारत इस तकनीक में पिछले कई सालों से लगातार लगा हुआ है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल को लॉन्च कर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि ऐसी कोई रफ्तार नहीं जहां उसकी पहुंच नहीं। हाइपरसोनिक व्हीकल का ट्रायल एक ऐसी कामयाबी है जो हिंदुस्तान की ताकत में कई गुना इजाफा करेगी। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल 6000 से 12000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये 20 सेकंड में मैक 6 की रफ्तार और 32.5 किलोमीटर ऊंचाई तय करने में सक्षम है। HSTDV के परीक्षण के बाद भारत के रक्षा क्षेत्र को और अधिक मजबूती मिलेगी, क्योंकि इसके साथ ही भारत अब उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सक्षम है। दुनिया बदल रही है, युद्ध बदल रहे हैं, युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं, रण क्षेत्र की रणनीतियां बदल रही हैं, और इसी के तहत अब आने वाले समय में युद्ध AI और हाइपरसोनिक तकनीक के साथ लड़े जाएंगे। भारत ने भी खुद को इसी क्षेत्र में तैयार किया है और ऐसा ही एक परीक्षण हाल फिलहाल में भारत ने किया, जिसके बाद पूरी दुनिया का ध्यान भारत ने अपनी ओर खींचा।
1: बीते कुछ वर्षों से दुनिया का माहौल जिस तरीके से बदला है, उसे देखते हुए भारतीय सेना कंप्लीट चेंज के मोड में है। बदलते सुरक्षा हालात को देखते हुए सेना खुद को नए समय के मुताबिक तैयार कर रही है, जिसमें छोटे से छोटे हथियार तक को धार दी जा रही है। इसी कड़ी में भारत ने स्वदेशी ग्लाइड वेपन तारा का पहला सफल परीक्षण किया। तारा का पूरा नाम है टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन। ये भारत का पहला स्वदेशी मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है। आसान भाषा में समझा जाए तो तारा एक ऐसा सिस्टम है जो किसी साधारण बम को स्मार्ट ग्लाइड बम में तब्दील कर देता है।
0: आमतौर पर जो अनगाइडेड बम होते हैं उसे एक अंदाजे से टारगेट के ऊपर गिराया जाता है, और इसके लिए विमान को टारगेट के करीब जाना पड़ता है और फिर उसके बाद ये टारगेट की ओर गिराया जाता है। वहीं अगर हम गाइडेड बम की बात करें तो इससे दूर रहकर भी दुश्मन के ठिकाने को निशाने पर लिया जा सकता है।
1: तारा ग्लाइड वेपन किट से न सिर्फ हथियार की रेंज में बढ़ोतरी होती है बल्कि सटीकता भी सुनिश्चित होती है। फाइटर जेट से छोड़े जाने के बाद ये सिस्टम एरोडायनामिक लिफ्ट और गाइडेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके एक आम फ्री फॉल बम के मुकाबले कहीं ज्यादा दूरी तय करता है, साथ ही हमले की सटीकता को भी बेहतर बनाता है।
2: तारा है, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, जितने हमारे डंप बॉम्ब है या जो ग्रेविटी बॉम्ब है उसमें इसको फिट कर दिया जाता है। इसमें विंग्स होते हैं, इसमें सेंसर होते हैं। कहने का मतलब यह है कि डंप बॉम्ब को कैसे स्मार्ट वेपन में कन्वर्ट किया जा सकता है। स्मार्ट का मतलब जो सेंसर के डायरेक्शन ले सके, जिसकी फ्लाइट मैनिपुलेट किया जा सके, जो प्रिसीजन स्ट्राइक कर सके और जिसको फ्लाइट के दौरान मैनिपुलेट करके सही टारगेट पे या टारगेट स्विचिंग किया जा सके। तो ये सारी सुविधाएं जो है तारा के थ्रू अचीव की जा सकती है।
1: स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा का ये परीक्षण बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि तारा भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करेगा जो अपने पुराने बमों को सटीक और दूर मार करने वाले हथियार में बदल सकते हैं।
0: तारा असल में एक मॉड्यूलर ग्लाइड किट है। आसान भाषा में अगर इसको समझना तो उसे कहेंगे कि हवाई जहाज से गिराए जाने वाले अनगाइडेड बमों के साथ लगाई जाने वाली किट, जिसका सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि ये सही और सटीक निशाना लगा पाएगी।
1: ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा में विंग्स, कंट्रोल सरफेस और एक बेहतरीन गाइडेंस पैकेज लगाया जाता है। इससे पुराने बम हवा में लंबी दूरी तक ग्लाइड करके जा सकते हैं और बेहद सटीक निशाना लगा सकते हैं। तारा में हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इनर्शियल नेविगेशन और सैटेलाइट गाइडेंस दोनों शामिल हैं। इससे सटीकता बहुत ज्यादा रहती है। विदेशी सिस्टम की तुलना में तारा ग्लाइड वेपन सिस्टम बेहद सस्ता भी है। इससे वायुसेना के पास पड़े लाखों पुराने बमों को आधुनिक हथियारों में बदला जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि किन किन देशों के पास ये तकनीक है। अमेरिका के पास JDM और JSAW है। ये साधारण अनगाइडेड बमों को प्रिशियस गाइडेड बम में तब्दील करते हैं। रूस के पास यूएमपी के ग्लाइड बम किट है जो उसने यूक्रेन युद्ध में अपने साधारण बमों को ग्लाइड करने के लिए इस्तेमाल किया था। इसराइल के पास स्पाइस 250 और स्पाइस 2000 जैसे बम प्रणालियां हैं। इनमें एआई पर आधारित इलेक्ट्रो ऑप्टिकल होमिंग सीकर लगा है। भारत ने इसराइल से ये किट खरीदी है। फ्रांस के पास एएसएम हैमर रॉकेट बूस्टर है। वहीं तुर्की के पास एचजीके किट है जो तारा की तरह ही काम करती है। इंडियन एयरफोर्स के लिए तारा जैसे सिस्टम भविष्य में कुछ ऐसे स्ट्राइक मिशनों के लिए एक सस्ता विकल्प साबित हो सकते हैं जिनके लिए महंगी क्रूज मिसाइलों या उन्नत स्टैंड ऑफ हथियारों की जरूरत नहीं होती। स्टैंड ऑफ वो हथियार होते हैं जिन्हें काफी दूर से दुश्मन की नजर से दूर रहकर दागा जाता है। इन्हें बियॉन्ड विजुअल रेंज हथियार भी कहा जाता है। तारा से फायदा ये होगा कि ये फाइटर जेट से दागे जाने वाले किसी भी बम को बीवीआर वेपन में तब्दील कर देगा। तारा को हम एक तरह से आत्मनिर्भर भारत की पहचान भी कह सकते हैं क्योंकि पूरी तरह से भारत में ही विकसित सिस्टम है। पहले इस तरह के सिस्टम्स के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन अब भारत ने खुद का अपना सिस्टम तैयार किया है जो कि हमारी वायुसेना को और ज्यादा ताकत देगा और सही निशाना लगाने की क्षमता देगा।

0: रंग क्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: सिर्फ बद्रीनाथ धाम ही नहीं बल्कि केदारनाथ धाम समेत पूरे चार धाम यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। एक तरफ भक्तों की आस्था हिलोरे मार रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार और प्रशासन यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने में जुटे हुए हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग, मेडिकल टीम, पुलिस और राहत दल लगातार तैनात है। भक्ति और आस्था से सराबोर उत्तराखंड इन दिनों आध्यात्मिक ऊर्जा से गूंज रहा है।

0: आस्था का सैलाब, पहाड़ों पर उमड़ता विश्वास और हर दिन बनता नया इतिहास। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा इस बार रिकॉर्ड रफ्तार से आगे बढ़ रही है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भक्तों का उत्साह चरम पर है। पहाड़ों की कठिन राह भी श्रद्धा के आगे छूटी पड़ रही है। सरकार सुरक्षा, सुविधा और व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत बना रही है ताकि हर यात्री का सफर सुरक्षित और आसान बने। चारधाम यात्रा अब नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। चारों धामों में सुबह से लेकर देर शाम तक दर्शन के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले लोग बाबा केदार, बद्री विशाल, माँ गंगा और माँ यमुना के दर्शन कर खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। यात्रा शुरू होने के बाद से लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक चार धाम में दर्शन करने वालों का आंकड़ा 12,60,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं बद्रीनाथ धाम में आने वाले भक्तों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। सबसे ज्यादा उत्साह केदारनाथ यात्रा को लेकर देखा जा रहा है। ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और कठिन रास्ते भी लोगों के कदम नहीं रोक पा रहे। हर उम्र के लोग बाबा केदार के दर्शन के लिए पैदल मार्ग पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार भी पूरी तैयारी के साथ यात्रा संचालन में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि मौसम खराब होने की स्थिति में हर यात्री की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम तेजी से बदलता है, इसी वजह से प्रशासन ने विशेष निगरानी तंत्र तैयार किया है। रियल टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। भीड़ नियंत्रण और स्लॉट मैनेजमेंट को भी प्रभावी बनाया गया है ताकि किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। रास्तों में मेडिकल टीम, पुलिस बल, आपदा राहत दल और हेल्प सेंटर लगातार तैनात हैं। घोड़ों, पालकियों और हेलीकॉप्टर सेवाओं की व्यवस्था भी सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। यात्रा मार्ग पर सफाई और स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी विशेष फोकस किया गया है। पहाड़ों में गूंजते जयकारे श्रद्धा से भरे चेहरे बता रहे हैं कि इस बार की यात्रा खास है।
1: जयकारा वीर बजरंगी।

0: भक्ति और विश्वास का यही संगम उत्तराखंड को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: शनि अमावस्या के पावन दिन अयोध्या में उमड़ा आस्था का मेला, मां सरयू की हुई विशेष आरती, वैदिक मंत्रोच्चार से गूंजा नया घाट। महाराष्ट्र के अकोला में धूमधाम से मनाई गई शनि जयंती, प्राचीन मंदिर में काटा गया 11 किलो का कलाकंद केक, भजन कीर्तन और सुंदरकांड का पाठ। गुजरात के वड़ताल धाम में लगाया गया 500 किलो आम का भोग, केसर आम की खुशबू से महका स्वामीनारायण मंदिर का गर्भगृह, गर्मी को देखते हुए लगाया गया भोग। देवभूमि में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं का भजन कीर्तन, अब तक करीब 2.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। भीषण गर्मी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जंगल सफारी में बेजुबानों के लिए खास इंतजाम, खास डाइट प्लान का हो रहा पालन, एसी पंखा और कूलर की व्यवस्था।

देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत के जीवन का विलक्षण वृत्तांत लेकर हम हाजिर हुए हैं वो कान फिल्म फेस्टिवल में अपने एलिगेंट लुक से आम लोगों के साथ ही सेलेब्स का भी दिल जीत रही है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइंस में से शुमार आलिया भट्ट हैं। जी हाँ, आपको बता दें, आलिया इन दिनों कान फिल्म फेस्टिवल में अपने दिलकश लुक और अदाओं का जलवा बिखेर रही हैं। ये वही आलिया है जो कि सोशल मीडिया पर कभी जिनके मीम्स की भरमार रहा करती थी। एक समय आलिया की ट्रोलिंग नेटिजंस का स्ट्रगल बन गया था। हालांकि सोशल मीडिया पर आलिया का जो परसेप्शन बना, आलिया की हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। आलिया की प्रतिभा की गहराई को वही समझ सकता है जो कि शिद्दत से उनके जिंदगी में उतरने की कोशिश करेगा। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगी कि आलिया को एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से कभी कभी वो जोन आउट हो जाती है और ट्रोलर्स उसी मोमेंट को पकड़ लेते हैं।

परसेप्शन और रियलिटी के बीच धूप छांव वाला रिश्ता काफी पुराना है। परसेप्शन कई बार रियलिटी के बहुत करीब होता है और कई बार रियलिटी परसेप्शन से कोसों दूर होती है। कान फिल्म फेस्टिवल में अपने फैबुलस और किलर लुक से धूम मचा रही आलिया भट्ट परसेप्शन और रियलिटी के बीच की अजीबो गरीब रिश्ते की अनूठी दास्तान है। बीते 12 मई को कान ओपनिंग सेरेमनी के रेड कार्पेट में कस्टम तमारा राल्फ गाउन में दुनिया भर के सेलेब्स के आकर्षण का केंद्र बनी आलिया इस प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल में लोरियल पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर के तौर पर पहुंची हैं। आलिया कान के हर इवेंट में अलग अलग अट्रैक्टिव आउटफिट में नजर आ रही हैं और अपने ओवरऑल सेंसिबल और एलिगेंट लुक से सेलेब्स की भी सेलिब्रिटी बनी हुई हैं। 14 मई को आलिया भट्ट ने लॉरियल पेरिस गाला डिनर के दौरान फ्लोरल ब्रोकेड आउटफिट में आकर सबका दिल जीत लिया। डिनर में डस्टी रोज और एंटीक टोन वाले फ्लोरल ब्रोकेट कॉर्सेट और मैचिंग फिटेड स्कर्ट में आलिया गजब की अट्रैक्टिव लग रही थी। कान फिल्म फेस्टिवल 2026 में चर्चा का केंद्र बनी ये वही आलिया हैं सोशल मीडिया पर जिनकी इमेज कभी अनइन्फॉर्म्ड और इग्नोरेंट यूथ की बन गई थी।

0: एक समय सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आलिया भट्ट के मीम्स से भरे रहते थे। आलम ये था कि किसी ने तथ्यात्मक रूप से कोई गलत बयानी की तो सोशल मीडिया पर तुरंत उसकी तुलना आलिया भट्ट से कर दी जाती थी। बहरहाल ये आलिया के बारे में सोशल मीडिया यूजर्स या नेटिजन्स का अपना परसेप्शन था। आलिया की रियलिटी नेटिजन्स के परसेप्शन से कोसों दूर है। आपको बता दें कि आलिया को लेकर इस तरह का सोशल मीडिया परसेप्शन इसलिए बन गया था क्योंकि एक बार उन्होंने देश के राष्ट्रपति का नाम गलत बता दिया था। दरअसल बतौर लीड एक्ट्रेस 2012 में आई अपनी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के प्रमोशन के लिए आलिया करण जौहर के शो कॉफी विद करण में अपने को स्टार्स वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ पहुंची थी। करण ने लाइटर मोड में आलिया से भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया और आलिया ने उत्साह में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का नाम बता दिया था, जबकि उस समय देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। आलिया की जिंदगी की गहराई में उतरे बगैर, पूरी सच्चाई जाने बगैर नेटिजन्स ने ये मान लिया कि आलिया का आईक्यू लेवल बेहद लो है और सामान्य ज्ञान तो शून्य है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है कि आलिया भट्ट अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी ADHD नामक एक रेयर डिजीज से पीड़ित हैं, जिसका पेशेंट कभी कभी जोन आउट हो जाता है। जोन आउट का मतलब ये है कि पेशेंट फिजिकली कहीं और होता है लेकिन उसका दिमाग अचानक किसी दूसरे जोनर में चला जाता है।
1: मैं बचपन से जोन आउट करते आई हूँ, हमेशा क्लासरूम में भी जोन आउट होती थी, कॉन्वर्जेशन में जोन आउट होती हूँ। तब रिसेंटली मैंने एक पर्सनैलिटी जो भी क्या होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और मुझे पता चला कि मैं ADHD के स्पेक्ट्रम में काफ़ी हाई हूँ। मुझे ADHD है, तो अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर।
0: आपको बता दें कि ADHD डिजीज का IQ लेवल से कोई रिलेशन नहीं है। काफी हाई IQ वाले लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है। होता यही है कि कभी कभी इसका पेशेंट जोन आउट हो जाता है और उस दौरान कोई ऐसा बयान दे सकता है या ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकता है जिससे उसके IQ लेवल पर सवाल उठने लगे। आपको बता दें कि आलिया का न सिर्फ IQ लेवल बल्कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी नेक्स्ट लेवल का है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि साल 2012 से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी आलिया कैमरा ऑन होने के बाद कभी जोन आउट नहीं होती। अलबत्ता कैमरे के सामने आते ही आलिया इतनी फोकस्ड हो जाती हैं कि उन्हें अपने किरदार और संवाद के सिवा कुछ भी ध्यान नहीं रहता।
1: I'm so present जब मैं कैमरा के सामने होती हूँ, चाहे मैं वो किरदार में प्रेजेंट हूँ, मतलब द पार्ट दैट आई एम प्लेइंग, आई एम प्रेजेंट एज द कैरेक्टर, बट आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। और फिर अभी ऑफ कोर्स आफ्टर रहा, जब भी मैं उसके साथ रहती हूँ, आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। तो ये 2 आई थिंक मोमेंट्स हैं मेरी लाइफ में जहाँ पे मैं सबसे ज्यादा पीसफुल फील करती हूँ।
0: साफ है कि आलिया भट्ट अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को भली भांति पहचानती हैं। यही वजह है कि कॉफी विद करण में गलत जवाब देने के बाद जबरदस्त तरीके से ट्रोल होने पर भी आलिया पूरी तरह काम एंड कूल रहीं। काफी वक्त बाद आलिया से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने पूरे ह्यूमर के साथ जवाब देकर ट्रोलर्स को भी ट्रोल कर दिया।
1: बोर हो गई उस जोक से, मेरे को एक्चुअली नया जोक चाहिए। आई वांट टू मेक अ मिस्टेक अगेन। हाँ, कोई मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं क्या गलती करूँ कि फिर से लोग उसको 1-2 साल और खींचेंगे।
0: आपको बता दें कि आलिया बॉर्न एक्ट्रेस हैं। संयोग से इनका जन्म एक ऐसे घराने में हुआ जहाँ माहौल पूरी तरह फिल्मी था। मार्च 1993 को हुए आलिया के जन्म से काफी पहले से पिता महेश भट्ट अर्थ, सारांश, नाम, आशिकी, सड़क और दिल है कि मानता नहीं जैसी कल्ट और आइकॉनिक फिल्मों का निर्देशन कर इंडस्ट्री में अलग पहचान स्थापित कर चुके थे। आलिया की मां सोनी राजदान भी 36 चौरंगी लेन, मंडी, सारांश और त्रिकाल जैसी 8 फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी से क्रिटिक्स की शाबाशी हासिल कर चुकी थी। आलिया ने भी जब से होश संभाला एक्टिंग को छोड़कर किसी दूसरे काम का तसव्वुर इनके मन में एक बार भी नहीं हुआ।
1: हाँ, आई थिंक मैं हमेशा कहती कि मैं एक्शन पे ही पैदा हुई थी, अपनी माँ की कोख से। आई डोंट थिंक देयर वाज दैट वन सेकंड आल्सो कि मैं दुनिया में आई, मुझे उस सेकंड पे ही पता था कि मुझे एक एक्ट्रेस बनना है और मुझे एक्टर बनना है और मुझे एक्टिंग करनी है। आई थिंक उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था।
0: जिन लोगों ने आलिया को अनइन्फॉर्म्ड यूथ का एम्बेसडर बना दिया था, उन्हें ये जानना चाहिए कि आलिया भट्ट जब सिर्फ 4 साल की थी तभी उन्होंने श्यामक डावर डांस एकेडमी की समर क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। बात सिर्फ इतनी नहीं है, डांस एकेडमी में 4 साल की आलिया इंडस्ट्री की प्रेस्टिजियस फैमिली का तगमा लेकर नहीं बल्कि लर्निंग हंगर के साथ जाती थी। यही वजह है कि बाकी बच्चों के मुकाबले वो ज्यादा अच्छे से चीजों को ग्रैस्प करती थी। खुद श्यामक डावर ने आलिया की तारीफ करते हुए एक बार कहा था कि आलिया सब कुछ बहुत जल्दी सीख लेती हैं।
1: श्यामक डावर के जो समर कैंप, समर डांस क्लासेस थे यार, वो एक्चुअली मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का बहुत ही अहम हिस्सा था। एंड आई रिमेम्बर दोज मोमेंट्स वेरी क्लियरली, क्योंकि जेन्युइनली इम्पैक्ट मेरी लाइफ में काफी था। क्योंकि कॉन्फिडेंस, लोगों के सामने डांस करना, फ्री बनना, ऐसे फील करना कि आप सबसे छोटे हो पर फिर भी बड़े हो और डांस करना है।
0: 4 की उम्र में श्यामक डावर की डांस क्लास ज्वाइन करने वाली आलिया 7 साल की होते होते नृत्य कला में इतनी पारंगत हो गई कि स्कूल के एक डांस कंपटीशन में श्यामक डावर ने उन्हें हायर क्लास की छात्राओं के बीच भेज दिया। क्योंकि डावर को ये भरोसा हो गया था कि हायर क्लास की छात्राओं के बीच भी आलिया बेहतर परफॉर्म करेंगी। हालांकि तब मासूम आलिया के साथ एक मजेदार वाकया भी पेश आया था।
1: क्लास में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था मेरा, तो श्यामक सर ने मुझे एक सीनियर बैच में डाल दिया। तो मैं 7 साल की थी और मैं क्लास के अंदर आई और इंस्ट्रक्टर कंफ्यूज हो गए कि आप ये क्लास में हो, क्योंकि इट वॉज देवर लिटरली अडल्ट इन दैट क्लास। और मैंने बोला हाँ श्यामक सर, लाइक आई एम सपोज टू कम इन दिस क्लास। तो पहले उनका क्वेश्चन था हाउ ओल्ड आर यू, तो मैंने बोला 7, but then immediately मैंने बोला but it's my birthday tomorrow, I'm going to be 8 tomorrow.
0: दिलचस्प बात तो यह है कि अगले दिन आलिया का जन्मदिन नहीं था, लेकिन उन्होंने झूठ इसलिए बोल दिया क्योंकि उन्हें डर हो गया था कि कम उम्र को देखते हुए उन्हें कहीं नीचे की क्लास में न भेज दिया जाए। इस लेवल का आत्मविश्वास था आलिया के भीतर बचपन से ही। कमाल ये है कि यही आत्मविश्वास तब भी बना रहा जब आलिया ने रुपहले पर्दे पर चुनौतीपूर्ण किरदार निभाना शुरू किया। इंडस्ट्री के स्टार फैमिली से आने वाले नेपो किड्स आमतौर पर फिल्में साइन करने से पहले अपने घर के अनुभवी सदस्यों से सलाह मशविरा करते हैं, लेकिन आलिया का हिसाब अलग है। वो फिल्में साइन करने से पहले अपने पिता महेश भट्ट या माँ सोनी राजदान, यहाँ तक कि पति रणबीर कपूर से भी क्लियरेंस लेना जरूरी नहीं समझती, बल्कि इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स के आधार पर खुद ही फैसले लेती हैं।
1: मैं एक्चुअली अपना माइंड मेकअप करने के बाद डिस्कस करती हूँ, मैं बिकॉज आई एम नॉट समबडी हु नीड्स टू बी कन्विंस्ड फॉर अ फिल्म, एक तो बात यह है, और दूसरी बात यह है कि मेरा इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स ही सबसे प्योर रिस्पॉन्स होता है। तो अगर कोई, मैं इंस्टिंक्टिवली अगर एक्साइट हो जाऊंगी और किसी ने अगर बोल दिया कि मतलब ऐसे मत करो, आई एम जस्ट गिविंग इफ केस सिनेरियो, मेरे साथ हुआ नहीं है, पर अगर बोल दिया तो फिर मेरे दिमाग में डाउट पैदा हो जाएगा। तो मेरी जर्नी मेरी है और मेरी डिसीजन भी मेरी होनी चाहिए, इसलिए दैट्स द रीजन, नॉट फॉर एनी अदर रीजन।
0: आप समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया की नजर में अनइन्फॉर्म्ड सेलेब्स रही आलिया की प्रतिभा उन्हें लेकर बने परसेप्शन से बिल्कुल अलग है। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से किक हुए एकाध अपवादों को छोड़ दें तो आलिया के लेवल का आईक्यू और टैलेंट हिंदी सिनेमा के 100 साल के इतिहास में इक्का दुक्का अभिनेत्रियों में ही नजर आएगा।
2: आलिया बॉलीवुड की एक दमदार फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। आलिया के पिता महेश भट्ट बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा निर्देशकों में शुमार हैं, जबकि मां सोनी राजदान 8 फिल्मों की आइकन रही हैं। लेकिन आलिया ने अपने फिल्मी सफर में आगे बढ़ने के लिए कभी भी पारिवारिक पृष्ठभूमि का सहारा नहीं लिया। शुरू से ही उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट पर भरोसा किया और इसका असर ये है कि आलिया आज बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेट अभिनेत्रियों की फहरिस्त में काफी ऊंचा मकाम हासिल कर चुकी है।
0: इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नेपो किड्स के सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक मिलने की रवायत नई नहीं है। हालांकि ज्यादातर नेपो किड्स अपने पारिवारिक वटवृक्ष के घने साय में अंकुरित होकर फलते फूलते हैं और उसी साय में फना भी हो जाते हैं, पर कुछ नेपो किड्स ऐसे भी हैं जो मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर अपनी पारिवारिक लिगेसी से निकलकर अलग साम्राज्य स्थापित करते हैं। आलिया भट्ट दूसरी कैटेगरी की नेपो किड हैं। बतौर लीड हीरोइन अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने अगर प्रतिभा नहीं तो जुनून, लगन और मेहनत की तो मुनादी कर ही दी थी। तनुजा चंद्रा के निर्देशन में बनी और 1999 में रिलीज हुई आइकॉनिक मूवी संघर्ष में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू करने वाली आलिया भट्ट को हीरोइन के तौर पर डेब्यू करने का मौका बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के जरिए दिया था। आलिया की उम्र तब महज 18 साल थी, लेकिन उनका फिगर फिल्म के किरदार के लिहाज से फिट नहीं था। ऑडिशन के दौरान करण जौहर ने आलिया के लिए कड़ी शर्त रख दी कि उन्हें अपना वेट लॉस करना होगा। आलिया टीनेज में ही अपने करियर को लेकर कितनी संजीदा थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 3 महीने के भीतर उन्होंने अपना वेट 68 किलो से कम करके 51-52 किलो कर लिया, क्योंकि बचपन से बस एक ही तो सपना था आलिया का, सितारा बनकर सिल्वर स्क्रीन पर चमकने का। इसीलिए शूटिंग के दौरान सेट पर पहली बार जब कैमरा ऑन हुआ तो उनका उत्साह चरम पर पहुंच गया।
1: वो कहते हैं ना, एक्सट्रीम जॉय फीलिंग आता है कि कैमरा के सामने हो, शूटिंग हो रही है, कुछ अच्छा हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, बट यू फील के अंदर से कुछ। इवन दो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाज अ ब्लर, जो पहला गाना जो मेरी लाइफ की पहली दिन थी शूटिंग की, वो राधा के लिए थी। तो एक शॉट था, मेरे को नीचे आना था, टर्न करके ऐसा कुछ करना था, फिर दुपट्टा उठा के कैमरा में देखना था और ब्लोअर फैन आ रहा था, उसी में ही मेरे को ऐसे बहुत मजा आ गया।
0: पहली बार कैमरे के सामने आने के बाद आलिया बेशक उत्साहित थी, लेकिन फिल्म साइन करने के बाद वो फेल्योर के फियर साइकोसिस का शिकार हो गई थी। आलिया को ये डर सताने लगा कि अगर वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाई या फिल्म पिट गई तो आगे करेंगी क्या। पिता महेश भट्ट को जब बेटी के फियर साइकोसिस के बारे में पता चला तो उन्होंने अलहदा तरीके से आलिया को उससे बाहर निकालने की कोशिश की। महेश भट्ट ने बेटी को विशेष फिल्म्स के अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि मन में जो भी डर है, आशंका है, उसका इजहार सबके सामने करो।
1: फॉर सम रीजन माय फादर इज आउटस्टैंडिंग इन अ क्राइसिस सिचुएशन। जब भी आप क्राइसिस में आप उनको फोन करो, ही हैज द मोस्ट काम टोन एंड ही विल डील विद द सिचुएशन इन द बेस्ट वे। इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन उन्होंने डिसाइड किया, ऑफिस आ जाओ, सबके सामने बोलो तुम कैसे फील कर रही हो, जो एक्चुअली एक बहुत अजीब सीक्वेंस सिचुएशन है, क्योंकि आप पहले तो इतना वल्नरेबल फील करो, सबके सामने उठ के बोलना है कि मैं ऐसे फील कर रही हूँ।
0: महेश भट्ट ने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने का कोई मनोवैज्ञानिक अनुभव था, ये तो नहीं बता, लेकिन उनका ये अनोखा फॉर्मूला आलिया के लिए क्लिक जरूर कर गया। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डर का डंका बज जाने के बाद आलिया के अंदर की घुटन कम हो गई। वैसे 19 अक्टूबर 2012 को रिलीज हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर बॉक्स ऑफिस पर तो कामयाब रही, लेकिन आलिया की इमेज बॉर्बी डॉल से कुछ ज्यादा नहीं बन पाई। उधर क्रिटिक्स ने भी आलिया के डेब्यू को महेश भट्ट के प्रभाव से जोड़ दिया। लेकिन फिल्म हिट होने के बाद बड़े पर्दे पर बड़ा मकाम हासिल करने के आलिया के संकल्प के साथ उनका आत्मविश्वास भी जुड़ गया। अगली ही फिल्म हाईवे में अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर आलिया ने क्रिटिक्स को पहले से तय परसेप्शन को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। 21 फरवरी 2014 को रिलीज हुई हाईवे में वीरा त्रिपाठी के डी ग्लैमरस किरदार में बेहतरीन अभिनय का तड़का मारकर आलिया ने उन्हें बॉर्बी डॉल कहने वालों का मुंह बंद कर दिया। दरअसल अभिनय को लेकर आलिया का फलसफा शुरू से ही कन्वेंशनल नहीं बल्कि इंस्टिंक्टिव रहा है।
1: कैमरे के सामने का जो एक फीलिंग होता है ना, उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता है। एट द एंड ऑफ द डे मैं जितना भी चाहे डायलॉग सीख लूँ या कुछ रट्टा मार लूँ, फिजिकल ट्रेनिंग कर लूँ, अपने आप को कमरे में बंद करके मेथड एक्टिंग भी कर लूँ, अगर कैमरे के सामने मुझे फीलिंग नहीं आ रही है तो कैमरा पकड़ लेगा और मेरी परफॉर्मेंस जो है उसमें दिख जाएगी। तो तैयारी जारी रहती है फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं कैमरे के सामने सिर्फ फील करने की कोशिश करती हूँ।
0: हाईवे के बाद आलिया ने इंडस्ट्री में मुनादी कर दी कि मीना कुमारी और मधुबाला की खींची हुई अदाकारी की लीक इस युग में भी मिटी नहीं है। 2016 में आई उड़ता पंजाब के बाद तो क्रिटिक्स ने भी स्वीकार कर लिया कि आलिया की अदाकारी किसी एक जोनर तक महदूद नहीं है। उड़ता पंजाब के एक मैले कुचैले भोजपुरी लड़की के किरदार में आलिया ऐसे गुम हो गई कि पहचानना मुश्किल हो गया कि ये वही राधा हैं जिसने डिस्को दीवाने पर ठुमके लगाए थे। उड़ता पंजाब के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। ...2018 में आई राजी में एक कश्मीरी जासूस के किरदार में आलिया ने अपने अभिनय से इतनी जान फूंक दी कि 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाली कुछ एक महिला प्रधान फिल्मों में शुमार हो गई। वहीं 2019 में आई गली बॉय में सफीना के किरदार को आलिया ने अपनी एक्टिंग से जीवंत कर दिया। गली बुआए में नारी को प्रकृति से सहज प्राप्त कोमलता और जरूरत पड़ने पर प्रकट होने वाली आक्रामकता के मिश्रण को आलिया ने इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद तो आलिया बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइनों की फेहरिस्त में शुमार हो गईं। 25 फरवरी 2022 को रिलीज हुई गंगूबाई काठियावाड़ी आलिया के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में आलिया ने एक वेश्यालय की मालकिन और माफिया क्वीन के चुनौतीपूर्ण किरदार को सहजता के आईने में उतार कर सबको हतप्रभ कर दिया। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया को सबसे प्रेस्टीजियस माने जाने वाले नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया।
3: गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं अभिनेत्री आलिया भट्ट।
0: 2022 आलिया के लिए बहुत इवेंटफुल साल साबित हुआ। साल 2022 में कोरोना की मार से पस्त हो चुकी फिल्म इंडस्ट्री दोबारा उठ खड़े होने की जद्दोजहद कर रही थी और इसी साल आलिया की गंगूबाई काठियावाड़ी के अलावा RRR और ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 जैसी फिल्में रिलीज हुईं। 2022 में ही उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर किस्मत आजमाई और डार्लिंग्स प्रोड्यूस की, जो OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और सफल भी रही। 2023 में आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और 2024 में आई जिगरा ने भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया। इसी साल 10 जुलाई को आलिया की अल्फा रिलीज होने वाली है। साल 2027 में आलिया संजय लीला भंसाली के एक और शाहकार लव एंड वार में भी नजर आने वाली हैं। साफ है कि आलिया बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट अभिनेत्रियों की सूची में शुमार हो चुकी हैं। आज आलिया अपनी एक फिल्म के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस लेती हैं।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने आलिया भट्ट के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: Most tech programs teach theory. WGU teaches what gets you hired. Get industry certs with your degree, work on real-world projects, and develop skills employers actually want. Career ready by design. That's the WGU difference. Learn more at WGU.edu.
5: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan this on this station. Up. Ready to find your flow?
6: It's your boy,
5: just
6: Jay-Z.
5: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: और अब जब बात फिल्मों की हो रही है तो रोहित शेट्टी की गोलमाल 5 का भी जिक्र कर लेते हैं, जिसकी शूटिंग जारी है। रोहित की इस फिल्म में अजय देवगन समेत पुरानी स्टार कास्ट है, लेकिन इस बार फिल्म में लगने वाला है कॉमेडी का मास्टर स्ट्रोक वाला तड़का, क्योंकि गोलमाल 5 में इस बार अक्षय कुमार भी दिखेंगे। जहां अक्षय की एंट्री से फिल्म का सुपरहिट होना तय माना जा रहा है, वहीं इस फिल्म में अक्षय की फीस भी चर्चाओं का विषय बनी हुई है।

0: रोहित शेट्टी की गोलमाल फ्रेंचाइजी का नाम ही कॉमेडी की गारंटी है। दर्शकों को सालों से लोटपोट करने वाली गोलमाल की टीम एक बार फिर धमाल मचाने के लिए तैयार है। गोलमाल 5 को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बस बना हुआ है, लेकिन इस बार का धमाका डबल होने वाला है, क्योंकि फिल्म में एंट्री हो चुकी है कॉमेडी के किंग अक्षय कुमार की। जब रोहित शेट्टी की कॉमेडी और अक्षय कुमार की टाइमिंग एक साथ मिलेगी तो स्क्रीन पर आग लगना तो तय है। ऐसे में फैंस फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अक्षय के इस फिल्म से जुड़ने से ये और ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है। इन सब के बीच अब गोलमाल 5 से अक्षय कुमार की फीस की भी खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि अक्षय ने इस फिल्म में अजय देवगन से ज्यादा फीस वसूली है, यानी इस धमाके के लिए मेकर्स की जेब अच्छी खासी ढीली हुई है। खबरों की माने तो अक्षय कुमार ने इस फिल्म के लिए इतनी भारी भरकम फीस ली है कि ट्रेड पंडितों के भी कान खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार ने गोलमाल 5 की 18 से 22 दिनों की शूटिंग की है, जिसके लिए उन्होंने अजय देवगन से कहीं ज्यादा फीस वसूली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार को अपने रोल के लिए 35 से 40 करोड़ मिले हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि पूरी फिल्म में दिखने वाले अजय देवगन से ज्यादा फीस सिर्फ 20 दिनों की शूटिंग करने वाले अक्षय कुमार को क्यों मिल रही है। तो जनाब, इसे कहते हैं स्टार पावर और स्पेशल रोल का जलवा। दरअसल माना जा रहा है कि फिल्म में अक्षय कुमार का रोल भले ही छोटा हो, लेकिन वो पूरी कहानी का टर्निंग प्वाइंट है। यानी जितने समय भी अक्षय स्क्रीन पर रहेंगे, दर्शकों को हंसते हंसते पेट फुलाने पर मजबूर कर देंगे। वैसे भी रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, दोनों जब भी मिलते हैं कॉमेडी का तड़का तो लगता ही है, साथ में बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश की भी गारंटी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
3: It's your boy,
2: just
3: Jay-Z.
2: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: शनि अमावस्या के पावन दिन अयोध्या में उमड़ा आस्था का मेला, मां सरयू की हुई विशेष आरती, वैदिक मंत्रोच्चार से गूंजा नया घाट। महाराष्ट्र के अकोला में धूमधाम से मनाई गई शनि जयंती, प्राचीन मंदिर में काटा गया 11 किलो का कलाकंद केक, भजन कीर्तन और सुंदरकांड का पाठ। गुजरात के वड़ताल धाम में लगाया गया 500 किलो आम का भोग, केसर आम की खुशबू से महका स्वामीनारायण मंदिर का गर्भगृह, गर्मी को देखते हुए लगाया गया भोग। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं का भजन कीर्तन, अब तक करीब 2.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। भीषण गर्मी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जंगल सफारी में बेजुबानों के लिए खास इंतजाम, खास डाइट प्लान का हो रहा पालन, एसी पंखा और कूलर की व्यवस्था।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: रक्षा क्षेत्र में भारत हर दिन एक नया अध्याय लिख रहा है। स्वदेशी तकनीक के जरिए ऐसे ऐसे कीर्तिमान रचे जा रहे हैं जो दुनिया को बहुत चक्का कर रहे हैं। मिसाइल से लेकर युद्धपोत तक और फाइटर जेट से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक सब कुछ देश में ही तैयार हो रहा है और वो भी वर्ल्ड क्लास। जो तकनीक और ताकत दुनिया के चंद देशों की जागीर मानी जाती थी, उस टेक्नोलॉजी पर अब भारत का दबदबा है। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए, ये कोई साधारण तस्वीर नहीं है बल्कि डिफेंस सेक्टर में भारत के बढ़ते रुतबे को दुनिया के सामने रख रही है। यह तस्वीर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम का नया अध्याय है जो भविष्य के सुपर हिंदुस्तान का रास्ता तैयार कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। दरअसल डीआरडीओ और डीआरडीएल ने मिलकर इस मिसाइल के एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का 20 मिनट तक सफल परीक्षण किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एक्टिव कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए जरूरी एक्सट्रीम टेम्परेचर को सहने की इंजन क्षमता साबित हुई है। हैदराबाद स्थित डीआरडीएल यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में स्क्रैमजेट कंबस्टर का परीक्षण किया गया, जो कि 20 मिनट से ज्यादा समय तक चला। इस टेस्ट की सबसे बड़ी बात यह रही कि इसमें एक्टिव कूलिंग, थर्मल बैरियर कोटिंग और इंडिजिनस फ्यूल जैसी जटिल तकनीकें भारत ने खुद विकसित की हैं। इस टेस्ट के जरिए अत्यधिक तापमान और दबाव की स्थिति में सुपरसोनिक इंजन से निकलने वाली गर्मी को कंट्रोल करने की क्षमता को जांचा गया।
1: ये पिछले बार के वर्जन से इम्प्रूव्ड वर्जन है। पिछले बार इन्होंने 700 सेकेंड पे किया था, इस बार 1200 सेकेंड पे, तो टाइमिंग बढ़ी है। तो कहने का मतलब ये कि जो इंडिजिनसली डेवलप आपका फ्यूल है, लिक्विड हाइड्रोकार्बन फ्यूल, और उसका जो एडवांस थर्मल बैरियर कोटिंग है वो आले दर्जे का, वो ज्यादा देर तक विस्टैंड कर सकता हूं। कहने का मतलब ये कि जब आप इस तरीके की मिसाइल डेवलप करते हैं स्क्रैमजेट इंजन द्वारा, तो आपको एक फ्यूल और आपको उसका कंबशन सिस्टम पे ज्यादा ध्यान होता है, जो कि इस बार 1200 सेकेंड तक वो उसको इसकी स्टेबिलिटी चेक की गई है।

0: हाइपरसोनिक स्पीड पर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, जिससे इंजन पिघल सकता है। 20 मिनट से ज्यादा समय तक इंजन का सफलतापूर्वक चलना ये साबित करता है कि भारत ने एक्टिव कूलिंग तकनीक में महारत हासिल कर ली है। अब स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन से मिसाइल को मैक 5 से ज्यादा की रफ्तार मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि आवाज की स्पीड से 5 गुना तेज यानी कि करीब 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्रचंड रफ्तार से दुश्मन पर प्रहार।
1: देखिए, हिंदुस्तान ने जब हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप किया विद स्क्रैमजेट इंजन के साथ, तो ये दिखाता है कि अगर ये मिसाइल 5 मैक से ज्यादा स्पीड हासिल करती है, इसका मतलब हुआ कि 6175 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में इतना डिस्टेंस जाएगा, तो पाकिस्तान का कोई भी टारगेट विद इन 20-30 मिनट्स के अंदर एंगेज कर लिया जाएगा। और इसी तरह चाइना का भी काफी बड़ा इलाका इसके कवरेज एरिया में आता है, तो एक स्ट्रेटजिक एज हिंदुस्तान को देता है और साथ में इंडिजिनसली डेवलप्ड है, तो हमें किसी बाहर के कंट्री पे भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है।
0: स्क्रैमजेट की सफलता से भारत, अमेरिका, रूस और चीन के साथ उन चुनिंदा देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया है जो स्क्रैमजेट तकनीक में मैक 5 से ज्यादा स्पीड वाली मिसाइलें विकसित कर रहे हैं।

0: सबसे पहले इंडिजिनस स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी, उसमें जो हमने उसका फ्यूल इस्तेमाल किया, जो हाइड्रो कार्बन फ्यूल है, वो इंडिजिनसली डेवलप किया गया। ये फ्यूल का ही एक है कि उसका जो बर्निंग है, जो उसकी जो कंबशन सिस्टम है, वो कैसे डेवलप किया जाए, कैसे आप इतनी हीट या एनर्जी डेवलप करें जिससे कि मिसाइल को वो 5 मैक की स्पीड से प्रोपेल कर सके। और साथ में उसमें इस तरीके की कोटिंग की जाती है, सेरेमिक कोटिंग की जाती है, कि जिससे वो उस हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सके। तो कहने का मतलब ये कि जब ये विकसित हुआ है, तो ये काफी लगन, काफी एफर्ट, काफी ट्रायल के बाद इसको विकसित किया गया है। और जब यह स्वदेशी हो जाता है, तो इसमें हमें किसी और फॉरेन कंट्री पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं होती।
1: डीआरडीओ का नया टेस्ट भारत की सैन्य ताकत और एशिया का शक्ति संतुलन बदल सकता है। इसका सबसे बड़ा असर हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दिखाई देगा। चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। ऐसे में लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल भारत के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकती है। हाल ही में डीआरडीओ ने 1500 किलोमीटर रेंज वाली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल समुद्र में दुश्मन के बड़े युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना सकती है। इसका मतलब साफ है कि अगर हिंद महासागर में किसी भी दुश्मन नौसेना ने दबाव बनाने की कोशिश भी की, तो भारत अब हजारों किलोमीटर दूर से तेज और सटीक हमला करने की क्षमता की तरफ बढ़ रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि वो बेहद तेज रफ्तार के साथ उड़ान के दौरान दिशा बदल सकती हैं। इससे दुश्मन के रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए उन्हें ट्रैक करना आसान नहीं होता। मैक 5 से ज्यादा रफ्तार वाली मिसाइल तैयार होने से चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की स्ट्राइक क्षमता और रणनीतिक ताकत कई गुना बढ़ सकती है। साल 2025 में डीआरडीओ ने छोटी अवधि के स्क्रैमजेट टेस्ट किए थे, लेकिन अब दूसरी बार जब फुल स्केल कंबस्टर का टेस्ट किया गया तो 20 मिनट से ज्यादा चला। इससे पहले डीआरडीओ ने 9 जनवरी 2026 को भी हैदराबाद में फुल स्केल एक्टिवली कूल स्क्रैमजेट कंबस्टर का 12 मिनट से ज्यादा का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक किया था, जो ये बताता है कि भारत अब अपने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ब्रह्मोस 2 मिसाइल के डिजाइन के लिए दूसरे देशों की तरफ नहीं देखेगा, बल्कि अब देश में ही उसे तैयार किया जाएगा। मौजूदा

0: ईरान से भी है। लेकिन अगर चीन की बात की जाए तो चीन हथियारों की दौड़ में बहुत तेजी से आगे भाग रहा है। चीन अपने पास एआई तकनीक से लैस तमाम हथियारों को विकसित कर रहा है, साथ ही साथ हाइपरसोनिक तकनीक में भी वो आगे बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत भी इस तकनीक में महारत हासिल करे और अपने बेड़े में हाइपरसोनिक हथियारों को भी शामिल करे। हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा स्पीड से चलती है। इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है जिससे उसको ताकत मिलती है। अब स्क्रैमजेट इंजन क्या है और कैसे काम करता है इसे भी जान लीजिए। स्क्रैमजेट एक खास तरह का एयर ब्रीदिंग इंजन है। इसे शुरू करने के लिए रॉकेट बूस्टर की जरूरत होती है। स्क्रैमजेट में ईंधन के दहन के लिए वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिए इसी स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। स्क्रैमजेट से फायदा ये होगा कि इसका इस्तेमाल कम लागत में उपग्रहों के प्रक्षेपण में भी किया जा सकेगा। वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने से स्क्रैमजेट इंजन हल्का, ज्यादा तेज और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम माना जाता है।
1: जब ये इंजन एयर में जाता है तो इतनी हाई स्पीड से होता है तो जो एटमॉस्फेयर में एयर होता है उसको इस स्पीड पे कंप्रेस करता है और उसका लगातार ये सप्लाई जारी रहती है जिससे वो फ्यूल से रिएक्ट करके हीट जनरेट करता है। तो और ये लगातार होना चाहिए। अगर इसमें कोई बाधा है या अनइवन बर्निंग है, अनइवन हीट जनरेशन है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। तो एक स्पीड पे कंप्रेस एयर को फ्यूल के साथ मिक्स करके एनर्जी डेवलप करना और लगातार ये जारी रखना।
0: भविष्य में ये तकनीक ब्रह्मोस 2 में इस्तेमाल होगी जो भारत रूस का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ब्रह्मोस 2 मैक्स 7 से 8 स्पीड वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी जिसकी रेंज 600 किलोमीटर होने का अनुमान है। डीआरडीओ का लक्ष्य है कि साल 2028 तक ऐसी मिसाइल को पूरी तरह से विकसित कर लिया जाए। मिसाइलों को ठोस या तरल ईंधन से चलने वाले रॉकेट या जेट इंजन द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। कुछ मिसाइलों में जैसे कि ब्रह्मोस में रामजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है जो सुपरसोनिक रफ्तार हासिल करने के लिए हवा को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। वहीं हाइपरसोनिक मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। भारत का लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल प्रोग्राम अब अपने एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है और जल्दी ही शुरुआती परीक्षण होने की उम्मीद है। हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत ने कहा था, भारत हाइपरसोनिक ग्लाइड और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है जिसमें ग्लाइड संस्करण मौजूदा समय में विकास के मामले में आगे है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन होता है और उड़ान के दौरान इसे ऊर्जा मिलती है। हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल शुरुआती रफ्तार हासिल करने के लिए बूस्टर का इस्तेमाल करती है और फिर बिना किसी ऊर्जा के ग्लाइड करती है। मिसाइल में 2 स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। पहले चरण के खत्म होते ही वो अलग हो जाती है जबकि दूसरा चरण मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंचाता है। इसके बाद मिसाइल बिना इंजन के ग्लाइड फेज में एंट्री करती है और टारगेट तक पहुंचने से पहले कई रणनीतिक मूवमेंट करती है।
1: देखिए मिसाइल्स में जो दो टू स्टेज रॉकेट होते हैं, प्रोपल्शन होता है, उसमें एक इनिशियल फेज का होता है और एक सब्सिक्वेंट फेज का होता है। इनिशियल फेज का काम होता है वो हीट, वो एनर्जी, वो थ्रस्ट डेवलप करना जिससे कि मिसाइल को लॉन्च किया जा सके, लिफ्ट दिया जा सके एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में। और जब ये काम हो जाता है तब वो मोटर काम करना बंद कर देता है, तब सेकेंड स्टेज का मोटर काम करता है जो अगेन उस वेलोसिटी को मेंटेन करता है, एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक ऑर्बिट में मिसाइल को डालता है और लगातार उस पे सस्टेन प्रेशर क्रिएट करता है जिससे कि उसकी वेलोसिटी बन सके।
0: आज दुनिया के कई देश अपनी मिसाइल क्षमता को धार देने में जुटे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है मिसाइल ही एक ऐसा हथियार है जो हर तरह के युद्ध क्षेत्र में कामयाब है, चाहे लड़ाई जमीन पर हो, आसमान पर या फिर अंतरिक्ष में। मिसाइल हर मोर्चे पर कारगर है। एक मिसाइल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो दुश्मन के टारगेट पर आए बिना अपने टारगेट को ध्वस्त कर दे। हालांकि इसमें अत्याधुनिक रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम रोड़ा जरूर अटकाते हैं और इसीलिए यहीं से हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर सोच शुरू हुई जिसको लेकर काम चल रहा है। आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है और ये दुनिया के लिए चिंता का विषय क्यों बन गया, ये

0: समझने की जरूरत है। हाइपरसोनिक हथियार आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज रफ्तार से चलते हैं और अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि हाइपरसोनिक वेपन की रफ्तार ही उसकी ताकत है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल भी आवाज की रफ्तार से तेज चलती है। ऐसे में हाइपरसोनिक वेपन की असली ताकत क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। हाइपरसोनिक मिसाइल को एक व्हीकल तेजी से अंतरिक्ष की तरफ ले जाता है, जिसके बाद वो ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ती है। ये इतनी तेजी से अपना रास्ता बदलती है कि किसी भी देश का एंटी मिसाइल सिस्टम इसे ट्रैक नहीं कर पाता और ये अपने टारगेट को आसानी से ध्वस्त कर सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल को जब एक जगह से लॉन्च किया जाता है तो पता चल जाता है कि उसका टारगेट कहाँ है और वो किसे निशाने पर लेगी। ऐसे में इन मिसाइलों को ट्रैक करना आसान होता है। इसके साथ ही लॉन्चिंग के साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलों की दिशा में बदलाव नहीं किया जा सकता। वहीं लॉन्चिंग के साथ हाइपरसोनिक मिसाइलों की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है।
1: ये हाइपरसोनिक मिसाइल या जो वेपन है उनका जो ग्रेडिंग है वो एनी एरियल ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा है, जैसा कि मैंने बताया 6175 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो अगर इसकी स्पीड ज्यादा होती है वो हाइपरसोनिक कैटेगरी में आता है। जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा है उसको रडार कैसे डिटेक्ट करेगा, चाहे रडार किसी भी प्रिंसिपल पे काम कर रहा हो, चाहे डॉपलर पे काम कर रहा हो या अन्य प्रिंसिपल पे काम कर रहा हो, बाई द टाइम पल्स उसको जाके हिट करके वापस आती तब तक वो मिसाइल आगे निकल चुका होता है। एक स्पीड, दूसरा लो हाइट या हाई हाइट, इसमें कोई रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। इस वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल ने लड़ाई लड़ने की विधा में टोटल तब्दीली कर दी।
0: हाइपरसोनिक हथियार सबसोनिक मिसाइलों से कहीं तेज रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इनकी रफ्तार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से बेहद कम होती है। हाइपरसोनिक हथियार सिस्टम 2 तरह के होते हैं, पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और दूसरा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जिस तरह एक सर्फर समंदर की लहरों पर ग्लाइड करता है, ठीक उसी तरह से हाइपरसोनिक हथियार हवा में ग्लाइड करते हैं, जिससे इसे रोकना आसान नहीं होता। हाइपरसोनिक हथियार की एक और खासियत होती है कि ये कम ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकते हैं।
2: मौजूदा समय में तमाम देशों का फोकस ग्लाइड व्हीकल्स पर है। दरअसल ग्लाइड व्हीकल एक नई तकनीक है। ग्लाइड व्हीकल के साथ एक मिसाइल लगाई जाती है जो कि एक टारगेट पर जाकर ग्लाइड व्हीकल से अलग हो जाती है, जिसके बाद वो टारगेट की तरफ सीधा ग्लाइड करते हुए फोकस करती है और उसे ध्वस्त करके ही दब लेती है।
0: हाइपरसोनिक हथियार बनाने की दिशा में भारत अपना कदम आगे बढ़ा चुका है। HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के परीक्षण की शुरुआत हो चुकी है। 27 जनवरी 2023 को DRDO ने HSTDV परीक्षण किया था, जो सफल रहा।

0: साल 2020 में भारत ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड का टेस्ट किया था, जिसमें महज 20 सेकंड में 7500 किलोमीटर के टारगेट को पूरा किया गया था। हालांकि भारत इस तकनीक में पिछले कई सालों से लगातार लगा हुआ है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल को लॉन्च कर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि ऐसी कोई रफ्तार नहीं जहां उसकी पहुंच नहीं। हाइपरसोनिक व्हीकल का ट्रायल एक ऐसी कामयाबी है जो हिंदुस्तान की ताकत में कई गुना इजाफा करेगी। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल 6000 से 12000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये 20 सेकंड में मैक 6 की रफ्तार और 32.5 किलोमीटर ऊंचाई तय करने में सक्षम है। HSTDV के परीक्षण के बाद भारत के रक्षा क्षेत्र को और अधिक मजबूती मिलेगी, क्योंकि इसके साथ ही भारत अब उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सक्षम है। दुनिया बदल रही है, युद्ध बदल रहे हैं, युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं, रण क्षेत्र की रणनीतियां बदल रही हैं, और इसी के तहत अब आने वाले समय में युद्ध AI और हाइपरसोनिक तकनीक के साथ लड़े जाएंगे। भारत ने भी खुद को इसी क्षेत्र में तैयार किया है और ऐसा ही एक परीक्षण हाल फिलहाल में भारत ने किया, जिसके बाद पूरी दुनिया का ध्यान भारत ने अपनी ओर खींचा।
1: बीते कुछ वर्षों से दुनिया का माहौल जिस तरीके से बदला है, उसे देखते हुए भारतीय सेना कंप्लीट चेंज के मोड में है। बदलते सुरक्षा हालात को देखते हुए सेना खुद को नए समय के मुताबिक तैयार कर रही है, जिसमें छोटे से छोटे हथियार तक को धार दी जा रही है। इसी कड़ी में भारत ने स्वदेशी ग्लाइड वेपन तारा का पहला सफल परीक्षण किया। तारा का पूरा नाम है टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन। ये भारत का पहला स्वदेशी मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है। आसान भाषा में समझा जाए तो तारा एक ऐसा सिस्टम है जो किसी साधारण बम को स्मार्ट ग्लाइड बम में तब्दील कर देता है।
0: आमतौर पर जो अनगाइडेड बम होते हैं, उसे एक अंदाजे से टारगेट के ऊपर गिराया जाता है और इसके लिए विमान को टारगेट के करीब जाना पड़ता है और फिर उसके बाद ये टारगेट की ओर गिराया जाता है। वहीं अगर हम गाइडेड बम की बात करें तो इससे दूर रहकर भी दुश्मन के ठिकाने को निशाने पर लिया जा सकता है।
1: तारा ग्लाइड वेपन किट से न सिर्फ हथियार की रेंज में बढ़ोतरी होती है बल्कि सटीकता भी सुनिश्चित होती है। फाइटर जेट से छोड़े जाने के बाद ये सिस्टम एरोडायनामिक लिफ्ट और गाइडेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके एक आम फ्री फॉल बम के मुकाबले कहीं ज्यादा दूरी तय करता है, साथ ही हमले की सटीकता को भी बेहतर बनाता है।
2: तारा है, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, जितने हमारे डंप बॉम्ब है या जो ग्रेविटी बॉम्ब है उसमें इसको फिट कर दिया जाता है। इसमें विंग्स होते हैं, इसमें सेंसर होते हैं। कहने का मतलब यह है कि डंप बॉम्ब को कैसे स्मार्ट वेपन में कन्वर्ट किया जा सकता है। स्मार्ट का मतलब जो सेंसर के डायरेक्शन ले सके, जिसकी फ्लाइट मैनिपुलेट किया जा सके, जो प्रिसीजन स्ट्राइक कर सके और जिसको फ्लाइट के दौरान मैनिपुलेट करके सही टारगेट पे या टारगेट स्विचिंग किया जा सके। तो ये सारी सुविधाएं जो है तारा के थ्रू अचीव की जा सकती है।
1: स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा का ये परीक्षण बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि तारा भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करेगा जो अपने पुराने बमों को सटीक और दूर मार करने वाले हथियार में बदल सकते हैं।
0: तारा असल में एक मॉड्यूलर ग्लाइड किट है। आसान भाषा में अगर इसको समझना तो उसे कहेंगे कि हवाई जहाज से गिराए जाने वाले अनगाइडेड बमों के साथ लगाई जाने वाली किट, जिसका सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि ये सही और सटीक निशाना लगा पाएगी।
1: ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा में विंग्स, कंट्रोल सरफेस और एक बेहतरीन गाइडेंस पैकेज लगाया जाता है। इससे पुराने बम हवा में लंबी दूरी तक ग्लाइड करके जा सकते हैं और बेहद सटीक निशाना लगा सकते हैं। तारा में हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इनर्शियल नेविगेशन और सैटेलाइट गाइडेंस दोनों शामिल हैं। इससे सटीकता बहुत ज्यादा रहती है। विदेशी सिस्टम की तुलना में तारा ग्लाइड वेपन सिस्टम बेहद सस्ता भी है। इससे वायुसेना के पास पड़े लाखों पुराने बमों को आधुनिक हथियारों में बदला जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि किन किन देशों के पास ये तकनीक है। अमेरिका के पास JDM और JSOW है। ये साधारण अनगाइडेड बमों को ट्रिशियस गाइडेड बम में तब्दील करते हैं। रूस के पास यूएमपी की ग्लाइड बम किट है जो उसने यूक्रेन युद्ध में अपने साधारण बमों को ग्लाइड करने के लिए इस्तेमाल किया था। इसराइल के पास स्पाइस 250 और स्पाइस 2000 जैसे बम प्रणालियां हैं। इनमें एआई पर आधारित इलेक्ट्रो ऑप्टिकल होमिंग सीकर लगा है। भारत ने इसराइल से ये किट खरीदी है। फ्रांस के पास एएसएम हैमर रॉकेट बूस्टर है। वहीं तुर्की के पास एचजीके किट है जो तारा की तरह ही काम करती है। इंडियन एयरफोर्स के लिए तारा जैसे सिस्टम भविष्य में कुछ ऐसे स्ट्राइक मिशनों के लिए एक सस्ता विकल्प साबित हो सकते हैं जिनके लिए महंगी क्रूज मिसाइलों या उन्नत स्टैंड ऑफ हथियारों की जरूरत नहीं होती। स्टैंड ऑफ वो हथियार होते हैं जिन्हें काफी दूर से दुश्मन की नजर से दूर रहकर दागा जाता है। इन्हें बियॉन्ड विजुअल रेंज हथियार भी कहा जाता है। तारा से फायदा ये होगा कि फाइटर जेट से दागे जाने वाले किसी भी बम को बीवीआर वेपन में तब्दील कर देगा। तारा को हम एक तरह से आत्मनिर्भर भारत की पहचान भी कह सकते हैं क्योंकि पूरी तरह से भारत में ही विकसित सिस्टम है। पहले इस तरह के सिस्टम्स के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन अब भारत ने खुद का अपना सिस्टम तैयार किया है जो कि हमारी वायुसेना को और ज्यादा ताकत देगा और सही निशाना लगाने की क्षमता देगा।

0: रणक्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: सिर्फ बद्रीनाथ धाम ही नहीं बल्कि केदारनाथ धाम समेत पूरे चार धाम यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। एक तरफ भक्तों की आस्था हिलोरे मार रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार और प्रशासन यात्राओं को सुरक्षित और सुचारू बनाने में जुटे हुए हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग, मेडिकल टीम, पुलिस और राहत दल लगातार तैनात है। भक्ति और आस्था से सराबोर उत्तराखंड इन दिनों आध्यात्मिक ऊर्जा से गूंज रहा है।

0: आस्था का सैलाब, पहाड़ों पर उमड़ता विश्वास और हर दिन बनता नया इतिहास। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा इस बार रिकॉर्ड रफ्तार से आगे बढ़ रही है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भक्तों का उत्साह चरम पर है। पहाड़ों की कठिन राह भी श्रद्धा के आगे छोटी पड़ रही है। सरकार सुरक्षा, सुविधा और व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत बना रही है ताकि हर यात्री का सफर सुरक्षित और आसान बने। चारधाम यात्रा अब नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। चारों धामों में सुबह से लेकर देर शाम तक दर्शन के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले लोग बाबा केदार, बद्री विशाल, माँ गंगा और माँ यमुना के दर्शन कर खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। यात्रा शुरू होने के बाद से लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक चार धाम में दर्शन करने वालों का आंकड़ा 12,60,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं बद्रीनाथ धाम में आने वाले भक्तों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। सबसे ज्यादा उत्साह केदारनाथ यात्रा को लेकर देखा जा रहा है। ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और कठिन रास्ते भी लोगों के कदम नहीं रोक पा रहे। हर उम्र के लोग बाबा केदार के दर्शन के लिए पैदल मार्ग पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार भी पूरी तैयारी के साथ यात्रा संचालन में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि मौसम खराब होने की स्थिति में हर यात्री की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम तेजी से बदलता है, इसी वजह से प्रशासन ने विशेष निगरानी तंत्र तैयार किया है। रियल टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। भीड़ नियंत्रण और स्लॉट मैनेजमेंट को भी प्रभावी बनाया गया है ताकि किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। रास्तों में मेडिकल टीम, पुलिस बल, आपदा राहत दल और हेल्थ सेंटर लगातार तैनात हैं। घोड़ों, पालकियों और हेलीकॉप्टर सेवाओं की व्यवस्था भी सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। यात्रा मार्ग पर सफाई और स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी विशेष फोकस किया गया है। पहाड़ों में गूंजते जयकारे श्रद्धा से भरे चेहरे बता रहे हैं कि इस बार की यात्रा खास है।
1: जयकारे!

0: भक्ति और विश्वास का यही संगम उत्तराखंड को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: Good news today.
1: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
4: शनि अमावस्या के पावन दिन अयोध्या में उमड़ा आस्था का मेला, मां सरयू की हुई विशेष आरती, वैदिक मंत्रोच्चार से गूंजा नया घाट। महाराष्ट्र के अकोला में धूमधाम से मनाई गई शनि जयंती, प्राचीन मंदिर में काटा गया 11 किलो का कलाकंद केक, भजन कीर्तन और सुंदरकांड का पाठ। गुजरात के वड़ताल धाम में लगाया गया 500 किलो आम का भोग, केसर आम की खुशबू से महका स्वामीनारायण मंदिर का गर्भगृह, गर्मी को देखते हुए लगाया गया भोग। देवभूमि में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं का भजन कीर्तन, अब तक करीब 2.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। भीषण गर्मी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जंगल सफारी में बेजुबानों के लिए खास इंतजाम, खास डाइट प्लान का हो रहा पालन, एसी पंखा और कूलर की व्यवस्था।

अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत के जीवन का विलक्षण वृत्तांत लेकर हम हाजिर हुए हैं वो कान फिल्म फेस्टिवल में अपने एलिगेंट लुक से आम लोगों के साथ ही सेलेब्स का भी दिल जीत रही है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइंस में से शुमार आलिया भट्ट हैं। जी हाँ, आपको बता दें, आलिया इन दिनों कान फिल्म फेस्टिवल में अपने दिलकश लुक और अदाओं का जलवा बिखेर रही हैं। ये वही आलिया है जो कि सोशल मीडिया पर कभी जिनके मीम्स की भरमार रहा करती थी। एक समय आलिया की ट्रोलिंग नेटिजन्स का स्ट्रगल बन गया था। हालांकि सोशल मीडिया पर आलिया का जो परसेप्शन बना, आलिया की हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। आलिया की प्रतिभा की गहराई को वही समझ सकता है जो कि शिद्दत से उनकी जिंदगी में उतरने की कोशिश करेगा। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगी कि आलिया को एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से कभी कभी वो जोन आउट हो जाती है और ट्रोलर्स उसी मोमेंट को पकड़ लेते हैं।

परसेप्शन और रियलिटी के बीच धूप छांव वाला रिश्ता काफी पुराना है। परसेप्शन कई बार रियलिटी के बहुत करीब होता है और कई बार रियलिटी परसेप्शन से कोसों दूर होती है। कान फिल्म फेस्टिवल में अपने फैबुलस और किलर लुक से धूम मचा रही आलिया भट्ट परसेप्शन और रियलिटी के बीच की अजीबो गरीब रिश्ते की अनूठी दास्तान है। बीते 12 मई को कान ओपनिंग सेरेमनी के रेड कार्पेट में कस्टम तमारा राल्फ गाउन में दुनिया भर के सेलेब्स के आकर्षण का केंद्र बनी आलिया इस प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल में लोरियल पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर के तौर पर पहुंची हैं। आलिया कान के हर इवेंट में अलग अलग अट्रैक्टिव आउटफिट में नजर आ रही हैं और अपने ओवरऑल सेंसिबल और एलिगेंट लुक से सेलेब्स की भी सेलिब्रिटी बनी हुई हैं। 14 मई को आलिया भट्ट ने लॉरियल पेरिस गाला डिनर के दौरान फ्लोरल ब्रोकेड आउटफिट में आकर सबका दिल जीत लिया। डिनर में डस्टी रोज और एंटीक टोन वाले फ्लोरल ब्रोकेट कॉर्सेट और मैचिंग फिटेड स्कर्ट में आलिया गजब की अट्रैक्टिव लग रही थी। कान फिल्म फेस्टिवल 2026 में चर्चा का केंद्र बनी ये वही आलिया हैं सोशल मीडिया पर जिनकी इमेज कभी अनइन्फॉर्म्ड और इग्नोरेंट यूथ की बन गई थी।

0: एक समय सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आलिया भट्ट के मीम्स से भरे रहते थे। आलम ये था कि किसी ने तथ्यात्मक रूप से कोई गलत बयानी की तो सोशल मीडिया पर तुरंत उसकी तुलना आलिया भट्ट से कर दी जाती थी। बहरहाल ये आलिया के बारे में सोशल मीडिया यूजर्स या नेटिजन्स का अपना परसेप्शन था। आलिया की रियलिटी नेटिजन्स के परसेप्शन से कोसों दूर है। आपको बता दें कि आलिया को लेकर इस तरह का सोशल मीडिया परसेप्शन इसलिए बन गया था क्योंकि एक बार उन्होंने देश के राष्ट्रपति का नाम गलत बता दिया था। दरअसल बतौर लीड एक्ट्रेस 2012 में आई अपनी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के प्रमोशन के लिए आलिया करण जौहर के शो कॉफी विद करण में अपने को स्टार्स वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ पहुंची थी। करण ने लाइटर मोड में आलिया से भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया और आलिया ने उत्साह में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का नाम बता दिया था, जबकि उस समय देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे।
1: Who is the president of India?
0: आलिया की जिंदगी की गहराई में उतरे बगैर, पूरी सच्चाई जाने बगैर नेटिजन्स ने ये मान लिया कि आलिया का आईक्यू लेवल बेहद लो है और सामान्य ज्ञान तो शून्य है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है कि आलिया भट्ट अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी ADHD नामक एक रेयर डिजीज से पीड़ित है, जिसका पेशेंट कभी कभी जोन आउट हो जाता है। जोन आउट का मतलब ये है कि पेशेंट फिजिकली कहीं और होता है लेकिन उसका दिमाग अचानक किसी दूसरे जोनर में चला जाता है।
2: मैं बचपन से जोन आउट करते आई हूँ, हमेशा क्लासरूम में भी जोन आउट होती थी, कॉन्वर्जेशंस में जोन आउट होती हूँ। तब रिसेंटली मैंने एक पर्सनालिटी जो भी क्या होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और मुझे पता चला कि मैं ADHD के स्पेक्ट्रम में काफ़ी हाई हूँ। मुझे ADHD है, तो अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर।
0: आपको बता दें कि ADHD डिजीज का IQ लेवल से कोई रिलेशन नहीं है। काफी हाई IQ वाले लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है। होता यही है कि कभी कभी इसका पेशेंट जोन आउट हो जाता है और उस दौरान कोई ऐसा बयान दे सकता है या ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकता है जिससे उसके IQ लेवल पर सवाल उठने लगे। आपको बता दें कि आलिया का न सिर्फ IQ लेवल बल्कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी नेक्स्ट लेवल का है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि साल 2012 से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी आलिया कैमरा ऑन होने के बाद कभी जोन आउट नहीं होती। अलबत्ता कैमरे के सामने आते ही आलिया इतनी फोकस्ड हो जाती हैं कि उन्हें अपने किरदार और संवाद के सिवा कुछ भी ध्यान नहीं रहता।
2: I'm so present जब मैं कैमरा के सामने होती हूँ, चाहे मैं वो किरदार में प्रेजेंट हूँ, मतलब द पार्ट दैट आई एम प्लेइंग, आई एम प्रेजेंट एज द कैरेक्टर, बट आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। और फिर अभी ऑफ कोर्स आफ्टर रहा, जब भी मैं उसके साथ रहती हूँ, आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। तो ये 2 आई थिंक मोमेंट्स है मेरी लाइफ में जहाँ पे मैं सबसे ज्यादा पीसफुल फील करती हूँ।
0: साफ है कि आलिया भट्ट अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को भली भांति पहचानती हैं। यही वजह है कि कॉफी विद करण में गलत जवाब देने के बाद जबरदस्त तरीके से ट्रोल होने पर भी आलिया पूरी तरह काम एंड कूल रहीं। काफी वक्त बाद आलिया से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने पूरे ह्यूमर के साथ जवाब देकर ट्रोलर्स को भी ट्रोल कर दिया।
2: बोर हो गई उस जोक से, मेरे को एक्चुअली नया जोक चाहिए। आई वांट टू मेक अ मिस्टेक अगेन। हाँ, कोई मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं क्या गलती करूँ कि फिर से लोग उसको 1-2 साल और खींचेंगे।
0: आपको बता दें कि आलिया बॉर्न एक्ट्रेस हैं। संयोग से इनका जन्म एक ऐसे घराने में हुआ जहाँ माहौल पूरी तरह फिल्मी था। मार्च 1993 को हुए आलिया के जन्म से काफी पहले से पिता महेश भट्ट अर्थ, सारांश, नाम, आशिकी, सड़क और दिल है कि मानता नहीं जैसी कल्ट और आइकॉनिक फिल्मों का निर्देशन कर इंडस्ट्री में अलग पहचान स्थापित कर चुके थे। आलिया की मां सोनी राजदान भी 36 चौरंगी लेन, मंडी, सारांश और त्रिकाल जैसी 8 फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी से क्रिटिक्स की शाबाशी हासिल कर चुकी थीं। आलिया ने भी जब से होश संभाला एक्टिंग को छोड़कर किसी दूसरे काम का तसव्वुर इनके मन में एक बार भी नहीं हुआ।
2: मैं हमेशा कहती कि मैं एक्शन पे ही पैदा हुई थी अपनी माँ की कोख से। आई डोंट थिंक देयर वाज दैट वन सेकंड आल्सो कि मैं दुनिया में आई, मुझे उस सेकंड पे ही पता था कि मुझे एक एक्ट्रेस बनना है और मुझे एक्टर बनना है और मुझे एक्टिंग करनी है। आई थिंक उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था।
0: जिन लोगों ने आलिया को अनइन्फॉर्म्ड यूथ का एम्बेसडर बना दिया था उन्हें ये जानना चाहिए कि आलिया भट्ट जब सिर्फ 4 साल की थी तभी उन्होंने श्यामक डावर डांस एकेडमी की समर क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। बात सिर्फ इतनी नहीं है, डांस एकेडमी में 4 साल की आलिया इंडस्ट्री की प्रेस्टिजियस फैमिली का तगमा लेकर नहीं बल्कि लर्निंग हंगर के साथ जाती थी। यही वजह है कि बाकी बच्चों के मुकाबले वो ज्यादा अच्छे से चीजों को ग्रैस्प करती थी। खुद श्यामक डावर ने आलिया की तारीफ करते हुए एक बार कहा था कि आलिया सब कुछ बहुत जल्दी सीख लेती हैं।
2: श्यामक डावर जी के जो समर कैंप समर डांस क्लासेस थे या वो एक्चुअली मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का बहुत ही अहम हिस्सा था एंड आई रिमेम्बर दोज मोमेंट्स वेरी क्लियरली क्योंकि जेन्युइनली इम्पैक्ट मेरी लाइफ में काफी था क्योंकि कॉन्फिडेंस, लोगों के सामने डांस करना, फ्री बनना, ऐसे फील करना कि आप सबसे छोटे हो पर फिर भी बड़े हो और डांस करना है।
0: 4 की उम्र में श्यामक डावर की डांस क्लास ज्वाइन करने वाली आलिया 7 साल की होते होते नृत्य कला में इतनी पारंगत हो गई कि स्कूल के एक डांस कंपटीशन में श्यामक डावर ने उन्हें हायर क्लास की छात्राओं के बीच भेज दिया क्योंकि डावर को ये भरोसा हो गया था कि हायर क्लास की छात्राओं के बीच भी आलिया बेहतर परफॉर्म करेंगी। हालांकि तब मासूम आलिया के साथ एक मजेदार वाकया भी पेश आया था।
2: क्लास में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था मेरा तो श्यामक सर ने मुझे एक सीनियर बैच में डाल दिया। तो मैं 7 साल की थी और मैं क्लास के अंदर आई और इंस्ट्रक्टर कंफ्यूज हो गए कि आप ये क्लास में हो क्योंकि इट वॉज देवर लिटरली अडल्ट इन दैट क्लास। और मैंने बोला हाँ श्यामक सर, लाइक आई एम सपोज टू कम इन दिस क्लास। तो पहले उनका क्वेश्चन था हाउ ओल्ड आर यू, तो मैंने बोला 7। But then immediately मैंने बोला, but it's my birthday tomorrow. I'm going to be 8 tomorrow.
0: दिलचस्प बात तो ये है कि अगले दिन आलिया का जन्मदिन नहीं था, लेकिन उन्होंने झूठ इसलिए बोल दिया क्योंकि उन्हें डर हो गया था कि कम उम्र को देखते हुए उन्हें कहीं नीचे की क्लास में न भेज दिया जाए। इस लेवल का आत्मविश्वास था आलिया के भीतर बचपन से ही। कमाल ये है कि यही आत्मविश्वास तब भी बना रहा जब आलिया ने रुपहले पर्दे पर चुनौतीपूर्ण किरदार निभाना शुरू किया। इंडस्ट्री के स्टार फैमिली से आने वाले नेपो किड्स आमतौर पर फिल्में साइन करने से पहले अपने घर के अनुभवी सदस्यों से सलाह मशविरा करते हैं, लेकिन आलिया का हिसाब अलग है। वो फिल्में साइन करने से पहले अपने पिता महेश भट्ट या माँ सोनी राजदान, यहाँ तक कि पति रणबीर कपूर से भी क्लियरेंस लेना जरूरी नहीं समझती बल्कि इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स के आधार पर खुद ही फैसले लेती हैं।
2: मैं एक्चुअली अपना माइंड मेकअप करने के बाद डिस्कस करती हूँ, मैं बिकॉज आई एम नॉट समबडी हु नीड्स टू बी कन्विंस्ड फॉर अ फिल्म, एक तो बात यह है और दूसरी बात यह है कि मेरा इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स ही सबसे प्योर रिस्पॉन्स होता है। तो अगर कोई, मैं इंस्टिंक्टिवली अगर एक्साइट हो जाऊंगी और किसी ने अगर बोल दिया कि मतलब ऐसे मत करो, आई एम जस्ट गिविंग इफ केस सिनेरियो, मेरे साथ हुआ नहीं है, पर अगर बोल दिया तो फिर मेरे दिमाग में डाउट पैदा हो जाएगा। तो मेरी जर्नी मेरी है और मेरी डिसीजन भी मेरी होनी चाहिए, इसलिए दैट्स द रीजन, नॉट फॉर एनी अदर रीजन।
0: आप समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया की नजर में अनइन्फॉर्म्ड सेलेब्स रही आलिया की प्रतिभा उन्हें लेकर बने परसेप्शन से बिल्कुल अलग है। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से किक हुए एकाध अपवादों को छोड़ दें तो आलिया के लेवल का आईक्यू और टैलेंट हिंदी सिनेमा के 100 साल के इतिहास में इक्का दुक्का अभिनेत्रियों में ही नजर आएगा।
1: आलिया बॉलीवुड की एक दमदार फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। आलिया के पिता महेश भट्ट बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा निर्देशकों में शुमार हैं, जबकि मां सोनी राजदान 8 फिल्मों की आइकन रही हैं। लेकिन आलिया ने अपने फिल्मी सफर में आगे बढ़ने के लिए कभी भी पारिवारिक पृष्ठभूमि का सहारा नहीं लिया। शुरू से ही उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट पर भरोसा किया और इसका असर ये है कि आलिया आज बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेट अभिनेत्रियों की फहरिस्त में काफी ऊंचा मकाम हासिल कर चुकी है।
0: इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नेपो किड्स के सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक मिलने की रवायत नई नहीं है। हालांकि ज्यादातर नेपो किड्स अपने पारिवारिक वटवृक्ष के घने साय में अंकुरित होकर फलते फूलते हैं और उसी साय में फना भी हो जाते हैं, पर कुछ नेपो किड्स ऐसे भी हैं जो मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर अपनी पारिवारिक लिगेसी से निकलकर अलग साम्राज्य स्थापित करते हैं। आलिया भट्ट दूसरी कैटेगरी की नेपो किड हैं। बतौर लीड हीरोइन अपनी पहली फिल्म में उन्होंने अगर प्रतिभा नहीं तो जुनून, लगन और मेहनत की तो मुनादी कर ही दी थी। तनुजा चंद्रा के निर्देशन में बनी और 1999 में रिलीज हुई आइकॉनिक मूवी संघर्ष में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू करने वाली आलिया भट्ट को हीरोइन के तौर पर डेब्यू करने का मौका बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के जरिए दिया था। आलिया की उम्र तब महज 18 साल थी, लेकिन उनका फिगर फिल्म के किरदार के लिहाज से फिट नहीं था। ऑडिशन के दौरान करण जौहर ने आलिया के लिए कड़ी शर्त रख दी कि उन्हें अपना वेट लॉस करना होगा। आलिया टीनेज में ही अपने करियर को लेकर कितनी संजीदा थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 3 महीने के भीतर उन्होंने अपना वेट 68 किलो से कम करके 51-52 किलो कर लिया। क्योंकि बचपन से बस एक ही तो सपना था आलिया का, सितारा बनकर सिल्वर स्क्रीन पर चमकने का। इसीलिए शूटिंग के दौरान सेट पर पहली बार जब कैमरा ऑन हुआ तो उनका उत्साह चरम पर पहुंच गया।
2: वो कहते हैं ना, एक्सट्रीम जॉय फीलिंग आता है कि कैमरा के सामने हो, शूटिंग हो रही है, कुछ अच्छा हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, बट यू फील के अंदर से कुछ। इवन दो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाज अ ब्लर, जो पहला गाना जो मेरी लाइफ की पहली दिन थी शूटिंग की, वो राधा के लिए थी। तो एक शॉट था, मेरे को नीचे आना था, टर्न करके ऐसा कुछ करना था, फिर दुपट्टा उठा के कैमरा में देखना था और ब्लोअर फैन आ रहा था, उसी में ही मेरे को ऐसे बहुत मजा आ गया।
0: पहली बार कैमरे के सामने आने के बाद आलिया बेशक उत्साहित थी, लेकिन फिल्म साइन करने के बाद वो फेल्योर के फियर साइकोसिस का शिकार हो गई थी। आलिया को ये डर सताने लगा कि अगर वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाई या फिल्म पिट गई तो आगे करेंगी क्या। पिता महेश भट्ट को जब बेटी के फियर साइकोसिस के बारे में पता चला तो उन्होंने अलहदा तरीके से आलिया को उससे बाहर निकालने की कोशिश की। महेश भट्ट ने बेटी को विशेष फिल्म्स के अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि मन में जो भी डर है, आशंका है, उसका इजहार सबके सामने करो।
2: फॉर सम रीजन माई फादर इज आउटस्टैंडिंग इन अ क्राइसिस सिचुएशन। जब भी आप क्राइसिस में, आप उनको फोन करो, ही हैज द मोस्ट काम टोन एंड ही विल डील विद द सिचुएशन द बेस्ट वे। इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन उन्होंने डिसाइड किया, ऑफिस आ जाओ, सबके सामने बोलो तुम कैसे फील कर रही हो। जो एक्चुअली एक बहुत अजीब सीक्वेंस सिचुएशन है, क्योंकि आप पहले तो इतना वल्नरेबल फील करो, सबके सामने उठ के बोलना है कि मैं ऐसे फील कर रही हूँ।
0: महेश भट्ट ने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने का कोई मनोवैज्ञानिक अनुभव था, ये तो नहीं बता, लेकिन उनका ये अनोखा फॉर्मूला आलिया के लिए क्लिक जरूर कर गया। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डर का डंका बज जाने के बाद आलिया के अंदर की घुटन कम हो गई। वैसे 19 अक्टूबर 2012 को रिलीज हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर बॉक्स ऑफिस पर तो कामयाब रही, लेकिन आलिया की इमेज बॉर्बी डॉल से कुछ ज्यादा नहीं बन पाई। उधर क्रिटिक्स ने भी आलिया के डेब्यू को महेश भट्ट के प्रभाव से जोड़ दिया। लेकिन फिल्म हिट होने के बाद बड़े पर्दे पर बड़ा मकाम हासिल करने के आलिया के संकल्प के साथ उनका आत्मविश्वास भी जुड़ गया। अगली ही फिल्म हाईवे में अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर आलिया ने क्रिटिक्स को पहले से तय परसेप्शन को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। 21 फरवरी 2014 को रिलीज हुई हाईवे में वीरा त्रिपाठी के डी ग्लैमरस किरदार में बेहतरीन अभिनय का तड़का मारकर आलिया ने उन्हें बॉर्बी डॉल कहने वालों का मुंह बंद कर दिया। दरअसल अभिनय को लेकर आलिया का फलसफा शुरू से ही कन्वेंशनल नहीं बल्कि इंस्टिंक्टिव रहा है।
2: कैमरे के सामने का जो एक फीलिंग होता है ना, उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता है। एट द एंड ऑफ द डे मैं जितना भी चाहे डायलॉग सीख लूँ या कुछ रट्टा मार लूँ, फिजिकल ट्रेनिंग कर लूँ, अपने आप को कमरे में बंद करके मेथड एक्टिंग भी कर लूँ, अगर कैमरे के सामने मुझे फीलिंग नहीं आ रही है तो कैमरा पकड़ लेगा और मेरी परफॉर्मेंस जो है उसमें दिख जाएगी। तो तैयारी जारी रहती है फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं कैमरे के सामने सिर्फ फील करने की कोशिश करती हूँ।
0: हाईवे के बाद आलिया ने इंडस्ट्री में मुनादी कर दी कि मीना कुमारी और मधुबाला की खींची हुई अदाकारी की लीक इस युग में भी मिटी नहीं है। 2016 में आई उड़ता पंजाब के बाद तो क्रिटिक्स ने भी स्वीकार कर लिया कि आलिया की अदाकारी किसी एक जोनर तक महदूद नहीं है। उड़ता पंजाब के एक मैले कुचैले भोजपुरी लड़की के किरदार में आलिया ऐसे गुम हो गई कि पहचानना मुश्किल हो गया कि ये वही राधा हैं जिसने डिस्को दीवाने पर ठुमके लगाए थे। उड़ता पंजाब के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। ২০১৮ में आई राजी में एक कश्मीरी जासूस के किरदार में आलिया ने अपने अभिनय से इतनी जान फूंक दी कि 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाली कुछ एक महिला प्रधान फिल्मों में शुमार हो गई। वहीं 2019 में आई गली बॉय में सफीना के किरदार को आलिया ने अपनी एक्टिंग से जीवंत कर दिया। गली बॉय में नारी को प्रकृति से सहज प्राप्त कोमलता और जरूरत पड़ने पर प्रकट होने वाली आक्रामकता के मिश्रण को आलिया ने इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद तो आलिया बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइनों की फेहरिस्त में शुमार हो गईं। 25 फरवरी 2022 को रिलीज हुई गंगूबाई काठियावाड़ी आलिया के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में आलिया ने एक वेश्यालय की मालकिन और माफिया क्वीन के चुनौतीपूर्ण किरदार को सहजता के आईने में उतारकर सबको हतप्रभ कर दिया। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया को सबसे प्रेस्टीजियस माने जाने वाले नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया।
3: गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं अभिनेत्री आलिया भट्ट।
0: 2022 आलिया के लिए बहुत इवेंटफुल साल साबित हुआ। साल 2022 में कोरोना की मार से पस्त हो चुकी फिल्म इंडस्ट्री दोबारा उठ खड़े होने की जद्दोजहद कर रही थी और इसी साल आलिया की गंगूबाई काठियावाड़ी के अलावा आरआरआर और ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 जैसी फिल्में रिलीज हुईं। 2022 में ही उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर किस्मत आजमाई और डार्लिंग्स प्रोड्यूस की, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और सफल भी रही। 2023 में आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और 2024 में आई जिगरा ने भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया। इसी साल 10 जुलाई को आलिया की अल्फा रिलीज होने वाली है। साल 2027 में आलिया संजय लीला भंसाली के एक और शाहकार लव एंड वार में भी नजर आने वाली हैं। साफ है कि आलिया बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट अभिनेत्रियों की सूची में शुमार हो चुकी हैं। आज आलिया अपनी एक फिल्म के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस लेती हैं।
1: तो वंदे मातरम में आज आपने आलिया भट्ट के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: और अब जब बात फिल्मों की हो रही है तो रोहित शेट्टी की गोलमाल 5 का भी जिक्र कर लेते हैं, जिसकी शूटिंग जारी है। रोहित की इस फिल्म में अजय देवगन समेत पुरानी स्टार कास्ट है, लेकिन इस बार फिल्म में लगने वाला है कॉमेडी का मास्टर स्ट्रोक वाला तड़का, क्योंकि गोलमाल 5 में इस बार अक्षय कुमार भी दिखेंगे। जहां अक्षय की एंट्री से फिल्म का सुपरहिट होना तय माना जा रहा है, वहीं इस फिल्म में अक्षय की फीस भी चर्चाओं का विषय बनी हुई है।

0: रोहित शेट्टी की गोलमाल फ्रेंचाइजी का नाम ही कॉमेडी की गारंटी है। दर्शकों को सालों से लोटपोट करने वाली गोलमाल की टीम एक बार फिर धमाल मचाने के लिए तैयार है। गोलमाल 5 को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बस बना हुआ है, लेकिन इस बार का धमाका डबल होने वाला है, क्योंकि फिल्म में एंट्री हो चुकी है कॉमेडी के किंग अक्षय कुमार की। जब रोहित शेट्टी की कॉमेडी और अक्षय कुमार की टाइमिंग एक साथ मिलेगी तो स्क्रीन पर आग लगना तो तय है। ऐसे में फैंस फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अक्षय के इस फिल्म से जुड़ने से ये और ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है। इन सब के बीच अब गोलमाल 5 से अक्षय कुमार की फीस की भी खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि अक्षय ने इस फिल्म में अजय देवगन से ज्यादा फीस वसूली है, यानी इस धमाके के लिए मेकर्स की जेब अच्छी खासी ढीली हुई है। खबरों की माने तो अक्षय कुमार ने इस फिल्म के लिए इतनी भारी भरकम फीस ली है कि ट्रेड पंडितों के भी कान खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार ने गोलमाल 5 की 18 से 22 दिनों की शूटिंग की है, जिसके लिए उन्होंने अजय देवगन से कहीं ज्यादा फीस वसूली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार को अपने रोल के लिए 35 से 40 करोड़ मिले हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि पूरी फिल्म में दिखने वाले अजय देवगन से ज्यादा फीस सिर्फ 20 दिनों की शूटिंग करने वाले अक्षय कुमार को क्यों मिल रही है। तो जनाब, इसे कहते हैं स्टार पावर और स्पेशल रोल का जलवा। दरअसल माना जा रहा है कि फिल्म में अक्षय कुमार का रोल भले ही छोटा हो, लेकिन वो पूरी कहानी का टर्निंग प्वाइंट है। यानी जितने समय भी अक्षय स्क्रीन पर रहेंगे, दर्शकों को हंसते हंसते पेट फुलाने पर मजबूर कर देंगे। वैसे भी रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, दोनों जब भी मिलते हैं कॉमेडी का तड़का तो लगता ही है, साथ में बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश की भी गारंटी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
5: Good news today.
1: Good news today इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर। Good news today इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर।
6: शारदीय वैदिक मंत्रोच्चार से गूंजा नया घाट। महाराष्ट्र के अकोला में धूमधाम से मनाई गई शनि जयंती। प्राचीन मंदिर में काटा गया 11 किलो का कलाकंद केक। भजन कीर्तन और सुंदरकांड का पाठ। गुजरात के वड़ताल धाम में लगाया गया 500 किलो आम का भोग। केसर आम की खुशबू से महका स्वामीनारायण मंदिर का गर्भगृह। गर्मी को देखते हुए लगाया गया भोग। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा। यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं का भजन कीर्तन। अब तक करीब 2.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। भीषण गर्मी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जंगल सफारी में बेजुबानों के लिए खास इंतजाम। खास डाइट प्लान का हो रहा है पालन। एसी पंखा और कूलर की व्यवस्था।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके

0: रक्षा क्षेत्र में भारत हर दिन एक नया अध्याय लिख रहा है। स्वदेशी तकनीक के जरिए ऐसे ऐसे कीर्तिमान रचे जा रहे हैं जो दुनिया को बहुत चक्का कर रहे हैं। मिसाइल से लेकर युद्धपोत तक और फाइटर जेट से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक सब कुछ देश में ही तैयार हो रहा है और वो भी वर्ल्ड क्लास। जो तकनीक और ताकत दुनिया के चंद देशों की जागीर मानी जाती थी, उस टेक्नोलॉजी पर अब भारत का दबदबा है। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए, ये कोई साधारण तस्वीर नहीं है बल्कि डिफेंस सेक्टर में भारत के बढ़ते रुतबे को दुनिया के सामने रख रही है। यह तस्वीर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम का नया अध्याय है जो भविष्य के सुपर हिंदुस्तान का रास्ता तैयार कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। दरअसल डीआरडीओ और डीआरडीएल ने मिलकर इस मिसाइल के एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का 20 मिनट तक सफल परीक्षण किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एक्टिव कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए जरूरी एक्सट्रीम टेम्परेचर को सहने की इंजन क्षमता साबित हुई है। हैदराबाद स्थित डीआरडीएल यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में स्क्रैमजेट कंबस्टर का परीक्षण किया गया, जो कि 20 मिनट से ज्यादा समय तक चला। इस टेस्ट की सबसे बड़ी बात यह रही कि इसमें एक्टिव कूलिंग, थर्मल बैरियर कोटिंग और इंडिजिनस फ्यूल जैसी जटिल तकनीकें भारत ने खुद विकसित की हैं। इस टेस्ट के जरिए अत्यधिक तापमान और दबाव की स्थिति में सुपरसोनिक इंजन से निकलने वाली गर्मी को कंट्रोल करने की क्षमता को जांचा गया।
1: ये पिछले बार के वर्जन से इम्प्रूव्ड वर्जन है। पिछले बार इन्होंने 700 सेकंड टेक किया था, इस बार 1200 सेकंड पे तो टाइमिंग बढ़ी है। तो कहने का मतलब ये कि जो इंडिजिनसली डेवलप आपका फ्यूल है, लिक्विड हाइड्रोकार्बन फ्यूल, और उसका जो एडवांस थर्मल बैरियर कोटिंग है वो आले दर्जे का, वो ज्यादा देर तक विस्टैंड कर सकता है। कहने का मतलब ये कि जब आप इस तरीके की मिसाइल डेवलप करते हैं स्क्रैमजेट इंजन द्वारा, तो आपको एक फ्यूल और आपको उसका कंबशन सिस्टम पे ज्यादा ध्यान होता है, जो कि इस बार 1200 सेकेंड तक वो उसको इसकी स्टेबिलिटी चेक की गई है।

0: हाइपरसोनिक स्पीड पर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, जिससे इंजन पिघल सकता है। 20 मिनट से ज्यादा समय तक इंजन का सफलतापूर्वक चलना ये साबित करता है कि भारत ने एक्टिव कूलिंग तकनीक में महारत हासिल कर ली है। अब स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन से मिसाइल को मैक 5 से ज्यादा की रफ्तार मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि आवाज की स्पीड से 5 गुना तेज यानी कि करीब 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्रचंड रफ्तार से दुश्मन पर प्रहार।
1: देखिए, हिंदुस्तान ने जब हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप किया विद स्क्रैमजेट इंजन के साथ, तो ये दिखाता है कि अगर ये मिसाइल 5 मैक से ज्यादा स्पीड हासिल करती है, इसका मतलब हुआ कि 6175 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में इतना डिस्टेंस जाएगा, तो पाकिस्तान का कोई भी टारगेट विद इन 20-30 मिनट के अंदर एंगेज कर लिया जाएगा। और इसी तरह चाइना का भी काफी बड़ा इलाका इसके कवरेज एरिया में आता है, तो एक स्ट्रेटजिक एज हिंदुस्तान को देता है और साथ में इंडिजिनसली डेवलप्ड है, तो हमें किसी बाहर के कंट्री पे भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है।
0: स्क्रैमजेट की सफलता से भारत अमेरिका, रूस और चीन के साथ उन चुनिंदा देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया है जो स्क्रैमजेट तकनीक में मैक 5 से ज्यादा स्पीड वाली मिसाइलें विकसित कर रहे हैं।

0: सबसे पहले इंडिजिनस स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी, उसमें जो हमने उसका फ्यूल इस्तेमाल किया, जो हाइड्रो कार्बन फ्यूल है, वो इंडिजिनसली डेवलप किया गया। ये फ्यूल का ही एक है कि उसका जो बर्निंग है, जो उसकी जो कंबशन सिस्टम है, वो कैसे डेवलप किया जाए, कैसे आप इतनी हीट या एनर्जी डेवलप करें जिससे कि मिसाइल को वो 5 मैक की स्पीड से प्रोपेल कर सके, और साथ में उसमें इस तरीके की कोटिंग की जाती है, सेरेमिक कोटिंग की जाती है कि जिससे वो उस हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सके। तो कहने का मतलब ये कि जब ये विकसित हुआ है तो ये काफी लगन, काफी एफर्ट, काफी ट्रायल के बाद इसको विकसित किया गया है, और जब ये स्वदेशी हो जाता है तो इसमें हमें किसी और फॉरेन कंट्री पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं होती।
1: डीआरडीओ का नया टेस्ट भारत की सैन्य ताकत और एशिया का शक्ति संतुलन बदल सकता है। इसका सबसे बड़ा असर हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दिखाई देगा। चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, ऐसे में लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल भारत के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकती है। हाल ही में डीआरडीओ ने 1500 किलोमीटर रेंज वाली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल समुद्र में दुश्मन के बड़े युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना सकती है। इसका मतलब साफ है कि अगर हिंद महासागर में किसी भी दुश्मन नौसेना ने दबाव बनाने की कोशिश भी की तो भारत अब हजारों किलोमीटर दूर से तेज और सटीक हमला करने की क्षमता की तरफ बढ़ रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि वो बेहद तेज रफ्तार के साथ उड़ान के दौरान दिशा बदल सकती हैं। इससे दुश्मन के रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए उन्हें ट्रैक करना आसान नहीं होता। मैक 5 से ज्यादा रफ्तार वाली मिसाइल तैयार होने से चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की स्ट्राइक क्षमता और रणनीतिक ताकत कई गुना बढ़ सकती है। साल 2025 में डीआरडीओ ने छोटी अवधि के स्क्रैमजेट टेस्ट किए थे, लेकिन अब दूसरी बार जब फुल स्केल कंबस्टर का टेस्ट किया गया तो 20 मिनट से ज्यादा चला। इससे पहले डीआरडीओ ने 9 जनवरी 2026 को भी हैदराबाद में फुल स्केल एक्टिवली कूल स्क्रैमजेट कंबस्टर का 12 मिनट से ज्यादा का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक किया था, जो ये बताता है कि भारत अब अपने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ब्रह्मोस-2 मिसाइल के डिजाइन के लिए दूसरे देशों की तरफ नहीं देखेगा, बल्कि अब देश में ही उसे तैयार किया जाएगा। मौजूदा समय में दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती मिसाइल को रोकने में सक्षम नहीं है। रडार को जब तक खतरे का पता चलेगा तब तक मिसाइल अपना काम कर चुकी होगी।
2: भारत के लिए खतरा जितना चीन से है उतना ही पाकिस्तान से भी है, लेकिन अगर चीन की बात की जाए तो चीन हथियारों की दौड़ में बहुत तेजी से आगे भाग रहा है। चीन अपने पास एआई तकनीक से लैस तमाम हथियारों को विकसित कर रहा है, साथ ही साथ हाइपरसोनिक तकनीक में भी वो आगे बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत भी इस तकनीक में महारत हासिल करे और अपने बेड़े में हाइपरसोनिक हथियारों को भी शामिल करे।
1: हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा स्पीड से चलती है। इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है जिससे उसको ताकत मिलती है। अब स्क्रैमजेट इंजन क्या है और कैसे काम करता है इसे भी जान लीजिए। स्क्रैमजेट एक खास तरह का एयर ब्रीदिंग इंजन है। इसे शुरू करने के लिए रॉकेट बूस्टर की जरूरत होती है। स्क्रैमजेट में ईंधन के दहन के लिए वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिए इसी स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। स्क्रैमजेट से

0: करने से स्क्रैमजेट इंजन हल्का, ज्यादा तेज और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम माना जाता है।
1: जब ये इंजन एयर में जाता है तो इतनी हाई स्पीड से होता है, तो जो एटमॉस्फेयर में एयर होता है उसको इस स्पीड पे कंप्रेस करता है और उसका लगातार ये सप्लाई जारी रहती है, जिससे वो फ्यूल से रिएक्ट करके हीट जनरेट करता है। तो और ये लगातार होना चाहिए। अगर इसमें कोई बाधा है या अनइवन बर्निंग है, अनइवन हीट जनरेशन है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। तो एक स्पीड पे कंप्रेस एयर को फ्यूल के साथ मिक्स करके एनर्जी डेवलप करना और लगातार ये जारी रखना।
0: भविष्य में ये तकनीक ब्रह्मोस 2 में इस्तेमाल होगी, जो भारत रूस का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ब्रह्मोस 2 मैक्स 7 से 8 स्पीड वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर होने का अनुमान है। डीआरडीओ का लक्ष्य है कि साल 2028 तक ऐसी मिसाइल को पूरी तरह से विकसित कर लिया जाए। मिसाइलों को ठोस या तरल ईंधन से चलने वाले रॉकेट या जेट इंजन द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। कुछ मिसाइलों में, जैसे कि ब्रह्मोस में, रामजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो सुपरसोनिक रफ्तार हासिल करने के लिए हवा को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। वहीं हाइपरसोनिक मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। भारत का लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल प्रोग्राम अब अपने एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है और जल्दी ही शुरुआती परीक्षण होने की उम्मीद है। हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत ने कहा था, भारत हाइपरसोनिक ग्लाइड और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसमें ग्लाइड संस्करण मौजूदा समय में विकास के मामले में आगे है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन होता है और उड़ान के दौरान इसे ऊर्जा मिलती है। हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल शुरुआती रफ्तार हासिल करने के लिए बूस्टर का इस्तेमाल करती है और फिर बिना किसी ऊर्जा के ग्लाइड करती है। मिसाइल में 2 स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। पहले चरण के खत्म होते ही वो अलग हो जाती है, जबकि दूसरा चरण मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंचाता है। इसके बाद मिसाइल बिना इंजन के ग्लाइड फेज में एंट्री करती है और टारगेट तक पहुंचने से पहले कई रणनीतिक मूवमेंट करती है।
1: देखिए, मिसाइल में जो टू स्टेज रॉकेट होते हैं, प्रोपल्शन होता है, उसमें एक इनिशियल फेज का होता है और एक सब्सिक्वेंट फेज का होता है। इनिशियल फेज का काम होता है वो हीट, वो एनर्जी, वो थ्रस्ट डेवलप करना, जिससे कि मिसाइल को लॉन्च किया जा सके, लिफ्ट दिया जा सके एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में। और जब ये काम हो जाता है तब वो मोटर काम करना बंद कर देता है, तब सेकेंड स्टेज का मोटर काम करता है, जो अगेन उस वेलोसिटी को मेंटेन करता है, एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक ऑर्बिट में मिसाइल को डालता है और लगातार उस पे सस्टेन प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे कि उसकी वेलोसिटी बन सके।
0: आज दुनिया के कई देश अपनी मिसाइल क्षमता को धार देने में जुटे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है, मिसाइल ही एक ऐसा हथियार है जो हर तरह के युद्ध क्षेत्र में कामयाब है। चाहे लड़ाई जमीन पर हो, आसमान पर या फिर अंतरिक्ष में, मिसाइल हर मोर्चे पर कारगर है। एक मिसाइल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो दुश्मन के टारगेट पर आए बिना अपने टारगेट को ध्वस्त कर दे। हालांकि इसमें अत्याधुनिक रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम रोड़ा जरूर अटकाते हैं और इसीलिए यहीं से हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर सोच शुरू हुई, जिसको लेकर काम चल रहा है। आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है और ये दुनिया के लिए चिंता का विषय क्यों बन गया, ये समझने की जरूरत है। हाइपरसोनिक हथियार आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज रफ्तार से चलते हैं और अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि हाइपरसोनिक वेपन की रफ्तार ही उसकी ताकत है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल भी आवाज की रफ्तार से तेज चलती है। ऐसे में हाइपरसोनिक वेपन की असली ताकत क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। हाइपरसोनिक मिसाइल को एक व्हीकल तेजी से अंतरिक्ष की तरफ ले जाता है, जिसके बाद वो ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ती है। ये इतनी तेजी से अपना रास्ता बदलती है कि किसी भी देश का एंटी मिसाइल सिस्टम इसे ट्रैक नहीं कर पाता और ये अपने टारगेट को आसानी से ध्वस्त कर सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल को जब एक जगह से लॉन्च किया जाता है तो पता चल जाता है कि उसका टारगेट कहाँ है और वो किसे निशाने पर लेगी। ऐसे में इन मिसाइलों को ट्रैक करना आसान होता है। इसके साथ ही लॉन्चिंग के साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलों की दिशा में बदलाव नहीं किया जा सकता।

0: सकता। वहीं लॉन्चिंग के साथ हाइपरसोनिक मिसाइलों की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है।
1: ये हाइपरसोनिक मिसाइल या जो वेपन है उनका जो ग्रेडिंग है वो एनी एरियल ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा है, जैसा कि मैंने बताया 6175 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो अगर इसकी स्पीड ज्यादा होती है वो हाइपरसोनिक कैटेगरी में आता है। जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा है उसको रडार कैसे डिटेक्ट करेगा, चाहे रडार किसी भी प्रिंसिपल पे काम कर रहा हो, चाहे डॉपलर पे काम कर रहा हो या अन्य प्रिंसिपल पे काम कर रहा हो, बाई द टाइम पल्स उसको जाके हिट करके वापस आती तब तक वो मिसाइल आगे निकल चुका होता है। एक स्पीड, दूसरा लो हाइट या हाई हाइट, इसमें कोई रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। इस वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल ने लड़ाई लड़ने की विधा में टोटल तब्दीली कर दी।
0: हाइपरसोनिक हथियार सबसोनिक मिसाइलों से कहीं तेज रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इनकी रफ्तार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से बेहद कम होती है। हाइपरसोनिक हथियार सिस्टम दो तरह के होते हैं, पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और दूसरा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जिस तरह एक सर्फर समंदर की लहरों पर ग्लाइड करता है, ठीक उसी तरह से हाइपरसोनिक हथियार हवा में ग्लाइड करते हैं, जिससे इसे रोकना आसान नहीं होता। हाइपरसोनिक हथियार की एक और खासियत होती है कि ये कम ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकते हैं।
2: मौजूदा समय में तमाम देशों का फोकस ग्लाइड व्हीकल्स पर है। दरअसल ग्लाइड व्हीकल एक नई तकनीक है। ग्लाइड व्हीकल के साथ एक मिसाइल लगाई जाती है जो कि एक टारगेट पर जाकर ग्लाइड व्हीकल से अलग हो जाती है, जिसके बाद वो टारगेट की तरफ सीधा ग्लाइड करते हुए फोकस करती है और उसे ध्वस्त करके ही दब लेती है।
0: हाइपरसोनिक हथियार बनाने की दिशा में भारत अपना कदम आगे बढ़ा चुका है। HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के परीक्षण की शुरुआत हो चुकी है। 27 जनवरी 2023 को DRDO ने HSTDV परीक्षण किया था जो सफल रहा।

0: साल 2020 में भारत ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड का टेस्ट किया था, जिसमें महज 20 सेकंड में 7500 किलोमीटर के टारगेट को पूरा किया गया था। हालांकि भारत इस तकनीक में पिछले कई सालों से लगातार लगा हुआ है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल को लॉन्च कर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि ऐसी कोई रफ्तार नहीं जहां उसकी पहुंच नहीं। हाइपरसोनिक व्हीकल का ट्रायल एक ऐसी कामयाबी है जो हिंदुस्तान की ताकत में कई गुना इजाफा करेगी। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल 6000 से 12000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये 20 सेकंड में मैक 6 की रफ्तार और 32.5 किलोमीटर ऊंचाई तय करने में सक्षम है। HSTDV के परीक्षण के बाद भारत के रक्षा क्षेत्र को और अधिक मजबूती मिलेगी, क्योंकि इसके साथ ही भारत अब उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सक्षम है। दुनिया बदल रही है, युद्ध बदल रहे हैं, युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं, रण क्षेत्र की रणनीतियां बदल रही हैं, और इसी के तहत अब आने वाले समय में युद्ध AI और हाइपरसोनिक तकनीक के साथ लड़े जाएंगे। भारत ने भी खुद को इसी क्षेत्र में तैयार किया है और ऐसा ही एक परीक्षण हाल फिलहाल में भारत ने किया, जिसके बाद पूरी दुनिया का ध्यान भारत ने अपनी ओर खींचा।
1: बीते कुछ वर्षों से दुनिया का माहौल जिस तरीके से बदला है उसे देखते हुए भारतीय सेना कंप्लीट चेंज के मोड में है। बदलते सुरक्षा हालात को देखते हुए सेना खुद को नए समय के मुताबिक तैयार कर रही है, जिसमें छोटे से छोटे हथियार तक को धार दी जा रही है। इसी कड़ी में भारत ने स्वदेशी ग्लाइड वेपन तारा का पहला सफल परीक्षण किया। तारा का पूरा नाम है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। ये भारत का पहला स्वदेशी मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है। आसान भाषा में समझा जाए तो तारा एक ऐसा सिस्टम है जो किसी साधारण बम को स्मार्ट ग्लाइड बम में तब्दील कर देता है।
0: आमतौर पर जो अनगाइडेड बम होते हैं उसे एक अंदाजे से टारगेट के ऊपर गिराया जाता है, और इसके लिए विमान को टारगेट के करीब जाना पड़ता है और फिर उसके बाद ये टारगेट की ओर गिराया जाता है। वहीं अगर हम गाइडेड बम की बात करें तो इससे दूर रहकर भी दुश्मन के ठिकाने को निशाने पर लिया जा सकता है।
1: तारा ग्लाइड वेपन किट से न सिर्फ हथियार की रेंज में बढ़ोतरी होती है बल्कि सटीकता भी सुनिश्चित होती है। फाइटर जेट से छोड़े जाने के बाद ये सिस्टम एरोडायनामिक लिफ्ट और गाइडेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके एक आम फ्री फॉल बम के मुकाबले कहीं ज्यादा दूरी तय करता है, साथ ही हमले की सटीकता को भी बेहतर बनाता है।
2: तारा है, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, जितने हमारे डंप बॉम्ब है या जो ग्रेविटी बॉम्ब है उसमें इसको फिट कर दिया जाता है। इसमें विंग्स होते हैं, इसमें सेंसर होते हैं। कहने का मतलब यह है कि डंप बॉम्ब को कैसे स्मार्ट वेपन में कन्वर्ट किया जा सकता है। स्मार्ट का मतलब जो सेंसर के डायरेक्शन ले सके, जिसकी फ्लाइट मैनिपुलेट किया जा सके, जो प्रिसीजन स्ट्राइक कर सके और जिसको फ्लाइट के दौरान मैनिपुलेट करके सही टारगेट पे या टारगेट स्विचिंग किया जा सके। तो ये सारी सुविधाएं जो है तारा के थ्रू अचीव की जा सकती।
1: स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा का ये परीक्षण बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि तारा भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करेगा जो अपने पुराने बमों को सटीक और दूर मार करने वाले हथियार में बदल सकते हैं।
0: तारा असल में एक मॉड्यूलर ग्लाइड किट है। आसान भाषा में अगर इसको समझना तो उसे कहेंगे कि हवाई जहाज से गिराए जाने वाले अनगाइडेड बमों के साथ लगाई जाने वाली किट, जिसका सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि ये सही और सटीक निशाना लगा पाएगी।
1: ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा में विंग्स, कंट्रोल सरफेस और एक बेहतरीन गाइडेंस पैकेज लगाया जाता है। इससे पुराने बम हवा में लंबी दूरी तक ग्लाइड करके जा सकते हैं और बेहद सटीक निशाना लगा सकते हैं। तारा में हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इनर्शियल नेविगेशन और सैटेलाइट गाइडेंस दोनों शामिल है। इससे सटीकता बहुत ज्यादा रहती है। विदेशी सिस्टम की तुलना में तारा ग्लाइड वेपन सिस्टम बेहद सस्ता भी है। इससे वायुसेना के पास पड़े लाखों पुराने बमों को आधुनिक हथियारों में बदला जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि किन किन देशों के पास ये तकनीक है। अमेरिका के पास JDM और JSOW है। ये साधारण अनगाइडेड बमों को ब्रिशियस गाइडेड बम में तब्दील करते हैं। रूस के पास यूएमपी की ग्लाइड बम किट है जो उसने यूक्रेन युद्ध में अपने साधारण बमों को ग्लाइड करने के लिए इस्तेमाल किया था। इसराइल के पास स्पाइस 250 और स्पाइस 2000 जैसे बम प्रणालियां हैं। इनमें एआई पर आधारित इलेक्ट्रो ऑप्टिकल होमिंग सीकर लगा है। भारत ने इसराइल से ये किट खरीदी है। फ्रांस के पास एएसएम हैमर रॉकेट बूस्टर है। वहीं तुर्की के पास एचजीके किट है जो तारा की तरह ही काम करती है। इंडियन एयरफोर्स के लिए तारा जैसे सिस्टम भविष्य में कुछ ऐसे स्ट्राइक मिशनों के लिए एक सस्ता विकल्प साबित हो सकते हैं जिनके लिए महंगी क्रूज मिसाइलों या उन्नत स्टैंड ऑफ हथियारों की जरूरत नहीं होती। स्टैंड ऑफ वो हथियार होते हैं जिन्हें काफी दूर से दुश्मन की नजर से दूर रहकर दागा जाता है। इन्हें बियॉन्ड विजुअल रेंज हथियार भी कहा जाता है। तारा से फायदा ये होगा कि फाइटर जेट से दागे जाने वाले किसी भी बम को बीवीआर वेपन में तब्दील कर देगा। तारा को हम एक तरह से आत्मनिर्भर भारत की पहचान भी कह सकते हैं क्योंकि पूरी तरह से भारत में ही विकसित सिस्टम है। पहले इस तरह के सिस्टम्स के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन अब भारत ने खुद का अपना सिस्टम तैयार किया है जो कि हमारी वायुसेना को और ज्यादा ताकत देगा और सही निशाना लगाने की क्षमता देगा।

0: संक्षेप में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station. Enjoy a carefully brewed mix of soft acoustic sounds with artists like James Bay,
3: come on, let it go.
2: Nora Jones,
4: my heart is drained.
2: Daniel Caesar, more as you sink into a good book or get lost in your work. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: सिर्फ बद्रीनाथ धाम ही नहीं बल्कि केदारनाथ धाम समेत पूरे चार धाम यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। एक तरफ भक्तों की आस्था हिलोरे मार रही है तो वहीं दूसरी ओर सरकार और प्रशासन यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने में जुटे हुए हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग, मेडिकल टीम, पुलिस और राहत दल लगातार तैनात है। भक्ति और आस्था से सराबोर उत्तराखंड इन दिनों आध्यात्मिक ऊर्जा से गूंज रहा है।

0: आस्था का सैलाब, पहाड़ों पर उमड़ता विश्वास और हर दिन बनता नया इतिहास। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा इस बार रिकॉर्ड रफ्तार से आगे बढ़ रही है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भक्तों का उत्साह चरम पर है। पहाड़ों की कठिन राह भी श्रद्धा के आगे छोटी पड़ रही है। सरकार सुरक्षा, सुविधा और व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत बना रही है ताकि हर यात्री का सफर सुरक्षित और आसान बने। चारधाम यात्रा अब नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। चारों धामों में सुबह से लेकर देर शाम तक दर्शन के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले लोग बाबा केदार, बद्री विशाल, माँ गंगा और माँ यमुना के दर्शन कर खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। यात्रा शुरू होने के बाद से लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक चार धाम में दर्शन करने वालों का आंकड़ा 12,60,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं बद्रीनाथ धाम में आने वाले भक्तों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। सबसे ज्यादा उत्साह केदारनाथ यात्रा को लेकर देखा जा रहा है। ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और कठिन रास्ते भी लोगों के कदम नहीं रोक पा रहे। हर उम्र के लोग बाबा केदार के दर्शन के लिए पैदल मार्ग पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार भी पूरी तैयारी के साथ यात्रा संचालन में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि मौसम खराब होने की स्थिति में हर यात्री की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम तेजी से बदलता है, इसी वजह से प्रशासन ने विशेष निगरानी तंत्र तैयार किया है। रियल टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। भीड़ नियंत्रण और स्लॉट मैनेजमेंट को भी प्रभावी बनाया गया है ताकि किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। रास्तों में मेडिकल टीम, पुलिस बल, आपदा राहत दल और हेल्प सेंटर लगातार तैनात हैं। घोड़ों, पालकियों और हेलीकॉप्टर सेवाओं की व्यवस्था भी सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। यात्रा मार्ग पर सफाई और स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी विशेष फोकस किया गया है। पहाड़ों में गूंजते जयकारे श्रद्धा से भरे चेहरे बता रहे हैं कि इस बार की यात्रा खास है।
1: जयकारा वीर बजरंगी।

0: भक्ति और विश्वास का यही संगम उत्तराखंड को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: शनि अमावस्या के पावन दिन अयोध्या में उमड़ा आस्था का मेला, मां सरयू की हुई विशेष आरती, वैदिक मंत्रोच्चार से गूंजा नया घाट। महाराष्ट्र के अकोला में धूमधाम से मनाई गई शनि जयंती, प्राचीन मंदिर में काटा गया 11 किलो का कलाकंद केक, भजन कीर्तन और सुंदरकांड का पाठ। गुजरात के वड़ताल धाम में लगाया गया 500 किलो आम का भोग, केसर आम की खुशबू से महका स्वामीनारायण मंदिर का गर्भगृह, गर्मी को देखते हुए लगाया गया भोग। देवभूमि में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं का भजन कीर्तन, अब तक करीब 2.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। भीषण गर्मी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जंगल सफारी में बेजुबानों के लिए खास इंतजाम, खास डाइट प्लान का हो रहा पालन, एसी पंखा और कूलर की व्यवस्था।

है अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा, एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत के जीवन का विलक्षण वृत्तांत लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो कान फिल्म फेस्टिवल में अपने एलिगेंट लुक से आम लोगों के साथ ही सेलेब्स का भी दिल जीत रही है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइंस में से शुमार आलिया भट्ट हैं। जी हाँ, आपको बता दें, आलिया इन दिनों कान फिल्म फेस्टिवल में अपने दिलकश लुक और अदाओं का जलवा बिखेर रही हैं। ये वही आलिया है जो कि सोशल मीडिया पर कभी जिनके मीम्स की भरमार रहा करती थी। एक समय आलिया की ट्रोलिंग नेटिजंस का स्ट्रगल बन गया था। हालांकि सोशल मीडिया पर आलिया का जो परसेप्शन बना, आलिया की हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। आलिया की प्रतिभा की गहराई को वही समझ सकता है जो कि शिद्दत से उनकी जिंदगी में उतरने की कोशिश करेगा। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगी कि आलिया को एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से कभी कभी वो जोन आउट हो जाती है और ट्रोलर्स उसी मोमेंट को पकड़ लेते हैं।

परसेप्शन और रियलिटी के बीच धूप छांव वाला रिश्ता काफी पुराना है। परसेप्शन कई बार रियलिटी के बहुत करीब होता है और कई बार रियलिटी परसेप्शन से कोसों दूर होती है। कान फिल्म फेस्टिवल में अपने फैबुलस और किलर लुक से धूम मचा रही आलिया भट्ट परसेप्शन और रियलिटी के बीच की अजीबोगरीब रिश्ते की अनूठी दास्तान है। बीते 12 मई को कान ओपनिंग सेरेमनी के रेड कार्पेट में कस्टम तमारा राल्फ गाउन में दुनिया भर के सेलेब्स के आकर्षण का केंद्र बनी आलिया इस प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल में लोरियल पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर के तौर पर पहुंची हैं। आलिया कान के हर इवेंट में अलग अलग अट्रैक्टिव आउटफिट में नजर आ रही हैं और अपने ओवरऑल सेंसिबल और एलिगेंट लुक से सेलेब्स की भी सेलिब्रिटी बनी हुई हैं। 14 मई को आलिया भट्ट ने लॉरियल पेरिस गाला डिनर के दौरान फ्लोरल ब्रोकेड आउटफिट में आकर सबका दिल जीत लिया। डिनर में डस्टी रोज और एंटीक टोन वाले फ्लोरल ब्रोकेट कॉर्सेट और मैचिंग फिटेड स्कर्ट में आलिया गजब की अट्रैक्टिव लग रही थी। कान फिल्म फेस्टिवल 2026 में चर्चा का केंद्र बनी ये वही आलिया हैं सोशल मीडिया पर जिनकी इमेज कभी अनइन्फॉर्म्ड और इग्नोरेंट यूथ की बन गई थी।

0: एक समय सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आलिया भट्ट के मीम्स से भरे रहते थे। आलम ये था कि किसी ने तथ्यात्मक रूप से कोई गलत बयानी की तो सोशल मीडिया पर तुरंत उसकी तुलना आलिया भट्ट से कर दी जाती थी। बहरहाल ये आलिया के बारे में सोशल मीडिया यूजर्स या नेटिजन्स का अपना परसेप्शन था। आलिया की रियलिटी नेटिजन्स के परसेप्शन से कोसों दूर है। आपको बता दें कि आलिया को लेकर इस तरह का सोशल मीडिया परसेप्शन इसलिए बन गया था क्योंकि एक बार उन्होंने देश के राष्ट्रपति का नाम गलत बता दिया था। दरअसल बतौर लीड एक्ट्रेस 2012 में आई अपनी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के प्रमोशन के लिए आलिया करण जौहर के शो कॉफी विद करण में अपने को स्टार्स वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ पहुंची थीं। करण ने लाइटर मोड में आलिया से भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया और आलिया ने उत्साह में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का नाम बता दिया था, जबकि उस समय देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे।
1: Who is the president of India?
0: आलिया की जिंदगी की गहराई में उतरे बगैर, पूरी सच्चाई जाने बगैर नेटिजन्स ने ये मान लिया कि आलिया का आईक्यू लेवल बेहद लो है और सामान्य ज्ञान तो शून्य है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है कि आलिया भट्ट अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी ADHD नामक एक रेयर डिजीज से पीड़ित हैं, जिसका पेशेंट कभी कभी जोन आउट हो जाता है। जोन आउट का मतलब ये है कि पेशेंट फिजिकली कहीं और होता है लेकिन उसका दिमाग अचानक किसी दूसरे जोनर में चला जाता है।
2: मैं बचपन से जोन आउट करते आई हूँ, हमेशा क्लासरूम में भी जोन आउट होती थी, कॉन्वर्जेशंस में जोन आउट होती हूँ। तब रिसेंटली मैंने एक पर्सनालिटी जो भी क्या होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और मुझे पता चला कि मैं ADHD के स्पेक्ट्रम में काफी हाई हूँ। मुझे ADHD है, तो अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर।
0: आपको बता दें कि ADHD डिजीज का IQ लेवल से कोई रिलेशन नहीं है। काफी हाई IQ वाले लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है। होता यही है कि कभी कभी इसका पेशेंट जोन आउट हो जाता है और उस दौरान कोई ऐसा बयान दे सकता है या ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकता है जिससे उसके IQ लेवल पर सवाल उठने लगे। आपको बता दें कि आलिया का न सिर्फ IQ लेवल बल्कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी नेक्स्ट लेवल का है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि साल 2012 से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी आलिया कैमरा ऑन होने के बाद कभी जोन आउट नहीं होती। अलबत्ता कैमरे के सामने आते ही आलिया इतनी फोकस्ड हो जाती हैं कि उन्हें अपने किरदार और संवाद के सिवा कुछ भी ध्यान नहीं रहता।
2: I'm so present जब मैं कैमरा के सामने होती हूँ, चाहे मैं वो किरदार में प्रेजेंट हूँ, मतलब द पार्ट दैट आई एम प्लेइंग, आई एम प्रेजेंट एज द कैरेक्टर, बट आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। और फिर अभी ऑफ कोर्स आफ्टर राहा, जब भी मैं उसके साथ रहती हूँ, आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। तो ये 2 आई थिंक मोमेंट्स है मेरी लाइफ में जहाँ पे मैं सबसे ज्यादा पीसफुल फील करती हूँ।
0: साफ है कि आलिया भट्ट अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को भली भांति पहचानती हैं। यही वजह है कि कॉफी विद करण में गलत जवाब देने के बाद जबरदस्त तरीके से ट्रोल होने पर भी आलिया पूरी तरह काम एंड कूल रहीं। काफी वक्त बाद आलिया से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने पूरे ह्यूमर के साथ जवाब देकर ट्रोलर्स को भी ट्रोल कर दिया।
2: मैं अब ऑनेस्टली बोर हो गई हूँ उस जोक से, मेरे को एक्चुअली नया जोक चाहिए। आई वांट टू मेक अ मिस्टेक अगेन। हाँ, वही मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं क्या गलती करूँ कि फिर से लोग उसको 1-2 साल और खींचेंगे।
0: आपको बता दें कि आलिया बॉर्न एक्ट्रेस हैं। संयोग से इनका जन्म एक ऐसे घराने में हुआ जहाँ माहौल पूरी तरह फिल्मी था। मार्च 1993 को हुए आलिया के जन्म से काफी पहले से पिता महेश भट्ट अर्थ, सारांश, नाम, आशिकी, सड़क और दिल है कि मानता नहीं जैसी कल्ट और आइकॉनिक फिल्मों का निर्देशन कर इंडस्ट्री में अलग पहचान स्थापित कर चुके थे। आलिया की मां सोनी राजदान भी 36 चौरंगी लेन, मंडी, सारांश और त्रिकाल जैसी 8 फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी से क्रिटिक्स की शाबाशी हासिल कर चुकी थीं। आलिया ने भी जब से होश संभाला एक्टिंग को छोड़कर किसी दूसरे काम का तसव्वुर इनके मन में एक बार भी नहीं हुआ।
2: हाँ, आई थिंक मैं हमेशा कहती कि मैं एक्शन पे ही पैदा हुई थी अपनी माँ की कोख से। आई डोंट थिंक देयर वाज दैट वन सेकंड आल्सो कि मैं दुनिया में आई, मुझे उस सेकंड पे ही पता था कि मुझे एक एक्ट्रेस बनना है और मुझे एक्टर बनना है और मुझे एक्टिंग करनी है। आई थिंक उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था।
0: जिन लोगों ने आलिया को अनइन्फॉर्म्ड यूथ का एम्बेसडर बना दिया था उन्हें ये जानना चाहिए कि आलिया भट्ट जब सिर्फ 4 साल की थी तभी उन्होंने श्यामक डावर डांस एकेडमी की समर क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। बात सिर्फ इतनी नहीं है, डांस एकेडमी में 4 साल की आलिया इंडस्ट्री की प्रेस्टिजियस फैमिली का तगमा लेकर नहीं बल्कि लर्निंग हंगर के साथ जाती थी। यही वजह है कि बाकी बच्चों के मुकाबले वो ज्यादा अच्छे से चीजों को ग्रैस्प करती थी। खुद श्यामक डावर ने आलिया की तारीफ करते हुए एक बार कहा था कि आलिया सब कुछ बहुत जल्दी सीख लेती हैं।
2: श्यामक डावर जी के जो समर कैंप समर डांस क्लासेस थे यार, वो एक्चुअली मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का बहुत ही अहम हिस्सा था। एंड आई रिमेम्बर दोज मोमेंट्स वेरी क्लियरली क्योंकि जेन्युइनली इम्पैक्ट मेरी लाइफ में काफ़ी था। क्योंकि कॉन्फिडेंस, लोगों के सामने डांस करना, फ्री बनना, ऐसे फील करना कि आप सबसे छोटे हो पर फिर भी बड़े हो और डांस करना है।
0: 4 की उम्र में श्यामक डावर की डांस क्लास ज्वाइन करने वाली आलिया 7 साल की होते होते नृत्य कला में इतनी पारंगत हो गई कि स्कूल के एक डांस कंपटीशन में श्यामक डावर ने उन्हें हायर क्लास की छात्राओं के बीच भेज दिया। क्योंकि डावर को ये भरोसा हो गया था कि हायर क्लास की छात्राओं के बीच भी आलिया बेहतर परफॉर्म करेंगी। हालांकि तब मासूम आलिया के साथ एक मजेदार वाकया भी पेश आया था।
2: क्लास में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था मेरा, तो श्यामक सर ने मुझे एक सीनियर बैच में डाल दिया। तो मैं 7 साल की थी और मैं क्लास के अंदर आई और इंस्ट्रक्टर कंफ्यूज हो गए कि आप ये क्लास में हो, क्योंकि इट वॉज देवर लिटरली अडल्ट इन दैट क्लास। और मैंने बोला हाँ श्यामक सर, लाइक आई एम सपोज टू कम इन दिस क्लास। तो पहले उनका क्वेश्चन था हाउ ओल्ड आर यू, तो मैंने बोला 7। But then immediately मैंने बोला, but it's my birthday tomorrow. I'm going to be 8 tomorrow.
0: दिलचस्प बात तो यह है कि अगले दिन आलिया का जन्मदिन नहीं था, लेकिन उन्होंने झूठ इसलिए बोल दिया क्योंकि उन्हें डर हो गया था कि कम उम्र को देखते हुए उन्हें कहीं नीचे की क्लास में न भेज दिया जाए। इस लेवल का आत्मविश्वास था आलिया के भीतर बचपन से ही। कमाल ये है कि यही आत्मविश्वास तब भी बना रहा जब आलिया ने रुपहले पर्दे पर चुनौतीपूर्ण किरदार निभाना शुरू किया। इंडस्ट्री के स्टार फैमिली से आने वाले नेपो किड्स आमतौर पर फिल्में साइन करने से पहले अपने घर के अनुभवी सदस्यों से सलाह मशविरा करते हैं, लेकिन आलिया का हिसाब अलग है। वो फिल्में साइन करने से पहले अपने पिता महेश भट्ट या माँ सोनी राजदान, यहाँ तक कि पति रणबीर कपूर से भी क्लियरेंस लेना जरूरी नहीं समझती, बल्कि इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स के आधार पर खुद ही फैसले लेती हैं।
2: मैं एक्चुअली अपना माइंड मेकअप करने के बाद डिस्कस करती हूँ, मैं बिकॉज आई एम नॉट समबडी हु नीड्स टू बी कन्विंस्ड फॉर अ फिल्म। एक तो बात यह है और दूसरी बात यह है कि मेरा इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स ही सबसे प्योर रिस्पॉन्स होता है। तो अगर कोई, मैं इंस्टिंक्टिवली अगर एक्साइट हो जाऊंगी और किसी ने अगर बोल दिया कि मतलब ऐसे मत करो, आई एम जस्ट गिविंग इफ केस सिनेरियो, मेरे साथ हुआ नहीं है, पर अगर बोल दिया तो फिर मेरे दिमाग में डाउट पैदा हो जाएगा। तो मेरी जर्नी मेरी है और मेरी डिसीजन भी मेरी होनी चाहिए, इसलिए दैट्स द रीजन, नॉट फॉर एनी अदर रीजन।
0: आप समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया की नजर में अनइन्फॉर्म्ड सेलेब्स रही आलिया की प्रतिभा उन्हें लेकर बने परसेप्शन से बिल्कुल अलग है। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से किक हुए एकाध अपवादों को छोड़ दें तो आलिया के लेवल का आईक्यू और टैलेंट हिंदी सिनेमा के 100 साल के इतिहास में इक्का दुक्का अभिनेत्रियों में ही नजर आएगा।
1: आलिया बॉलीवुड की एक दमदार फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। आलिया के पिता महेश भट्ट बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा निर्देशकों में शुमार हैं, जबकि मां सोनी राजदान 8 फिल्मों की आइकन रही हैं। लेकिन आलिया ने अपने फिल्मी सफर में आगे बढ़ने के लिए कभी भी पारिवारिक पृष्ठभूमि का सहारा नहीं लिया। शुरू से ही उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट पर भरोसा किया और इसका असर ये है कि आलिया आज बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेट अभिनेत्रियों की फहरिस्त में काफी ऊंचा मकाम हासिल कर चुकी है।
0: इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नेपो किड्स के सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक मिलने की रवायत नई नहीं है। हालांकि ज्यादातर नेपो किड्स अपने पारिवारिक वट वृक्ष के घने साए में अंकुरित होकर फलते फूलते हैं और उसी साए में फना भी हो जाते हैं, पर कुछ नेपो किड्स ऐसे भी हैं जो मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर अपनी पारिवारिक लिगेसी से निकलकर अलग साम्राज्य स्थापित करते हैं। आलिया भट्ट दूसरी कैटेगरी की नेपो किड हैं। बतौर लीड हीरोइन अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने अगर प्रतिभा नहीं तो जुनून, लगन और मेहनत की तो मुनादी कर ही दी थी। तनुजा चंद्रा के निर्देशन में बनी और 1999 में रिलीज हुई आइकॉनिक मूवी संघर्ष में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू करने वाली आलिया भट्ट को हीरोइन के तौर पर डेब्यू करने का मौका बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के जरिए दिया था। आलिया की उम्र तब महज 18 साल थी, लेकिन उनका फिगर फिल्म के किरदार के लिहाज से फिट नहीं था। ऑडिशन के दौरान करण जौहर ने आलिया के लिए कड़ी शर्त रख दी कि उन्हें अपना वेट लॉस करना होगा। आलिया टीनेज में ही अपने करियर को लेकर कितनी संजीदा थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 3 महीने के भीतर उन्होंने अपना वेट 68 किलो से कम करके 51-52 किलो कर लिया, क्योंकि बचपन से बस एक ही तो सपना था आलिया का, सितारा बनकर सिल्वर स्क्रीन पर चमकने का। इसीलिए शूटिंग के दौरान सेट पर पहली बार जब कैमरा ऑन हुआ तो उनका उत्साह चरम पर पहुंच गया।
2: वो कहते हैं ना, एक्सट्रीम जॉय फीलिंग आता है कि कैमरा के सामने वो शूटिंग हो रही है, कुछ अच्छा हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, बट यू फील के अंदर से कुछ। इवन दो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाज अ ब्लर, जो पहला गाना जो मेरी लाइफ की पहली दिन थी शूटिंग की, वो राधा के लिए थी। तो एक शॉट था, मेरे को नीचे आना था, टर्न करके ऐसा कुछ करना था, फिर दुपट्टा उठा के कैमरा में देखना था और ब्लोअर फैन आ रहा था, उसी में ही मेरे को ऐसे बहुत मजा आ गया।
0: पहली बार कैमरे के सामने आने के बाद आलिया बेशक उत्साहित थी, लेकिन फिल्म साइन करने के बाद वो फेल्योर के फियर साइकोसिस का शिकार हो गई थी। आलिया को ये डर सताने लगा कि अगर वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाई या फिल्म पिट गई तो आगे करेंगी क्या। पिता महेश भट्ट को जब बेटी के फियर साइकोसिस के बारे में पता चला तो उन्होंने अलहदा तरीके से आलिया को उससे बाहर निकालने की कोशिश की। महेश भट्ट ने बेटी को विशेष फिल्म्स के अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि मन में जो भी डर है, आशंका है, उसका इजहार सबके सामने करो।
2: फॉर सम रीजन माई फादर इज आउटस्टैंडिंग इन अ क्राइसिस सिचुएशन। जब भी आप क्राइसिस में आप उनको फोन करो, ही हैज द मोस्ट काम टोन एंड ही डील विद द सिचुएशन द बेस्ट वे। इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन उन्होंने डिसाइड किया, ऑफिस आ जाओ, सबके सामने बोलो तुम कैसे फील कर रही हो। जो एक्चुअली एक बहुत अजीब सीक्वेंस सिचुएशन है, क्योंकि आप पहले तो इतना वल्नरेबल फील करो, सबके सामने उठ के बोलना है कि मैं ऐसे फील कर रही हूँ।
0: महेश भट्ट ने ऐसा क्यों किया, क्या उन्हें ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने का कोई मनोवैज्ञानिक अनुभव था, ये तो नहीं पता, लेकिन उनका ये अनोखा फॉर्मूला आलिया के लिए क्लिक जरूर कर गया। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डर का डंका बज जाने के बाद आलिया के अंदर की घुटन कम हो गई। वैसे 19 अक्टूबर 2012 को रिलीज हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर बॉक्स ऑफिस पर तो कामयाब रही, लेकिन आलिया की इमेज बॉर्बी डॉल से कुछ ज्यादा नहीं बन पाई। उधर क्रिटिक्स ने भी आलिया के डेब्यू को महेश भट्ट के प्रभाव से जोड़ दिया। लेकिन फिल्म हिट होने के बाद बड़े पर्दे पर बड़ा मकाम हासिल करने के आलिया के संकल्प के साथ उनका आत्मविश्वास भी जुड़ गया। अगली ही फिल्म हाईवे में अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर आलिया ने क्रिटिक्स को पहले से तय परसेप्शन को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। 21 फरवरी 2014 को रिलीज हुई हाईवे में वीरा त्रिपाठी के डी ग्लैमरस किरदार में बेहतरीन अभिनय का तड़का मारकर आलिया ने उन्हें बॉर्बी डॉल कहने वालों का मुंह बंद कर दिया। दरअसल अभिनय को लेकर आलिया का फलसफा शुरू से ही कन्वेंशनल नहीं बल्कि इंस्टिंक्टिव रहा है।
2: कैमरे के सामने का जो एक फीलिंग होता है ना, उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता है। एट द एंड ऑफ द डे मैं जितना भी चाहे डायलॉग सीख लूं या कुछ रट्टा मार लूं, फिजिकल ट्रेनिंग कर लूं, अपने आप को कमरे में बंद करके मेथड एक्टिंग भी कर लूं, अगर कैमरे के सामने मुझे फीलिंग नहीं आ रही है तो कैमरा पकड़ लेगा और मेरी परफॉर्मेंस जो है उसमें दिख जाएगी। तो तैयारी जारी रहती है फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं कैमरे के सामने सिर्फ फील करने की कोशिश करती हूँ।
0: हाईवे के बाद आलिया ने इंडस्ट्री में मुनादी कर दी कि मीना कुमारी और मधुबाला की खींची हुई अदाकारी की लीक इस युग में भी मिटी नहीं है। 2016 में आई उड़ता पंजाब के बाद तो क्रिटिक्स ने भी स्वीकार कर लिया कि आलिया की अदाकारी किसी एक जोनर तक महदूद नहीं है। उड़ता पंजाब के एक मैले कुचैले भोजपुरी लड़की के किरदार में आलिया ऐसे गुम हो गई कि पहचानना मुश्किल हो गया कि ये वही राधा हैं जिसने डिस्को दीवाने पर ठुमके लगाए थे। उड़ता पंजाब के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। दो हजार 2018 में आई राजी में एक कश्मीरी जासूस के किरदार में आलिया ने अपने अभिनय से इतनी जान फूंक दी कि 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाली कुछ एक महिला प्रधान फिल्मों में शुमार हो गई। वहीं 2019 में आई गली बॉय में सफीना के किरदार को आलिया ने अपनी एक्टिंग से जीवंत कर दिया। गली बॉय में नारी को प्रकृति से सहज प्राप्त कोमलता और जरूरत पड़ने पर प्रकट होने वाली आक्रामकता के मिश्रण को आलिया ने इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद तो आलिया बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइनों की फेहरिस्त में शुमार हो गईं। 25 फरवरी 2022 को रिलीज हुई गंगूबाई काठियावाड़ी आलिया के करियर में मील का
3: Your Saturday nights will never be the same.
4: The biggest hits back to back in the mix. Get ready for the biggest mix show on the planet.
5: The Tailgate Block Party.
6: The Tailgate Block Party.
7: 6 hours non-stop. Non-stop.
8: The best DJs from around the world.
9: The Tailgate Block Party.
10: Saturday night.
11: 8 p.m. Eastern.
12: Follow Tailgate Radio Official on Instagram to find out who is dropping the beats this week.
13: And search Tailgate Radio on TuneIn to listen.
14: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
15: और अब जब बात फिल्मों की हो रही है तो रोहित शेट्टी की गोलमाल 5 का भी जिक्र कर लेते हैं जिसकी शूटिंग जारी है। रोहित की इस फिल्म में अजय देवगन समेत पुरानी स्टार कास्ट है, लेकिन इस बार फिल्म में लगने वाला है कॉमेडी का मास्टर स्ट्रोक वाला तड़का, क्योंकि गोलमाल 5 में इस बार अक्षय कुमार भी दिखेंगे, जहां अक्षय की एंट्री से फिल्म का सुपरहिट होना तय माना जा रहा है। वहीं इस फिल्म में अक्षय की फीस भी चर्चाओं का विषय बनी हुई है।

0: रोहित शेट्टी की गोलमाल फ्रेंचाइजी का नाम ही कॉमेडी की गारंटी है। दर्शकों को सालों से लोटपोट करने वाली गोलमाल की टीम एक बार फिर धमाल मचाने के लिए तैयार है। गोलमाल 5 को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बस बना हुआ है, लेकिन इस बार का धमाका डबल होने वाला है, क्योंकि फिल्म में एंट्री हो चुकी है कॉमेडी के किंग अक्षय कुमार की। जब रोहित शेट्टी की कॉमेडी और अक्षय कुमार की टाइमिंग एक साथ मिलेगी तो स्क्रीन पर आग लगना तो तय है। ऐसे में फैंस फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अक्षय के इस फिल्म से जुड़ने से ये और ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है। इन सब के बीच अब गोलमाल 5 से अक्षय कुमार की फीस की भी खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि अक्षय ने इस फिल्म में अजय देवगन से ज्यादा फीस वसूली है, यानी इस धमाके के लिए मेकर्स की जेब अच्छी खासी ढीली हुई है। खबरों की माने तो अक्षय कुमार ने इस फिल्म के लिए इतनी भारी भरकम फीस ली है कि ट्रेड पंडितों के भी कान खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार ने गोलमाल 5 की 18 से 22 दिनों की शूटिंग की है, जिसके लिए उन्होंने अजय देवगन से कहीं ज्यादा फीस वसूली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार को अपने रोल के लिए 35 से 40 करोड़ मिले हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि पूरी फिल्म में दिखने वाले अजय देवगन से ज्यादा फीस सिर्फ 20 दिनों की शूटिंग करने वाले अक्षय कुमार को क्यों मिल रही है। तो जनाब, इसे कहते हैं स्टार पावर और स्पेशल रोल का जलवा। दरअसल माना जा रहा है कि फिल्म में अक्षय कुमार का रोल भले ही छोटा हो, लेकिन वो पूरी कहानी का टर्निंग प्वाइंट है। यानी जितने समय भी अक्षय स्क्रीन पर रहेंगे, दर्शकों को हंसते हंसते पेट फुलाने पर मजबूर कर देंगे। वैसे भी रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, दोनों जब भी मिलते हैं कॉमेडी का तड़का तो लगता ही है, साथ में बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश की भी गारंटी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
3: शनि अमावस्या के पावन दिन अयोध्या में उमड़ा आस्था का मेला, मां सरयू की हुई विशेष आरती, वैदिक मंत्रोच्चार से गूंजा नया घाट। महाराष्ट्र के अकोला में धूमधाम से मनाई गई शनि जयंती, प्राचीन मंदिर में काटा गया 11 किलो का कलाकंद केक, भजन कीर्तन और सुंदरकांड का पाठ। गुजरात के वड़ताल धाम में लगाया गया 500 किलो आम का भोग, केसर आम की खुशबू से महका स्वामीनारायण मंदिर का गर्भगृह, गर्मी को देखते हुए लगाया गया भोग। देवभूमि में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं का भजन कीर्तन, अब तक करीब 2.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। भीषण गर्मी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जंगल सफारी में बेजुबानों के लिए खास इंतजाम, खास डाइट प्लान का हो रहा अपना पालन, एसी पंखा और कूलर की व्यवस्था।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: रक्षा क्षेत्र में भारत हर दिन एक नया अध्याय लिख रहा है। स्वदेशी तकनीक के जरिए ऐसे ऐसे कीर्तिमान रचे जा रहे हैं जो दुनिया को बहुत चक्का कर रहे हैं। मिसाइल से लेकर युद्धपोत तक और फाइटर जेट से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक सब कुछ देश में ही तैयार हो रहा है और वो भी वर्ल्ड क्लास। जो तकनीक और ताकत दुनिया के चंद देशों की जागीर मानी जाती थी, उस टेक्नोलॉजी पर अब भारत का दबदबा है। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए, ये कोई साधारण तस्वीर नहीं है बल्कि डिफेंस सेक्टर में भारत के बढ़ते रुतबे को दुनिया के सामने रख रही है। यह तस्वीर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम का नया अध्याय है जो भविष्य के सुपर हिंदुस्तान का रास्ता तैयार कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। दरअसल डीआरडीओ और डीआरडीएल ने मिलकर इस मिसाइल के एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का 20 मिनट तक सफल परीक्षण किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एक्टिव कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए जरूरी एक्सट्रीम टेम्परेचर को सहने की इंजन क्षमता साबित हुई है। हैदराबाद स्थित डीआरडीएल यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में स्क्रैमजेट कंबस्टर का परीक्षण किया गया, जो कि 20 मिनट से ज्यादा समय तक चला। इस टेस्ट की सबसे बड़ी बात यह रही कि इसमें एक्टिव कूलिंग, थर्मल बैरियर कोटिंग और इंडिजिनस फ्यूल जैसी जटिल तकनीकें भारत ने खुद विकसित की हैं। इस टेस्ट के जरिए अत्यधिक तापमान और दबाव की स्थिति में सुपरसोनिक इंजन से निकलने वाली गर्मी को कंट्रोल करने की क्षमता को जांचा गया।
1: ये पिछले बार के वर्जन से इम्प्रूव्ड वर्जन है। पिछले बार इन्होंने 700 सेकंड पे किया था, इस बार 1200 सेकंड पे, तो टाइमिंग बढ़ी है। तो कहने का मतलब ये कि जो इंडिजिनसली डेवलप आपका फ्यूल है, लिक्विड हाइड्रोकार्बन फ्यूल, और उसका जो एडवांस थर्मल बैरियर कोटिंग है वो आले दर्जे का, वो ज्यादा देर तक विस्टैंड कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये कि जब आप इस तरीके की मिसाइल डेवलप करते हैं स्क्रैमजेट इंजन द्वारा, तो आपको एक फ्यूल और आपको उसका कंबशन सिस्टम पे ज्यादा ध्यान होता है, जो कि इस बार 1200 सेकेंड तक वो उसको इसकी स्टेबिलिटी चेक की गई है।

0: हाइपरसोनिक स्पीड पर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, जिससे इंजन पिघल सकता है। 20 मिनट से ज्यादा समय तक इंजन का सफलतापूर्वक चलना ये साबित करता है कि भारत ने एक्टिव कूलिंग तकनीक में महारत हासिल कर ली है। अब स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन से मिसाइल को Mach 5 से ज्यादा की रफ्तार मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि आवाज की स्पीड से 5 गुना तेज यानी कि करीब 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्रचंड रफ्तार से दुश्मन पर प्रहार।
1: देखिए, हिंदुस्तान ने जब हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप किया विथ स्क्रैमजेट इंजन के साथ, तो ये दिखाता है कि अगर ये मिसाइल 5 Mach से ज्यादा स्पीड हासिल करती है, इसका मतलब हुआ कि 6175 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में इतना डिस्टेंस जाएगा, तो पाकिस्तान का कोई भी टारगेट विद इन 20-30 मिनट के अंदर एंगेज कर लिया जाएगा। और इसी तरह चाइना का भी काफी बड़ा इलाका इसके कवरेज एरिया में आता है, तो एक स्ट्रेटजिक एज हिंदुस्तान को देता है और साथ में इंडिजिनसली डेवलप्ड है, तो हमें किसी बाहर के कंट्री पे भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है।
0: स्क्रैमजेट की सफलता से भारत अमेरिका, रूस और चीन के साथ उन चुनिंदा देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया है जो स्क्रैमजेट तकनीक में Mach 5 से ज्यादा स्पीड वाली मिसाइलें विकसित कर रहे हैं।

0: सबसे पहले इंडिजिनस स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी, उसमें जो हमने उसका फ्यूल इस्तेमाल किया, जो हाइड्रो कार्बन फ्यूल है, वो इंडिजिनसली डेवलप किया गया। ये फ्यूल का ही एक है कि उसका जो बर्निंग है, जो उसकी जो कंबशन सिस्टम है, वो कैसे डेवलप किया जाए, कैसे आप इतनी हीट या एनर्जी डेवलप करें जिससे कि मिसाइल को वो 5 मैक की स्पीड से प्रोपेल कर सके, और साथ में उसमें इस तरीके की कोटिंग की जाती है, सेरेमिक कोटिंग की जाती है कि जिससे वो उस हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सके। तो कहने का मतलब ये कि जब ये विकसित हुआ है तो ये काफी लगन, काफी एफर्ट, काफी ट्रायल के बाद इसको विकसित किया गया है, और जब ये स्वदेशी हो जाता है तो इसमें हमें किसी और फॉरेन कंट्री पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं होती।
1: डीआरडीओ का नया टेस्ट भारत की सैन्य ताकत और एशिया का शक्ति संतुलन बदल सकता है। इसका सबसे बड़ा असर हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दिखाई देगा। चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, ऐसे में लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल भारत के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकती है। हाल ही में डीआरडीओ ने 1500 किलोमीटर रेंज वाली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल समुद्र में दुश्मन के बड़े युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना सकती है। इसका मतलब साफ है कि अगर हिंद महासागर में किसी भी दुश्मन नौसेना ने दबाव बनाने की कोशिश भी की तो भारत अब हजारों किलोमीटर दूर से तेज और सटीक हमला करने की क्षमता की तरफ बढ़ रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि वो बेहद तेज रफ्तार के साथ उड़ान के दौरान दिशा बदल सकती हैं। इससे दुश्मन के रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए उन्हें ट्रैक करना आसान नहीं होता। 5 से ज्यादा रफ्तार वाली मिसाइल तैयार होने से चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की स्ट्राइक क्षमता और रणनीतिक ताकत कई गुना बढ़ सकती है। साल 2025 में डीआरडीओ ने छोटी अवधि के स्क्रैमजेट टेस्ट किए थे, लेकिन अब दूसरी बार जब फुल स्केल कंबस्टर का टेस्ट किया गया तो 20 मिनट से ज्यादा चला। इससे पहले डीआरडीओ ने 9 जनवरी 2026 को भी हैदराबाद में फुल स्केल एक्टिवली कूल स्क्रैमजेट कंबस्टर का 12 मिनट से ज्यादा का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक किया था, जो ये बताता है कि भारत अब अपने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ब्रह्मोस 2 मिसाइल के डिजाइन के लिए दूसरे देशों की तरफ नहीं देखेगा, बल्कि अब देश में ही उसे तैयार किया जाएगा। मौजूदा समय में दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती मिसाइल को रोकने में सक्षम नहीं है। रडार को जब तक खतरे का पता चलेगा तब तक मिसाइल अपना काम कर चुकी होगी।
2: भारत के लिए खतरा जितना चीन से है उतना ही पाकिस्तान से भी है, लेकिन अगर चीन की बात की जाए तो चीन हथियारों की दौड़ में बहुत तेजी से आगे भाग रहा है। चीन अपने पास एआई तकनीक से लैस तमाम हथियारों को विकसित कर रहा है, साथ ही साथ हाइपरसोनिक तकनीक में भी वो आगे बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत भी इस तकनीक में महारत हासिल करे और अपने बेड़े में हाइपरसोनिक हथियारों को भी शामिल करे।
1: हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा स्पीड से चलती है। इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है जिससे उसको ताकत मिलती है। अब स्क्रैमजेट इंजन क्या है और कैसे काम करता है इसे भी जान लीजिए। स्क्रैमजेट एक खास तरह का एयर ब्रीदिंग इंजन है। इसे शुरू करने के लिए रॉकेट बूस्टर की जरूरत होती है। स्क्रैमजेट में ईंधन के दहन के लिए वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिए इसी स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। स्क्रैमजेट से फायदा ये होगा कि इसका इस्तेमाल कम लागत में उपग्रहों के प्रक्षेपण में भी किया जा सकेगा। वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने से स्क्रैमजेट इंजन हल्का, ज्यादा तेज और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम माना जाता है।
0: जब ये इंजन एयर में जाता है तो इतनी हाई स्पीड से होता है तो जो एटमॉस्फेयर में एयर होता है उसको इस स्पीड पे कंप्रेस करता है और उसका लगातार ये सप्लाई जारी रहती है जिससे वो फ्यूल से रिएक्ट करके हीट जनरेट करता है। तो और ये लगातार होना चाहिए। अगर इसमें कोई बाधा है या अनइवन बर्निंग है, अनइवन हीट जनरेशन है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। तो एक स्पीड पे कंप्रेस एयर को फ्यूल के साथ मिक्स करके एनर्जी डेवलप करना और लगातार ये जारी रखना।
1: भविष्य में ये तकनीक ब्रह्मोस 2 में इस्तेमाल होगी, जो भारत रूस का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ब्रह्मोस 2 मैक 7 से 8 स्पीड वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर होने का अनुमान है। डीआरडीओ का लक्ष्य है कि साल 2028 तक ऐसी मिसाइल को पूरी तरह से विकसित कर लिया जाए। मिसाइलों को ठोस या तरल ईंधन से चलने वाले रॉकेट या जेट इंजन द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। कुछ मिसाइलों में जैसे कि ब्रह्मोस में रामजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो सुपरसोनिक रफ्तार हासिल करने के लिए हवा को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। वहीं हाइपरसोनिक मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। भारत का लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल प्रोग्राम अब अपने एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है और जल्दी ही शुरुआती परीक्षण होने की उम्मीद है। हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत ने कहा था, भारत हाइपरसोनिक ग्लाइड और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसमें ग्लाइड संस्करण मौजूदा समय में विकास के मामले में आगे है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन होता है और उड़ान के दौरान इसे ऊर्जा मिलती है। हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल शुरुआती रफ्तार हासिल करने के लिए बूस्टर का इस्तेमाल करती है और फिर बिना किसी ऊर्जा के ग्लाइड करती है। मिसाइल में दो स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। पहले चरण के खत्म होते ही वो अलग हो जाती है, जबकि दूसरा चरण मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंचाता है। इसके बाद मिसाइल बिना इंजन के ग्लाइड फेज में एंट्री करती है और टारगेट तक पहुंचने से पहले कई रणनीतिक मूवमेंट करती है।
0: देखिए, मिसाइल में जो दो टू स्टेज रॉकेट होते हैं, प्रोपल्शन होता है, उसमें एक इनिशियल फेज का होता है और एक सब्सिक्वेंट फेज का होता है। इनिशियल फेज का काम होता है वो हीट, वो एनर्जी, वो थ्रस्ट डेवलप करना, जिससे कि मिसाइल को लॉन्च किया जा सके, लिफ्ट दिया जा सके एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में। और जब ये काम हो जाता है तब वो मोटर काम करना बंद कर देता है, तब सेकेंड स्टेज का मोटर काम करता है, जो अगेन उस वेलोसिटी को मेंटेन करता है एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक

0: पे सस्टेन प्रेशर क्रिएट करता है जिससे कि उसकी वेलोसिटी बन सके।
1: आज दुनिया के कई देश अपनी मिसाइल क्षमता को धार देने में जुटे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है, मिसाइल ही एक ऐसा हथियार है जो हर तरह के युद्ध क्षेत्र में कामयाब है। चाहे लड़ाई जमीन पर हो, आसमान पर या फिर अंतरिक्ष में, मिसाइल हर मोर्चे पर कारगर है। एक मिसाइल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो दुश्मन के टारगेट पर आए बिना अपने टारगेट को ध्वस्त कर दे। हालांकि इसमें अत्याधुनिक रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम रोड़ा जरूर अटकाते हैं, और इसीलिए यहीं से हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर सोच शुरू हुई, जिसको लेकर काम चल रहा है। आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है और ये दुनिया के लिए चिंता का विषय क्यों बन गया, ये समझने की जरूरत है। हाइपरसोनिक हथियार आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज रफ्तार से चलते हैं और अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि हाइपरसोनिक वेपन की रफ्तार ही उसकी ताकत है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल भी आवाज की रफ्तार से तेज चलती है। ऐसे में हाइपरसोनिक वेपन की असली ताकत क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। हाइपरसोनिक मिसाइल को एक व्हीकल तेजी से अंतरिक्ष की तरफ ले जाता है, जिसके बाद वो ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ती है। ये इतनी तेजी से अपना रास्ता बदलती है कि किसी भी देश का एंटी मिसाइल सिस्टम इसे ट्रैक नहीं कर पाता और ये अपने टारगेट को आसानी से ध्वस्त कर सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल को जब एक जगह से लॉन्च किया जाता है तो पता चल जाता है कि उसका टारगेट कहाँ है और वो किसे निशाने पर लेगी। ऐसे में इन मिसाइलों को ट्रैक करना आसान होता है। इसके साथ ही लॉन्चिंग के साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलों की दिशा में बदलाव नहीं किया जा सकता। वहीं लॉन्चिंग के साथ हाइपरसोनिक मिसाइलों की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है।
0: ये हाइपरसोनिक मिसाइल या जो वेपन है, उनका जो ग्रेडिंग है वो एनी एरियल ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा है, जैसा कि मैंने बताया 6175 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो अगर इसकी स्पीड ज्यादा होती है वो हाइपरसोनिक कैटेगरी में आता है। जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा है उसको रडार कैसे डिटेक्ट करेगा? चाहे रडार किसी भी प्रिंसिपल पे काम कर रहा हो, चाहे डॉपलर पे काम कर रहा हो या अन्य प्रिंसिपल पे काम कर रहा हो, बाई द टाइम पल्स उसको जाके हिट करके वापस आती तब तक वो मिसाइल आगे निकल चुका होता है। एक स्पीड, दूसरा लो हाइट या हाई हाइट, इसमें कोई रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। इस वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल ने लड़ाई लड़ने की विधा में टोटल तब्दीली कर दी।
1: हाइपरसोनिक हथियार सबसोनिक मिसाइलों से कहीं तेज रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इनकी रफ्तार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से बेहद कम होती है। हाइपरसोनिक हथियार सिस्टम 2 तरह के होते हैं, पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और दूसरा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जिस तरह एक सर्फर समंदर की लहरों पर ग्लाइड करता है, ठीक उसी तरह से हाइपरसोनिक हथियार हवा में ग्लाइड करते हैं, जिससे इसे रोकना आसान नहीं होता। हाइपरसोनिक हथियार की एक और खासियत होती है कि ये कम ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकते हैं। मौजूदा समय में तमाम देशों का फोकस ग्लाइड व्हीकल्स पर है। दरअसल ग्लाइड व्हीकल एक नई तकनीक है। ग्लाइड व्हीकल के साथ एक मिसाइल लगाई जाती है जो कि एक टारगेट पर जाकर ग्लाइड व्हीकल से अलग हो जाती है, जिसके बाद वो टारगेट की तरफ सीधा ग्लाइड करते हुए फोकस करती है और उसे ध्वस्त करके ही दब लेती है। हाइपरसोनिक हथियार बनाने की दिशा में भारत अपना कदम आगे बढ़ा चुका है। HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के परीक्षण की शुरुआत हो चुकी है। 27 जनवरी 2023 को DRDO ने HSTDV परीक्षण किया था, जो सफल रहा।

साल 2020 में भारत ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड का टेस्ट किया था, जिसमें महज 20 सेकंड में 7500 किलोमीटर के टारगेट को पूरा किया गया था। हालांकि भारत इस तकनीक में पिछले कई सालों से लगातार लगा हुआ है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल को लॉन्च कर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि ऐसी कोई रफ्तार नहीं जहां उसकी पहुंच नहीं। हाइपरसोनिक व्हीकल का ट्रायल एक ऐसी कामयाबी है जो हिंदुस्तान की ताकत में कई गुना इजाफा करेगा।

0: हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल 6000 से 12000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये 20 सेकंड में मैक 6 की रफ्तार और 32.5 किलोमीटर ऊंचाई तय करने में सक्षम है। HSTDV के परीक्षण के बाद भारत के रक्षा क्षेत्र को और अधिक मजबूती मिलेगी, क्योंकि इसके साथ ही भारत अब उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सक्षम है। दुनिया बदल रही है, युद्ध बदल रहे हैं, युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं, रण क्षेत्र की रणनीतियां बदल रही हैं, और इसी के तहत अब आने वाले समय में युद्ध AI और हाइपरसोनिक तकनीक के साथ लड़े जाएंगे। भारत ने भी खुद को इसी क्षेत्र में तैयार किया है और ऐसा ही एक परीक्षण हाल फिलहाल में भारत ने किया, जिसके बाद पूरी दुनिया का ध्यान भारत ने अपनी ओर खींचा। बीते कुछ वर्षों से दुनिया का माहौल जिस तरीके से बदला है, उसे देखते हुए भारतीय सेना कंप्लीट चेंज के मोड में है। बदलते सुरक्षा हालात को देखते हुए सेना खुद को नए समय के मुताबिक तैयार कर रही है, जिसमें छोटे से छोटे हथियार तक को धार दी जा रही है। इसी कड़ी में भारत ने स्वदेशी ग्लाइड वेपन तारा का पहला सफल परीक्षण किया। तारा का पूरा नाम है टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन। ये भारत का पहला स्वदेशी मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है। आसान भाषा में समझा जाए तो तारा एक ऐसा सिस्टम है जो किसी साधारण बम को स्मार्ट ग्लाइड बम में तब्दील कर देता है। आमतौर पर जो अनगाइडेड बम होते हैं, उसे एक अंदाजे से टारगेट के ऊपर गिराया जाता है और इसके लिए विमान को टारगेट के करीब जाना पड़ता है और फिर उसके बाद ये टारगेट की ओर गिराया जाता है। वहीं अगर हम गाइडेड बम की बात करें तो इससे दूर रहकर भी दुश्मन के ठिकाने को निशाने पर लिया जा सकता है। तारा ग्लाइड वेपन किट से न सिर्फ हथियार की रेंज में बढ़ोतरी होती है बल्कि सटीकता भी सुनिश्चित होती है। फाइटर जेट से छोड़े जाने के बाद ये सिस्टम एरोडायनामिक लिफ्ट और गाइडेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके एक आम फ्री फॉल बम के मुकाबले कहीं ज्यादा दूरी तय करता है, साथ ही हमले की सटीकता को भी बेहतर बनाता है।
1: तारा है, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, जितने हमारे डंप बॉम्ब है या जो ग्रेविटी बॉम्ब है उसमें इसको फिट कर दिया जाता है। इसमें विंग्स होते हैं, इसमें सेंसर होते हैं। कहने का मतलब यह है कि डंप बॉम्ब को कैसे स्मार्ट वेपन में कन्वर्ट किया जा सकता है। स्मार्ट का मतलब जो सेंसर के डायरेक्शन ले सके, जिसकी फ्लाइट मैनिपुलेट किया जा सके, जो प्रिसीजन स्ट्राइक कर सके और जिसको फ्लाइट के दौरान मैनिपुलेट करके सही टारगेट पे या टारगेट स्विचिंग किया जा सके। तो ये सारी सुविधाएं जो है तारा के थ्रू अचीव की जा सकती है।
0: स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा का ये परीक्षण बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि तारा भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करेगा जो अपने पुराने बमों को सटीक और दूर मार करने वाले हथियार में बदल सकते हैं। तारा असल में एक मॉड्यूलर ग्लाइड किट है। आसान भाषा में अगर इसको समझना तो उसे कहेंगे कि हवाई जहाज से गिराए जाने वाले अनगाइडेड बमों के साथ लगाई जाने वाली किट, जिसका सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि ये सही और सटीक निशाना लगा पाएगी। ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा में विंग्स, कंट्रोल सरफेस और एक बेहतरीन गाइडेंस पैकेज लगाया जाता है। इससे पुराने बम हवा में लंबी दूरी तक ग्लाइड करके जा सकते हैं और बेहद सटीक निशाना लगा सकते हैं। तारा में हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इनर्शियल नेविगेशन और सैटेलाइट गाइडेंस दोनों शामिल हैं। इससे सटीकता बहुत ज्यादा रहती है। विदेशी सिस्टम की तुलना में तारा ग्लाइड वेपन सिस्टम बेहद सस्ता भी है। इससे वायुसेना के पास पड़े लाखों पुराने बमों को आधुनिक हथियारों में बदला जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि किन किन देशों के पास ये तकनीक है। अमेरिका के पास JDM और JSOW है। ये साधारण अनगाइडेड बमों को प्रीशियस गाइडेड बम में तब्दील करते हैं। रूस के पास UMPK ग्लाइड बम किट है, जो उसने यूक्रेन युद्ध में अपने साधारण बमों को ग्लाइड करने के लिए इस्तेमाल किया था। इसराइल के पास स्पाइस 250 और स्पाइस 2000 जैसे बम प्रणालियां हैं। इनमें AI पर आधारित इलेक्ट्रो ऑप्टिकल होमिंग सीकर लगा है। भारत ने इसराइल से ये किट खरीदी है। फ्रांस के पास AASM हैमर रॉकेट बूस्टर है। वहीं तुर्की के पास HGK किट है, जो तारा की तरह ही काम करती है। इंडियन एयरफोर्स के लिए तारा जैसे सिस्टम भविष्य में कुछ ऐसे स्ट्राइक मिशनों के लिए एक सस्ता विकल्प साबित हो सकते हैं जिनके लिए महंगी क्रूज मिसाइलों या उन्नत स्टैंड ऑफ हथियारों की जरूरत नहीं होती। स्टैंड ऑफ वो हथियार होते हैं जिन्हें काफी दूर से दुश्मन की नजर से दूर रहकर दागा जाता है। इन्हें बियॉन्ड विजुअल रेंज हथियार भी कहा जाता है। तारा से फायदा ये होगा कि फाइटर जेट से दागे जाने वाले किसी भी बम को BVR वेपन में तब्दील कर देगा। तारा को हम एक तरह से आत्मनिर्भर भारत की पहचान भी कह सकते हैं क्योंकि पूरी तरह से भारत में ही विकसित सिस्टम है। पहले इस तरह के सिस्टम्स के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन अब भारत ने खुद का अपना सिस्टम तैयार किया है जो कि हमारी वायुसेना को और ज्यादा ताकत देगा और सही निशाना लगाने की क्षमता देगा।

0: क्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: सिर्फ बद्रीनाथ धाम ही नहीं बल्कि केदारनाथ धाम समेत पूरे चार धाम यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। एक तरफ भक्तों की आस्था हिलोरे मार रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार और प्रशासन यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने में जुटे हुए हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग, मेडिकल टीम, पुलिस और राहत दल लगातार तैनात है। भक्ति और आस्था से सराबोर उत्तराखंड इन दिनों आध्यात्मिक ऊर्जा से गूंज रहा है।

आस्था का सैलाब, पहाड़ों पर उमड़ता विश्वास और हर दिन बनता नया इतिहास। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा इस बार रिकॉर्ड रफ्तार से आगे बढ़ रही है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भक्तों का उत्साह चरम पर है। पहाड़ों की कठिन राह भी श्रद्धा के आगे छूटी पड़ रही है। सरकार सुरक्षा, सुविधा और व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत बना रही है ताकि हर यात्री का सफर सुरक्षित और आसान बने। चारधाम यात्रा अब नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। चारों धामों में सुबह से लेकर देर शाम तक दर्शन के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले लोग बाबा केदार, बद्री विशाल, माँ गंगा और माँ यमुना के दर्शन कर खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। यात्रा शुरू होने के बाद से लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक चार धाम में दर्शन करने वालों का आंकड़ा 12,60,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं बद्रीनाथ धाम में आने वाले भक्तों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। सबसे ज्यादा उत्साह केदारनाथ यात्रा को लेकर देखा जा रहा है। ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और कठिन रास्ते भी लोगों के कदम नहीं रोक पा रहे। हर उम्र के लोग बाबा केदार के दर्शन के लिए पैदल मार्ग पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार भी पूरी तैयारी के साथ यात्रा संचालन में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि मौसम खराब होने की स्थिति में हर यात्री की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम तेजी से बदलता है, इसी वजह से प्रशासन ने विशेष निगरानी तंत्र तैयार किया है। रियल टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। भीड़ नियंत्रण और स्लॉट मैनेजमेंट को भी प्रभावी बनाया गया है ताकि किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। रास्तों में मेडिकल टीम, पुलिस बल, आपदा राहत दल और हेल्प सेंटर लगातार तैनात हैं। घोड़ों, पालकियों और हेलीकॉप्टर सेवाओं की व्यवस्था भी सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। यात्रा मार्ग पर सफाई और स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी विशेष फोकस किया गया है। पहाड़ों में गूंजते जयकारे श्रद्धा से भरे चेहरे बता रहे हैं कि इस बार की यात्रा खास है।

0: भक्ति और विश्वास का यही संगम उत्तराखंड को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
3: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: शनि अमावस्या के पावन दिन अयोध्या में उमड़ा आस्था का मेला, मां सरयू की हुई विशेष आरती, वैदिक मंत्रोच्चार से गूंजा नया घाट। महाराष्ट्र के अकोला में धूमधाम से मनाई गई शनि जयंती, प्राचीन मंदिर में काटा गया 11 किलो का कलाकंद केक, भजन कीर्तन और सुंदरकांड का पाठ। गुजरात के वड़ताल धाम में लगाया गया 500 किलो आम का भोग, केसर आम की खुशबू से महका स्वामीनारायण मंदिर का गर्भगृह, गर्मी को देखते हुए लगाया गया भोग। देवभूमि में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं का भजन कीर्तन, अब तक करीब 2.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। भीषण गर्मी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जंगल सफारी में बेजुबानों के लिए खास इंतजाम, खास डाइट प्लान का हो रहा पालन, एसी पंखा और कूलर की व्यवस्था।

देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत के जीवन का विलक्षण वृत्तांत लेकर हम हाजिर हुए हैं वो कान फिल्म फेस्टिवल में अपने एलिगेंट लुक से आम लोगों के साथ ही सेलेब्स का भी दिल जीत रही है।

आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइंस में से शुमार आलिया भट्ट हैं। जी हाँ, आपको बता दें, आलिया इन दिनों कान फिल्म फेस्टिवल में अपने दिलकश लुक और अदाओं का जलवा बिखेर रही हैं। ये वही आलिया है जो कि सोशल मीडिया पर कभी जिनके मीम्स की भरमार रहा करती थी। एक समय आलिया की ट्रोलिंग नेटिजंस का स्ट्रगल बन गया था। हालांकि सोशल मीडिया पर आलिया का जो परसेप्शन बना, आलिया की हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। आलिया की प्रतिभा की गहराई को वही समझ सकता है जो कि शिद्दत से उनकी जिंदगी में उतरने की कोशिश करेगा। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगी कि आलिया को एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से कभी कभी वो जोन आउट हो जाती है और ट्रोलर्स उसी मोमेंट को पकड़ लेते हैं।

परसेप्शन और रियलिटी के बीच धूप छांव वाला रिश्ता काफी पुराना है। परसेप्शन कई बार रियलिटी के बहुत करीब होता है और कई बार रियलिटी परसेप्शन से कोसों दूर होती है। कान फिल्म फेस्टिवल में अपने फैबुलस और किलर लुक से धूम मचा रही आलिया भट्ट परसेप्शन और रियलिटी के बीच की अजीबो गरीब रिश्ते की अनूठी दास्तान है। बीते 12 मई को कान ओपनिंग सेरेमनी के रेड कार्पेट में कस्टम तमारा राल्फ गाउन में दुनिया भर के सेलेब्स के आकर्षण का केंद्र बनी आलिया इस प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल में लोरियल पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर के तौर पर पहुंची हैं। आलिया कान के हर इवेंट में अलग अलग अट्रैक्टिव आउटफिट में नजर आ रही हैं और अपने ओवरऑल सेंसिबल और एलिगेंट लुक से सेलेब्स की भी सेलिब्रिटी बनी हुई हैं। 14 मई को आलिया भट्ट ने लॉरियल पेरिस गाला डिनर के दौरान फ्लोरल ब्रोकेड आउटफिट में आकर सबका दिल जीत लिया। डिनर में डस्टी रोज और एंटीक टोन वाले फ्लोरल ब्रोकेट कॉर्सेट और मैचिंग फिटेड स्कर्ट में आलिया गजब की अट्रैक्टिव लग रही थी। कान फिल्म फेस्टिवल 2026 में चर्चा का केंद्र बनी ये वही आलिया हैं सोशल मीडिया पर जिनकी इमेज कभी अनइन्फॉर्म्ड और इग्नोरेंट यूथ की बन गई थी।

0: एक समय सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आलिया भट्ट के मीम्स से भरे रहते थे। आलम ये था कि किसी ने तथ्यात्मक रूप से कोई गलत बयानी की तो सोशल मीडिया पर तुरंत उसकी तुलना आलिया भट्ट से कर दी जाती थी। बहरहाल ये आलिया के बारे में सोशल मीडिया यूजर्स या नेटिजन्स का अपना परसेप्शन था। आलिया की रियलिटी नेटिजन्स के परसेप्शन से कोसों दूर है। आपको बता दें कि आलिया को लेकर इस तरह का सोशल मीडिया परसेप्शन इसलिए बन गया था क्योंकि एक बार उन्होंने देश के राष्ट्रपति का नाम गलत बता दिया था। दरअसल बतौर लीड एक्ट्रेस 2012 में आई अपनी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के प्रमोशन के लिए आलिया करण जौहर के शो कॉफी विद करण में अपने को स्टार्स वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ पहुंची थी। करण ने लाइटर मोड में आलिया से भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया और आलिया ने उत्साह में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का नाम बता दिया था, जबकि उस समय देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे।
1: Who is the president of India?
0: आलिया की जिंदगी की गहराई में उतरे बगैर, पूरी सच्चाई जाने बगैर नेटिजन्स ने ये मान लिया कि आलिया का आईक्यू लेवल बेहद लो है और सामान्य ज्ञान तो शून्य है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है कि आलिया भट्ट अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी ADHD नामक एक रेयर डिजीज से पीड़ित है, जिसका पेशेंट कभी कभी जोन आउट हो जाता है। जोन आउट का मतलब ये है कि पेशेंट फिजिकली कहीं और होता है लेकिन उसका दिमाग अचानक किसी दूसरे जोनर में चला जाता है।
2: मैं बचपन से जोन आउट करते आई हूँ, हमेशा क्लासरूम में भी जोन आउट होती थी, कॉन्वर्जेशंस में जोन आउट होती हूँ। तब रिसेंटली मैंने एक पर्सनालिटी जो भी क्या होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और मुझे पता चला कि मैं ADHD के स्पेक्ट्रम में काफ़ी हाई हूँ। मुझे ADHD है, तो अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर।
0: आपको बता दें कि ADHD डिजीज का IQ लेवल से कोई रिलेशन नहीं है। काफी हाई IQ वाले लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है। होता यही है कि कभी कभी इसका पेशेंट जोन आउट हो जाता है और उस दौरान कोई ऐसा बयान दे सकता है या ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकता है जिससे उसके IQ लेवल पर सवाल उठने लगे। आपको बता दें कि आलिया का न सिर्फ IQ लेवल बल्कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी नेक्स्ट लेवल का है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि साल 2012 से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी आलिया कैमरा ऑन होने के बाद कभी जोन आउट नहीं होती। अलबत्ता कैमरे के सामने आते ही आलिया इतनी फोकस्ड हो जाती हैं कि उन्हें अपने किरदार और संवाद के सिवा कुछ भी ध्यान नहीं रहता।
2: I'm so present जब मैं कैमरा के सामने होती हूँ, चाहे मैं वो किरदार में प्रेजेंट हूँ, मतलब द पार्ट दैट आई एम प्लेइंग, आई एम प्रेजेंट एज द कैरेक्टर, बट आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। और फिर अभी ऑफ कोर्स आफ्टर रहा, जब भी मैं उसके साथ रहती हूँ, आई एम मोस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। तो ये 2 आई थिंक मोमेंट्स हैं मेरी लाइफ में जहाँ पे मैं सबसे ज्यादा पीसफुल फील करती हूँ।
0: साफ है कि आलिया भट्ट अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को भली भांति पहचानती हैं। यही वजह है कि कॉफी विद करण में गलत जवाब देने के बाद जबरदस्त तरीके से ट्रोल होने पर भी आलिया पूरी तरह काम एंड कूल रहीं। काफी वक्त बाद आलिया से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने पूरे ह्यूमर के साथ जवाब देकर ट्रोलर्स को भी ट्रोल कर दिया।
2: बोर हो गई उस जोक से, मेरे को एक्चुअली नया जोक चाहिए। आई वांट टू मेक अ मिस्टेक अगेन। हाँ, कोई मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं क्या गलती करूँ कि फिर से लोग उसको 1-2 साल और खींचेंगे।
0: आपको बता दें कि आलिया बॉर्न एक्ट्रेस हैं। संयोग से इनका जन्म एक ऐसे घराने में हुआ जहाँ माहौल पूरी तरह फिल्मी था। मार्च 1993 को हुए आलिया के जन्म से काफी पहले से पिता महेश भट्ट अर्थ, सारांश, नाम, आशिकी, सड़क और दिल है कि मानता नहीं जैसी कल्ट और आइकॉनिक फिल्मों का निर्देशन कर इंडस्ट्री में अलग पहचान स्थापित कर चुके थे। आलिया की मां सोनी राजदान भी 36 चौरंगी लेन, मंडी, सारांश और त्रिकाल जैसी 8 फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी से क्रिटिक्स की शाबाशी हासिल कर चुकी थीं। आलिया ने भी जब से होश संभाला एक्टिंग को छोड़कर किसी दूसरे काम का तसव्वुर इनके मन में एक बार भी नहीं हुआ।
2: मैं हमेशा कहती कि मैं एक्शन पे ही पैदा हुई थी अपनी माँ की कोख से। आई डोंट थिंक देयर वाज दैट वन सेकंड आल्सो कि मैं दुनिया में आई, मुझे उस सेकंड पे ही पता था कि मुझे एक एक्ट्रेस बनना है और मुझे एक्टर बनना है और मुझे एक्टिंग करनी है। आई थिंक उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था।
0: जिन लोगों ने आलिया को अनइन्फॉर्म्ड यूथ का एम्बेसडर बना दिया था उन्हें ये जानना चाहिए कि आलिया भट्ट जब सिर्फ 4 साल की थी तभी उन्होंने श्यामक डावर डांस एकेडमी की समर क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। बात सिर्फ इतनी नहीं है, डांस एकेडमी में 4 साल की आलिया इंडस्ट्री की प्रेस्टिजियस फैमिली का तगमा लेकर नहीं बल्कि लर्निंग हंगर के साथ जाती थी। यही वजह है कि बाकी बच्चों के मुकाबले वो ज्यादा अच्छे से चीजों को ग्रैस्प करती थी। खुद श्यामक डावर ने आलिया की तारीफ करते हुए एक बार कहा था कि आलिया सब कुछ बहुत जल्दी सीख लेती हैं।
2: श्यामक डावर जी के जो समर कैंप समर डांस क्लासेस थे या वो एक्चुअली मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का बहुत ही अहम हिस्सा था। एंड आई रिमेम्बर दोज मोमेंट्स वेरी क्लियरली क्योंकि जेन्युइनली इम्पैक्ट मेरी लाइफ में काफी था। क्योंकि कॉन्फिडेंस, लोगों के सामने डांस करना, फ्री बनना, ऐसे फील करना कि आप सबसे छोटे हो पर फिर भी बड़े हो और डांस करना है।
0: 4 की उम्र में श्यामक डावर की डांस क्लास ज्वाइन करने वाली आलिया 7 साल की होते होते नृत्य कला में इतनी पारंगत हो गई कि स्कूल के एक डांस कंपटीशन में श्यामक डावर ने उन्हें हायर क्लास की छात्राओं के बीच भेज दिया। क्योंकि डावर को ये भरोसा हो गया था कि हायर क्लास की छात्राओं के बीच भी आलिया बेहतर परफॉर्म करेंगी। हालांकि तब मासूम आलिया के साथ एक मजेदार वाकया भी पेश आया था।
2: क्लास में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था मेरा, तो श्यामक सर ने मुझे एक सीनियर बैच में डाल दिया। तो मैं 7 साल की थी और मैं क्लास के अंदर आई और इंस्ट्रक्टर कंफ्यूज हो गए कि आप ये क्लास में हो, क्योंकि इट वॉज देवर लिटरली अडल्ट इन दैट क्लास। और मैंने बोला हाँ श्यामक सर, लाइक आई एम सपोज टू कम इन दिस क्लास। तो पहले उनका क्वेश्चन था हाउ ओल्ड आर यू, तो मैंने बोला 7। But then immediately मैंने बोला, but it's my birthday tomorrow. I'm going to be 8 tomorrow.
0: दिलचस्प बात तो यह है कि अगले दिन आलिया का जन्मदिन नहीं था, लेकिन उन्होंने झूठ इसलिए बोल दिया क्योंकि उन्हें डर हो गया था कि कम उम्र को देखते हुए उन्हें कहीं नीचे की क्लास में न भेज दिया जाए। इस लेवल का आत्मविश्वास था आलिया के भीतर बचपन से ही। कमाल ये है कि यही आत्मविश्वास तब भी बना रहा जब आलिया ने रुपहले पर्दे पर चुनौतीपूर्ण किरदार निभाना शुरू किया। इंडस्ट्री के स्टार फैमिली से आने वाले नेपो किड्स आमतौर पर फिल्में साइन करने से पहले अपने घर के अनुभवी सदस्यों से सलाह मशविरा करते हैं, लेकिन आलिया का हिसाब अलग है। वो फिल्में साइन करने से पहले अपने पिता महेश भट्ट या माँ सोनी राजदान, यहाँ तक कि पति रणबीर कपूर से भी क्लियरेंस लेना जरूरी नहीं समझती, बल्कि इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स के आधार पर खुद ही फैसले लेती हैं।
2: मैं एक्चुअली अपना माइंड मेकअप करने के बाद डिस्कस करती हूँ, मैं बिकॉज आई एम नॉट समबडी हु नीड्स टू बी कन्विंस्ड फॉर अ फिल्म। एक तो बात यह है और दूसरी बात यह है कि मेरा इंस्टिंक्टिव रिस्पांस ही सबसे प्योर रिस्पांस होता है। तो अगर कोई, मैं इंस्टिंक्टिवली अगर एक्साइट हो जाऊंगी और किसी ने अगर बोल दिया कि मतलब ऐसे मत करो, आई एम जस्ट गिविंग इफ केस सिनेरियो, मेरे साथ हुआ नहीं है, बट अगर बोल दिया तो फिर मेरे दिमाग में डाउट पैदा हो जाएगा। तो मेरी जर्नी मेरी है और मेरी डिसीजन भी मेरी होनी चाहिए, इसलिए दैट्स द रीजन, नॉट फॉर एनी अदर रीजन।
0: आप समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया की नजर में अनइन्फॉर्म्ड सेलेब्स रही आलिया की प्रतिभा उन्हें लेकर बने परसेप्शन से बिल्कुल अलग है। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से किक हुए एकाध अपवादों को छोड़ दें तो आलिया के लेवल का आईक्यू और टैलेंट हिंदी सिनेमा के 100 साल के इतिहास में इक्का दुक्का अभिनेत्रियों में ही नजर आएगा।
1: आलिया बॉलीवुड की एक दमदार फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। आलिया के पिता महेश भट्ट बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा निर्देशकों में शुमार हैं, जबकि मां सोनी राजदान 8 फिल्मों की आइकन रही हैं। लेकिन आलिया ने अपने फिल्मी सफर में आगे बढ़ने के लिए कभी भी पारिवारिक पृष्ठभूमि का सहारा नहीं लिया। शुरू से ही उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट पर भरोसा किया और इसका असर ये है कि आलिया आज बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेट अभिनेत्रियों की फहरिस्त में काफी ऊंचा मकाम हासिल कर चुकी है।
0: इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नेपो किड्स के सिल्वर स्क्रीन पर ब्रेक मिलने की रवायत नई नहीं है। हालांकि ज्यादातर नेपो किड्स अपने पारिवारिक वटवृक्ष के घने साय में अंकुरित होकर फलते फूलते हैं और उसी साय में फना भी हो जाते हैं, पर कुछ नेपो किड्स ऐसे भी हैं जो मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर अपनी पारिवारिक लिगेसी से निकलकर अलग साम्राज्य स्थापित करते हैं। आलिया भट्ट दूसरी कैटेगरी की नेपो किड हैं। बतौर लीड हीरोइन अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने अगर प्रतिभा नहीं तो जुनून, लगन और मेहनत की तो मुनादी कर ही दी थी। तनुजा चंद्रा के निर्देशन में बनी और 1999 में रिलीज हुई आइकॉनिक मूवी संघर्ष में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू करने वाली आलिया भट्ट को हीरोइन के तौर पर डेब्यू करने का मौका बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के जरिए दिया था। आलिया की उम्र तब महज 18 साल थी, लेकिन उनका फिगर फिल्म के किरदार के लिहाज से फिट नहीं था। ऑडिशन के दौरान करण जौहर ने आलिया के लिए कड़ी शर्त रख दी कि उन्हें अपना वेट लॉस करना होगा। आलिया टीनेज में ही अपने करियर को लेकर कितनी संजीदा थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 3 महीने के भीतर उन्होंने अपना वेट 68 किलो से कम करके 51-52 किलो कर लिया। क्योंकि बचपन से बस एक ही तो सपना था आलिया का, सितारा बनकर सिल्वर स्क्रीन पर चमकने का। इसीलिए शूटिंग के दौरान सेट पर पहली बार जब कैमरा ऑन हुआ तो उनका उत्साह चरम पर पहुंच गया।
2: वो कहते हैं ना, एक्सट्रीम जॉय फीलिंग आता है कि कैमरा के सामने हो, शूटिंग हो रही है, कुछ अच्छा हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, बट यू फील के अंदर से कुछ। इवन दो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाज अ ब्लर, जो पहला गाना जो मेरी लाइफ की पहली दिन थी शूटिंग की, वो राधा के लिए थी। तो एक शॉट था, मेरे को नीचे आना था, टर्न करके ऐसा कुछ करना था, फिर दुपट्टा उठा के कैमरा में देखना था और ब्लोअर फैन आ रहा था, उसी में ही मेरे को ऐसे बहुत मजा आ गया।
0: पहली बार कैमरे के सामने आने के बाद आलिया बेशक उत्साहित थी, लेकिन फिल्म साइन करने के बाद वो फेल्योर के फियर साइकोसिस का शिकार हो गई थी। आलिया को ये डर सताने लगा कि अगर वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाई या फिल्म पिट गई तो आगे करेंगी क्या। पिता महेश भट्ट को जब बेटी के फियर साइकोसिस के बारे में पता चला तो उन्होंने अलहदा तरीके से आलिया को उससे बाहर निकालने की कोशिश की। महेश भट्ट ने बेटी को विशेष फिल्म्स के अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि मन में जो भी डर है, आशंका है, उसका इजहार सबके सामने करो।
2: For some reason, my father is outstanding in a crisis situation. जब भी आप क्राइसिस में हो, आप उनको फोन करो, he has the most calm tone and he'll deal with the situation in the best way. In this particular situation, उन्होंने डिसाइड किया, ऑफिस आ जाओ, सबके सामने बोलो तुम कैसे फील कर रही हो। जो एक्चुअली एक बहुत अजीब सीक्वेंस सिचुएशन है, क्योंकि आप पहले तो इतना वल्नरेबल फील करो, सबके सामने उठ के बोलना है कि मैं ऐसे फील कर रही हूँ।
0: महेश भट्ट ने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने का कोई मनोवैज्ञानिक अनुभव था, ये तो नहीं बता, लेकिन उनका ये अनोखा फॉर्मूला आलिया के लिए क्लिक जरूर कर गया। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डर का डंका बज जाने के बाद आलिया के अंदर की घुटन कम हो गई। वैसे 19 अक्टूबर 2012 को रिलीज हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर बॉक्स ऑफिस पर तो कामयाब रही, लेकिन आलिया की इमेज बॉर्बी डॉल से कुछ ज्यादा नहीं बन पाई। उधर क्रिटिक्स ने भी आलिया के डेब्यू को महेश भट्ट के प्रभाव से जोड़ दिया। लेकिन फिल्म हिट होने के बाद बड़े पर्दे पर बड़ा मकाम हासिल करने के आलिया के संकल्प के साथ उनका आत्मविश्वास भी जुड़ गया। अगली ही फिल्म हाईवे में अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर आलिया ने क्रिटिक्स को पहले से तय परसेप्शन को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। 21 फरवरी 2014 को रिलीज हुई हाईवे में वीरा त्रिपाठी के डी ग्लैमरस किरदार में बेहतरीन अभिनय का तड़का मारकर आलिया ने उन्हें बॉर्बी डॉल कहने वालों का मुंह बंद कर दिया। दरअसल अभिनय को लेकर आलिया का फलसफा शुरू से ही कन्वेंशनल नहीं बल्कि इंस्टिंक्टिव रहा है।
2: कैमरे के सामने का जो एक फीलिंग होता है ना, उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता है। एट द एंड ऑफ द डे मैं जितना भी चाहे डायलॉग सीख लूँ या कुछ रट्टा मार लूँ, फिजिकल ट्रेनिंग कर लूँ, अपने आप को कमरे में बंद करके मेथड एक्टिंग भी कर लूँ, अगर कैमरे के सामने मुझे फीलिंग नहीं आ रही है तो कैमरा पकड़ लेगा और मेरी परफॉर्मेंस जो है उसमें दिख जाएगी। तो तैयारी जारी रहती है फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं कैमरे के सामने सिर्फ फील करने की कोशिश करती हूँ।
0: हाईवे के बाद आलिया ने इंडस्ट्री में मुनादी कर दी कि मीना कुमारी और मधुबाला की खींची हुई अदाकारी की लीक इस युग में भी मिटी नहीं है। 2016 में आई उड़ता पंजाब के बाद तो क्रिटिक्स ने भी स्वीकार कर लिया कि आलिया की अदाकारी किसी एक जोनर तक महदूद नहीं है। उड़ता पंजाब के एक मैले कुचैले भोजपुरी लड़की के किरदार में आलिया ऐसे गुम हो गई कि पहचानना मुश्किल हो गया कि ये वही राधा हैं जिसने डिस्को दीवाने पर ठुमके लगाए थे। उड़ता पंजाब के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। ২০১৮ में आई राजी में एक कश्मीरी जासूस के किरदार में आलिया ने अपने अभिनय से इतनी जान फूंक दी कि 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाली कुछ एक महिला प्रधान फिल्मों में शुमार हो गई। वहीं 2019 में आई गली बॉय में सफीना के किरदार को आलिया ने अपनी एक्टिंग से जीवंत कर दिया। गली बॉय में नारी को प्रकृति से सहज प्राप्त कोमलता और जरूरत पड़ने पर प्रकट होने वाली आक्रामकता के मिश्रण को आलिया ने इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद तो आलिया बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइनों की फेहरिस्त में शुमार हो गईं। 25 फरवरी 2022 को रिलीज हुई गंगूबाई काठियावाड़ी आलिया के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। संजय लीला भंसाले की इस फिल्म में आलिया ने एक वेश्यालय की मालकिन और माफिया क्वीन के चुनौतीपूर्ण किरदार को सहजता के आईने में उतार कर सबको हतप्रभ कर दिया। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया को सबसे प्रेस्टीजियस माने जाने वाले नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया।
3: गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं अभिनेत्री आलिया भट्ट।
0: 2022 आलिया के लिए बहुत इवेंटफुल साल साबित हुआ। साल 2022 में कोरोना की मार से पस्त हो चुकी फिल्म इंडस्ट्री दोबारा उठ खड़े होने की जद्दोजहद कर रही थी और इसी साल आलिया की गंगूबाई काठियावाड़ी के अलावा RRR और ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 जैसी फिल्में रिलीज हुईं। 2022 में ही उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर किस्मत आजमाई और डार्लिंग्स प्रोड्यूस की, जो OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और सफल भी रही। 2023 में आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और 2024 में आई जिगरा ने भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया। इसी साल 10 जुलाई को आलिया की अल्फा रिलीज होने वाली है। साल 2027 में आलिया संजय लीला भंसाली के एक और शाहकार लव एंड वार में भी नजर आने वाली हैं। साफ है कि आलिया बॉलीवुड की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट अभिनेत्रियों की सूची में शुमार हो चुकी हैं। आज आलिया अपनी एक फिल्म के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस लेती हैं।
1: तो बंदे मेहदम में है आज आपने आलिया भट्ट के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: और अब जब बात फिल्मों की हो रही है तो रोहित शेट्टी की गोलमाल 5 का भी जिक्र कर लेते हैं, जिसकी शूटिंग जारी है। रोहित की इस फिल्म में अजय देवगन समेत पुरानी स्टार कास्ट है, लेकिन इस बार फिल्म में लगने वाला है कॉमेडी का मास्टर स्ट्रोक वाला तड़का, क्योंकि गोलमाल 5 में इस बार अक्षय कुमार भी दिखेंगे, जहां अक्षय की एंट्री से फिल्म का सुपरहिट होना तय माना जा रहा है। वहीं इस फिल्म में अक्षय की फीस भी चर्चाओं का विषय बनी हुई है।

0: रोहित शेट्टी की गोलमाल फ्रेंचाइजी का नाम ही कॉमेडी की गारंटी है। दर्शकों को सालों से लोटपोट करने वाली गोलमाल की टीम एक बार फिर धमाल मचाने के लिए तैयार है। गोलमाल 5 को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बस बना हुआ है, लेकिन इस बार का धमाका डबल होने वाला है, क्योंकि फिल्म में एंट्री हो चुकी है कॉमेडी के किंग अक्षय कुमार की। जब रोहित शेट्टी की कॉमेडी और अक्षय कुमार की टाइमिंग एक साथ मिलेगी तो स्क्रीन पर आग लगना तो तय है। ऐसे में फैंस फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अक्षय के इस फिल्म से जुड़ने से ये और ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है। इन सब के बीच अब गोलमाल 5 से अक्षय कुमार की फीस की भी खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि अक्षय ने इस फिल्म में अजय देवगन से ज्यादा फीस वसूली है, यानी इस धमाके के लिए मेकर्स की जेब अच्छी खासी ढीली हुई है। खबरों की माने तो अक्षय कुमार ने इस फिल्म के लिए इतनी भारी भरकम फीस ली है कि ट्रेड पंडितों के भी कान खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार ने गोलमाल 5 की 18 से 22 दिनों की शूटिंग की है, जिसके लिए उन्होंने अजय देवगन से कहीं ज्यादा फीस वसूली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार को अपने रोल के लिए 35 से 40 करोड़ मिले हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि पूरी फिल्म में दिखने वाले अजय देवगन से ज्यादा फीस सिर्फ 20 दिनों की शूटिंग करने वाले अक्षय कुमार को क्यों मिल रही है। तो जनाब, इसे कहते हैं स्टार पावर और स्पेशल रोल का जलवा। दरअसल माना जा रहा है कि फिल्म में अक्षय कुमार का रोल भले ही छोटा हो, लेकिन वो पूरी कहानी का टर्निंग प्वाइंट है। यानी जितने समय भी अक्षय स्क्रीन पर रहेंगे, दर्शकों को हंसते हंसते पेट फुलाने पर मजबूर कर देंगे। वैसे भी रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, दोनों जब भी मिलते हैं कॉमेडी का तड़का तो लगता ही है, साथ में बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश की भी गारंटी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos, hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: शनि अमावस्या के पावन दिन अयोध्या में उमड़ा आस्था का मेला, मां सरयू की हुई विशेष आरती, वैदिक मंत्रोच्चार से गूंजा नया घाट। महाराष्ट्र के अकोला में धूमधाम से मनाई गई शनि जयंती, प्राचीन मंदिर में काटा गया 11 किलो का कलाकंद केक, भजन कीर्तन और सुंदरकांड का पाठ। गुजरात के वड़ताल धाम में लगाया गया 500 किलो आम का भोग, केसर आम की खुशबू से महका स्वामीनारायण मंदिर का गर्भगृह, गर्मी को देखते हुए लगाया गया भोग। देवभूमि में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं का भजन कीर्तन, अब तक करीब 2.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। भीषण गर्मी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जंगल सफारी में बेजुबानों के लिए खास इंतजाम, खास डाइट प्लान का हो रहा लाभ पालन, एसी पंखा और कूलर की व्यवस्था।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: रक्षा क्षेत्र में भारत हर दिन एक नया अध्याय लिख रहा है। स्वदेशी तकनीक के जरिए ऐसे ऐसे कीर्तिमान रचे जा रहे हैं जो दुनिया को बहुत चक्का कर रहे हैं। मिसाइल से लेकर युद्धपोत तक और फाइटर जेट से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक सब कुछ देश में ही तैयार हो रहा है और वो भी वर्ल्ड क्लास। जो तकनीक और ताकत दुनिया के चंद देशों की जागीर मानी जाती थी, उस टेक्नोलॉजी पर अब भारत का दबदबा है। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए, ये कोई साधारण तस्वीर नहीं है बल्कि डिफेंस सेक्टर में भारत के बढ़ते रुतबे को दुनिया के सामने रख रही है। यह तस्वीर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम का नया अध्याय है जो भविष्य के सुपर हिंदुस्तान का रास्ता तैयार कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। दरअसल डीआरडीओ और डीआरडीएल ने मिलकर इस मिसाइल के एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का 20 मिनट तक सफल परीक्षण किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एक्टिव कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए जरूरी एक्सट्रीम टेम्परेचर को सहने की इंजन क्षमता साबित हुई है। हैदराबाद स्थित डीआरडीएल यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में स्क्रैमजेट कंबस्टर का परीक्षण किया गया, जो कि 20 मिनट से ज्यादा समय तक चला। इस टेस्ट की सबसे बड़ी बात यह रही कि इसमें एक्टिव कूलिंग, थर्मल बैरियर कोटिंग और इंडिजिनस फ्यूल जैसी जटिल तकनीकें भारत ने खुद विकसित की हैं। इस टेस्ट के जरिए अत्यधिक तापमान और दबाव की स्थिति में सुपरसोनिक इंजन से निकलने वाली गर्मी को कंट्रोल करने की क्षमता को जांचा गया।
1: ये पिछले बार के वर्जन से इम्प्रूव वर्जन है। पिछले बार इन्होंने 700 सेकंड पे किया था, इस बार 1200 सेकंड पे, तो टाइमिंग बढ़ी है। तो कहने का मतलब ये कि जो इंडिजिनसली डेवलप आपका फ्यूल है, लिक्विड हाइड्रोकार्बन फ्यूल, और उसका जो एडवांस थर्मल बैरियर कोटिंग है वो आले दर्जे का, वो ज्यादा देर तक विस्टैंड कर सकता है। कहने का मतलब ये कि जब आप इस तरीके की मिसाइल डेवलप करते हैं स्क्रैमजेट इंजन द्वारा, तो आपको एक फ्यूल और आपको उसका कंबशन सिस्टम पे ज्यादा ध्यान होता है, जो कि इस बार 1200 सेकेंड तक वो उसको इसकी स्टेबिलिटी चेक की गई है।

0: हाइपरसोनिक स्पीड पर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, जिससे इंजन पिघल सकता है। 20 मिनट से ज्यादा समय तक इंजन का सफलतापूर्वक चलना ये साबित करता है कि भारत ने एक्टिव कूलिंग तकनीक में महारत हासिल कर ली है। अब स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन से मिसाइल को मैक 5 से ज्यादा की रफ्तार मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि आवाज की स्पीड से 5 गुना तेज यानी कि करीब 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्रचंड रफ्तार से दुश्मन पर प्रहार।
1: देखिए, हिंदुस्तान ने जब हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप किया विद स्क्रैमजेट इंजन के साथ, तो ये दिखाता है कि अगर ये मिसाइल 5 मैक से ज्यादा स्पीड हासिल करती है, इसका मतलब हुआ कि 6175 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में इतना डिस्टेंस जाएगा, तो पाकिस्तान का कोई भी टारगेट विद इन 20-30 मिनट के अंदर एंगेज कर लिया जाएगा। और इसी तरह चाइना का भी काफी बड़ा इलाका इसके कवरेज एरिया में आता है, तो एक स्ट्रेटजिक एज हिंदुस्तान को देता है और साथ में इंडिजिनसली डेवलप्ड है, तो हमें किसी बाहर के कंट्री पे भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है।
0: स्क्रैमजेट की सफलता से भारत अमेरिका, रूस और चीन के साथ उन चुनिंदा देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया है जो स्क्रैमजेट तकनीक में मैक 5 से ज्यादा स्पीड वाली मिसाइलें विकसित कर रहे हैं।

0: सबसे पहले इंडिजिनस स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी, उसमें जो हमने उसका फ्यूल इस्तेमाल किया, जो हाइड्रो कार्बन फ्यूल है, वो इंडिजिनसली डेवलप किया गया। ये फ्यूल का ही एक है कि उसका जो बर्निंग है, जो उसकी जो कंबशन सिस्टम है, वो कैसे डेवलप किया जाए, कैसे आप इतनी हीट या एनर्जी डेवलप करें जिससे कि मिसाइल को वो 5 मैक की स्पीड से प्रोपेल कर सके। और साथ में उसमें इस तरीके की कोटिंग की जाती है, सेरेमिक कोटिंग की जाती है, कि जिससे वो उस हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सके। तो कहने का मतलब ये कि जब ये विकसित हुआ है, तो ये काफी लगन, काफी एफर्ट, काफी ट्रायल के बाद इसको विकसित किया गया है। और जब यह स्वदेशी हो जाता है, तो इसमें हमें किसी और फॉरेन कंट्री पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं होती।
1: डीआरडीओ का नया टेस्ट भारत की सैन्य ताकत और एशिया का शक्ति संतुलन बदल सकता है। इसका सबसे बड़ा असर हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दिखाई देगा। चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। ऐसे में लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल भारत के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकती है। हाल ही में डीआरडीओ ने 1500 किलोमीटर रेंज वाली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल समुद्र में दुश्मन के बड़े युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना सकती है। इसका मतलब साफ है कि अगर हिंद महासागर में किसी भी दुश्मन नौसेना ने दबाव बनाने की कोशिश भी की, तो भारत अब हजारों किलोमीटर दूर से तेज और सटीक हमला करने की क्षमता की तरफ बढ़ रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि वो बेहद तेज रफ्तार के साथ उड़ान के दौरान दिशा बदल सकती हैं। इससे दुश्मन के रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए उन्हें ट्रैक करना आसान नहीं होता। मैक 5 से ज्यादा रफ्तार वाली मिसाइल तैयार होने से चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की स्ट्राइक क्षमता और रणनीतिक ताकत कई गुना बढ़ सकती है। साल 2025 में डीआरडीओ ने छोटी अवधि के स्क्रैमजेट टेस्ट किए थे, लेकिन अब दूसरी बार जब फुल स्केल कंबस्टर का टेस्ट किया गया तो 20 मिनट से ज्यादा चला। इससे पहले डीआरडीओ ने 9 जनवरी 2026 को भी हैदराबाद में फुल स्केल एक्टिवली कूल स्क्रैमजेट कंबस्टर का 12 मिनट से ज्यादा का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक किया था, जो ये बताता है कि भारत अब अपने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ब्रह्मोस 2 मिसाइल के डिजाइन के लिए दूसरे देशों की तरफ नहीं देखेगा, बल्कि अब देश में ही उसे तैयार किया जाएगा। मौजूदा समय में दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती मिसाइल को रोकने में सक्षम नहीं है। रडार को जब तक खतरे का पता चलेगा, तब तक मिसाइल अपना काम कर चुकी होगी।
2: भारत के लिए खतरा जितना चीन से है, उतना ही पाकिस्तान से भी है। लेकिन अगर चीन की बात की जाए, तो चीन हथियारों की दौड़ में बहुत तेजी से आगे भाग रहा है। चीन अपने पास एआई तकनीक से लैस तमाम हथियारों को विकसित कर रहा है, साथ ही साथ हाइपरसोनिक तकनीक में भी वो आगे बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत भी इस तकनीक में महारत हासिल करे और अपने बेड़े में हाइपरसोनिक हथियारों को भी शामिल करे।
1: हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा स्पीड से चलती है। इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है, जिससे उसको ताकत मिलती है। अब स्क्रैमजेट इंजन क्या है और कैसे काम करता है, इसे भी जान लीजिए। स्क्रैमजेट एक खास तरह का एयर ब्रीदिंग इंजन है। इसे शुरू करने के लिए रॉकेट बूस्टर की जरूरत होती है। स्क्रैमजेट में ईंधन के दहन के लिए वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिए इसी स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। स्क्रैमजेट से फायदा ये होगा कि इसका इस्तेमाल कम लागत में उपग्रहों के प्रक्षेपण में भी किया जा सकेगा। वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने से स्क्रैमजेट इंजन हल्का, ज्यादा तेज और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम माना जाता है।
0: जब ये इंजन एयर में जाता है, तो इतनी हाई स्पीड से होता है, तो जो एटमॉस्फेयर में एयर होता है उसको इस स्पीड पे कंप्रेस करता है, और उसका लगातार ये सप्लाई जारी रहती है, जिससे वो फ्यूल से रिएक्ट करके हीट जनरेट करता है। तो और ये लगातार होना चाहिए। अगर इसमें कोई बाधा है या अनइवन बर्निंग है, अनइवन हीट जनरेशन है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। तो एक स्पीड पे कंप्रेस एयर को फ्यूल के साथ मिक्स करके एनर्जी डेवलप करना और लगातार ये जारी रखना।
1: भविष्य में ये तकनीक ब्रह्मोस 2 में इस्तेमाल होगी, जो भारत रूस का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ब्रह्मोस 2 मैक 7 से 8 स्पीड वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर होने का अनुमान है। डीआरडीओ का लक्ष्य है कि साल 2028 तक ऐसी मिसाइल को पूरी तरह से विकसित कर लिया जाए। मिसाइलों को ठोस या तरल ईंधन से चलने वाले रॉकेट या जेट इंजन द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। कुछ मिसाइलों में जैसे कि ब्रह्मोस में रामजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो सुपरसोनिक रफ्तार हासिल करने के लिए हवा को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। वहीं हाइपरसोनिक मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। भारत का लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल प्रोग्राम अब अपने एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है और जल्दी ही शुरुआती परीक्षण होने की उम्मीद है। हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत ने कहा था, भारत हाइपरसोनिक ग्लाइड और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसमें ग्लाइड संस्करण मौजूदा समय में विकास के मामले में आगे है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन होता है और उड़ान के दौरान इसे ऊर्जा मिलती है। हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल शुरुआती रफ्तार हासिल करने के लिए बूस्टर का इस्तेमाल करती है और फिर बिना किसी ऊर्जा के ग्लाइड करती है। मिसाइल में दो स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। पहले चरण के खत्म होते ही वो अलग हो जाती है, जबकि दूसरा चरण मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंचाता है। इसके बाद मिसाइल बिना इंजन के ग्लाइड फेज में एंट्री करती है और टारगेट तक पहुंचने से पहले कई रणनीतिक मूवमेंट करती है।
0: देखिए, मिसाइल में जो दो टू स्टेज रॉकेट होते हैं, प्रोपल्शन होता है, उसमें एक इनिशियल फेज का होता है और एक सब्सिक्वेंट फेज का होता है। इनिशियल फेज का काम होता है वो हीट, वो एनर्जी, वो थ्रस्ट डेवलप करना, जिससे कि मिसाइल को लॉन्च किया जा सके, लिफ्ट दिया जा सके एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में। और जब ये काम हो जाता है तब वो मोटर काम करना बंद कर देता है, तब सेकेंड स्टेज का मोटर काम करता है, जो अगेन उस वेलोसिटी को मेंटेन करता है, एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक ऑर्बिट में मिसाइल को डालता है और लगातार उस पे सस्टेन प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे कि उसकी वेलोसिटी बन सके।
1: आज दुनिया के कई देश अपनी मिसाइल क्षमता को धार देने में जुटे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है, मिसाइल ही एक ऐसा हथियार है जो हर तरह के युद्ध क्षेत्र में कामयाब है। चाहे लड़ाई जमीन पर हो, आसमान पर या फिर अंतरिक्ष में, मिसाइल हर मोर्चे पर कारगर है।

0: लेकर सोच शुरू हुई, जिसको लेकर काम चल रहा है।
1: आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है और ये दुनिया के लिए चिंता का विषय क्यों बन गया, ये समझने की जरूरत है। हाइपरसोनिक हथियार आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज रफ्तार से चलते हैं और अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि हाइपरसोनिक वेपन की रफ्तार ही उसकी ताकत है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल भी आवाज की रफ्तार से तेज चलती है। ऐसे में हाइपरसोनिक वेपन की असली ताकत क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है।
0: हाइपरसोनिक मिसाइल को एक व्हीकल तेजी से अंतरिक्ष की तरफ ले जाता है, जिसके बाद वो ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ती है। ये इतनी तेजी से अपना रास्ता बदलती है कि किसी भी देश का एंटी मिसाइल सिस्टम इसे ट्रैक नहीं कर पाता और ये अपने टारगेट को आसानी से ध्वस्त कर सकती है।
1: बैलिस्टिक मिसाइल को जब एक जगह से लॉन्च किया जाता है तो पता चल जाता है कि उसका टारगेट कहाँ है और वो किसे निशाने पर लेगी। ऐसे में इन मिसाइलों को ट्रैक करना आसान होता है। इसके साथ ही लॉन्चिंग के साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलों की दिशा में बदलाव नहीं किया जा सकता। वहीं लॉन्चिंग के साथ हाइपरसोनिक मिसाइलों की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है।
2: ये हाइपरसोनिक मिसाइल या जो वेपन है उनका जो ग्रेडिंग है वो एनी एरियल ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा है, जैसा कि मैंने बताया 6175 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो अगर इसकी स्पीड ज्यादा होती है वो हाइपरसोनिक कैटेगरी में आता है। जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा है उसको रडार कैसे डिटेक्ट करेगा, चाहे रडार किसी भी प्रिंसिपल पे काम कर रहा हो, चाहे डॉपलर पे काम कर रहा हो या अन्य प्रिंसिपल पे काम कर रहा हो, बाई द टाइम पल्स उसको जाके हिट करके वापस आती तब तक वो मिसाइल आगे निकल चुका होता है। एक स्पीड, दूसरा लो हाइट या हाई हाइट, इसमें कोई रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। इस वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल ने लड़ाई लड़ने की विधा में टोटल तब्दीली कर दी।
1: हाइपरसोनिक हथियार सबसोनिक मिसाइलों से कहीं तेज रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इनकी रफ्तार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से बेहद कम होती है। हाइपरसोनिक हथियार सिस्टम 2 तरह के होते हैं, पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और दूसरा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जिस तरह एक सर्फर समंदर की लहरों पर ग्लाइड करता है, ठीक उसी तरह से हाइपरसोनिक हथियार हवा में ग्लाइड करते हैं, जिससे इसे रोकना आसान नहीं होता। हाइपरसोनिक हथियार की एक और खासियत होती है कि ये कम ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकते हैं।
0: मौजूदा समय में तमाम देशों का फोकस ग्लाइड व्हीकल्स पर है। दरअसल ग्लाइड व्हीकल एक नई तकनीक है। ग्लाइड व्हीकल के साथ एक मिसाइल लगाई जाती है जो कि एक टारगेट पर जाकर ग्लाइड व्हीकल से अलग हो जाती है, जिसके बाद वो टारगेट की तरफ सीधा ग्लाइड करते हुए फोकस करती है और उसे ध्वस्त करके ही दब लेती है।
1: हाइपरसोनिक हथियार बनाने की दिशा में भारत अपना कदम आगे बढ़ा चुका है। HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के परीक्षण की शुरुआत हो चुकी है। 27 जनवरी 2023 को DRDO ने HSTDV परीक्षण किया था जो सफल रहा।

साल 2020 में भारत ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड का टेस्ट किया था, जिसमें महज 20 सेकंड में 7500 किलोमीटर के टारगेट को पूरा किया गया था। हालांकि भारत इस तकनीक में पिछले कई सालों से लगातार लगा हुआ है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल को लॉन्च कर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि ऐसी कोई रफ्तार नहीं जहां उसकी पहुंच नहीं। हाइपरसोनिक व्हीकल का ट्रायल एक ऐसी कामयाबी है जो हिंदुस्तान की ताकत में कई गुना इजाफा करेगी। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल 6000 से 12000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये 20 सेकंड में मैक 6 की रफ्तार और 32.5 किलोमीटर ऊंचाई तय करने में सक्षम है। HSTDV के परीक्षण के बाद भारत के रक्षा क्षेत्र को और अधिक मजबूती मिलेगी, क्योंकि इसके साथ ही भारत अब उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सक्षम है। दुनिया बदल रही है, युद्ध बदल रहे हैं, युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं, रण क्षेत्र की रणनीतियां बदल रही हैं, और इसी के तहत अब आने

0: वाले समय में युद्ध एआई और हाइपरसोनिक तकनीक के साथ लड़े जाएंगे। भारत ने भी खुद को इसी क्षेत्र में तैयार किया है और ऐसा ही एक परीक्षण हाल फिलहाल में भारत ने किया, जिसके बाद पूरी दुनिया का ध्यान भारत ने अपनी ओर खींचा।
1: बीते कुछ वर्षों से दुनिया का माहौल जिस तरीके से बदला है, उसे देखते हुए भारतीय सेना कंप्लीट चेंज के मोड में है। बदलते सुरक्षा हालात को देखते हुए सेना खुद को नए समय के मुताबिक तैयार कर रही है, जिसमें छोटे से छोटे हथियार तक को धार दी जा रही है। इसी कड़ी में भारत ने स्वदेशी ग्लाइड वेपन तारा का पहला सफल परीक्षण किया। तारा का पूरा नाम है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। ये भारत का पहला स्वदेशी मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है। आसान भाषा में समझा जाए तो तारा एक ऐसा सिस्टम है जो किसी साधारण बम को स्मार्ट ग्लाइड बम में तब्दील कर देता है।
0: आमतौर पर जो अनगाइडेड बम होते हैं, उसे एक अंदाजे से टारगेट के ऊपर गिराया जाता है और इसके लिए विमान को टारगेट के करीब जाना पड़ता है और फिर उसके बाद ये टारगेट की ओर गिराया जाता है। वहीं अगर हम गाइडेड बम की बात करें तो इससे दूर रहकर भी दुश्मन के ठिकाने को निशाने पर लिया जा सकता है।
1: तारा ग्लाइड वेपन किट से न सिर्फ हथियार की रेंज में बढ़ोतरी होती है बल्कि सटीकता भी सुनिश्चित होती है। फाइटर जेट से छोड़े जाने के बाद ये सिस्टम एरोडायनामिक लिफ्ट और गाइडेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके एक आम फ्री फॉल बम के मुकाबले कहीं ज्यादा दूरी तय करता है, साथ ही हमले की सटीकता को भी बेहतर बनाता है।
2: तारा है, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, जितने हमारे डंप बॉम्ब है या जो ग्रेविटी बॉम्ब है उसमें इसको फिट कर दिया जाता है। इसमें विंग्स होते हैं, इसमें सेंसर होते हैं। कहने का मतलब यह है कि डंप बॉम्ब को कैसे स्मार्ट वेपन में कन्वर्ट किया जा सकता है। स्मार्ट का मतलब जो सेंसर के डायरेक्शन ले सके, जिसकी फ्लाइट मैनिपुलेट किया जा सके, जो प्रिसीजन स्ट्राइक कर सके और जिसको फ्लाइट के दौरान मैनिपुलेट करके सही टारगेट पे या टारगेट स्विचिंग किया जा सके। तो ये सारी सुविधाएं जो है तारा के थ्रू अचीव की जा सकती है।
1: स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा का ये परीक्षण बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि तारा भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करेगा जो अपने पुराने बमों को सटीक और दूर मार करने वाले हथियार में बदल सकते हैं।
0: तारा असल में एक मॉड्यूलर ग्लाइड किट है। आसान भाषा में अगर इसको समझना तो उसे कहेंगे कि हवाई जहाज से गिराए जाने वाले अनगाइडेड बमों के साथ लगाई जाने वाली किट, जिसका सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि ये सही और सटीक निशाना लगा पाएगी।
1: ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा में विंग्स, कंट्रोल सरफेस और एक बेहतरीन गाइडेंस पैकेज लगाया जाता है। इससे पुराने बम हवा में लंबी दूरी तक ग्लाइड करके जा सकते हैं और बेहद सटीक निशाना लगा सकते हैं। तारा में हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इनर्शियल नेविगेशन और सैटेलाइट गाइडेंस दोनों शामिल हैं। इससे सटीकता बहुत ज्यादा रहती है। विदेशी सिस्टम की तुलना में तारा ग्लाइड वेपन सिस्टम बेहद सस्ता भी है। इससे वायुसेना के पास पड़े लाखों पुराने बमों को आधुनिक हथियारों में बदला जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि किन किन देशों के पास ये तकनीक है। अमेरिका के पास JDM और JSOW है। ये साधारण अनगाइडेड बमों को प्रीशियस गाइडेड बम में तब्दील करते हैं। रूस के पास UMPK ग्लाइड बम किट है, जो उसने यूक्रेन युद्ध में अपने साधारण बमों को ग्लाइड करने के लिए इस्तेमाल किया था। इसराइल के पास स्पाइस 250 और स्पाइस 2000 जैसे बम प्रणालियां हैं। इनमें AI पर आधारित इलेक्ट्रो ऑप्टिकल होमिंग सीकर लगा है। भारत ने इसराइल से ये किट खरीदी है। फ्रांस के पास AASM हैमर रॉकेट बूस्टर है। वहीं तुर्की के पास HGK किट है, जो तारा की तरह ही काम करती है। इंडियन एयरफोर्स के लिए तारा जैसे सिस्टम भविष्य में कुछ ऐसे स्ट्राइक मिशनों के लिए एक सस्ता विकल्प साबित हो सकते हैं, जिनके लिए महंगी क्रूज मिसाइलों या उन्नत स्टैंड ऑफ हथियारों की जरूरत नहीं होती। स्टैंड ऑफ वो हथियार होते हैं जिन्हें काफी दूर से दुश्मन की नजर से दूर रहकर दागा जाता है। इन्हें बियॉन्ड विजुअल रेंज हथियार भी कहा जाता है। तारा से फायदा ये होगा कि ये फाइटर जेट से दागे जाने वाले किसी भी बम को BVR वेपन में तब्दील कर देगा।
0: तारा भारत को हम एक तरह से आत्मनिर्भर भारत की पहचान भी कह सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से भारत में ही विकसित सिस्टम है। पहले इस तरह के सिस्टम्स के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन अब भारत ने खुद का अपना सिस्टम तैयार किया है जो कि हमारी वायुसेना को और ज्यादा ताकत देगा और सही निशाना लगाने की क्षमता देगा।

0: रण क्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems, from OGs like Tupac and Biggie, to chart-topping bangers from the biggest artists of all time, like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
3: It's your boy,
2: just
3: Jay-Z.
2: Search classic hip-hop, or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: सिर्फ बद्रीनाथ धाम ही नहीं बल्कि केदारनाथ धाम समेत पूरे चार धाम यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। एक तरफ भक्तों की आस्था हिलोरे मार रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार और प्रशासन यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने में जुटे हुए हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग, मेडिकल टीम, पुलिस और राहत दल लगातार तैनात है। भक्ति और आस्था से सराबोर उत्तराखंड इन दिनों आध्यात्मिक ऊर्जा से गूंज रहा है।

0: आस्था का सैलाब, पहाड़ों पर उमड़ता विश्वास और हर दिन बनता नया इतिहास। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा इस बार रिकॉर्ड रफ्तार से आगे बढ़ रही है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भक्तों का उत्साह चरम पर है। पहाड़ों की कठिन राह भी श्रद्धा के आगे छूटी पड़ रही है। सरकार सुरक्षा, सुविधा और व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत बना रही है ताकि हर यात्री का सफर सुरक्षित और आसान बने। चारधाम यात्रा अब नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। चारों धामों में सुबह से लेकर देर शाम तक दर्शन के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले लोग बाबा केदार, बद्री विशाल, माँ गंगा और माँ यमुना के दर्शन कर खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। यात्रा शुरू होने के बाद से लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक चार धाम में दर्शन करने वालों का आंकड़ा 12,60,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं बद्रीनाथ धाम में आने वाले भक्तों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। सबसे ज्यादा उत्साह केदारनाथ यात्रा को लेकर देखा जा रहा है। ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और कठिन रास्ते भी लोगों के कदम नहीं रोक पा रहे। हर उम्र के लोग बाबा केदार के दर्शन के लिए पैदल मार्ग पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार भी पूरी तैयारी के साथ यात्रा संचालन में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि मौसम खराब होने की स्थिति में हर यात्री की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम तेजी से बदलता है, इसी वजह से प्रशासन ने विशेष निगरानी तंत्र तैयार किया है। रियल टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। भीड़ नियंत्रण और स्लॉट मैनेजमेंट को भी प्रभावी बनाया गया है ताकि किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। रास्तों में मेडिकल टीम, पुलिस बल, आपदा राहत दल और हेल्प सेंटर लगातार तैनात हैं। घोड़ों, पालकियों और हेलीकॉप्टर सेवाओं की व्यवस्था भी सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। यात्रा मार्ग पर सफाई और स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी विशेष फोकस किया गया है। पहाड़ों में गूंजते जयकारे श्रद्धा से भरे चेहरे बता रहे हैं कि इस बार की यात्रा खास है।
1: जयकारा वीर बजरंगी।

0: भक्ति और विश्वास का यही संगम उत्तराखंड को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: शनि अमावस्या के पावन दिन अयोध्या में उमड़ा आस्था का मेला, मां सरयू की हुई विशेष आरती, वैदिक मंत्रोच्चार से गूंजा नया घाट। महाराष्ट्र के अकोला में धूमधाम से मनाई गई शनि जयंती, प्राचीन मंदिर में काटा गया 11 किलो का कलाकंद केक, भजन कीर्तन और सुंदरकांड का पाठ। गुजरात के वड़ताल धाम में लगाया गया 500 किलो आम का भोग, केसर आम की खुशबू से महका स्वामीनारायण मंदिर का गर्भगृह, गर्मी को देखते हुए लगाया गया भोग। देवभूमि में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं का भजन कीर्तन, अब तक करीब 2.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। भीषण गर्मी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जंगल सफारी में बेजुबानों के लिए खास इंतजाम, खास डाइट प्लान का हो रहा पालन, एसी पंखा और कूलर की व्यवस्था।

देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत के जीवन का विलक्षण वृत्तांत लेकर हम हाजिर हुए हैं वो कान फिल्म फेस्टिवल में अपने एलिगेंट लुक से आम लोगों के साथ ही सेलेब्स का भी दिल जीत रही है।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइंस में से शुमार आलिया भट्ट हैं। जी हाँ, आपको बता दें, आलिया इन दिनों कान फिल्म फेस्टिवल में अपने दिलकश लुक और अदाओं का जलवा बिखेर रही हैं। ये वही आलिया है जो कि सोशल मीडिया पर कभी जिनके मीम्स की भरमार रहा करती थी। एक समय आलिया की ट्रोलिंग नेटिजंस का स्ट्रगल बन गया था। हालांकि सोशल मीडिया पर आलिया का जो परसेप्शन बना, आलिया की हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। आलिया की प्रतिभा की गहराई को वही समझ सकता है जो कि शिद्दत से उनके जिंदगी में उतरने की कोशिश करेगा। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगी कि आलिया को एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से कभी कभी वो जोन आउट हो जाती है और ट्रोलर्स उसी मोमेंट को पकड़ लेते हैं।

परसेप्शन और रियलिटी के बीच धूप छांव वाला रिश्ता काफी पुराना है। परसेप्शन कई बार रियलिटी के बहुत करीब होता है और कई बार रियलिटी परसेप्शन से कोसों दूर होती है। कान फिल्म फेस्टिवल में अपने फैबुलस और किलर लुक से धूम मचा रही आलिया भट्ट परसेप्शन और रियलिटी के बीच की अजीबो गरीब रिश्ते की अनूठी दास्तान है। बीते 12 मई को कान ओपनिंग सेरेमनी के रेड कार्पेट में कस्टम तमारा राल्फ गाउन में दुनिया भर के सेलेब्स के आकर्षण का केंद्र बनी आलिया इस प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल में लोरियल पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर के तौर पर पहुंची हैं। आलिया कान के हर इवेंट में अलग अलग अट्रैक्टिव आउटफिट में नजर आ रही हैं और अपने ओवरऑल सेंसिबल और एलिगेंट लुक से सेलेब्स की भी सेलिब्रिटी बनी हुई हैं। 14 मई को आलिया भट्ट ने लॉरियल पेरिस गाला डिनर के दौरान फ्लोरल ब्रोकेड आउटफिट में आकर सबका दिल